0: सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

नारद जी ये तुम्हारा मुंह क्यों लटका है? महात्माओं को टेंशन में नहीं रहना चाहिए, महात्माओं को तो अटेंशन में रहना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं, हमने देखे हैं, वो कथा में क्या हमारे सामने भी बैठेंगे तो ऐसे बैठेंगे जैसे घर से पिट के आए। अच्छा कुछ लोगों को ये लगता है, कुछ हमने पढ़े लिखे लोग देखे, अच्छा जो मूर्खों से ज्यादा पढ़े लिखों में दिक्कत ज्यादा, ये बीमारी पढ़ों लिखों में ज्यादा पाई जाती है, क्योंकि पढ़े लिखे लोगों को ये लगता है कि अगर हम ज्यादा हंसेंगे तो लोग हमको मूर्ख समझेंगे। उनको ये लगता है, इसलिए जितने भी ठहाका लगाते मिलेंगे वो हमारे जैसे मूर्ख ही मिलेंगे। पढ़े लिखे तो इतना कमजोर हंसते हैं कि सत्तू अगर सामने रख दो तो वो भी ना उड़े। इतने कमजोर। अच्छा उनको इसलिए ऐसा लगता क्योंकि उनको लगता है कि नहीं हमारा यही प्रोफेशन है, इसलिए इनको ज्यादा टेंशन। और जितने पढ़े लिखे लोग आत्महत्या करेंगे, स्ट्रेस में डिप्रेशन में रहेंगे, उतने हमारे जैसे मूर्ख कभी नहीं होते। जितनी गोलियां पढ़े लिखे खाते मूर्ख कभी नहीं खाते। क्यों? क्योंकि पढ़े लिखों को सब बुद्धि से सोचकर जीना पड़ता है, हमारे जैसे मूर्खों को दिल से सोचकर चलना पड़ता है। पढ़े लिखे दिमाग से चलते, हमारे जैसे मूर्ख लोग तो दिल से चलते हैं। अच्छा बुरा ना मानना, पढ़े लिखे लोग हमने देखे, यहां भी कुछ लोग बैठे हैं, आप लोगों को नहीं बोल रहे हम, कितनी भी बड़ी बात कह दे ये ताली भी बजाएंगे, हमने बहुत देखे बड़े बड़े लोग देखे। अच्छा ये हंसेंगे भी तो मतलब ऐसा लगेगा जैसे रबड़ थोड़ा तनी हो फिर छोड़ दी गई हो। हमारे जैसे मूर्ख जो सो रहा हो वो जग जाए ऐसे हंसते, तो पढ़े लिखे लोगों को बड़ी दिक्कत है क्योंकि वो दिमाग से चलते, हमारे जैसे मूर्ख यहां से। नारद जी मुंह लटकाए खड़े। अच्छा लेकिन ये मूर्ख नहीं, देव ऋषि है, पर मुंह क्यों लटकाए है? अपनी चिंता के कारण। ये साधु के देखना जरा, लोग हमसे पूछते साधु कौन जो अपनी चिंता ना करके दूसरी की चिंता में और परमात्मा के चिंतन में रहे उसी को साधु कहा जाता है। जगत की चिंता में और जगदीश के चिंतन में जो रहे उसे साधु कहा जाता है। साधु कौन जो जगत की चिंता में और जगदीश के चिंतन में। नारद जी चिंता में, किसकी चिंता है? क्या बात है? अरे नारद जी तुम्हारी तो कोई झोपड़ी भी नहीं है कि लुट गई हो, पर मुंह लटकाए क्यों खड़े हो? नारद जी बोले भैया क्या बताएं, अरे संतों का धन क्या है, संतों का धन क्या

नारद जी महाराज क्यों मुंह लटकाए हो? संतों का परम धन तो राधा नाम है, बोलो जय श्री राधे। भगवान का नाम ही परम धन है। नारद जी बोले, भैया हम अपने चक्कर में मुंह नहीं लटकाए। फिर बोले, हम इस लोक में, मृत्यु लोक में आए थे सत्संग करने। अच्छा, कितनी बड़ी बात है, सत्संग सब जगह नहीं मिलता, यही मिलता है। बोलो सीताराम, स्वर्ग में तुम्हें अप्सराएं मिल जाएंगी, खान पान बढ़िया मिलेगा, जो कल्पना करोगे सब मिलेगा, लेकिन सत्संग नहीं मिलेगा। अब तुम स्वर्ग में जाके कहो, हमको बागेश्वर महाराज की हनुमंत कथा सुनाओ, ये संभव नहीं है स्वर्ग में। सत्संग करने के लिए तो आपको मृत्यु लोक में ही आना पड़ेगा। नारद जी बोले, भैया हम आए थे इस लोक में सत्संग करने,

नारद जी बोले हम सब तीर्थ में गए, पुष्कर, प्रयाग, काशी, राम सेतु जहां पर है, रामेश्वरम, श्रीरंगम, श्रीरंगम सेतु बंदनम एवं आदेशु तीर्थेशु भ्रममाणे तस्ततः, सब तीर्थों में गए पर कहीं पर भी सत्संग प्राप्त नहीं हुआ। तो चारों भाई बोले क्यों? बोले कलयुग का ऐसा प्रभाव पड़ा, पापस्य खंडा सा पाखंडा, सब पाखंडी हो रहे हैं। अच्छा ये पाखंडी क्या है? पाप के ही एक खंड का नाम है पाखंड। पाप का एक खंड है मतलब जो है नहीं होने का दिखावा करे वही पाखंडी है। पाखंडी का अर्थ क्या है? आजकल ज्यादातर लोग ही पाखंडी है। हाँ, अरे पूछिए कैसे? असली ब्यूटी गायब है, ब्यूटी पार्लर की ब्यूटी लगी भई है। हाँ, ये भी तो गड़बड़ी है, ये भी गड़बड़ है। इसी का नाम तो जो है वो गायब। ज्यादा हमने अभी कुछ दिन पहले एक बात बोली थी सुविचार में कि दुनिया भारत के लोग जो होने का दिखावा करते हैं अगर वही बन जाएं तो भारत देश को सुधरने में समय नहीं लगेगा। नारद जी बोले भैया जहां देखो कलयुग की बड़ी विचित्र स्थिति, तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही, कली कौतुक तात न जात कही। कलयुग का बड़ा प्रभाव। अच्छा कलयुग का प्रभाव क्या? नारद जी बोले

कलयुग का प्रभाव कैसा? नारद जी बोले, भैया कन्या विक्रयण, आजकल कलयुग में शादियां नहीं होती हैं, बेटियों को बेचा जाता है, लड़कों का मोल लगाया जाता है, जो जितना रेट देवे, 4 लाख में शादी तय हुई, 10 लाख वाला आ जाए तो 4 की कैंसल, 10 की तय। कन्या विक्रयणो लोभात, सभी लोभी हो गए, दंपति नाम च कलकनम। अच्छा, ये गृहस्थ का हाल नहीं है, महात्माओं का भी हाल है। नारद जी बोले, भैया बुरा ना मानना, पहले के जमाने में महात्मा जितने फक्कड़ होते थे उतने सिद्ध माने जाते, आज के जमाने में जितने वैभवशाली हो उतने सिद्ध माने जाते, 8-10 बंदूकों वाले, 40-50 गाड़ियां, 20-25 मकान के कमरा, VIP 5-स्टार होटल, गजब बाबा है, बहुत ऊंचे पहुंचे भाई। भला ही साधना कुछ ना हो, केवल साधन ही साधन हो, और बुरा ना मानना, आज का जमाना ही ऐसा है, दिखावा का बड़ा जमाना है। आजकल चेले भी फोटूबाज हो गए, फोटू लें तभी दीक्षा मानी जाती। एक आदमी हमारे मंच पर चढ़ा, माला लेकर गया, गुरुजी माला, अंका चढ़ा दो भाई, डालो डालो डालो, कान पे टांगा, यहां कान पे, और देख उस तरफ रहा, अरे हम की माला तो ढंग से डाल, गुरुजी फोटू हो जाए, हम के फोटू बाद में, पहले कान से तो निकाल के थे डाल। पुराना मानना, हम फोटू के विरोध में नहीं है, पर एक बात हमें बहुत चुभती है, हमने 4-5-6 दिन पहले बोली है, रील की जिंदगी में रियल का खोजना बड़ा कठिन हो गया है। रील की जिंदगी में रियल का खोजना बड़ा कठिन हो गया, आजकल रियल कम दिखाई देते। नारद जी यही कह रहे, कलयुग का बड़ा प्रभाव,

0: क्या सोना धारण करने से क्रोध बढ़ता है? क्या चांदी धारण करने से सर्दी जुखाम में सुधार होता है? क्या तांबे का प्रयोग करने से पेट की समस्याओं में राहत मिलती है? अलग अलग धातुओं का क्या है प्रयोग, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
7: देशभर में कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियां तेज हैं, लेकिन मध्य प्रदेश खरगोन में इन दिनों अलग ही रौनक है। खरगोन में भगवान सिद्धनाथ जी महाराज अपनी प्रजा का हालचाल जानने के लिए जब नगर भ्रमण पर निकले तो जैसे पूरा शहर ही सड़कों पर उतर आया। खरगोन की सड़कें केवल रास्ता नहीं बल्कि भक्ति की अविरल धारा बन गई। हर साल सावन महीने के दौरान भगवान सिद्धनाथ महादेव की भव्य नगर यात्रा शिव डोला उत्सव के रूप में बहुत धूमधाम से निकाली जाती है। इस यात्रा में आकर्षक झांकियां, अखाड़े और ढोल धमाकों के साथ लाखों की संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं।
8: देखिए, आज शिवडोला के अवसर पे मैं सभी नगरवासियों को और सभी नागरिकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। यहाँ पे बहुत ही अच्छा माहौल है और भक्तिमय माहौल है, और जैसा मैं पहले भी कहता आया हूँ, मुझे सेवा और त्याग का जो है कि यहाँ पे अवसर दिख रहा है, लोगों में वो भावना दिख रही है और एक अलग तरह की पॉजिटिव एनर्जी है। मैं इसके लिए पुलिस प्रशासन और शिवडोला समिति सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा।
7: और अब बात करते हैं महोबा में चल रहे ऐतिहासिक अजली मेले की। 12वीं शताब्दी के चंदेल साम्राज्य की वीरता और स्वाभिमान का प्रतीक अजली मेले का भव्य आगाज हो चुका है। इस मौके पर शहीद स्थल से निकली भव्य शोभा यात्रा में वीर आल्हा उदल की झांकियां देखकर पूरा महोबा जयकारों से गूंज उठा। शोभा यात्रा में हाथी और घोड़ों पर सवार वीर आल्हा उदल, राजा परमार और राजकुमारी चंद्रवाल की झांकियों ने हर किसी का मन मोह लिया। 50 से ज्यादा घोड़ों के अनूठे नृत्य को देखने के लिए सड़कों के दोनों ओर भारी जनसैलाब उमड़ पड़ा। इस मेले का इतिहास सन 1182 के उस गौरवशाली युद्ध से जुड़ा है, जब राजकुमारी चंद्रावल कीरत सागर पर काजलिया विसर्जन के लिए जा रही थी और पृथ्वीराज चौहान की सेना ने हमला कर दिया था। तब वीर आल्हा उदल ने भीषण समर में दुश्मन को धूल चटाकर राजकुमारी की रक्षा की थी, और इसी ऐतिहासिक विजय की याद में महोबा में आज भी रक्षाबंधन के दिन कजली मेला यानी कि विजय पर्व मनाया जाता है।
9: ये कजली मेला में परमाल की सिंह की राजा परमाल सिंह की बेटी राजकुमारी के द्वारा ये कार्यक्रम स्टार्ट हुआ था। आज ये कार्यक्रम भव्य रूप से महोबा में मनाया जाता है और अच्छा कार्यक्रम, लाखों की संख्या में कजलियां, हाथी, घोड़े, ऊंट और सभी क्षेत्र के लोग बाग इसको अच्छे ढंग से मनाते हैं।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
4: शुभ संयोगों में आज धूमधाम से मनाया जा रहा है कजरी तीज का पावन त्योहार, महिलाएं रख रही हैं पति की लंबी उम्र, अखंड सौभाग्य और वैवाहिक जीवन की सुख शांति के लिए व्रत। अब और बढ़ेगी नौसेना की ताकत, आज बेड़े में शामिल होगा दूसरा स्वदेशी डाइविंग स्पोर्ट, पोत निपुण गहरे समुद्र में गोताखोरी और जटिल अभियानों को देगा अंजाम। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सहित कई राज्यों में आज से फिर सक्रिय होगा मॉनसून, मौसम विभाग ने जारी किया है भारी बारिश का अलर्ट। गणेशोत्सव से पहले सूरत में ढोल नगाड़ों से बप्पा का भव्य स्वागत किया गया, सड़कों पर उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब, कलाकारों ने शानदार प्रस्तुति से बांधा समा। जयपुर में क्यूबा की जोहाना ओरांगा बनी मिस टीन्स इंटरनेशनल 2026, नामीबिया की चैंटल बोरेन दूसरे और पैराग्वे की जूलियाना तीसरे स्थान पर रही। नासा का रोमन स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च, ब्रह्मांड के रहस्यों की करेगा खोज, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के सुलझाएगा रहस्य।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
4: दिल्ली के द्वारका का नया इस्कॉन मंदिर पहली बार मनाने जा रहा है जन्माष्टमी, गोकुल धाम थीम पर मंदिर की भव्य सजावट की गई। कृष्ण जन्मोत्सव के लिए तैयार की गई है भगवान की खास पोशाक, इसे बनाने में करीब 1.5 महीने का वक्त लगा है। जन्माष्टमी पर मंदिर में 5500 से ज्यादा भोग लगाए जाएंगे, इसके बाद ये भोग श्रद्धालुओं को प्रसाद के तौर पर बांटे जाएंगे। इस बार मंदिर में शुगर फ्री प्रसादम भी किया जा रहा है तैयार, इसमें चीनी की जगह खजूर, कोकोनट और पाम शुगर का होगा इस्तेमाल। जन्माष्टमी पर 200 किलो का खास केक काटा जाएगा, 108 किलो का केक पूरे दिन श्रद्धालुओं में प्रसाद के रूप में बांटा जाएगा। अकोला में गणपति बाबा की हुई है भव्य एंट्री, बड़ोदरा में से आई है 30 फीट की प्रतिमा की शोभा यात्रा निकाली गई। बापा के साथ भोलेनाथ की शादी की झांकी भी निकली। ऋषि मुनि नंदी और राक्षसों के रूप ने लोगों का ध्यान खींचा। ढोल ताशे और डीजे की धुन पर जमकर नाचे भक्त, भगवा झंडों और आतिशबाजी से पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। तीस फीट के बापा को देखने के लिए सड़क किनारे भारी भीड़ जुटी। लोगों ने मोबाइल से फोटो वीडियो बनाई और सेल्फी भी ली। रिद्धि सिद्धि गणेश पंडाल में चारों धाम की झांकी हो रही है तैयार। भक्तों को अकोला में ही चारों धामों के दर्शन कराने की तैयारी। खरगोन में भगवान सिद्धनाथ महादेव का भव्य शिव डोला निकला। शहर में गूंजे हर हर महादेव के जयकारे। शाही रथ पर सवार भगवान महादेव के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में उमड़े श्रद्धालु। मध्य प्रदेश पुलिस बैंड ने भगवान सिद्धनाथ महादेव को सलामी दी। ढोल ताशों और झांकियों के साथ पूरा शहर भक्तिमय नजर आया। शिव डोले की सुरक्षा के लिए 8 जिलों का पुलिस बल तैनात। शिव डोला मार्ग पर 350 सीसीटीवी कैमराज और ड्रोन से हर गतिविधि पर रखी जा रही है नजर। डीआईजी कलेक्टर और एसपी समेत बड़े अधिकारी संभाल रहे हैं सुरक्षा व्यवस्था। खरगोन का 58वां शिव डोला करीब 15 घंटे में तय करेगा 4 किलोमीटर का सफर। देर रात डोला मंदिर लौटेगा। महोबा में 845 पे ऐतिहासिक कजरी मेले का भव्य आगाज हुआ। आल्हा उदल के शौर्य की याद में जनसैलाब उमड़ा। उत्तर भारत के प्रसिद्ध ऐतिहासिक कजरी मेले में निकाली गई मनमोहक झांकियां। लोगों ने इसे राष्ट्रीय मेला घोषित करने की मांग की। जन्माष्टमी से पहले गूंजने लगी बांसुरी।

Do que ser sa já vigeta kataç. कई सुंदरियों को पछाड़कर जोहाना ने जीता खिताब. दुनिया भर से 31 प्रतिभागियों ने मिस टीन्स इंटरनेशनल में हिस्सा लिया था. नामीबिया की चैंटल बोरेन रही फर्स्ट रनर अप. प्रतियोगिता में चैंटल ने हासिल किया दूसरा स्थान. पैराग्वे की जूलियाना ओकारिस बनी सेकेंड रनर अप. कॉम्पिटिशन में जूलियाना तीसरे स्थान पर रही. अमेरिका की एंड्रिया एल्मिस्टिका थर्ड रनर अप रही. तो वहीं यूएस वर्जन आइसलैंड की डोरलिस नेको फोर्थ रनर अप बनी. उज्बेकिस्तान के बाद किर्गिस्तान के दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी. बिश्केक के एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत हुआ. पीएम मोदी के स्वागत में कलाकारों ने पेश किया पारंपरिक नृत्य. होटल पहुंचने पर वंदे मातरम के नारों से गूंजा माहौल. मां तुझे सलाम की धुन पर युवाओं ने किया योग प्रदर्शन. भगवान शिव की थीम पर सांस्कृतिक नृत्य ने मोहा सभी का मन. पीएम मोदी 26वें एससीओ शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल. सुरक्षा कनेक्टिविटी और अवसर पर भारत की प्राथमिकताएं रहेंगी. पुतिन और अन्य राष्ट्राध्यक्षों से पीएम मोदी की मुलाकात पर निगाहें. छठे विश्व घुमंतु खेलों के उद्घाटन समारोह में भी होंगे शामिल. पहलगाम में छड़ी मुबारक के पूजन और विसर्जन के साथ अमरनाथ यात्रा संपन्न हुई. पहलगाम में छड़ी मुबारक के अंतिम पूजन की रस्म पूरी हुई. अमरनाथ यात्रा के समापन पर श्रद्धालुओं ने विशेष पूजा अर्चना की. पहलगाम में धार्मिक अनुष्ठानों के साथ छड़ी मुबारक का विसर्जन हुआ. सात समंदर पार अमेरिका में बेटी की शादी. तेलंगाना के वेपला सिंगरम में माता पिता ने ऑनलाइन शादी में निभाई अक्षत की रस्म. स्क्रीन पर बेटी दामाद पर बरसे पवित्र अक्षत. माता पिता ने दिया आशीर्वाद. इकलौती बेटी की शादी ऑनलाइन देखकर भावुक हुए. मध्य प्रदेश के शिवपुरी में आरपीएफ का एएसआई बना देवदूत. तेजी से दौड़कर प्लेटफॉर्म ट्रेन के बीच फंसी महिला की जान बचाई गई.

चित्रकूट के मंदाकिनी नदी के उफान से बाढ़ जैसे हालात बने, लगातार चला रहा प्रशासन राहत और बचाव का काम। डीएम ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर हालात को देखा, अफसरों को लोगों तक जल्द राहत पहुंचाने के निर्देश दिए गए। चित्रकूट में बाढ़ से कई इलाकों में भारी नुकसान हुआ, हनुमान धारा जाने वाला मुख्य पुल और कई मंदिर भी बुरी तरह से प्रभावित हुए। मंदाकिनी की तेज धार ने चित्रकूट में बढ़ा दी मुश्किलें, मुख्य पुल को नुकसान पहुंचाने से आवाजाही पर भी असर पड़ा। चित्रकूट में बाढ़ का असर मंदिरों तक पहुंचा, हनुमान धारा समेत कई धार्मिक जगहों पर नुकसान हुआ। नेपाल में बाढ़ से प्रभावित सुरंग इलाके में राहत का काम तेज हुआ, नेपाल आर्मी के हेलीकॉप्टर से मौके पर पहुंचाए जा रहे हैं भारी उपकरण। नेपाल के हाइड्रो पावर टनल में फंसे लोगों की जान बचाने के लिए भारतीय एक्सपर्ट और नेपाली सेना के साथ शुरू किया काम, बचाव अभियान में जुटी है टीम। नेपाल पुलिस के 6 जवान समेत कुल 90 लोगों की टीम मौके पर तैनात की गई, कठिन और जोखिमपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद बचाव दल कर रहा है पुरजोर कोशिश। जाको राखी साइयां मार सके ना कोई, दमन के समुद्र तट पर सच हुई ये कहावत, लाइफगार्ड ने बचाई डूबती हुई बच्ची की जान। समंदर में मौज मस्ती करने वालों के लिए एक

0: बड़ा सबक, समंदर में उतरने से पहले मौसम, लहरों और सुरक्षा का ध्यान जरूर रखें। ऑस्कर के ऑफिशियल पेज पर छाए दीपिका पादुकोण और रणबीर कपूर। द एकेडमी ने सोशल मीडिया पर शेयर की फिल्म ये जवानी है दीवानी की आइकॉनिक सीन। उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। नैनीताल, पौड़ी, चमोली और बागेश्वर में कल स्कूलों को बंद रखने के दिए गए आदेश। गौतम गंभीर की बेटी आजीन बनी फिट इंडिया एम्बेसडर। खेल मंत्री मनसुख मांडवीय ने किया सम्मानित। रक्षाबंधन पर यूपी रोडवेज की फ्री बस सेवा में यात्रियों का बना नया रिकॉर्ड। 3 दिन में करीब 89 लाख यात्रियों ने उठाया निशुल्क बस यात्रा का लाभ। 3 दिनों में 55 लाख से ज्यादा बहनों ने की फ्री में बस यात्रा। करीब 34 लाख सहयोगियों ने भी सुविधा का फायदा लिया। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर सफर करने वालों के लिए आई खुशखबरी। मुकुंद्रा टनल की दूसरी लाइन शुरू हुई। लखनऊ में अवंती बाई की प्रतिमा का अनावरण हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी आदित्यनाथ समारोह में मौजूद रहे। विशाखापट्टनम में डॉक्टर्स ने लॉन्च की आई डोनेशन कैंपेन। लोगों को नेत्रदान के लिए किया जा रहा है जागरूक। एक दिन की देरी ने बचा ली मानसरोवर यात्रियों की जान। चंडीगढ़ निवासी सीए और 20 दोस्तों ने साथी के बीमार होने के चलते टाली थी एक दिन पहले यात्रा। बागेश्वरी माता मंदिर के नजदीक पहुंचा शेर। वन विभाग ने दिखाई मुस्तैदी। शेर को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। वर्ल्ड रैली चैंपियनशिप में लगातार तीसरी जीत के साथ पाजारी ने पैराग्वे रैली जीती। पाजारी ने चैंपियनशिप लीडर अल्फिन इवांस से अंतर घटाया। 3 राउंड बाकी रहते इवांस की बढ़त अब 20 अंक की रह गई है। हेडन पैटन दूसरे स्थान पर रहकर हुंडई के लिए शानदार नतीजा लाए। एड्रियन फोमॉक्स ने तीसरे स्थान के साथ पोडियम पूरा किया। एल्फिन इवांस चौथे स्थान पर रैली खत्म करने में सफल रहे। ओलिवर सोलबर्ग ने 5वें स्थान पर रैली पूरी की। जीत के बाद पाजारी ने को ड्राइवर के साथ जमकर जश्न मनाया। पोडियम पर ड्राइवर्स ने शैंपेन के साथ जीत का जश्न मनाया। चैंपियनशिप का अगला पड़ाव 10 सितंबर से शुरू होने वाली चिली रैली होगा।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती है। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
6: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज किस्मत कनेक्शन में बात करेंगे अलग अलग धातुओं की और उनके अलग अलग प्रयोग की। दिनांक 31 अगस्त 2026 दिन सोमवार, तिथि है भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि, प्रातः 8:50 तक। नक्षत्र है रेवती नक्षत्र। चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः 7:30 से लगभग 9 बजे तक पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं अलग अलग धातुओं के बारे में, अलग अलग मेटल्स के बारे में। धातुओं का ज्योतिष में क्या महत्व है? देखिए, हर धातु अपने आप में ऊर्जा का, एनर्जी का एक बड़ा स्रोत है। धातुओं का प्रयोग करके हम स्वास्थ्य को, मन को और अपनी सोच को बदल सकते हैं, और जब आप धातुओं का सही प्रयोग करते हैं तो तुरंत लाभ होना आरंभ हो जाता है। और धातुओं का प्रयोग आप कर सकते हैं कड़ा पहनकर या छल्ला पहनकर, यानी आपके संपर्क में जब कोई धातु आती है तो उसकी तरंगें आपके ऊपर असर डालती हैं, और अगर सही धातु का आप प्रयोग करते हैं तो इससे लाभ होना शुरू हो जाता है। सबसे पहले बात करते हैं गोल्ड की, यानी सोने की। इसका प्रभाव और इसका महत्व जानते हैं। देखिए, दुनिया की जितनी भी धातुएं हैं उनमें सबसे ज्यादा ऊर्जावान धातु, सबसे ज्यादा एनर्जी वाली धातु सोना है। सोना यानी गोल्ड का सीधा संबंध बृहस्पति से होता है, हालांकि कई जगहों पर इसको सूर्य से संबंधित माना गया है। जब आप सोने का प्रयोग करते हैं तो आपके पाचन तंत्र पर, आपके क्रोध पर, आपकी प्रशासनिक क्षमता पर ये सीधा असर डालता है। कन्या राशि, मकर राशि और कुंभ राशि के लिए सामान्यतः ये धातु बहुत शुभ प्रभाव नहीं देती है। जो लोग शनि प्रधान लोग हैं ऐसे लोगों को गोल्ड पहनने से ज्यादा लाभ नहीं होता है। अब बात करते हैं तांबे की, यानी कॉपर की। तांबे का महत्व क्या है? तांबा जो है, इस धातु का गुण जल और अग्नि का मिला जुला गुण है इसके अंदर। आम तौर पर ये औषधीय धातु है, मेडिसिनल मेटल है, और इसका सीधा संबंध होता है सूर्य और मंगल के साथ। जब आप तांबे का प्रयोग करते हैं तो ये आपके त्वचा पर, आपके रक्त प्रवाह पर और आपके पाचन तंत्र पर, डाइजेशन पर असर डालता है। मिथुन, कन्या और तुला राशि के लोगों के लिए तांबा आम तौर पर शुभ नहीं होता। तांबा आम तौर पर इनके लिए बहुत अनुकूल नहीं रहता है। अब बात करते हैं लोहे की, यानी आयरन की। सारी धातुओं में सबसे ज्यादा रहस्यमयी धातु लोहा माना जाता है। ज्योतिष में लोहे का संबंध जोड़ा जाता है शनिदेव के साथ। ये शनिदेव की धातु मानी जाती है। और जब आप लोहे का प्रयोग करते हैं तो ये आपके रक्त प्रवाह पर, ब्लड सर्कुलेशन पर, हड्डियों पर, बालों और कोशिकाओं पर असर डालता है। लौह धातु, लोहा जो है, ये मकर और कुंभ राशि के लोगों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद मानी जाती है ये धातु, और सिंह राशि वालों के लिए लोहा बहुत अनुकूल नहीं होता है। बात करते हैं स्टील की। स्टील के गुण क्या हैं? देखिए, स्टील के गुण लोहे से काफी मिलते जुलते हैं, लेकिन स्टील जो है ये राहु और केतु की धातु मानी जाती है। स्टील का संबंध दुर्घटनाओं से, संचार से और शक्ति से होता है। जिन लोगों के साथ बार बार दुर्घटना हो, इन्फेक्शन की, कम्युनिकेशन की बीमारी हो या बार बार उतार चढ़ाव की समस्या हो, ऐसे लोगों को स्टील का प्रयोग करना बहुत फायदेमंद होता है। स्टील का छल्ला बनवाकर अगर आप मिडिल फिंगर में पहने तो राहु और केतु से जुड़ी हुई समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। चांदी के बारे में बात करते हैं। चांदी जो है ये धातु अत्यंत शीतल और औषधीय प्रभाव वाली मानी जाती है। चांदी का सीधा संबंध होता है चंद्रमा के साथ, और चांदी जब आप प्रयोग करते हैं तो ये धातु शरीर में कफ और जल तत्व को नियंत्रित करती है। चांदी का प्रभाव या इसको धारण करने का प्रभाव आपके मन के ऊपर भी पड़ता है। ये धातु आपके मन पर भी असर डालती है। मेष, सिंह, धनु और मकर राशि वालों के लिए आम तौर पर चांदी बहुत बेहतर परिणाम नहीं देती। पीतल की बात करते हैं, ब्रास की। ये जो धातु है ये शुद्ध रूप से अग्नि तत्व की धातु है, शुद्ध रूप से फायर एलिमेंट की धातु है, और इसके अंदर कुछ अंश जल तत्व का पाया जाता है। पीतल का संबंध बृहस्पति और चंद्रमा दोनों से होता है। जब आप पीतल का प्रयोग करते हैं तो इसका असर शरीर के पित्त पर, त्वचा पर और आंखों पर सीधा पड़ता है। मेष राशि, कर्क राशि, सिंह, धनु और मीन राशि वालों को पीतल का प्रयोग करने से लाभ होता है। अगर कोई व्यक्ति ज्यादातर पित्त की समस्या से परेशान है, ज्यादातर हाइपर एसिडिटी किसी व्यक्ति को होती है और वो अगर पीतल धारण करे तो उसको निश्चित रूप से लाभ होगा। देखिए, आप कोई भी धातु इस्तेमाल करना चाहते हैं उसके दो तरीके हैं। एक तो आप उसका छल्ला बनवा लीजिए, सोना, चांदी, पीतल, तांबा, एक छल्ला बनवा के मिडिल फिंगर में, मध्यमा उंगली में आप पहनिए। थोड़ा मोटा और भारी छल्ला हो तो आपको लाभ होगा। दूसरा तरीका ये है कि अलग अलग धातुओं के प्याले, कटोरी या कप होने चाहिए और उसमें रात भर आप पानी भर करके रख दीजिए और सुबह उठ करके उस पानी को आप पीजिए। खासतौर से तांबे के पात्र में ये बात ज़्यादा अप्लाई होती है। इस तरीके से भी आप उस धातु का फायदा उठा सकते हैं। रविवार को किसी भी समय गेहूं के आटे की रोटी गाय को खिलाइएगा। अगर आप हर रविवार को ऐसा करें तो आपकी कुंडली का, आपके जीवन का सूर्य मजबूत होगा। कि अगर आपको शिक्षा में खूब सफलता चाहिए तो क्या करेंगे, सफेद रंग की सरस्वती माता की एक मूर्ति अपने पूजा स्थान पर स्थापित करें, रोज सुबह पीले फूलों से इनकी पूजा करें। ऐसा करने से आपको विद्या, बुद्धि और वाणी का वरदान मिलेगा। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
8: शुभ संयोगों में आज धूमधाम से मनाया जा रहा है कजरी तीज का पावन त्योहार। महिलाएं रख रही हैं पति की लंबी उम्र, अखंड सौभाग्य और वैवाहिक जीवन की सुख शांति के लिए व्रत। अब और बढ़ेगी नौसेना की ताकत, आज बेड़े में शामिल होगा दूसरा स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट बोट निपुण, गहरे समुद्र में गोताखोरी और जटिल अभियानों को देगा अंजाम।

जारी किया है भारी बारिश का अलर्ट। गणेशोत्सव से पहले सूरत में ढोल नगाड़ों से बापा का स्वागत किया गया। सड़कों पर उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। कलाकारों ने शानदार प्रस्तुति से बांधा समा।

0: पैराग्वे की जूलियाना तीसरे स्थान पर रही। नासा का रोमन स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च किया गया। ब्रह्मांड के रहस्यों की करेगा खोज। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के सुलझाएगा रहस्य।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
0: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गुड लक टुडे में। मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत स्वागत है आपका।
2: जी नमस्कार।
0: तो आज हम बात करने वाले हैं इस कार्यक्रम में धातुओं और उनके प्रयोग की, उनके प्रयोग से हमारे जीवन पर क्या कुछ असर पड़ता है। लेकिन सबसे पहले पंडित जी से जान लेते हैं आज का गुड लक मंत्र क्या है।
2: रविवार को किसी भी समय गेहूं के आटे की रोटी गाय को खिलाइएगा। अगर आप हर रविवार को ऐसा करें तो आपकी कुंडली का, आपके जीवन का सूर्य मजबूत होगा।
0: और चलिए सबसे पहले पंडित जी से जान लेंगे कि 31 अगस्त 2026 यानी कि सोमवार का पंचांग क्या है।
2: दिनांक 31 अगस्त 2026 दिन सोमवार, तिथि है भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि, प्रातः 8:50 तक। नक्षत्र है रेवती नक्षत्र। चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः 7:30 से लगभग 9 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
0: और चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। सबसे पहले पंडित जी से अपना पहला सवाल ले लेते हैं। पंडित जी, धातुओं का हमारे जीवन पर क्या कुछ असर पड़ता है?
2: जी देखिए, आज हम बात कर रहे हैं अलग अलग धातुओं के बारे में, अलग अलग मेटल्स के बारे में। धातुओं का ज्योतिष में क्या महत्व है? देखिए, हर धातु अपने आप में ऊर्जा का, एनर्जी का एक बड़ा स्रोत है। धातुओं का प्रयोग करके हम स्वास्थ्य को, मन को और अपनी सोच को बदल सकते हैं। और जब आप धातुओं का सही प्रयोग करते हैं तो तुरंत लाभ होना आरंभ हो जाता है। और धातुओं का प्रयोग आप कर सकते हैं कड़ा पहनकर या छल्ला पहनकर। यानी आपके संपर्क में जब कोई धातु आती है तो उसकी तरंगें आपके ऊपर असर डालती हैं, और अगर सही धातु का आप प्रयोग करते हैं तो इससे लाभ होना शुरू हो जाता है।
0: और चलिए अब पंडित जी से जान लेते हैं कि धातुओं में सोने का हमारे जीवन में क्या कुछ महत्व होता है और कैसे ये प्रभाव डालता है।
2: सबसे पहले बात करते हैं गोल्ड की, यानी सोने की। इसका प्रभाव और इसका महत्व जानते हैं। देखिए, दुनिया की जितनी भी धातुएं हैं उनमें सबसे ज्यादा ऊर्जावान धातु, सबसे ज्यादा एनर्जी वाली धातु सोना है। सोना यानी गोल्ड का सीधा संबंध बृहस्पति से होता है, हालांकि कई जगहों पर इसको सूर्य से संबंधित माना गया है। जब आप सोने का प्रयोग करते हैं तो आपके पाचन तंत्र पर, आपके क्रोध पर, आपकी प्रशासनिक क्षमता पर ये सीधा असर डालता है। कन्या राशि, मकर राशि और कुंभ राशि के लिए सामान्यतः ये धातु बहुत शुभ प्रभाव नहीं देती है। जो लोग शनि प्रधान लोग हैं, ऐसे लोगों को गोल्ड पहनने से ज्यादा लाभ नहीं होता है।
0: और आगे बढ़ने से पहले आप जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों का दैनिक राशिफल क्या है।
2: मेष राशि,

से बचाव करें, चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, काम की रुकावट दूर होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, अतिथि का आगमन होगा। शिव जी को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है।

0: योग हैं, पारिवारिक मामलों में सुधार होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और आज धातुओं की बात हो रही है तो पंडित जी से अब जान लेंगे कि तांबा है जो उसका महत्व क्या होता है और उसका हमारे जीवन पर क्या कुछ असर पड़ता है।
0: अब बात करते हैं तांबे की यानी कॉपर की। तांबे का महत्व क्या है? तांबा जो है इस धातु का गुण जल और अग्नि का मिला जुला गुण है इसके अंदर। आम तौर पर ये औषधीय धातु है, मेडिसिनल मेटल है और इसका सीधा संबंध होता है सूर्य और मंगल के साथ। जब आप तांबे का प्रयोग करते हैं तो ये आपके त्वचा पर, आपके रक्त प्रवाह पर और आपके पाचन तंत्र पर, डाइजेशन पर असर डालता है। मिथुन, कन्या और तुला राशि के लोगों के लिए तांबा आम तौर पर शुभ नहीं होता। तांबा आम तौर पर इनके लिए बहुत अनुकूल नहीं रहता है।
1: और अब जान लेंगे लोहे की धातु के बारे में कि लोहे की धातु का हमारे जीवन पर क्या कुछ प्रभाव पड़ता है।
0: अब बात करते हैं लोहे की यानी आयरन की। सारी धातुओं में सबसे ज्यादा रहस्यमयी धातु लोहा माना जाता है। ज्योतिष में लोहे का संबंध जोड़ा जाता है शनि देव के साथ। ये शनि देव की धातु मानी जाती है और जब आप लोहे का प्रयोग करते हैं तो ये आपके रक्त प्रवाह पर, ब्लड सर्कुलेशन पर, हड्डियों पर, बालों और कोशिकाओं पर असर डालता है। लौह धातु, लोहा जो है, ये मकर और कुंभ राशि के लोगों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद मानी जाती है ये धातु, और सिंह राशि वालों के लिए लोहा बहुत अनुकूल नहीं होता है।
1: और आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले कर्क, सिंह और कन्या राशि वाले जातकों का दैनिक राशिफल जान लेते हैं।
0: कर्क राशि, करियर में आपके सुधार होता दिख रहा है, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।

रखें। पारिवारिक समस्याएं हो सकती हैं। धन के खर्चों पर ध्यान दें। चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।

0: बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और चलिए अब वक्त हो चला है आज का आपका सबसे पहला सवाल लेने का। पंडित जी, पहला सवाल किसका रहेगा?
0: जी, आज का पहला प्रश्न अमृता जी ने हमें लिखा है और अमृता जी हमें मेल लिखती हैं लखनऊ से। इनकी जन्म की तारीख है 27 अक्टूबर 1988। जन्म का समय रात में 11:10। जन्म स्थान है गाजीपुर, उत्तर प्रदेश। मेल लिखती हैं लखनऊ से। ये कह रही हैं कि नौकरी को लेकर के मेरा एक मुकदमा चल रहा है, वो मुकदमा कब तक हल होगा और नौकरी के मामले में मुझे लाभ होगा या नहीं होगा। अमृता जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके नौकरी का जो मुकदमा है वो आपके पक्ष में आएगा, आपके पक्ष में हल होगा। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। साल 2027 के शुरुआती समय में ये मामला आपके पक्ष में आना चाहिए। दूसरी बात यह है कि भविष्य में आपका करियर और आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर दिख रही है, उसमें किसी तरह के चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एक मूंगा बनवा के पहनिए, 8-10 रत्ती का मूंगा, तांबे या सोने में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। मंगलवार को प्रातः मूंगा धारण करें और सुबह शाम दोनों समय संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करें तो आपको लाभ होगा।
1: और चलिए अब बढ़ते हैं आज के आपके दूसरे प्रश्न की ओर। पंडित जी, दूसरा प्रश्न किसका रहने वाला है?
0: जी, अगला प्रश्न हमें पुष्पलता जी ने लिखा है और पुष्पलता जी हमें मेल लिखती हैं वाराणसी से। अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्र की जन्म की तारीख है 15 फरवरी 2012। जन्म का समय सुबह के 9:50। जन्म स्थान है वाराणसी। ये कह रही हैं कि मेरे पुत्र का पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल मन नहीं लगता, वो एकाग्र नहीं होता और पढ़ाई में दिक्कतें बहुत आ रही हैं, मुझे क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, आपके पुत्र के जीवन में जो सुधार होने की संभावना है वो मार्च 2027 के बाद दिखाई देती है। आगे की पढ़ाई लिखाई और आगे का जीवन आपके पुत्र का बेहतर रहेगा। अपने बेटे को एक पन्ना बनवा करके पहना दीजिए, लगभग 6-8 रत्ती का पन्ना, चांदी के लॉकेट में, काले धागे में। बुधवार की शाम को इनके गले में पहनाइए और आप अपने पुत्र के लिए रोज सुबह 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करिए तो आपके पुत्र के लिए बहुत बेहतर होगा।
1: और चलिए अब धातुओं में बात करेंगे स्टील की। स्टील का आखिर महत्व क्या होता है और हमारे जीवन पर ये कैसे प्रभाव डालता है?
0: बात करते हैं स्टील की। स्टील के गुण क्या हैं? देखिए, स्टील के गुण लोहे से काफी मिलते जुलते हैं, लेकिन स्टील जो है ये राहु और केतु की धातु मानी जाती है। स्टील का संबंध दुर्घटनाओं से, संचार से और शक्ति से होता है। जिन लोगों के साथ बार बार दुर्घटना हो, इन्फेक्शन की, कम्युनिकेशन की बीमारी हो या बार बार उतार चढ़ाव की समस्या हो, ऐसे लोगों को स्टील का प्रयोग करना बहुत फायदेमंद होता है। स्टील का छल्ला बनवाकर अगर आप मिडिल फिंगर में पहने तो राहु और केतु से जुड़ी हुई समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी।
1: और चलिए आगे बढ़ने से पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि वाले जातकों के दैनिक राशिफल के बारे में जान लेते हैं।
0: तुला राशि, धन लाभ के योग आपके लिए फिलहाल बन रहे हैं, धन की प्राप्ति होगी, काम की रुकावट दूर होगी, किसी धार्मिक कार्य में व्यस्त रहेंगे। शिव जी को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा, काम में सफलता मिलेगी, विवादों से बचाव करें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ऑफिस में विवादों से बचाव करें, काम की अधिकता रहेगी, चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।
1: और चलिए अब बात करेंगे चांदी की। चांदी का आखिर महत्व क्या होता है और हमारे जीवन पर क्या कुछ प्रभाव डालता है?
0: चांदी के बारे में बात करते हैं। चांदी जो है ये धातु अत्यंत शीतल और औषधीय प्रभाव वाली मानी जाती है। चांदी का सीधा संबंध होता है चंद्रमा के साथ, और चांदी जब आप प्रयोग करते हैं तो ये धातु शरीर में कफ और जल तत्व को नियंत्रित करती है। चांदी का प्रभाव या इसको धारण करने का प्रभाव आपके मन के ऊपर भी पड़ता है। ये धातु आपके मन पर भी असर डालती है। मेष, सिंह, धनु और मकर राशि वालों के लिए आम तौर पर चांदी बहुत बेहतर परिणाम नहीं देती। कर्क, वृश्चिक और मीन वालों के लिए चांदी का प्रयोग करना या चांदी के संपर्क में आना सबसे ज्यादा फायदेमंद माना जाता है।
1: और धातुओं में अब बात करते हैं पीतल की। पंडित जी से जान लेते हैं कि पीतल का क्या कुछ महत्व होता है, क्या भूमिका निभाता है और क्या कुछ असर डालता है।
0: पीतल की बात करते हैं, ब्रास की। ये जो धातु है ये शुद्ध रूप से अग्नि तत्व की धातु है, शुद्ध रूप से फायर एलिमेंट की धातु है और इसके अंदर कुछ अंश जल तत्व का पाया जाता है। पीतल का संबंध बृहस्पति और चंद्रमा दोनों से होता है। जब आप पीतल का प्रयोग करते हैं तो इसका असर शरीर के पित्त पर, त्वचा पर और आंखों पर सीधा पड़ता है। मेष राशि, कर्क राशि, सिंह, धनु और मीन राशि वालों को पीतल का प्रयोग करने से लाभ होता है। अगर कोई व्यक्ति ज्यादातर पित्त की समस्या से परेशान है, ज्यादातर हाइपर एसिडिटी किसी व्यक्ति को होती है और वो अगर पीतल धारण करे तो उसको निश्चित रूप से लाभ होगा।
1: और अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वाले जातकों के दैनिक राशिफल के बारे में।
0: मकर राशि, करियर में सफलता के योग हैं, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, कोई शुभ सूचना मिलेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होता जाएगा, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, अपने महत्वपूर्ण काम निपटाने का प्रयास करिए। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना।

0: समाप्त होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार में शुभ कार्य होंगे, शिव जी को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%, सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और चलिए पंडित जी से ये जान लेंगे कि हम किसी धातु का अगर प्रयोग करना चाहते हैं तो उसकी विधि क्या है, किस तरह से हमें इस्तेमाल करना चाहिए जिससे लाभ हो।
0: जी देखिए, आप कोई भी धातु इस्तेमाल करना चाहते हैं उसके दो तरीके हैं। एक तो आप उसका छल्ला बनवा लीजिए, सोना चांदी पीतल तांबा, एक छल्ला बनवा के मिडिल फिंगर में मध्यमा उंगली में आप पहनिए। थोड़ा मोटा और भारी छल्ला हो तो आपको लाभ होगा। दूसरा तरीका ये है कि अलग अलग धातुओं के प्याले कटोरी या कप होने चाहिए और उसमें रात भर आप पानी भर करके रख दीजिए और सुबह उठ करके उस पानी को आप पीजिए। खासतौर से तांबे के पात्र में ये बात ज़्यादा अप्लाई होती है। इस तरीके से भी आप उस धातु का फायदा उठा सकते हैं।
1: और चलिए अब वक्त हो चला है आज का आपका तीसरा सवाल लेने का, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर एक मेल आईडी दी गई है जिस पर आप मेल कर सकते हैं, अपना सवाल पंडित जी तक पहुंचा सकते हैं। पंडित जी आज का तीसरा सवाल किसका रहेगा?
0: जी अगला प्रश्न सुनील जी ने हमें लिखा है और सुनील जी हमें जयपुर से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 2 अप्रैल 1978, जन्म का समय रात में 11 बजे और जन्म का स्थान है ब्यावर राजस्थान। सुनील जी पूछ रहे हैं कि मेरे व्यापार में अभी बहुत दिक्कतें आ रही हैं, आर्थिक स्थिति बिगड़ रही है, तो मैं क्या उपाय करूं जिससे मेरा व्यापार और मेरी आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाए। सुनील जी आपकी कठिनाई का जो समय है वो अक्टूबर 2026 तक दिखाई दे रहा है, अक्टूबर के बाद स्थितियां बेहतर दिख रही हैं, तो आपको ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आने वाले समय में आपका व्यापार और आपका काम निश्चित रूप से बेहतर होगा। आप एक ओपल बनवा करके पहन लीजिए, 10 बार

0: नाम को एक ओपल धारण करें, सुबह और शाम दोनों समय एक एक बार शनि चालीसा का पाठ करिएगा, आपको लाभ होगा।
1: और चलिए अब बढ़ते हैं अपने अंतिम और आखिरी सवाल की ओर। पंडित जी, चौथा सवाल आप किसका लेने वाले हैं?
0: जी,

0: पूछ रहे हैं कि मेरी बेटी का विवाह कब होगा और उसका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। देखिए, आपकी पुत्री की कुंडली के हिसाब से इनके विवाह होने का जो समय है वो साल 2027 के सेकेंड हाफ में है, जून से दिसंबर 2027 के समय में इनका विवाह होगा और वैवाहिक जीवन इनका कुल मिला जुला के बेहतर रहेगा। अपनी पुत्री को एक मोती बनवा के पहना दें, 10-12 रत्ती की मोती चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को इनको मोती पहनाएं और इनको बोलिए कि रोज सुबह 108 बार नमः शिवाय का अगर जप करें तो इनके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: और चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी, जिनका जन्मदिन 31 अगस्त को है। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी बर्थडे, बर्थडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप पंडित जी से जान लेंगे कि आपका आने वाला साल कैसा रहने वाला है।
0: जिन लोगों का जन्मदिन 31 अगस्त को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, करियर की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी, स्थान परिवर्तन के और नई संपत्ति खरीदने के योग बन रहे हैं, विवाह के मामले में और संतान के मामले में अभी विलंब होगा। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर राहु मंत्र का अगर आप जप करें, ओम रां राहवे नमः, तो वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: और चलिए अब पंडित जी से जान लेते हैं आज की जिज्ञासा क्या है।
0: देखिए, सामान्यतः लोग शिव जी की पूजा करते हैं विवाह के लिए और आयु की रक्षा के लिए। क्या शिव जी की पूजा से दरिद्रता भी दूर होती है, धन का लाभ भी होता है? देखिए, शिव जी की कृपा से दुनिया की हर तरह की उपलब्धि पाई जा सकती है। अगर शिव जी की नियमित पूजा और प्रार्थना की जाए तो दरिद्रता दूर हो जाती है। और इसका सबसे अच्छा तरीका है कि सुबह और शाम दोनों समय दारिद्र दहन स्तोत्र का पाठ किया जाए। ऐसा करने से आपकी दरिद्रता दूर हो जाएगी।
1: और चलिए आप जान लेंगे कि 31 अगस्त 2026 यानी कि सोमवार का शुभ पहर क्या है।
0: दिनांक 31 अगस्त 2026 दिन सोमवार, शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में शिव जी के मंत्र का 108 बार जप करिएगा। ऐसा करने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में सुधार होगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 31 अगस्त सोमवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में।
1: और चलिए बढ़ते हैं कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में और अब जान लेते हैं आज की गुड लक राशि के बारे में।
0: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों के अंदर

0: तरह की दिक्कतें होती हैं और उन्हें कहां सुधार करना चाहिए। आज की गुड लक राशि है मकर। आपको बेवजह की मेहनत से बचना चाहिए और दूसरों की ज्यादा जिम्मेदारियां लेने से बचना चाहिए। आपको थोड़ा सा ध्यान अपने ऊपर भी देना चाहिए ताकि आप जीवन में सुखी रह सकें।
1: और चलिए अब आगे बढ़ेंगे और अब पंडित जी से जानने का वक्त हो चला है, आज का महा उपाय क्या है?
0: जी आज के महा उपाय में आपको बताते हैं कि अगर आपको शिक्षा में खूब सफलता चाहिए तो क्या करेंगे। सफेद रंग की सरस्वती माता की एक मूर्ति अपने पूजा स्थान पर स्थापित करें। रोज सुबह पीले फूलों से इनकी पूजा करें। ऐसा करने से आपको विद्या, बुद्धि और वाणी का वरदान मिलेगा।
1: पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों तक तमाम जानकारियां पहुंचाने के लिए।
0: धन्यवाद।
1: और इसी के साथ गुड लक टुडे में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों को देखने के लिए बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसकी
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
1: सोना धातु किन लोगों को नहीं पहनना चाहिए, लोहे का प्रयोग करने से जीवन में किस तरह का फायदा हो सकता है, अलग अलग धातुओं के क्या हैं लाभ और क्या है प्रयोग विधि, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
8: और चलिए अब बात करते हैं कृष्ण जन्मोत्सव की तैयारियों की। नंद की लाला, यशोदा के कान्हा, राधा की माधव, गोपियों के मुरली मनोहर और सबके तारनहार, भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव की धूम देश भर में देखने को मिल रही है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि हो या फिर वृंदावन में बांके बिहारी जी का मंदिर, पूरे ब्रज मंडल में अभूतपूर्व हर्षोल्लास का माहौल देखने को मिल रहा है। देश भर में अलग अलग शहरों में जन्माष्टमी के रंग बिखरे हैं, लेकिन कान्हा की नगरी मथुरा में इस बार विशेष उत्सव की तैयारियां हैं।

0: नंद के लाला, यशोदा के कान्हा, राधा के माधव, गोपियों के मुरली मनोहर और सबके तारनहार, भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव की धूम देश भर में है। लेकिन इस मौके पर कान्हा की नगरी मथुरा का रंग सबसे अलग और सबसे जुदा रहने वाला है। इस खास मौके पर हर साल की तरह इस साल भी मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और वृंदावन में बांके बिहारी जी के मंदिर समेत पूरे ब्रज मंडल में अभूतपूर्व हर्षोल्लास का माहौल देखने को मिलेगा, क्योंकि इस बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण जन्म स्थान पर श्रद्धालुओं को ठाकुर जी के एक बेहद अलौकिक और अद्भुत रूप के दर्शन होने जा रहे हैं। जन्माष्टमी के पावन अवसर पर कन्हैया कलहंस पुष्प बंगले में विराजमान होंगे, इसलिए जन्म स्थान के अंदर के पुष्प बंगलों को दुर्लभ पत्र, पुष्प वृक्षों और विशेष रूप से हंसों की दिव्य आकृतियों से सजाया जा रहा है।
1: भगवान श्री कृष्ण के 5253वें जन्मदिन को जन्मोत्सव को बहुत ही भव्यता और दिव्यता के साथ मनाया जाएगा। तैयारियां बहुत जोर शोर भाव से चल रही हैं। आने वाले श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के दर्शन सुव्यवस्थित और सुंदर ढंग से कर पाए, ऐसा संस्थान का प्रयास है। इस वर्ष भगवान कलहंस पुष्प बंगले में विराजमान होंगे। अंदर के पुष्प बंगलों को जो बना रहे हैं उसमें पत्र, पुष्प, वृक्ष आदि आकृति उकेरी जाएंगी और हंस, इस बार हंस आकृति जो है वह पुष्प बंगले की शोभा होंगी। बाहर बहुत ही दिव्य और भव्य विद्युत सजावट की जा रही है। निश्चित रूप से सज्जा नैना विराम होगी और श्रद्धालु परिसर में प्रवेश करने से पूर्व भी ऐसी सुंदर दिव्य छटा को देखकर अभिभूत हो उठेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है।
0: मथुरा में इस बार की जन्माष्टमी केवल एक उत्सव नहीं बल्कि पूरी सनातन परंपरा के एकाकार होने का महापर्व बनने जा रही है। इस विशेष मौके पर कन्हैया जी को अत्यंत दुर्लभ और नैनाभिराम पंचरत्नी पोशाक पहनाने की तैयारी है, जिसे समुद्र मंथन से निकले 14 रत्नों में से 5 प्रमुख और पवित्र रत्नों के जरिए सजाया और सवारा जा रहा है।
1: पंचरत्नी पोशाक को धारण करेंगे। जो समुद्र मंथन में 14 रत्न मिले थे उनमें से 5 रत्न उकेरे गए हैं श्री ठाकुर जी की दिव्य पोशाक पर। श्री ठाकुर जी को इस वर्ष काशी और अयोध्या, श्री राम जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ धाम से प्रसाद आ रहे हैं, उनको भव्य और दिव्य शोभा यात्रा के रूप में श्री के जन्म स्थान में प्रवेश कराया जाएगा, श्री ठाकुर जी को अर्पित किया जाएगा।
0: ब्रजभूमि में इस बार जन्माष्टमी का महापर्व केवल एक उत्सव नहीं बल्कि संपूर्ण सनातन आस्था के एक नया इतिहास रचने का महासंगम बनने जा रहा है। इस पवित्र अवसर पर महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज ने दिव्य रजशिला का विधि विधान से पूजन किया। उसके बाद जैसे ही रजशिला मणिराम दास छावनी पहुंची, हजारों भावुक संतों और भक्तों ने पुष्प वर्षा के साथ उसका वंदन किया। भक्ति भाव से सराबोर इस रजशिला को सबसे पहले माँ सरयू की गोद में पावन स्नान कराकर महाआरती अर्पित की गई, फिर वीर हनुमान जी के श्री चरणों में नतमस्तक कराकर श्री राम जन्मभूमि मंदिर की पवित्र माटी का स्पर्श कराकर संकल्पित किया गया है।
2: श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के लिए रजशिला का पूजन किया गया। सभी संत भगवान ने पुष्प वर्षा की और सरयू नदी के किनारे ले जाकर वहां पर उस ऐतिहासिक आरती का साक्षी उस रजशिला को बनाया गया। फिर हनुमानगढ़ी आए। हनुमानगढ़ी में परम पूज्य हम सबके आराध्य हनुमान जी के चरणों में रजशिला को रखा गया। उसके बाद में श्री राम मंदिर गए, वहां पर सभी श्रद्धालुओं की जो रज थी, चरणों की रज को रजशिला में लगाया गया। उसके बाद में पूरा विधि विधान से संत भगवान ने पूजन किया।
0: पूरे ब्रज मंडल में जहां तैयारियां जोर शोर से हो रही हैं, वहीं वीरांगना नगर झांसी जन्माष्टमी से पहले कृष्णमय हो उठी है। इस्कॉन की स्थापना के 60 वर्ष पूरे होने के स्वर्णिम अवसर पर शहर में अलौकिक हरिनाम संकीर्तन यात्रा निकाली गई। हरे कृष्ण मंदिर से आरंभ हुई इस भव्य यात्रा में भक्ति का ऐसा ज्वार उठा कि हर कोई इसमें बहता चला गया। ढोल और मंजीरों के धुन पर गूंजता हरे कृष्णा का महामंत्र वातावरण में एक अलौकिक ऊर्जा भर रहा था। इस देव यात्रा का सबसे बड़ा और मुख्य आकर्षण था फूलों से सजा ये भव्य रथ, जिस पर श्री श्री नेताई गौर सुंदर और इस्कॉन के संस्थापक श्रील प्रभुपाद जी के विग्रह विराजमान थे। सड़कों पर जहाँ जहाँ से ये रथ गुजरा, लोगों ने पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया और भगवान का आशीर्वाद लिया।
3: तीन दिवसीय क्राफ्ट मेला मैदान में भव्य जन्माष्टमी का महोत्सव होगा। 2 तारीख को युवाओं का महोत्सव यूथ फेस्टिवल होगा, 3 तारीख को सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और 4 तारीख को भव्य जन्माष्टमी महोत्सव मनाया जाएगा।
0: हरे कृष्ण मंदिर से शुरू होकर पूरे झांसी नगर को भक्ति रस से सराबोर करने के बाद यह संकीर्तन यात्रा वापस कौन मंदिर पहुंचकर संपन्न हुई। इस यात्रा ने झांसी वासियों के दिलों में जन्माष्टमी के महापर्व की भक्तिमय अलग जगा दी है। इस बार बिहारी लाल जी का 5253वां जन्म महोत्सव मनाया जा रहा है, तो अवसर अत्यंत विशिष्ट है, लिहाजा भव्य उत्सव मनाने के लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। ऐसे में हर साल की तरह इस बार भी देश के कोने कोने में पूरे उल्लास के साथ जन्माष्टमी मनाने की तैयारी है। मथुरा से मदन गोपाल शर्मा के साथ झांसी से अजय झा, गुड न्यूज टुडे।
4: और चलिए अब आपको लिए चलते हैं संगम नगरी प्रयागराज, जहां पर मां गंगा अपने पुत्र श्री हनुमान जी का अभिषेक करने खुद पहुंचती हैं। संगम तट पर इकलौता ऐसा मंदिर है जहां हनुमान जी लेटे हुए हैं और इसे विश्राम की मुद्रा में अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। जैसे ही मां गंगा का पानी मंदिर तक पहुंचा, विधि विधान से यहां मां गंगा का स्वागत किया गया, मां गंगा की भव्य आरती की गई और इसी के साथ मान्यताओं के मुताबिक मंदिर के कपाट फिलहाल कुछ दिनों के लिए बंद कर दिए गए हैं।
0: संगम नगरी में एक अनूठा संगम देखने को मिला। प्रयागराज के लेटे हनुमान का अभिषेक करने खुद मां गंगा मंदिर तक पहुंच गई और यह अनूठा संगम देख भक्तों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा।
5: संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना के जलस्तर में लगातार तेजी देखने को मिल रही है, लेकिन हम इस वक्त संगम के लेटे हनुमान मंदिर में हैं, जहां पर माँ गंगा अपने पुत्र बजरंग बली को स्नान कराने के लिए पहुंची हैं। आप देख सकते हैं कि माँ गंगा यहां पर सीढ़ियों से प्रवेश कर रही हैं और बजरंग बली यहां पर शयन को जा रहे हैं। ये दुर्लभ क्षण है और इस दुर्लभ क्षण के लिए यहां पर लोग सालों से इंतजार करते हैं, जब हर वर्ष माँ गंगा यहां स्नान कराने के लिए आती हैं और ये सीढ़ियों से जो गंगा जला रहा है और माँ गंगा का स्वागत किया गया, पूजन किया गया, इसके बाद माँ का अभिवादन किया गया। आप देख सकते हैं लोग जो श्रद्धालु हैं यहाँ पर उस क्षण का इंतजार करते हैं।
0: संगम नगरी प्रयागराज में गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती का जल स्तर जब बढ़ा, तब एक अत्यंत दुर्लभ अलौकिक और आध्यात्मिक दृश्य देखने को मिला। माँ गंगा ने स्वयं संगम तट पर स्थित प्रसिद्ध लेटे हनुमान जी मंदिर के गर्भगृह में पहुंचकर अपने पुत्र बजरंग बली को पावन स्नान कराया।
6: गंगा माँ हर साल हनुमान जी महाराज का स्नान करा के ही जाते हैं। पहले बार आए गंगा जी, वो आपस दीवार से लौट गए, दोबारा गंगा जी आए, वो आज भाग्यशाली हनुमान जी महाराज का स्नान करा के ही गंगा जी प्रवेश करते हैं। खुद
7: भगवान
6: जी आज जो है शहर में जल शयन कर गए हनुमान जी। हर साल होता है, प्रतिदिन हर साल गंगा जी स्नान करा के ही आते, बड़ा भाग्यशाली है, बड़ा दुर्लभ है कि गंगा जी स्नान।
0: जैसे ही देर रात माँ गंगा की पवित्र धारा मंदिर के गर्भ गृह तक पहुंची, पूरा परिसर हर हर गंगे और जय श्री राम के जयकारों से गूंज उठा। धीरे धीरे गंगा का पानी सीढ़ियों से आकर हनुमान जी को स्पर्श करने लगा और फिर पूरी मूर्ति को माँ गंगा ने आगोश में ले लिया। मंदिर के महंत और साधु संतों ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच माँ गंगा का स्वागत किया, दूध दही घी और पंचामृत अर्पित कर माँ गंगा का अभिनंदन किया गया और भव्य आरती उतारी गई।
8: जी गंगा मैया का सबसे पहले पंचामृत द्वारा और दूध दही शहद और पंचमेवा के द्वारा अभिषेक किया गया है। गंगा मैया को अभिषेक करने के बाद दूध दही शहद पंचामृत से अभिषेक करने के बाद उनको वस्त्र अर्पण किया गया है, नैवेद्य प्रसाद अर्पण किया गया है दीप द्वारा आरती उतारी गई है, गंगा मैया के स्वागत में आरती उतारी गई है और वस्त्र अर्पण करके प्रसाद अर्पण करके भक्तों को वितरण किया।
0: मान्यता है कि जिस साल गंगा का पानी मंदिर में हनुमान जी का अभिषेक कर देता है उस साल देश प्रदेश और शहर में कोई आपदा नहीं आती। इस अद्भुत संयोग को सुख और शांति का प्रतीक भी माना जाता है। इस अलौकिक और दुर्लभ क्षण के बाद परंपरा अनुसार मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए जाते हैं।
8: बहुत ही दुर्लभ क्षण होता है जिसका प्रयागवासी लगभग 2 महीने से इंतजार कर रहे थे कि अब नहाएं हनुमान जी महाराज का वो, लेकिन आज गंगा मैया ने अपने पुत्र का जलाभिषेक कर दिया है तो देश में तरक्की खुशहाली और समृद्धि सुख समृद्धि आएगी।
0: प्रयागराज की पावन धरती और त्रिवेणी संगम के तट पर लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर न केवल आस्था का केंद्र है बल्कि करोड़ों भक्तों के अटूट श्रद्धा का प्रतीक भी है। दुनिया में हनुमान जी की खड़ी या बैठी प्रतिमाएं तो आपने बहुत देखी होंगी, लेकिन संगम तट पर विराजे बड़े हनुमान का स्वरूप सबसे निराला है। लेटी हुई मुद्रा में भगवान की ये प्रतिमा न केवल अद्भुत है, पूरे विश्व में यही एक ऐसा मंदिर है जहां हनुमान जी विश्राम यानी शयन मुद्रा में भक्तों को दर्शन देते हैं। फिलहाल जब तक गंगा का जल स्तर नहीं घटेगा तब तक मंदिर के कपाट बंद रहेंगे। जल स्तर घटने और मंदिर परिसर की साफ सफाई के बाद ही बजरंगबली के कपाट दोबारा खोले जाएंगे। तब तक श्रद्धालु मंदिर के बाहर से ही लेटे हनुमान जी के दर्शन कर उनका आशीर्वाद ले सकेंगे।
5: गंगा जी का पानी इस गर्भगृह में जा रहा है और माँ गंगा अपने पुत्र को स्नान कराने के लिए आई है। बजरंगबली यहाँ पर शयन कर चले गए हैं। अब मंदिर बंद कर दिया जाएगा, इसके बाद जब गंगा जी का पानी वापस आएगा तो इस मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा। पंकज श्रीवास्तव, प्रयागराज, गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
9: सोना धातु किन लोगों को नहीं पहनना चाहिए, लोहे का प्रयोग करने से जीवन में किस तरह का फायदा हो सकता है, अलग अलग धातुओं के क्या हैं लाभ और क्या है प्रयोग विधि, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
10: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
11: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
12: और दुर्भाग्य कहता है
13: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
10: अविश्वास में विश्वास बसता है,
11: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
14: गुड न्यूज टुडे।
11: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
11: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
10: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
11: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
12: और दुर्भाग्य कहता है
13: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
10: अविश्वास में विश्वास बसता है,
11: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
15: गुड न्यूज टुडे,
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
14: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
4: धूमधाम से मनाया जा रहा है कजरी तीज का पावन त्योहार, महिलाएं रख रही हैं पति की लंबी उम्र, अखंड सौभाग्य और वैवाहिक जीवन की सुख शांति के लिए व्रत।
16: दूसरा स्वदेशी डाइविंग स्पोर्ट पोत निपुण आज मुंबई में नौसेना में होगा शामिल, गहरे समुद्र में गोताखोरी और जटिल अभियानों को देगा अंजाम।
4: उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सहित कई राज्यों में आज से फिर सक्रिय होगा मॉनसून, मौसम विभाग ने जारी किया 18 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट।
16: गणेश उत्सव से पहले सूरत में ढोल नगाड़ों से बप्पा का भव्य स्वागत, सड़कों पर उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब, कलाकारों ने शानदार प्रस्तुति से बांधा समा।
4: आज से किर्गिस्तान के बिश्केक में SCO समिट, बैठक के बीच रूसी राष्ट्रपति पुतिन और पीएम मोदी की आज मुलाकात, कई अहम मुद्दों पर होगी बातचीत।
16: जयपुर में क्यूबा की जोहाना ओरांगा बनी मिस टीन्स इंटरनेशनल 2026, नामीबिया की चेंटल बोरेन दूसरे और पराग्वे की जूलियाना तीसरे स्थान पर रही।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
4: उम्मीदों भरे पहर की खुशियों भरी शुरुआत, सुप्रभात, मैं हूँ आपके साथ दीपाली सिन्हा, नई सुबह नई आशा और गुड न्यूज का मॉर्निंग डोज लेकर।
16: नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ पूजा शर्मा, बिना रुके बिना थमे अगले एक घंटे गुड न्यूज की मैराथन दौड़ होगी, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की उन 5 खबरों पर जिनमें इंडिया के लिए शुभ समाचार।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबर।
4: शुभ समाचार की शुरुआत त्योहारों की बहार से करेंगे। उत्तर भारत में सावन भले ही बीत गया हो, लेकिन आस्था और भक्ति की बहार अब भी बरकरार है। आज महिलाएं पूरी आस्था और उमंग के साथ कजरी तीज का पर्व मना रही हैं। हर साल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि पर सुहागनी व्रत रखकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं। ये तिथि आज ही है। आज के दिन कुंवारी युवतियां भी मनचाहा जीवन साथी पाने की कामना से शिव पार्वती का पूजन कर रही हैं, तो इसके रंग आपको आगे दिखाएंगे।
16: बात श्री कृष्ण जन्माष्टमी की भी होगी। देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाने की तैयारी शुरू हो गई है। ऐसे में न सिर्फ देश के तमाम श्री कृष्ण मंदिरों को सजाया और सवारा जा रहा है, बल्कि बाजार भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व के लिए सज चुके हैं। लड्डू गोपाल से लेकर झूले और पालना तक, पोशाक से लेकर मुरली और माला तक बाजार में बिक रहे हैं। लोग भी जन्माष्टमी से जुड़ी खरीदारी में जोर शोर से जुटे हुए हैं, तो आगे तस्वीरें दिखाएंगे आपको।
4: वहीं महाराष्ट्र और गुजरात में बप्पा का इंतजार हो रहा है। गणेशोत्सव कुछ ही दिनों में आने वाला है, ऐसे में इसका रंग अभी से जमने लगा है, तो इसकी तस्वीरें भी आपको आगे दिखाएंगे।
16: साथ ही बात होगी खूबसूरती की प्रतियोगिता की, ये जयपुर में हुई, जहां पर क्यूबा की जोहाना ओरांगा मिस टीन्स इंटरनेशनल बन चुकी है। वहीं दूसरी ओर तीसरे नंबर पर किसने मारी है बाजी, ये भी बताएंगे आगे।
4: इसके अलावा आपको लिए चलेंगे नीदरलैंड, जहां के टिलबर्ग में अनोखा जश्न मनाया गया। दुनिया के अलग अलग देशों से आए रेड हेड्स ने यहां अपने खास रंग और अपनी अलग पहचान का जश्न मनाया। इस अनोखे फेस्टिवल की शानदार तस्वीरें सामने आई हैं, तो ये नजारा भी आपको आगे दिखाएंगे। लेकिन अभी वक्त हो चला है फटाफट अंदाज में 9 बजे की 9 गुड न्यूज का।
16: देश भर में जन्माष्टमी की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। दिल्ली के द्वारका का नया इस्कॉन मंदिर पहली बार जन्माष्टमी मनाने की तैयारी की जा रही है। साथ ही गोकुलधाम थीम पर मंदिर की भव्य सजावट की जा रही है। जन्माष्टमी पर मंदिर में 5500 से ज्यादा व्यंजनों का भोग लगाए जाएंगे। इसके बाद ये भोग श्रद्धालुओं को प्रसाद के तौर पर बांटे जाएंगे।
4: झांसी में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी से पहले भगवान श्री कृष्ण की भव्य और शाही सवारी निकाली गई। इस दौरान पूरी झांसी नगरी हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की और नंद के आनंद भयों के जयकारों से गूंज उठी। सड़क के दोनों किनारों पर हजारों श्रद्धालुओं की भारी भीड़ अपने आराध्य की एक झलक को पाने के लिए उमड़ पड़ी।
16: गणेशोत्सव से पहले सूरत में ढोल नगाड़ों से बापा का भव्य स्वागत किया गया। बापा के स्वागत की वजह से सड़कों पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। वहीं बापा के स्वागत के लिए कलाकारों ने शानदार प्रस्तुति से समा बांध दिया।
4: अकोला में गणपति बप्पा की भव्य एंट्री हुई है। बड़ोदरा से आई 30 फीट की प्रतिमा की शोभा यात्रा निकाली गई। बप्पा के साथ भोलेनाथ की शादी की झांकी भी निकाली गई। ऋषि मुनि नंदी और राक्षसों के रूप ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। ढोल ताशे और डीजे की धुन पर जमकर भक्त झूमते गाते हुए नजर आए।
16: खरगोन में भगवान सिद्धनाथ महादेव का भव्य शिवडोला निकला, जहां पर शहर शहर में हर हर महादेव के जयकारे गूंजे और मध्य प्रदेश पुलिस बैंड ने भगवान सिद्धिनाथ महादेव को सलामी भी दी। शाही रथ पर सवार भगवान महादेव के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे।
4: महोबा में 845 में ऐतिहासिक कजरी मेले का भव्य आगाज हो गया है। मेले के शुभारंभ के साथ शहर में निकली शोभा यात्रा में ऐतिहासिक और धार्मिक प्रसंगों पर आधारित झांकियां आकर्षण का केंद्र रही। आल्हा उदल समेत अलग अलग ऐतिहासिक पात्रों की झांकियों के साथ हाथी घोड़े और ऊंट भी शोभा यात्रा में शामिल रहे।
16: क्यूबा की जोहाना ओरांगा मिस टीन्स इंटरनेशनल 2026 बनी। जयपुर में जोहाना ओरांगा के सिर सजा विजेता का ताज। वहीं इस प्रतियोगिता का शानदार ग्रैंड फिनाले में दुनिया भर के 31 देशों की खूबसूरत प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया।
4: भारतीय नौसेना का दूसरा डाइविंग सपोर्ट वेसल निपुण आज नौसेना में शामिल होगा। ये आधुनिक डाइविंग प्रणाली और पानी के अंदर काम करने की क्षमताओं से लैस है। इस पोत में शामिल होने से भारत के समुद्री इलाकों में खास गोताखोरी और पानी के अंदर किए जाने वाले मिशन को पूरा करने की नौसेना की क्षमता और मजबूत होगी।
16: नीदरलैंड्स में लाल बालों वालों का अनोखा जमावड़ा लगा हुआ है। दुनिया भर से हजारों लोग पहुंचे और साथ में खूब सारी तस्वीरें भी खिंचवाई। लाल बालों वाली महिलाओं के लिए खास मेकअप भी चर्चा रहा और एक कंपनी ने रेड हेड्स के लिए खास मस्कारा और आईब्रो प्रोडक्ट भी बनाए हैं। यहां पर बालों की स्टाइलिंग से लेकर कई मजेदार वर्कशॉप भी हुई।

0: शुभ समाचार की शुभ शुरुआत करते हैं त्योहारों की बहार के साथ। देश भर में आस्था और भक्ति का रंग गहराता जा रहा है। आज कजरी तीज का महापर्व है। सुहागन महिलाएं भगवान शिव और माता गौरी की पूजा कर सुख दाम्पत्य और परिवार की खुशहाली की कामना कर रही हैं।
1: उधर दक्षिण पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में सावन का सिलसिला अभी जारी है। सावन के सोमवार पर शिवालयों में महादेव का भव्य श्रृंगार किया जा रहा है। वहीं श्री कृष्ण जन्मोत्सव और गणेश उत्सव को लेकर भी तैयारियां तेज है। मंदिरों से लेकर बाजारों तक उत्सव की रौनक दिखाई देने लगी है। यानी त्योहारों के इस मौसम में देश का हर कोना भक्ति और उल्लास से सराबोर नजर आ रहा है। कहीं शिव पार्वती की आराधना हो रही है, भोलेनाथ का जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक और विशेष पूजा की जा रही है।
0: आपको बता दें, मंदिरों में फूलों से महादेव का भव्य श्रृंगार किया गया है। कहीं बाबा को फूलों से सजाया गया है तो कहीं आकर्षक पोशाक और आभूषणों से उनका दिव्य स्वरूप तैयार किया गया है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरह से इस पर्व को मनाया जा रहा है। त्योहार की बहार हर ओर देखने को मिल रही है। कहीं पर नृत्य कर, कहीं पर आरती अभिषेक कर कुछ इस तरह से इस पर्व को मनाया जा रहा है। शिवालयों में महादेव की जयकार सुनने को मिल रही है।

0: शहर कोई हो, जगह कोई हो, महादेव के धाम, आस्था और भक्ति की बहार एक ही सी बह रही है। आज का दिन भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना का है, क्योंकि आज कजरी तीज मनाई जा रही है। विवाहित महिलाओं के लिए आज का दिन बेहद खास है। ये दिन उन कन्याओं के लिए भी खास है जो अपने लिए अच्छे वर की कामना कर रही हैं। दरअसल आज कजरी तीज का पर्व है। हर साल भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को ये त्योहार मनाया जाता है। उदया तिथि के अनुसार ही महिलाएं कजरी तीज का व्रत रख रही हैं। शिव मंदिरों में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना कर रही हैं।
1: कजरी तीज पर भगवान शिव माता पार्वती की आराधना करने से मनोकामना की पूर्ति होती है, सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है। तो जैसा कि शास्त्रों में वर्णित कहा जाता है कि इस दिन यदि माता पार्वती को सुहाग की वस्तुएं अर्पित किया जाए, भगवान शिव को दूध, दही, घीर, घी, शहद, चंदन इत्यादि अर्पित किया जाए, साथ ही साथ खीर का भोग लगाया जाए माता पार्वती को और भगवान शिव को, तो जीवन में सुख संपन्नता की वृद्धि होती है।
0: कजरी का अर्थ काले रंग से होता है। अमूमन इस दौरान आसमान में काली घटा छाई रहती है, इसीलिए शास्त्रों में इस शुभ तिथि को कजरी तीज का नाम दिया गया है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती के भवानी स्वरूप की पूजा का विधान है। इस दिन निमड़ी माता की पूजा भी बहुत कल्याणकारी मानी गई है। पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन देवी पार्वती पहली बार भगवान शिव से मिली थी। शिव जी को पति के रूप में पाने के संकल्प के साथ माँ पार्वती ने 108 साल तक तपस्या कर भोलेनाथ को प्रसन्न किया था, तभी से इसको कजरी तीज या कजली तीज के रूप में मनाया जाने लगा।
1: अक्षत, चंदन, रोली, अबीर, गुलाल, पंचामृत, पंचमेवा, घी, धूप, दीप, नैवेद्य, मौसमी फल, मिष्ठान इत्यादि के साथ इनकी पूजन कर लेना है। पूजन के उपरांत कजरी तीज की कथा का पाठ करना है और श्रवण करना है। उसके बाद रात्रि के समय में दिन भर व्रत रहना है निर्जला। रात्रि के समय जब चंद्रमा का दर्शन हो जाए, चंद्रमा दिखने लगे तो उनको अर्घ देना है। अर्घ देने के उपरांत पति के हाथों से पानी पीकर व्रत को तोड़ना है, अर्थात व्रत का पारण कर लेना है।
0: आज के दिन महिलाएं अपने सुहाग के लिए व्रत रखती हैं, पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। वही अविवाहित कन्याएं मन चाहा वर पाने के लिए कजरी तीज का उपवास रखती हैं। कजरी तीज का व्रत करवा चौथ की तरह निर्जला व्रत के साथ रखा जाता है और शाम को चंद्रमा को अर्घ देने के बाद व्रत खोला जाता है। कजरी तीज को कजली तीज, बड़ी तीज, बूढ़ी तीज या सतुरी तीज के नाम से भी जाना जाता है। ये पर्व उत्तर भारत के राज्यों में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। कजरी तीज व्रत पर जौ, चने, चावल और गेहूं के सत्तू बनाने की परंपरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: तो सोमवार के पावन अवसर पर हम आपको अब सीधे त्र्यंबकेश्वर धाम और सोमनाथ धाम लिए चलते हैं। आप दोनों धाम के लाइव दर्शन जीएनटी के माध्यम से करिए। आपके स्क्रीन पर सोमनाथ धाम और त्र्यंबकेश्वर धाम की ये लाइव तस्वीरें हैं।
3: आप घर बैठे त्र्यंबकेश्वर और श्री सोमनाथ के शुभ दर्शन कर सकते हैं। इन दोनों धामों का शुमार महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग में होता है। आपको बता दें, ये मान्यता है कि सोमनाथ मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम ज्योतिर्लिंग माना जाता है और महादेव के इस स्वरूप के दर्शन से साधक को पाप कर्मों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है।
2: शास्त्रों में कहा गया है कि इसी जगह चंद्रदेव ने भोलेनाथ की आराधना की थी और उनसे श्राप मुक्त जीवन का वरदान भी पाया था। तो ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, सोमनाथ धाम और त्र्यंबकेश्वर धाम की। सोमवार है और ऐसे में आज काफी ज्यादा भीड़ महादेव के मंदिरों में देखने को मिलती है और ये लाइव तस्वीरों के माध्यम से आप दर्शन करिए सोमनाथ धाम और त्र्यंबकेश्वर धाम के।
3: तो वहीं दूसरी ओर आपको ये भी बता दें कि दक्षिण पश्चिम के कई राज्यों में सावन का समापन अभी नहीं हुआ है। सावन का सोमवार आज यहां पर मनाया जा रहा है और जलाभिषेक किया जा रहा है। दो तस्वीरों के जरिए हम आपको दिव्य दर्शन करवा रहे हैं, शिव दर्शन करवा रहे हैं। ये दुर्लभ तस्वीरें हैं दो ज्योतिर्लिंगों में शुमार धामों की, सोमनाथ धाम जो कि सौराष्ट्र में मौजूद है और दूसरी ओर त्र्यंबकेश्वर धाम। गुजरात महाराष्ट्र समेत दक्षिण भारत में आज सावन की तीसरा सोमवार मनाया जा रहा है और इस खास मौके पर महादेव का भव्य श्रृंगार किया गया। अब आपको सोमनाथ की भव्य आरती के दर्शन हम करवा रहे हैं।

0: तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपी के महोबा में इतिहास एक बार फिर से जीवंत हो उठा है। वीर अला उदल की धरती पर 845वें ऐतिहासिक कजली मेले का भव्य आगाज हो गया। दरअसल हवेली दरवाजा से निकली शोभा यात्रा में हाथी घोड़ों पर सवार अला उदल राजा परमार और राजकुमारी चंद्रावल की मनमोहक झांकियां आकर्षण का केंद्र रही।
1: तो वहीं सड़क के दोनों ओर उमड़ी भीड़ ने 12वीं शताब्दी की वीर गाथा को अपनी आंखों के सामने महसूस किया। 50 से ज्यादा घोड़ों का नृत्य और बुंदेली संस्कृति की प्रस्तुतियां भी लोगों को यहां आकर्षित कर रही थी, मंत्रमुग्ध कर दिया। शोभा यात्रा में सैकड़ों की संख्या में महिलाएं सिर पर कलश लेकर निकली और उसके बाद कीरत सागर में कजरी विसर्जन के लिए श्रद्धालुओं का भारी जनसैलाब उमड़ पड़ा। मान्यता है कि 1182 ईस्वी में आला उदल ने पृथ्वीराज चौहान की सेना को हराकर राजकुमारी चंद्रावल की रक्षा की थी।
0: और वहीं अब इस ऐतिहासिक मेले को राष्ट्रीय पहचान दिलाने की तैयारी है। प्रभारी मंत्री मनु कोरी ने इसे राष्ट्रीय मेला घोषित कराने के लिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से सिफारिश करने का ऐलान किया है। भारी भीड़ को देखते हुए कीरत सागर से लेकर पूरे मेला क्षेत्र तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं।
2: इसमें आसपास क्षेत्र के मध्य प्रदेश के और पूरे जिलों से लोग आते हैं, पूरे उत्तर प्रदेश अन्य राज्यों के लोग आते हैं और इसे कजली मेले का महत्व है। यह धार्मिक मेला भी है, महोबा का वीरता शौर्यता की कहानी भी दोहराता है और यहाँ पर आल्हा उदल की जो नगरी के नाम से महोबा जाना जाता है, इस मेले में चाहे वो युवा हो, महिलाएं हो, वृद्ध हो, सभी लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं।
3: आज ये कार्यक्रम भव्य रूप से महोबा में मनाया जाता है और अच्छा कार्यक्रम, लाखों की संख्या में कजलियां, हाथी घोड़े ऊंट और सभी क्षेत्र के लोग बाग इसको अच्छे ढंग से मनाते हैं और कार्यक्रम अच्छा होता है। पूरे महोबा के आसपास के चारों तरफ के गांव मिलकर के ये कजली मेला मनाया जाता है।
1: मध्य प्रदेश के खरगोन में भगवान सिद्धनाथ महादेव शाही ठाट बाट के साथ अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए शहर भ्रमण पर थे। जैसे ही भगवान श्री सिद्धनाथ महादेव की पालकी मंदिर से बाहर निकली, हर हर महादेव, जय शिव शंभू के जयकारों से पूरा माहौल गूंज उठा।
0: इस दौरान पुलिस बैंड ने भगवान श्री सिद्धनाथ महादेव को सलामी दी। खरगोन के सबसे बड़े इस धार्मिक आयोजन में करीब 3 लाख से भी अधिक श्रद्धालु भगवान शिव जी की शाही बारात में आस्था और उत्साह के साथ शामिल हुए। इस 58वें शिव डोले का मुख्य आकर्षण भारत दर्शन रहा। इसमें देश की विविधता, लोक संस्कृति और धार्मिक आस्थाओं की झलक झांकियों के जरिए पेश की गई।
1: तो ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर शिव भक्ति देखने को मिल रही है, आस्था में सराबोर लोग नजर आ रहे हैं और किस तरह से ये शोभा यात्रा निकाली गई है। दूसरी ओर सुरक्षा के चाक चौबंद रखे गए हैं। खरगोन की अद्वितीय शिव मेला की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर महादेव ने नगर भ्रमण किया है।
0: तो वहीं संगम नगरी प्रयागराज में मां गंगा हनुमान जी का अभिषेक करने खुद पहुंची। जी हां, संगम तट पर इकलौता ऐसा मंदिर है जहां हनुमान जी लेटे हुए हैं और इसी विश्राम की मुद्रा में अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। जैसे ही मां गंगा का पानी मंदिर तक पहुंचा, विधि विधान से यहां मां गंगा का स्वागत किया गया।
4: संगम नगरी में एक अनूठा संगम देखने को मिला। प्रयागराज के लेटे हनुमान का अभिषेक करने खुद मां गंगा मंदिर तक पहुंच गई और यह अनूठा संगम देख भक्तों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा।
5: संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना के जलस्तर में लगातार तेजी देखने को मिल रही है, लेकिन हम इस वक्त संगम के लेटे हनुमान मंदिर में हैं जहां पर मां गंगा अपने पुत्र बजरंग बली को स्नान कराने के लिए पहुंची हैं। आप देख सकते हैं कि माँ गंगा यहाँ पर सीढ़ियों से प्रवेश कर रही हैं और बजरंग बली यहाँ पर शयन को जा रहे हैं। ये दुर्लभ क्षण है और इस दुर्लभ क्षण के लिए यहाँ पर लोग सालों से इंतजार करते हैं। जब हर वर्ष माँ गंगा यहाँ स्नान कराने के लिए आती हैं और ये सीढ़ियों से जो गंगा जल आ रहा है और माँ गंगा का स्वागत किया गया, पूजन किया गया, इसके बाद माँ का अभिवादन किया गया। आप देख सकते हैं लोग जो श्रद्धालु हैं यहाँ पर उस क्षण का इंतजार करते हैं।
4: संगम नगरी प्रयागराज में गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती का जल स्तर जब बढ़ा तब एक अत्यंत दुर्लभ अलौकिक और आध्यात्मिक दृश्य देखने को मिला। माँ गंगा ने स्वयं संगम तट पर स्थित प्रसिद्ध लेटे हनुमान जी मंदिर के गर्भगृह में पहुंचकर अपने पुत्र बजरंगबली को पावन स्नान कराया।
6: गंगा माई हर साल हनुमान जी महाराज का स्नान करा के ही जाते हैं। पहले बार आए गंगा जी तो आपस दीवार से लौट गए, दोबारा गंगा जी आए वो आज भाग्यशाली हनुमान जी महाराज का स्नान करा के ही गंगा जी प्रवेश करते हैं। फिर
5: भगवान
6: जी आज जो है शाम में जल शयन कर गए हनुमान जी। हर साल होता है, प्रतिदिन हर साल गंगा जी स्नान करा के ही आते, बड़ा भाग्यशाली है, बड़ा दुर्लभ है कि गंगा जी स्नान।
4: जैसे ही देर रात माँ गंगा की पवित्र धारा मंदिर के गर्भ गृह तक पहुंची, पूरा परिसर हर हर गंगे और जय श्री राम के जयकारों से गूंज उठा। धीरे धीरे गंगा का पानी सीढ़ियों से आकर हनुमान जी को स्पर्श करने लगा और फिर पूरी मूर्ति को माँ गंगा ने आगोश में ले लिया। मंदिर के महंत और साधु संतों ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच माँ गंगा का स्वागत किया। दूध दही घी और पंचामृत अर्पित कर माँ गंगा का अभिनंदन किया गया और भव्य आरती उतारी गई।
7: जी गंगा मैया का सबसे पहले पंचामृत द्वारा और दूध दही शहद और पंचमेवा के द्वारा अभिषेक किया गया है। गंगा मैया को अभिषेक करने के बाद दूध दही शहद पंचमृत पंचामृत से अभिषेक करने के बाद उनको वस्त्र अर्पण किया गया है, नैवेद्य प्रसाद अर्पण किया गया है, दीप द्वारा आरती उतारी गई है, गंगा मैया की स्वागत में आरती उतारी गई है और वस्त्र अर्पण करके प्रसाद अर्पण करके भक्तों को वितरण किया।
4: मान्यता है कि जिस साल गंगा का पानी मंदिर में हनुमान जी का अभिषेक कर देता है उस साल देश प्रदेश और शहर में कोई आपदा नहीं आती। इस अद्भुत संयोग को सुख और शांति का प्रतीक भी माना जाता है। इस अलौकिक और दुर्लभ क्षण के बाद परंपरा अनुसार मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए जाते हैं।
7: बहुत ही दुर्लभ क्षण होता है जिसका प्रयागवासी लगभग 2 महीने से इंतजार कर रहे थे कि अब नहाएं हनुमान जी महाराज का वो, लेकिन आज गंगा मैया ने अपने पुत्र का जलाभिषेक कर दिया है तो देश में तरक्की खुशहाली और समृद्धि सुख समृद्धि आएगी।
4: प्रयागराज की पावन धरती और त्रिवेणी संगम के तट पर लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर न केवल आस्था का केंद्र है बल्कि करोड़ों भक्तों के अटूट श्रद्धा का प्रतीक भी है। दुनिया में हनुमान जी की खड़ी या बैठी प्रतिमाएं तो आपने बहुत देखी होंगी, लेकिन संगम तट पर विराजे बड़े हनुमान का स्वरूप सबसे निराला है। लेटी हुई मुद्रा में भगवान की ये प्रतिमा न केवल अद्भुत है, पूरे विश्व में यही एक ऐसा मंदिर है जहां हनुमान जी विश्राम यानी शयन मुद्रा में भक्तों को दर्शन देते हैं। फिलहाल जब तक गंगा का जल स्तर नहीं घटेगा तब तक मंदिर के कपाट बंद रहेंगे। जल स्तर घटने और मंदिर परिसर की साफ सफाई के बाद ही बजरंगबली के कपाट दोबारा खोले जाएंगे। तब तक श्रद्धालु मंदिर के बाहर से ही लेटे हनुमान जी के दर्शन कर उनका आशीर्वाद ले सकेंगे।
5: गंगा जी का पानी इस गर्भगृह में जा रहा है और माँ गंगा अपने पुत्र को स्नान कराने के लिए आई है। बजरंगबली यहाँ पर शयन कर चले गए हैं। अब मंदिर बंद कर दिया जाएगा, इसके बाद जब गंगा जी का पानी वापस आएगा तो इस मंदिर को श्रद्धालु के लिए खोल दिया जाएगा। पंकज श्रीवास्तव, प्रयागराज, गुड न्यूज टुडे।
1: और चलिए अब बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद नेपाल में मिशन जिंदगी की बात करेंगे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
9: सोना धातु किन लोगों को नहीं पहनना चाहिए, लोहे का प्रयोग करने से जीवन में किस तरह का फायदा हो सकता है, अलग अलग धातुओं के क्या हैं लाभ और क्या है प्रयोग विधि, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर।
11: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
11: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
12: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
11: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
13: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
12: अविश्वास में विश्वास बसता है,
11: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे,
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
14: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
1: नौसेना की ताकत में हुआ इजाफा, मुंबई में दूसरा स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट पोत, निपुण हुआ कमीशन, समुद्र में गोताखोरी और जटिल अभियानों को देगा अंजाम।
0: आज से किर्गिस्तान के बिश्केक में एससीओ समिट, बैठक के बीच रूसी राष्ट्रपति पुतिन और पीएम मोदी की आज मुलाकात, कई अहम मुद्दों पर होगी बातचीत।
1: धूमधाम से मनाया जा रहा है कजरी तीज का पावन त्योहार, महिलाएं रख रही हैं पति की लंबी उम्र, अखंड सौभाग्य और वैवाहिक जीवन की सुख शांति के लिए व्रत।
0: गणेशोत्सव से पहले सूरत में ढोल नगाड़ों से बप्पा का भव्य स्वागत, सड़कों पर उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब।
1: उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सहित कई राज्यों में आज से फिर सक्रिय होगा मॉनसून, मौसम विभाग ने जारी किया है 18 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट।
0: क्यूबा की जोहाना ओरांगा बनी मिस टीम्स इंटरनेशनल 2026, नामीबिया की चेंटल बोरेन दूसरे स्थान पर और पराग्वे की जुलियाना तीसरे स्थान पर रही।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबर।
0: और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है शुभ समाचार में। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। भारतीय नौसेना को आज नया सिपहसालार मिल गया है। दरअसल आईएनएस निपुण को आज नौसेना का योद्धा बनने का गौरव हासिल किया। मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में एक भव्य समारोह में INS निपुण को नौसेना में शामिल किया गया है।
1: आपको बता दें, इस मौके पर नौसेना प्रमुख के साथ साथ नौसेना के तमाम बड़े अधिकारी भी मौजूद थे। INS निपुण के गहरे समंदर में दुश्मन को परास्त करने के लिए तैयार किया गया है और एक और घातक योद्धा अब भारतीय नौसेना को मिल चुका है। INS निपुण इसका नाम रखा गया है, जिसे नौसेना के बेड़े में शामिल कर लिया गया है।
0: तो नौसेना प्रमुख के साथ साथ नौसेना के तमाम बड़े अधिकारी वहां पर मौजूद थे। INS निपुण को गहरे

0: कमीशन हुआ है और कई अधिकारी यहां पर शामिल भी रहे इस कार्यक्रम के दौरान।
1: आपको बता दें नौसेना के प्रमुख इस दौरान मौजूद रहे हैं। नौसेना के तमाम बड़े अधिकारियों की इस दौरान मौजूदगी रही है। INS निपुण की कमीशनिंग के दौरान की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब से कुछ देर पहले ये डिप्लॉयमेंट हुई है, ये कमीशनिंग हुई है। गहरे समंदर में दुश्मन को परास्त करने वाला ये योद्धा INS निपुण अब तैनात है और अब दुश्मन की नजर भी लगातार बनी हुई है इस कमीशनिंग के ऊपर, क्योंकि कई मिशंस को अंजाम देने में सक्षम है।
0: तो ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, गहरे समंदर का योद्धा निपुण अब INS में शामिल हो चुका है और आत्मनिर्भर की एक मिसाल भी इस तरीके से पेश की गई है। गहरे समुद्र में रेस्क्यू और सैन्य अभियान के लिए ये काफी महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है। रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता का प्रतीक है निपुण, और ये तस्वीरें कमीशनिंग के दौरान की आप देख रहे हैं। थोड़ी देर पहले ही ये तस्वीरें जारी की गई हैं। नौसेना में अब शामिल हुआ है INS निपुण।
1: तो भारतीय नौसेना की शक्ति अब कई गुना बढ़ चुकी है। भारत लगातार इस दिशा में काम कर रहा है और एक और कमीशनिंग ये बताती है कि भारत ने एक बड़ी उपलब्धि इसके जरिए हासिल की। देशभर में त्योहारों का उत्साह अपने चरम पर है। जन्माष्टमी और गणेश उत्सव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। मंदिरों से लेकर बाजारों तक रौनक दिखाई दे रही है
0: और कहीं पर कान्हा के जन्मोत्सव के लिए झांकियां सजाई जा रही हैं, तो कहीं गणपति बप्पा के स्वागत के लिए पंडाल को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कृष्ण की पोशाक, मुकुट और बांसुरी की बाजार में रौनक है, तो वहीं गणपति बप्पा की प्रतिमाओं से भी बाजार सज गए हैं। अपने घर बप्पा को लाने के लिए भक्तों में भारी उत्साह नजर आ रहा है।
1: आपको बता दें गणेश उत्सव से पहले कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाएगा, लिहाजा दिल्ली से लेकर मथुरा वृंदावन तक एक अलग ही नजारा देखने के लिए मिल रहा है। राजधानी दिल्ली के द्वारका में नए इस्कॉन मंदिर में इस बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी की भव्य तैयारियां की जा रही हैं। मंदिर परिसर को गोकुल की थीम पर सजाया जा रहा है, इसी वजह से श्रद्धालुओं में भी खासा उत्साह है और इस बार भारी भीड़ उमड़ने की उम्मीद है। कृष्ण जन्माष्टमी की भव्य तैयारी की गई है। दूसरी ओर गणेश उत्सव की धूम भी देखने को मिल रही है। शोभा यात्रा निकाली गई है सूरत में। बप्पा के आगमन का इंतजार अब हो रहा है।

0: नया मंदिर जो है वो बना है और यहाँ पर पहली बार जो है जन्माष्टमी जो है इस बारी की जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मंदिर अभी भी आपको जो है यहाँ पर बहुत सारी जो काम है जो तैयारियां हैं वो होनी बाकी है, लेकिन 4 तारीख के लिए जो है ये मंदिर पूरी तरीके से अपने अंतिम रूप में इस वक्त आपको नजर आ जाएगा। चाहे साज सज्जा की बात की जाए, प्रसादम की बात की जाए, जो भक्त यहाँ पर आएंगे उनके लिए जिस तरीके की व्यवस्था की जाए, हर तरीके से जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर होती हुई आपको नजर आ जाएगी। हमारे साथ इस वक्त प्रभु अच्युता आनंद दास जी भी इस वक्त मौजूद है। हरे कृष्ण प्रभु जी, सबसे पहले तो मैं तैयारी की बात करूँ, क्योंकि इस वाले इस्कॉन मंदिर में पहली बार जो है जन्माष्टमी मनाई जाएगी, तो भव्य तरीके से इस बार की हम उम्मीद कर सकते हैं?
1: जी हाँ, ज़रूर, इस साल हम बहुत ही भव्य रूप से तैयारी मना रहे हैं। पिछली बार जो हमारा इवन जो पंडाल का साइज था उससे भी हमने 1.5 गुना बड़ा जो पंडाल है वो लगाया है, ताकि भगवान का जो स्वागत है, भगवान का जो जन्मदिन है, और भी ज़्यादा अच्छे से हम मना सकें। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि भगवान का सुबह स्वागत मंगल आरती से करेंगे। सुबह 4:30 बजे सभी के सभी जो श्रद्धालु हैं वो मंगल आरती के लिए यहाँ पे उपस्थित होंगे और भगवान का स्वागत करेंगे। एंड उसके बाद फिर दिन में सारी की सारी एक्टिविटीज स्टार्ट हो जाएंगी। सुबह भगवान का जो इवन जो जो ड्रेस है, जो भगवान सुबह दर्शन देंगे, वो भगवान 7:30 बजे दर्शन देंगे। एंड रात को भी भगवान का जब अभिषेक होगा तो जो स्पेशल ड्रेस भगवान के लिए जो बनाया गया है वो उस ड्रेस को बनाने में ही 1.5 महीने का समय लगा है। जो रुक्मिणी द्वारकाधीश का जो पूरा का पूरा जो ड्रेस है या पोशाक कहते हैं जिसे, तो उसको बनाने में हमने पूरा 1.5 महीने का समय लगाया और बहुत ही डेडिकेशन के साथ जो हमारे डिवोटी हैं उन्हीं ने ये ड्रेस को डिज़ाइन किया पूरे भक्तिभाव से।
0: तस्वीरें आपको बता सकती है कि किस तरीके से जन्माष्टमी से पहले ही मंदिर में आपको रौनक नजर आ जाएगी, कि किस तरीके से जितने भी कृष्ण भक्त हैं वो आपको झूमते हुए नजर आ जाएंगे और जन्माष्टमी को लेकर जो तैयारियां हैं वो भी चलती हुई दिखाई देगी कि भगवान श्री कृष्ण

0: जन्मोत्सव को खास बनाने के लिए मंदिर परिसर को सजाया जा रहा है और श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए भी जो है, उनके दर्शन के लिए भी जो है व्यवस्था की जा रही है। लेकिन इस वक्त की तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से भक्त आपको झूमते हुए नजर आ जाएंगे। जन्माष्टमी के दिन भी यहाँ पर इसी तरीके से बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है वो हर साल पहुँचते हैं और मंदिर परिसर में छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी व्यवस्था का ध्यान है वो रखा जाता है। लेकिन इन सभी तैयारियों के बीच जो सबसे ज्यादा खास है वो है भगवान का प्रसादम। आप यहाँ तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको ये प्रसाद जो है वो नजर आ जाएगा। और इनकी खास बात ये है कि इसमें आपको कम चीनी यानी कम शुगर जो है वो नजर आने वाली है और ऐसे बहुत सारे विकल्प जो है आपको जो है वो नजर आने वाले हैं। मेरे साथ खुशबू माता जी इस वक्त मौजूद है। हरे कृष्णा खुशबू माता जी। तो इससे पहले तो शुरुआत ही बोलूंगी कि इस बार क्या खास है भक्तों के लिए भी और भगवान के प्रसाद में।
1: ये जो है सारा जन्माष्टमी पे हम भगवान के लिए स्पेशल बना रहे हैं। आप सबको पता है अभी जो वर्ल्ड चल रहा है बहुत एडल्ट्रेशन है, तो ऐसे माहौल में सब आजकल शुगर फ्री, ऑयल फ्री, गिल्ट फ्री खाना पसंद करते हैं। इसको मद्देनजर हमने रखते हुए भगवान के लिए ये पाम शुगर है, कोकोनट शुगर है, ये खजूर का गुड़ है। आप देख सकते हैं इस पर हमने

0: जन्माष्टमी के मौके पर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन और उनके श्रृंगार की तैयारी भी जो है वो पूरी भक्ति भाव के साथ चल रही है। इस्कॉन मंदिर में इस वक्त मौजूद है और मैं तस्वीरें दिखा दी थी कि किस तरीके से आपको यहाँ पर महिलाओं की एक मंडली जो है वो नजर आ जाएगी और लगातार वो इसी तरीके से जो है श्रृंगार की तैयारियों में व्यस्त नजर आएगी। बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो यहाँ एक साथ बैठकर अपने हाथों से भगवान श्री कृष्ण के लिए फूलों की मालाएं जो है वो तैयार कर रही है। आप देख सकते हैं कि आपको रंग बिरंगे फूल जो है वो यहाँ पर नजर आ जाएंगे और किस तरीके से किसी के हाथ में आपको फूल नजर आएंगे तो किसी के हाथों में जो है आपको फूलों की माला बड़े खूबसूरती के साथ पिरोते हुए जो महिलाएं हैं वो नजर आ जाएगी और चेहरे पे सिर्फ आपको भक्ति भाव नजर आएगा हर एक महिला के चेहरे पर।
1: अष्टमी के लिए ड्राई फ्रूट की माला बनेगी, एक दिन पहले बनेगी और फूलों की और सुंदर माला बनाएंगे
0: और सुंदर और भी ज्यादा सुंदर। तो मालाएं जो है वो रोज बन रही है, लेकिन अगर हम जन्माष्टमी के दिन की बात करें तो उस दिन जो है और भी ज्यादा मालाओं को सुंदर बनाने की तैयारी जो है वो की जा रही है। आप देख सकते हैं कि महिलाओं की अच्छी खासी जो यहाँ पर मंडली है आपको बैठी हुई नजर आ जाएगी और बड़े ही प्रेम के साथ, भक्ति के साथ, भावनाओं के साथ जो है ये मालाएं जो है पिरोई जा रही है। सुरक्षा बल की बात करें तो चाहे मंदिर के तरफ से वॉलंटियर्स हो या फिर बाहर पुलिसकर्मी की व्यवस्था की बात की जाए, हर तरीके से इंतजाम जो है वो पुख्ते किए गए ताकि इस बार का जो जश्न है, जो इस बार का चरमोत्सव है, वो वाकई में भव्य हो सके, बेहद ही खास हो सके। तो हम भी इंतजार है कर रहे हैं, आप भी इंतजार कर रहे हैं, 4 तारीख का इंतजार सभी को है जिस दिन भगवान श्री कृष्ण का चरमोत्सव बेहद ही धूमधाम से मनाया जाएगा। कैमरा पर्सन इमानुअल जोस के साथ मनीषा लड्डा, दिल्ली, गुड न्यूज चले।
2: देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाने की तैयारी शुरू हो गई है। ऐसे में न सिर्फ देश के तमाम श्री कृष्ण मंदिरों को सजाया सवारा जा रहा है बल्कि बाजार भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व के लिए सज चुके हैं।
3: आपको बता दें, लड्डू गोपाल से लेकर झूले और पालने तक, पोशाक से लेकर मुरली और माला तक बाजार में बिक रहे हैं। लोग भी जन्माष्टमी से जुड़ी खरीदारी में जोर शोर से जुटे हुए दिखाई दे रहे हैं।

0: आने वाला है जन्माष्टमी का त्योहार, सज गए हैं बाजार, एक से बढ़कर एक मनमोहक लड्डू गोपाल और उनकी सुंदर सुंदर पोशाक, मुरली से लेकर माला तक, झूले से लेकर पालना तक, मुकुट से लेकर मटकी तक, सब कुछ बिक रहा है बाजार में। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के अमरावती से आई हैं, जहां श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर बाजारों में रौनक नजर आने लगी है।
1: जन्माष्टमी आने वाली है, उससे पहले जो है महाराष्ट्र समेत देश के अलग अलग इलाकों में जो है कृष्ण भगवान के अलग अलग वेराइटीज के जो झूले है, उनके ड्रेस है, वो उनके बाजार जो है फटे पड़े है। हम फिलहाल अमरावती के जवाहर गेट के अंदर जो रंगारी गली है वहां पर जवर स्टोर में है, जहां पर आप देख सकते हो कि ये पूरी तरीके से दुकान जो है वो कान्हामय हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि सबसे पहले कान्हा को सबसे प्यारा लगने वाला जो है वो दही है, माखन है। वो माखन जो है, माखन जिस से चुराए जाते थे, वो हंडी यहाँ पर है।
0: बदलते दौर के साथ बाजार में नए नए ट्रेंड की कई चीजें भी जन्माष्टमी पर्व के लिए मौजूद हैं, जो इस पर्व में चार चांद लगा देती हैं। दुकानदारों का कहना है कि इस बार कार्टून कढ़ाई, राजबाड़ी और सूरत से आई पोशाकें ग्राहकों को खूब पसंद आ रही हैं। इनमें आकर्षक डिजाइन के साथ बारीक कढ़ाई और रंगों की विविधता देखने को मिल रही है।
2: इस बार की काफी ट्रेंडिंग में है, इसमें हमारे पास में अलग अलग साइज आई है, छोटे बाल गोपाल है, बड़े बाल गोपाल है, फुल बंगला है, जैसे हम देख सकते हैं फुल बंगला है, मोती बंगला है, बाद में बांसुरी के अलग अलग प्रकार है, छोटे से लेके बड़ी है, राधा नाम से सुसज्जित मोती वर्क, कुंदन वर्क के साथ में छोटे मोटे मुकुट, कुंदन जड़ाऊ वर्क के साथ में काफी सुंदर नकाशी वर्क के साथ इस बार बाजार पूरा हमारा राधा कृष्णमय हो चुका है। छोटे से उनकी रासलीला करने के लिए डांडिया है, छोटे से मृदंग है, छोटे से पैरोट है, छोटे सा उनका मोबाइल फोन है जिससे वो राधा से बात कर सकते हैं, छोटे से साइकिल है, छोटे से उनके लिए टिफिन बॉक्स है, छोटे से उनके लिए अमृत है, जैसे जलेबी हो गया, फाफड़ा हो गया, या फिर उनके लिए चाय बच्ची हो गई है,
3: चाय बिस्किट भी है,
2: कॉफी भी है।
0: जन्माष्टमी का पर्व जितने ही उत्साह और उमंग के साथ मंदिरों में मनाया जाता है, उसी तरह लोग अपने अपने घरों में भी हर्षोल्लास के साथ जन्माष्टमी मनाते हैं। ऐसे में घरों की झांकी सजाने के लिए कृत्रिम फूलों की माला, झालर, लाइट और अन्य सजावटी सामान भी बाजार में मौजूद हैं।
2: ये जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये कृष्णा जी के जो सेवादार होते हैं, जैसे एक द्वारपाल हो गया, एक वहाँ पे हवा की मतलब पंखी की सेवा दे रहा है, एक वहाँ पे आरती की सेवा दे रहा है, एक वहाँ पे पनिहारी की सेवा दे रहा है, इस प्रकार अलग अलग यहाँ पे सेवादार है।
1: और
2: पीछे आप जो देख रहे हो, यहाँ पे जो आपने हमें पूछा है, ये सारे उनकी जन्म की लीला है,
1: पूरी जन्म की लीला
2: है। जी, ये जन्म की सारी लीला है, जन्म से आज तक उन्होंने जो जो किए है, जैसे जेल का हो चुका है, जेल में अलग से दो प्रकार के कटआउट आ चुके हैं, बाद में माखन की जो वो लीला कर रहे हैं, माखन के लीला के साथ में गोपी जो कुएं पे जाती है पानी भरने के लिए, उसकी एक अलग से लीला है, बाल सखाओं के साथ में जो कमल पे बैठकर वो लीला करते हैं, वैसी लीला है।
0: श्री कृष्ण जन्माष्टमी सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि ये जन जन की अगाध आस्था, भक्ति और प्रेम का महापर्व है, जिसे मनाने के लिए लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अमरावती से धनंजय साबले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: तो जन्माष्टमी से पहले झांसी कृष्ण भक्ति के रंग में रंगी हुई नजर आ रही है। आपको बता दें, शहर की सड़कों पर हरे कृष्ण हरे राम की जय घोष गूंज रहे हैं और भक्ति में झूमते हुए श्रद्धालुओं ने माहौल को भक्तिमय बना दिया है।
5: दरअसल झांसी में इस्कॉन की स्थापना के 60 साल पूरे होने के मौके पर भव्य हरिनाम संकीर्तन यात्रा का आयोजन किया गया। इस साल यहाँ पर बुंदेलखंड का सबसे बड़ा जन्माष्टमी महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। जन्माष्टमी की तैयारी अब हो चुकी है। ये झांसी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, भक्ति में किस तरीके से भक्त यहाँ पर झूम रहे हैं।
4: हरे हरे हरे हरे हरे। गणेश चतुर्थी में अब कुछ ही दिन बाकी हैं और गणेशोत्सव के रंग पूरे देश में देखने को मिल रहे हैं। गजानन की प्रतिमाओं को पंडाल में लाया जा रहा है। भक्ति और उल्लास के साथ श्रद्धालु बप्पा के स्वागत में जुटे हुए नजर आ रहे हैं।
5: सूरत में बप्पा के स्वागत के लिए हजारों लोग जुटे हुए हैं। बप्पा की विशाल प्रतिमा को देखने के लिए दूर दूर से लोग आए थे। ढोल ताशे के साथ बप्पा की सवारी निकली तो हर तरफ गणपति बप्पा के जयकारे गूंज उठे। बप्पा की प्रतिमा के पंडाल में पहुंचने के साथ ही उत्सव का जोश भी गहराने लगा है। अब बप्पा के भक्तों को बेसब्री से इंतजार है गणेश चतुर्थी की औपचारिक शुरुआत का, जिसके बाद भक्तों को 10 दिनों तक बप्पा की आराधना और सेवा का सौभाग्य प्राप्त होगा। क्यूबा की जोहाना ओरांगा ने मिस टीन्स इंटरनेशनल का खिताब अपने नाम कर लिया है। जी हां, जयपुर में इस प्रतियोगिता का भव्य आयोजन हुआ। इस प्रतियोगिता में दुनिया के तमाम देशों के प्रतियोगियों ने हिस्सा लिया और फाइनल मुकाबला कांटे का था। इस मुकाबले में क्यूबा की जोहाना ओरांगा ने मिस टीन्स इंटरनेशनल का खिताब अपने नाम कर लिया। नामीबिया की चेंटल बोरेन ने भी दूसरा स्थान हासिल किया, जबकि पराग्वे की जूलियाना ओकारिस तीसरे स्थान पर रहीं।

0: नेपाल में आई त्रासदी के बाद पूरे देश में बड़े स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। नेपाल में आए फ्लैश फ्लड से 5 हाइड्रो प्रोजेक्ट्स का खासा नुकसान हुआ है। इस बीच रेस्क्यू टीम को जानकारी मिली है कि अपर त्रिशूली कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट में करीब 350 लोग एक टनल में फंसे हो सकते हैं।
1: ये खबर मिलते ही टनल में एक मेगा रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च कर दिया गया। इस ऑपरेशन में नेपाल के करीब 10,000 जवानों को लगाया गया। चीन और भारत के टनल एक्सपर्ट भी इस मिशन में नेपाल की मदद कर रहे हैं। रेस्क्यू के लिए भारी मशीनों को एयरलिफ्ट कर टनल के पास पहुंचाया गया है।
0: जहां से टनल शुरू हो रही है वहां पर रेस्क्यू टीम पहुंच चुकी है और सुरंग के रास्ते से पत्थर हटाने का काम भी शुरू कर दिया गया है। ये टीम अभी ये जांच कर रही है कि सुरंग में कितना अंदर तक जाना सुरक्षित है। सुरक्षा सुनिश्चित होने के बाद कैमरे और ऑक्सीजन के साथ टीम को सुरंग के अंदर भेजा जाएगा और यहां पर जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें निकालने की पुरजोर कोशिश की जाने वाली है। अभी भी कई लोग हैं जो इस टनल में फंसे हुए हैं। मलबे के नीचे अभी भी कई जिंदगियां हैं जो अभी भी जूझ रही हैं, जिन्हें बाहर निकाल के लिए रेस्क्यू टीम यहां पर पहुंची हुई है। जवान देवदूत बनकर पहुंचे हुए हैं इन लोगों को बचाने के लिए। और चलिए अब आपको पंजाब के फिरोजपुर लिए चलते हैं, जहां पर पंजाब पुलिस कांस्टेबल गुरप्रीत सिंह एक झटके में करोड़पति बन गए। दरअसल पंजाब पुलिस के कांस्टेबल गुरप्रीत सिंह ने रक्षाबंधन के मौके पर लॉटरी का टिकट खरीदा और लॉटरी के ड्रॉ में 7 करोड़ रुपए का पहला पुरस्कार जीता। 7 करोड़ रुपए की लॉटरी लगने की खबर मिलते ही गुरप्रीत और उनके परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा।
2: लगाना आतिशबाजी के साथ जोरदार सेलिब्रेशन, ये जश्न है 7 करोड़ रुपए की लॉटरी जीतने का, जिसे जीता है फिरोजपुर के पुलिस कांस्टेबल गुरप्रीत सिंह ने, जो 24 अगस्त को अपने पिता के साथ बाजार गए थे। इस दौरान उन्होंने 500 रुपए का राखी बम्पर का टिकट खरीदा। उस समय उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यही लॉटरी टिकट उनकी जिंदगी बदलेगी।
3: 4-5 दिन पहले 24-25 तारीख के अराउंड मैं अपने पापा नाल बाजार आ रहा थी। रैंडम ही मेरे मन च थॉट आ गया कि मैं इस बार लकड़ी बंपर पावगा। तो कोई अनकॉन्शियस मन चाहगा कि इदा कोई सीन नहीं सीगा। उदा रैंडम मैं टिकट पिक की थी, दैन मैं अपने घर चला गया। तो अज संडे शायद कल लकी ड्रॉ निकलिया, अज संडे से मैं गुरु घर सेवा कर रहा है बीजपुर साहब। तो भाजी उन्होंने मैं कॉल की, मैंने किसी ने दिखा कि रिजल्ट आउट होया। दैन मैं उन्होंने कॉल की तो मैंने पता लगा कि पहला प्राइज ही जरा वो मैं हिट किया है।
2: 112 हेल्पलाइन पर ड्यूटी करने वाले 28 साल के गुरप्रीत सिंह 2022 में पंजाब पुलिस में कांस्टेबल भर्ती हुए थे। ये टिकट उन्होंने उधम सिंह चौक स्थित एनके एजेंसी से खरीदा था, लिहाजा एजेंसी मालिक और स्टाफ ने भी इस बड़ी जीत पर गुरप्रीत सिंह और उनके पिता का मुंह मीठा करके उन्हें बधाई दी।
4: असी सारे फिरोजपुर शहर के बहुत बहुत धन्यवादी हाँ। पहला गल लकी कस्टमर जो साडे को लायक सबब बनया, संजोग बनया कि 7 करोड़ का इनाम रब जी ने साडी चोली पाया, असी बहुत ज्यादा खुश हैं जी।
2: गुरप्रीत सिंह के पिता दर्शन सिंह रेलवे में ट्रेन गार्ड के पद पर कार्यरत थे और साल 2019 में रिटायर हुए। परिवार में गुरप्रीत सिंह के अलावा 2 बेटियां और 1 बेटा है। गुरप्रीत सिंह की इस जीत की खबर सामने आने के बाद गांव मनवाल कदी में भी खुशी का माहौल है और लोग उन्हें बधाइयां दे रहे हैं। फिरोजपुर से अक्षय कुमार, गुड न्यूज टुडे।
1: चलिए अब बात कर लेते हैं इंस्टा स्टोरी की। उस कलाकार की इंस्टा रील आपको दिखाते हैं जो अभिनय की दुनिया में तो कमाल कर ही रहे हैं, साथ ही सोशल मीडिया पर अपने फैंस को हंसाने में पीछे नहीं है। देखिए कृष्णा अभिषेक की फन इंस्टा स्टोरी।
5: कृष्णा यार तुम कितने अच्छे हो यार, कितने डाउन टू अर्थ हो, तुम्हें कोई भी मिलता है मिल लेते हो, सबको प्यार देते हो। तुम्हें देखकर ना मुझे अपने चाचा जी की याद आती है यार, वो भी बड़े डाउन टू अर्थ थे। मतलब वो भी जहाँ जगह मिली वहीं सो गए, जो किसी ने दिया खा लिया, किसी ने 1 रुपया भी दिया था उसी में खुश हो जाते थे यार, बड़े डाउन टू अर्थ थे।
6: उसे डाउन टू अर्थ नहीं, उसे भिखारी कहते।
5: अम्मी जान कहा करती थी, कोई भी धंधा छोटा नहीं होता।
6: आप ना वहां चलो, अलग चलो, वरना लोग मुझे भी भिखारी समझेंगे, अलग चलो।
5: इसका मतलब अम्मी जान की सारी बातें सच्ची नहीं होती थी।
1: इसी के साथ इन तमाम खबरों के बाद शुभ समाचार में आज के लिए बस इतना ही।
0: देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों को देखने के लिए बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
8: सोना धातु किन लोगों को नहीं पहनना चाहिए, लोहे का प्रयोग करने से जीवन में किस तरह का फायदा हो सकता है, अलग अलग धातुओं के क्या हैं लाभ और क्या है प्रयोग विधि, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
11: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
9: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
12: और दुर्भाग्य कहता है
13: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
11: अविश्वास में विश्वास बसता है,
9: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
3: नौसेना की ताकत में हुआ इजाफा, मुंबई में दूसरा स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट पोत निपुण हुआ कमीशन, समुद्र में गोताखोरी और जटिल अभियानों को देगा अंजाम। ताशकंद के महात्मा गांधी इंटरनेशनल सेंटर में पीएम मोदी छात्रों से किया संवाद, आज बिश्केक में SCO समिट में होंगे शामिल। बाढ़ के बीच नेपाल पुलिस को बड़ी कामयाबी, कृषि विकास बैंक की शाखा से 50 करोड़ रुपए का सोना बरामद, 1.5 करोड़ कैश भी सुरक्षित किया गया ट्रांसफर। धूमधाम से मनाया जा रहा है कजरी तीज का पावन त्योहार, महिलाएं रख रही हैं पति की लंबी उम्र, अखंड सौभाग्य और वैवाहिक जीवन की सुख शांति के लिए व्रत। गणेशोत्सव से पहले सूरत में ढोल नगाड़ों से बप्पा का भव्य स्वागत, सड़कों पर उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब, कलाकारों ने शानदार प्रस्तुति से बांधा समा। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सहित कई राज्यों में आज से फिर सक्रिय होगा मॉनसून, मौसम विभाग ने जारी किया है 18 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट।

0: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज किस्मत कनेक्शन में बात करेंगे अलग अलग धातुओं की और उनके अलग अलग प्रयोग की। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज के लिए लकी टिप क्या है और सक्सेस मंत्र क्या है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 31 अगस्त 2026 दिन सोमवार, तिथि है भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि, प्रातः 8:50 तक। नक्षत्र है रेवती नक्षत्र, चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय प्रातः 7:30 से लगभग 9 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं अलग अलग धातुओं के बारे में, अलग अलग मेटल्स के बारे में। धातुओं का ज्योतिष में क्या महत्व है? देखिए, हर धातु अपने आप में ऊर्जा का, एनर्जी का एक बड़ा स्रोत है। धातुओं का प्रयोग करके हम स्वास्थ्य को, मन को और अपनी सोच को बदल सकते हैं। और जब आप धातुओं का सही प्रयोग करते हैं तो तुरंत लाभ होना आरंभ हो जाता है। और धातुओं का प्रयोग आप कर सकते हैं कड़ा पहनकर या छल्ला पहनकर। यानी आपके संपर्क में जब कोई धातु आती है तो उसकी तरंगें आपके ऊपर असर डालती हैं, और अगर सही धातु का आप प्रयोग करते हैं तो इससे लाभ होना शुरू हो जाता है। सबसे पहले बात करते हैं गोल्ड की, यानी सोने की। इसका प्रभाव और इसका महत्व जानते हैं। देखिए, दुनिया की जितनी भी धातुएं हैं उनमें सबसे ज्यादा ऊर्जावान धातु, सबसे ज्यादा एनर्जी वाली धातु सोना है। सोना यानी गोल्ड का सीधा संबंध बृहस्पति से होता है, हालांकि कई जगहों पर इसको सूर्य से संबंधित माना गया है। जब आप सोने का प्रयोग करते हैं तो आपके पाचन तंत्र पर, आपके क्रोध पर, आपकी प्रशासनिक क्षमता पर यह सीधा असर डालता है। कन्या राशि, मकर राशि और कुंभ राशि के लिए सामान्यतः ये धातु बहुत शुभ प्रभाव नहीं देती है। जो लोग शनि प्रधान लोग हैं ऐसे लोगों को गोल्ड पहनने से ज्यादा लाभ नहीं होता है। मेष राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, विवादों से बचाव करें, चोट चपेट से बचाव करें, चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृषभ राशि, काम की रुकावट दूर होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, अतिथि का आगमन होगा, शिव जी को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, करियर में लाभ के योग हैं, पारिवारिक मामलों में सुधार होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, करियर में आपके सुधार होता दिख रहा है, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब बात करते हैं तांबे की, यानी कॉपर की। तांबे का महत्व क्या है? तांबा जो है, इस धातु का गुण जल और अग्नि का मिला जुला गुण है इसके अंदर। आम तौर पर ये औषधीय धातु है, मेडिसिनल मेटल है, और इसका सीधा संबंध होता है सूर्य और मंगल के साथ। जब आप तांबे का प्रयोग करते हैं तो ये आपके त्वचा पर, आपके रक्त प्रवाह पर और आपके पाचन तंत्र पर, डाइजेशन पर असर डालता है। मिथुन, कन्या और तुला राशि के लोगों के लिए तांबा आम तौर पर शुभ नहीं होता। तांबा आम तौर पर इनके लिए बहुत अनुकूल नहीं रहता है। अब बात करते हैं लोहे की, यानी आयरन की। सारी धातुओं में सबसे ज्यादा रहस्यमयी धातु लोहा माना जाता है। ज्योतिष में लोहे का संबंध जोड़ा जाता है शनिदेव के साथ। ये शनिदेव की धातु मानी जाती है, और जब आप लोहे का प्रयोग करते हैं तो ये आपके रक्त प्रवाह पर, ब्लड सर्कुलेशन पर, हड्डियों पर, बालों और कोशिकाओं पर असर डालता है। लौह धातु, लोहा जो है, ये मकर और कुंभ राशि के लोगों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद मानी जाती है ये धातु, और सिंह राशि वालों के लिए लोहा बहुत अनुकूल नहीं होता है। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, पारिवारिक समस्याएं हो सकती हैं, धन के खर्चों पर ध्यान दें, चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, धन लाभ के योग आपके लिए फिलहाल बन रहे हैं, धन की प्राप्ति होगी, काम की रुकावट दूर होगी, किसी धार्मिक कार्य में व्यस्त रहेंगे। शिव जी को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा, काम में सफलता मिलेगी, विवादों से बचाव करें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। बात करते हैं स्टील की, स्टील के गुण क्या हैं? देखिए, स्टील के गुण लोहे से काफी मिलते जुलते हैं, लेकिन स्टील जो है ये राहु और केतु की धातु मानी जाती है। स्टील का संबंध दुर्घटनाओं से, संचार से और शक्ति से होता है। जिन लोगों के साथ बार बार दुर्घटना हो, इन्फेक्शन की, कम्युनिकेशन की बीमारी हो या बार बार उतार चढ़ाव की समस्या हो, ऐसे लोगों को स्टील का प्रयोग करना बहुत फायदेमंद होता है। स्टील का छल्ला बनवाकर अगर आप मिडिल फिंगर में पहने तो राहु और केतु से जुड़ी हुई समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। चांदी के बारे में बात करते हैं। चांदी जो है ये धातु अत्यंत शीतल और औषधीय प्रभाव वाली मानी जाती है। चांदी का सीधा संबंध होता है चंद्रमा के साथ, और चांदी जब आप प्रयोग करते हैं तो ये धातु शरीर में कफ और जल तत्व को नियंत्रित करती है। चांदी का प्रभाव या इसको धारण करने का प्रभाव आपके मन के ऊपर भी पड़ता है। ये धातु आपके मन पर भी असर डालती है। मेष, सिंह, धनु और मकर राशि वालों के लिए आम तौर पर चांदी बहुत बेहतर परिणाम नहीं देती। धनु राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ऑफिस में विवादों से बचाव करें, काम की अधिकता रहेगी, चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मकर राशि, करियर में सफलता के योग हैं, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, कोई शुभ सूचना मिलेगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होता जाएगा, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, अपने महत्वपूर्ण काम निपटाने का प्रयास करिए, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, मानसिक चिंता समाप्त होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार में शुभ कार्य होंगे, शिव जी को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। पीतल की बात करते हैं, ब्रास की। ये जो धातु है ये शुद्ध रूप से अग्नि तत्व की धातु है, शुद्ध रूप से फायर एलिमेंट की धातु है, और इसके अंदर कुछ अंश जल तत्व का पाया जाता है। पीतल का संबंध बृहस्पति और चंद्रमा दोनों से होता है। जब आप पीतल का प्रयोग करते हैं तो इसका असर शरीर के पित्त पर, त्वचा पर और आंखों पर सीधा पड़ता है। मेष राशि, कर्क राशि, सिंह, धनु और मीन राशि वालों को पीतल का प्रयोग करने से लाभ होता है। अगर कोई व्यक्ति ज्यादातर पित्त की समस्या से परेशान है, ज्यादातर हाइपर एसिडिटी किसी व्यक्ति को होती है, और वो अगर पीतल धारण करे तो उसको निश्चित रूप से लाभ होगा। देखिए, आप कोई भी धातु इस्तेमाल करना चाहते हैं उसके दो तरीके हैं। एक तो आप उसका छल्ला बनवा लीजिए, सोना, चांदी, पीतल, तांबा, एक छल्ला बनवा के मिडिल फिंगर में, मध्यमा उंगली में आप पहनिए। थोड़ा मोटा और भारी छल्ला हो तो आपको लाभ होगा। दूसरा तरीका ये है कि अलग अलग धातुओं के प्याले, कटोरी या कप होने चाहिए, और उसमें रात भर आप पानी भर करके रख दीजिए, और सुबह उठ करके उस पानी को आप पीजिए। खासतौर से तांबे के पात्र में ये बात ज़्यादा अप्लाई होती है। इस तरीके से भी आप उस धातु का फ़ायदा उठा सकते हैं। रविवार को किसी भी समय गेहूं के आटे की रोटी गाय को खिलाइएगा। अगर आप हर रविवार को ऐसा करें तो आपकी कुंडली का, आपके जीवन का सूर्य मजबूत होगा। कि अगर आपको शिक्षा में खूब सफलता चाहिए तो क्या करेंगे, सफेद रंग की सरस्वती माता की एक मूर्ति अपने पूजा स्थान पर स्थापित करें, रोज सुबह पीले फूलों से इनकी पूजा करें। ऐसा करने से आपको विद्या, बुद्धि और वाणी का वरदान मिलेगा। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर
3: खबरें। कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

एक समय बद्रीनाथ विशालापुरी बद्रीनाथ में चार भाई सत्संग करने के लिए गए। कौन? सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। जब चारों भैया विचरण करते हुए बद्रीनाथ की तरफ गए तो वहां सब संतों का मिलना हुआ, लेकिन चारों भाई को एक और मिले। कौन? इनके ही एक भाई श्री नारद जी महाराज। पर नारद जी का मुंह लटका हुआ, ऐसे कमजोर जैसे सूखी चुखी हुई आसाएं हो, आम हो, ऐसा मुंह लटका, एकदम आंखें घुससी गईं, मन भजन में नहीं लग रहा। ऐसी हालत को देख करके चारों भाई परेशान हो गए। सनत कुमारों ने नारद जी को कहा,

नारद जी ये तुम्हारा मुंह क्यों लटका है? महात्माओं को टेंशन में नहीं रहना चाहिए, महात्माओं को तो अटेंशन में रहना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं, हमने देखे हैं, वो कथा में क्या हमारे सामने भी बैठेंगे तो ऐसे बैठेंगे जैसे घर से पिट के आए। अच्छा कुछ लोगों को ये लगता है, कुछ हमने पढ़े लिखे लोग देखे, अच्छा जी मूर्खों से ज्यादा पढ़े लिखों में दिक्कत ज्यादा, ये बीमारी पढ़ो लिखों में ज्यादा पाई जाती है, क्योंकि पढ़े लिखे लोगों को ये लगता है कि अगर हम ज्यादा हंसेंगे तो लोग हमको मूर्ख समझेंगे। उनको ये लगता है, इसलिए जितने भी ठहाका लगाते मिलेंगे वो हमारे जैसे मूर्ख ही मिलेंगे। पढ़े लिखे तो इतना कमजोर हंसते हैं कि सत्तू अगर सामने रख दो तो वो भी ना उड़े। इतने कमजोर। अच्छा उनको इसलिए ऐसा लगता है क्योंकि उनको लगता है कि नहीं हमारा यही प्रोफेशन है, इसलिए इनको ज्यादा टेंशन। और जितने पढ़े लिखे लोग आत्महत्या करेंगे, स्ट्रेस में डिप्रेशन में रहेंगे, उतने हमारे जैसे मूर्ख कभी नहीं होते। जितनी गोलियां पढ़े लिखे खाते, मूर्ख कभी नहीं खाते। क्यों? क्योंकि पढ़े लिखों को सब बुद्धि से सोचकर जीना पड़ता है, हमारे जैसे मूर्खों को दिल से सोचकर चलना पड़ता है। पढ़े लिखे दिमाग से चलते, हमारे जैसे मूर्ख लोग तो दिल से चलते हैं। अच्छा बुरा ना मानना, पढ़े लिखे लोग हमने देखे, यहां भी कुछ लोग बैठे हैं, आप लोगों को नहीं बोल रहे हम, कितनी भी बड़ी बात कह दे ये ताली भी बजाएंगे। हमने बहुत देखे, बड़े बड़े लोग देखे। अच्छा ये हंसेंगे भी तो मतलब ऐसा लगेगा जैसे रबड़ थोड़ा तनी हो फिर छोड़ दी गई हो। हमारे जैसे मूर्ख जो सो रहा हो वो जग जाए ऐसे हंसते। तो पढ़े लिखे लोगों को बड़ी दिक्कत है क्योंकि वो दिमाग से चलते, हमारे जैसे मूर्ख यहां से। नारद जी मुंह लटकाए खड़े। अच्छा लेकिन ये मूर्ख नहीं, देव ऋषि है, पर मुंह क्यों लटकाए है? अपनी चिंता के कारण। ये साधु के देखना, जरा लोग हमसे पूछते साधु कौन जो अपनी चिंता ना करके दूसरी की चिंता में और परमात्मा के चिंतन में रहे, उसी को साधु कहा जाता है। जगत की चिंता में और जगदीश के चिंतन में जो रहे उसे साधु कहा जाता है। साधु कौन जो जगत की चिंता में और जगदीश के चिंतन में। नारद जी चिंता में, किसकी चिंता, क्या बात है? अरे नारद जी तुम्हारी तो कोई झोपड़ी भी नहीं है कि लुट गई हो, पर मुंह लटकाए क्यों खड़े हो? नारद जी बोले भैया क्या बताएं, अरे संतों का धन क्या है, संतों का धन क्या

0: नारद जी महाराज, क्यों मुंह लटकाए हो?
1: संतों का परम धन तो राधा नाम है, बोलो जय श्री राधे।
0: भगवान का नाम ही परम धन है। नारद जी बोले, भैया हम अपने चक्कर में मुंह नहीं लटकाए। फिर बोले, हम इस लोक में, मृत्यु लोक में आए थे सत्संग करने। अच्छा, कितनी बड़ी बात है, सत्संग सब जगह नहीं मिलता,
1: यही मिलता है। बोलो सीताराम,
0: स्वर्ग में तुम्हें अप्सराएं मिल जाएंगी, खान पान बढ़िया मिलेगा, जो कल्पना करोगे सब मिलेगा, लेकिन सत्संग नहीं मिलेगा। अब तुम स्वर्ग में जाके कहो, हमको बागेश्वर महाराज की हनुमंत कथा सुनाओ, ये संभव नहीं है स्वर्ग में। सत्संग करने के लिए तो आपको मृत्यु लोक में ही आना पड़ेगा। नारद जी बोले, भैया हम आए थे इस लोक में सत्संग करने।
1: पुष्करम चा प्रयागम चा काशीम गोदावरीम तथा हरी क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम।
0: नारद जी बोले, हम सब तीर्थ में गए, पुष्कर, प्रयाग, काशी, राम सेतु जहां पर है, रामेश्वरम, श्रीरंगम, श्रीरंगम सेतु बंधनम एवं आदेशु तीर्थेशु भ्रममाणे तस्ततः। सब तीर्थों में गए
1: पर कहीं पर भी सत्संग प्राप्त नहीं हुआ।
0: तो चारों भाई बोले, क्यों? बोले, कलयुग का ऐसा प्रभाव पड़ा,
1: पापस्य खंडा सा पाखंडा,
0: सब पाखंडी हो रहे हैं। अच्छा, ये पाखंडी क्या है? पाप के ही एक खंड का नाम है पाखंड। पाप का एक खंड है, मतलब जो है नहीं, होने का दिखावा करे, वही पाखंडी है। पाखंडी का अर्थ क्या है? आजकल ज्यादातर लोग ही पाखंडी है। हाँ, अरे पूछिए कैसे? असली ब्यूटी गायब है, ब्यूटी पार्लर की ब्यूटी लगी भई है। हाँ, ये भी तो गड़बड़ी है, ये भी गड़बड़ है। इसी का नाम तो, जो है वो गायब। ज्यादा हमने अभी कुछ दिन पहले एक बात बोली थी सुविचार में, कि दुनिया, भारत के लोग जो होने का दिखावा करते हैं, अगर वही बन जाएं तो भारत देश को सुधरने में समय नहीं लगेगा। नारद जी बोले, भैया जहां देखो कलयुग की बड़ी विचित्र स्थिति, तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही, कली कौतुक तात न जात कही। कलयुग का बड़ा प्रभाव। अच्छा, कलयुग का प्रभाव क्या? नारद जी बोले, तर

कलयुग का प्रभाव कैसा? नारद जी बोले, भैया कन्या विक्रयणो, आजकल कलयुग में शादियां नहीं होती हैं, बेटियों को बेचा जाता है, लड़कों का मोल लगाया जाता है, जो जितना रेट देवे, 4 लाख में शादी तय हुई, 10 लाख वाला आ जाए तो 4 की कैंसल, 10 की तय। कन्या विक्रयणो लोभात, सभी लोभी हो गए, दंपति नाम च कलकनम। अच्छा, ये गृहस्थ का हाल नहीं है, महात्माओं का भी हाल है। नारद जी बोले, भैया बुरा ना मानना, पहले के जमाने में महात्मा जितने फक्कड़ होते थे उतने सिद्ध माने जाते, आज के जमाने में जितने वैभवशाली हो उतने सिद्ध माने जाते। 8-10 बंदूकों वाले, 40-50 गाड़ियां, 20-25 मकान के कमरा, VIP 5-स्टार होटल, गजब बाबा है, बहुत ऊंचे पहुंचे भय। भला ही साधना कुछ ना हो, केवल साधन ही साधन हो, पर बुरा ना मानना, आज का जमाना ही ऐसा है।

दिखावा का बड़ा जमाना है। आजकल चेले भी फोटूबाज हो गए, फोटू लें तभी दीक्षा मानी जाती है। एक आदमी हमारे मंच पे चढ़ा, माला लेकर गया, गुरुजी माला का चढ़ा दो भाई, डालो डालो डालो, कान पे टांग, यहाँ कान पे, और देख उस तरफ रहा। अरे हम की माला तो ढंग से डाल, गुरुजी फोटू हो जाए, हम के फोटू बाद में, पहले कान से तो निकाल के थे डाल। पुराना मानना, हम फोटू के विरोध में नहीं है, पर एक बात हमें बहुत चुभती है, हमने 4-5-6 दिन पहले बोली है, रील की जिंदगी में रियल का खोजना बड़ा कठिन हो गया। रील की जिंदगी में रियल का खोजना बड़ा कठिन हो गया। आजकल रियल कम दिखाई देते हैं। नारद जी यही कह रहे हैं, कलयुग का बड़ा प्रभाव है।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को।
3: अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी जोड़ों का दर्द है, यानी घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे का दर्द, तो ये शो आपकी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जिनकी उम्र 70 साल से 100 साल तक है, और इस उम्र में भी इन लोगों को जरा भी जोड़ों का दर्द नहीं है। यानी ये लोग इस उम्र में भी कहीं जाने के लिए, उठने बैठने के लिए किसी पर भी निर्भर नहीं है। एक लाइन में कहें तो ये लोग इस उम्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर है।
4: मैं पिछले एक साल से आयुर्वेदिक महाशक्तिशाली फॉर्मूला ले रहा हूँ, फौजी 360 इसका नाम है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में यानी घुटने, कमर, कहीं भी जरा भी दर्द नहीं, और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
5: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
6: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैंने जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है। अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
3: फौजी 360 को अब तक जितने भी लोगों ने इस्तेमाल किया है, उन सभी लोगों को जोड़ों के पुराने से पुराने दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे के दर्द से पूरी तरह आजादी मिली है। और ये दावा हम नहीं, वो लोग खुद कर रहे हैं जो फौजी 360 इस्तेमाल कर चुके हैं।
7: इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं, और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
8: और सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि इसे हर बंदा ले सकता है, डायबिटीज वाला मरीज ले सकता है, ब्लड प्रेशर वाला मरीज ले सकता है, और मेरा खुद का दर्द खत्म हुआ यार। इसीलिए मैं खुल के बताता हूँ कि ये फौजी गजब की चीज है।
3: फौजी 360 के सिर्फ एक कोर्स के बाद 80-90 साल के बुजुर्ग भी जवानों की तरह सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पोते पोतियों को गोदी में लिए घंटों उनके साथ खेल रहे हैं।
9: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने।
3: ये बात सुनने में बड़ी हैरान करने वाली है, पर इन बुजुर्गों ने इंटरनेट पर प्रूफ के साथ वीडियोस भी अपलोड करे हैं, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है। और जोड़ों के दर्द के तेल और स्प्रे बेचने वाले दुकानदार परेशान है, क्योंकि फौजी 360 लेने के बाद कोई भी व्यक्ति कभी भी इन जोड़ों के दर्द को ठीक करने वाली दवाएं जैसे तेल, गोली और स्प्रे के चक्कर में दोबारा कभी नहीं फंसेगा।
10: 3 साल से आंटी जी के घुटनों में इतना दर्द था कि इनका घुटना मुड़ता भी नहीं था, जरा भी नहीं मुड़ता था। और आज की स्थिति देखते हैं आप, ये देखिए इनका पूरा घुटना मुड़ रहा है, हॉस्पिटल खुद चल के आई हैं, और ये सब कमाल हुआ है फौजी 360 से। हम रिपोर्ट से समझते हैं, देखिए इनके पुरानी रिपोर्ट है, पूरी घुटने जकड़ चुके थे, जाम हो चुके थे, जिसके कारण घुटनों में पूरी तरीके से मूवमेंट खत्म हो गया था। और आज की डेट है जब से इन्होंने फौजी 360 यूज करना शुरू किया है, उसके बाद उनके घुटनों में एक तरीके से नई जान आई है। और हमें इतना अच्छा लगता है जब हम देखते हैं कि लोगों के पैसे बच रहे हैं और लोगों को फौजी 360 जैसे नेचुरल प्रोडक्ट से आराम मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जिन भी लोगों को जोड़ों से संबंधित कोई भी समस्या है, एक बार फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
3: फौजी 360 के इफेक्ट्स और रिजल्ट्स को जानने के लिए हमने बहुत से एक्सपर्ट से बात करी और लगभग सभी का यही कहना था कि फौजी 360 जोड़ों के दर्द जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे के दर्द के लिए राम बाण की तरह काम करता है।
11: किट में मिलने वाले जो दूसरे प्रोडक्ट होते हैं जैसे तेल, स्प्रे, ये सिर्फ ऊपरी और टेम्परेरी राहत देते हैं और वहीं फौजी 360 शरीर के अंदर जाकर जोड़ों को, हड्डियों को, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
12: ये साहिल जी हैं, 2 महीने पहले आए थे, कह रहे थे मेरे दोनों घुटने बदल दो क्योंकि बहुत परेशानी हो रही थी इन्हें चलने फिरने में। मैंने कहा हम पैसे बर्बाद नहीं करेंगे, आप फौजी 360 का एक कोर्स लेके देखिए, फिर मिलते हैं। आज आए हैं, बताइए सर कैसे रिजल्ट मिले आपको, क्या स्थिति है अभी?
11: पहले तो जितना धन्यवाद आपको दूं उतना क्या मैं डॉक्टर साहब, क्योंकि पूरा चल लेता हूं मैं मोटरसाइकिल चलाने लगा हूं वापस से अपनी, अब बिल्कुल भी बुरी स्थिति नहीं है, एकदम बिल्कुल दर्द खत्म हो चुका है। अब तो आप मुझे बोलो 5 किलोमीटर चले जाओ, मैं बिल्कुल चले जाऊंगा, अभी भी सीढ़ी चढ़ के आए हूं हॉस्पिटल में।
3: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं, फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो या कंधे का दर्द हो या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
13: 2 साल से घुटने और कमर के कारण पलंग पकड़ लिया था, सब पलंग पे ही हो रहा था, अगना मुतना भी पलंग पे हो रहा था, जरा भी नहीं चल पाता था। 3 महीने से ये फौजी 360 पाउडर ले रहा हूँ, अब खुद से उठ जाता हूँ, बाथरूम हो जाता हूँ, चल फिर लेता हूँ, बहुत आराम है, बहुत राहत है।
3: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
7: रोज 150 सीढ़ी चढ़कर मैं मेरे भोले बाबा के मंदिर जाती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है मेरे घुटनों में। और ये कमाल किसी तेल या स्प्रे से नहीं हुआ है क्योंकि उनसे कुछ होता ही नहीं है, मुझे तो फायदा हुआ है फौजी 360 से। अरे कमाल का ट्रीटमेंट है, इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं है और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
3: दुनिया के किसी भी तेल या स्प्रे के साथ कभी भी कोई गारंटी नहीं मिलती, यानी दर्द खत्म होगा या नहीं इस बात की कोई गारंटी नहीं, लेकिन फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है। यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
14: 15 साल पहले चिकनगुनिया हुआ था, तब से शरीर के हर कोने में दर्द बना रहता था, होम्योपैथी, फिजियोथेरेपी, ये तेल, वो स्प्रे, सब ट्राई कर लिया मगर आराम मिला 3 महीने पहले इस फौजी 360 से। अब कसम खा के बता रहा हूँ, जरा भी दर्द नहीं है शरीर में।
7: घुटने के दर्द के कारण मैं चल भी नहीं पाती थी, पर ये जब से फौजी 360 लिया है ना, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। अब आप देखो मैं घर का पूरा काम खुद कर लेती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है।
15: 5 साल से तो मैंने नमाज भी अदा नहीं की थी क्योंकि घुटना मेरा मुड़ता ही नहीं था। अब घुटने बदलवाने के लिए जितने पैसे भी नहीं थे कि घुटने बदलवा लें इस उम्र में, फिर ये फौजी 360 जब से लेना शुरू किया है अब मैं खुद चल लेता हूँ, खुद का काम पूरी तरीके से कर लेता हूँ और जो मैंने पलंग पकड़ लिया था ना वो वहाँ से बच गया हूँ मैं। अब ये तो ताकत है फौजी 360 की, ये अल्लाह की दुआ से कम नहीं है फौजी 360। अब खुद का काम मैं खुद से करता हूँ बिल्कुल।
16: हमारे नेपाल में पहाड़ी इलाका है तो चलना फिरना बहुत होता है, जोड़ों में बहुत दर्द का प्रॉब्लम शाप को रहता है, पर हमने कभी तेल या स्प्रे नहीं लगाते, कुछ नहीं होता उससे। सारे लोग मेरी उम्र के यहाँ फौजी 360 लेते हैं, बहुत कमाल का दवाई है, बिल्कुल भी जोड़ों में दर्द नहीं है इसको लेने से।
3: अगर आप चाहते हैं कि आपके जोड़ों का दर्द अंदर से पूरी तरह ठीक हो सके और आपको पूरी तरह आराम मिल सके तो सिर्फ एक कॉल करके इस कमाल के आयुर्वेदिक फॉर्मूले फौजी 360 को अपने घर मंगा सकते हैं और जोड़ों के दर्द से पूरी तरह आजादी पा सकते हैं।
17: बॉलीवुड का एक गाना है ना, लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान। तो मेरी कहानी भी ऐसी है कि मैं दुनिया के लगभग बहुत से बड़े बड़े देशों में रहा हूँ और मैंने सब जगह ये जोड़ों के दर्द, स्पेशली घुटने के दर्द का इलाज कराया, बट कहीं भी वैसा रिजल्ट नहीं मिला। 2 years back when we shifted to India, तब ये फौजी 360 के बारे में पता पड़ा, we started using it, मुझे और मेरी वाइफ दोनों को इतना कमाल कमाल का रिलीफ मिला कि ऐसा रिलीफ किसी भी ट्रीटमेंट से आज तक नहीं हुआ था।
3: फौजी 360 के बारे में और डिटेल में जानने के लिए हमारी टीम उस आयुर्वेदिक आश्रम तक पहुंची जहां फौजी 360 बनाया जाता है और उन एक्सपर्ट से बात करी और वो सीक्रेट जानने की कोशिश करी कि कैसे सिर्फ एक फॉर्मूले से लोगों के जोड़ों का दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, पूरी तरह ठीक हो रहा है।
18: इसमें कुछ ऐसी औषधियां हैं जो आपकी बोन्स को मजबूत बनाता है, जो आपके लिगामेंट में जो फ्लूइड की कमी हो गई है ये उसे दोबारा रिस्टोर करने में मदद करता है, और साथ ही दूसरी दवाओं से ये बेहतर इसीलिए है कि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसे डायबिटिक पेशेंट ले सकता है, इसे ब्लड प्रेशर का मरीज ले सकता है, क्योंकि ये पूरी तरह सुरक्षित है और आपको पहले दिन से फायदा दिखने लगेगा। ये ताकत है फौजी 360 की। बस यही कारण था कि हमने सोचा कि अब समय आ चुका है लोगों की, जनता की सेवा करने का और घर घर इसे भिजवाने का। तो जो आप स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं आप इस पर फोन कर सकते हैं, हमारे केंद्र पर डायरेक्ट फोन होगा, आप अपनी समस्या बताइए। अगर आपको बात सही लगती है, फौजी 360 आपको लगता है कि हाँ अब समय है कि जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक करना है, तो आप इसे मंगा सकते हैं। और साथ ही इसमें कुछ ऐसी औषधियां भी हैं जो आपको पूरे समय आपके शरीर में चुस्ती बनाए रखता है।
3: फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है, यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
10: फौजी 360 मार्केट में मिलने वाले दूसरे जो पेन किलर ऑयल्स होते हैं, स्प्रे होते हैं, उनसे कैसे अलग है मैं आपको साइंटिफिकली समझाता हूँ कि ऐसा क्या है इस ट्रीटमेंट में जो इसके रिजल्ट्स बहुत ही शानदार है। देखिए, कोई भी तेल या स्प्रे कैसे काम करता है सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ। आपके दर्द वाले हिस्से पे जब आप तेल लगाते हैं तो ये बाहर से आपके उस पर्टिकुलर एरिया को सुन्न कर देता है, मतलब आपके बॉडी के अंदर दर्द तो रहता है, उस जोड़ के अंदर दर्द तो है, और वहीं फौजी 360 जो है ये अंदर से काम करता है, क्योंकि जब आप इसे कंज्यूम करते हैं बॉडी को वो सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है जो जोड़ों को मजबूत बनाता है अंदर से, जो जोड़ों की चिकनाहट कम हो गई है ना ये उसको दोबारा लौटाता है। तो ये एक अंदर से काम करने वाली चीज है, यानी ये पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से ठीक करता है, और वहीं तेल और स्प्रे सिर्फ टेम्परेरी राहत देते हैं। तो आप अगर अभी भी जोड़ों के दर्द के लिए तेल या स्प्रे यूज कर रहे हैं तो आप आज से ही वो सब बंद कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ पैसे बर्बाद करने की बात है और टेम्परेरी रिलीफ की बात है। अगर आप पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से मजबूत बनाना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, तो आप एक बार ये फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
19: पिछले महीने मैं बाथरूम में स्लिप हो गई थी तो बहुत दर्द रहता था पेट में, डॉक्टर ने कहा कुछ L1 L2 का कुछ तो बताया था, पर इन्होंने फौजी 360 लाके दिया और उससे इतना आराम हुआ है कि अब जरा भी दर्द नहीं है। मम्मी पापा जी ने भी लेना शुरू किया है और उनको भी जो घुटनों में दर्द था उन्हें भी राहत मिली है। तो हर घर में मुझे लगता है ये फौजी 360 होना ही चाहिए।
5: मैं तो 12 महीने ही केदारनाथ बाबा के चरणों में ही रहता हूँ और यहाँ इतनी ठंड पड़ती है कि ठंड के चक्कर में पूरे समय शरीर अकड़ा हुआ रहता है, सारे जोड़ में बड़ा दर्द बना रहता था, पर जब से ये फौजी 360 किया है ना शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता, बर्फ में भी चल लेता हूँ, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। ये ताकत है इस आयुर्वेदिक फौजी 360 की।
3: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
7: टीवी पे फौजी के बारे में देखा तो मैंने फोन करके फौजी 360 को सीधा घर मंगा लिया, क्योंकि 3 साल से कमर में इतना भयंकर दर्द था कि घर के सारे कामों के लिए मैं पूरी तरीके से भाइयों पे निर्भर हो चुकी थी। सिर्फ 15 दिन हुए हैं और अब बिल्कुल भी दर्द नहीं है, कमर में जरा भी दर्द नहीं है, इतना शक्तिशाली है ये फौजी 360।
20: बिना सहारे के मैं 2 कदम भी नहीं चल पाती थी, पूरे समय बहू और बेटे की मदद ही लेनी पड़ती थी, पर जब से ये फौजी 360 लिया है कमर में घुटने में जरा भी दर्द नहीं है। अब सीढ़ियां चढ़ जाती हूँ, उतर जाती हूँ, चल लेती हूँ, आराम से इधर का सारा काम कर लेती हूँ, अब दर्द में पूरी तरीके से राहत है।
21: मेरी उम्र 88 साल है, रोज 5 किलोमीटर पैदल चलता हूँ लेकिन फिर भी जरा भी दर्द नहीं है। ये शक्ति है फौजी 360 की।
3: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं, फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो या कंधे का दर्द हो या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
4: एक साल पहले दोनों घुटने बदलने के लिए बोल दिया था, मगर मैंने घर बैठे आयुर्वेद के एक फॉर्मूले से अपने घुटने और जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक किया है और अब मैं वो सब कर सकता हूँ जो जवान आदमी भी नहीं कर सकता। आप में दम हो, आप करके बताओ। जोड़ों के दर्द के लिए जो भी लोग तेल या स्प्रे लगाते हैं ना, उन्हें आज से ही ये सब बकवास चीजें बंद करना चाहिए। इससे कुछ नहीं होता है, क्योंकि जोड़ों के दर्द का इलाज अंदर से होता है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में यानी घुटने कमर कहीं भी जरा भी दर्द नहीं और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
3: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
5: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
6: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैनू जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है। अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
3: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो या कंधे का दर्द हो या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
9: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने का।
3: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 अपने घर मंगा सकते हैं।
21: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
1: सास बहू और बेटियां में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में ड्रामा अनलिमिटेड। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती है। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
7: 9 सेना की ताकत में हुआ इजाफा, मुंबई में दूसरा स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट पोत, निपुण हुआ कमीशन, समुद्र में गोताखोरी और जटिल अभियानों को देगा अंजाम। ताशकंद के महात्मा गांधी इंटरनेशनल सेंटर में पीएम मोदी, छात्रों से किया गया संवाद, आज बिश्केक में SCO समिट में हिस्सा लेंगे। बाढ़ के बीच नेपाल पुलिस को बड़ी कामयाबी, कृषि विकास बैंक की शाखा से 50 करोड़ रुपए का सोना बरामद, 1.5 करोड़ कैश भी सुरक्षित किया गया ट्रांसफर।

0: लंबी उम्र की कामना, अखंड सौभाग्य और वैवाहिक जीवन की सुख शांति के लिए व्रत। भारी बारिश के बावजूद उत्साह से जारी है केदारनाथ यात्रा, अभी तक 14,73,000 से अधिक भक्त कर चुके हैं दर्शन। सितंबर में मौसम ठीक होने पर भक्तों की संख्या बढ़ने की उम्मीद। उत्तराखंड और हिमाचल सहित कई राज्यों में आज से फिर सक्रिय होगा मॉनसून। मौसम विभाग ने जारी किया है 18 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
0: नौसेना की अब और बड़ेगी ताकत, आज बेड़े में शामिल होगा दूसरा स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट पोत। रिपोर्ट। पोत में आधुनिक गोताखोरी, अंडरवाटर इंटरवेंशन और चिकित्सकीय सहायता प्रणालियां मौजूद। समारोह में नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन हुए शामिल। निपुण का डिजाइन और निर्माण पूरी तरह से भारत में किया गया, इसे हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम में बनाया गया। गहरे समुद्र में गोताखोरी और जटिल अभियानों को देगा अंजाम नौसेना की पनडुब्बी, बचाव क्षमता को भी करेगा मजबूत। इसी पनडुब्बी के समुद्र की गहराई में संकट में फंसने की स्थिति में पोत बेहद महत्वपूर्ण, गोताखोरों और पानी के नीचे होने वाले बचाव अभियानों को आवश्यक सहायता करेगा उपलब्ध। क्यूबा की जोहाना ओरांगा बनी मिस टीन्स इंटरनेशनल 2026। जयपुर में जोहाना ओरांगा के सिर सजा विजेता का ताज। कई सुंदरियों को पछाड़कर जोहाना ने जीता खिताब, दुनिया भर से 31 प्रतिभागियों ने मिस टीन्स इंटरनेशनल में लिया था हिस्सा। नामीबिया की चेंटल बोरेन रही फर्स्ट रनर अप, प्रतियोगिता में चेंटल ने हासिल किया दूसरा स्थान। पराग्वे की जुलियाना ओकारिस बनी सेकंड रनर अप, कंपटीशन में जुलियाना तीसरे स्थान पर रही। अमेरिका की एंड्रिया एलमेस्टिका थर्ड रनर अप रही, यूएस वर्जिन आइसलैंड की डेरेलिस निको फोर्थ रनर अप बनी। दिल्ली के द्वारका का नया इस्कॉन मंदिर पहली बार मनाने जा रहा है जन्माष्टमी, गोकुल धाम थीम पर मंदिर की भव्य सजावट। कृष्ण जन्मोत्सव के लिए तैयार की गई है भगवान की खास पोशाक, इसे बनाने में करीब 1.5 महीने का लगा वक्त। जन्माष्टमी पर मंदिर में 5500 से ज्यादा भोग लगाए जाएंगे, इसके बाद ये भोग श्रद्धालुओं को प्रसाद के तौर पर बांटे जाएंगे। इस बार मंदिर में शुगर फ्री प्रसादम भी किया जा रहा है तैयार, इसमें चीनी की जगह खजूर, कोकोनट और पाम शुगर का होगा इस्तेमाल। जन्माष्टमी पर 200 किलो का खास केक काटा जाएगा, वहीं 108 किलो का केक पूरे दिन श्रद्धालुओं में प्रसाद के रूप में बांटा जाएगा। अकोला में गणपति बाप्पा की हुई भव्य एंट्री, वडोदरा से आई 30 फीट की प्रतिमा की शोभा यात्रा निकली। बाप्पा के साथ भोलेनाथ की शादी की झांकी भी निकली, ऋषि मुनि नंदी और राक्षसों के रूप ने लोगों का ध्यान खींचा। ढोल ताशे और डीजे की धुन पर जमकर नाचे भक्त, भगवा झंडों और आतिशबाजी से पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। 30 फीट के बाप्पा को देखने के लिए सड़क किनारे भारी भीड़ जुटी, लोगों ने मोबाइल से फोटो वीडियो बनाए और सेल्फी भी ली। रिद्धि सिद्धि गणेश पंडाल में चारों धाम की झांकी हो रही है तैयार, भक्तों को अकोला में ही चारों धाम के दर्शन कराने की तैयारी। शुभ संयोग में आज धूमधाम से मनाया जा रहा है कजरी तीज का पावन त्योहार, सुहागिन महिलाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण दिन। महिलाएं रख रही हैं पति की लंबी उम्र, अखंड सौभाग्य और वैवाहिक जीवन की सुख शांति के लिए व्रत। उज्जैन में ओणम उत्सव की रौनक, कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। उत्सव के दौरान नेपाल त्रासदी के पीड़ितों के लिए विशेष प्रार्थना, प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा की कामना। तिरुपति के भगवान वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर के दरबार में पहुंचे कांग्रेस नेता जयराम रमेश, विधि विधान से की पूजा। गुजरात के गिर सोमनाथ में तीसरे सोमवार पर उमड़ा आस्था का सैलाब, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। बाबा के भक्तों ने किया बेलपत्र, गंगाजल से जलाभिषेक, हर हर महादेव के लगाए जयकारे। लखनऊ में सीएम योगी ने जनता दरबार में सुनी लोगों की फरियाद, जल्द ही मामलों का निपटारा करने के दिए निर्देश। हरियाणा के कैथल में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आनंदम वृद्ध सेवा आंगन की रखी आधारशिला, एलिवेटेड रोड परियोजना की समीक्षा की। ताशकंद के महात्मा गांधी इंटरनेशनल सेंटर में पीएम मोदी, छात्रों से किया संवाद, आज बिश्केक में एससीओ समिट में होंगे शामिल। उज्बेकिस्तान के बाद किर्गिस्तान के दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बिश्केक एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री का हुआ भव्य स्वागत। पीएम मोदी के स्वागत में कलाकारों ने पेश किया पारंपरिक नृत्य, होटल पहुंचने पर वंदे मातरम के नारों से गूंजा माहौल। मां तुझे सलाम की धुन पर युवाओं ने किया योग प्रदर्शन, भगवान शिव की थीम पर सांस्कृतिक नृत्य ने मोहा मन। पीएम मोदी 26वें एससीओ शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल, सुरक्षा कनेक्टिविटी और अवसर पर भारत की प्राथमिकताएं रहेंगी। पुतिन और अन्य राष्ट्राध्यक्षों से पीएम मोदी की मुलाकात पर निगाहें, 6वें विश्व घुमंतु खेलों के उद्घाटन समारोह में होंगे शामिल। पहलगाम में छड़ी मुबारक के पूजन और विसर्जन के साथ अमरनाथ यात्रा संपन्न, पहलगाम में छड़ी मुबारक के अंतिम पूजन की रस्म हुई पूरी। अमरनाथ यात्रा के समापन पर श्रद्धालुओं ने की विशेष पूजा अर्चना, पहलगाम में धार्मिक अनुष्ठानों के साथ छड़ी मुबारक का विसर्जन हुआ। सात समंदर पार अमेरिका की में बेटी की शादी, तेलंगाना के वेपाला सिंगरम में माता पिता ने ऑनलाइन शादी में निभाई अक्षत की रस्म। स्क्रीन पर बेटी दामाद पर बरसे पवित्र अक्षत, माता पिता ने दिया आशीर्वाद, इकलौती बेटी की शादी ऑनलाइन देख हुए भावुक। एमपी के शिवपुरी में आरपीएफ का एएसआई बना देवदूत, तेजी से दौड़कर प्लेटफॉर्म ट्रेन के बीच फंसी महिला की बचाई जान। चुनौतियों के बीच नेपाल में मिशन जिंदगी जारी, नेपाली सेना ने अब तक करीब 10,000 लोगों का किया रेस्क्यू। बाढ़ के बीच नेपाल पुलिस को बड़ी कामयाबी, कृषि विकास बैंक की शाखा से 50 करोड़ रुपए का सोना बरामद, 1.5 करोड़ कैश भी सुरक्षित किया गया ट्रांसफर। हाइड्रो पावर टनल में फंसे मजदूरों के लिए भारत की टनल रेस्क्यू टीम और नेपाल सेना ने मिलकर चलाया बचाव अभियान, खोजबीन जारी। भारत की 19 सदस्यीय फॉरेंसिक टीम ने नेपाल बाढ़ पीड़ितों की डीएनए पहचान के लिए काठमांडू में काम शुरू किया। नेपाल में लापता हुए मद्रास हाईकोर्ट के पूर्व जज, दिल्ली तमिल एडवोकेट्स एसोसिएशन ने सीजेआई सूर्यकांत को पत्र लिखा, सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए दखल देने की अपील। उत्तराखंड और हिमाचल सहित कई राज्यों में आज से फिर से सक्रिय होगा मॉनसून, मौसम विभाग ने जारी किया भारी बारिश का अलर्ट। वाराणसी में भारी बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। भारी बारिश से कई इलाकों में जलभराव, वाहन चालकों की बढ़ी परेशानी। भारी बारिश से कई घरों में घुसा बाढ़ का पानी, गंगा नदी का बढ़ा जलस्तर। रायपुर में भारी बारिश से कई इलाकों में भरा पानी, लोगों की बढ़ी परेशानी। प्रयागराज में फिर से बढ़ने लगा गंगा का जलस्तर, निचले इलाकों में भरा पानी। गंगा का जलस्तर बढ़ने से झूसी जौनपुर मुख्य संपर्क मार्ग भी पानी की भेंट चढ़ा, यातायात प्रभावित। गंगा का जलस्तर बढ़ने से 25 गांवों का जिला मुख्यालय से टूटा संपर्क, लोगों को सतर्क रहने की अपील। पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर में बढ़ा गंडक नदी का जलस्तर, बैराज से छोड़ा गया 1 लाख से ज्यादा क्यूसेक पानी। प्रशासन ने निचले इलाकों में बढ़ाई गश्ती, लोगों से सतर्क रहने की अपील। चित्रकूट में मंदाकिनी नदी का जलस्तर घटा, लोगों ने ली राहत की सांस। मंदाकिनी नदी का जलस्तर घटने से अभी भी बाढ़ जैसे हालात, कई इलाके पानी में डूबे। बाढ़ में फंसे लोगों का एसडीआरएफ कर रही है रेस्क्यू, लोगों से घरों में रहने की जा रही अपील। पुरी में सुबह सुबह जोरदार बारिश, मौसम हुआ सुहाना। रियासी में बारिश के बाद सलाल बांध के खोले गए कई गेट, चुनाब नदी का बढ़ा जलस्तर। राजकुमार संतोषी की नई फिल्म का नाम घातक घुस के मारेगा में सनी देओल की एंट्री हुई, 1996 में रिलीज फिल्म घातक से जुड़े किरदारों की दिखाई जाएगी कहानी। मुसाफिर कैफे की सफलता के बाद विक्रांत मेसी की लगी लॉटरी, फिल्म कर्ण में आएंगे नजर, सलमान खान के साथ स्क्रीन करेंगे शेयर। बिलेनियर सीरीज में विजय माल्या के रोल में नजर आएंगे अर्जुन रामपाल, नवंबर में शुरू होगी फिल्म की शूटिंग। हनुमान अंश बनी 2026 की सरप्राइज ब्लॉकबस्टर, 2 करोड़ के बजट में बनी फिल्म ने अब तक की करीब 39 करोड़ की कमाई। टॉक्सिक ने कमाई में करुप्पा को पछाड़ा, जननायकन को भी पीछे छोड़ दिया है। 6 दिनों में पार किया 200 करोड़ से ज्यादा का आंकड़ा। वर्ल्ड रैली चैंपियनशिप में लगातार तीसरी जीत के साथ पाजारी ने पराग्वे रैली जीती। पाजारी ने चैंपियनशिप पर लीडर एल्फिन इवांस से अंतर घटाया। 3 राउंड बाकी रहते इवांस की बढ़त अब 20 अंक ही रह गई। हेडन पेडन दूसरे स्थान पर रहकर हुंडई के लिए शानदार नतीजा लाए। एड्रियन फॉरमॉक्स ने तीसरे स्थान के साथ पोडियम किया पूरा। एल्फिन इवांस चौथे स्थान पर रैली खत्म करने में सफल रहे। ओलिवर सोलबर्ग ने 5वें स्थान पर रैली पूरी की। जीत के बाद पाजारी ने को ड्राइवर के साथ जमकर मनाया जश्न। पोडियम पर ड्राइवर ने शैंपेन के साथ जीत का मनाया जश्न। चैंपियनशिप का अगला पड़ाव 10 सितंबर से शुरू होने वाली चिली रैली होगी।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आ रही है।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से
7: सभी भाइयों और बहनों को बाबा रवि गिरी का स्नेहिल आशीर्वाद। तो भाइयों और बहनों, मेरा नाम बाबा रवि गिरी है, मैं 78 साल का हूं और पिछले 50 वर्षों से सिर्फ एक ही कार्य कर रहा हूं, प्राकृतिक शुद्ध और गारंटेड इलाज देना। मैंने जीवन के पूरे 78 साल देखे हैं और उनमें से 50 साल केवल एक ही सेवा में लगे हैं, आयुर्वेद के माध्यम से रोगों का इलाज करना। आज हम एक ऐसी पीड़ा पर चर्चा करेंगे जो न बोले तो भीतर से जलाती है और बोले तो लोग हंसते हैं, और उसका नाम क्या है? बवासीर। अरे भाइयों और बहनों, ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये शरीर का रोग है, और जैसे सिर में दर्द होता है वैसे ही गुदा में भी रोग हो सकता है, और सबसे ज्यादा लोग मेरे पास में बवासीर की बीमारी के लिए ही आते हैं, क्योंकि ये रोग न तो उम्र देखता है, न पैसा देखता है, न पद या ओहदा देखता है, बस जब होता है तो इंसान को नाक में दम कर देता है। जलन, दर्द, खून आना, बैठ भी ना पाए, मैंने खुद देखा है लोगों को रोते हुए, और तभी मैंने ठान लिया था बवासीर का इलाज निकालूंगा, ऐसा इलाज जो बवासीर वापस ना हो। मैंने जड़ी बूटियों को परखा, हजारों नुस्खे आजमाए और फिर तैयार की एक ऐसी औषधि जो आज मैं गर्व से कहता हूँ गारंटी से बवासीर को ठीक करती है। तो भाइयों और बहनों, आपने पाइल्स के बहुत सारे इलाज कराए होंगे, कई दवाइयां खाई होंगी, लेकिन आपकी बवासीर ठीक नहीं हुई होगी। मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूँ कि आपकी पुरानी से पुरानी पाइल्स ठीक होगी और ये मेरी गारंटी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको खूनी बवासीर है या बादी बवासीर, एक हफ्ते में आराम और 21 दिन में बीमारी जड़ से खत्म, ना ऑपरेशन ना साइड इफेक्ट। मैंने ये दवा उन्हीं जड़ी बूटियों से बनाई है जिन्हें हमारे ऋषि मुनियों ने आजमाया था और आज देश भर से लोग फोन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि बाबा जी आपने तो हमें एक नया जीवन दान दे दिया है। मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, इलाज चाहिए तो आयुर्वेद अपनाओ और अगर गारंटी इलाज चाहिए तो मेरे 50 वर्षों के अनुभव लो, नहीं फायदा हुआ तो पैसे वापिस, इतना भरोसा है मुझे अपने इलाज पर। तो भाई और बहनों, चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि बवासीर क्या होती है और क्यों होती है। बवासीर क्या है? हमारे मल द्वार या एनस जिसको बोलते हैं, एनस के अंदर या फिर बाहर छोटे छोटे रक्त वाहिकाएं या ब्लड वेसल होती है जो कभी कभी सूज जाती है, फूल जाती है और धीरे धीरे मांस जैसा बाहर निकलने लगता है। इसी को हम आम भाषा में कहते हैं बवासीर या पाइल्स। अगर इन सूजी हुई नसों से खून निकलने लगे तो उसे कहते हैं खूनी बवासीर, और अगर सिर्फ मांस बाहर निकलता है, जलन, दर्द और खुजली होती है तो वो कहलाती है बादी बवासीर। अब सवाल आता है कि ये होती क्यों है? तो सुनिए, इसके मुख्य कारण है कब्ज। अगर पेट साफ नहीं होता, मल सख्त आता है और रोज जोर लगाना पड़ता है तो धीरे धीरे नसें फूल जाती है। दूसरा, लंबे समय तक बैठना। जो लोग घंटों बैठे रहते हैं ऑफिस में गाड़ी चलाते हुए या फिर मोबाइल पर, तो उनमें रक्त संचार घटता है और नसों पर दबाव पड़ता है। तीसरा कारण है तीखा और भारी खाना खाना। बहुत ज्यादा लोग क्या होते हैं कि मिर्ची मसाले, तली चीजें और कम पानी, ये शरीर को गर्म करते हैं और अंदर जलन पैदा करते हैं। चौथा कारण होता है वंशानुगत कारण, जिसको जेनेटिक्स बोलते हैं। अगर आपके घर में माता पिता को बवासीर रही है तो संभावना बढ़ जाती है कि आपको भी हो सकती है। यह रोग सिर्फ शरीर को नहीं, इंसान की आत्मा तक को थका देता है। लेकिन इसके अलावा भी कई कारण हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जिसका आहार संतुलित नहीं है, उसका कुछ भी संतुलित नहीं हो सकता। आयुर्वेद के अनुसार आहार ही सभी रोगों की जड़ का मुख्य कारण है। फिर जीवन शैली और पाइल्स यानी बवासीर तो मुख्य रूप से आहार से संबंधित है। आहार और विचार दोनों आपके शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विचार से अभिप्राय है, जीवन शैली से है, पर लोगों की इसी अनियमितता को देखते हुए मैंने कुछ खास जड़ी बूटियों का मिश्रण तैयार किया है बवासीर यानी पाइल्स के लिए। बवासीर के मेरे पास बहुत से मरीज आते हैं, कई तो दो तीन बार ऑपरेशन करवा चुके होते हैं फिर भी कोई आराम नहीं होता। वो इतनी आस लेकर आते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। बवासीर का मेरे पास एक बहुत ही कारगर फार्मूला है जो मैंने अब कुडोस आयुर्वेदा से बनवाया है। बवासीर एक बहुत ही कॉमन आम समस्या बन गई है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है पाइल्स होने के चांसेस भी एक व्यक्ति में बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम अपना पूर्ण रूप से ध्यान नहीं रख पाते हैं। और एक बात याद रखो, तनाव भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे गुस्सा आना, काम का तनाव, नींद पूरी ना होना, ये सब पेट को खराब करते हैं और पेट की गड़बड़ी बवासीर को बुलाती है। मैंने देखा है लोग बवासीर से पीड़ित होते हैं पर डॉक्टर के पास जाने में डरते हैं। औरतें तकलीफ सहती है पर परिवार से भी नहीं कह पाती, और फिर जब हालात गंभीर हो जाते हैं तो ऑपरेशन कराना पड़ता है। पर संतों का ये कहना है, रोग को समझो, शरीर की पुकार सुनो और जीवन शैली सुधारो। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे बताए हुए नुस्खे अपनाओ और बवासीर को जड़ से खत्म करो। ये मेरी गारंटी है कि आपको जल्दी आराम मिलेगा, ये कोई मामूल। लेकिन उससे पहले इसका सही पहचानना जरूरी है। अगर ये लक्षण आपको दिखें, खून आना, सूजन होना, खुजली या जलन, मांस का टुकड़ा सा बाहर निकल आना, तो समझ लीजिए ये बवासीर की दस्तक है और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बाबा रविगिरी हूं ना, आयुर्वेद में ऐसे ऐसे नुस्खे हैं जिनसे बवासीर जड़ से ठीक हो जाती है। पर पहले रोग को जानो, स्वीकार करो, फिर उपचार करो। ये लाइलाज नहीं है और आयुर्वेद में इसका स्थायी समाधान है। मैंने खुद देखा है हजारों लोगों को इससे मुक्ति पाते हुए। तो भाई और बहनों, यहां मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं जिसे बहुत ध्यान से सुनना है। हर रोग का है समाधान जब हो मन में विश्वास का ध्यान। आयुर्वेद की राह पकड़ो, बिना डर के जीवन जियो। तो भाई और बहनों, मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पाइल्स की दिक्कतों को मैं जड़ से खत्म कर सकता हूं। अगर मेरे बताए गए नुस्खे अपनाते हो तो खुद आप बदलाव महसूस करोगे। अब हम बात करेंगे इलाज की। मेरे ये योगों में हरड़, जीरा, काली मिर्च, पीपली, मूल, चित्रक, छव्य, सुरनकंद, अपामार्ग, अमलतास और बहुत कुछ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं हरड़ के फायदे। ये हरड़ है, औषधीय गुणों से भरपूर है। हरड़ के आयुर्वेद में चमत्कारिक फायदे बताए गए हैं। सेलेनियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, विटामिन, प्रोटीन, जीवाणु रोधी, एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर है ये हरड़। बवासीर की बीमारी को दूर करने में बेहद असरदार साबित हुई है। जीरा जो छोंक में यूज करते हैं, ये वही जीरा है। ये कब्ज हो चाहे बवासीर हो, इन सब में बहुत कारगर है। बवासीर का असली कारण खाना अच्छी तरह से न पचना और कब्ज का हो जाना होता है। जीरा लीवर से एंजाइम्स बनाकर खाने को पचवाता है, अपच को दूर करता है और सख्त लैटिन को मुलायम करता है। अगला है काली मिर्च जो पाचन क्रिया को मजबूत करती है। इसके बाद में है पीपली मूल, ये आंतों में अगर कीड़े हैं तो उनको खत्म करता है, आंतों में सूजन को खत्म करता है। इसके बाद में है चित्रक। चित्रक की रेचिन प्रकृति मानी गई है, यह एक नेचुरल लैक्सेटिव है जो लैटिन को धक्का मारता है, आंतों में पड़ा नहीं रहने देता, रेचन करने वाला है। इसके बाद में है सूरनकंद। यह है सूरनकंद, ये एक प्रोबायोटिक है और पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है। और यह है अपामार्ग, क्षार सूत्र की असली जड़ी बूटी है। ये इसमें सूजन घटाने वाले तत्व है जो बवासीर के मसों को शरीर से काट देते हैं। इसके बाद में है ये अमलतास। अमलतास पर बड़े शोध हुए हैं बड़ी बड़ी लेब में, और पता चला है कि इसमें प्रस्तुत है एंथ्राक्विनोनेज जो बवासीर पर काम करता है, पाचन शक्ति को मजबूत और जड़ पर काम करती है और बवासीर को जड़ से खत्म कर देती है। इसके बाद में है लज्जालू। लज्जालू पर जनरल ऑफ आयुर्वेद ने बताया है कि खूनी बवासीर पर चमत्कारित काम करता है, चाहे कोई भी डिग्री का बवासीर हो सब पर ये काम करता है। इसके बाद में है कचनार। कचनार की छाल काम दिया करती है, ये सूजन को घटाता है, बवासीर में कब्ज को काटता है, आंतों की सूजन को घटाता है, शरीर को विष हरण करता है और शुद्ध करता है। ये है निर्गुंडी, ये वातनाशक है। वात बढ़ने के कारण सूजन हो जाती है मसों में। ये निर्गुंडी जो है ये वात को शमन करके सूजन को घटाता है और मसों का नाश कर देता है। आखिर में ये है इंद्रायन। ये है इंद्रायन की जड़। इसके अंदर फ्लेवोनाइड्स, बेंजोइक एसिड, गैलिक एसिड, ये सारे गुण इसमें होते हैं जो बवासीर में आराम देते हैं। तो ये जितनी भी मैंने जड़ी बूटियां आप देख रहे हैं वो मैंने बताई है, ये सब मिलाकर मैंने बवासीर के लिए एक नुस्खा तैयार किया है और मैंने हजारों लोगों को इस पीड़ा से मुक्ति दिलाई है बिना ऑपरेशन, बिना किसी साइड इफेक्ट, सिर्फ शुद्ध और आयुर्वेदिक नुस्खों से। मेरे बताए नुस्खे अपनाओ, रोज नियम से इन्हें निभाओ, बवासीर को जड़ से मिटाओ, फिर लौट के कभी ना आए वो दर्द पुराना। और हाँ, खान पान में संयम जरूर रखिए, मिर्च मसाले कम, पानी ज्यादा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आपने मेरे बताए हुए नुस्खे नियम से अपनाए तो बवासीर जड़ से खत्म हो जाएगी और फिर दोबारा लौट कर नहीं आएगी। तो अब ऑपरेशन नहीं, अपनाओ रविगिरी के नुस्खे और कहो बवासीर तुझे जड़ से अलविदा। अब देर मत करो, मुझे तुरंत संपर्क करो और ये आयुर्वेदिक दवाई मंगवाओ ताकि बवासीर को हमेशा के लिए अलविदा कह सको। अब मैं भी आपसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़।
8: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में ड्रामा अनलिमिटेड। दोपहर 1:28 से 3 तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
0: नौसेना की ताकत में हुआ इजाफा, मुंबई में दूसरा स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट पोत, निपुण हुआ कमीशन, समुद्र में गोताखोरी और जटिल अभियानों को देगा अंजाम। ताशकंद के महात्मा गांधी इंटरनेशनल सेंटर में पीएम मोदी छात्रों से किया संवाद, आज बिश्केक में एससीओ समिट में होंगे शामिल। बाढ़ के बीच नेपाल पुलिस को बड़ी कामयाबी, कृषि विकास बैंक की शाखा से 50 करोड़ रुपए का सोना बरामद, 1.5 करोड़ कैश भी सुरक्षित किया गया ट्रांसफर। धूमधाम से मनाया जा रहा है कजरी तीज का पावन त्योहार, महिलाएं रख रही हैं पति की लंबी उम्र की कामना, अखंड सौभाग्य वैवाहिक जीवन की सुख शांति के लिए व्रत। भारी बारिश के बावजूद उत्साह से जारी है केदारनाथ यात्रा, अभी तक 14,73,000 से अधिक भक्त कर चुके हैं दर्शन, सितंबर में मौसम ठीक होने पर भक्तों की संख्या बढ़ने की उम्मीद।

नमस्कार, जीएनटी पर हमारे स्पेशल शो में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। आज हम बात करेंगे गुलाबी नगरी में ग्लैमर के रंग की। आप जानते हैं राजस्थान की राजधानी जयपुर को गुलाबी नगरी कहा जाता है और साथ ही साथ ये शहर अपनी सुंदरता और कलात्मक संस्कृति के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। इसे भारत के पेरिस के नाम से भी जाना जाता है और यही वजह है कि बरसों से ये शहर ग्लोबल वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में उभरा है, फैशन और ग्लैमर के वैश्विक केंद्र के रूप में भी उभरा है। और यही कारण है कि अब यहां पर विश्व स्तरीय सौंदर्य प्रतियोगिताओं के भी आयोजन लगातार हो रहे हैं। इस साल 2 महीने के अंदर यहां पर 4 शानदार सौंदर्य प्रतियोगिताएं हो चुकी हैं। इसी कड़ी में अब यहां मिस टीन इंटरनेशनल 2026 का आयोजन किया गया, जिसके रंग आपको दिखाने जा रहे हैं हम। इस प्रतियोगिता में भारत सहित 31 देशों की सुंदरियों ने हिस्सा लिया, जबकि मिस टीन इंटरनेशनल 2026 का खिताब क्यूबा की कंटेस्टेंट को मिला। और हम आपको ये भी दिखाएंगे कि इस प्रतियोगिता की पूरी रिपोर्ट, आप बने रहिए हमारे साथ। तो जयपुर अपनी समृद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत के साथ साथ अब 5-स्टार लग्जरी हॉस्पिटैलिटी के बेजोड़ संगम के कारण फैशन और ग्लैमर का वैश्विक हब बनकर उभरा है। ऐसे में इसी वैश्विक आकर्षण और बेहतरीन बुनियादी ढांचे की वजह से यहां पर अब लगातार फैशन और ग्लैमर से जुड़े इवेंट्स का आयोजन हो रहा है। इसी कड़ी में यहां पर विश्व की सबसे पुरानी किशोर सौंदर्य प्रतियोगिता मिस टीन इंटरनेशनल 2026 के भव्य ग्रैंड फिनाले का आयोजन किया गया। इस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दुनिया के 30 से अधिक देशों की सुंदरियों ने अपना जलवा बिखेरा है। देखिए,

0: कड़े मुकाबले में सभी को पछाड़ते हुए क्यूबा की कंटेस्टेंट जोआना उरांगा ने आखिरकार मिस टीन इंटरनेशनल 2026 का प्रतिष्ठित खिताब जीतने में कामयाबी हासिल की। इस प्रतियोगिता में दूसरे स्थान पर रही नामीबिया की चैंटल बोरेन, उन्हें फर्स्ट रनर अप का खिताब मिला, जबकि तीसरे स्थान पर रही पैराग्वे की जूलियाना ओकारिज, जिनके सिर पर सेकंड रनर अप का ताज सजा। अमेरिका की एंड्रिया अल्मेस्टिका को थर्ड रनर अप घोषित किया गया और यूएस वर्जिन आइलैंड्स की डेरेलिस निको को चौथी रनर अप का स्थान मिला।
1: मिस टीन क्यूबा।
0: इस अनोखी सौंदर्य प्रतियोगिता की शुरुआत शानदार ओपनिंग राउंड से हुई। इसके बाद स्विमिंग शूट राउंड और क्वेश्चंस आंसर राउंड सहित कई चरणों में कंटेस्टेंट्स को अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिला। इस प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंची कंटेस्टेंट्स ने अपने आत्मविश्वास, पर्सनालिटी और टैलेंट का दमदार प्रदर्शन किया। हालांकि सबसे आगे रही क्यूबा की जोआना उरांगा, जिन्होंने जजों और दर्शकों दोनों का दिल जीतकर मिस टीन इंटरनेशनल के खिताब पर कब्जा जमा लिया। मिस टीन इंटरनेशनल प्रतियोगिता में भारत की ओर से दिव्या बाधवा ने भाग लिया। दिव्या ने पहले मिस टीन दिवा का खिताब जीता और उसके बाद मिस टीन इंटरनेशनल में भारत का प्रतिनिधित्व किया। हालांकि वह प्रतियोगिता के अंतिम चरण तक नहीं पहुंच सकी, लेकिन उनका प्रदर्शन प्रभावशाली रहा। गुलाबी नगरी जयपुर में इस तरह के विश्व स्तरीय आयोजन फैशन और ग्लैमर की दुनिया में भारत के बढ़ते दबदबे को साफ तौर पर दर्शाते हैं। इसके साथ ही भारत ने एक बार फिर फैशन और ग्लैमर की दुनिया में अपना दबदबा साबित करते हुए मेजबानी कर इतिहास रच दिया है। इन आयोजनों के जरिए जयपुर की ऐतिहासिक विरासत, संस्कृति, आतिथ्य और पर्यटन को भी अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों तक पहुँचने का अवसर मिल रहा है।
2: 2026 from Cuba।
0: इस लिहाज से हाल ही के दिनों में हुए कई बड़े ब्यूटी पेजेंट जयपुर के लिए केवल ग्लैमर और फैशन के आयोजन नहीं, बल्कि शहर की वैश्विक पहचान को मजबूत करने वाले महत्वपूर्ण इवेंट के तौर पर भी देखे जा सकते हैं।
2: Ladies and gentlemen, our Miss Teen International 2026 from Cuba।
0: इसके पहले हाल ही में 23 अगस्त 2026 को ही जयपुर में ही मिस यूनिवर्स इंडिया 2026 प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें केरल की 19 वर्षीय लॉ स्टूडेंट काजिया लिज मेजो अव्वल रहीं। 23 अगस्त को यहां पर अंतर्राष्ट्रीय ब्यूटी पेजेंट मिस ओशियन वर्ल्ड 2026 का भव्य ग्रैंड फिनाले आयोजित किया गया, जिसमें ब्रिटेन की मौली मैरी बकली ने खिताब जीता। जुलाई 2026 में जयपुर में ही मिस टीन डिवा 2026 का भी आयोजन किया गया, जिसमें मेघालय की ऐश्वर्या मलंग ने मिस टीन अर्थ इंडिया 2026 का खिताब जीता। इसमें असम की स्निग्धा भुयान के सिर पर सजा मिस टीन ग्रैंड इंडिया 2026 का खिताब, जबकि ओडिशा की प्रसूचि पांडा ने मिस टीन यूनिवर्स इंडिया 2026 का खिताब जीता था। राजस्थान के ऐतिहासिक शहर जयपुर पारंपरिक शिल्प कला और आधुनिकता के बेजोड़ मेल के साथ फैशन और ग्लैमर की दुनिया में जयपुर वैश्विक हब बनकर उठा है। अपनी ऐतिहासिक समृद्ध विरासत, ब्लॉक प्रिंटिंग बंधीज और विश्व प्रसिद्ध कुंदन मीनाकारी से जुड़े काम के कारण जयपुर हमेशा से अंतर्राष्ट्रीय डिजाइनरों की पहली पसंद रहा है। आज ये शहर न केवल फैशन आयोजनों और सेलिब्रिटी शादियों का मुख्य केंद्र बन चुका है, बल्कि अपनी सांस्कृतिक जड़ों को आधुनिक रैम्प फैशन से जोड़कर वैश्विक मंच पर अपनी विशिष्ट और ताकतवर पहचान बना रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: गुलाबी नगरी जयपुर में मिस टीन इंटरनेशनल 2026 में दुनिया के अलग अलग देशों से खूबसूरत और प्रतिभाशाली टीनेजर्स ने हिस्सा लिया। सभी ने अपने कॉन्फिडेंस और टैलेंट का प्रदर्शन किया, लेकिन इस ग्लैमरस मुकाबले का सबसे खास पल रहा क्यूबा की जोआना उरांगा, जब उनके सिर मिस टीन इंटरनेशनल 2026 का ताज सजा और जीत के बाद जोआना बेहद ही उत्साहित नजर आई। उन्होंने अपनी इस कामयाबी को सपने के सच होने जैसा बताया, साथ ही भारत में मिले प्यार स्वागत की भी जमकर तारीफ की।
4: Like I said before, I feel incredible. I am so incredibly grateful and honored to be your new Miss Teen International 2026. I couldn't be more grateful for this.

0: amazing opportunity, and I want to give the best of me to you guys, and thank you for all of you for supporting me, and for my family, and for all my team members. I really appreciate you all, and as your new Miss Teen International 2026, I am Joanna Uranga. Thank you.
1: What do you want to say about India?
0: I love India. I can't wait to come back. And honestly, the people are so amazing. They're so sweet and kind. Truly have made me feel like I'm home. I haven't missed home at all. And honestly, thank you guys so much. I really appreciate it.
2: तो जयपुर में सजी इस महफिल में रैमवॉक से लेकर टैलेंट राउंड तक हर पड़ाव पर प्रतिभागियों का कॉन्फिडेंस देखने लायक रहा. किसी ने अपनी खूबसूरती से प्रभावित किया तो किसी ने अपनी प्रतिभा और व्यक्तित्व से जजेस का ध्यान अपनी ओर खींचा.
3: मिस टीन इंटरनेशनल 2026 का फिनाले था जिसमें 30 कंट्री से पार्टिसिपेट किया और फाइनली क्यूबा को अपना पहला मिस टीन इंटरनेशनल क्राउन मिल गया है. इसमें कंटेस्टेंट्स ने अलग अलग राउंड्स में स्विमसूट कंपटीशन, इवनिंग गाउन कंपटीशन और क्वेश्चन आंसर राउंड्स में पार्टिसिपेट किया और हमें हमारे टॉप 5 मिल गए. ऑलमोस्ट सारे 30 कंट्रीज थे. 30 कंट्रीज से फाइनली पहला कट ऑफ था टू 18 कंट्रीज और उसके बाद टॉप 8 और टॉप 8 का कॉमन क्वेश्चन था जिसमें से फिर टॉप 5 अनाउंस हुए. क्यूबा बिकेम द विनर. द फर्स्ट रनर अप वेंट टू नामीबिया. सेकेंड रनर अप वॉज पैराग्वे. थर्ड रनर अप एंड फोर्थ रनर अप वेर यूएसए एंड यूएस वर्जिन आइलैंड्स.
2: देखिए गुलाबी नगरी जयपुर में ग्लैमर, टैलेंट और आत्मविश्वास का मंच सजा जहां देश विदेश से आई टीनेज प्रतिभागियों ने अपनी खूबसूरती के साथ हुनर और कॉन्फिडेंस का भी जलवा बिखेरा है. मौका मिस टीन प्रतियोगिता का था तो रैंप पर उतरने वाली हर प्रतिभागी के लिए यह सफर सिर्फ ताज की दौड़ नहीं बल्कि खुद को साबित करने, कुछ नया सीखने का अनुभव भी रहा. इसी मंच पर नामीबिया की चैंटल बोयरेन ने भी अपनी खास पहचान बनाई और फर्स्ट रनरअप का खिताब अपने नाम किया. प्रतियोगिता के अनुभव को लेकर चैंटल का कहना है कि मिस टीन की उनकी जर्नी बेहद ही खास रही. इस दौरान उन्होंने बहुत कुछ सीखा.
4: It feels amazing to win. I'm so excited to carry on this journey and actually to start it. And I'm really proud of myself and I hope my country is proud of me. Throughout my journey, there's actually been no problems. I've enjoyed it so far. The girls are amazing. They have made the journey so much more easier. The sisterhood that we built was so strong. And I really love them for it because now I could just breeze and have fun throughout my journey and on stage. Oh, the journey was so hectic. There were so many preparations. And the intensive part was really just being here, having to connect with the girls and just being able to showcase who I am proudly and showcase that to the world uniquely. And so for me to be able to do that honestly and for people, the judges, to see the uniqueness in me and to see the potential in me, it just brings me so much joy.
2: मिस टीन इंटरनेशनल के फाइनल से पहले आगरा में बुधवार को 30 देशों की मिस टीन इंटरनेशनल की फाइनलिस्ट ताजमहल देखने के लिए पहुंची. ताजमहल के सामने पहुंचते ही प्रतिभागियों ने अपने मोबाइल और कैमरों से तस्वीरें खिंचवानी शुरू कर दी. किसी ने ताज के सामने पोज दिया तो किसी ने अपनी साथी प्रतिभागियों के साथ ग्रुप फोटो कराई. ताजमहल में हुआ ये फोटो सेशन काफी आकर्षक नजर आ रहा था. इन अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों ने ताजमहल के इतिहास और शाहजहां मुमताज की प्रेम कहानी के बारे में भी जानकारी ली. दुनिया के इस मशहूर स्मारक की वास्तुकला और संगमरमर पर की गई नक्काशी ने प्रतिभागियों को खास प्रभावित किया. ताजमहल परिसर में अलग अलग देशों से आई प्रतिभागियों का ग्लैमरस अंदाज पर्यटकों को आकर्षण करता नजर आया. सुंदरियों ने ताज के मुख्य गुंबद, रॉयल गेट और आसपास के परिसर को देखा और इस ऐतिहासिक स्मारक की वास्तुकला को करीब से भी समझा. ताजमहल की खूबसूरती पर सुंदरियां मोहित हो गईं और उन्होंने कहा कि इससे ज्यादा खूबसूरत इमारत उन्होंने कभी नहीं देखी. 31 देशों की खूबसूरती का एक महामुकाबला हुआ और वो सभी ताजमहल का दीदार करने के लिए पहुंची. फाइनल से पहले आगरा में बुधवार को ये तस्वीरें निकलकर सामने आई जब 30 देशों की मिस टीन इंटरनेशनल के फाइनलिस्ट ताजमहल देखने के लिए पहुंची और उसके सामने पहुंचते ही वहां पर अपने मोबाइल और कैमरे से तस्वीरें खिंचवानी उन्होंने शुरू कर दी. किसी ने ताज के सामने पोज दिया तो किसी ने अपनी साथी प्रतिभागियों के साथ एक ग्रुप फोटो कराई. ये तस्वीरें वहीं की आप देख रहे हैं. ताजमहल में ये फोटो सेशन काफी आकर्षक नजर आ रहा था और इन अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों ने ताजमहल के इतिहास के बारे में भी वहां पर जाना खूब दिलचस्पी दिखाई. साथ ही शाहजहां मुमताज की प्रेम कहानी के बारे में भी जानकारी उन्होंने ली. दुनिया के इस मशहूर स्मारक की वास्तुकला और संगमरमर पर की गई नक्काशी ने प्रतिभागियों को खास प्रभावित किया है. ताजमहल परिसर में अलग अलग देशों से आई प्रतिभागियों का यह ग्लैमरस अंदाज पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र रहा। ताज के मुख्य गुंबद, रॉयल गेट, आसपास के परिसर को इन सभी ने देखा, बारीकी से देखा और ऐतिहासिक स्मारक की वास्तुकला को भी करीब से समझा है। ताजमहल की खूबसूरती पर इन सुंदरियों की मोहित हो गई और उन्होंने कहा कि इससे ज्यादा खूबसूरत इमारत उन्होंने आज तक नहीं देखी। तो ये तस्वीरें ताजमहल से सामने आई। बुधवार को सभी वहां पर पहुंची ताजमहल का दीदार करने के लिए। पिंक सिटी में भी शानदार महफिल सजी और 31 देशों की खूबसूरती का महामुकाबला इसके बाद हुआ। मिस टीन इंटरनेशनल 2026 का महामंच वहां पर सजा और उससे पहले आगरा के ताजमहल का दीदार करने के लिए ये सुंदरियां वहां पर खुद पहुंची। जयपुर गुलाबी नगरी, जो अपनी ऐतिहासिक विरासत, राजसी ठाट और रंग बिरंगी संस्कृति के लिए दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन अब जयपुर की पहचान में एक और रंग जुड़ता नजर आ रहा है, दरअसल फैशन और ग्लैमर का। पिछले कुछ वर्षों में जयपुर कई बड़े ब्यूटी पेजेंट और फैशन इवेंट्स का गवाह बन चुका है। मिस टीन इंटरनेशनल 2026 से पहले भी यहां पर मिस इंडिया यूनिवर्स जैसे प्रतिष्ठित आयोजन हो चुके हैं, जहां देश भर की खूबसूरत और प्रतिभाशाली प्रतिभागियों ने रैंप पर अपने आत्मविश्वास और हुनर का प्रदर्शन किया। कहते हैं ना कि ताज चमकता है, लेकिन असली चमक उस महिला के आत्मविश्वास में होती है जो इसे पहनती है। कुछ यही आत्मविश्वास और खुशी से लबरेज दिखी मिस इंडिया यूनिवर्स बनी केरल की काजिया लिज मेजो। 53 सुंदरियों के बीच कड़ा मुकाबला वहां हुआ। सभी ने अपने अपने टैलेंट, खूबसूरती और आत्मविश्वास का हर राउंड में प्रदर्शन किया। फिर आखिर के दौर तक आते आते फाइनल स्पर्धा के टॉप 2 पोजीशन पर केरल और तमिलनाडु की प्रतिभागी पहुंची, लेकिन मिस इंडिया यूनिवर्स का ताज केरल की युवा प्रतिभागियों में काजिया लिज मेजो को पहनाया गया।

0: अपनी जिंदगी के इसी पल का मानो इंतजार था 19 साल की कैजिया लिज मेजो को। जिन्होंने आखिरी राउंड में कुछ सेकंड्स के दरमियान अपने जीवन के संघर्ष, कठिन हालात में सकारात्मक सोच और महिला सशक्तिकरण को लेकर अपने बेबाक अंदाज और बुद्धिमत्ता के बूते ऐसा क्लोजिंग रिमार्क छोड़ा जो जजेस के दिल को गहराई से छू गया। भविष्य को लेकर अपना नजरिया बखूबी बयां करने वाली कैजिया मिस इंडिया यूनिवर्स का ताज पहनते वक्त ईश्वर का शुक्रिया अदा करना भूली नहीं।
1: I feel on top of the world and actually on top of the universe. This has been a dream for as long as I can remember, and being able to actually wear this crown, to be able to bear the fruits of all my years of hard work, it feels so surreal, but I know that destiny works wonders and I'm so grateful to God. I've been preparing for this journey for over 3 years now, and Miss Universe has always been the goal, and now it is time for me to showcase to the world what it means to be India, and I'm ready to do everything to bring back the crown. We have a few months before me and I promise you that I will do everything in my powers to make sure that our country is proud at Miss Universe.
0: 53 सुंदरियों के बीच कड़ा मुकाबला हुआ। सभी ने अपने अपने टैलेंट, खूबसूरती और आत्मविश्वास का हर राउंड में प्रदर्शन किया। और फिर आखिर के दौर तक आते आते फाइनल स्पर्धा के टॉप 2 पोजीशन पर केरल और तमिलनाडु की सुंदरिया पहुंची, लेकिन मिस इंडिया यूनिवर्स का ताज केरल की युवा प्रतिभा कैजिया लिज मेजो को पहनाया गया। उन्नीस साल की कैजिया को 2025 की विजेता रही मनिका विश्वकर्मा ने मिस इंडिया यूनिवर्स के सम्मान से नवाजा। कैजिया एक लॉ स्टूडेंट, मॉडल और ट्रेंड क्लासिकल डांसर हैं। इससे पहले कैजिया टीम इंटरनेशनल में भारत की नुमाइंदगी कर चुकी हैं और फर्स्ट रनर अप भी रही। इतना ही नहीं, उनके नाम मिस यूनिवर्स केरल का खिताब भी है। अब मिस इंडिया यूनिवर्स बनी कैजिया प्योर्टो रिको में होने वाले मिस यूनिवर्स खिताब के अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत को रिप्रेजेंट करेंगी। इससे पहले मिस इंडिया यूनिवर्स के टॉप 5 फाइनलिस्ट में केरल की कैजिया लिज मेजो के अलावा फर्स्ट रनर अप तमिलनाडु की वैष्णवी गणेश रही, सेकंड रनर अप रही गुजरात की अनुश्री सातवालेकर, थर्ड रनर अप का खिताब महाराष्ट्र की तेजस्विनी श्रीवास्तव को मिला, जबकि फोर्थ रनर अप के रूप में उत्तराखंड की अनुभा वशिष्ठ रही। मिस इंडिया यूनिवर्स की इन सभी हुनरमंद प्रतिभागियों ने भी आखिरी राउंड के उन चुनिंदा सेकंड्स में ज्यूरी के सामने भविष्य को लेकर अपना नजरिया और अभी तक मिली चुनौतियों पर अपनी अपनी राय रखी। मिस इंडिया यूनिवर्स इंडिया 2026 के जज पैनल में साल 1994 की मिस यूनिवर्स और एक्ट्रेस सुष्मिता सेन, साल 2001 की मिस इंडिया यूनिवर्स सेलिना जेटली के अलावा फिल्म प्रोड्यूसर प्रज्ञा कपूर और मिस इंडिया यूनिवर्स पेजेंट के मालिक निखिल आनंद समेत फैशन और मनोरंजन जगत से जुड़े कई चेहरे इस ब्यूटी पेजेंट का हिस्सा रहे। वहीं इस ब्यूटी पेजेंट में राजस्थान की संस्कृति और जयपुर की मेहमान नवाजी के साथ आधुनिक भारत का ग्लैमर भी नजर आया, जहां देश दुनिया से जुड़े करीब 800 फैशन डिजाइनर और डेलीगेट्स ने समारोह की भव्यता को और बढ़ाया। फिलहाल तो इस भव्य समारोह में मिस इंडिया यूनिवर्स 2026 चुनी गई कैजिया लिज मेजो अब मिस यूनिवर्स पेजेंट में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। ये वही मंच होगा जहां सुष्मिता सेन, लारा दत्ता, हरनाज संधु जैसी प्रतिभाओं ने भारतीय ब्यूटी और इंटेलिजेंस को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। उम्मीद है कि अब 2026 की मिस इंडिया यूनिवर्स कैजिया लिज मेजो भारत की विविधता, संस्कृति, प्रतिभा और नई पीढ़ी का हुनर प्योर्टो रिको जैसी वैश्विक मंच पर पेश करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: लाल बाल दुनिया में बेहद कम लोगों की पहचान है, लेकिन नीदरलैंड के टिलबर्ग में यही पहचान हजारों लोगों को एक साथ ले आई है। दुनिया के अलग अलग देशों से आए रेड हेड्स ने यहाँ पर अपने खास रंग और अपनी अलग पहचान का जश्न मनाया। किसी ने तस्वीरें खिंचवाई, किसी ने मेकअप आजमाया, तो किसी ने अपनी जैसी पहचान वाले लोगों के साथ वक्त बिताया। देखिए लाल रंग में रंगे इस अनोखे फेस्टिवल की एक शानदार तस्वीर।
2: एक तस्वीर, हजारों चेहरे और पहचान सिर्फ एक। नीदरलैंड के टिलबर्ग में कुछ ऐसा ही नजारा दिखा, जहां दुनिया के अलग अलग हिस्सों से लाल बालों वाले हजारों लोग एक साथ एक जगह जमा हुए। मौका था रेड हेड डेज के 21वें संस्करण का, एक ऐसा सालाना आयोजन जो दो दशक से ज्यादा वक्त से चला आ रहा है। इस दिन लाल बाल से रंगे लोग एक साथ जुटते हैं और अनूठा उत्सव मनाते हैं। हालांकि यहां पहुंचने वाले हर शख्स की कहानी अलग है, लेकिन एहसास एक जैसा, अपने जैसा दिखने वाले इतने सारे लोगों को एक साथ देखना।
3: Of course, connected to the redhead community, and I don't see that many redheads in Finland, so it's good to see all of the people here right now.
2: फिनलैंड के ओलू से आए 27 साल के जॉनी के लिए ये सिर्फ फेस्टिवल नहीं, अपने जैसे लोगों के बीच होने का एहसास है। और इस भीड़ में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए नीदरलैंड आना अपनी जड़ों से जुड़ने का मौका है।
4: The Netherlands because my oma, like her parents are from here, so we came to visit her family, and also because Redhead Festival here to like, because it's just a really cool thing seeing so many people with like, it's just really cool.
2: ये सिर्फ लाल बालों का अनूठा मेला नहीं, यहाँ दुनिया भर के अलग अलग रंग भी एक साथ नजर आते हैं। किसी के सीने पर ईरान, किसी पर चिली, तो कोई दूसरे देश का झंडा लगाए हुए है। दुनिया के अलग अलग कोनों से आए ये लोग एक ही तस्वीर में अपनी अलग अलग पहचान लेकर खड़े हैं, और जब पहचान इतनी खास हो तो उसका स्टाइल भी स्पेशल होना चाहिए। कहीं बालों की नई स्टाइल बन रही है तो कहीं मेकअप में लाल रंग को और उभारा जा रहा है। रेड हेड्स के लिए खास तौर पर तैयार किए गए कॉस्मेटिक्स भी यहाँ आकर्षण का हिस्सा है। डेनमार्क की इवा रिंग एंडरसन ने इसी जरूरत को एक बिजनेस आइडिया में बदल दिया।
5: Inspired to create a product for redheads because we can't find redhead mascaras and for brows, so we made a little makeup booth. We drove here 10 hours in our little Kia Picanto, and then we set up a booth and tested all my home blended stuff, and then in 2024 I came back with the real products.
2: लेकिन रेड हेड डेज का कैनवास सिर्फ मेकअप और हेयर स्टाइल तक सीमित नहीं, पेंटिंग वर्कशॉप से लेकर फोटो सेशन तक 20 से ज्यादा एक्टिविटीज यहां लोगों को जोड़े रखती है। कोई अपने बालों को कैमरे के सामने दिखा रहा है तो कोई इस भीड़ में नई दोस्ती तलाश रहा है। आयोजकों के मुताबिक दुनिया भर के दर्जनों देशों से हजारों लोग इस वीकेंड टिलबर्ग पहुंचे।
4: 21st edition of the Redhead Days in Tilburg in Spoor Park. And many redheads all over the world, like thousands, are coming to the Netherlands this weekend. So we have our own camping, our bar, and many activities, like more than 20 workshops you can follow. And it's so nice. And you don't have to be a redhead to be welcome, because we just celebrate the humanness and like the unique points of human being. We just celebrate it.
2: दुनिया की आबादी में 2% से भी कम लोगों के बाल लाल होते हैं। यानी ये रंग जितना दुर्लभ है उतना ही खास है इसकी पहचान। लेकिन टिलबर्ग में इसी दुर्लभ रंग ने दुनिया के अलग अलग कोनों से आए हजारों लोगों को एक साथ ला दिया। अलग देश, अलग भाषाएं, अलग कहानियां, लेकिन इस तस्वीर में पहचान एक है, क्योंकि बात सिर्फ लाल बालों की नहीं, बात अपनी पहचान को अपनाने की है। दुनिया में अलग दिखना इन्हें खास बनाता है, लेकिन अपनी खासियत पर गर्व करना इन्हें एक दूसरे से जोड़ता है, और यही इस पर्व की खूबी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
6: सास बहू और बेटियां में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में ड्रामा अनलिमिटेड। दोपहर 1:28 से 3 तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर गुंडी चुड़ी सी
1: खबरें। कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9:00।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
8: नौसेना की ताकत में हुआ इजाफा, मुंबई में दूसरा स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट पोत, निपुण हुआ कमीशन, समुद्र में गोताखोरी और जटिल अभियानों को देगा अंजाम। आज बिश्केक में SCO समिट में होंगे शामिल, ताशकंद में महात्मा गांधी इंटरनेशनल सेंटर में पीएम मोदी छात्रों से संवाद किया। बाढ़ के बीच नेपाल पुलिस को बड़ी कामयाबी, कृषि विकास बैंक की शाखा से 50 करोड़ रुपए का सोना बरामद, 1.5 करोड़ कैश भी सुरक्षित किया गया ट्रांसफर। धूमधाम से मनाया जा रहा है कजरी तीज का पावन त्योहार, महिलाएं रख रही हैं पति की लंबी उम्र, अखंड सौभाग्य और वैवाहिक जीवन की सुख शांति के लिए व्रत। भारी बारिश के बावजूद उत्साह के साथ जारी है केदारनाथ की यात्रा, अभी तक 14,73,000 से ज्यादा भक्त कर चुके हैं दर्शन, सितंबर में मौसम ठीक होने पर भक्तों की संख्या बढ़ने की उम्मीद।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
8: सज गई है खबरों की प्लेट, तैयार है गुड न्यूज का मेन्यू। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल दे।
6: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका, मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। खबरों की रफ्तार वही है, बस परिभाषाएं नहीं है, हम आपको ट्रेंडिंग न्यूज से लेकर वायरल न्यूज तक हर अहम खबर दिखाएंगे, लेकिन पहले शुरुआत करते हैं 5 में 25 अच्छी खबरों के साथ।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
8: दिल्ली के द्वारका का नया इस्कॉन मंदिर पहली बार मनाने जा रहा है जन्माष्टमी, गोकुल धाम थीम पर मंदिर की भव्य सजावट।
6: कृष्ण जन्मोत्सव के लिए तैयार की गई भगवान की खास पोशाक इसे बनाने में करीब 1.5 महीने का वक्त लगा है। अकोला में गणपति बप्पा की हुई भव्य एंट्री, वडोदरा से आई 30 फीट की प्रतिमा की शोभा यात्रा निकाली गई। गणेशोत्सव से पहले सूरत में ढोल नगाड़ों से बप्पा का भव्य स्वागत हुआ, सड़कों पर उमड़ा श्रद्धालुओं का जनसैलाब, कलाकारों ने शानदार प्रस्तुति से बांधा समा। खरगोन में भगवान सिद्धनाथ महादेव का भव्य शिव डोला निकला है, शहर में गूंजे हर हर महादेव के जयकारे। शुभ संयोगों में आज धूमधाम से मनाया जा रहा है कजरी तीज का पावन त्योहार, सुहागिन महिलाओं के लिए ये दिन काफी महत्वपूर्ण। महिलाएं रख रही हैं पति की लंबी उम्र, अखंड सौभाग्य और वैवाहिक जीवन की सुख शांति के लिए व्रत। उज्जैन में ओणम उत्सव की रौनक देखने को मिली, कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। उत्सव के दौरान नेपाल त्रासदी के पीड़ितों के लिए विशेष प्रार्थना, प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा की कामना। तिरुपति के भगवान वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर के दरबार में पहुंचे कांग्रेस नेता जयराम रमेश, विधि विधान से पूजा अर्चना की।
1: नौसेना की अब बढ़ेगी ताकत, आज बेड़े में शामिल होगा दूसरा स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट पोत निपुण। पोत में आधुनिक गोताखोरी, अंडर वाटर इंटरवेंशन और चिकित्सकीय सहायता प्रणालियां मौजूद हैं। समारोह में मौजूद प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन हुए इसमें शामिल। क्यूबा की जहाना उरांगा बनी मिस टीन्स इंटरनेशनल 2026, जयपुर में जहाना उरांगा के सिर पर सजा विजेता का ताज। सात समंदर पार अमेरिका में बेटे की शादी, तेलंगाना के विपाला सिंगरम में माता पिता ने ऑनलाइन शादी में निभाई अक्षत की रस्म। एमपी के शिवपुरी में आरपीएफ का एएसआई बना देवदूत, तेजी के साथ दौड़कर प्लेटफॉर्म ट्रेन के बीच में फंसी महिला की जान बचाई।
6: गुजरात के गिर सोमनाथ में तीसरी सोमवार पर उमड़ा आस्था का सैलाब, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन पूजन किए। बाबा के भक्तों ने किया बेलपत्र, गंगाजल से जलाभिषेक, हर हर महादेव के लगाए जयकारे। लखनऊ में सीएम योगी ने जनता दरबार में सुनी लोगों की फरियाद, जल्द मामलों का निपटारा करने के निर्देश दिए। हरियाणा के कैथल में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आनंदम वृद्ध सेवा आंगन की आधारशिला रखी, एलिवेटेड रोड परियोजना की समीक्षा। ताशकंद के महात्मा गांधी इंटरनेशनल सेंटर में पीएम मोदी छात्रों से संवाद किया, आज बिश्केक में एससीओ समिट में शामिल होंगे।
1: राजकुमार संतोषी की नई फिल्म का नाम घातक घुस के मारेगा, सनी देओल की एंट्री इसमें हो गई है। 1998 में रिलीज फिल्म घातक से जुड़े किरदारों की दिखाई जाएगी इसमें कहानी। मुसाफिर कैफे की सफलता के बाद विक्रांत मेसी की लगी लॉटरी, फिल्म कर्ण में आएंगे नजर, सलमान खान के साथ स्क्रीन शेयर करेंगे। बिलियनेयर सीरीज में विजय माल्या के रोल में नजर आएंगे अर्जुन रामपाल, नवंबर के महीने में शुरू होगी इसकी शूटिंग। हनुमान अंश बनी 2026 की सरप्राइज ब्लॉकबस्टर, 2 करोड़ के बजट में बनी फिल्म ने अब तक करीब 39 करोड़ की कमाई की। टॉक्सिक ने कमाई में करप्पू को पछाड़ा, जन नायकन को भी पीछे छोड़ दिया है, 6 दिनों में पार किया 200 करोड़ से ज्यादा का आंकड़ा।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
1: तो चलिए 25 अच्छी खबरों के बाद अब खबरें विस्तार से, आपके लिए खबरों की प्लेट पूरी तरह से तैयार है।
6: तो चलिए शुरुआत करते हैं ट्रेंडिंग न्यूज के साथ। भारतीय नौसेना को समुद्र की गहराई में मिली नई ताकत। मुंबई में स्थित नौसेना डॉकयार्ड में INS निपुण की हुई कमीशनिंग। 75% स्वदेशी सामग्री से हुआ तैयार।
10: बिश्केक में आज प्रधानमंत्री मोदी सतत शांति, विकास और समृद्धि का देंगे मंत्र। चीन, रूस, ईरान, पाकिस्तान समेत 10 सदस्य देशों के सदस्य इसमें शामिल होंगे।
6: देशभर में गणेश उत्सव की धूम, अभी से शुरू पंडालों के लिए लाई जा रही है गजानन की प्रतिमाएं। लोगों में जबरदस्त उत्साह।
10: गणेशोत्सव से पहले सूरत में ढोल नगाड़ों से बप्पा का भव्य स्वागत हुआ। सड़कों पर उमड़ा श्रद्धालुओं का जनसैलाब। कलाकारों ने शानदार प्रस्तुति से बांधा समा।
6: उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सहित कई राज्यों में आज से फिर सक्रिय होगा मॉनसून। मौसम विभाग ने जारी किया है 18 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट।

0: और चलिए लंच टाइम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होते भारत की। देखिए, भारतीय नौसेना की ताकत में आज एक नया और बेहद शक्तिशाली अध्याय जुड़ गया है। समंदर की गहराइयों में देश की सीमाओं की सुरक्षा और मुश्किल अंडर वाटर ऑपरेशंस को अंजाम देने के लिए INS निपुण आधिकारिक तौर पर नौसेना के बेड़े में शामिल हो चुका है। अब से थोड़ी ही देर पहले भारतीय नौसेना के अध्यक्ष एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में इसे औपचारिक रूप से कमीशन कर दिया है।
1: आपको बता दें, INS निपुण कोई एंटी सबमरीन वॉरशिप नहीं है। ये भारतीय नौसेना का एक डाइविंग सपोर्ट वेसल और पनडुब्बी बचाव पोत है। यानी इस युद्धपोत की असली ताकत समुद्र की सतह के ऊपर नहीं बल्कि उसके नीचे छिपी हुई है। गहरे पानी में गोताखोरी, पनडुब्बी बचाव और समुद्र के भीतर निगरानी और मलबा हटाने जैसे बेहद मुश्किल मिशन इसके जिम्मे होंगे। यानी जिस काम के लिए सामान्य जहाजों की पहुंच सीमित हो जाती है, वहां निपुण की भूमिका शुरू होती है। INS निपुण को विशाखापट्टनम की हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने तैयार किया है।
0: और देखिए, ये निस्तार क्लास का दूसरा डाइविंग सपोर्ट वेसल है। इसमें करीब 75% से लेकर 80% स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। यानी ये युद्धपोत आत्मनिर्भर भारत की एक मिसाल है। इसकी एक और खासियत यह है कि ये डीप सी सैचुरेशन डाइविंग क्षमता रखता है, जो भारतीय नौसेना को समुद्र की गहराइयों में लंबे समय तक ऑपरेशन को चलाने की क्षमता देता है। इस पोत को पिछले महीने ही 30 जुलाई को भारतीय नौसेना को सौंपा गया था। अब कमिश्निंग के साथ ये नौसेना की ऑपरेशनल क्षमता का एक बड़ा हिस्सा भी बन गया है।

0: समंदर की गहराइयों में भारत की ताकत को एक नया आयाम मिल गया है। INS निपुण, भारतीय नौसेना का वो नया योद्धा जो दुश्मन की हर चाल को नाकाम करने के लिए पूरी तरह तैयार है। जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम भी है। ये केवल एक जहाज नहीं बल्कि नौसेना का एक एडवांस डाइविंग सपोर्ट वेसल है जो गहरे समुद्र में गोताखोरी अभियानों से लेकर अंडरवाटर सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस तक हर मिशन में पूरी तरह निपुण है। जहां आम जहाज समुद्र की सतह पर संचालन करते हैं वहीं निपुण की भूमिका समुद्र की गहराइयों तक फैली हुई है। INS निपुण क्यों है बेहद खास? इसमें एडवांस गोताखोरी सिस्टम लगाए गए हैं जिनके जरिए कठिन समुद्री हालात में लंबे समय तक गोताखोरों को सहायता दी जा सकती है। डीपी सैचुरेशन डाइविंग इसकी प्रमुख क्षमताओं में शामिल है। निपुण भारतीय नौसेना की पनडुब्बी बचाव क्षमता को भी मजबूत करेगा। अगर कोई पनडुब्बी समुद्र की गहराई में संकट में फंस जाती है तब निपुण उसकी मदद कर सकता है। ये पानी के भीतर चलने वाले रिमोट कंट्रोल रोबोट से लैस है। गहराई वाली जगहों पर निगरानी रखने और डेटा जुटाने के लिए ये मॉडर्न डायनेमिक्स पोजिशनिंग सिस्टम से लैस है।
1: It is my proud privilege to be here in Mumbai today for the commissioning of India's second indigenously designed and built diving support vessel, INS Nipun.
0: समंदर के नीचे मलबे की खोजबीन हो या फिर खोई हुई मशीनों को बाहर निकालने का काम, भारतीय नौसेना का ये साथी हर काम में पूरी तरह से निपुण है। सबसे खास बात यह है कि INS निपुण मेक इन इंडिया की एक शानदार मिसाल है। इसका 80% से ज्यादा हिस्सा स्वदेशी है जिसे हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने तैयार किया है। निपुण के भारतीय नौसेना में शामिल होने से हिंद महासागर में भारत की सुरक्षा परत और मजबूत हो गई है। आज जब दुनिया की नजरें रणनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील समुद्री रास्तों पर हैं, तब ये स्वदेशी योद्धा न केवल हमारी सीमाओं को और अभेद्य बनाएगा बल्कि मुश्किल से मुश्किल अंडरवाटर ऑपरेशंस को भी सटीकता से अंजाम देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: तो मेक इन इंडिया के तहत बना INS निपुण एक एडवांस डाइविंग सपोर्ट वेसल है जो न सिर्फ हमारी नौसैनिक क्षमताओं को कई गुना बढ़ाएगा बल्कि हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की मौजूदगी को और मजबूत करेगा। चलिए आपको बताते हैं INS निपुण की वो खासियतें क्या हैं जिसने इसे भारतीय नौसेना का नया धुरंधर बना दिया है। भारत में बना ऐसा पहला डाइविंग सपोर्ट वेसल है जो इस स्तर के गहरे और जटिल डाइविंग ऑपरेशंस को पूरी तरह से आत्मनिर्भर तरीके से संचालित कर सकता है।
3: और देखिए समंदर के अंदर गहरे और जटिल ऑपरेशंस करने में ये सक्षम है। INS निपुण की डीप सी सैचुरेशन डाइविंग क्षमता भारतीय नौसेना को समुद्र की गहराइयों में लंबे समय तक ऑपरेशन चलाने की एक अभूतपूर्व शक्ति देती है।
2: आपको बता दें INS निपुण की इस प्रणाली की मदद से गोताखोर समुद्र के दबाव के कई दिनों या हफ्तों तक लगातार रहकर काम कर सकते हैं।
3: और देखिए INS निपुण का सिस्टम गोताखोरों को कई दिनों की प्रक्रिया के तहत धीरे धीरे सामान्य वायुमंडलीय दबाव में वापस लाता है जिससे वो पूरी तरह से सुरक्षित रहते हैं। दरअसल गहरे पानी से अचानक सतह पर आने से गोताखोरों की जान भी जा सकती है।
2: वहीं INS निपुण पर तैनात डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल यानी कि DSRV एक अत्याधुनिक मिनी पनडुब्बी है जो समुद्र में डूबी या संकट में फंसी पनडुब्बी से नौसैनिकों को सुरक्षित बाहर निकालती है।
3: और देखिए ये व्हीकल एक बार में 14 नाविकों को लेकर वापस सतह पर INS निपुण के पास आता है। ये प्रणाली 650 मीटर तक की गहराई तक काम कर सकती है।

0: और चलिए बात करते हैं आपदा में देवदूत बने भारतीय नौसेना की। देखिए सीमा पर देश की रक्षा में जुटे जवान आपदा के मुश्किल वक्त में देवदूत साबित होते हैं। ऐसी ही एक तस्वीर आई है लद्दाख के कारगिल के पास स्थित नुनकुन पर्वत पर, जहां भारतीय नौसेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर एक मरीज की जान बचाई। 18,600 फीट की ऊंचाई पर यह ऑपरेशन इतना आसान नहीं था। तेज हवाएं, बेहद कठिन पहाड़ी इलाके के बीच ये बचाव अभियान बेहद मुश्किल रहा।
1: इतना ही नहीं, खड़ी ढलान पर हेलीकॉप्टर उतारने के लिए कोई सामान्य लैंडिंग स्पेस भी नहीं था। पायलट्स ने हेलीकॉप्टर को बेहद कम ऊंचाई पर स्थिर रखा और उसके बाद हेलीकॉप्टर का सिर्फ एक स्किड ढलान से टिकाया और उसे संतुलित रखा। इसके बाद मरीज को एयरलिफ्ट कर लिया। इस जोखिम भरे रेस्क्यू ने जहां एक मरीज की जान बचाई, वहीं दूसरी ओर सेना के आन बान शान के साथ समर्पण की एक शानदार कहानी भी लिखी।
0: और देखिए शौर्यता के साथ संतुलन की इस अद्भुत तस्वीर को आप भी देख लीजिए। जिसने भी इस तस्वीर को देखा वो देखता ही रह गया।
1: और चलिए अब बात करते हैं नेपाल में मिशन जिंदगी की।

0: तो नेपाल में त्रासदी के बाद पूरे देश में बड़े स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। नेपाल में आए फ्लैश फ्लड से 5 हाइड्रो प्रोजेक्ट का खासा नुकसान हुआ है और इसी बीच रेस्क्यू टीम को जानकारी मिली कि अपर त्रिशूली कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट में करीब 350 लोग एक टनल में फंसे हो सकते हैं।
1: और देखिए, ये खबर मिलते ही टनल में एक मेगा रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च कर दिया गया। इस ऑपरेशन में नेपाल के करीब 10,000 जवानों को लगाया गया है। चीन और भारत के टनल एक्सपर्ट्स भी इस मिशन में नेपाल की मदद कर रहे हैं। रेस्क्यू के लिए भारतीय मशीनों को एयरलिफ्ट करके टनल के पास पहुंचाया गया, जहां से टनल शुरू हो रही है वहां पर रेस्क्यू टीम्स पहुंच चुकी हैं। सुरंग के रास्ते से पत्थर हटाने का काम भी शुरू है। ये टीम अभी ये जांच रही है कि सुरंग में कितना अंदर तक जाना सुरक्षित होगा। सुरक्षा सुनिश्चित होने के बाद कैमरा ऑक्सीजन के साथ टीम को सुरंग के अंदर भेज दिया जाएगा। और चलिए, एक के बाद एक तस्वीरें लगातार यहीं से सामने आ रही हैं। तो नेपाल में आई आपदा के बाद अब पूरी ताकत लगाने में टीम्स जुटी हुई हैं जान बचाने के लिए। सेना, स्थानीय प्रशासन और बचाव दल मिलकर युद्धस्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशंस चला रहे हैं और काम कर रहे हैं। पहाड़ों के मलबे को चीरकर अब तक हजारों लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है, जो किसी चमत्कार से कम बिल्कुल नहीं लगता।
0: हालांकि वक्त बीतने के साथ चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि अभी हजारों लापता लोगों की तलाश जारी है। आपदा के इस खौफनाक मंजर के बीच ये रेस्क्यू ऑपरेशन इंसान के हौसले और एकजुटता की सबसे बड़ी मिसाल बन चुका है।

0: नेपाल के रसुवा में 26 अगस्त को आई आपदा के बाद से अब तक लगातार युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। बचाव और राहत टीमें प्रभावित इलाकों में जमीन से आसमान तक हर मुमकिन कोशिश में लगी है कि जहां कहीं भी जिंदगी के निशान हो वहां पहुंच सके और मलबे में फंसे लोगों को निकाल सके। नेपाल सरकार का कहना है कि बचाव, राहत और आपदा के पीड़ितों की मदद के लिए हर संभव उपाय किए जा रहे हैं। रसुवा में आई आपदा के अब 5 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी भी बड़े इलाकों में मलबा पड़ा है और बड़ी संख्या में लोग लापता है, लिहाजा तलाशी अभियान में लगातार तेजी लाई जा रही है। त्रिशूली और नुवाकोट सहित सभी प्रभावित इलाकों में मशीनरी निरंतर काम पर लगी हुई है। बड़ी बड़ी मशीनों के जरिए मलबा हटाया जा रहा है ताकि जिंदगी को पटरी पर लाने में आसानी हो।
1: अभी पहला मकसद तो ये रास्ता है ना, ये आगे जाने के लिए बना रहा है, और दूसरा तो ये जो घर है उसमें सामान निकालने के लिए चल रहा है।
0: ये तस्वीरें ढूंगे गांव की हैं, जहां सैलाब के कारण कटे हुए गांव और इलाकों में संपर्क स्थापित करने की कोशिश की जा रही है ताकि बाढ़ पीड़ितों तक मदद पहुंचाई जा सके।
2: इन सड़कों को खोलना अभी सबसे बड़ी चुनौती है और फिर ये बड़ी बड़ी जो जेसीबी मशीनें, इनका इस्तेमाल इसलिए किया जा रहा है, उनकी संख्या भी बढ़ाई गई है कि अगर ये प्रमुख मार्ग खुल जाता है, बेतरावती तक की कनेक्टिविटी आ जाती है तो संभवतः रसद पहुंचाना, बेतरावती से आगे रसुवा तक के लिए बड़ी लॉजिस्टिक पहुंचाना और जो रास्ता वहां पर भी बंद हो चुका है ताकि अगले 72 घंटों में रसुवा को नुवाकोट से सड़कों से जोड़ा जा सके। और अगर ऐसा होता है तो जहां वैली पुल बह गए हैं, मसलन हम जहां पर हैं डूंगे गांव में, इसका दूसरा इलाका जो है वो पूरी तरह कट चुका है, वहां पर मदद पहुंचाने के लिए हेली ड्रॉप करना पड़ रहा है, तो कम से कम वैली ब्रिज के लिए अगर ये सड़क जुड़ जाती है तो उसे फिर से वैली ब्रिज से जोड़ा जा सकेगा।
0: इन पहाड़ी इलाकों में आपदा से सड़कों को बेइंतहा नुकसान हुआ, लिहाजा पहले दिन से हेलीकॉप्टरों के जरिए रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में मदद दी जा रही है। इसी सिलसिले में अब नेपाल के नुवाकोट से अब तक का सबसे बड़ा एयर सर्च रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। नेपाल के बाद प्रभावित पहाड़ी इलाकों में कीचड़ के सैलाब और मलबे के कारण सड़कों का तकरीबन सफाया हो चुका है। ऐसे में दुर्गम इलाकों में रेस्क्यू टीमों और राहत सामग्री पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर ही एकमात्र सहारा है, लिहाजा ऑपरेशन में तेजी लाने के लिए बड़े पैमाने पर इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। नेपाल के बाद प्रभावित कई इलाकों में बार बार बारिश के कारण राहत और बचाव का काम चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। खासतौर से बाढ़ के बाद हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की सुरंगों में फंसे लोगों को निकालना आसान नहीं है। त्रिशूली 3A, 3B और अपर त्रिशूली बन में बड़ी संख्या में फंसे लोगों को निकालने के लिए ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सुरंगों के मुश्किल हिस्सों तक पहुंचने के लिए रेस्क्यू टीमों ने ड्रोन का सहारा लिया है। ड्रोन के जरिए सुरंग के उन हिस्सों पर नजर रखी जा रही है जहां रेस्क्यू टीम के लिए सीधे पहुँचना मुश्किल है। साथ ही टनल में फंसे लोगों को ड्रोन के जरिए संदेश भी भेजे जा रहे हैं। टनल में फंसे लोग मोबाइल फोन चार्ज कर सके, इसके लिए पावर बैंक भेजने की भी तैयारी की गई है। उम्मीद है कि ड्रोन की मदद से चलाए जा रहे ऑपरेशन से सुरंगों के अंदर फंसे लोगों या उनकी मौजूदगी के किस संकेत का पता चल सकेगा। सुरंगों में फंसे लोगों को निकालने में मदद के लिए भारत से भी एक्सपर्ट्स की टीम और जरूरी तकनीकी सामग्री भेजी गई है।
3: We are extremely grateful for the support that the government of India has provided to us already. There's been 4 different flights that have come to Nepal with relief supplies. We had asked some experts to support us with tunnel rescue and the team had already arrived yesterday and day before yesterday.
0: Nepal mein aapda se prabhavit ilakon mein mission zindagi full speed mein jari hai. मकसद यही है कि जल्द से जल्द लापता लोगों की तलाश की जा सके और उनकी जान बचाई जा सके। यही फिलहाल इस ऑपरेशन की सबसे बड़ी प्राथमिकता भी है।
4: देशभर में त्योहारों का उत्साह अपने चरम पर है। जन्माष्टमी और गणेश उत्सव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। मंदिरों से लेकर बाजारों तक रौनक दिखाई दे रही है।
5: और देखिए, कहीं कान्हा के जन्मोत्सव के लिए झांकियां सजाई जा रही हैं, तो कहीं गणपति बप्पा के स्वागत के लिए पंडालों को अंतिम रूप देने में सभी जुटे हैं। कृष्ण की पोशाक, मुकुट, बांसुरी की बाजार में रौनक आपको दिखाई देगी, तो वहीं गणपति बप्पा की प्रतिमाओं से बाजार सज गए हैं। अपने घर बप्पा को लाने के लिए भक्तों में उत्साह आपको नजर आएगा। गणेश उत्सव से पहले कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाएगा, लिहाजा दिल्ली से लेकर मथुरा वृंदावन तक एक अलग ही नजारा देखने के लिए मिल रहा है।
4: आपको बता दें, राजधानी दिल्ली के द्वारका में नए इस्कॉन मंदिर में इस बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी की भव्य तैयारियां की जा रही हैं। मंदिर परिसर को गोकुल थीम पर सजाया जा रहा है।
6: कृष्ण कृष्ण हरे हरे।

0: नया मंदिर जो है वो बना है और यहाँ पर पहली बार जो है जन्माष्टमी जो है इस बारी की जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मंदिर अभी भी आपको जो है यहाँ पर बहुत सारी जो काम है, जो तैयारियां हैं वो होनी बाकी है, लेकिन 4 तारीख के लिए जो है ये मंदिर पूरी तरीके से अपने अंतिम रूप में इस वक्त आपको नजर आ जाएगा। चाहे साज सज्जा की बात की जाए, प्रसादम की बात की जाए, जो भक्त यहाँ पर आएंगे उनके लिए जिस तरीके की व्यवस्था की जाए, हर तरीके से जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर होती हुई आपको नजर आ जाएगी। हमारे साथ इस वक्त प्रभु अच्युता आनंद दास जी भी इस वक्त मौजूद है। हरे कृष्ण प्रभु जी, सबसे पहले तो मैं तैयारी की बात करूँ, क्योंकि इस वाले इस्कॉन मंदिर में पहली बार जो है जन्माष्टमी मनाई जाएगी, तो भव्य तरीके से इस बार की हम उम्मीद कर सकते हैं?
1: जी हाँ, ज़रूर, इस साल हम बहुत ही भव्य रूप से तैयारी मना रहे हैं। पिछली बार जो हमारा इवन जो पंडाल का साइज था उससे भी हमने 1.5 गुना बड़ा जो पंडाल है वो लगाया है, ताकि भगवान का जो स्वागत है, भगवान का जो जन्मदिन है, और भी ज़्यादा अच्छे से हम मना सकें। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि भगवान का सुबह स्वागत मंगल आरती से करेंगे। सुबह 4:30 बजे सभी के सभी जो श्रद्धालु हैं वो मंगल आरती के लिए यहाँ पे उपस्थित होंगे और भगवान का स्वागत करेंगे। एंड उसके बाद फिर दिन में सारी की सारी एक्टिविटीज स्टार्ट हो जाएंगी। सुबह भगवान का जो इवन जो ड्रेस है, जो भगवान सुबह दर्शन देंगे, वो भगवान 7:30 बजे दर्शन देंगे। एंड रात को भी भगवान का जब अभिषेक होगा तो जो स्पेशल ड्रेस भगवान के लिए जो बनाया गया है वो उस ड्रेस को बनाने में ही 1.5 महीने का समय लगा है। जो रुक्मिणी द्वारकाधीश का जो पूरा का पूरा जो ड्रेस है या पोशाक कहते हैं जिसे, तो उसको बनाने में हमने पूरा 1.5 महीने का समय लगाया, और बहुत ही डेडिकेशन के साथ जो हमारे डिवोटी हैं उन्हीं ने ये ड्रेस को डिज़ाइन किया पूरे भक्तिभाव से।
0: तस्वीरें आपको बता सकती है कि किस तरीके से जन्माष्टमी से पहले ही मंदिर में आपको रौनक नजर आ जाएगी, कि किस तरीके से जितने भी कृष्ण भक्त हैं वो आपको झूमते हुए नजर आ जाएंगे, और जन्माष्टमी को लेकर जो तैयारियां हैं वो भी चलती हुई दिखाई देगी, कि भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को खास बनाने के लिए मंदिर परिसर को सजाया जा रहा है और श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए भी जो है, उनके दर्शन के लिए भी जो है व्यवस्था की जा रही है। लेकिन इस वक्त की तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से भक्त आपको झूमते हुए नजर आ जाएंगे। जन्माष्टमी के दिन भी यहाँ पर इसी तरीके से बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है वो हर साल पहुँचते हैं, और मंदिर परिसर में छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी व्यवस्था का ध्यान है वो रखा जाता है। लेकिन इन सभी तैयारियों के बीच जो सबसे ज्यादा खास है वो है भगवान का प्रसादम। आप यहाँ तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको ये प्रसाद जो है वो नजर आ जाएगा, और इनकी खास बात यह है कि इसमें आपको कम चीनी यानी कम शुगर जो है वो नजर आने वाली है, और ऐसे बहुत सारे विकल्प जो है आपको जो है वो नजर आने वाले हैं। मेरे साथ खुशबू माता जी इस वक्त मौजूद है। हरे कृष्णा खुशबू माता जी। तो यार पहले तो शुरुआत ही बोलूंगी कि आप इस बारी क्या खास है भक्तों के लिए भी और भगवान के प्रसाद में?
2: ये जो है सारा जन्माष्टमी पे हम भगवान के लिए स्पेशल बना रहे हैं। आप सबको पता है अभी जो वर्ल्ड चल रहा है बहुत एडल्ट्रेशन है, तो ऐसे माहौल में सब आजकल शुगर फ्री, ऑयल फ्री, गिल्ट फ्री खाना पसंद करते हैं। इसको मद्देनज़र हमने रखते हुए भगवान के लिए ये पाम शुगर है, कोकोनट शुगर है, ये खजूर का गुड़ है, आप देख सकते हैं इस पर हमने कोई शुगर यूज नहीं करा है।

0: जन्माष्टमी के मौके पर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन और उनके श्रृंगार की तैयारी भी जो है वो पूरी भक्ति भाव के साथ चल रही है। इस्कॉन मंदिर में इस वक्त मौजूद है और मैं तस्वीरें दिखा दी थी कि किस तरीके से आपको यहाँ पर महिलाओं की एक मंडली जो है वो नजर आ जाएगी और लगातार वो इसी तरीके से जो है श्रृंगार की तैयारियों में व्यस्त नजर आएगी। बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो यहाँ एक साथ बैठकर अपने हाथों से भगवान श्री कृष्ण के लिए फूलों की मालाएं जो है वो तैयार कर रही है। आप देख सकते हैं कि आपको रंग बिरंगे फूल जो है वो यहाँ पर नजर आ जाएंगे और किस तरीके से किसी के हाथ में आपको फूल नजर आएंगे तो किसी के हाथों में जो है आपको फूलों की माला बड़ी खूबसूरती के साथ पिरोते हुए जो महिलाएं हैं वो नजर आ जाएगी और चेहरे पे सिर्फ आपको भक्ति भाव नजर आएगा हर एक महिला के चेहरे पर।
1: अष्टमी के लिए ड्राई फ्रूट की माला बनेगी, एक दिन पहले बनेगी और फूलों की और सुंदर माला बनाएंगे
0: और सुंदर और भी ज्यादा सुंदर। तो मालाएं जो है वो रोज बन रही है, लेकिन अगर हम जन्माष्टमी के दिन की बात करें तो उस दिन जो है और भी ज्यादा मालाओं को सुंदर बनाने की तैयारी जो है वो की जा रही है। आप देख सकते हैं कि महिलाओं की अच्छी खासी जो यहाँ पर मंडली है आपको बैठी हुई नजर आ जाएगी और बड़े ही प्रेम के साथ, भक्ति के साथ, भावनाओं के साथ जो है ये मालाएं जो है पिरोई जा रही है। सुरक्षा बल की बात करें तो चाहे मंदिर के तरफ से वॉलंटियर्स हो या फिर बाहर पुलिसकर्मी की व्यवस्था की बात की जाए, हर तरीके से इंतजाम जो है वो पुख्ते किए गए ताकि इस बार का जो जश्न है, जो इस बार का चरमोत्सव है वो वाकई में भव्य हो सके, बेहद ही खास हो सके। तो हम भी इंतजार है कर रहे हैं, आप भी इंतजार कर रहे हैं, 4 तारीख का इंतजार सभी को है जिस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बेहद ही धूमधाम से मनाया जाएगा। कैमरा पर्सन इमानुअल जोस के साथ मनीषा लड्डा, दिल्ली, गुड न्यूज चुने।
2: अब देखिए, देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाने की तैयारी तो शुरू हो गई है। ऐसे में ना सिर्फ देश के तमाम श्री कृष्ण मंदिरों को सजाया और संवारा जा रहा है बल्कि बाजार भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व के लिए सज चुके हैं। लड्डू गोपाल से लेकर झूले और पालने तक, पोशाक से लेकर मुरली और माला तक बाजार में बिकने लगे हैं।
3: तो वहीं लोग भी जन्माष्टमी से जुड़ी खरीदारी में जोर शोर से जुटे हुए हैं। तैयारियां क्या है, तस्वीरें आपको दिखाते हैं।

0: आने वाला है जन्माष्टमी का त्योहार, सज गए हैं बाजार, एक से बढ़कर एक मनमोहक लड्डू गोपाल और उनकी सुंदर सुंदर पोशाक। मुरली से लेकर माला तक, झूले से लेकर पालना तक, मुकुट से लेकर मटकी तक, सब कुछ बिक रहा है बाजार में। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के अमरावती से आई हैं, जहां श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर बाजारों में रौनक नजर आने लगी है।
1: जन्माष्टमी आने वाली है, उससे पहले जो है महाराष्ट्र समेत देश के अलग अलग इलाकों में जो है कृष्ण भगवान के अलग अलग वेराइटीज के जो झूले है, उनके ड्रेस है, वो उनके बाजार जो है फटे पड़े है। हम फिलहाल अमरावती के जवाहर गेट के अंदर जो रंगारी गली है वहां पर जवर स्टोर में है, जहां पर आप देख सकते हो कि ये पूरी तरीके से दुकान जो है वो कान्हामय हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि सबसे पहले कान्हा को सबसे प्यारा लगने वाला जो है वो दही है, माखन है। वो माखन जो है, माखन जिस से चुराए जाते थे, वो हंडी यहाँ पर है।
0: बदलते दौर के साथ बाजार में नए नए ट्रेंड की कई चीजें भी जन्माष्टमी पर्व के लिए मौजूद हैं, जो इस पर्व में चार चांद लगा देती हैं। दुकानदारों का कहना है कि इस बार कार्टून कढ़ाई, राजवाड़ी और सूरत से आई पोशाकें ग्राहकों को खूब पसंद आ रही हैं। इनमें आकर्षक डिजाइन के साथ बारीक कढ़ाई और रंगों की विविधता देखने को मिल रही है।
2: इस बार की काफी ट्रेंडिंग में है, इसमें हमारे पास में अलग अलग साइज आई है। छोटे बाल गोपाल है, बड़े बाल गोपाल है, फुल बंगला है, जैसे हम देख सकते हैं फुल बंगला है, मोती बंगला है, बाद में बांसुरी के अलग अलग प्रकार है, छोटी से लेके बड़ी है, राधा नाम से सुसज्जित मोती वर्क, कुंदन वर्क के साथ में छोटे मोटे मुकुट, कुंदन जड़ाव वर्क के साथ में काफी सुंदर नकाशी वर्क के साथ इस बार बाजार पूरा हमारा राधा कृष्णमयी हो चुका है। छोटे से उनकी रासलीला करने के लिए डांडिया है, छोटे से मृदंग है, छोटे से पैरोट है, छोटे सा उनका मोबाइल फोन है जिससे वो राधा से बात कर सकते हैं, छोटे से साइकिल है, छोटे से उनके लिए टिफिन बॉक्स है, छोटे से उनके लिए अमृत है, जैसे जलेबी हो गया, फाफड़ा हो गया, या फिर उनके लिए चाय बच्ची हो गई है,
3: चाय बिस्किट भी है,
2: कॉफी भी है।
0: जन्माष्टमी का पर्व जितने ही उत्साह और उमंग के साथ मंदिरों में मनाया जाता है, उसी तरह लोग अपने अपने घरों में भी हर्षोल्लास के साथ जन्माष्टमी मनाते हैं। ऐसे में घरों की झांकी सजाने के लिए कृत्रिम फूलों की माला, झालर, लाइट और अन्य सजावटी सामान भी बाजार में मौजूद हैं।
2: ये जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये कृष्णा जी के जो सेवादार होते हैं, जैसे एक द्वारपाल हो गया, एक वहाँ पे हवा की मतलब पंखी की सेवा दे रहा है, एक वहाँ पे आरती की सेवा दे रहा है, एक वहाँ पे पनिहारी की सेवा दे रहा है, इस प्रकार अलग अलग यहाँ पे सेवादार है।
1: और
2: पीछे आप जो देख रहे हो, यहाँ पे जो आपने हमें पूछा है, ये सारे उनकी जन्म की लीला है,
1: पूरी जन्म की लीला
2: है। जी, ये जन्म की सारी लीला है, जन्म से आज तक उन्होंने जो जो किए है, जैसे जेल का हो चुका है, जेल में अलग से दो प्रकार के कटआउट आ चुके हैं, बाद में माखन की जो वो लीला कर रहे हैं, माखन के लीला के साथ में गोपी जो कुएं पे जाती है पानी भरने के लिए, उसकी एक अलग से लीला है, बाल सखाओं के साथ में जो कमल पे बैठकर वो लीला करते हैं वैसी लीला है,

0: धूमधाम से मनाया जा रहा है। शिव मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। हर हर महादेव और जय सोमनाथ के जयकारों से मंदिर परिसर गूंज रहे हैं।
1: और देखिए, पवित्र तीर्थ धाम सोमनाथ में आज आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। सोमनाथ महादेव के दर्शन के लिए देश भर से श्रद्धालु यहां आ रहे हैं। सुबह होते ही मंदिर परिसर में भक्तों की भीड़ लग जाती है। महादेव के दर्शन की आस में भक्त लंबी लंबी कतारों में अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आते हैं।
0: किसी के हाथों में पूजा की थाली है तो कोई बेलपत्र और फूल लेकर भोलेनाथ के दरबार में पहुंचा हुआ है। हर चेहरे पर भक्ति, हर मन में आस्था और हर जुबान पर सिर्फ महादेव का नाम है। हर हर महादेव और जय सोमनाथ की जय घोष से पूरा मंदिर परिसर गूंज रहा है। श्रावण का सोमवार भगवान शिव की आराधना के लिए बेहद खास माना जाता है और यही वजह है कि तीसरे सोमवार पर सोमनाथ में भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा है। श्रद्धालु विधि विधान से पूजा अर्चना कर भोलेनाथ का आशीर्वाद दे रहे हैं। सोमनाथ की धरती पर आज हर तरफ बस एक ही गूंज सुनाई दे रही है।
1: और चलिए इसी के साथ यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। लंच टाइम में ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कजरी तीज की धूम।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: सास बहू और बेटियां में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में ड्रामा अनलिमिटेड। दोपहर 1:28 से 3 तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: नौसेना की ताकत में हुआ इजाफा, मुंबई में दूसरा स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट पोत, निपुण हुआ कमीशन, समुद्र में गोताखोरी और जटिल अभियानों को देगा अंजाम। बाढ़ के बीच नेपाल पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, कृषि विकास बैंक की शाखा से 50 करोड़ रुपए का सोना बरामद हुआ, 1.5 करोड़ कैश भी सुरक्षित किया गया ट्रांसफर। धूमधाम से मनाया जा रहा कजरी तीज का पावन त्योहार, महिलाएं रख रही पति की लंबी उम्र, अखंड सौभाग्य, वैवाहिक जीवन की सुख शांति के लिए व्रत।

0: अमान पंचांग में आज सावन का तीसरा सोमवार, संभाजी नगर में निकाली गई भव्य कांवड़ यात्रा, आस्था और संस्कृति के दिखे रंग।
1: भारी बारिश के बावजूद उत्साह के साथ जारी केदारनाथ की यात्रा, अभी तक 14,73,000 से ज्यादा भक्त कर चुके दर्शन। सितंबर में मौसम ठीक होने पर भक्तों की संख्या बढ़ने की उम्मीद।
2: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
0: ब्रेक के बाद लंच टाइम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। उत्तर भारत में सावन भले ही बीत गया, लेकिन आस्था और भक्ति की बहार अब भी बरकरार है। आज महिलाएं पूरी आस्था और उमंग के साथ कजरी तीज का पर्व मना रही हैं। हर साल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की तृतीय तिथि पर सुहागने व्रत रखकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं।
1: और देखिए, आज के दिन कुमारी युवतियां भी मनचाहा जीवन साथी पाने की कामना के साथ शिव पार्वती का पूजन भी करती हैं। देखिए तस्वीरें।

0: शहर कोई हो, जगह कोई हो, महादेव के धाम, आस्था और भक्ति की बहार एक ही सी बह रही है। आज का दिन भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना का है, क्योंकि आज कजरी तीज मनाई जा रही है। विवाहित महिलाओं के लिए आज का दिन बेहद खास है। ये दिन उन कन्याओं के लिए भी खास है जो अपने लिए अच्छे वर की कामना कर रही है। दरअसल आज कजरी तीज का पर्व है। हर साल भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को ये त्योहार मनाया जाता है। उदया तिथि के अनुसार ही महिलाएं कजरी तीज का व्रत रख रही हैं। शिव मंदिरों में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना कर रही हैं।
1: कजरी तीज पर भगवान शिव माता पार्वती की आराधना करने से मनोकामना की पूर्ति होती है, सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है। तो जैसा कि शास्त्रों में वर्णित कहा जाता है कि इस दिन यदि माता पार्वती को सुहाग की वस्तुएं अर्पित किया जाए, भगवान शिव को दूध, दही, घीर, घी, शहद, चंदन इत्यादि अर्पित किया जाए, साथ ही साथ खीर का भोग लगाया जाए माता पार्वती को और भगवान शिव को, तो जीवन में सुख संपन्नता की वृद्धि होती है।
0: कजरी का अर्थ काले रंग से होता है। अमूमन इस दौरान आसमान में काली घटा छाई रहती है, इसीलिए शास्त्रों में इस शुभ तिथि को कजरी तीज का नाम दिया गया है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती के भवानी स्वरूप की पूजा का विधान है। इस दिन निमड़ी माता की पूजा भी बहुत कल्याणकारी मानी गई है। पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन देवी पार्वती पहली बार भगवान शिव से मिली थी। शिव जी को पति के रूप में पाने के संकल्प के साथ माँ पार्वती ने 108 साल तक तपस्या कर भोलेनाथ को प्रसन्न किया था, तभी से इसको कजरी तीज या कजरी तीज के रूप में मनाया जाने लगा।
1: अक्षत, चंदन, रोली, अबीर, गुलाल, पंचामृत, पंचमेवा, घी, धूप, दीप, नैवेद्य, मौसमी फल, मिष्ठान इत्यादि के साथ इनकी पूजन कर लेना है आपको। पूजन के उपरांत कजरी तीज की कथा का पाठ करना है और श्रवण करना है। उसके बाद रात्रि के समय में दिन भर व्रत रहना है निर्जला। रात्रि के समय जब चंद्रमा का दर्शन हो जाए, चंद्रमा दिखने लगे हैं, तो उनको अर्घ देना है। अर्घ देने के उपरांत पति के हाथों से पानी पीकर व्रत को तोड़ना है, अर्थात व्रत का पारण कर लेना है।
0: आज के दिन महिलाएं अपने सुहाग के लिए व्रत रखती हैं, पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। वही अविवाहित कन्याएं मन चाहा वर पाने के लिए कजरी तीज का उपवास रखती हैं। कजरी तीज का व्रत करवा चौथ की तरह निर्जला व्रत के साथ रखा जाता है और शाम को चंद्रमा को अर्घ देने के बाद व्रत खोला जाता है। कजरी तीज को कजली तीज, बड़ी तीज, बूढ़ी तीज या सतुरी तीज के नाम से भी जाना जाता है। ये पर्व उत्तर भारत के राज्यों में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। कजरी तीज व्रत पर जौ, चने, चावल और गेहूं के सत्तू बनाने की परंपरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: यूपी के महोबा की तस्वीरें देख लीजिए। इतिहास एक बार फिर से यहां जीवंत हो उठा। वीर आल्हा उदल की धरती पर 845वें ऐतिहासिक कजली मेले का भव्य आगाज हो गया है। हवेली दरवाजा से निकली शोभा यात्रा में हाथी घोड़ों पर सवार आल्हा उदल, राजा परमार और राजकुमारी चंद्रावल की मनमोहक झांकियां आकर्षण का केंद्र रही। सड़क के दोनों तरफ उमड़ी भीड़ ने 12वीं शताब्दी की वीर गाथा को अपनी आंखों के सामने महसूस किया। 50 से ज्यादा घोड़ों का नृत्य और बुंदेली संस्कृति की प्रस्तुतियां भी लोगों का एंटरटेनमेंट करती हुई नजर आई।
3: तो वहीं आपको बता दें, शोभा यात्रा में सैकड़ों की संख्या में महिलाएं सिर पर कलश लेकर निकली और इसके बाद कीरत सागर में कजली विसर्जन के लिए श्रद्धालुओं का भारी जन सैलाब उमड़ पड़ा। मान्यता है कि 1182वीं ईस्वी में आल्हा उदल ने पृथ्वीराज चौहान की सेना को हराकर राजकुमारी चंद्रावल की रक्षा की थी और उसी विजय की याद में आज भी रक्षाबंधन के अगले दिन कजली मेला सजता है। अब इस ऐतिहासिक मेले को राष्ट्रीय पहचान दिलाने की तैयारी है। प्रभारी मंत्री मन्नू कोरी ने इसे राष्ट्रीय मेला घोषित कराने के लिए पीएम और सीएम से सिफारिश करने का ऐलान किया है। वहीं भारी भीड़ को देखते हुए कीरत सागर से लेकर पूरे मेला क्षेत्र तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं।
4: इसमें आसपास क्षेत्र के मध्य प्रदेश के और पूरे जिलों से लोग आते हैं, पूरे उत्तर प्रदेश, अन्य राज्यों के लोग आते हैं और इसे कजली मेले का महत्व है। यह है धार्मिक मेला भी है, महोबा का वीरता शौर्यता की कहानी भी दोहराता है। और यहाँ पर आल्हा उदल की जो नगरी के नाम से महोबा जाना जाता है, इस मेले में चाहे वो युवा हो, महिलाएं हो, वृद्ध हो, सभी लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं।
5: आज ये कार्यक्रम भव्य रूप से महोबा में मनाया जाता है और अच्छा कार्यक्रम, लाखों की संख्या में कजलियां, हाथी, घोड़े, ऊंट और सभी क्षेत्र के लोग बाग इसको अच्छे ढंग से मनाते हैं और कार्यक्रम अच्छा होता है। पूरे महोबा के आसपास के चारों तरफ के गांव मिलकर के ये कजली मेला मनाया जाता है।
2: मध्य प्रदेश के खरगोन की तस्वीरें देख लीजिए। भगवान सिद्धनाथ महादेव शाही ठाट बाट के साथ अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए शहर भ्रमण पर निकले। जैसे ही भगवान श्री सिद्धनाथ महादेव की पालकी मंदिर से बाहर आई, हर हर महादेव और जय शिव शंभू के जयकारों से पूरा माहौल गूंजने लगा।
3: तो वहीं आपको बता दें, इस दौरान पुलिस बैंड ने भगवान श्री सिद्धनाथ महादेव को सलामी दी। खरगोन के सबसे बड़े इस धार्मिक आयोजन में करीब 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालु भगवान शिव जी की शाही बारात में आस्था और उत्साह के साथ शामिल हुए। इस 58वें शिव डोले का मुख्य आकर्षण भारत दर्शन रहा। इसमें देश की विविध लोक संस्कृति और धार्मिक आस्थाओं की झलक झांकियों के जरिए पेश की गई।

0: गणेशोत्सव के करीब आते ही देश का कोना कोना भक्ति के रंग में रंगता जा रहा है। सूरत, अकोला, मुंबई, दिल्ली से लेकर पटना और लखनऊ तक उत्सव का माहौल है। भगवान को विराजमान करने के लिए अलग अलग स्वरूपों की उनकी प्रतिमाओं को लाने का सिलसिला शुरू हो चुका है।
1: और देखिए, इसी दौरान आस्था के साथ लोग रंग भी साफ नजर आ रहे हैं। आइए देखते हैं इसी से जुड़ी हुई ये खास रिपोर्ट।

0: गणों के अध्यक्ष विघ्नहर्ता लंबोदर देवों के देव महादेव के प्रिय पुत्र गजानन के स्वागत की तैयारियां चारों ओर हैं। हर्ष उल्लास और विधि विधान के साथ एक दंत की प्रतिमाओं के स्वागत की तस्वीरें देश के हर ओर से सामने आ रही हैं। निरंकार गजानन के अनंत आकार स्वरूप की तरह उनकी प्रतिमाओं को भी अलग अलग थीमों में सजाया गया है। मन के भाव भले ही एक हो पर उनके स्वागत के तरीके अनेक हैं। लग रहा हो मानो शिव बारात निकली हो। देव देवानंद नर किन्नर हर कोई गजानन के स्वागत में जैसे धरा पर उमड़ आया हो। जुलूस के बीच कलाकार और युवा तरह तरह के करतब दिखा रहे हैं। इस जुलूस के पीछे भव्य स्वरूप में गजानन पधार रहे हैं। विशाल केसरिया ध्वजों से सजे रथ पर सवार विघ्नहर्ता ढोल नगाड़ों और जयकारों के बीच उन्हें विराजमान कराया जाएगा। भक्तों के इंतजार के दिन अब करीब आ रहे हैं। 14 सितंबर को पंडालों मंदिरों और घरों में गजानन अलग अलग स्वरूपों में विराजमान होंगे, लेकिन उनके आगमन की तैयारियों को लेकर अभी से रौनक बरकरार है। आस्था और उत्सव का ऐसा ही संगम अकोला में भी नजर आया। यहां बाप्पा की भव्य एंट्री देखने को मिली। ढोल ताशे डीजे और आतिशबाजी के बीच निकाली गई बाप्पा की शोभा यात्रा में भक्ति के साथ लोक रंग भी दिखाई दे रहा था। यहाँ गजानन अकेले नहीं पधारे हैं, बल्कि उनके साथ पूरा शिव परिवार भी विराजमान है। भव्य दिव्य इस यात्रा को देखने के लिए सड़कों पर भीड़ उमड़ पड़ी। बाप्पा की सवारी आगे बढ़ी तो पूरा माहौल गणपति बाप्पा के जयकारों से गूंज उठा। ढोल ताशों और डीजे की धुन पर भक्त जमकर थिरके, हाथों में भगवा झंडा लेकर युवा और श्रद्धालु नाचते नजर आए। बाधाओं और संकटों का नाश करने वाले विघ्नहर्ता गजानन के स्वागत के लिए हर ओर उत्सव का माहौल है। ये कुछ तस्वीरें साक्षी हैं उस महाउत्सव की, जिसमें जल्द ही पूरा देश रंगा नजर आने वाला है।
1: अकोला में पहली बार जो है महाराष्ट्र के बाहर मतलब गुजरात के वडोदरा से ये भव्य 30 फीट की जो झांकी के साथ बाप्पा की फूटी है वो आई है और जिसकी जुलूस में हम भी शामिल हो रहे हैं। धनंजय साहब ने गुड न्यूज सुने अकोला।
2: और चलिए लंच टाइम में यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
4: सास बहू और बेटियां में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में ड्रामा अनलिमिटेड। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

0: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती है। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
1: चलिए क्यूबा की तस्वीरें देख लीजिए। जोहाना उरांगा ने मिस टीन्स इंटरनेशनल का खिताब यहां पर अपने नाम कर लिया है। जयपुर में इस प्रतियोगिता का भव्य आयोजन हुआ। इस प्रतियोगिता में दुनिया के तमाम देशों की प्रतियोगियों ने हिस्सा लिया। फाइनल मुकाबला भी कांटे का था। इस मुकाबले में क्यूबा की जोहाना उरांगा ने मिस टीन्स इंटरनेशनल का खिताब अपने नाम किया। और देखिए नामीबिया की चैंटिल बोरेन ने भी दूसरा स्थान हासिल किया, जबकि पराग्वे की जूलियाना ओकारिस तीसरे स्थान पर रही।
2: Honestly, I can't believe it. I am so grateful and I just want to thank everyone that supported me. Thank you to my parents, my whole team. I am really grateful and I can't believe it. I'm so excited. And as your new Miss Teen International 2026, I promise I will give the best of me to you guys. Thank you.
1: नासा ने रोमन स्पेस टेलीस्कोप को फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है और ये टेलीस्कोप पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर L2 पर स्थापित किया जाएगा, जहां से ये ब्रह्मांड के बड़े हिस्से का सर्वे करेगा।
3: 3, 2, 1, ignition and lift off. Go Falcon Heavy and go Roman Space Telescope.
4: ये अंतरिक्ष की अनंत गहराइयों में झांकने की कोशिश है। ये वो पल है जब नासा ने अमेरिका के फ्लोरिडा में मौजूद कैनेडी स्पेस सेंटर से नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च किया। इंसान की बनाई ये विशेष आंख पृथ्वी से करीब 15 लाख किलोमीटर दूर अंतरिक्ष के विस्तार को समझने की कोशिश करेगी। भारतीय समय के अनुसार रविवार शाम 4:57 पर रोमन स्पेस टेलीस्कोप को फाल्कन हेवी रॉकेट के जरिए स्पेस में लॉन्च किया गया। इसे अंतरिक्ष में अपनी मंजिल तक पहुंचने में करीब 1 महीने का समय लगेगा। खास बात यह है कि रोमन टेलीस्कोप किसी सामान्य सैटेलाइट की तरह पृथ्वी की परिक्रमा नहीं करेगा। इसे सूर्य और पृथ्वी के L2 एरिया के आसपास चुनी गई ऑर्बिट में रखा जाएगा, जहां से ये इंसानी दुनिया को अंतरिक्ष के विशाल नजारे की तस्वीर भेजेगा। दिलचस्प ये भी है कि रोमन टेलीस्कोप स्पेस में पहुंचते ही तुरंत काम शुरू नहीं करेगा, पहले ये 3 महीने की कमिश्निंग प्रक्रिया पूरी करेगा। इस दौरान इंजीनियर टेलीस्कोप के सिस्टम और उपकरणों को सक्रिय करने के साथ उनकी जांच करेंगे। सभी सिस्टम ठीक से काम करने की पुष्टि होने के बाद इसे वैज्ञानिक अभियानों के लिए तैयार किया जाएगा। नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप को ब्रह्मांड में किसी एक खगोलीय पिंड पर फोकस करने के बजाय अंतरिक्ष के बेहद बड़े हिस्से का सर्वे करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका 2.4 मीटर का प्राइमरी मिरर आकार में हब्बल स्पेस टेलीस्कोप के मिरर के बराबर है, लेकिन ये एक बार में हब्बल के मुकाबले 100 गुना बड़े एरिया का सर्वे कर सकता है। इस मिशन का मकसद ब्रह्मांड की दो बड़ी पहेलियों डार्क एनर्जी और डार्क मैटर की स्टडी करना है। इसके अलावा ये आकाश गंगाओं के विकास को समझने और हमारे सौरमंडल से बाहर मौजूद ग्रहों यानी एक्सोप्लैनेट्स की खोज में भी मदद करेगा। रोमन स्पेस टेलीस्कोप से जुड़ा सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि ये सबसे कम समय में ब्रह्मांड के विशाल हिस्से से डेटा जुटा सकेगा। इससे ब्रह्मांड का विशाल नक्शा तैयार होने की उम्मीद है, जिससे स्पेस साइंस से जुड़े कई जटिल सवालों के जवाब दुनिया को मिल सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: और इसी के साथ लंच टाइम में फिलहाल इतना ही,
5: और चलिए इसी के साथ हम दोनों को इजाजत दीजिए। अच्छे और पॉजिटिव खबरें दिन भर जा रही हैं, आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथ पेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
10: नौसेना की ताकत में हुआ इजाफा, मुंबई में दूसरा स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट पोत, निपुण हुआ कमीशन, समुद्र में गोताखोरी और जटिल अभियानों को देगा अंजाम। बाढ़ के बीच नेपाल पुलिस को बड़ी कामयाबी, कृषि विकास बैंक की शाखा से 50 करोड़ रुपए का सोना बरामद, 1.5 करोड़ कैश भी सुरक्षित किया गया ट्रांसफर। धूमधाम से मनाया जा रहा है कजरी तीज का पावन त्योहार, महिलाएं रख रही हैं पति की लंबी उम्र, अखंड सौभाग्य और वैवाहिक जीवन की सुख शांति के लिए व्रत। अमान पंचांग में आज सावन का तीसरा सोमवार, संभाजी नगर में निकाली गई भव्य कांवड़ यात्रा, आस्था और संस्कृति के दिखे रंग। भारी बारिश के बावजूद उत्साह से जारी है केदारनाथ यात्रा, अभी तक 14,73,000 से ज्यादा भक्त कर चुके हैं दर्शन सितंबर में, मौसम ठीक होने पर भक्तों की संख्या बढ़ने की उम्मीद।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम
10: आपदा में देवदूत बने भारतीय नौसेना के जवान, 18,600 फीट पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर एक मरीज की जान बचाई। गैर जरूरी सामान हटाकर और कम ईंधन लेकर हेलीकॉप्टर का वजन किया गया कम, पायलट्स ने सटीकता साहस और दृढ़ संकल्प के साथ बचाव कार्य को अंजाम दिया। बचाव अभियान में भारतीय सेना ने दिया कुशलता, साहस और संवेदना का एक बेहतरीन उदाहरण, लोगों ने की सेना की तारीफ। चंदौली में बाढ़ में फंसे हुए लोगों के लिए देवदूत बनी पुलिस, चंद्रप्रभा नदी में फंसे 3 लोगों का रेस्क्यू किया गया। औरैया में खेलते हुए कुएं में गिरा 9 साल का बच्चा, फायर ब्रिगेड ने रेस्क्यू अभियान चलाकर बच्चे की बचाई जान। ऋषिकेश में दो वाहनों की जोरदार टक्कर में फंसे चार लोग, एसडीआरएफ ने अभियान चलाकर चार लोगों को वाहन से सुरक्षित बाहर निकाला। मुरादाबाद में वन विभाग ने तेंदुए का रेस्क्यू किया, ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। उत्तराखंड के बागेश्वर में पहाड़ दर का 70 परिवारों पर मंडराया खतरा। भारी बारिश के बावजूद उत्साह से जारी है केदारनाथ यात्रा, अभी तक 14,73,000 से ज्यादा भक्त कर चुके हैं दर्शन। सितंबर में मौसम ठीक होने पर भक्तों की संख्या बढ़ने की उम्मीद, लोगों से मौसम देखकर यात्रा करने की अपील। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सहित कई राज्यों में आज से फिर सक्रिय होगा मॉनसून, मौसम विभाग ने जारी किया है भारी बारिश का अलर्ट। वाराणसी में हुई भारी बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। भारी बारिश से कई इलाकों में हुआ जलभराव, वाहन चालकों की बढ़ी परेशानी। भारी बारिश से कई घरों में घुसा बाढ़ का पानी, गंगा नदी का भी बढ़ा जलस्तर। रायपुर में भारी बारिश से कई इलाकों में भरा पानी, लोगों की बढ़ी परेशानी। प्रयागराज में फिर बढ़ने लगा गंगा का जलस्तर, निचले इलाके में भरा पानी। गंगा का जलस्तर बढ़ने से झूंसी जौनपुर मुख्य संपर्क मार्ग पर चढ़ा पानी, यातायात हुआ प्रभावित। गंगा का जलस्तर बढ़ने से 25 गांवों का जिला मुख्यालय से टूटा संपर्क, लोगों को सतर्क रहने की अपील। पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर में बढ़ा गंडक नदी का जलस्तर, बैराज से छोड़ा गया 1,72,000 क्यूसेक पानी। प्रशासन ने निचले इलाके में बढ़ाई गश्ती, लोगों से सतर्क रहने की अपील की। चित्रकूट में फिर बढ़ने लगा मंदाकिनी नदी का जलस्तर, खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रही है नदी। मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ने से फिर बाढ़ जैसे हालात बने, कई इलाके पानी में डूबे। बाढ़ में फंसे लोगों का एसडीआरएफ कर रही है रेस्क्यू, लोगों से घरों में रहने की अपील। पुरी में सुबह सुबह हुई जोरदार बारिश, मौसम हुआ सुहाना। रियासी में बारिश के बाद सलाल डैम के खोले गए कई गेट, चिनाब नदी का बढ़ा जलस्तर। चुनौतियों के बीच नेपाल में मिशन जिंदगी जारी, नेपाली सेना ने अब तक करीब 10,000 लोगों का रेस्क्यू किया। बाढ़ के बीच नेपाल पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी, कृषि विकास बैंक की शाखा से 50 करोड़ रुपए का सोना बरामद किया गया, 1.5 करोड़ कैश भी सुरक्षित किया गया ट्रांसफर। हाइड्रो पावर टनल में फंसे हुए मजदूरों के लिए भारत की टनल रेस्क्यू टीम और नेपाल सेना ने मिलकर चलाया बचाव अभियान, खोजबीन जारी है। भारत की 19 सदस्यीय फॉरेंसिक टीम ने नेपाल बाढ़ पीड़ितों की डीएनए पहचान के लिए काठमांडू में काम शुरू किया। नेपाल में लापता हुए मद्रास हाईकोर्ट के पूर्व जज, दिल्ली तमिल एडवोकेट्स एसोसिएशन ने सीजेआई सूर्यकांत को पत्र लिखा, सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए दखल देने की अपील की। नौसेना की अब और बढ़ेगी ताकत, आज बेड़े में शामिल होगा दूसरा स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट पोत निपुण। पोत में आधुनिक गोताखोरी, अंडर वाटर इंटरवेंशन और चिकित्सकीय सहायता प्रणालियां मौजूद, समारोह में नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन शामिल हुए। निपुण का डिजाइन और निर्माण पूरी तरह से भारत में किया गया है, इसे हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम ने बनाया है। गहरे समुद्र में गोताखोरी और जटिल अभियानों को देगा अंजाम। नौसेना की पनडुब्बी बचाव क्षमता का भी मजबूत करेगी। किसी पनडुब्बी में समुद्र की गहराई में संकट में फंसने की स्थिति में पोत बेहद महत्वपूर्ण। गोताखोरों और पानी के नीचे होने वाले बचाव अभियानों को आवश्यक सहायता करेगा उपलब्ध। क्यूबा की जोहाना ओरांगा बनी मिस टीन्स इंटरनेशनल 2026। जयपुर में जोहाना ओरांगा की सिर सजा विजेता का ताज। कई सुंदरियों को पछाड़ कर जोहाना ने जीता खिताब। दुनिया भर से 31 प्रतिभागियों ने मिस टीन्स इंटरनेशनल में लिया था हिस्सा। नामीबिया की चैंटल बोरेन रही फर्स्ट रनर अप। प्रतियोगिता में चैंटल ने हासिल किया दूसरा स्थान। पैराग्वे की जूलियाना ओक्रेस बनी सेकेंड रनर अप। कॉम्पिटिशन में जूलियाना तीसरे स्थान पर रही। अमेरिका की एंड्रिया एल्मेस्टिका थर्ड रनर अप रही। यूएस वर्जिन आइलैंड की डेरलिस निको फोर्थ रनर अप बनी। दिल्ली के द्वारका का नया इस्कॉन मंदिर पहली बार मनाने जा रहा है। जन्माष्टमी का पर्व गोकुल धाम थीम पर मंदिर की भव्य सजावट की गई। कृष्ण जन्मोत्सव के लिए तैयार की गई है भगवान की खास पोशाक। इसे बनाने में करीब 1.5 महीने का वक्त लगा है। जन्माष्टमी पर मंदिर में 5500 से ज्यादा भोग लगाए जाएंगे। इसके बाद ये भोग श्रद्धालुओं को प्रसाद के तौर पर बांटे जाएंगे। इस बार मंदिर में शुगर फ्री प्रसादम भी किया जा रहा है तैयार। इसमें चीनी की जगह खजूर कोकोनट और पाम शुगर का इस्तेमाल होगा। जन्माष्टमी पर 200 किलो का खास केक काटा जाएगा। 108 किलो का केक पूरे दिन श्रद्धालुओं में प्रसाद के रूप में बांटा जाएगा। अकोला में गणपति बप्पा की हुई है भव्य एंट्री। वडोदरा में आई 30 फीट की प्रतिमा की शोभा यात्रा निकली। बप्पा के साथ भोलेनाथ की शादी की झांकी भी निकली। ऋषि मुनि नंदी और राक्षसों के रूप ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। ढोल ताशे और डीजे की धुन पर जमकर नाचे भक्त। भगवा झंडों और आतिशबाजी से पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। इस वीट के बप्पा को देखने के लिए सड़क किनारे भारी भीड़ जुटी। लोगों ने मोबाइल से फोटो वीडियो बनाए और सेल्फी भी ली। रिद्धि सिद्धि गणेश पंडाल में चारों धाम की झांकी हो रही है तैयार। भक्तों को अकोला में ही चारों धाम के दर्शन कराने की तैयारी है। शुभ संयोगों में आज धूमधाम से मनाया जा रहा है कजरी तीज का पावन त्योहार। सुहागन महिलाओं के लिए ये दिन काफी महत्वपूर्ण है। महिलाएं रख रही हैं पति की लंबी उम्र, अखंड सौभाग्य और वैवाहिक जीवन की सुख शांति के लिए व्रत। उज्जैन में ओणम उत्सव की रौनक देखने को मिली। कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन। उत्सव के दौरान नेपाल त्रासदी के पीड़ितों के लिए विशेष प्रार्थना। प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा की कामना। तिरुपति के भगवान वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर के दरबार में पहुंचे कांग्रेस नेता जयराम रमेश। विधि विधान से पूजा अर्चना की। गुजरात की गिर सोमनाथ में तीसरे सोमवार पर उमड़ा आस्था का सैलाब। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। बाबा के भक्तों ने किया बेलपत्र, गंगा जल से अभिषेक। हर हर महादेव के लगाए जयकारे। लखनऊ में सीएम योगी ने जनता दरबार से में सुनी लोगों की फरियाद। जल्द मामलों का निपटारा करने के निर्देश दिए। हरियाणा के कैथल में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आनंदम वृद्ध सेवा आंगन की रखी आधारशिला। एलिवेटेड रोड परियोजना की समीक्षा की। ताशकंद के महात्मा गांधी इंटरनेशनल सेंटर में पीएम मोदी छात्रों से संवाद किया। आज बिश्केक में एससीओ समिट में शामिल होंगे। उज्बेकिस्तान के बाद किर्गिस्तान के दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी, बिश्केक के एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री का हुआ भव्य स्वागत। पीएम मोदी के स्वागत में कलाकारों ने पेश किया पारंपरिक नृत्य। होटल पहुंचने पर वंदे मातरम के नारों से गूंजा माहौल। मां तुझे सलाम की धुन पर युवाओं ने किया योग प्रदर्शन। भगवान शिव की थीम पर सांस्कृतिक नृत्य ने मोहा सभी का मन। पीएम मोदी 26वें एससीओ शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। सुरक्षा, कनेक्टिविटी और अवसर पर भारत की प्राथमिकताएं रहेंगी। पुतिन और अन्य राष्ट्राध्यक्षों से पीएम मोदी की मुलाकात पर निगाहें। तो वहीं छठे विश्व घूमंतु खेलों के उद्घाटन समारोह में भी शामिल होंगे। पहलगाम में छड़ी मुबारक के पूजन और विसर्जन के साथ अमरनाथ यात्रा संपन्न हुई। पहलगाम में छड़ी मुबारक के अंतिम पूजन की रस्म पूरी हुई। अमरनाथ यात्रा के समापन पर श्रद्धालुओं ने विशेष पूजा अर्चना की। पहलगाम में धार्मिक अनुष्ठानों के साथ छड़ी मुबारक का विसर्जन हुआ। सात समंदर पार अमेरिका में बेटी की शादी। तेलंगाना के वेपाल सिंगरम में माता पिता ने ऑनलाइन शादी में निभाई अक्षत की रस्म। स्क्रीन पर बेटी दामाद पर बरसे पवित्र अक्षत। माता पिता ने दिया आशीर्वाद। इकलौती बेटी की शादी ऑनलाइन देखकर भावुक हुए। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में आरपीएफ का एएसआई बना देवदूत। तेजी से दौड़कर प्लेटफॉर्म ट्रेन के बीच फंसी महिला की बचाई जान। राजकुमार संतोषी की नई फिल्म का नाम घातक घुस के मारेगा से सनी देओल की एंट्री हुई। 1996 में रिलीज हुई फिल्म घातक से जुड़े किरदारों की दिखाई जाएगी कहानी। मुसाफिर कैफे की सफलता के बाद विक्रांत मेसी की लगी लॉटरी। फिल्म कर्ण में आएंगी नजर, सलमान खान के साथ स्क्रीन शेयर करेंगे। बिलियनेयर सीरीज में विजय माल्या के रोल में नजर आएंगे अर्जुन रामपाल। नवंबर के अंत में शुरू होगी फिल्म की शूटिंग। हनुमान अंश बनी 2026 की सरप्राइज ब्लॉकबस्टर। 2 करोड़ के बजट में बनी फिल्म ने अब तक 39 करोड़ की कमाई की। टॉक्सिक ने कमाई के करप्पू को पछाड़ा, जननायकन को भी पीछे छोड़ दिया। 6 दिनों में पार किया 200 करोड़ से ज्यादा का आंकड़ा।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम
11: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में ड्रामा अनलिमिटेड। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: नासा ने रोमन स्पेस टेलीस्कोप को फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। ये टेलीस्कोप पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर L2 पर स्थापित किया जाएगा, जहां से ये ब्रह्मांड के बड़े हिस्से का सर्वे करेगा।
4: 3, 2, 1, ignition and lift off. Go Falcon Heavy and go Roman Space Telescope.
5: ये अंतरिक्ष की अनंत गहराइयों में झांकने की कोशिश है। ये वो पल है जब नासा ने अमेरिका के फ्लोरिडा में मौजूद कैनेडी स्पेस सेंटर से नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च किया। इंसान की बनाई ये विशेष आंख पृथ्वी से करीब 15 लाख किलोमीटर दूर अंतरिक्ष के विस्तार को समझने की कोशिश करेगी। भारतीय समय के अनुसार रविवार शाम 4:57 पर रोमन स्पेस टेलीस्कोप को फाल्कन हेवी रॉकेट के जरिए स्पेस में लॉन्च किया गया। इसे अंतरिक्ष में अपनी मंजिल तक पहुंचने में करीब 1 महीने का समय लगेगा। खास बात यह है कि रोमन टेलीस्कोप किसी सामान्य सैटेलाइट की तरह पृथ्वी की परिक्रमा नहीं करेगा, इसे सूर्य और पृथ्वी के L2 एरिया के आसपास चुनी गई ऑर्बिट में रखा जाएगा, जहां से ये इंसानी दुनिया को अंतरिक्ष के विशाल नजारे की तस्वीर भेजेगा। दिलचस्प ये भी है कि रोमन टेलीस्कोप स्पेस में पहुंचते ही तुरंत काम शुरू नहीं करेगा, पहले ये 3 महीने की कमिशनिंग प्रक्रिया पूरी करेगा। इस दौरान इंजीनियर टेलीस्कोप के सिस्टम और उपकरणों को सक्रिय करने के साथ उनकी जांच करेंगे। सभी सिस्टम ठीक से काम करने की पुष्टि होने के बाद इसे वैज्ञानिक अभियानों के लिए तैयार किया जाएगा। नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप को ब्रह्मांड में किसी एक खगोलीय पिंड पर फोकस करने के बजाय अंतरिक्ष के बेहद बड़े हिस्से का सर्वे करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका 2.4 meter का प्राइमरी मिरर आकार में हब्बल स्पेस टेलीस्कोप के मिरर के बराबर है, लेकिन ये एक बार में हब्बल के मुकाबले 100 गुना बड़े एरिया का सर्वे कर सकता है। इस मिशन का मकसद ब्रह्मांड की दो बड़ी पहेलियों डार्क एनर्जी और डार्क मैटर की स्टडी करना है। इसके अलावा ये आकाश गंगाओं के विकास को समझने और हमारे सौरमंडल से बाहर मौजूद ग्रहों यानी एक्सोप्लैनेट्स की खोज में भी मदद करेगा। रोमन स्पेस टेलीस्कोप से जुड़ा सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि ये सबसे कम समय में ब्रह्मांड के विशाल हिस्से से डेटा जुटा सकेगा। इससे ब्रह्मांड का विशाल नक्शा तैयार होने की उम्मीद है, जिससे स्पेस साइंस से जुड़े कई जटिल सवालों के जवाब दुनिया को मिल सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं।
6: खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
3: नौसेना की ताकत में हुआ इजाफा, मुंबई में दूसरा स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट पोत, निपुण हुआ कमीशन, समुद्र में गोताखोरी और जटिल अभियानों को अंजाम देगा। बाढ़ के बीच नेपाल पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, कृषि विकास बैंक की शाखा से 50 करोड़ रुपए का सोना बरामद किया गया, 1.5 करोड़ कैश भी सुरक्षित ट्रांसफर किया गया। धूमधाम से मनाया जा रहा है कजरी तीज का पावन त्योहार, महिलाएं रख रही हैं पति की लंबी उम्र, अखंड सौभाग्य और वैवाहिक जीवन की सुख शांति के लिए व्रत। अमान पंचांग में आज सावन का तीसरा सोमवार, संभाजी नगर में निकाली गई भव्य कांवड़ यात्रा, आस्था और संस्कृति के दिखे रंग। भारी बारिश के बावजूद उत्साह से जारी है केदारनाथ यात्रा, अभी तक 14,73,000 से ज्यादा भक्त कर चुके हैं दर्शन। सितंबर में मौसम ठीक होने पर भक्तों की संख्या बढ़ने की उम्मीद।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम

0: दोस्तों, मैं हूं रिंकी, आप सबकी प्यारी रिंकी भाभी। सीरियल्स के ड्रामे से लेकर रियलिटी शोज और वेब सीरीज की सारी हलचल तक यहां मिलेगी आपको मनोरंजन की हर न्यूज। लेकिन सबसे पहले देखिए आज की हेडलाइंस।
1: सास बहू और बेटियां की एंटरटेनमेंट से भरी गुड न्यूज में आज देखिए, जाह्नवी और निहाल की शादी पर लगेगा ब्रेक, आएगा कातिल वाला ट्विस्ट। मन्नत रचेगी प्लान, होगा धैर्य के सच का खुलासा।
2: उसके बाद में हेलुसिनेशन होने लगेगा और वो सबके सामने अपना सच कबूल कर लेंगे।
1: आरंभी और विश्वास के बीच शुरू होगा थप्पड़ शो।
3: अगर मैंने ये वीडियो नहीं देखा होता तो तुम तो कभी मुझसे कहती नहीं कि तुम मुझसे
1: प्यार के रंग में रंगेंगे रक्षित और अपराजिता।
4: I love you. एक बार नहीं, बार बार कहने जाता। I love you.
5: तुमने अपनी जलन मेरे स्पिलों पे निकाल दी है। ज्यादा भोली बनने की जरूरत नहीं है।
1: राध्या पर फिर लगेंगे इल्जाम, घर में शुरू होगा ड्रामा।
5: तुम माँ नहीं बन सकती, इसमें मेरा क्या दोष है?
1: महादेव जाएंगे जेल, कामयाब होगा मोगरा का प्लान।
6: आओ जी आओ घूमरड़ी खेलवाने, पधारो सा घूमरड़ी खेलवाने।
1: और रति पांडे का दिखेगा अनोखा अंदाज, रति पांडे करवाएंगी फोटोशूट। देखेंगे ये नज़ारे सिर्फ और सिर्फ सास बहू और बेटिया में।

तानवी और निहाल की शादी की रस्में शुरू हो चुकी हैं, लेकिन सीरियल की शादी बिना किसी तमाशे और ड्रामे के पूरी हो जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? अब शादी के शगुन में क्या अपशगुन हुआ है? देखना होगा दिलचस्प।

शादी के शगुन पर लगा ट्विस्ट का अपशगुन। दंगल टीवी के सीरियल मन सुंदर में कहानी में जल्दी जानवी और निहाल शादी के बंधन में बंधने वाले हैं और ऐसे में निहाल और उसका पूरा परिवार पहुंच गया है जानवी के घर पर शादी की रस्में निभाने। दूल्हे राजा तैयार है अपनी दुल्हनिया को अपने साथ घर ले जाने के लिए। ऐसे में दूल्हे राजा का भी आरती कर हो रहा है स्वागत।

0: इस शगुन में अपशगुन तब होता है जब रूहान पूजा की थाली फेंकता है। इसके बाद असली बवाल शुरू होता है जब रूहान निहाल पर लगा रहा है उसके मम्मी पापा के एक्सीडेंट करने का इल्जाम। ऐसे में सभी घर वाले भौचक्का रह गए हैं कि आखिर रूहान ये क्या कर रहा है।
1: रूहान
2: जवाब दो, क्यों किया ये तुमने?
3: ये शादी नहीं हो सकती।
4: क्या किया आपने? हम ठीक तो है।
1: ये क्या है रूहान? ये हमारी जानवी के होने वाले पति हैं। इस घर का होने वाले दामाद, तूने आरती की थाली क्यों गिराई? क्यों?
2: रूहान जवाब दो बेटा, ये क्यों किया तुमने?
3: ये शादी नहीं हो सकती।
1: मुझे भी तो पता चले क्यों नहीं हो सकती है शादी।
3: क्योंकि ये निहाल, ये निहाल ही मेरे मम्मी और मेरे पापा का खूनी है।
5: वो निहाल ही है जिसकी वजह से तूने और मैंने अपनी मम्मी और पापा को खोया।
3: यही है उनका कातिल।
1: और ये तू इतने दावे के साथ कैसे कर सकता है?
5: क्योंकि इसके हाथ में वही टैटू है जो 15 साल पहले उस लड़के के हाथ में था जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ था। देखना है आपको।
0: भाई बात इतनी आगे बढ़ जाती है कि कॉलर तक पकड़ लेता है और फिर नानी रूहान को थप्पड़ जड़ देती है। लेकिन इसके बाद भी ड्रामा खत्म नहीं होता क्योंकि निहाल की दादी ये रिश्ता तोड़कर चली जाती है और निहाल भी रिश्ते से इनकार कर देता है। ऐसे में नानी का हाल बेहाल हो चुका है।
1: अरे
2: रूहान, तेरी वजह से रुचित और निहाल नाराज हो गए, हमारा अपना घर भी खा गया, मेरे निर्दोष माँ-बाप इस दुनिया से चले गए। छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। छोड़ो सर।
1: अरे क्या है पूनम जी, एक टैटू की वजह से आपकी लाठी ने हमारे पोते पर इतना घटिया इल्जाम लगाया जबकि हमारा पोता निर्दोष है, उसने कोई खून नहीं किया है। नहीं, अब आपके घर से तो हमारा रिश्ता नहीं होगा। रखिए आप अपनी जानवी को अपने घर पे।
6: बहन जी मेरी बात सुनो।
1: मेरी बात सुनी है, ऐसी बात नहीं है, जरूर जरूर गलत फहमी हो गई है हमारे रूहान को। आप ऐसे रिश्ता तो नहीं तोड़ सकती ना बहन जी, प्लीज मेरी बात सुनिए। अगर इसका रिश्ता टूट गया तो क्या होगा? तुम समझ सकते हो ना बात को, ये रूहान से बहुत बड़ी भूल हो गई है।
7: सॉरी आंटी, जिस घर में मेरे कैरेक्टर पे शक किया जाए उस घर की बेटी से मैं शादी नहीं कर सकता। चलिए
1: चलिए सब लोग। बहन जी एक मिनट मेरी बात सुनिए। बहन जी हमारे घर का मंडप सजा हुआ है। बहन जी हमारे घर में तो सब लोग आए हुए हैं, सारे रिश्तेदारों के बीच में। बहन जी मेरी बात सुनिए।
8: आपकी शादी होने जाती है और फिर टूट जाती है शादी। मेरा भाई तोड़ देता है शादी क्योंकि उसको लगता है कि निहाल ने हमारे पेरेंट्स को मारा रहता है।
0: भाई ऐसे में जानवी तो बेहोश हो गई है और घर वाले रूहान पर चीख चिल्ला रहे हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो तब आता है जब रूहान के पास उस इंसान की तस्वीर आती है और उस तस्वीर में निहाल है ही नहीं। भाई आपको बता दे कि ये तो है रूहान का डरावना सपना। जी हाँ, वो सपने में ये सब सोच रहा है, हकीकत में तो अब तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है।
9: रूहान भाई ने सपना देखा है कि अगर वो रिवील कर देंगे कि निहाल वही

0: जी से मेरी शादी दी होगी। हाँ, क्योंकि मैंने देखा कि जो बड़ी नानी है वो चिल्ला रही है रूहान भाई पे। रूहान भाई बोल रहे कि निहाल ने मारा है मौसी और मौसा जी को, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा शॉकिंग न्यूज़ है ना, बिकॉज मुझे तो नहीं पता था कि निहाल ने मर्डर किया है। और दूसरी चीज़ ये है कि वो भी शॉकिंग है कि उन लोगों ने रिश्ता तोड़ दिया मुझसे। तो ऐसा रूहान भाई को लगता है कि अगर मुझसे रिश्ता टूट गया तो मैं बेहोश होगी कि नहीं होगी, बट आई होप कि हो जाए क्योंकि जानवी और निहाल का जो रिलेशन दिखाया है इन लोगों ने, काफ़ी अच्छा बॉन्डिंग दिखा रहे हैं। मुझे लगता है कि शादी हो जानी चाहिए दोनों की।
1: तो भाई अब देखना होगा कि शादी में कौन से ड्रामे होते हैं और क्या रूहान सच बयां करता है या नहीं। मुंबई से कैमरामैन सिद्धेश आजगेकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
2: डॉक्टर रूहानी को अपने ससुर नागेश्वर से धमकी मिली है। एक तरफ जहां रूहानी को घर छोड़ने का फरमान मिला है, तो वहीं दूसरी तरफ मिली है डिग्री जलाने की सजा। ऐसे में क्या होगा रूहानी का फैसला, चलिए देखते हैं सीरियल इश्क जुनूनी।
3: गुरु को पड़ा थप्पड़, बाल बाल बचे कुसुम और रूहानी।

नागेश्वर का नया षड्यंत्र। दंगल टीवी के सीरियल इश्क जुनूनी में भाई कुसुम ने फैसला कर लिया है कि वो फिर एक बार अपने ससुराल लौटेगी, यानी कि अपने पति नागेश्वर के पास। लेकिन गुरु, रूहानी और आरोही तीनों ही इस बात को नहीं मान रहे हैं। तभी तो भाई गुरु ने बेहद मनाने की कोशिश की, लेकिन उसके बदले उसे पड़ा थप्पड़, और वो भी उसकी माँ कुसुम ने उसे थप्पड़ जड़ दिया।

0: सभ्य सिद्ध में हमारे संस्कारों को तुमने शर्मसार कर दिया। हाँ, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी अपने पापा और अम्मा के साथ ऐसा घटिया व्यवहार करने की? अरे हम मर रहे थे तो हमें मरने देते। हमें बचाने के लिए ममता का गला क्यों घोटा तुमने? तुमसे हमें ये उम्मीद नहीं थी गुरु। और रूहानी, तुमने भी हमें कुछ नहीं बताया। हम जा रहे अपने पति के घर। कहा था ना तुमसे, जिस घर में डोली में आए हैं अर्थी भी वहीं से उठेगी हमारी। हम जाएंगे, जरूर जाएंगे, फिर चाहे तुम्हारे पापा हमें अपनाए या ना अपनाए, चाहे उस चौखट पर हम मरे क्यों ना जाए, पर तुम दोनों अपने छोटे दिला से लेके हमें बचाने नहीं आओगे, समझे?
1: लेकिन भाई, एक बेटे का प्यार ही होता है, भले ही वो अपनी माँ से कितना भी धुतकारा जाए, वो उसे समझाने या उसका साथ देने की पूरी कोशिश करता है, और गुरु भी आज यही करते हुए नजर आए।
0: हमारा संसार, हमारा सुहाग, हमारा परिवार, सब कुछ तो चल चुका है, हमारी सांसें भी चली जाती तो क्या ही हो जाता।
2: हाँ, जो दरवाजा पहले से ही बंद है उसे खटखटा कर का फायदा? जिस इंसान ने अपनी बेटी को नहीं अपनाया, अपनी बहू को नहीं स्वीकारा, अपने बेटे को छोड़ दिया, अपनी पत्नी को त्याग दिया, उसके लिए अपना खून काहे सुखा रहे हैं?
0: हमारे पापा भी बहुत गुस्से में, उन्हें हम समझाएंगे कि रिश्तों को जिद की बलि नहीं चढ़ाया जाता है। हमें जाने दो, हम समझाएंगे।
2: माँ आप समझ का ही नहीं रही हैं, वहाँ आपको बेइज्जती के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। एक माँ अपने बेटे को छोड़कर अपने पति के पास जा सकती है, पर एक बेटा अपनी माँ को दहलीज का अकेला कभी नहीं छोड़ेगा। जहाँ उसे पता है उसकी माँ का अपमान होगा, इसीलिए हम भी साथ चलेंगे आपके। चलो चलते उस इंसान के पास जिसे ना तो रिश्तों की कदर है तो ना ही अपनों की।
0: हमारा गुस्सा ना बिल्कुल तुम्हारे पापा की तरह,

0: हाँ, हमने अपने पापा का काम और नाम दोनों छोड़ दिए। बड़ी कोठी फिर कभी नहीं जाएंगे, लेकिन यही जिद है ना अगर आपकी, तो आपको अकेला भी नहीं जाने देंगे। हम भी आपके साथ चलेंगे उस घर में, उस दुनिया में। पर एक बात आप अच्छे से समझ लीजिए, अगर हम उधर गए तो हमें हथियार उठाना होगा, कंपाउंडर को अपनी डॉक्टरी की डिग्री जलानी होगी, और आरोही इसके साथ तो भगवान ही जाने का होगा।
1: तो उन्हें लेकर हम घर जा रहे हैं, बट अभी ऐसा रिएक्शन है कि हमने घर के बाहर खड़े होकर मतलब आंदोलन टाइप कुछ बना रखा था कि जब तक आप बुलाओगे नहीं हम घर के बाहर रहेंगे। तो मेरी जो मम्मी है कुसुम, उनका उनकी बॉडी डिहाइड्रेशन हो गई थी, तो उसकी वजह से हॉस्पिटल लेकर गए थे। तो अभी हॉस्पिटल तक का तो यही सीन हुआ है कि उन्होंने बोला कि मुझे घर जाना है, मेरी अर्थी यहीं से उठेगी जहाँ से मेरी डोली उठी थी। तो अभी हम उन्हें लेकर घर जा रहे हैं, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं खुश हो रही हूँ ये चीज़ें देखकर कि हम वापस घर जा रहे हैं, तब कि मेरे पापा ने मुझे घर से निकाल दिया है और बोला है कि अगर इस लड़की से तुम्हें रिश्ता रखना है तो तुम्हें मैं त्यागता हूँ, और उसी घर में वापस जा रहे हैं। तो आरोही खुश क्यों है, ये चीज़ें हैं। तो अभी गाड़ी में कुसुम कह रही है कि आरोही को देखकर पता नहीं क्या रिएक्ट करेगा नागेश, तो उन्हें वो टेंशन हो रही है। तो हम अभी यही सीन कर रहे हैं कि मैं मना कर रही हूँ कि मत मम्मी ऐसा मत करो, मत जाओ, और वो कह रही नहीं नहीं मैं जाऊँगी। तो अभी यहाँ से जाने के बाद, इसके सीक्वेंस के बाद, हम पहुँचते हैं, नागेश सर वहाँ पहले से खड़े होते हैं और वो बोलते हैं कि तुम चूज़ करो, या तो अगर तुम्हें इस लड़की के साथ रहना है तो ये रह सकती है हमारे साथ, गुरु की बहन बनकर, तुम्हारी बेटी बनकर, अगर तुम्हें ये इसके साथ रहना है तो तुम्हें रूहानी को छोड़ना पड़ेगा, अगर तुम्हें अपने बच्चे चाहिए तो तुम्हें रूहानी को घर से निकालना पड़ेगा। तो उनको चूज़ करना होता है कि मैं अपने बच्चों को चुनूं कि किसको चुनूं।
2: ऐसे में जब कुसुम और रूहानी आगे बढ़ रहे होते हैं, देखिए कैसे भाई उनका एक्सीडेंट होते होते बच गया। भाई ये सारी प्लानिंग नागेश्वर की ही है, लेकिन यहाँ पर गुरु ने कुसुम और रूहानी की जान बचा ली। भाई इतना ही नहीं, जब नागेश्वर ने पूरे परिवार को ही घर से बाहर निकाल दिया है, तो देखिए कैसे कमाने का गुरु ने नया तरीका सोचा और उसने शुरू किया पानी पूरी का ठेला, जिसमें उसका साथ देती हुई नजर आ रही है रूहानी। लेकिन ये सब देखकर भी नागेश्वर पीछे नहीं हटा। देखिए कैसे उसने अपने गुंडे भेज दिए दोनों पर अटैक करवाने के लिए, लेकिन यहाँ भी रूहानी ने गुरु की जान बचा ली।

0: ऐसे में अब देखना होगा कि क्या नागेश्वर कामयाब हो पाएगा या फिर रूहानी और गुरु उसे मात दे देंगे। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
1: सीरियल मन अति सुंदर में एक बार फिर लगे राध्या पर इल्जाम और दादी के आगे बेबस दिखी राध्या। क्या ये दादी की चाल है या फिर इस बार वाकई हुई है राध्या से गलती, चलिए देखते हैं।
2: तुमने अपनी जलन मेरे स्पिलों में निकाली है, ज्यादा भोली बनने की जरूरत नहीं है।
3: एकता ने लगाए राध्या पर इल्जाम।
2: तुम मां नहीं बन सकती, इसमें मेरा क्या दोष है।
3: देवरानी और जेठानी में शुरू हुई बहसबाजी।
4: हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया।
2: इतना झूठ बोलोगी तुम।
3: सबके सामने राध्या को बेइज्जत कर दी एकता।
2: तुम क्यों मेरे बच्चे और मेरी खुशियों के पीछे पड़ी हुई हो।
3: दंगल टीवी के सीरियल मन अति सुंदर में हाई वोल्टेज ड्रामा हो रहा है, जहां पर आज एकता को शौक लगते लगते बचा। असल में एकता मम्मी बनने वाली है और ऐसे में वो अपना हर कदम फूंक फूंक कर रखती है, लेकिन जब वो कमरे में गई तो यहाँ पर देखिए कैसे इस तकिए पर गुड़िया गिरी और शॉर्ट सर्किट हो गया, जिसका इल्जाम एकता राध्या पर लगा रही है, क्योंकि एकता ने राध्या को ही कमरे में जाते हुए देखा था। राध्या कह रही है कि उसने कुछ भी नहीं किया है, लेकिन कोई राध्या की बात सुनने को तैयार नहीं, खास करके एकता।
2: ये क्या किया तुमने? ये क्या किया है?
4: हम कुछ समझे नहीं।
2: अरे दादी ने तुम्हें पिलो सही करने के लिए बोला था, तुमने उसमें करंट डाल के दे दिया।
4: नहीं काफी, अभी क्या बोल रही है, अब इस उल्टा इलेक्ट्रिशियन को बुला के इसकी लाइट।
2: अरे चुप हो जाओ, कोई बकवास नहीं सुननी है तुम्हारी। अरे वो तो भला हो दादी का जो ये गुड़िया लेके आई और गलती से ही गुड़िया उस तकिए पे पहने गिरा। वरना सोचिए जो हाल इस गुड़िया का हुआ है वो हाल मेरा होता तो इतनी बुरी तरीके से अगर मुझे करंट लगता तो हमारा बच्चा एजी। ज्यादा भोली बनने की जरूरत नहीं है, तुमने अपनी जलन मेरे स्पिलों में निकाली है। देखिए देखिए आप सब लोग देखिए कितने बुरी तरीके से इसे फाड़ा है। ऐसा क्यों किया तुमने राध्या?
4: नहीं नहीं भाभी, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया।
2: इतना झूठ बोलोगी तुम।
3: बहन की बहसबाजी चल ही रही होती है कि आग में घी डालने का काम करती है दादी।
5: तुम राध्या पे इतना घटिया इल्जाम कैसे लगा सकती हो? वो भला ऐसा क्यों करेगी?
2: सॉरी मम्मी जी, लेकिन आपको तो इसकी कोई गलती नजर ही नहीं आती है। मैंने खुद इसको अपने कमरे से बाहर निकलते हुए देखा था, और उसके बाद जब मैं अपने कमरे के अंदर गई तो ये एम जी का लाया हुआ तोहफा, ये पिलो, ये फटा हुआ था। पूछिए इससे क्यों गई थी मेरे कमरे में।
4: भाभी हम मानते हैं आपके कमरे में गए, लेकिन आपकी एक इयररिंग बाहर गिरी पड़ी थी, बस उसे कमरे में रखने के लिए।
2: फिर से एक झूठ।
6: बस करो राध्या, तुम्हारी तो बात पर यकीन करना मुश्किल हो गया है। ऐसा लगता है तुम इस एकता की जान की दुश्मन बन गई हो।
7: दादी आप राध्या पर इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकती हैं?
2: तुम मां नहीं बन सकती, इसमें मेरा क्या दोष है। तुम क्यों मेरे बच्चे और मेरी खुशियों के पीछे पड़ी हुई हो।
4: तुम हमको कैसे यकीन दिला कि हमने ये सब नहीं किया है।
3: लेकिन आखिरकार सच का खुलासा तो हो ही जाता है जब अहम बताता है कि ये उसी की वजह से हुआ है।
8: हाय, वो एक्चुअली मैं एक स्टोर में गया था, वहाँ पर ये पिलो मुझे सस्ते दामों में मिल गया। हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट हो इसलिए सस्ता मिला।
9: अरे इतनी मेहनत करती है दादी कुछ ना कुछ षड्यंत्र के लिए कि भाई राध्या को फंसाए, राध्या को सबके सामने मतलब नीचा दिखाए और सब लोग उससे नफरत करें, सब उसको घर से निकालने की प्लानिंग करती है। कहीं ना कहीं पता नहीं राध्या की किस्मत क्या तेज है, कोई ना कोई आ जाता है राध्या को बचाने के लिए। मतलब कुछ ऐसा हो जाता भी, इतने अच्छे से स्मूथली सब कुछ चल रहा था कि मैंने कोशिश करी गुड़िया जलाने की, इलेक्ट्रिक शॉक की, और प्लानिंग एकदम फर्स्ट क्लास चल रही थी। एकता भी मेरे साथ हो गई क्योंकि उसका मैंने यूज़ किया एकता का, कि एकता की प्रेगनेंसी के ऊपर उसको इमोशनली मैंने अपनी तरफ ले लिया और एकता भी मेरे साथ हक में हो गई थी कि हाँ चलो ठीक है, राध्या गलत है, राध्या की वजह से ये सब हो रहा है, राध्या जलती है मेरे से, मेरी प्रेगनेंसी। एकता को ये विश्वास हो गया था दादी की वजह से कि राध्या एकता की प्रेगनेंसी से बहुत ज़्यादा जल रही है और उसकी खुशी में खुश नहीं है। लेकिन अब ये आ गया एकता का अहम, उसने आके बोल दिया नहीं नहीं मेरी गलती है, शायद ये खिलौने में, तकिए में, इसमें उसमें ये हो गया वो हो गया, मैंने एक सस्ता वाला तकिया ले लिया था तो ये शायद आउटडेटेड था, उसमें शायद बैटरी ठीक नहीं थी, शायद ये था, शायद अहम पे भी मुझे तो बड़ा गुस्सा चढ़ा। लेकिन अल्टीमेटली दादी तो हार नहीं मानती है, वो तो कहती है ठीक है इस बार बच्चू तो बच गई, अगली बार तो नहीं बचेगी।
3: तो भाई ये सारा षड्यंत्र दादी का ही रचा हुआ था राध्या को घर से बाहर निकालने का, लेकिन इस बार ये फेल हो गया। लेकिन दादी हार नहीं मानेगी, वो राध्या के पीछे हाथ धोकर जो पड़ी है, अब देखना होगा कि राध्या कैसे दादी के षड्यंत्रों से बचती है। मुंबई से कैमरामैन सिद्धेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
1: सीरियल तुम देना साथ मेरा में चल पड़ी है रक्षित और अपराजिता के प्यार की गाड़ी, और शुरू हो चुका है दोनों के बीच किस वाला रोमांस।
3: रक्षित अपराजिता और किस, अपराजिता ने किया प्यार का इजहार।
10: I love you. एक बार नहीं, बार बार कहने जाता। I love you.
3: रक्षित के साथ आया वीडियो। स्टॉपलेस के सीरियल ओ हम नवा तुम देना साथ मेरा में आ गया है रोमांटिक ट्विस्ट, जहां पर रक्षित को ये पता चल चुका है कि उसे बचाते वक्त कैसे अपराजिता ने उसे आई लव यू कहा था, और यही वीडियो वो अपराजिता को दिखा रहा है। और अपराजिता भी डंके की चोट पर कह रही है कि वो रक्षित से प्यार करती है।
11: अगर मैंने ये वीडियो नहीं देखा होता तो तुम तो कभी मुझसे कहती नहीं कि तुम मुझसे प्यार करती हो।
10: रक्षित सर, आप
11: मैं समझता हूँ मेरी जिंदगी में प्यार लिखा ही नहीं है, मेरे हाथ की लकीरों में तुम्हारा साथ नहीं लिखा है। तो मैं किसी
3: भाई सच का पता तो चल चुका है, और ऐसे में देखिए कैसे अपराजिता और रक्षित एक दूसरे से मिल रहे हैं, प्यार की हवाएं चल रही है और हो रही है दोनों की आंखें चार।

0: कभी अपराजिता हंसती है तो कभी रक्षित उसे वीडियो दिखाता है और इन दोनों के प्यार की गाड़ी चल पड़ी है। तो भाई ऐसे में अब इन दोनों का प्यार तो परवान चढ़ेगा, लेकिन इस प्यार के बीच कौन से ट्विस्ट आएंगे ये देखना काफी दिलचस्प होगा। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
1: चलिए अब चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर, जहां हम दिखाते हैं आपको एंटरटेनमेंट जगत की रॉकिंग और शॉकिंग न्यूज।
0: पेश है बॉलीवुड ओटीटी और टीवी की रॉकिंग और शॉकिंग खबरें। बात करते हैं सीरियल उड़ने की आशा की, जिसने कंप्लीट कर लिए हैं 900 एपिसोड। एसएमएस सेट पर हुआ सेलिब्रेशन, जहां कास्ट एंड क्रू ने मिलकर केक काटा और मनाया 900 एपिसोड पूरे होने का जश्न। देख लीजिए इस जश्न के ये नज़ारे।

जल्द ही मम्मी बनने वाली है सामंथा रुद्रप्रभु। ऐसे में वो कर रही हैं फ्लॉन्ट अपना बेबी बम। लीजिए ये तस्वीरें।

0: उरी में भारतीय सेना ने 3 मिलिटेंट्स पकड़े।
1: हसन कोई मिलिटेंट नहीं है सर, वो एक हाई वैल्यू इंडियन आर्मी एसेट है।
2: हमें टॉक्सिकोलॉजी स्कैन करना पड़ेगा।
3: नजर डाल लीजिए 108 बेस हॉस्पिटल उरी के नए प्रोमो पर, जहां पर ऑफिसर्स हैं तैयार जंग के लिए और ऐसे में जान दांव पर लगी है नैना और अनिरुद्ध की।
1: आप मुझे जानते हैं ना, मैं आपको जानता हूँ।
4: 108 बेस हॉस्पिटल पर ऐसा हमला करिए कि पूरा देश अपने घुटनों पे आ जाएगा।
0: अनिरुद्ध
5: 108 बेस हॉस्पिटल उरी 5 और 6 सितंबर रात 8 बजे।
3: रश्मिका मंदाना तैयार है फिर से शूटिंग पर लौटने के लिए, भाई उन्होंने कुछ ब्रेक लिया था अपनी हिप इंजरी के चलते और अब वो फिर एक बार काम पर वापस आने को तैयार है।

0: आई कांट
1: स्टंट कंप्लीट नहीं कर पाए गौरव।
2: खतरों के खिलाड़ी का नया प्रोमो देख लीजिए, जहां पर गौरव ने किया डर के नए दौर में अपना बिगेस्ट कमबैक।
3: बढ़िया भाई बढ़िया,
4: शाबाश
5: गौरव भाई का कमबैक, बिगेस्ट कमबैक है टीवी पे।
6: और बढ़िया गौरव।
2: करते हैं क्योंकि सास भी कभी बहुत ही टूकी, भाई इसमें कई सारे नए ट्विस्ट आने वाले हैं, क्योंकि आ रही है मंदिरा, और इस बार मंदिरा का किरदार निभाने वाली है सीनियर एक्ट्रेस अचिंत कौर।

के साथ अमन वर्मा भी कर रहे हैं क्योंकि सास भी कभी बहू थी में कमबैक, जो मंदिरा के भाई और तुलसी के फॉर्मर लवर बनकर आएंगे।

आपको लेकर चलते हैं एक्ट्रेस रति पांडे के फोटोशूट पर, जहां इस फोटोशूट में रति दो अलग तरह के लुक्स में नजर आ रही हैं। चलिए देखते हैं इस फोटोशूट के खास नजारे।

कभी मिले जब हम तुमकी नुपुर भूषण। तो कभी गुस्से वाली हिटलर दीदी, कभी बेगूसराय की कोमल, तो कभी पोरस की रानी अनुसुया, नाम रति पांडे लेकिन अंदाज है बेशुमार। आज रति पांडे का एक अनोखा अंदाज हमें दिखाई दे रहा है। एक तो है राजपुताना वाला अंदाज।

0: और दूसरा अंदाज है बिल्कुल रज्जो वाला, हीरोइन वाला, जहाँ वो बन गई हैं हीरोइन की करीना कपूर। रति पांडे के अलग अंदाज दिखाई दे रहे हैं उनके इस खास फोटोशूट में, जहां पर उनका ही सतरंगा अंदाज नजर आया। ग्वालियर के मेकअप आर्टिस्ट उसामा खान कर रहे हैं उनका खास मेकअप, और पूरी स्टाइलिंग के बाद पेश है रति का एक नया अंदाज जो इससे पहले कभी देखने को नहीं मिला। इसके लिए उनका खास मेकअप हो रहा है, खास तरह का कॉस्ट्यूम उन्होंने पहना है। उनकी ज्वेलरी काफी अलग है, कभी राजपुताना तो कभी आज के जमाने की मॉडर्न। देसी होते हुए भी वो आज देसी अंदाज के अलग अलग स्वैग्स को पेश कर रही है। एक है रॉयल स्टैग और एक है थोड़ा मस्ती वाला बिल्कुल बॉलीवुड अंदाज में। तो चलिए चलते हैं रति पांडे के साथ, जो आज सास बहू और बेटियां संग कर रही हैं एक खास मेकओवर वाला डे आउट। तो हिटलर दीदी आ चुकी है एक बार फिर से, मिले जब हम तुमकी नुपुर बनने। रियल लाइफ में पटना की रति पांडे है मस्त मौला, और देखिए कैसे मस्त अंदाज में वो अपना मेकअप शुरू कर रही हैं।
1: एक बार देख लीजिए, दूसरी बार नहीं देखेंगे।
2: बार बार देखे तो
1: रति पांडे आई, रति पांडे इज बैक विद, क्या सनसनी न्यूज चलाओगे अमित?
3: नहीं, हिटलर दीदी लौट आई है।
1: हाँ। यही तुम लोग लगाओगे मुझे पता है।
0: तो सबसे पहले रति के चेहरे का बेस हो रहा है भाई। रति आज दो दो लुक्स लेने वाली है, इसलिए उसामा और उनकी टीम उन्हें दे रही है अलग तरह का बेस और कॉन्टोरिंग।

0: पूरे दो दशक से रति ने अलग अलग किरदार निभाए और इसका नतीजा है कि वो मेकअप में पारंगत हो चुके हैं, लेकिन बचपन से ही उन्हें मेकअप करने का शौक है और आज फोटोशूट के लिए भी वो ओसामा की टीम के साथ मिलजुल कर अपना मेकअप खुद भी कर रही है।
1: मेकअप करने की जर्नी जब मैं आई थिंक 5 साल की थी तो मैं अपने मौसीज बुआज के घर जब भी जाती थी तो दे यूज टू हैव अबंडेंट ऑफ मेकअप किट्स एंड ऑल, बहुत शौकीन थी वो लोग भी, तो मैं हमेशा जाके आई शैडोज वगैरह सब ये सब करामात करके आती थी, तो वहाँ से वो शौक वो चुल चढ़ा और आप मुझे मेरे ब्राउन लिपस्टिक्स के साथ मेरा शूट कर रहे हो और मैं अजीब लग रही हूँ अमित। सो एनीवे फिर उसके बाद ये मेकअप करना हमने मैंने स्पेशली काम करते करते सीखा। आई थिंक फ्रॉम विलेज ऑफ हम टू माई डेफिनेटली रिमेम्बर बिकॉज आई यूज टू लव डूइंग माई आईज दैट टाइम। उस वक्त वो कैरेक्टर ही इतना बढ़िया था एंड इतनी गॉर्जियस कैरेक्टर बोल सकते हैं दैट पीपल यूज टू लुक अप टू नुपुर एंड अबाउट एंड यूज टू आस्क मी पर्सनली ऑल्सो अबाउट माई मेकअप ट्रिक्स एंड माई आई शेडोज कलर, जो कलर मैं पहनती थी कॉस्ट्यूम का उसी हिसाब से मैं अपनी आईज करती थी। सो या आई थिंक मैंने मेकअप मिले जब हम से ज्यादा सीखा।
2: जगमगाती लड़कियां ये झिलमिलाती लड़कियां जिनके दीवाने तुम भी तो हो।
0: रति का बेस हो गया है, कॉन्टोरिंग हो गई है, अब बारी है फोटो के मेकअप की। भाई ये रति का फेवरेट पार्ट है और आज वो एक खास टेक्निक ट्राई करी जिसे ओमरे कहा जाता है। तो भाई क्या है ये ओमरे टेक्निक जो ओसामा और उनकी टीम रति पांडे के चेहरे पर कर रहे हैं इस खास फोटोशूट के लिए?
1: मैंने ऑमलेट सुना था।
3: ओमरे जो हम डार्क आउटलाइन करते हैं और अंदर लाइट कलर रखते हैं उसको ओमरे बोलते हैं, वैसे कि ये
4: तो अभी आप इनको ओमरे कर रहे हैं।
1: नहीं अभी मैं नागिन लग रही हूँ, ऐसा लग रहा है मुझे किसी ने डस्ट लिया, मेरे लिप्स ब्राउन हो गए। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू मर्ज द ब्राउन लाइनर विद सम टिंट इन इट एंड मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा है, थोड़ा सा पिंकिश चाहिए था। सो आई एम जस्ट मिक्सिंग इट की तरह नेचुरल शेड आए लिप्स का। करने की जरूरत नहीं है,
3: देख ही रहे कि देखो वो खुद से अपने लिप्स कर रही है।
1: yeah.
3: और मैं उनको यही बोलता हूँ कि जो उनके स्किन पे जा रहा है आप वो चीज यूज करो, जैसे कि किसी को न्यूड लिपस्टिक नहीं अच्छी लगती उसके फेस पे तो आप वो यूज मत करो, डार्क ही लगाओ, और जिसके फेस पे अच्छी लगती है आप वो लगाओ, न्यूड लगाओ। और ओमरे सबके फेस पे अच्छा लगता है क्योंकि वो ज्यादातर अच्छा ही लगता है। आप पेंसिल यूज करते हो आउटलाइन में एंड उसको मर्ज करते हो फिर अंदर से फ्लिंग करते हो लिपस्टिक की, तो आपकी लिपस्टिक बहुत खूबसूरती से दिखती है। थोड़ा थोड़ा सीखा जा सकता है क्योंकि
1: आप हमसे सीखिए ना, आप रील्स को क्यों बढ़ावा दे रहे हैं, हम लोग हैं किस लिए? आप मुझसे मेकअप सीखिए।
3: हाँ मैम सिखाएंगी आपको मेकअप।
1: एग्जैक्टली, तो मैं बहुत ही जल्द अपने मेकअप ब्लॉग्स के साथ आने वाली हूँ और आपको ओमरे लिपस्टिक दिखाऊंगी लगाते हुए करते हुए। सी दिस इज कॉल्ड दिस ओमरे इफेक्ट।
3: ये काफी ज्यादा ट्रेंड भी है, लोग सर्च भी करते हैं कि ओमरे लिपस्टिक कैसे लगाई जाती है, ये चीज है, बट उनको नहीं पता है कि एक आउटलाइन और अंदर से फ्लिंग करना है तो वो बन जाएगा ओमरे।
1: निकलेगा थोड़ा
4: ओमरे।
3: हाँ जैसे कि ये
4: लिप फिलर।
1: हमें लिप फिलर्स और सब की जरूरत ही नहीं है, ये पैदाइशी ऐसी हूँ मैं।
0: फोटो के मेकअप के बाद अब पारी है सबसे इम्पोर्टेंट फीचर आंखों के मेकअप की। भाई ओसामा और उनकी टीम आज उनके विंग वाले आई लाइनर्स बना रहे हैं, उन्हें पुरानी फिल्मों की हीरोइन वाला लुक दे रही हैं। वैसे लति अपना मेकअप खुद ही करती हैं और देखिए आईज को कैसे सवार रही हैं। और खासकर आई लाइनर लगाने की ट्रिक तो लति बखूबी जानती है।
1: एक मेकअप जो क्या बोलते हैं, हैक बोलते हैं कि यहाँ से विंग स्टार्ट कीजिए, मैं तो हमेशा शुरू से ही यहाँ से करती हूँ एंड आई गेट अ परफेक्ट विंग, आई डोंट नो हाउ।
3: वो सही बताते हैं,
1: वो सही बताते हैं, वेरी गुड। हम गलत ही करते थे लेकिन फिर भी सही हो जाता।
3: बट क्या रहते हैं, आप यहाँ से आउटर से जो विंग बनाते हो ना तो आपके दोनों विंग बराबर से बनते हैं, और अंदर से जैसे हम ऐसे खींच के बनाते हैं ना फिर हमारे विंग ऊपर नीचे हो जाते हैं, इसलिए यहाँ से थोड़ा सा ड्रॉ कर लो फिर उसके बाद में आगे से उसको जोड़ो ना तो वो विंग प्रॉपर आता है।
0: देखो ऐसे
1: मैं गाड़ी में मेकअप करती हूँ, इफ आई गेट लेट माय शूट
4: तो ये आईलाइनर गाड़ी में लग जाता है।
1: आईलाइनर जब सिग्नल होता है तब। सो आई वेट फॉर द सिग्नल, इफ नॉट तो फिर मैं शूट पे आईलाइनर कर लेती हूँ। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे लैशेस।
0: रति के इस खास मेकअप के लिए आईज पर बहुत मेहनत की जा रही है और आखिरकार काजल और आईलाइनर के इस्तेमाल से रति का फाइनल लुक रेडी है। अब बारी है कॉस्ट्यूम्स की।
1: I'm not a काजल person at all.
4: You like
1: so, I like nude eyes. Because I have sharp features, तो मैं less makeup prefer करती हूँ। क्योंकि जितना मेकअप ज्यादा लगाऊंगी, कॉन्टोरिंग करूंगी, उतना ज्यादा दिखेगा।
5: ये तो सही है,
1: ये सही, ये बीज नहीं चाहिए
3: बट ये बहुत सुंदर लहंगा है।

फाइनली रति चेंज करके रेडी है, उनका कॉस्ट्यूम उन्होंने पहन लिया। अब बारी है ज्वेलरी की। भाई चूंकि उनका लुक थोड़ा राजपूताना रखा जा रहा है, इसलिए अलग अलग ज्वेलरी ट्राई की, कभी बोरला कभी माथा पट्टी, और फाइनली रति ने चूज किया बिना ज्वेलरी वाला ये हीरोइन वाला लुक। जहाँ फिल्म हीरोइन में करीना कपूर का जो हल्कट जवानी वाला लुक है, कुछ कुछ वही लुक आज वो ले रही हैं। ये लुक है देसी लेकिन सबको मदहोश करने वाला। तो फाइनली रति रेडी है अपने इस खास लुक के लिए और उन्होंने कराया अपना फोटोशूट। अपनी अलग अलग अदाएं उन्होंने अपने कैमरे पर पेश की, ढेर सारी रील्स बनाई और अपने फर्स्ट लुक हीरोइन वाला देसी लुक को कम्प्लीट किया। hey!

0: मुझे तो काफी अच्छा लगता है जब भी मैं उसामा के साथ शूट करती हूँ, तो इस बार भी फोन आया तो आई सेड नो तो नहीं बोलूंगी, मैं आई जाती हूँ. सो आई एम रियली एंजॉयिंग दिस डे. आफ्टर 2 years आई थिंक वी आर गेटिंग एसोसिएटेड अगेन, तो मुझे यहाँ इसके साथ शूट करने में बड़ा मजा आता है. मैं बस इंजॉय करने आती हूँ. और आज भी आउटफिट में मैंने थोड़ा सा चेंजेस इसलिए लाया है बिकॉज ये ब्राइडल जरूर है बट एक ब्राइड चुलबुली ब्राइड कैसे सजेगी. यू नो, थोड़ा सा मिनिमल हमने रखा है ज्वेलरी. ये फर्स्ट लुक है और इसी में हम सेकेंड लुक भी ट्राई करेंगे विद ज्वेलरी. एज यू नो कि हमारे इंडियन कल्चर में ज्वेलरी और ब्राइड को मतलब सजा दो, तो विदाउट ज्वेलरी भी अच्छी लग रही है. विदाउट ईयर रिंग्स हमने रखा है. अब जो हम सेकेंड लुक करेंगे उसमें ज्वेलरी रखेंगे, नथ रखेंगे, विच विल एक्चुअली लुक लाइक एन इंडियन ब्राइड.
1: की रिंग के साथ काम किया है आई पे, एंड लिप्स तो हमने बताया था
0: ओम्ब्रे.
1: हाँ, और बेस थोड़ा सा सटल दिया है मैंने. एंड हेयर अभी हम लोग ओपन कर रहे हैं, सेम आउटफिट का भी चेंज करने वाले हैं.
0: ये मेरी चॉइस थी कि मैं हेयर ओपन करके थोड़ा ज्वेलरी मिनिमल करके
1: मैं हेयर टाई करके थोड़ा सा पैक लुक दूं.
0: सूरती है एक इंडियन ब्राइड. एक बार तो देख लीजिए, हीरा मंदी का लुक हमने किया था और इट वाज रियली अ हिट. मेरे काफी सारे रील्स मतलब वायरल हुए, बहुत अच्छा लगा. सो दिस टाइम आल्सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू गेट गुड पिक्चर्स, गुड फुटेजेस, गुड वीडियोस, या And good followers.

अब बारी है रति के लुक नंबर टू की। इसके लिए उन्होंने अपना कॉस्ट्यूम बदला, सर पर दुपट्टा ओढ़ा, माथे पर बोरबेरा लगाया और नाक में नथ पहन ली। इस बार उनके गहने थोड़े हैवी हैं, हाथों में चूड़ियां हैं, हाथों में बड़ी सी अंगूठी है और बिल्कुल राजपूताना अंदाज में

जी हाँ, फिल्म पद्मावत में दीपिका पादुकोण जैसा लुक उन्होंने रिक्रिएट किया है और देखिए घूमर भी किया उन्होंने। राजस्थानी राजपुताना अंदाज में रति ने कराया फोटोशूट, बिल्कुल महारानी वाला लुक लिया है उन्होंने इस कॉस्ट्यूम में। इसके साथ इन्होंने उसमें अपने अलग अलग पोजेस दिए और साथ साथ रील्स भी बनाई।

0: तो आप देख ही सकते हैं कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं रति मैम.
1: थैंक यू सो मच. ये एक्चुअली इन्होंने मुझे एक कॉस्ट्यूम ऑलरेडी मैं पहना हुआ था मैंने, तो वो जबरदस्ती मुझे खींच तान के लेकर गए, मुझे फोर्सिबली कमरे में बंद करके मुझे चेंज करवाया गया है. सो और फाइनली जब मैंने देखा कि एक्चुअली ये बहुत अच्छा लुक लग रहा है, एंड हमने शोज में तो काफी ये सारे लुक्स किए हुए हैं, बट काफी सालों बाद मैंने वापस से ये लुक किया है, सो इट्स रियली अमेजिंग. आई मीन आई एम एंजॉयिंग द होल शूट. ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा पैटर्न्स हैं आउटफिट में, प्लस ज्वेलरी इतनी हैवी है तो दुल्हन थोड़ी कम दिखती है, तो हमने अश्योर किया है कि मैं भी दिखूं. हाँ. और
0: क्या रहता है कि जब आप इतनी ज्यादा ज्वेलरी पहनते हैं ना, तो आपको मेकअप सेटल रखना चाहिए. उससे क्या होता है कि मेकअप जब सेटल होता है तो ज्वेलरी और ये सब चीजें सब मिलके वो अच्छा लुक क्रिएट होता है. बट आप वही डार्क लिप्स लगा लोगे और क्या बोलते हैं आई पे बहुत ज्यादा ब्लैक एंड ग्लिटर लगा लेते हैं, तो वो बहुत ज्यादा ओवर हो जाता है. या फिर आप आउटफिट आपका सेटल है तो आप मेकअप थोड़ा सा लाउड करोगे तो चलेगा. जो हमारा आउटफिट है ये हमारा दिल्ली से आया हुआ है, ये आउटफिट आया है हमारा दिबासा भाई, अभी काफी अच्छे डिजाइनर है. आप एम्ब्रॉयडरी देख ही सकते हैं कितनी अच्छी है. एंड ज्वेलरी जो हमारी है ये पाची कुंदन की ज्वेलरी है, ये जो हमारी आई है दिल्ली से, ये भी दिल्ली से आई है बट ये आई है जीजे इंटरनेशनल से.
2: रति पांडे के करियर की बात करें तो जहां मिले जवानों में नूपुर का लुक बिल्कुल सिंपल था, वहीं पर पोरस में रानी अनुसुईया का लुक था बहुत ही रॉयल. और आज इस शूट पर करते हुए रति को अपने सीरियल पोरस की याद आई जो एक कॉस्ट्यूम हिस्टोरिकल ड्रामा था, और वहां पर उन्होंने अलग अलग टाइप के इसी तरह के ऐतिहासिक कॉस्ट्यूम्स पहने थे.
1: वो दिन याद आए, लेकिन पोरस में इस तरह का हैवी गेटअप नहीं था. दो पोरस में काफी हम लोग हैवी वेट लेके 2-2.5 साल तक हमने शूट किया. ज्वेलरी वहां पे ऑलमोस्ट 20-25 kgs के हम लोग हेड से लेके मतलब तो तक हम लोग लदे पड़े रहते थे, आप लोगों ने देखा ही होगा. सो इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू कैरी एवरी डे, वो कैरी करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि ये शूट है तो हमारा 1-2 घंटे में हो जाता है खत्म, तो यू गेट अ रिलैक्सेशन टाइम. बट जब आप शूट कर रहे होते हो ऐसे गेटअप में, इट्स रियली वेरी टैक्सिंग और आपके हेल्थ पे असर पड़ जाता है. तो मैंने बहुत इंजॉय किया पोरस बिकॉज उसके कॉस्ट्यूम, उसकी ज्वेलरी आप अगर देखेंगे तो ओरिजिनल ज्वेलरी, ओरिजिनल स्टोन यूज़ किए गए थे और जिसके लिए काफी अवार्ड्स भी मिले हैं. सो आई थिंक इट वाज अ ट्रेंड सेटर एंड बेंचमार्क फॉर ऑल द कॉस्ट्यूम डिजाइनर्स एज वेल, कि बहुत अच्छे अच्छे कॉस्ट्यूम्स और ज्वेलरी मुझे पहनने को उसमें मिला.
2: जल्द ही रति दिखने वाली हैं एक OTT शो में और साथ साथ कुछ फिल्मों में भी. वैसे उनके मिले जब हम तुम और हिटलर दीदी के फैंस को इंतजार है कि टीवी पर वो कब वापसी आएंगे, तो रति से जान लेते हैं कि कहां दिखने वाली हैं वो.
1: मुझे प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद. मैं ज़रूर टेलीविज़न में अभी नहीं दिख रही हूँ, लेकिन अगर आप लोगों ने चाहा तो ज़रूर मैं टेलीविज़न में वापस आऊँगी. फ़िलहाल मैं कुछ अब वेब सीरीज़ कर रही हूँ, जियो हॉटस्टार में मेरे 2 प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, कुछ फिल्में कर रही हूँ, तो बहुत जल्द मैं आपको दिखने में आऊँगी. बहुत जल्द आप प्रे कीजिए मेरे लिए.

तो ये थी रति पांडे, यानी मिले जब हम तुमकी नूपुर उर्फ हमारी हिटलर दीदी, जो अब एक नए अंदाज में जल्द ही नजर आएंगी कुछ नए प्रोजेक्ट के साथ। ये फोटोशूट बस एक ऐलान है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। मुंबई से अब त्यागी के साथ ब्यूरो।

0: सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है, में अरमान के सामने आई मां के कैंसर वाली बात। घर छोड़ने पर अड़ गई विद्या। क्या विद्या घर छोड़ देगी या फिर घर वाले उसे रोक लेंगे, चलिए देखते हैं।
1: अरमान, विद्या और आंसू, हुआ सच का खुलासा। घर वालों को लगा जोर का झटका।
2: माँ, आप डॉक्टर के पास चलिए प्लीज।
3: अरमान, मैं कहीं नहीं जाऊंगी।
2: आपको चलना पड़ेगा।
3: मैं नहीं जाऊंगी।
2: आपको चलना पड़ेगा। माँ, मैं छोड़िए।
1: स्टार प्लस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में कहानी में नया ट्विस्ट आ गया है, जहां पर घर वालों को ये पता चल चुका है कि विद्या को कैंसर है। ऐसे में सभी घर वाले शौक में तो हैं, लेकिन विद्या घर छोड़कर जाने की बात करती है क्योंकि वो घर वालों पर बोझ नहीं बनना चाहती। ऐसे में अरमान अपनी माँ को रोक रहा है और मनाने की कोशिश कर रहा है, और ऐसे में अरमान का साथ अभीरा और बाकी के घर वाले भी दे रहे हैं, और आखिरकार विद्या को इनकी बात माननी ही पड़ती है।
4: घर आंगन की बातों में उलझ के यूं रह जाती है,
5: अपनी सेहत के ऊपर ध्यान नहीं दे पाती है।
4: हम होंगे तेरे आभारी, खुद पर ध्यान भी दे नारी। अपने रोग की बातों में क्यों शर्म लगे है नारी को,
5: कुछ भी बोल नहीं पाती, क्यों छुपा रही बीमारी को।
4: बिना दवा के जाने पे वो मजबूर नहीं होती,
5: अपने आप ही बीमारी कोई भी दूर नहीं होती।
4: जो ना बोली उन बातों का बोझ बड़ा ही भारी है,
5: ऐसी अनबोली बातें ही बनती दिल की बीमारी है।

0: लाज यदि आए पुरुषों से तो दूसरे रास्ते से जाओ।
1: लेडी डॉक्टरों को जाके अपनी मुश्किल समझाओ।
0: यदि बात करोगे खुल के तो रोग नहीं कोई भारी।
1: बहुत अधिक बढ़ जाए तो शर्म भी है एक बीमारी।
2: हम होंगे तेरे आभारी, खुद पे जान भी दे नारी।
3: मायरा, एनजीओ से आई हुई सारी औरतों में अनाउंसमेंट कर दो।
4: लेडीज, आप सब अपने अपने नाम लिखवा दीजिए। मेरे पापा आप सबके मेडिकल चेकअप स्पॉन्सर कर रहे हैं।

0: ज्यादा हिम्मत करने को नहीं कहूंगा। आप बस डॉक्टर के पास जाने का अपना मन बना लीजिए, हम सब आपके साथ जाएंगे।
1: पर इतने सारे लोग हॉस्पिटल में अलाउड नहीं होंगे। मेरे अंदर डर अभी भी है, लेकिन मैं तुम सबके खातिर डरते डरते जाऊंगी। तुम दोनों ने तो मेरे साथ साथ एनजीओ की लेडीज का भी भला कर दिया।
2: बुरा और भला करने वाले तो कान्हा जी है मां, हम सब सेम ही बोट में तो सवार है। हम सबको डॉक्टर के पास जाने में बहुत डर लगता है, लेकिन हम सब एक दूसरे की हिम्मत बढ़ा सकते हैं और बिना एम्बैरस फील किए इस बारे में खुलकर बात कर सकते हैं।
1: मैं डॉक्टर के पास जाने के लिए तैयार हूँ।
3: इसी के साथ कहानी में एक और नया ट्विस्ट आएगा, जहाँ पर अभीरा मायरा को लेकर होगी परेशान।
4: कपड़े ठीक है, हेयर स्टाइल में इशू था।
1: परफेक्शन, थैंक्स मामा। क्या देख रही है क्यूटी?
2: मंकी कुछ बदला बदला सा लग रहा है चाची साहब।
1: मुझे तो सेम ही लग रही है।
2: नहीं नहीं चाची साहब, कुछ तो डिफरेंट है। ऐसा लग रहा है इसकी लाइफ में लड़का आ गया।
5: सीरियल मन्नत में मनाया जा रहा है जन्माष्टमी का त्योहार। सेलिब्रेशन के बीच मन्नत ने कर दी है धैर्य की मिठाई में मिलावट। क्या इससे कामयाब होगा मन्नत का प्लान और सामने आएगा धैर्य का सच? चलिए देखते हैं।

0: का आइडिया।
1: बेटा धैर्य जी को खिला दे।
0: जाल में फंसेगा धैर्य,
1: उसके बाद उन्हें हेलुसिनेशन होने लगेगा और वो सबके सामने अपना सच कबूल कर लेंगे।
0: क्या कामयाब होगा मन्नत और विक्रांत का प्लान? कलर्स टीवी के सीरियल मन्नत में भाई मन्नत ने ये प्लान बनाया है कि वो जन्माष्टमी के मौके पर धैर्य का पर्दा फाश कर ही रहेगी। तभी तो देखिए कैसे आज वो किचन में इन मिठाइयों में मिला रही है द्रुत सीरम, जिसे खाकर धैर्य के होश उड़ जाए और वो खुद बखुद अपने गुनाह को कबूल कर ले।

0: लेकिन इसी दौरान किचन में होती है धैर्य की एंट्री, जिसके बाद मन्नत थोड़ा सा घबरा जाती है। लेकिन भाई मन्नत तो मन्नत है, देखिए कैसे वो इस सिचुएशन को भी बड़े ही आराम से हैंडल कर लेती है।
1: अब यहाँ पर अकेले क्या कर रही?
2: बांसुरी वाला केक बच्चों के लिए सरप्राइज।
1: तो सही
2: है ना, मैंने सोचा कि आज कृष्ण जी का जन्मदिन है, हमको बांसुरी कितनी पसंद है, मस्ती वाला केक।
1: कमाल है, क्या कमाल का थॉट है, वेरी थॉट फुल बने। एक्चुअली कितना अच्छा बना है कि मेरा मन कर रहा है कि मैं भी आपकी हेल्प करूं, कर दूं क्या थोड़ी सी?
2: करिए ना,
1: सोचा कि मेरा भी कहीं नाम आ जाए छोटा मोटा। मुझे ऐसा लगता है मेरी खिंचाई कर रही है, क्या हेल्प की आप?
0: भाई जैसे तैसे मन्नत ने धैर्य को अपनी बातों में उलझाया और देखिए कैसे उसे किचन से बाहर भी निकाल दिया। तो वहीं दूसरी ओर वो करवा रही है सभी बच्चों की प्रिपरेशन। भाई यहाँ पर एक नाटक दर्शाया जाने वाला है जहाँ पर दिखेगी विक्रांत और धैर्य की वो कहानी जिससे अब तक पूरा परिवार अनजान है।
3: क्योंकि मैं आपको विक्रांत अंकल नहीं, विक्रांत अंकल के डुप्लीकेट अंकल बोला।

0: भी थैंक यू बोलने के ना।
1: मेरे पास ना एक आईडिया।
2: ऐसे में अब मन्नत और विक्रांत का ये प्लान किस तरीके से कामयाब होगा और कैसे धैर्य सभी के सामने अपने गुनाहों को कबूल करेगा, ये देखना काफी दिलचस्प होगा।
1: विक्रांत, मेरे पास ना एक आईडिया। कल जन्माष्टमी, घर पे पेड़े बनते हैं, क्यों ना हम पेड़े में ट्रुथ सीरम मिला दे, सच बोलने की दवाई, और वो पेड़ा धैर्य जी को खिला दे।
2: मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
1: उसके बाद उन्हें हेलुसिनेशन होने लगेगा और वो सबके सामने अपना सच कबूल कर लेंगे।
3: सीरियल डॉक्टर आरंभी में चल रहा है थप्पड़ तमाशा। एक तरफ जहां विश्वास ने उठाया आरंभी पर हाथ, तो वहीं आरंभी ने भी दे दिया विश्वास को करारा जवाब। चलिए देखते हैं ये थप्पड़ ड्रामा।
4: डीसी, क्या लगता है तुम्हारा?
5: चरित्रहीन बहू कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी।
6: बस कीजिए मम्मी जी।
7: आरंभी, माफी मांगो मॉम से।
6: नहीं मांगूंगी।
2: आरंभी विश्वास का थप्पड़ शो। घर में शुरू हुआ नया बवाल।

0: ध्रुव बना आरंभी का साथी।
1: डीसी क्या लगता है तुम्हारा?
2: चरित्रहीन बहू कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी।
3: बस कीजिए मम्मी जी।
4: आरंभी माफी मांगो मॉम से।
3: नहीं मांगूंगी।
0: कलर्स टीवी के सीरियल आरंभी में भैयाज घर में जहां एक तरफ विश्वास ने आरंभी को थप्पड़ जड़ दिया तो वहीं आरंभी भी पीछे नहीं रही। भाई उसने भी विश्वास को मारा जोरदार तमाचा। जरा देखिए तो भाई ये लम्हा देखकर तो डॉली यानी कि विश्वास की माँ के होश

असल में ये सारा माजरा तब शुरू हुआ जब आरंभी पर डिंपल ने लालचन लगाए और ये बात वो खुद के लिए सुन नहीं पाई। बस फिर क्या, जब आरंभी ने डिंपल को पलट कर जवाब दिया तो विश्वास ने उसे माफी मांगने के लिए कह दिया, जिससे आरंभी ने साफ इनकार कर दिया और शुरू हो गया हंगामा।

0: लेकिन इन सारी चीजों में आरंभी के साथ कोई डट कर खड़ा रहा तो वो था ध्रुव, जो आरंभी का सहारा बना। तभी तो देखिए कैसे भगवान के आगे भी इन दोनों ने प्रण ले लिया है कि वो अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे। ऐसे में अब देखना होगा कि कैसा रहेगा विश्वास और उसके परिवार का बर्ताव। आरंभी के लिए मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
1: सीरियल महादेव एंड सन्स में हो गई है, महादेव को जेल और इन सबके पीछे है मोगरा की शातिर चाल। महादेव के जेल जाने से घर वाले परेशान हैं, ऐसे में कैसे होगा मोगरा का पर्दाफाश, चलिए देखते हैं।
2: महादेव को लगी हथकड़ी।
3: हम वादा करते कि हम आपको आपके घर वापस भेजेंगे, लेकिन उसके लिए आपको वही करना पड़ेगा जो हम कहेंगे।
2: मोगरा ने लगाया इल्जाम
3: बिना सवाल के।
4: महादेव जी, आप सबको पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। आपकी बहू मोगरा ने
2: शुरू हुआ के नया केस में तमाशा।
4: एफआईआर दर्ज कराई है।
2: कलर्स टीवी के सीरियल महादेव एंड सन्स में आज हाई वोल्टेज ड्रामा हो रहा है, जहां पर उनकी ही बहू मोगरा ने घर वालों पर दहेज का इल्जाम लगा दिया है ताकि वो सभी जेल जा सके। और ऐसे में मोगरा का पूरा पूरा साथ दे रहा है उसका पति आशीष, जो अपने परिवार के खिलाफ जाकर मोगरा का साथ दे रहा है। ऐसे में पुलिस आ गई है और महादेव को गिरफ्तार कर ये ले जा रहे हैं।
5: हमारी बात तो

0: आशीष को थप्पड़ जड़ देती है।
1: देखो पापा और तुम्हारे भाइयों की पछियों धो रही है।
0: ऐसे में देखिए कैसे दुश्मनों को मिल गया है महादेव और उसके परिवार को ताने कसने का मौका।
2: ये देखो दुनिया वालों, महादेव एंड सन्स का असली चेहरा। पहले ये बड़े घर की लड़कियों को पटाते हैं, फंसाते हैं, शादी करते हैं और उसके बाद दहेज और न जाने किन किन चीजों की वजह से उन्हें प्रताड़ित करते हैं। अरे ऐसे लोगों को तो पहले ही जेल चला जाना चाहिए था। अगर ये लोग पहले जेल चले जाते तो न जाने कितनी लड़कियां प्रताड़ित होने से बच जाती।
3: देखो मुझे तो ऐसा लगता है कि सक्सेसफुल होती तो मैं घर से निकल ही ना पाती, मुझे निकालते ही नहीं और जैसे मेरे प्लान्स हमेशा के लिए कामयाब रहे हैं वैसे ही हो जाते, लेकिन इस बार थोड़ा सा मैं हार गई हूँ और घर से निकाली गई हूँ। मेरी सच्चाई सबको पता चल गई है जिसकी वजह से मुझे पुलिस बुलानी पड़ी और आशीष जी को इन्फ्लुएंस करना पड़ा कि आप मेरी बातें मानो। और मतलब ये भी हमेशा की तरह लाजवंती जी का ही हाथ है इसमें कि तुम पुलिस लेके जाओ, इन पे FIR करो, तो कैसे ना कहीं कुछ ना कुछ करके तुम्हें एक्सेप्ट तो कर ही लेंगे। बट अब वो भी हाथ से चला गया कि एक्सेप्ट तो क्या ही करना था, अब तुम तो पूरी तरीके से बाहर निकल चुकी हो। बट समवेयर डाउन द लाइन व्हाट विल हैपन आई हैव नो आइडिया, बट दैट हिट्स हार्ड।
0: भाई मोगरा की ये चाल तो कामयाब हो गई है, अब देखना होगा महादेव कैसे जेल से छूट कर बाहर आएगा, क्योंकि तभी तो कहानी में नया मोड़ आएगा। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
4: चक के घेरे में आई सूरज और ईशा की ताई माँ, फोन के इस्तेमाल को लेकर क्यों हुआ ताई जी पर शक? आखिर क्यों ताई जी को लेकर मचा है घर में हंगामा? चलते हैं सीरियल पति ब्रह्मचारी के सेट पर।
0: सूरज के निशाने पर ताई माँ, घर में शुरू हुआ नया बवाल। सूरज के ताईमा को ढेर सारे सवाल। दंगल टीवी के सीरियल पति ब्रह्मचारी में आज हाई वोल्टेज ड्रामा हो रहा है, जहां फोन को लेकर शुरू हो गया है बवाल। सूरज आज चेक कर रहा है कि किसके फोन में स्क्रीन टाइम सबसे ज्यादा है और स्क्रीन टाइम सबसे ज्यादा ताई जी के फोन में है। और इस बात पर देखिए कैसे बहसबाजी शुरू हो गई है।
5: लगवा रहा हूँ अनलिमिटेड डेटा प्लान, लगता है जैसे पहले बच्चों को बोला जाता था कि ज्यादा समय फोन पर ना बिताए, अब शायद बड़ों को भी बोलना पड़ेगा कि फोन पर ज्यादा समय मत बिताइए।
6: तो मैं क्या करूँ, तुम सब अपने अपने काम में व्यस्त रहते हो तो मुझे भी तो अपना मन लगाना पड़ेगा ना कहीं।
5: दस घंटे में से 8 घंटे आप सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पर बैठे रहते हैं, यूट्यूब चलाती है।
7: तो देवर जी क्या है ना, मम्मी जी ना पूरे दिन बैठे बैठे ना वो यूट्यूब पे खाने की रेसिपी और आध्यात्मिक प्रवचन सुनती रहती हैं, लेकिन उन दोनों में से कुछ नहीं करती हूँ मुझे ना मम्मी जी।
8: मैं चाय दे रही होती हूँ ताईमा को और पूरन भैया मोनिका भाभी का वो क्यूट रोमांटिक मोमेंट चल रहा होता है, तो तभी सूरज आता है और हम सबको कहता है कि हमने उसने वाईफाई राउटर लगवाने का सोचा है, तो क्योंकि सबके अलग अलग डेटा से बिल भरना उससे अच्छा वाईफाई यूज़ करे सब। तो हम सब कहते हैं कि हम इतना फ़ोन यूज़ ही नहीं करता कोई, और तो क्या ज़रूरत थी इतने पैसे डालने का ये सारी चीज़ें। तो सूरज कहता है कि चलो मैं सबका फ़ोन चेक करता हूँ, स्क्रीन टाइम जो फ़ोन में दिखाता है कितना टाइम यूज़ करते हो। तो मैं साइड में निकलने वाली होती हूँ कि मुझे लेट हो रहा है ये सब मैं बाद में। तो सबसे पहले ईशा का फोन चेक होता है और ईशा के फोन में 7 घंटे स्क्रीन टाइम था। ईशा भी वो सूरज कहती है आप 7 घंटे पुलिस स्टेशन में काम कर रहे हो कह रहे हो और 7 घंटे फोन यूज कर रहे हो। तो फिर मैं वही कहती हूँ कि अरे काम ही सारा पुलिस स्टेशन में ये सारी चीजों से रिलेटेड होता है इसलिए। फिर ताईमा का फोन चेक होता है तो ताईमा के फोन में 10 घंटे मोनिका भाभी बोलने नहीं दे रहा कोई तो 7 घंटे टाइम 10 घंटे स्क्रीन टाइम आता है। तो हम सब वही कह रहे हैं कि 10 घंटे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो

0: मतलब मुद्दा ये है कि ताइमा फिर एंड में कहती है कि आप सब काम पे चले जाते हो तो मैं क्या करूँ, मेरे पास अकेले अकेले बैठे बैठे मैं क्या करूँ। तो ईशा को भी वो जाता है थॉट कि हाँ एक टाइम बाद उम्र हो जाती है तो वो ओल्ड एज सारे लोग हमारे दादा दादी नाना नानी जैसे सास ससुर तो वो सारे अकेले पड़ जाते हैं जो अकेले रह गए। तो ईशा को वही थॉट आता है।
1: खैर ताई जी ने तो अपनी सफाई दे दी, लेकिन बात करें नए ट्विस्ट की तो यहाँ पर आ गए हैं सूरज और ईशा के नए पड़ोसी जिसका लिंक ताई जी से जुड़ा हुआ है। भाई कहीं तो मोनिका को लग रहा है कि यहाँ भूत आ गया है, तो वहीं ताई माँ की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई है क्योंकि ताई माँ का अतीत जो आ गया है।

0: कैसी बातें कर रही हो? भूत होता तो मैं दिखाई देता ना।
1: अरे
2: चक्कर आ गए तो कौन सी बड़ी बात है, हो जाती है तबीयत खराब।
3: हाँ, नया ट्रैक शुरू होने वाला है हमारा, क्योंकि न्यू एंट्रीज हो रही है फिर से, क्योंकि हमारे पड़ोसी में कितने टाइम से कोई था ही नहीं, तो पड़ोसी में हमारे ये कुछ जन एक फैमिली आ रही है, तो कोई नया ट्रैक मोड लेने वाला है। ताइमा से बहुत रिलेटेड है ये ट्रैक, तो लेट्स सी।
4: तो हो जाइए तैयार नए ट्रैक के साथ नए नए ट्विस्ट देखने के लिए। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
5: हम आपको दिखाते हैं एंटरटेनमेंट की दुनिया के अलग अलग रंग और देखते हैं क्या है आज की रॉकिंग और शॉकिंग खबरें।
4: नजर डाल लीजिए इंडियन गेम शो के इन नजारों पर, जहां सेट के बाहर नजर आए भारती, हर्ष, अनीता हसनंदानी, करण पटेल, मनारा चोपड़ा, प्रिंस नरूला और बाकी के कलाकार। इसी के साथ नजर डाल लीजिए इन प्रोमोस पर, जहां गेम है, मस्ती है और फन अनलिमिटेड है।

0: आज इंडियन गेम शो पे वो होगा जो इंडियन टेलीविजन पे पहले कभी नहीं हुआ, प्रिंस नरूला हारेगा।
1: लेट्स गो बॉयज।
2: चलिए जल्दी आइए, काउंटर बंद होने वाला है।
3: बीवी
4: अच्छे से देख,
2: ऐसा क्यों किया उसके साथ?
3: ए मैंने
2: उसको मत मारो।
5: तुमको क्या उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है?
3: गन्ने मुझे मार रही है।

मिस्टर अमन गांधी की बात करें तो उन्होंने क्योंकि सास भी कभी बहू थी और क्योंकि रिश्तों के भी रूप बदलते हैं शो क्विट कर दिए हैं, क्योंकि वो नजर आ सकते हैं बिग बॉस सीजन 20 में बतौर कंटेस्टेंट। ऐसी खबरें आ रही हैं, लेकिन अब तक कोई कंफर्मेशन नहीं है।

पंच टू गेट रिच के सेट के बाहर नजर आए करण जौहर, मलाइका अरोरा, अनायता श्रॉफ, अश्नीर ग्रोवर और कई और सितारे जो पहुंचे इस खास शाम में।

0: कई खबरें आ रही हैं कि जल्द आने वाली है धूम 4 और इसमें नजर आ सकती हैं रानी मुखर्जी, लेकिन अब तक कोई कंफर्मेशन नहीं है।
1: सीरियल्स की दुनिया में आते हैं ढेर सारे ट्विस्ट और जितनी कहानियां उतने सारे ट्विस्ट, तो चलिए देखते हैं कि कौन से सीरियल में आया है कौन सा ट्विस्ट।
2: जहर होने को है।
3: मुफ्ती साहब माफ कीजिएगा, एक बात कहना चाहते हैं। ये शहर भी इस मुबारक मौके पर गुजरे हुए कल की तकलीफ देने वाली यादों को साथ लेकर क्यों चली आ रही हैं?
0: कलर्स टीवी के सीरियल शहर में देखिए कैसे शहर और माहिर एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। भाई शहर आ गई है माहिर के घर अपनी माँ की फोटो लेकर, और ऐसे में कुछ घर वाले हैं जो शहर के लिए बातें कर रहे हैं, लेकिन अब माहिर को इन बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है।
4: हकीकत तो यही रहने वाली है कि शहर कौसर खाला जान की बेटी है। वजूद जो है हमारे वालिदैन से होता है, तो उनको बुला देने की कोशिश तो धोखेबाजी होगी ना। इसलिए हमें खुशी है कि शहर अपनी अम्मी की तस्वीर अपने साथ लाई है। एक तरह से हमारे लिए एक दुआ है।

0: हमसे सच में मंगनी कर लीजिए, झूठी मंगनी का हिस्सा बनकर नहीं, सच में हमारी जिंदगी का हिस्सा बनकर।
1: बहुत खूबसूरत है।
0: हमारी अम्मी की है।
2: जिग्नेश, अगर मैं पूछूं जिग्नेश भाई तुम्हारा नाम क्या है तो बोलते भूल गया।
3: स्टॉपलेस के सीरियल अनुपमा में सभी लोग बैठकर एक साथ राखी बना रहे हैं और राखी बनाते बनाते चल रही हैं इनकी बातें, जहां कुछ पुरानी यादें भी ताजा हो रही हैं और अनुपमा कुछ खास बातें भी बता रही है।
4: कल भाइयों और बहनों का त्योहार है, कल रक्षाबंधन है।
5: तुम्हें रक्षाबंधन के बारे में सब पता है ना? लेकिन एक बात तुम लोगों को नहीं पता होगी कि आज भी हमारे देश में कई सारी ऐसी जगह हैं, कुछ ऐसे प्रांत हैं जहां पर फेरों के समय लड़की से कहा जाता है कि पत्नी अपने पति की परमिशन के बिना कहीं भी आ जा नहीं सकती। लेकिन इस रूढ़िवादी सोच में भी रक्षाबंधन के दिन पत्नी अपने भाई के घर बिना किसी के परमिशन के जा सकती है, सर ऊंचा करके अपने भाई के घर जा सकती है।
6: रियली? भाई और बहन के रिश्ते के बीच सास ससुराल भी नहीं आ सकता है।
7: पता है जब मेरी छोटी थी ना, तब मैं उसे रक्षाबंधन के दिन बहुत छेड़ता था। वो मुझे गिफ्ट में पैसे मांगती थी और मैं उसे लॉलीपॉप देते भगा देता था।
4: क्या बंकू?
8: ओके, तो फिर मैं आपसे लॉलीपॉप भी मांगूंगी। फिर तो आपको पैसे देने पड़ेंगे ना।
4: देखो इसको।
8: पर बंकू भैया, मैं तो लॉलीपॉप में भी मान जाऊंगी।
4: ओले मेरा अच्छा बच्चा।
9: ओहो भाई, ये सब की बातें सुन के ना मुझे भी थोड़ा फोमो टाइप होने लगा है। वो कहते ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट।
10: मिस्टर मिस बटरफ्लाई, वुड यू डू द ऑनर्स, क्या आप डिग्गी अंकल को राखी बांध सकते हो प्लीज?
8: तो ले डिग्गी अंकल, पर अनुमा ने पहले ही बोल दिया था कि आपके लिए राखी बनाओ।
10: थैंक यू।
11: अंश का फोन आया था, कल आने की पूरी कोशिश कर रहा है लेकिन उसके फ्रेंड के पास कोई है नहीं। ईशो, आई एम रियली सॉरी, आई डोंट थिंक वो आ पाएगा।
12: दिस इज नॉट डन।
4: ए छोकरी, त्योहार के दिन दुखी नहीं होते? और आजकल तो तुम बच्चों के पास वो वीडियो कॉलिंग है, फिर वो फटाफट 10-15 मिनट में डिलीवरी घर पे आ जाती है, वैसी वाली सेवा है। तो अपने भाई को राखी भेजो, वीडियो कॉलिंग पे उससे बात करो और त्योहार खुशी खुशी मनाओ।
6: और हमारे यहाँ तो जन्माष्टमी तक ना राखी बांध सकते, तो जब अंश आए तब बांध लेना।
5: और मम्मी, भावेश मामा जी आ पाएंगे ना?
4: हाँ, तो मेरे भाई ने आज तक रक्षाबंधन का एक भी साल मिस नहीं किया है। इस त्योहार पर वो कहीं भी हो मेरे पास आता जरूर है।
6: अच्छा, मैंने भैलू को भी फोन किया था तो उसने मुझे कहा कि हाँ मने रिमेम्बर छे कि कल रक्षाबंधन है, पर वो नहीं आएगा, अब उसकी उम्र हो गई ना, तो अब लंबा सफर वो करता नहीं है।
8: राही दी जो परे दीदी तो आएंगी ना।
3: इसी के साथ श्रुति ने ले लिया है फैसला इंडिया छोड़कर वापस जाने का। अब श्रुति भी जाते जाते करेगी खुलासा।
13: इतनी स्ट्रेटजीज पर सब वेस्ट। मैं US में आदु और अनुज के साथ रहती थी लेकिन उनका दिल तुम्हारे पास। अनुज आज भी तुम्हारे पास है। मैं वापस अमेरिका जा रही हूँ।
14: तुम राही से बहुत प्यार करती हो ना, तो उसे छोड़कर और वो रेस्टोरेंट श्रुति, उसमें तुमने भी तो बहुत मेहनत की।
13: तुम यही जानना चाहती हो ना कि मैं अनुज कैफे बंद कर रही हूँ या नहीं?
15: बहू और बेटियां में आज बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
0: आज बिश्केक में SCO समिट में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी। रूसी राष्ट्रपति से होगी प्रधानमंत्री की मुलाकात, कारोबार और ऊर्जा संकट पर होगी बातचीत। ताशकंद के महात्मा गांधी इंटरनेशनल सेंटर में पीएम ने छात्रों से किया संवाद। छात्रों ने पीएम मोदी की लिखी कविता अभी तो सूरज उगा है का किया पाठ। नौसेना की ताकत में हुआ इजाफा। मुंबई में दूसरा स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट बोट, निपुण हुआ कमीशन। समुद्र में गोताखोरी और जटिल अभियानों को देगा अंजाम। महाराष्ट्र दिल्ली में SIR की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी। चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर चेक किए जा सकते हैं नाम। धूमधाम से मनाया जा रहा कजरी तीज का पावन त्योहार। महिलाएं रख रही पति की लंबी उम्र, अखंड सौभाग्य और वैवाहिक जीवन की सुख शांति के लिए व्रत। अमांत पंचांग में आज सावन का तीसरा सोमवार। संभाजी नगर में निकाली गई भव्य कांवड़ यात्रा, आस्था संस्कृति के दिखे रहा।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें।
0: चुनौतियों के बीच नेपाल में मिशन जिंदगी लगातार जारी। नेपाली सेना ने अब तक करीब 10,000 लोगों का रेस्क्यू किया। बाढ़ के बीच में नेपाल पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। कृषि विकास बैंक की शाखा से 50 करोड़ रुपए का सोना बरामद किया। हाइड्रो पावर टनल में फंसे मजदूरों के लिए भारत की टनल रेस्क्यू टीम और नेपाल सेना ने मिलकर चलाया बचाव अभियान। खोजबीन लगातार जारी। भारत की 19 सदस्यीय फॉरेंसिक टीम ने नेपाल बाढ़ पीड़ितों की DNA पहचान के लिए काठमांडू में काम शुरू किया। नेपाल में लापता हुए मद्रास हाईकोर्ट के पूर्व जज, दिल्ली तमिल एडवोकेट्स एसोसिएशन ने CJI सूर्यकांत को पत्र लिखा, सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए दखल देने की अपील की। आपदा में देवदूत बने भारतीय नौसेना के जवान। 18,600 फीट पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर एक मरीज की जान बचाई। गैर जरूरी सामान हटाकर और कम ईंधन लेकर हेलीकॉप्टर का वजन किया गया कम। पायलट ने सटीकता, साहस और दृढ़ संकल्प के साथ बचाव कार्य को अंजाम दिया। बचाव अभियान में भारतीय सेना ने दिया कुशलता, साहस और संवेदना का एक बेहतरीन उदाहरण। लोगों ने की सेना की तारीफ।
3: चंदौली में बाढ़ में फंसे लोगों के लिए देवदूत बनी पुलिस, चंद्रप्रभा नदी में फंसे 3 लोगों का रेस्क्यू किया। औरैया में खेलते हुए कुएं में गिरा 9 साल का बच्चा, फायर ब्रिगेड ने रेस्क्यू अभियान चलाकर बचाई बच्चे की जान। ऋषिकेश में 2 वाहनों की जोरदार टक्कर में फंसे 4 लोग, एसडीआरएफ ने अभियान चलाकर 4 वाहनों को बाहर निकाला। मुरादाबाद में वन विभाग के द्वारा तेंदुए का रेस्क्यू हुआ, ग्रामीणों ने ली राहत की सांस। उत्तराखंड के बागेश्वर में पहाड़ दरका, 70 परिवारों पर मंडराया खतरा। भारी बारिश के बावजूद उत्साह के साथ जारी है केदारनाथ की यात्रा, अभी तक 14,73,000 से ज्यादा भक्त कर चुके दर्शन। सितंबर में मौसम ठीक होने पर भक्तों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है, लोगों ने मौसम देखकर यात्रा करने की अपील की। उत्तराखंड और हिमाचल समेत कई राज्यों में आज से फिर से सक्रिय होगा मॉनसून, मौसम विभाग ने जारी किया है भारी बारिश का अलर्ट। वाराणसी में भारी बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। भारी बारिश के चलते कई इलाकों में जलभराव, वाहन चालकों की बढ़ी परेशानी। भारी बारिश से कई घरों में घुस गया बाढ़ का पानी, गंगा नदी का जलस्तर भी बढ़ गया। रायपुर में भारी बारिश से कई इलाकों में भर गया पानी, लोगों की बढ़ी परेशानी। प्रयागराज में फिर से बढ़ने लगा गंगा नदी का जलस्तर, निचले इलाके में भर गया पानी। गंगा का जलस्तर बढ़ने से झूंसी जौनपुर मुख्य संपर्क मार्ग पर चढ़ा पानी, यातायात प्रभावित हुआ। गंगा का जलस्तर बढ़ने से 25 गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूटा, लोगों को सतर्क रहने की अपील की। पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर में बढ़ा गंडक नदी का जलस्तर, बैराज से छोड़ा गया 1.72 लाख क्यूसेक पानी। प्रशासन ने निचले इलाकों में बढ़ाई गश्ती, लोगों से सतर्क रहने की अपील की। चित्रकूट में फिर से बढ़ने लगा मंदाकिनी नदी का जलस्तर, खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रही नदी। मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ने से फिर से बाढ़ जैसे हालात, कई इलाकों में पानी भर गया। बाढ़ में फंसे लोगों का एसडीआरएफ कर रही रेस्क्यू, लोगों से घरों में रहने की अपील की गई। पुरी में सुबह सुबह हुई जोरदार बारिश, मौसम हुआ यहां सुहाना। रियासी में बारिश के बाद सलाल बांध के खोले गए कई गेट, चिनाब नदी का बढ़ा जलस्तर। नौसेना की अब और बढ़ेगी ताकत, आज बेड़े में शामिल होगा 2 स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट पोत निपुण। पोत में आधुनिक गोताखोरी, अंडर वाटर इंटरवेंशन, चिकित्सीय सहायता प्रणालियां मौजूद, समारोह में नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन पहुंचे। निपुण का डिजाइन और निर्माण पूरी तरह से भारत में किया गया, इसे हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम ने बनाया है। गहरे समुद्र में गोताखोरी और जटिल अभियानों को देगा अंजाम, नौसेना की पनडुब्बी बचाव क्षमता को भी करेगा मजबूत। किसी पनडुब्बी के समुद्र की गहराई में संकट में फंसने की स्थिति में पोत बेहद महत्वपूर्ण होता है, गोताखोरों और पानी के नीचे होने वाले बचाव अभियानों के लिए आवश्यक। क्यूबा की जोहाना उरांगा बनी मिस टीन्स इंटरनेशनल 2026, जयपुर में जोहाना उरांगा के सर पर सजा विजेता का ताज। कई सुंदरियों को पछाड़कर जोहाना ने जीता खिताब, दुनिया भर से 21 प्रतिभागियों ने मिस टीन्स इंटरनेशनल में हिस्सा लिया था। नामीबिया की शैंटेल बोरन रही फर्स्ट रनर अप, प्रतियोगिता में शैंटेल ने हासिल किया 2 स्थान। पराग्वे की जुलियाना ओकारिस बनी सेकंड रनर अप, कंपटीशन में जुलियाना 3 स्थान पर रही। अमेरिका की एंड्रिया अल्मेस्टिटा थर्ड रनर अप रही, यूएस वर्जिन आइलैंड्स की डेरेलिस निको 4th रनर अप बनी। देश भर में जन्माष्टमी की तैयारियां जोरों पर, दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में की जा रही भव्य सजावट। मोर थीम पर की जा रही है मंदिर की सजावट, बनाए जा रहे भव्य पंडाल। थाईलैंड कर्नाटक बेंगलुरु से मंगाया गया विशेष फूल, मंदिर परिसर में सजावट का काम जारी। भगवान श्री कृष्ण के श्रृंगार की खास तैयारी हो रही, भगवान की विशेष पोशाक और ज्वेलरी खास तौर पर वृंदावन से लाई जा रही। भगवान श्री कृष्ण को जन्माष्टमी पर 1008 प्रकार के लगाए जाएंगे भोग, श्रद्धालुओं में प्रसाद के रूप में वितरित किया जाएगा। दिल्ली के इस्कॉन मंदिर को खूबसूरत रंग बिरंगे लाइटों से सजाया, लाखों की संख्या में भक्त जन्माष्टमी महोत्सव में शामिल होंगे। भगवान कृष्ण के अलग अलग लीलाओं को लाइटों के जरिए दर्शाया गया, 4 सितंबर को मनाया जाएगा जन्माष्टमी। दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में जन्माष्टमी पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, 300 सीसीटीवी कैमरों से होगी श्रद्धालुओं की निगरानी। भक्तों की सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस के 600 जवान होंगे तैनात, 1000 प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड संभालेंगे व्यवस्था। श्रद्धालुओं के लिए मेडिकल सुविधाओं का भी खास इंतजाम, 8 एम्बुलेंस तैनात, 4 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी रहेंगी मौजूद। शुभ संयोगों में आज धूमधाम से मनाया जा रहा कजरी तीज का पावन त्यौहार, सुहागिन महिलाओं के लिए दिन काफी खास है। महिलाएं रख रही पति की लंबी उम्र, अखंड सौभाग्य, वैवाहिक जीवन की सुख शांति के लिए व्रत। उज्जैन में ओणम उत्सव की रौनक, कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। उत्सव के दौरान नेपाल त्रासदी के पीड़ितों के लिए विशेष प्रार्थना, प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा की कामना। तिरुपति के भगवान वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर के दरबार में पहुंचे कांग्रेस नेता जयराम रमेश, विधि विधान के साथ की पूजा अर्चना। गुजरात के गिर सोमनाथ में तीसरे सोमवार पर उमड़ा आस्था का जनसैलाब, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। बाबा के भक्तों ने किया बेलपत्र, गंगा जल से जलाभिषेक, हर हर महादेव के लगाए जयकारे। लखनऊ में सीएम योगी ने जनता दरबार में सुनी लोगों की फरियाद, जल्द मामलों का निपटारा करने के निर्देश। हरियाणा के कैथल में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आनंदम वृद्ध सेवा आंगन की आधारशिला रखी। ताशकंद के महात्मा गांधी इंटरनेशनल सेंटर में पीएम मोदी, छात्रों से किया संवाद। उज्बेकिस्तान के बाद किर्गिस्तान के दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बिश्केक एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत हुआ। पीएम मोदी के स्वागत में कलाकारों ने पेश किया पारंपरिक नृत्य, होटल पहुंचने पर वंदे मातरम के नारों से गूंजा माहौल। मां तुझे सलाम की धुन पर युवाओं ने किया योग प्रदर्शन, भगवान शिव की थीम पर सांस्कृतिक नृत्य ने मोहामन। पीएम मोदी 26वें एससीओ शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल, सुरक्षा, कनेक्टिविटी और अवसर पर भारत की प्राथमिकताएं रहेंगी। पुतिन और अन्य राष्ट्राध्यक्षों से पीएम मोदी की मुलाकात पर निगाहें, छठे विश्व घुमंतू खेलों के उद्घाटन समारोह में होंगे शामिल। पहलगाम में छड़ी मुबारक के पूजन और विसर्जन के साथ अमरनाथ यात्रा संपन्न, पहलगाम में छड़ी मुबारक के अंतिम पूजन की रस्में हुई पूरी। अमरनाथ यात्रा के समापन पर श्रद्धालुओं ने की विशेष पूजा अर्चना, पहलगाम में धार्मिक अनुष्ठानों के साथ छड़ी मुबारक का विसर्जन। सात समंदर पार अमेरिका में बेटी की शादी, तेलंगाना के माता पिता ने ऑनलाइन शादी में निभाई अक्षत की रस्म। स्क्रीन पर बेटी, दामाद पर वरसे पवित्र अक्षत, माता पिता ने दिया आशीर्वाद, इकलौती बेटी की शादी ऑनलाइन देख हुए इमोशनल। एमपी के शिवपुरी में आरपीएफ का एएसआई बना देवदूत, तेजी से दौड़कर प्लेटफॉर्म ट्रेन के बीच फंसी महिला की बचाई जान। राजकुमार संतोषी की नई फिल्म का नाम घातक घूस के मारेगा, सनी देओल की एंट्रीस में हुई। 1996 में रिलीज हुई घातक से जुड़े किरदारों की दिखाई जाएगी कहानी।
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: भाई और बहनों नमस्कार। मैं बाबा रवि गिरी आज जो कार्यक्रम लेके आया हूं वो आपकी आंखें खोल देगा। क्या आप जानते हैं कि मैं 78वें वर्ष में चल रहा हूं, लेकिन आपको शायद ये जानकर विश्वास ना हो कि मैं आज भी रोज कई किलोमीटर आराम से चलना ही नहीं बल्कि दौड़ भी लगा सकता हूं। इस उम्र में जहां लोग दर्द से, खासकर जोड़ों के दर्द से परेशान रहते हैं, मैं इस उम्र में भी पूरी तरह फिट हूं। न मुझे जोड़ों का कोई भी दर्द है और ना मेरी एनर्जी कम है। आप जानते हैं कि ऐसा कैसे संभव हो पाया? तो मैं आपको बता दूं कि मेरे बनाए नुस्खों की वजह से, जो इस उम्र में भी मुझे हाथ पैर कंधे घुटने के दर्द से दूर रखते हैं। और आज के कार्यक्रम से ये आपके साथ भी मैं साझा कर रहा हूं, आप भी अगर जोड़ों के दर्द से जूझ रहे हैं, दवाएं खाते खाते परेशान हो गए हैं, तो एक बार मेरे नुस्खों को आजमा कर देखें, आपको 100% लाभ मिलेगा। ये मेरा आपसे वादा है। और ये नुस्खे कितने कारगर हैं इसका जीता जागता सबूत मैं आपके सामने बैठा हूं। इस उम्र में भी मेरे शरीर के सारे जोड़ चुस्त हैं, दुरुस्त हैं। मैंने ये नुस्खे अपने 50 वर्षों से भी अधिक के आयुर्वेदिक अनुभवों के ज्ञान और लंबे शोध के बाद तैयार किए हैं और हजारों लोगों को मैंने ठीक भी किया है। अगर आपको कई सालों से जोड़ों के दर्द की समस्या है, कोई चोट की वजह से दर्द है, बढ़ती उम्र के साथ दर्द बढ़ रहा है, या फिर कम उम्र में ही जोड़ों में, खासकर घुटनों में दर्द रहने लगा है, जोड़ों में ग्रीस कम हो गया है, गैप आ गया है, या फिर पानी भर गया है, समस्या चाहे जो भी हो और आपकी उम्र भी चाहे जो भी हो, आपको मेरे बनाए नुस्खे जरूर फायदा देंगे। ये मेरा आपसे वादा है। आपको बता दूं कि पुरुषों के मुकाबले जोड़ों के दर्द की समस्या महिलाओं को जल्दी और ज्यादा होती है, जिसका कारण हार्मोनल असंतुलन की वजह से, यानी मेनोपॉज भी आपको हो सकता है। लेकिन मैं बाबा रवि गिरी आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी ये सभी समस्याएं मेरे नुस्खों से बिल्कुल ठीक हो सकती है और जोड़ों के दर्द से छुटकारा पाकर आप बिना दर्द के चलना फिरना ही नहीं दौड़ना भी शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए ये जो नंबर हैं इन पे कॉल करना है, आपको आपकी सभी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। तो भाइयों और बहनों, अगर आपको लगता है कि बढ़ती उम्र में जोड़ों का दर्द होता ही होता है, तो मैं आपको बता दूं कि उम्र सिर्फ एक संख्या है। अगर आप ध्यान देंगे, सही दिनचर्या अपनाएंगे और अपने जोड़ों का ध्यान रखेंगे, तो आपके जोड़ आपको कभी परेशान नहीं करेंगे, बल्कि उम्र भर आपके शरीर का अच्छे से बोझ उठाएंगे और आपको चुस्त और दुरुस्त रखेंगे। और ऐसा करने में आपको मेरे नुस्खे हर तरह से मदद करेंगे। इन नुस्खों को मैंने इन्हीं सभी बातों को और समस्याओं को ध्यान में रखकर बनाया है। यदि हिम्मत और दृढ़ निश्चय हो तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। आपकी सोच और आपके प्रयास ही आपको आगे बढ़ाते हैं। जब मैं इस उम्र में भी आराम से कई किलोमीटर तक दौड़ सकता हूं, तो आप क्यों नहीं दौड़ सकते? तो आप अभी ये नीचे जो नंबर दिए गए हैं इन पे कॉल करके मेरे नुस्खों का फायदा उठाएं और अपनी दवा बुक करें। अगर आप सुबह उठते ही अपने घुटनों या पीठ में दर्द महसूस करते हैं तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। क्या आपको वो दिन याद है जब आप बच्चों के साथ पार्क में दौड़ा करते थे या बिना थके सीढ़ियां चढ़ लेते थे और अब थोड़ा सा चलना भी भारी लगने लगता है। जोड़ों का दर्द ना सिर्फ हमारे शरीर को तकलीफ देता है बल्कि हमारी जिंदगी के कई खूबसूरत पलों को भी हमसे छीन लेता है। न रोज के काम अच्छे से कर पाते हैं और न ही हर दिन की भागदौड़ में वो आत्मविश्वास रह जाता है। जरा सी सीढ़ियां चढ़ने पर घुटनों में दर्द होने लगता है, जमीन पर बैठना मुश्किल हो गया है और चलने में भी डर लगता है कि कहीं दर्द और ना बढ़ जाए। सच तो ये है कि जोड़ों का दर्द सिर्फ शारीरिक तकलीफ नहीं देता, ये हमारे अंदर की हिम्मत को भी धीरे पाए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये दर्द होता क्यों है? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। सबसे आम कारण है गठिया यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये सबसे आम प्रकार है जो उम्र बढ़ने के साथ साथ जोड़ों की घिसावट की वजह से होता है। इसमें कार्टिलेज जो हड्डियों को आपस में रगड़ने से बचाता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है जिससे जोड़ों में दर्द और अकड़न होती है। क्या आप जानते हैं कि गठिया के 100 से ज्यादा प्रकार हैं जिनमें हल्के से लेकर गंभीर दर्द का सामना करना पड़ सकता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस जोड़ों के दर्द की ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर की इम्यून सिस्टम खुद ही जोड़ों पर हमला करने लगती है। इससे जोड़ों में सूजन, दर्द और समय के साथ हड्डियों की बनावट तक बदल सकती है। तो भाइयों और बहनों, मेरे नुस्खे इन सारी समस्याओं में असर कारक है क्योंकि इनमें ढेरों शक्तिशाली जड़ी बूटियों को मैंने अपने 50 साल से ज्यादा के अनुभव से अलग अलग फार्मूलेशन में मिलाया है जो आपको आपकी समस्या के हिसाब से बनाकर दी जाती है, इसलिए ये बिल्कुल सीधा असर करती है। मैंने ये नुस्खे पुरुष हो चाहे महिला हो, उम्र चाहे 20 साल हो चाहे फिर 70-80 साल हो, चलने में दिक्कत हो, सीढ़ियां चलने में दर्द होता हो, जोड़ों से कटकट की आवाज आती हो, इन सभी समस्याओं पर गहन चिंतन और शोध के बाद ही ये नुस्खे तैयार किए हैं जिनका असर अचूक है। चलती रहनी चाहिए जिंदगी बिना दर्द के और बिना रुकावट के। मैं बाबा रविगिरी आपको कुछ ऐसे नुस्खे और जड़ी बूटियां बताऊंगा जिससे आप अपने जोड़ों का समाधान तुरंत पा सकते हैं। जोड़ों के दर्द में प्रयोग की जाने वाली आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां जो मैं बताने जा रहा हूं उनमें सबसे पहला है तेलपर्ण। इसको तेलपर्ण क्यों कहा जाता है कि इसके पत्तों में तेल होता है, इसलिए इसको तेलपर्ण कहते हैं। वैसे आम भाषा में इसको नीलगिरी के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो है ये है सती तेल। ये सूजन को घटाता है, अंदर तक समाकर यह सूजन बढ़ाने वाले इंटरल्यूकिन स्तर को कम करता है और सूजन को घटाता है। इसके बाद में है ये तेजोवती। इसमें मौजूद लिनालूल और लिमोनेन कफ दोष शमन करके और सूजन को घटाता है। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर यानी TNF और इंटरल्यूकिन 6 के बढ़े हुए लेवल्स को घटाता है ये। इसके बाद में है ये तेज पत्ता यानी त्वक पत्थर। ये जोड़ों में जकड़न से निजात दिलाता है, जोड़ों में गतिशीलता देता है। इसके बाद में ये है ज्योतिषमती, ये वात और कफ को संतुलित करके जोड़ों के दर्द में आराम दिलाता है। ये है गंधपत्र, ये गंधपुरा पत्र में 85 से 99% तक मिथाइल सिलिसिलेट होता है जो दर्द निवारक है। तो इससे मांसपेशियों, जोड़ों, हड्डियों के दर्द में आराम मिलता है। इसके बाद में ये है लवंग, इसमें प्रस्तुत यूजेनॉल दर्द को और सूजन को कम करता है और अंदर के इन्फेक्शंस को खत्म कर देता है। इसके बाद में ये है तिल का तेल, बहुत अच्छी चीज है ये। तिल के तेल में एंटी इंफ्लामेटरी गुण पाया जाता है जो घुटनों में होने वाली सूजन और दर्द को कम करने में प्रभावी होता है। इसके बाद में ये तेल है, ये मेजन करी तेल, इस पौधे में औषधीय गुण होते हैं और इसका उपयोग पारंपरिक रूप से विभिन्न बीमारियों जैसे पेट दर्द और गैस्ट्रो इंट्राइस्टिस के साथ साथ मधुमेह, एडिमा, सर्दी, गठिया, अस्थमा और दर्दनाक चोट के इलाज के लिए किया जाता है। उसके बाद में यह है सुरंजन कटु, ये सूजन रोधी एवं दर्द निवारक प्रभावों के लिए जाना जाता है। यह एक प्रोपेरिएटरी मेडिसिन है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के गठिया में मसल्स और हड्डियों के समर्थन के लिए किया जाता है। इसके बाद में यह है चित्रक मूल, ये गठिया के लक्षणों को कम करने के लिए यानी चित्रक की जड़ अत्यंत फायदेमंद मानी जाती है। यह एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर है, यह दर्द निवारक, सूजन को कम करने वाली, एक बैक्टीरिया और फंगस का नाश करने वाली भी है। यह है ट्रिक टू, इसमें मौजूद बायो एक्टिव कंपाउंड जोड़ों के दर्द, सूजन, लालिमा एवं जोड़ों की कठोरता को कम करने में मदद करता है। यह है अजवाइन, अजवाइन पाचन को दुरुस्त करता है, टॉक्सिन को बाहर निकालता है, प्रोटीन, फैट, फाइटोकेमिकल, फाइबर, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन जैसे पोषक तत्व इसमें प्रचुर मात्रा में भरे हुए हैं। आखिर में है अबरक भसम, यह कफ को संतुलित करके आरए फैक्टर को कंट्रोल करता है और सर्दियों में जो जोड़ों का दर्द ठंड की वजह से बढ़ जाता है उसको नियंत्रित करता है। साइटिका से आजकल बहुत लोग परेशान है, साइटिका आप सभी जानते हैं कि एक टांग में होने वाला दर्द है जिसका उद्गम रीढ़ की हड्डी से शुरू होता है क्योंकि वहां की नस हिल जाती है। मेरे पास ऐसी अभिमंत्रित ताबीज भी है जो इस दर्द को दूर कर देगी। जोड़ों का दर्द एक असहनीय रोग है, यह एक व्यक्ति से उसकी आत्मनिर्भरता छीन लेता है। तो मेरी एक ही सलाह है, अब गोलियों से नहीं इलाज सिर्फ नुस्खों से करें क्योंकि इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और असर 100% मिलेगा। ये मेरा यानी बाबा रविगिरी का वादा है। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल करना है और अपने लिए मेरे नुस्खे मंगवाने हैं, फिर देखिए दर्द कैसे खुद ब खुद भागता है, ये मेरा वादा है। तो अब मुझे आज्ञा दीजिए और तब तक आप खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। तो राम राम भाई और बहनों, नमस्कार।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।

0: क्या शहद का प्रयोग करके कर्जों से मुक्ति पाई जा सकती है? क्या शहद का प्रयोग करके वैवाहिक जीवन को बेहतर किया जा सकता है? क्या शहद का प्रयोग करने से चिंताएं समाप्त हो सकती हैं? क्या है शहद का महत्व और क्या है इसके चमत्कारी प्रयोग, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: गुड़नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
8: आज बिश्केक में SCO समिट में होंगे शामिल प्रधानमंत्री मोदी, रूसी राष्ट्रपति से होगी प्रधानमंत्री की मुलाकात, कारोबार और ऊर्जा संकट पर होगी बातचीत। ताशकंद के महात्मा गांधी इंटरनेशनल सेंटर में पीएम ने छात्रों से किया संवाद, छात्रों ने पीएम मोदी की लिखी कविता अभी तो सूरज उगा है का किया पाठ। नौसेना की ताकत में हुआ इजाफा, मुंबई में दूसरा स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट पोत, निपुण हुआ कमीशन, समुद्र में गोताखोरी और जटिल अभियानों को देगा अंजाम। महाराष्ट्र दिल्ली में SIR की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी, चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर चेक किए जा सकते हैं नाम। धूमधाम से मनाया जा रहा कजरी तीज का पावन त्योहार, महिलाएं रख रही पति की लंबी उम्र अखंड, सौभाग्य वैवाहिक जीवन की सुख शांति के लिए व्रत। अमान पंचांग में आज सावन का तीसरा सोमवार, संभाजीनगर में निकाली गई भव्य कांवड़ यात्रा, आस्था संस्कृति के दिखे रंग।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुन।
9: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं हमारा बेहद खास शो प्रार्थना हो स्वीकार, और मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। श्रीमद् भागवत गीता, जिसे श्री हरि की वाणी माना गया है, श्रीमद् भागवत गीता एक धर्म ग्रंथ नहीं बल्कि कलयुग में सत्यता का प्रमाण है, जिसकी गाथा द्वापर युग से लेकर कलयुग तक गाई जा रही है। धर्म ग्रंथ कहते हैं कि जिस दिन कुरुक्षेत्र में केशव ने पार्थ को धर्म का मर्म समझाया था, उस दिन गीता के ज्ञान से पहली बार दुनिया का साक्षात्कार हुआ था। गीता का पाठ तो हर समय फलकारी माना गया है, लेकिन भाद्रपद में गीता का पाठ चमत्कारी माना गया है, जो आपके सभी मनोरथ सिद्ध कर सकता है। माना जाता है कि गीता के उपदेशों को आत्मसात करने से जीवन में सफलता का मार्ग प्रशस्त होता है और समस्त शंकाओं का भी नाश होता है।

0: रण क्षेत्र से निकली ईश्वर की वाणी, जो श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद की साक्षी है। सात सौ श्लोकों का अलौकिक धर्म ग्रंथ, कर्म ज्ञान और भक्ति योग को जगाने वाला संकलन। जो धर्म अर्थ काम और मोक्ष की परिकल्पना को साकार करती है। जिन्होंने श्रीमद् भगवत गीता का सोपान किया है, वो कहते हैं कि गीता का हर अध्याय हर श्लोक मानव के कल्याण को समर्पित है। श्रीमद् भगवत गीता किसी धर्म की व्याख्या नहीं है, बल्कि ये एक जीवन शैली है। गीता का सार है कि कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा।
1: श्रीमद् भागवत पुराण का श्रवण करना, पाठ करना सभी प्रकार के दुखों को दूर करने वाला होता है, सभी प्रकार के सुखों को प्रदान करने वाला होता है। जीवन जीने की जो कला है, व्यक्ति को किस मार्ग से चलकर सांसारिक वस्तुओं का भोग करते हुए, भौतिकता के साथ साधनों का उपभोग करते हुए, भौतिक जगत में संलिप्त रहते हुए भी भगवान के चरणों में कैसे पहुंचा जा सकता है, यह प्रशस्त करता है मार्ग।

आज हम आपको श्रीमद् भगवद् गीता की महिमा से अवगत करवाएंगे, जिसकी पटकथा को द्वापर में लिखा गया था, लेकिन उसका संदेश आज कलयुग में सर्वव्यापक रूप में मानव को कर्मपथ की दिशा दिखा रहा है। श्रीमद् भगवद्

0: मुख से माना जाता है। स्वयं ब्रह्मा जी भी श्री हरि की नाभि से उत्पन्न हुए। श्रीमद् भगवत स्वयं नारायण की वाणी से प्रकट हुए हैं, अर्थात गीता स्वयं श्री हरि का ही स्वरूप है।
1: हिंदू धर्म के 18 पुराणों में से एक श्रेष्ठ पुण्यदायक ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, आध्यात्म के लिए एक महान ग्रंथ है। इसके पाठ से, इसके श्रवण से व्यक्ति के जीवन में जो भी पाप कर्म हैं जाने अनजाने में किए गए, सभी का नाश हो जाता है।
0: शास्त्रों में गीता को वेदों से भी बढ़कर माना गया है। महर्षि वेदव्यास ने महाभारत के भीष्म पर्व में स्पष्ट लिखा है, गीता सुगीता कर्तव्य किमन्य है, शास्त्र विस्तर है, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मादिनः श्रुता। अर्थात गीता के होते हुए किसी शास्त्र के वाचन की कोई आवश्यकता नहीं है, ये तो स्वयं पद्मनाथ श्री हरि के मुख कमल से ही निकली है। वराह पुराण में भगवान कहते हैं कि वो स्वयं गीता के बंधनों से बंधे हैं। गीता श्रयम तिष्णामि गीताम में चोत्तम गृहम, गीता ज्ञान मुपाश्रित्य त्रिलोकान पलायमहम। अर्थात मैं गीता के आश्रय में रहता हूँ, गीता मेरा उत्तम गृह है, गीता के ज्ञान का सहारा लेकर ही मैं तीनों लोगों का पालन करता हूँ। गीता जो मानव को पुरुषार्थ और कर्तव्य के पालन की सीख देती है। भाद्रपद के माह में भी श्रीमद् भगवद गीता के किसी भी अध्याय का पाठ करने से भगवान सच्चिदानंद की कृपा बरसती है, स्वयं नारायण सुख समृद्धि का वरदान देते हैं, आपकी मुक्ति और मोक्ष का द्वार खुल जाता है।
1: मुक्ति का मार्ग प्रदर्शित करता है, क्योंकि संसार में लोभ ही सबसे बड़ा कारण है व्यक्ति के दुख का। तो जब तक व्यक्ति का लोभ नहीं खत्म होगा, माया रूप नहीं खत्म होगी, व्यक्ति के विचारों में भौतिकता के प्रति अलगाव नहीं होगा, तब तक व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। तो कैसे सांसारिकता से मोह भंग हो, इसका मार्ग प्रशस्त कराता है यह ग्रंथ, यह पुराण।
0: कहते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान कलयुग का वो वरदान है जो जीवन की सारी शंकाओं का समाधान कर सकता है, आपके जीवन से अंधकार को मिटाकर ईश्वर की साधना में लीन कर सकता है। श्रीमद् भगवत गीता जिसमें इंसान के जीवन की हर समस्या का हल लिखा हुआ है, 18 अध्याय और 700 श्लोकों वाले इस धर्म ग्रंथ में जीवन को महान बनाने का हर एक सूत्र मिलता है, जिसे द्वापर युग में योग योगेश्वर भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को सुनाया था।
2: कहते हैं कि कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण ने वीर अर्जुन को गीता का परम ज्ञान दिया था। गीता का ज्ञान पाकर ही अर्जुन ने मोहपाश के बंधन को त्याग कर इस संसार के दुष्टों का नाश किया। श्रीमद् भागवत गीता के 18 अध्याय और 700 श्लोकों की व्याख्या तो हर काल में की गई है। चलिए अब आपको बताते हैं कि भाद्रपद माह में कैसे करें श्रीमद् भागवत गीता की पूजा और इस महीने में दान को क्यों परम फलकारी माना गया है।

0: विद्वान कहते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता एक ग्रंथ नहीं बल्कि एक अमृत वाणी है जिसे परमेश्वर की रची जीवन शैली माना गया है। श्री आदि शंकराचार्य ने भी श्रीमद् भगवत गीता के संदर्भ में ये कहा है कि जो भी श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करता है वो श्री हरि की शरण में जाता है। गीता शास्त्रम इदम पुण्यम यह पठित प्रातः पुमान विष्णु पादम अवान पोति भय शुकादि वर्जितः। इसका आशय है कि श्रीमद् भगवत गीता दिव्य है, जो इसे ध्यान पूर्वक पढ़ता है और इसके उपदेशों का पालन करता है वो भगवान विष्णु का आश्रय प्राप्त करता है, जो कि समस्त भय और चिंताओं से मुक्त है।
1: दिव्य ज्ञान के लिए चाहे वो ईश्वरी सत्ता की बात हो, ब्रह्मांड के ऊर्जा के समझने की बात हो, पैचासिक प्रेत योनि या नकारात्मक ऊर्जाओं को समझने की बात हो, इस ग्रंथ इस पुराण से सभी प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति सहजता के साथ हो जाती है। इसके साथ साथ व्यक्ति का मार्गदर्शक कौन है, व्यक्ति के जीवन को किस पथ पर चलना है, एक सच्चे एक सदगुरु के रूप में है यह ग्रंथ यह पुराण।
0: श्रीमद् भगवत गीता की व्याख्या करना सूरज को दिया दिखाने के समान है। इस पवित्र ग्रंथ के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। मलिने मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृन दीनताम मृत स्नानम संसारम लंदनाशनम। मनुष्य जल में स्नान करके नित्य खुद को स्वच्छ कर सकता है, लेकिन यदि कोई भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा में एक बार भी स्नान कर ले तो वो भौतिक जीवन से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है।
1: व्यक्ति को इस जन्म में इस जीवन से करना क्या है, इस जीवन में का उद्देश्य क्या है, धरती पर आया है मानव का उद्देश्य क्या है, इसको समझाने के लिए यह पुराण श्रेष्ठ है। भक्ति और प्रेम का यह पथ प्रदर्शक है। ईश्वर के प्रति भक्ति कैसी की जाए, ईश्वर के प्रति प्रेम कैसे की जाए, सांसारिक जनों के साथ प्रेम कैसे किया जाए, इसको सिखाता है यह पुराण।
0: धर्म ग्रंथ और ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी को श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, लेकिन श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान को ग्रहण करने का हर समय सर्वोत्तम है। और भाद्रपद में तो श्री कृष्ण की वाणी से निकले ग्रंथ की उपासना मोक्ष के समान मानी गई है। गीता मात्र एक पुस्तक नहीं है बल्कि ये उपदेशों का जीवंत स्वरूप है। गीता के उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने पुरातन काल में थे। भाद्रपद का माह श्री कृष्ण उपासना के लिए सर्वोत्तम है। भाद्रपद में गीता का पाठ करने से मोक्ष का वरदान मिलता है। गीता के पाठ से जीवन की ज्ञात अज्ञात समस्याओं से मुक्ति मिलती है। श्रीमद् भगवत गीता के महत्व के बारे में तो हमने आपको बता दिया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि गीता का पाठ करने से आपको लाभ ही होगा? चलिए आपको बताते हैं कि भाद्रपद में भगवत गीता का पूजन और पाठ कैसे किया जाता है। स्नान करके पूजा घर को साफ करें, एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं, इस पर भगवान कृष्ण की स्थापना करें, लाल या पीले कपड़े में लिपटी हुई गीता की नई प्रति स्थापित करें, पीले फल पुष्प धूप दीप दूर्वा अर्पित करें, फल मिष्ठान और पंचामृत अर्पित करें। इसके बाद श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप करें, ओम गंगे मंत्र का उच्चारण करके आचमन करें, अंत में पूजा संपन्न करने के लिए आरती अर्चना करें। इसके बाद गीता का संपूर्ण पाठ या सिर्फ अध्याय 11 का पाठ करें। पाठ के बाद गीता जी की आरती पढ़ें। इसके बाद अपने कामना पूर्ति की प्रार्थना करें।
1: तो श्रीमद् भागवत ग्रंथ की श्रीमद् भागवत पुराण की नियमित पाठ की जाए, इनकी कथाओं का श्रवण किया जाए और इसके प्रत्येक शब्द को, इसके प्रत्येक अक्षर को, इसके प्रत्येक लाइन को अपने मन, मस्तिष्क, हृदय में समावेशित कर लेना चाहिए, क्योंकि इसके पाठ मात्र से, इसके श्रवण मात्र से भी सभी प्रकार के कष्टों का निवारण हो जाता है, सभी प्रकार के दुखों का निवारण हो जाता है।
0: माना जाता है कि भाद्रपद के माह में आपने श्रीमद् भगवत गीता रूपी अमृत का पान कर लिया तो निश्चित ही आपकी सारी मुरादें पूरी हो जाएंगी। कहते हैं कि गीता की पूजा अर्चना के बाद इस माह में दान का भी विशेष महत्व होता है। चलिए बताते हैं कि श्री कृष्ण के प्रिय मास में ऐसे कौन से कर्म किए जाएं जिससे प्रभु श्री कृष्ण आपको मोक्ष का वरदान दें। भाद्रपद में किसी भी दिन गीता की पुस्तक का दान करें, इससे आपकी गलतियों का प्रायश्चित होगा, आपको अपने पापों से मुक्ति मिलेगी। भाद्रपद में भगवान विष्णु की पूजा करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है। इस माह में श्रीमद् भगवत गीता के दर्शन करने मात्र से समस्याएं और नकारात्मकता दूर होने की मान्यता है। मान्यता है कि भाद्रपद में श्रीमद् भगवत गीता के 11वें विश्वरूप दर्शन योग और 18वीं अध्याय मोक्ष संन्यास योग का पाठ करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। माना तो यहां तक जाता है कि भगवान विष्णु के अवतारों की पूजा और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से जीवन की सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं, पाप कट जाते हैं और सारी चिंताएं खत्म हो जाती हैं। अगर आपके घर में धन धान्य की कमी है, विषम संख्या में गीता का दान करें, इससे धन संपत्ति के साथ ही पारिवारिक सुख में वृद्धि होती है। भाद्रपद में शंख का पूजन अवश्य करना चाहिए, ऐसा करने से नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। गीता का दूसरा नाम गीतोपनिषद है। भाद्रपद में गीता को पढ़ना सुनना अत्यंत शुभ माना जाता है। गीता के उपदेशों को आत्मसात करने से जीवन में सफलता का मार्ग प्रशस्त होता है, आपके व्यक्तित्व में निखार आता है।
2: और चलिए अब आपको लेकर चलते हैं भगवान श्री कृष्ण की पाठशाला में, जहां कान्हा को मिले थे सुदामा। इसी स्थान में आज भी बिखरी हैं द्वापर युग की कई निशानियां।

0: गोवर्धन गिरधारी, मनमोहक कृष्ण मुरारी, उनके बड़े भाई बलराम और मित्र सुदामा की ऐसी मनमोहक प्रतिमाएं आपने कहीं और नहीं देखी होंगी। ये प्रतिमाएं महाकाल की नगरी उज्जैन में स्थित ऋषि सांदीपनि के आश्रम में हैं। मान्यता यह है कि यही भगवान श्री कृष्ण की वो पाठशाला है जहां 5000 साल पहले मुरलीधर कान्हा ने अपने बड़े भाई बलराम और मित्र सुदामा के साथ सांदीपनि ऋषि से शिक्षा ग्रहण की थी। पौराणिक मान्यता है कि द्वापर युग में कंस का वध करने के बाद श्री कृष्ण अपने भाई बलराम के साथ उज्जैन आए थे। यहीं सुदामा के साथ उनकी मित्रता हुई और यहीं पर उन्होंने गुरु से ज्ञान ग्रहण किया।
1: यहाँ उन्होंने 4 दिन में 4 वेद, 6 दिन में 6 शास्त्र, 16 दिन में 16 कलाएं, 18 दिन में 18 पुराण, 20 दिन में गीता का ज्ञान, गुरु सेवा, गुरु दक्षिणा, छंद, अलंकार, उपनिषद, जितनी भी प्रकार की 64 विद्या और कलाएं होती हैं, उनका सबका ज्ञान गुरु सांदीपनि जी से यहाँ पर उन्होंने प्राप्त किया था।
0: भगवान कृष्ण की शिक्षा स्थली के प्रति लोगों की श्रद्धा की सीमा नहीं है। लोग यहाँ के कण कण में कुंज बिहारी कन्हैया लाल जी की मौजूदगी को महसूस करते हैं और खुद को धन्य समझते हैं।
2: यहाँ पर अपने बच्चों के लिए आते हैंगे और बहुत दिनों से हम लोग ने इसके बारे में सुना था, जो कि आज हमको इसके दर्शन हुए। हम लोग भोपाल से आए हैं।
3: जो सबसे पहले तो हमने यहाँ पे गुरु जी के जहाँ से शिक्षा ग्रहण की उन्होंने बलराम जी और कृष्ण जी ने, तो गुरु जी के साथ साथ में यहाँ पे उन सबके दर्शन करने आए हम कि कहाँ कौन सी जगह उन्होंने शिक्षा ग्रहण की था। तो ये उनका पवित्र स्थान है उज्जैन में, तो हमें बहुत सौभाग्य हुआ हमें कि हम यहाँ दर्शन करने आए यहाँ पे।
4: तो मुझे मौका मिला कि मैं ऐसी शिक्षा स्थली में आने का शुभ अवसर मिले और देखें गुरु शिष्य परंपरा का कैसा निर्वाह हुआ है।
0: आश्रम में श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा के साथ साथ महर्षि सांदीपनि, गुरुमाता और उनके पुत्र की प्रतिमाएं भी हैं। अनूठी बात ये भी है कि केवल इसी आश्रम में भगवान श्री कृष्ण की जो प्रतिमा विराजमान है वो बैठे हुए स्वरूप में है, जबकि बाकी तमाम मंदिरों और पूजा स्थलों पर कृष्ण कन्हैया की खड़े होकर बांसुरी बजाते हुए रूप में मूर्तियां दिखती हैं।
1: क्योंकि ये उनका विद्या का स्थान है और विद्या हमेशा आसन पर बैठ कर ली जाती है, इस कारण उनकी बैठी हुई दुर्लभ प्रतिमा है।
0: सांदीपनि आश्रम परिसर में गोमती कुंड भी है। मान्यता है कि यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने गोमती नदी का आवाहन किया था ताकि गुरु के स्नान के लिए गोमती नदी का जल उपलब्ध हो सके।
1: तो इस क्षेत्र का जो प्राचीन नाम है अंकपाद क्षेत्र होता था। अंकपाद, पाद मतलब पैर, पैरों के निशान आज भी शिला के ऊपर देखने को मिलते हैं, क्योंकि माँ गोमती का आह्वान किया, माँ गोमती पधारी थी। तो भगवान वहाँ से हटे तो गोमती ने उनके चरण पकड़ लिए कि प्रभु मैं आपके पास ही आई हूँ, आपके कारण ही आई हूँ, मैं किसकी पूजा करूँगी। तो भगवान ने अपने चरण की छाप वहाँ पर छोड़ी थी, इस कारण इसे अंकपात का भी बोलते हैं। और एक किंवदंती है कि भगवान कृष्ण अपनी अंक पट्टी का स्लेट भी उस कुंड के जल से साफ किया करते थे।
0: आश्रम परिसर में महादेव का प्राचीन मंदिर भी है जहां सांदीपनि ऋषि तपस्या किया करते थे। बताया जाता है कि यहां पर 6000 वर्ष पुराना शिवलिंग स्थापित है। माना जाता है कि इसे महर्षि सांदीपनि ने बिल्व पत्र यानी बेल के पत्ते से उत्पन्न किया था। कहा जाता है कि यहां दुर्लभ शिवलिंग है और पूरे भारत में ऐसा शिवलिंग कहीं और नहीं है। इतना ही नहीं, इस शिवलिंग के सामने बाहर खड़े हुए नंदी की एक अनोखी प्रतिमा भी है। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण को आश्रम में अध्ययन करता देखकर नंदी जी चौंक कर उठ गए थे। इस तरह योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण और नंदीश्वर महादेव से जुड़ी हुई ये पावन जगह धार्मिक और आध्यात्मिक रुचि रखने वालों के लिए लोक श्रद्धा का प्रतीक बन चुकी है। संदीप कुलश्रेष्ठ, उज्जैन, गुड न्यूज टुडे।
5: और इसी के साथ इस खास शो प्रार्थना हो स्वीकार में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: देखिए, उत्तर भारत में सावन भले ही बीत गया हो, लेकिन आस्था भक्ति की बयार अभी भी बरकरार है। आज महिलाएं पूरी आस्था उमंग के साथ कजरी तीज का पर्व मना रही हैं। हर साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि पर सुहागिने व्रत रखकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करती हैं। आज के दिन कुमारी युवतियां भी मनचाहा जीवन साथी पाने की कामना के साथ शिव पार्वती का पूजन भी करती हैं।

0: शहर कोई हो, जगह कोई हो, महादेव के धाम, आस्था और भक्ति की बहार एक ही सी बह रही है। आज का दिन भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना का है, क्योंकि आज कजरी तीज मनाई जा रही है। विवाहित महिलाओं के लिए आज का दिन बेहद खास है। ये दिन उन कन्याओं के लिए भी खास है जो अपने लिए अच्छे वर की कामना कर रही हैं। दरअसल आज कजरी तीज का पर्व है। हर साल भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को ये त्योहार मनाया जाता है। उदया तिथि के अनुसार ही महिलाएं कजरी तीज का व्रत रख रही हैं। शिव मंदिरों में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना कर रही हैं।
1: कजरी तीज पर भगवान शिव माता पार्वती की आराधना करने से मनोकामना की पूर्ति होती है, सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है। तो जैसा कि शास्त्रों में वर्णित कहा जाता है कि इस दिन यदि माता पार्वती को सुहाग की वस्तुएं अर्पित किया जाए, भगवान शिव को दूध, दही, घीर, घी, शहद, चंदन इत्यादि अर्पित किया जाए, साथ ही साथ खीर का भोग लगाया जाए माता पार्वती को और भगवान शिव को, तो जीवन में सुख संपन्नता की वृद्धि होती है।
0: कजरी का अर्थ काले रंग से होता है। अमूमन इस दौरान आसमान में काली घटा छाई रहती है, इसीलिए शास्त्रों में इस शुभ तिथि को कजरी तीज का नाम दिया गया है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती के भवानी स्वरूप की पूजा का विधान है। इस दिन निमड़ी माता की पूजा भी बहुत कल्याणकारी मानी गई है। पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन देवी पार्वती पहली बार भगवान शिव से मिली थी। शिव जी को पति के रूप में पाने के संकल्प के साथ माँ पार्वती ने 108 साल तक तपस्या कर भोलेनाथ को प्रसन्न किया था, तभी से इसको कजरी तीज या कजरी तीज के रूप में मनाया जाने लगा।
1: अक्षत, चंदन, रोली, अबीर, गुलाल, पंचामृत, पंचमेवा, घी, धूप, दीप, नैवेद्य, मौसमी फल, मिष्ठान इत्यादि के साथ इनकी पूजन कर लेना है आपको। पूजन के उपरांत कजरी तीज की कथा का पाठ करना है और श्रवण करना है। उसके बाद रात्रि के समय में दिन भर व्रत रहना है निर्जला। रात्रि के समय जब चंद्रमा का दर्शन हो जाए, चंद्रमा दिखने लगे हैं, तो उनको अर्घ देना है। अर्घ देने के उपरांत पति के हाथों से पानी पीकर व्रत को तोड़ना है, अर्थात व्रत का पारण कर लेना है।
0: आज के दिन महिलाएं अपने सुहाग के लिए व्रत रखती हैं, पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। वही अविवाहित कन्याएं मन चाहा वर पाने के लिए कजरी तीज का उपवास रखती हैं। कजरी तीज का व्रत करवा चौथ की तरह निर्जला व्रत के साथ रखा जाता है और शाम को चंद्रमा को अर्घ देने के बाद व्रत खोला जाता है। कजरी तीज को कजली तीज, बड़ी तीज, बूढ़ी तीज या सतुरी तीज के नाम से भी जाना जाता है। ये पर्व उत्तर भारत के राज्यों में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। कजरी तीज व्रत पर जौ, चने, चावल और गेहूं के सत्तू बनाने की परंपरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
3: क्या शहद का प्रयोग करके कर्जों से मुक्ति पाई जा सकती है? क्या शहद का प्रयोग करके वैवाहिक जीवन को बेहतर किया जा सकता है? क्या शहद का प्रयोग करने से चिंताएं समाप्त तो हो सकती हैं? क्या है शहद का महत्व और क्या है इसके चमत्कारी प्रयोग, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें, किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति ट्रूथ पेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
1: HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
3: आज बिश्केक में आयोजित एससीओ समिट में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी करेंगे मुलाकात, दोनों देशों में कारोबार और ऊर्जा संकट पर होगी बात। ताशकंद के महात्मा गांधी इंटरनेशनल सेंटर में प्रधानमंत्री मोदी ने छात्रों से संवाद किया, छात्रों ने प्रधानमंत्री की लिखी कविता अभी तो सूरज उगा है का पाठ किया। नौसेना की ताकत में हुआ इजाफा, मुंबई में दूसरा स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट पोत, निपुण हुआ कमीशन, समुद्र में गोताखोरी और जटिल अभियानों को देगा अंजाम। महाराष्ट्र दिल्ली में SIR की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी, चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर चेक किए जा सकते हैं नाम। धूमधाम से मनाया जा रहा है कजरी तीज का पावन त्योहार, पति की लंबी उम्र और अखंड सौभाग्य और वैवाहिक जीवन की सुख शांति के लिए महिलाएं रख रही हैं व्रत। हमाद पंजांग में आज सावन का तीसरा सोमवार, महाराष्ट्र के संभाजीनगर में निकाली गई भव्य कावड़ यात्रा, आस्था और संस्कृति के दिखे रंग। बचपन पर आघात कब तक? नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। यही आज का मुद्दा जिसको लेकर हम बात करेंगे। दरअसल दिल्ली के एक प्ले स्कूल में बच्चे से बेरहमी हुई है तो 3 साल के मासूम की कहानी क्यों सहमी राजधानी? ये कैसा सवाल है जिसने तमाम अभिभावकों को सोचने पर मजबूर कर दिया। अभिभावकों की आंखें खोलने वाली ये सीख भी है। दरअसल CCTV में ये हैरान कर देने वाली घटना रिकॉर्ड हुई है और छात्र से बेरहमी पर कानून क्या कहता है, ये बहुत बड़ा सवाल है जिसको लेकर आज हम अपने खास मेहमानों से चर्चा करेंगे, समझेंगे इसे। बच्चों के साथ कब तक होगा ऐसा बर्ताव, ऐसे मामलों का क्या समाधान हो सकता है, ये तमाम ऐसे सवाल है जिसको लेकर अब चर्चा भी छिड़ी हुई है। मामला कोई एक नहीं, इस तरह के तमाम केसेस हैं, लेकिन इसी के जरिए जानने समझने की कोशिश करेंगे स्कूलों के अधिकार, अभिभावकों के अधिकार और साथ ही साथ बच्चों के अधिकारों को।

0: तो मामला क्या है, सबसे पहले ये आपको बता देते हैं। दरअसल प्ले स्कूल में बच्चे की पिटाई का ये पूरा मामला है और ये प्ले स्कूल दिल्ली के मौजपुर इलाके में है, जहां पर सीसीटीवी में हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। बच्चे के परिवार ने प्ले स्कूल में बच्चे के साथ बेरहमी का आरोप लगाया। परिवार के मुताबिक उनके 3 साल के मासूम की पिटाई की गई। बच्चे के परिवार का कहना है कि बच्चे को कई घंटे कुर्सी पर बांध कर रखा भी गया। बच्चे के पिता के मुताबिक 18 अगस्त को बच्चा बेहोश हुआ था, इस दौरान कान में भी दर्द की शिकायत उसने की। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां पर पिटाई सूजन की बात डॉक्टर्स ने बोली। बच्चे के पिता का कहना है कि डॉक्टरों को बच्चे के दोनों कानों में सूजन दिखाई दी और इसके बाद परिवार ने प्ले स्कूल के सीसीटीवी का एक्सेस लिया। हालांकि दावा यह है कि शुरू में स्कूल से एक्सेस देने पर आनाकानी हुई थी, लेकिन फिर सीसीटीवी की पुरानी रिकॉर्डिंग से पिटाई का पता चला। ऐसे में बच्चे के अभिभावकों की शिकायत पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही साथ मेड को भी हिरासत में लिया गया है। अब टीचर्स की भूमिका की भी जांच हो रही है। तो प्ले स्कूल में बच्चे की पिटाई क्यों हुई, बच्चे के साथ ऐसा सुलूक कब तक, और ऐसे मामलों का समाधान क्या हो सकता है, प्ले स्कूल की जिम्मेदारी क्या है, इन सबको लेकर आज हम चर्चा करेंगे। वैसे इसी पूरे मामले पर हमारे सहयोगी ने स्कूल का पक्ष भी जानना चाहा है, तो जवाब मिला कि बाद में हम इस पर बात करेंगे। वहीं पीड़ित बच्चे के पिता के मुताबिक स्कूल प्रबंधन ने शुरुआत में फिलहाल आरोपों से इनकार किया था, लेकिन फिर बच्चे के ऊपर ही दोष मढ़ दिया।
1: 18 अगस्त को तो जब ये स्कूल से आया तो इसने वॉमिट कर दी घर पे, इसको चक्कर आ गए, तो हम इसे डॉक्टर के लेके भागे, पेडिक्ट वाले के, तो उसने बोला इसकी आंखें सूज रही है, उसके कान में मुझे दिक्कत लग रही है, अब इसको एंटी वाले डॉक्टर के दिखाओ। तो हम इसको एंटी वाले डॉक्टर के लेके तभी के तभी उसने चेक करा तो उसने बोला कि इसके दोनों कान के पर्दे सूज रहे बहुत बुरी तरह, और मैं एडवाइस कर रहा हूँ सीबीसी और आपका सीटी स्कैन करा लो, और इसको अगर 1-2 दिन में आराम नहीं हुआ तो आप इसको एडमिट कर देना, इसकी इतनी गंदी कंडीशन है। तो मैंने कहा सर इसका कोई रीजन तो होगा, कोई पॉल्यूशन से किसी चीज से कुछ तो रीजन होगा जो दोनों कान के पर्दे सूज रहे। तो उसने बोला इसकी पिटाई लगाई गई है और उसके कान कंटिन्यू खींचे गए हैं और कई दिन से खींचे जा रहे हैं। तो उसके बाद हम स्कूल गए, उस दिन तो स्कूल बंद हो गया था, हम नेक्स्ट डे स्कूल गए तो मैंने कहा मैम ऐसे ऐसे मेरे बच्चे के साथ कोई मारपीट होती है, तो उन्होंने बोला नहीं हम कोई मारपीट थोड़ी करेंगे बच्चे के साथ। तो मैंने कहा मैम मुझे एक बार एक्सेस दे दीजिए, मैं अपने बच्चे को चेक कर लूंगा आगे के लिए सीसीटीवी के लिए। तो उन्होंने बोला आप कल आना, फिर सैटरडे संडे की छुट्टी आ गई, बीच में बंद रहता है स्कूल। फिर हम मंडे 24 तारीख को स्कूल गए, मेरी वाइफ गई थी स्कूल, तो उन्होंने बोला कल आ जाना हम कल आपको एक्सेस दे देंगे। फिर हम 25 तारीख को फिर पहुंची मेरी वाइफ लड़ झगड़ के कैमरे लेने के लिए, तो उन्होंने बोला 1500 रुपये चार्ज करो हम आपको एक्सेस दे देते हैं। तो उन्होंने बोला हम आपको सिर्फ एक कैमरा देंगे, उसने बोला सारे कैमरे दो जब क्लास के जितने कैमरे, तो उन्होंने 3 कैमरे दे दिए। तो वो घर आ गए कह रहे हम घर आपको पासवर्ड सेंड कर देंगे, उन्होंने 1-2 बजे में पासवर्ड सेंड कर दिया। पहले उन्होंने या तो बोला होगा कि भाई अम्मत मारना, उन्होंने कुछ बोला होगा कि आगे से इसको परेशान मत करना, उनके पेरेंट्स लाइव देखेंगे बैठ के। हमने लाइव ना देखने की जगह हमने पुरानी रिकॉर्डिंग निकाली, पहले हमने 18 तारीख की निकाली, जब हमारा बच्चा घर पे आया तो कुछ तो प्रॉब्लम हुई होगी स्कूल में, तो 18 की जब हमने फुटेज देखी तो उसको 3 घंटे कंटिन्यू एप्रेन से बांध रखा, हाथ तो खोल रखे थे, चेयर से एप्रेन से उसको बांध दिया और वो ऐसे कंटिन्यू बैठा हुआ है, वो ऐसे खिसक खिसक के आगे आ रहा है। उसको आया वो लात मार रहा कि मुझे खोल दो, आया ने उसे मारा फिर पीछे बिठा दिया, फिर वो टीचर के पास आया मुझे खोल दो, दोबारा उचक उचक के टेबल फेंकी उसने कैसे कैसे करके मुझे खोल दो, वो आई उसने फिर बिठा दिया फिर मारा। उसके बाद उसके कान पकड़े, कान खींचे, चाटे मार रही है। मैंने 17 तारीख की फुटेज निकाली, 17 को भी देख रहा हूँ, वो बेचारा चुप बैठा हुआ है, एक अपना मखाना एक बच्चे को अपना दे रहा है और उसके में से एक खाना ले रहा है शेयरिंग करके। तो उसको पकड़ा गंदी तरह, कान खींचा पकड़ के और चाटे चाटे चाटे साइड फिर बिठा दिया उसको, थोड़ी देर में उसको फिर एप्रन से बांध दिया, वो फिर वहां बैठा रहा चुपचाप, उसने खाना फेंक दिया, उसका खाना उठा के फेंक दिया उसने साइड में रख दिया। फिर मैंने फिर 16 तारीख की वीडियो देखी ऐसी, मैंने कहा जो जो देखता हूँ कब कब की क्या क्या फुटेज आ रही है, उसमें क्या कर रही है, वो चुपचाप कोने में ऐसे बैठा हुआ है, आया आइए उसे पकड़ के गंदी तरह खींच के ले गई, वहां मैडम चाटे बजा रही है और उसकी हाइट नाप रहे हैं, मतलब टॉर्चर करके डेली उसको मारपीट कर रहे थे।
0: तो ये आपने सुना, पिता ने इसको लेकर अपनी बात रखी है। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, दिनिका आनंद चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं, एडवोकेट मनोज शर्मा हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं दिल्ली पेरेंट एसोसिएशन के, लक्ष्य छाबड़िया जी हैं प्रेसिडेंट अफोर्डेबल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन से, साथ ही साथ अनिल अग्रवाल जी प्रेसिडेंट अनएडेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन से। मेरे सहयोगी हिमांशु हमारे साथ है, पहले हिमांशु मैं आप ही के पास आना चाहूंगी। हिमांशु, आपने स्कूल से संपर्क किया था तो उन्होंने कहा कि हम अभी बात नहीं करेंगे, क्या इसके बाद का, पहली बात तो अपडेट जानना चाहूंगी, इसके बाद क्या हुआ है, स्कूल ने क्या इसको लेकर कोई बात आगे बताई है, और आपने पिता से भी बात की, वो बातचीत हमने सुनी, इसके बाद परिवार का क्या कहना है? हिमांशु, चले हिमांशु से चर्चा करेंगे, लेकिन शुरुआत में सबसे पहले अनिल अग्रवाल जी आप ही से करना चाहूंगी, नियम क्या कहता है? अब इस पूरे मामले में आपने देखा, ये हम एक केस यहां पर उठा रहे हैं, लेकिन ऐसे केसेस आए दिन आते रहते हैं, पूरे देश से अलग अलग जगहों से अलग अलग कोनों से ऐसे केसेस तमाम आते रहते हैं, क्या कहते हैं नियम इसको लेकर?
2: फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो बच्चे के साथ हुआ है ये बहुत ही शर्मनाक है, और मैं इसके लिए विद्यालयों की ओर से उन सभी अभिभावकों से माफी भी मांगूंगा, क्योंकि ऐसी हरकत कोई नॉर्मल इंसान तो नहीं करेगा। और रही बात पनिशमेंट की, तो मैं बहुत क्लियरली बता दूंगा, एज पर लॉ ऑल्सो और सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस है, किसी भी विद्यालय में बच्चे को फिजिकल कॉर्पोरल पनिशमेंट नहीं दिया जा सकता है। इस बुरे तरीके से पिटाई करना तो कहीं से वो है ही नहीं, और सबसे बड़ी बात है कि प्ले स्कूल के क्लास जो कि प्ले का बच्चा है 3 साल की एज का, उसको कोई मार कैसे सकता है, वो भी इस बेरहमी से, इस बुरी तरीके से कि इतना ज्यादा मेडिकल इश्यूज हो जाए। तो इसके लिए तो मैं कहूंगा कि जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और हम लोग उसके साथ में रहेंगे। दूसरी बात मैं एक और कहना चाहूंगा कि प्ले स्कूल्स के ऊपर किसी भी बॉडी का नियंत्रण नहीं है, उनका कोई लाइसेंस नहीं है, कोई अप्रूवल नहीं है, कोई रिकॉग्निशन नहीं है। पैन इंडिया अब घर घर में जो क्रेच के नाम पर ये चीजें खुलने लगी हैं, और पेरेंट्स भी अपने ईज और कंफर्ट की वजह से रेगुलर स्कूल्स को छोड़ के
0: एक सेकेंड आपको रोकना चाहूंगी। आपने कहा कि इस पर कोई रेगुलेशन नहीं है, लेकिन सर ऐसी बहुत सारी चेंज आज से नहीं, बहुत पहले से चल रही हैं। आपका कहना सही है कि घर घर आजकल गली मोहल्लों में प्ले स्कूल खुल गए, उनकी बात यहां पर नहीं हो रही है सर। ये वो स्कूल्स हैं जो प्राइवेट, जो प्ले स्कूल के नाम पर बकायदा रिकॉग्नाइज्ड हैं, जिनकी फ्रेंचाइजीज अलग अलग जगहों पर बिकती हैं, और उन्हीं उसी के तहत ये स्कूल खुलते हैं।
2: नहीं मैम, एक्चुअल में यही कहना चाह रहा हूँ कि प्ले स्कूल का कोई रिकॉग्निशन एफिलिएशन नहीं होता है, ये पैन इंडिया ये कैसे चल रहे हैं ये सरकार को देखना है। इसके लिए हम लोगों ने अभी खुद इस बात की मांग उठाई है, क्योंकि ये हर व्यक्ति जो भी चाह रहा है आज वो प्ले स्कूल खोल दे रहा है, उसके लिए कोई एफिलिएशन नॉर्म्स नहीं है, उसके लिए कोई अप्रूवल्स नहीं रिक्वायर, कोई सर्टिफिकेशन नहीं, किसी डिपार्टमेंट की एनओसी नहीं। तो कहीं ना कहीं उनको एक फ्रीडम मिली हुई है जिसका वो नाजायज फायदा उठा भी रहे हैं। जो रेगुलर स्कूल्स हैं वहां पर इस तरह की प्रॉब्लम, अब तो वैसे भी मैंने कहा ना, ये क्लियरली लॉ में है कि आप कॉर्पोरल पनिशमेंट सीबीएसई की गाइडलाइंस हो, आईसीएसई की गाइडलाइंस हो, उसमें बहुत क्लियरली मेंशन है कि फिजिकल पनिशमेंट आप नहीं दे सकते।
0: सर मैं लौटूंगी आपके पास, एक बार मेरे सहयोगी हिमांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, मेरे दोनों सवाल मैं वापस से दोहरा देती हूँ। पहली बात तो ये कि इसके बाद स्कूल से आपने संपर्क किया, क्या स्कूल ने इसको लेकर कोई बात कही है, अपनी बात रखी है? दूसरा, अभी फिलहाल अभिभावकों का क्या कहना है?
3: देखिए, स्कूल में जब हम गए थे और हमने बात करने की कोशिश की तो कहा गया कि अभी वो कोई जवाब नहीं देंगे, उनकी तरफ से इस पूरे मामले पे जवाब एक दो दिन बाद दिया जाएगा। लेकिन जो हमें जानकारी मिली है स्कूल की तरफ से, जो सोर्सेस के जरिए भी हमने पता किया कि स्कूल ने कार्रवाई की थी, खासतौर से जब पेरेंट्स पहुंचे थे और इन तमाम वीडियोस के साथ पहुंचे थे, तो जो स्कूल प्रशासन है उन्होंने मेड को और जो कंसर्न टीचर है उनके खिलाफ एक्शन लिया था, मेड को हटा दिया था। और उसके बाद जब एफआईआर दर्ज हुई तो पुलिस ने सबसे पहले मेड को डिटेन किया, उससे पूछताछ की। और दूसरी चीज, जो मेड के खिलाफ जो तमाम सीसीटीवी फुटेज थे, क्योंकि देखिए सीसीटीवी फुटेज झूठ नहीं बोलता है, सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि किस तरीके से 16 को क्या हुआ, 17 को क्या हुआ, 18 को क्या हुआ, वो क्लियर दिख रहा है। प्रीमिसेज आपका है, सीसीटीवी कैमरा आपका है, कंट्रोल आपका है, सिर्फ देख मैं रहा हूं। और वहां से उसमें वीडियोस में देखने में जो कुछ भी दिखा, उनके पिता को वो फौरन थाने गए, थाने में उन्होंने पूरा रिटर्न कंप्लेन दिया, और कंप्लेन में उन्होंने कुछ ऐसी बातें लिखी कि जिसकी वजह से पुलिस ने इस मामले में पॉक्सो की धारा ऐड की है, जो अपने आप में बेहद परेशान करने वाली है, चिंताजनक है कि पॉक्सो की धारा ऐड करनी पड़ी पुलिस को। तो आप सोचिए कि किस लेवल तक बच्चे को परेशान किया गया होगा। हालांकि पुलिस अब तमाम जो आरोप लगे हैं उनकी जांच कर रही है, नंबर एक। नंबर दो, जो सीसीटीवी फुटेज पुलिस को मिले हैं, इसके अलावा पुलिस अब अपनी तरफ से भी एनालाइज कर रही है, जो तमाम डीवीआर है उनको पुलिस उनसे तमाम जो पुराने फुटेज हैं वो ले रही है, क्योंकि बोला गया था कि एक बार पेरेंट्स को बोला भी गया था, पेरेंट्स आए थे अपने बच्चे को ले गए थे। यहाँ पर पेरेंट्स का कहना है कि अगर किसी तरीके से बच्चा परेशान कर रहा था तो आप इस तरीके के एक्शन लेने के बजाय आप हमें इन्फॉर्म करते हैं, माते बच्चा लेके चले जाते, लेकिन उसको बांध देना ये कहां तक जायज है। अब देखते ही है कि पुलिस आगे इस पूरे मामले में किस तरीके से बढ़ती है।
0: ठीक है, ठीक है। तो हिमांशु, जल्दी से एक और सवाल, क्या मामला अब पुलिस ने मेड और टीचर के खिलाफ बनाया है या स्कूल के खिलाफ बनाया है?
3: नहीं, देखिए इसमें जो लोग सीधे इन्वॉल्व हैं अभी फिलहाल उन्हीं के खिलाफ है। पुलिस का जो एक्शन है, जिनके खिलाफ प्रूफ है कि जो मारता हुआ दिख रहा है, उन्हीं के खिलाफ फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में एक्शन ले रही है।
0: ठीक है, नजर बना रखे, शुक्रिया हिमांशु। अब एडवोकेट मनोज शर्मा जी, आप ही के पास आना चाहूंगी। सर, आपने मेरे सहयोगी हिमांशु की भी बात सुनी है, और इससे पहले क्योंकि चर्चा की शुरुआत हमने अनिल अग्रवाल जी से की थी, उनकी भी बात सुनी है, आपका इस पर क्या कहना है, नियम क्या कहते हैं?
4: जी, पहली बात तो देखिए बहुत ही शर्मनाक और दुखदायी घटना है, और अनिल अग्रवाल जी ने बिल्कुल सही दुखती रग पे हाथ रखा है कि प्ले स्कूल्स पे कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। मैं आपको बताऊं, जहां तक मेरा ज्ञान जाता है, मेरे ख्याल से एनसीपीसीआर की सिर्फ गाइडलाइंस हैं प्ले स्कूल कैसे बनने चाहिए, क्या होना चाहिए, कोई चेक एंड बैलेंसेस नहीं है, कोई इंस्पेक्शन नहीं है कम से कम। और जो पहली से या जो प्री नर्सरी या नर्सरी से लेकर जो हमारे 12वीं तक के स्कूल हैं, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, उनका कुछ एंड चेक एंड बैलेंसेस है, कुछ इंस्पेक्शन होता है, चाहे नाम मात्र कोई एक एनुअल रिपोर्ट आती है, कुछ चीजें यू नो रिटर्न फाइल होते हैं। तो पहली बात तो ये कि हमें बहुत ही गंभीर रूप से, क्योंकि ये उस उन अवस्था एज ग्रुप के बच्चे हैं जो शायद अपने लिए कुछ भी नहीं बोल पाएंगे, अगर उनको आप जोर से डांट भी देंगे तो भी वो सहम जाएंगे, और ऐसी अवस्था में एक बच्चे को आपने कुर्सी से बांध रखा है, और जब पिता है उसके लेके गए उसके अस्पताल तो उसके दोनों कानों में मतलब सूजन है, आप ये समझ सकते हैं कितनी बुरी तरह से उसको मारा गया है, प्रताड़ित किया गया है। और ये तो अच्छा है कि मतलब मैं तो शुक्रगुजार हूं और काफी साधुवाद है उन माँ बाप को जो कितने सक्षम है और अटेंटिव है, जिन्होंने मुद्दा उठा लिया, और जो बेचारे थोड़े से गरीब तबके या जो थोड़े से एक तरह से कह लें कि अपने ही कामों में ज्यादा व्यस्त हैं, बच्चे पे नहीं ध्यान दे पाएंगे, तो ये तो चीजें नजरअंदाज होकर चली जाएंगी। स्कूल तो अपना एक्चुअली दिक्कत दिक्कत क्या है, एक्चुअली हर चीज बिजनेस मॉडल हो गई है, हम कितना लगा रहे हैं और क्या कमा रहे हैं, कितना माया को दे रहे हैं, कितना टीचर्स को दे रहे हैं। अब प्ले स्कूल में टीचर की कोई क्वालिफिकेशन नहीं, जब जब स्कूल ही अनरेगुलेटेड है टोटली, कोई कोई उस पे नियम कानून ही नहीं लगता, तो वहां पे अब क्या टीचर, क्या डायरेक्टर, क्या प्रिंसिपल, सब नाम मात्र।
0: सर, लेकिन इसका रजिस्ट्रेशन तो होता है ना, इसका भी तो रजिस्ट्रेशन होता है एज पर द स्टेट गाइडलाइंस, वो अलग अलग स्टेट में वेरी करती हैं। अब एक सेकंड आने जी,
4: दिक्कत है। हाँ। यही दिक्कत है, बिल्कुल बिल्कुल अनिल अग्रवाल जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप ये जान के आपको ताज्जुब होगा कि इतने मशरूमिंग हो गए हैं जब से मतलब आपके दोनों पेरेंट वर्क कर रहे हैं, एक कल्चर बन गया है कि हम जितनी जल्दी बच्चे को पढ़ने भेजेंगे उतनी जल्दी उसका किसी अच्छे से और इंग्लिश मीडियम और अच्छे से हाई प्रोफाइल स्कूल में एडमिशन हो जाएगा। तब से ये प्ले स्कूल मैम इनपे और कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है, कोई एक एनसीपीसीआर की गाइडलाइंस है, वो भी नाम मात्र है, वो भी आप उसको माने ना माने, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है इसके ऊपर।
0: ठीक है अनिल जी, अपनी बात रखिए, फिर उसके बाद लक्ष्य जी से को भी इंक्लूड करेंगे साथ।
2: No regulating body, no recognition, no affiliation of any of the pay school in pan India. ये भारत सरकार की HRD की या अभी एजुकेशन डिपार्टमेंट कह लीजिए, स्टेट गवर्नमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट से इनका ड्यू जो एफिलियेशन प्रोसेस जो रेगुलर स्कूल्स का होता है, इनके लिए कुछ भी नहीं है, और इसी का ये बेनिफिट उठा रहे हैं। आपने कहा फ्रेंचाइज चेन है, चीजें हैं, चीजें चल रही हैं, गवर्नमेंट इग्नोर कर रही है, क्या कारण है? फ्रेंच की फॉर्म में खोला गया, बेसिक्स के लिए खोला गया, उसको धीरे धीरे ये एक्सटेंड करते हैं, बट इनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। और देखिए मैं एक बात बोलूंगा, स्कूल के खिलाफ की कार्रवाई का एक इशू, जिस व्यक्ति ने किया है वो दोषी है, और वो टीचर को सजा कायदे से मिलनी चाहिए, वो नजीर बने पूरे देश के शिक्षकों के लिए, टीचर्स के लिए। जो भाई साहब ने बात बोली क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, मतलब वो बेसिकली किसी को भी अपॉइंट कर लेते हैं, उनको पता ही नहीं बच्चे की साइकोलॉजी क्या है, बच्चे को हैंडल कैसे करना है, तो वो अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल देते हैं। जबकि एक प्रॉपर इस लेवल पे ट्रेंड टीचर्स की, जो बहुत ही मतलब बहुत ट्रेंड टीचर्स हो, बल्कि मदरली टच वाला दे पाए फील, वो टीचर्स अपॉइंट होने चाहिए। और जो रेगुलर स्कूल्स में आपको देखने
0: आप
2: को मिलेंगे,
0: बात कर रहे हैं ना, गाइडलाइंस ही नहीं है। एक बार लक्ष्य चाबड़िया जी, आपको इंक्लूड करना चाहूंगी इस पर, आप अपनी बात रखिए।
5: अनिल जी भाई साहब ने और मनोज जी भाई साहब ने बिल्कुल सही बात रखी, ऐसी कोई गाइडलाइंस नहीं है, ना ही स्टेट गवर्नमेंट की ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट की, जो कि प्ले स्कूल को रेगुलेट करे। साथ ही जो स्कूल दिल्ली सरकार से रिकॉग्नाइज्ड होते हैं, उन स्कूल्स के ऊपर सारी चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं, बकायदा हर महीने हमारी रिपोर्ट जाती है और इसके पीछे हमारे इंस्पेक्शन भी होते हैं, स्कूल के सीसीटीवी चेक होते हैं, काम कर रहे हैं नहीं कर रहे। तो इस तरह से जो रिकॉग्नाइज स्कूल्स हैं उनके ऊपर तो प्रॉपर चेक एंड बैलेंसेस रहता है, लेकिन जो प्ले स्कूल्स हैं उनके ऊपर कोई गाइडलाइंस नहीं। तो मैं सरकार से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ऐसी गाइडलाइंस लेके आए, कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस हों प्ले स्कूल्स के ऊपर भी, ताकि ये जो ऐसी घटना है, ये बहुत ही दुखद घटना है, बहुत ही गलत हुआ बच्चे के साथ। 3 साल का बच्चा बहुत ही कोमल बच्चा होता है, उसके साथ तो क्या डिसिप्लिन है और क्या शैतानी है, उस बच्चे को तो प्यार से बहुत ही समझाया जा सकता है, और इस तरह से मारना तो ये बहुत ही बर्बरता है बच्चे के साथ, बहुत ही गलत हुआ। तो पेरेंट्स को साधुवाद, इस तरह से उन्होंने एक्शन लिया और रिपोर्ट की। और स्कूल के अंदर ये खास बात देखने वाली है कि सीसीटीवी काम कर रहा था। कई बार ऐसा भी होता है कि सीसीटीवी काम नहीं कर रहा होता, तो अगर सीसीटीवी काम ना कर रहा होता तो ये रिकॉर्ड नहीं होता। तो ये बहुत ही अच्छी चीज यहाँ पकड़ में आई हमारे पास जी।
0: चलिए ठीक है, गाइडलाइंस नहीं, ये तो एक सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन एक और इसके बाद जो चर्चा की शुरुआत होगी वो यही होगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वीडियोस भी आते हैं जहां छोटे छोटे बच्चों के साथ इतना स्ट्रिक्टली बिहेव करते हैं। लेकिन दिनिका जी, आपको इंक्लूड करना चाहूंगी, आप एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट भी हैं। मैम, ये समझना चाहेंगे, 3 साल का बच्चा, इस केस से शुरुआत करते हैं, क्योंकि इससे पहले बहुत सारे केसेस आ चुके हैं पूरे इंडिया में, इस तरह के तमाम केसेस आते हैं। दो चीजें, प्ले स्कूल हो, प्री स्कूल हो या स्कूल हो, जहां पर बच्चे को इस तरीके से फिजिकली पनिश किया जाता है, एक बच्चे की मानसिकता पर और फिर उसके बाद उसके पेरेंट्स की मानसिकता पर कितना असर पड़ता है?
6: असर तो पड़ेगा ही, और काफी गहरा असर पड़ेगा। एक तो बच्चा तो सहम गया, बच्चे के सहमे में बच्चे को ठीक करने के लिए अगेन पेरेंट्स का एफर्ट जाएगा। बच्चे को स्कूलिंग के लिए, आप सोचिए ये 3 साल का बच्चा है, इसने अभी प्ले प्री स्कूल जाना है, नर्सरी जाना है, उसका अडल्ट्स को लेके, आउटसाइडर्स को लेके जो सारा फेथ है, ट्रस्ट है, वो रिलेशनशिप एपरेटस है, वो हिल गया वहीं के वहीं। पहली चीज, पेरेंट्स का भी, ये वो पेरेंट्स बन जाएंगे जो जिंदगी भर अब अपने बच्चे को लेके एकदम, मतलब एक तरीके से उनका डिफेंसिव, और जिसको हम हिंदी में बोले तो शकी नजरिया ही रहेगा ना, कि चीजें खराब हैं। और जो को पैनलिस्ट हैं वो बिल्कुल सही चीज बोल रहे हैं कि यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा जो हम उठाने की कोशिश करें, हम इंडिविजुअल लेवल पर इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं, उससे पहले प्रिवेंटिव पे जाते हैं कि हमारे रेगुलेशंस नहीं है, हमारे रूल्स नहीं है। और जो ये रूल्स और रेगुलेशंस की बात कर रहे हैं, ये रूल्स और रेगुलेशंस हमें ना केवल प्ले स्कूल्स के लिए चाहिए, यहां तक कि मैं ये भी कहूंगी कि जो हमारे एस्टैब्लिश्ड प्री स्कूल्स हैं, जहां नर्सरी की क्लासरूम्स होती है, जहां बच्चा 5 साल की उम्र के बाद जाना शुरू होता है, उन स्कूल्स में भी स्टाफिंग जो है, आई डोंट थिंक कि हम एक ऐसे सिस्टम में रहते हैं जहां हर स्कूल का हर स्टाफ सच में चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन या ट्रेनिंग लेके आया है। और इस चीज को हम इंडिविजुअल या एक इंसान की गलती नहीं बना सकते, ये एक सिस्टम है। एजुकेशन सेक्टर में इतनी प्राइवेटाइजेशन है, स्पेशली स्कूल लेवल पर इस समय, कि स्कूल्स एक बिजनेस मॉडल की तरह हो गए हैं। इसीलिए हमारे पास ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, आज की डेट पे जब हम स्कूल में जाते थे तो हमारे पेरेंट्स को एसोसिएशंस नहीं बनानी पड़ती थी कि फीस इतनी ज्यादा हो रही है। आज की डेट पे उसके बिना कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं है। तो ये जो सारी चीजें हैं, और ये सब एक सिस्टमिक रॉट जिसको आप कहोगे वो है, जो जिसका एक बहुत ही भयंकर चेहरा हमें सामने नजर आया कि एक 3 साल का बच्चा जो 3 साल के बच्चे होने की हरकतें कर रहा होगा, वो खेल रहा होगा, वो कूद रहा होगा, वो मस्ती कर रहा होगा, और उसकी मस्ती मस्खरी जिसको मैं कहूंगी, उसका उसको एक इतना खराब चीज देनी पड़ी कि कोई एक इंसान ने उसको ना केवल टारगेट करा लेकिन बार बार टारगेट करा। और अभी तो हमें वहां एक जना नजर आ रहा है, और भी शायद बाकी बच्चों के साथ भी वही हार्शनेस थी। क्यों थी वो हार्शनेस? और उस स्कूल के टीचर्स, स्टाफ, बाकी एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब वो आया अकेले तो नहीं एक्ट कर सकती।
0: बिल्कुल अनिल जी, अब देखिए, अब एक नई बहस यहां से छिड़ गई है। अब यहां पर मैं, आपने कहा प्ले स्कूल्स को लेकर गाइडलाइंस नहीं है, पहली बात तो यही कि इसको लेकर अब जाहिर सी बात है कि सरकार को एक्शन लेना चाहिए। दूसरी बड़ी बात, प्री स्कूल्स की मैं बात करती हूं, ऐसे केसेस प्री स्कूल में भी आते हैं, लेकिन ये बात सीधा वहां जाकर आती है जहां, जिसका जिक्र आपने अभी थोड़ी देर पहले किया था, कि ट्रेन्ड स्टाफ नहीं है। अभी मैम भी ये बात कह रही थी कि पैसा बनाने की मशीन बन गए हैं ये सारे स्कूल्स, ट्रेन स्टाफ नहीं है। वो स्टाफ आपका कितना एजुकेटेड है, वो कितना चाइल्ड फ्रेंडली है, वो कितना बच्चे के बिहेवियर को जानता समझता है, वो बहुत ज्यादा लैक कर रहा है तमाम स्कूलों में। इसकी जवाबदेही किसकी है सर?
2: अगेन मैम, जो
0: दिनिका जी एक सेकंड आऊंगी, अनिल जी के बाद आती है आपके पास।
2: मैम एक्चुअली जो कंसर्न एफिलिएटिंग बॉडीज हैं, अगर मैं स्टेट बोर्ड्स की बात करूं तो स्टेट बोर्ड है, अगर सीबीएसई की बात करूं तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, एंड आईसीएसई की बात करूं तो काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन। जो स्कूल सीबीएसई और आईसीएसई से एफिलिएटेड हैं या स्टेट बोर्ड से एफिलिएटेड हैं, वहां पर जो कंसर्न ऑफिशियल्स हैं, ये उनकी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे सीबीएसई और आईसीएसई के लिए आई एम प्रीटी श्योर कि वहां पर टीचर्स अनट्रेन्ड यानी कि बीएड मस्ट है, उसमें साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट पढ़ता है जो भी टीचर बनता है, तो ये गाइडलाइंस है, बाकायदा है। अब मैम अगेन द क्वेश्चन अराइजेस कि कौन उसको पालन कर रहा है, उस पर चेक्स एंड बैलेंसेस, वो जिम्मेदारी सरकार की बनती है, वो एजुकेशन डिपार्टमेंट की बनती है। मैं फिर से बोलूंगा सीबीएसई और आईसीएसई में ये कंट्रोल बहुत आसानी से होता है क्योंकि रेगुलर हर साल एवरी ईयर टीचर्स अपडेट और टीचर्स ट्रेनिंग के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है। स्टेट बोर्ड के ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, वहां पर प्राइवेट स्कूल्स भी हैं और गवर्नमेंट के अपने खुद के स्कूल हैं, बट वहां पर चीजें थोड़ी सी डिफरेंट वे में है। अब उसके लिए जब तक गवर्नमेंट या डिपार्टमेंट उस लेवल का इनिशिएटिव लेके नहीं चलेगा, टीचर्स को वो ट्रेनिंग नहीं प्रोवाइड करेगा, तो तब तक देखिए साइकोलॉजी है बच्चा, जो मैम ने भी बात बोली कि आप 3 साल के बच्चे को सोच कैसे सकते हो मारने का, एक हाइपर एक्टिव बच्चा है। एक जो मैंने मदरली टच वाली बात करी, आजकल क्या करते हैं 12th पास की लड़कियों को प्ले स्कूल वाले नौकरी पे रख लेते हैं, 4 घंटे के लिए वो आती हैं और अपना पढ़ा के चली जाती है, उनको 5-7-10 हज़ार रुपए दे देते हैं, उनका पॉकेट मनी हो गई, उनका कोई कनेक्शन, इमोशंस, अटैचमेंट, फीलिंग्स कहीं बच्चे के साथ जनरेट हो ही नहीं पाई। तो जब, और यहाँ पर मैं किसी की गलती या किसी की बात नहीं बोलूंगा, पेरेंट्स भी अपने ईज की वजह से नियरेस्ट वो रिकॉग्नाइज्ड रेगुलर स्कूल जहाँ प्रॉपर स्कूलिंग हो रही है, वहां पर कई मेन स्ट्रीम स्कूल्स है जहां पर प्ले स्कूल्स की क्लासेस उन्होंने अपनी शुरू करी है, बट उनके फीस स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पर चूंकि पेरेंट्स फैसिलिटीज चाहते हैं, अब आज की तारीख में तो एसी और सारी चीजें, लैंड कॉस्ट, तो देखिए वो मल्टीपल फैक्टर्स हैं, उस पर मैं जाऊंगा तो बड़ी लंबी डिबेट हो जाएगी।
0: बिल्कुल, हाँ, सही कह रहे हैं सर,
2: उस पर अलग पहलू है।
0: हाँ।
2: बट मेरा जो कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की, अगेन मैं फोकस करके कहूंगा, वो चाहे हिंदुस्तान का कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, आप छोटे बच्चों को पनिशमेंट नहीं दे सकते। कई बार
0: इनफैक्ट सर, छोटे बच्चों को अभी आपने जिक्र किया, तमाम हमारे जितने भी बोर्ड उसमें गाइडलाइंस हैं, आप किसी भी बच्चे को फिजिकली पनिश नहीं कर सकते। दिनिका जी कुछ कहना चाह रही थी आप?
6: मैं जो चीज कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि हम लोग बात कर रहे हैं, सर ने एक हाइपर एक्टिव वर्ड यूज करा, मेरा ध्यान वहीं जा रहा है। मैं फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली मैं एक स्कूल में काम कर चुकी हूँ, और वहां मैं ये भी देख चुकी हूँ कि जो 5 साल का बच्चा है या 6 साल का बच्चा है, बहुत ही एक ईगरनेस रहती है, और ये सिस्टमिक है, क्योंकि नर्सरी क्लासरूम में अगेन टीचर है, को टीचर है, हेल्पर्स हैं, हमारी ट्रेनिंग कितनी बच्चा सेंट्रिक है, कितनी साइकोलॉजी सेंट्रिक है, उसमें बहुत लैग है। एंड आई डोंट थिंक हमें और गाइडलाइंस चाहिए. आई थिंक हमें गाइडलाइंस की इन्फोर्समेंट चाहिए, हमें वो इन्फोर्समेंट चाहिए ताकि चोट वहां लगे जहां हर्ट करता है. क्योंकि जब ये चीजें होती हैं तो इनका इम्पैक्ट ये आता है कि कुछ दिन न्यूज साइकिल में आता है, कोई एक दो जने को नौकरी से निकाल दिया जाएगा, लेकिन स्कूल की जो मैनेजमेंट है, ओनरशिप है, जो एक्चुअल लोग हैं जो ये पॉलिसीज बना रहे हैं, चाहे वो पॉलिसी अडहॉक टीचर्स को रखने की है, अंडर क्वालिफाइड अंडर ट्रेन्ड लोगों को एज टीचर्स रखने की है, या बिना प्रॉपर ट्रेनिंग के स्टाफ को हायर करने की है, लोग नहीं देखते हैं. अनलेस एंड अंटिल हर चीज का, हर लेवल ऑफ लैब्स का एक स्ट्रिक्ट इमीडिएट या नियर फ्यूचर में रेप्रकॉशन आए. अगर मैं एक स्कूल की मैनेजमेंट टीम पे बैठी हूं, तो ये नहीं कि मैं जेल चली जाऊंगी, ये कि मुझे उसी समय वो क्या फाइन देना पड़ेगा उस बच्चे की फैमिली का, जो भी मेडिकल कॉम्पनसेशन है, जो भी उसका साइकोलॉजिकल काउंसलिंग का कॉम्पनसेशन है, इट शुड गो फ्रॉम माई पॉकेट, एंड माई
0: जी
6: पॉकेट मीन्स मी द
0: दनिका जी,
6: मैनेजमेंट.
0: ठीक है, यहीं से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे. अनिल जी लौटूंगे आपके पास, सवाल बहुत सारे हैं, इसको लेकर हम आगे चर्चा करेंगे. एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, तुरंत लौटते आप रहिए हमारे साथ.

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: बचपन पर आघात कब तक किसी को लेकर चर्चा कर रहा है। लक्ष्य जी मैं आपके पास आना चाहूंगी, ब्रेक पर जाने से पहले तमाम नियम कायदों को लेकर चर्चा हो रही थी। सर एक सवाल मैं जानना चाहूंगी, एक स्कूल में चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट की कितनी जरूरत है, कितनी तादाद में चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट होते हैं और क्या उनको उनका काम करने दिया जाता है या फिर वो एक सब्स्टिट्यूट टीचर की तरह काम करते हैं, ये रियलिटी बताइए सर।
1: जितने भी रिकॉग्नाइज स्कूल्स होते हैं, चाहे वो दिल्ली में हो या दिल्ली से बाहर हो, पूरे देश में सभी बोर्ड्स की, सीबीएसई, आईसीएसई, भारतीय शिक्षा बोर्ड और स्टेट बोर्ड्स की गाइडलाइंस होती हैं, दिल्ली सरकार की गाइडलाइंस हैं कि हमें चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट स्कूल के अंदर रखना है। और कोई भी बच्चे को अगर समस्या आ रही है तो वो बेझिझक होके चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के पास जाके अपनी परेशानी शेयर कर सकता है और उसका समाधान चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट देता है। ये जो गाइडलाइंस है इनका जो फॉलो है वो सभी के सभी रिकॉग्नाइज स्कूल्स या एफिलेटेड स्कूल्स में तो होता है, लेकिन जो प्ले स्कूल्स हैं वहां कुछ ऐसा मैंडेट नहीं है। तो बार बार हम सब यही कह रहे हैं कि ऐसा मैंडेट जो प्ले स्कूल्स हैं वहां भी आना चाहिए, इसलिए जो रिकॉग्नाइज स्कूल्स हैं वहां पे इस तरह की घटनाएं बहुत होने के चांसेस कम हो जाती हैं। और हम सिर्फ सवाल खड़ा करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि जो सिस्टम में परेशानी वो सभी जगह है, चाहे वो सरकारी सिस्टम हो चाहे वो प्राइवेट सिस्टम हो, लेकिन एक मैनेजमेंट के ऊपर आप ये कह देना कि वहाँ बड़ी सिस्टम खराब है, प्राइवेट स्कूल खराब है, फीस बहुत ज्यादा है और उसके अंदर टीचर्स नहीं है, तो ये ठीक नहीं है।
0: नहीं नहीं सर, एक सेकंड सर, आपने ये तो ठीक है नियम बताया, लेकिन क्या वाकई जो चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट जो टीचर्स होती हैं, क्या वाकई उनको बच्चों की साइकोलॉजी सर एक सेकंड समझने के लिए बिठाया जाता है या वो सब्स्टिट्यूट टीचर की तरह काम करती है? सर ग्राउंड रियलिटी बताइएगा।
1: ग्राउंड रियलिटी मैं बताता हूँ, जितने भी सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी बड़े स्कूल्स है वहाँ ऐसा रहता ही है। वहाँ प्रॉपर काउंसलर्स होते हैं, उनसे बार बार चर्चा करने के लिए आते हैं बच्चे, रहता है ये प्रोविजन है। लेकिन अब ये देखिए इतने सारे डॉक्टर हैं, लेकिन उसके बाद भी कुछ ना कुछ तो बीमारी होती है, इतने सारे हॉस्पिटल हैं उसके बाद भी कुछ ना कुछ तो बीमारी होती है, इसलिए एक सिस्टमिक फ्लॉ है, उस पर हमें काम करने की आवश्यकता है।
0: दिनिका जी आप तो आपने कहा कि आप भी स्कूल में एज अ साइकोलॉजिस्ट काम कर चुकी हैं, तो आप बताइए जरा ग्राउंड रियलिटी क्या रहती है।
2: मैम मैं ग्राउंड रियलिटी बताऊंगी ऑन द बेसिस ऑफ जो काम करते हैं, तो ग्राउंड रियलिटी इज अ मिक्सचर ऑफ जो सर बोल रहे हैं और जो आप बोल रहे हो, दोनों में से कोई एक पूरा सच नहीं है। ऐसा नहीं है कि स्कूल्स में आज की डेट पे पोस्ट नहीं एग्जिस्ट करती है या पोस्ट पर लोग नहीं हायर्ड है, लेकिन इट इज ऑल्सो 100% ये भी ट्रू है कि वो टीचर्स बहुत सारा सब्स्टिट्यूशंस करते हैं। ये भी 100% ट्रू है कि अगर एक स्कूल में जूनियर विंग और सीनियर विंग दोनों है, यानी कि नर्सरी फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड का भी स्कूल है, तो एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट या एक स्कूल काउंसलर उन 12 ग्रेड्स के बच्चों को नहीं देख सकता है, लेकिन ये ग्राउंड रियलिटी स्कूल्स में नहीं इम्प्लीमेंटेड है। और ये चाहे आप दिल्ली के बड़े एलीट प्राइवेट स्कूल को देख लीजिए, कुछ स्कूल्स हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं, मैं उनके बारे में भी जानती हूँ, जहां पूरा पूरा डिपार्टमेंट है, लेकिन आर ग्राउंड रियलिटी इज अ ग्राउंड रियलिटी ऑफ इनएडिक्वेसी।
0: ठीक है, एडवोकेट मनोज शर्मा,
2: पूर्ति हो रही है जो आप पूछ रहे हो उस सवाल का, सारे पर्दे हटा के जवाब दिया जाए तो जवाब हाँ है।
0: एडवोकेट मनोज शर्मा, देखिए नियम है, यही बात दिनिका जी ब्रेक पर जाने से पहले कह रही थी कि नियम बहुत हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं होते। उनमें से एक नियम ये भी है, नियम ये है चाहे वो आईसीएसई हो या सीबीएसई हो या स्टेट बोर्ड्स हो, हर स्कूल में आज की डेट में ये बहुत अनिवार्य है कि स्कूल्स में चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट की जरूरत होती है, लेकिन वो क्या काम करते हैं, क्या वाकई वो बच्चों की काउंसलिंग करते हैं या टीचर्स की करते हैं जहां जरूरत है वहां काम करते हैं या सब्स्टिट्यूट टीचर की तरह काम करते हैं?
3: मैडम देखिए मेरा थोड़ा सा मत ना इस मुद्दे पे थोड़ा सा भिन्न है सारे अपने को पैनलिस्ट से। मेरा ये कहना है कि चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट की शायद हमें जरूरत होगी, कुछ बच्चे हो सकता है कुछ आज की जो मानसिक बीमारियां उनसे ग्रसित हो सकते हैं, बट उससे ज्यादा मुझे एडल्ट साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है जो टीचरों को समझे, टीचर की बॉडी लैंग्वेज देखे, टीचरों को कभी भी उनका सीसीटीवी कैमरे क्लास में देख ले कि टीचर चिल्ला रहा है, टीचर चौक फेंक रहा है, टीचर डस्टर मार रहा है, हमें एडल्ट साइकोलॉजिस्ट की ज्यादा जरूरत है, एक दो नहीं कम से कम 4-5।
0: इसीलिए मैंने यहाँ पर कहा

0: करे, वो बच्चा एक दूसरे का टिफिन ना मतलब खींचकर खाए, या उसको वो हल्का सा पुश ना करे, या वो उसकी कॉपी ना छीने, या उसके पेंसिल बॉक्स को ना छेड़े, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं बच्चे से? मुझे तो सिर्फ लगता है कि बजाय इसके एडल्ट साइकोलॉजिस्ट को रखिए स्कूलों में, जो टीचर को मंथली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे मॉनिटर करे, उनको ग्रेड करे कि ये टीचर ज्यादा एग्रेसिव है, ये टीचर ज्यादा चिल्लाता है, ये टीचर ज्यादा हाइपर है, इस पर रोक लगानी चाहिए और उसको हमें इलाज करना चाहिए। बच्चों का इलाज करने का तो मुझे कुछ औचित्य समझ में नहीं आता।
1: ठीक है अनिल जी,
0: तीसरी
1: ये
0: तीसरी तीसरी एक एक छोटी
1: हाँ
0: सी
1: हाँ
0: बात
1: प्लीज
0: और,
1: बात
0: एक
1: रख
0: छोटी सी
1: लीजिए
0: बात और
1: अपनी।
0: कि देखिए, मैंने जो रिपोर्ट आपके जो मतलब कोऑर्डिनेटर ने मुझे भेजी, मुझे मीडिया से भी थोड़ी सी शिकायत है। उस स्कूल का ना तो नाम है, ना स्कूल का पता है, ना स्कूल की उस टीचर आया, ना प्रिंसिपल, ना डायरेक्टर का नाम है। देखिए,
1: ठीक
0: लोक
1: है
0: निंदा भी एक चीज होती है। मैं समझ सकता हूं मीडिया के कुछ एथिक्स हो गए, बट लोक निंदा एक बहुत बड़ी चीज होती है। अगर कोई वैसे ही बदनाम हो जाए ना कि ये स्कूल इस इलाके में, इसका तो काम यही है, तो उसका तो बिजनेस, अगर
1: सर
0: ये बिजनेस
1: हमारा, ठीक है चलिए मीडिया वाली बात मैं रख देती हूँ, हमारा ये शो करने का मकसद केवल एक स्कूल तक सीमित नहीं, हम किसी को पर्टिकुलर टारगेट नहीं कर रहे, ये सर बहुत सारे केसेस आजकल आ रहे हैं, आप सोशल मीडिया पर जाकर देखिए,
0: नेम एंड
1: केवल
0: शेम
1: दिल्ली
0: कीजिए ना,
1: एनसीआर
0: हमको
1: नहीं
0: क्या
1: सर,
0: दिक्कत है, नेम एंड शेम।
1: पूरे देश में हर जगह पर ऐसे छोटे छोटे मामले इतने ज्यादा आए हैं कि चिंता यहाँ अभिभावकों को है कि हम अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ने के लिए भेज रहे हैं या पिटने के लिए भेज रहे हैं। तो ये आपने जो सर आप ही ने मुद्दा उठाया कि टीचर्स की काउंसलिंग जरूरी है, कोई टीचर को मॉनिटर करे जी,
2: कि बच्चे के साथ जो वो
1: लक्ष्य जी कुछ कहना
2: बहुत
1: चाह
2: ही
1: रहे हैं।
2: ज्यादा गलत हुआ, लेकिन आप अगर किसी स्कूल का नाम ऐसे हाईलाइट कर देंगे तो उसका जो समाज में मीडिया ट्रायल शुरू हो जाएगा। अभी गलत हुआ, बहुत गलत हुआ, ये बात बिल्कुल तय है। और उसके ऊपर स्कूल ने भी कार्रवाई की और पुलिस ने भी कार्रवाई की, लेकिन अगर उसका नाम चला जाएगा तो एक पैनिक की स्थिति शुरू हो जाएगी और बहुत ज्यादा उसमें दिक्कत खराब हो जाएगा। तो इसलिए ये मीडिया की मैं तारीफ करूंगा कि मीडिया ने उसका नाम नहीं मेंशन किया, अच्छा किया। जी,
1: जी अनिल जी,
0: मैं आपसे
1: अब
0: सहमत
1: हम
0: हूँ।
1: इस पे आते हैं। अनिल जी देखिए दोनों बातें, जब हम साइकोलॉजिस्ट की बात करते हैं, बहुत सही उन्होंने कहा कि साइकोलॉजिस्ट की जरूरत केवल बच्चों को नहीं है, टीचर्स को। अब सर यहां पर सबसे बड़ा पॉइंट, जब हम दिल्ली एनसीआर या मेट्रो सिटीज में किसी स्कूल में चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट की बात करते हैं, जो एज पर द गाइडलाइंस ऑफ चाहे वो कोई भी स्टेट बोर्ड हो, सीबीएसई और रिस्पेक्टिव बोर्ड कुछ भी हो सकता है, वहां पर तो बात चीजें मान ली जाती, फॉलो होती है, लेकिन दूर दराज के जितने इलाके हैं वहां पर ये चीजें कितनी फॉलो होती हैं?
3: मैम देखिए, मैंने आपको शुरुआत से एक बात बोल रहा हूँ कि हमारा सबसे बड़ा फ्लॉ लेकुना यही है कि रेगुलर चेक बैलेंसेस इंस्पेक्शन नहीं ढंग से होता है, इसीलिए लोग एडवांटेज लेते हैं। जहां पर चीजें ढंग से होती हैं वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। दूसरा, आपको कुछ समय पहले याद होगा और मनोज जी इस बात को एग्री करेंगे कि टीचर्स के लिए साइकोलॉजी का टेस्ट एक कंपल्सरी हुआ था कि जब वो टीचर बनेगा तो उसका एक होगा, ताकि वो ये एक उसमें रिपोर्ट आए कि वो साइकोलॉजिकली फिट है फॉर द टीचिंग। कई बार जो बात होती है कि हम अपना फ्रस्ट्रेशन है, चीजें हैं, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, और प्रैक्टिकली मैम टीचर्स में होती है चीजें। जो टीचर्स ट्रेनिंग की बात कही मैंने और जो भाई साहब ने भी बोला कि काउंसलिंग उनकी, कई बार ऐसे होता है कि टीचर उतना रिएक्टिव, उस तरह का रिस्पॉन्स, कई बार वो अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स में होता है, उसको भी कभी ब्रेक और कभी रेस्ट की जरूरत होती है। बट स्कूल का लोड, प्रेशर, टीचर्स को अपनी क्लासेस लेने हैं, सारा वो सब उस दौरान ऐसी चीज हो जाती है, उसका इंटेंशन नहीं होता बट हो जाती है। इसीलिए वो जो ट्रेनिंग और काउंसलिंग और सेशन की बात हुई है, दैट इज एक्चुअली रिक्वायर्ड, मैंडेटरी ऑल्सो। अब मैं अगेन वही वाली बात बोलूंगा, जो लीडिंग स्कूल्स है वहां टाइम टू टाइम टीचर सेमिनार, ओरिएंटेशन, काउंसलिंग सेशन, बाहर से स्पीकर्स आके या जो ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो आके उन चीजों को गाइड करते रहते हैं। बट ये चीजें पैन इंडिया मेजोरिटी ऑफ स्कूल्स में नहीं होती हैं। ये मिनिमम स्कूल है जो इसको फॉलो करते हैं। मैं परसेंटेज वाइज बात करूं तो हार्डली 10% होंगे जो इस रूल्स, रेगुलेशंस और चीजों को फॉलो करते हैं, 90% नहीं करते हैं। अब इसके लिए जिम्मेदारी अगेन डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की बनती है कि जो आपने गाइडलाइंस, जो भी दिनिका जी ने बात करी, गाइडलाइंस तो बहुत सारी बनी हुई है, सारे प्रोटोकॉल, सारे रूल्स रेगुलेशन, आप कोई भी एक्ट उठा के देख लीजिए, लॉ उठा के देख लीजिए, सब में सब कुछ लिखा हुआ है। जब तक उसका प्रॉपर मॉनिटरिंग, फॉलोअप और इंस्पेक्शन सही ढंग से नहीं होगा। अब इंस्पेक्शन में देखिए, एक बात मैं यहाँ पे, चूंकि मैं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ, इंस्पेक्शन करने का मतलब मैंने एकेडमिक इंस्पेक्शन की बात कही है, वरना होता क्या, जब कोई ऐसी घटना होती है तो तो एकेडमिक

0: इंस्पेक्शन ना करके इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्पेक्शन होने लगता है, फायर एनओसी है नहीं है, लैंड है, कमरा पूरा है, साइज कितना है, ये सब करके हैरेसमेंट जो शुरू होता है वो ना हो। आप एकेडमिक इंस्पेक्शन करें, टीचर्स की ट्रेनिंग की बात करें, टीचर्स की क्वालिफिकेशन की बात करें, एक नॉर्म्स हो कि जो अनट्रेन्ड टीचर्स है वो कोई भी इंस्टीट्यूशन अपॉइंट नहीं करेगा। ये सारी चीजें अगर करेंगे, जिस दिन हमारा एकेडमिक इंस्पेक्शन प्रॉपरली स्टार्ट कर देगी गवर्नमेंट, उस दिन ये सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। दूसरी एक और मैं काउंटर में बात कहना चाहूंगा, देखिए मैं पनिशमेंट के फेवर में नहीं हूं। पहले का जमाना था जब पेरेंट्स ही जाके स्कूल में बोलते थे कि मेरे बच्चे ने अगर गलती करी हो खाल खींच लीजिएगा, मैं बोलूंगा नहीं। ये अभी कुछ सालों पहले की मैं बात, आज पेरेंट ये बात कहते मेरे बच्चे को अपने हाथ कैसे। कई बार स्थितियां ऐसी होती हैं जो बच्चे कुछ ऐसी गलतियां करते हो जिसका, और खासतौर से मैं सीनियर क्लासेस की, तो वहां पर अगर थोड़ा बहुत कभी हल्का फुल्का कोई पनिश कर भी देता है तो इतना बड़ा इशू जो कभी कभी बनता है टीचर ने हाथ कैसे। कभी कभी आपको स्कूलों की परिस्थितियां बताएं, बच्चे ओपनली टीचर्स को अब्यूसिव लैंग्वेज यूज कर लेते हैं, उस स्थिति में टीचर कैसे रिएक्ट करेगा। यहाँ छोटे बच्चे के लिए तो मैंने सबसे पहले आपके चैनल पे बैठ के माफी मांगी उन पेरेंट्स से, और उस टीचर के लिए मैंने कहा ऐसी सजा दी जाए जो नजीर बन जाए।
1: एक सवाल मेरा सर, ये हम सारी बातें यहाँ पर टीचर्स की, स्कूल्स की, नियमों की कर रहे हैं, चलिए हम टीचर्स का पक्ष भी यहाँ पर समझ लेते हैं। आपको लगता है कि आजकल टीचर्स प्रेशर में है?
0: 100% मैम, 100%। मैं चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के रूप में दिनिका जी यहाँ बैठी हैं, जब आपने साइकोलॉजिस्ट का क्वेश्चन पूछा उनके चेहरे पर हंसी आई। और मेरे देखिए हम लोग क्या सच्चाई एक्सेप्ट नहीं करते, 3000 बच्चों पे आप 2 काउंसलर भी अपॉइंट कर देंगे वो पूरा तरह से नहीं कर सकते। एक और दूसरा काउंसलर को मैम जो अरेंजमेंट पीरियड और उसकी बात आपने बोली, वो इसलिए भेजा जाता है जब वो क्लास में जाता है तो वो जनरल जब बात कर रहा होता है तो उसको एक वो निकालता है या उसे पता चलता है, या बच्चों से जब वो बात करता है तो बच्चे को लगता है कि मैं अपनी बात जाके इनसे शेयर कर सकता हूँ। इट्स नॉट ओनली अबाउट एनीथिंग, बहुत सारे बच्चे घरों से परेशान है, पेरेंट्स के बीच के कंफ्यूजन होते हैं, मेंटली वो परेशान है, परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, फिजिकल प्रॉब्लम के साथ हो रहा है, ऐसी कितनी दिक्कतें सामने आई है, इसको सभी लोग समझ पा रहे हैं, सभी लोग जान रहे हैं, लेकिन कई बार होता है झिझक के मारे, शर्म के मारे बच्चे अपनी बातें नहीं, साइकोलॉजिस्ट के साथ वो थोड़ा सा कंफर्ट जोन में आते हैं जो शेयर कर पाते हैं। तो जो जेन्युइनली चीजें मैंने कहा ना, देखिए जिनको ढंग से इंस्टीट्यूशंस रन करने हैं वो इन सब चीजों को फॉलो करेंगे, उन्हें खुद बच्चों की चिंता होगी।
1: ठीक है,
0: हमारे स्कूल में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बहुत सारे स्कूल में नहीं प्रॉब्लम होती, बट कुछ स्कूलों में प्रॉब्लम बनी रहती है।
1: एक बार लक्ष्य जी को इंक्लूड करना चाहूंगी। लक्ष्य जी, यहाँ पर ओवरऑल जब हम चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं कि बच्चे की मानसिकता को समझने के लिए एज पर द गाइडलाइन स्कूल में साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है, लेकिन यहाँ चर्चा बातों बातों में ये भी निकली है कि टीचर्स की साइकोलॉजी को समझने के लिए, क्योंकि उन पर अगर प्रेशर ज्यादा है उसके लिए भी काउंसलिंग की जरूरत है, क्या स्कूल इस तरह की चीजें प्रोवाइड कराता है? क्या स्कूल ये बात समझता है कि टीचर पे भी प्रेशर है, उनको भी काउंसिल करना चाहिए, उनसे भी बातचीत करनी चाहिए, उनके भी अलग से सेशंस ट्रेनिंग होनी चाहिए?
2: स्कूल के अंदर रेगुलर, जैसे कि लास्ट वर्किंग डे होता है या सैटरडेज होता है, उस पर रेगुलर ट्रेनिंग चल रही होती है, और ये बोर्ड की तरफ से भी ट्रेनिंग होती है और स्कूल की तरफ से भी होती है। जैसे अनिल जी भाई साहब ने भी बताया, जो अच्छा स्कूल है, जो प्रोग्रेसिव स्कूल है, जो चाहता है बच्चों को कुछ देना, उन वहाँ प्रॉपर ट्रेनिंग और ट्रेनिंग और इस तरह की एक्टिविटीज हो रही होती हैं। लेकिन आज टीचर ना एक दबाव में महसूस कर रहा है, क्योंकि मीडिया के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें आ जाती हैं और बच्चा आके टीचर को धमकी देता है कई बार और बोलता है कि मैं तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट कर दूंगा, मैं अपने पापा को बोलूंगा, और एक फेक कंप्लेंट भी आजकल बहुत सारी ऐसे निकल के आ रही है कि इससे टीचर आज घबरा रहा है और बच्चों के लिए जो सही एक्शन लेने से भी पीछे हट रहा है। तो इस दिशा में भी हमें सोचने की जरूरत है कि बहुत सारे मैलिफाइड केसेस भी टीचर के अगेंस्ट हो जाते हैं, तो चेक्स एंड बैलेंस दोनों तरफ से होने चाहिए। टीचर का भी पक्ष को हमें समझना चाहिए, टीचर बच्चे के भले के लिए बहुत सारे एक्शन लेना चाहता है, वो नहीं ले पाता क्योंकि उसके हाथ बंद गए हैं।
1: ठीक है दिनिका जी, अब मैं आपके पास आना चाहूंगी। अब ये तो जब हम, क्योंकि शुरुआत चर्चा हमारी प्ले स्कूल से हुई थी, अब प्ले स्कूल को लेकर तो गाइडलाइंस है नहीं, लेकिन फिर भी घर घर गली गली देख रहे हैं आपके कितने प्ले स्कूल्स हैं। ये तो सीसीटीवी में खबर सामने आई, पेरेंट्स ने एक्शन लिया, तो ये मामला खुल गया। कुछ कुछ चीजें हम लोग सोशल मीडिया पर देखते रहते हैं, लेकिन जब गाइडलाइंस ही नहीं है, रूल्स रेगुलेशन ही नहीं है, तो फिर किस आधार पर इतने सारे स्कूल्स चल रहे हैं? कौन इस पर नकेल कसेगा?
3: मैम सिस्टमिक देखिए, आप सिस्टम की बात कर रहे हैं, हमने बात करी थी दो पेरेंट्स हैं, दोनों पेरेंट्स वर्किंग है, हमारी पूरी सोसाइटी में वर्किंग पेरेंट्स को सपोर्ट करने के लिए बच्चे को कौन पालेगा? फिर पेरेंट्स बच्चों को प्ले स्कूल में डालेंगे? अगेन किसी भी प्रॉब्लम का एक जड़ नहीं होता है. जैसे हम बच्चों के लिए साइकोलॉजिस्ट इन द स्कूल की बात करना शुरू हुए, हमें टीचर्स का समझ आया. मुझे मेरी फ्रेंड याद आ रही है, उसका अभी 15 मिनट पहले शो शुरू होने से पहले मैसेज आया था. उसके स्कूल में अगर आप 6 मिनट एक क्लास से दूसरी क्लास में लेट हो, हाफ डे कट जाता है. 12वीं को पढ़ाती है वो, पता नहीं कितने सालों से पढ़ा रही है. ये है हमारे टीचर्स का सच. सो स्ट्रेस टीचर के ऊपर है. जो वो कह रहे हैं कि गलत कंप्लेंट्स होती हैं, वो भी 100% सच है. टीचर का कोई अलाय नहीं बचा है, ना स्टूडेंट और पेरेंट बचा है, क्योंकि पेरेंट रात को 10 बजे अपडेट भी मांग रहा है, और मैनेजमेंट भी रात को 10 बजे तुम अपडेट क्यों नहीं दे रहे हो वो जवाबदेही भी मांग रहा है. आई अग्री, सब्स्टिट्यूशन पीरियड एक ऐसा तरीका होता है जब आप क्लास में जाके मैं नॉर्मल इंसान हूं, मैं अप्रोचेबल इंसान हूं का एस्टैब्लिश्ड मैसेज देते हो, बहुत यूजफुल चीज है. लेकिन एक काउंसलर एक स्कूल में स्पेशल एजुकेटर का काम भी करे, बच्चों के 1-on-1 सेशंस भी ले, सब्स्टिट्यूशंस में भी जाए, और ये सारी चीजें वो, हाँ सबका सर हिल गया तो आई कैन स्टॉप सेइंग. सो एट द एंड ऑफ द डे हम बार बार घूम के यही आ रहे हैं कि हम नियम कानून गाइडलाइंस प्रोविजन से बहुत अच्छे पिलर्स हैं हमारे पास, उन पिलर्स को लागू करने के लिए और उन पिलर्स को इनफोर्सिबल बनाने के लिए. मैं 1-on-1 काउंसलिंग में हमेशा ये चीज बोलती हूँ कि थॉट को बिहेवियर के साथ नहीं सपोर्ट
1: जी
3: करोगे तो क्या होगा?
1: ठीक है,
3: तो
1: ठीक है,
3: वही चीज
1: चलिए एक
3: है.
1: आखिरी कमेंट अनिल जी से। जी
0: कहना चाहूंगा, गवर्नमेंट को चाहिए हेल्थ और एजुकेशन में किसी को भी लाइसेंस ना मिल जाए कि कोई भी व्यक्ति स्कूल खोल दे,
1: ठीक है,
0: वो बहुत जरूरी है, तभी सुधार देश में संभव हो पाएगा।
1: बिल्कुल, नियम बहुत है लेकिन उसको इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम खास मेहमानों को यहाँ साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए गुड न्यूज़।

खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: क्या शहद का प्रयोग करके कर्जों से मुक्ति पाई जा सकती है? क्या शहद का प्रयोग करके वैवाहिक जीवन को बेहतर किया जा सकता है? क्या शहद का प्रयोग करने से चिंताएं समाप्त हो सकती हैं? क्या है शहद का महत्व और क्या है इसके चमत्कारी प्रयोग, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
2: में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है, शुरुआत हो चुकी है इसकी क्योंकि तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी है। देशी ने वैसे तमाम कृष्ण मंदिरों को भी सजाया सवारा गया है, बाजार पूरी तरह से गुलजार हैं। कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर हर कोई अपनी अपनी तरफ से तैयारी कर रहा है, लड्डू गोपाल के झूले, पालना, सब कुछ मौजूद है, पोशाक से लेकर मुरली और माला तक बाजार में बिक रहे हैं, लोग भी जन्माष्टमी से जुड़ी खरीदारी कर रहे हैं।

0: आने वाला है जन्माष्टमी का त्योहार, सज गए हैं बाजार, एक से बढ़कर एक मनमोहक लड्डू गोपाल और उनकी सुंदर सुंदर पोशाक, मुरली से लेकर माला तक, झूले से लेकर पालना तक, मुकुट से लेकर मटकी तक, सब कुछ बिक रहा है बाजार में। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के अमरावती से आई हैं, जहां श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर बाजारों में रौनक नजर आने लगी है।
1: जन्माष्टमी आने वाली है, उससे पहले जो है महाराष्ट्र समेत देश के अलग अलग इलाकों में जो है कृष्ण भगवान के अलग अलग वेराइटीज के जो झूले है, उनके ड्रेस है, वो उनके बाजार जो है फटे पड़े है। हम फिलहाल अमरावती के जवाहर गेट के अंदर जो रंगारी गली है वहां पर जवर स्टोर में है, जहां पर आप देख सकते हो कि ये पूरी तरीके से दुकान जो है वो कान्हामय हुई है। यहां पर आप देख सकते हो कि सबसे पहले कान्हा को सबसे प्यारा लगने वाला जो है वो दही है, माखन है। वो माखन जो है, माखन जिस से चुराए जाते थे, वो हंडी यहाँ पर है।
0: बदलते दौर के साथ बाजार में नए नए ट्रेंड की कई चीजें भी जन्माष्टमी पर्व के लिए मौजूद हैं, जो इस पर्व में चार चांद लगा देती हैं। दुकानदारों का कहना है कि इस बार कार्टून कढ़ाई, राजबाड़ी और सूरत से आई पोशाकें ग्राहकों को खूब पसंद आ रही हैं। इनमें आकर्षक डिजाइन के साथ बारीक कढ़ाई और रंगों की विविधता देखने को मिल रही है।
2: इस बार की काफी ट्रेंडिंग में है। इसमें हमारे पास में अलग अलग साइज आई है, छोटे बाल गोपाल है, बड़े बाल गोपाल है, फुल बंगला है, जैसे हम देख सकते हैं फुल बंगला है, मोती बंगला है, बाद में बांसुरी के अलग अलग प्रकार है, छोटी से लेके बड़ी है, राधा नाम से सुसज्जित मोती वर्क, कुंदन वर्क के साथ में छोटे मोटे मुकुट, कुंदन जड़ाऊ वर्क के साथ में काफी सुंदर नकाशी वर्क के साथ इस बार बाजार पूरा हमारा राधा कृष्णमय हो चुका है। छोटे से उनकी रासलीला करने के लिए डांडिया है, छोटे से मृदंग है, छोटे से पैरोट है, छोटे सा उनका मोबाइल फोन है जिससे वो राधा से बात कर सकते हैं, छोटे से साइकिल है, छोटे से उनके लिए टिफिन बॉक्स है, छोटे से उनके लिए अमृत है, जैसे जलेबी हो गया, फाफड़ा हो गया, या फिर उनके लिए चाय बच्ची हो गई है,
3: चाय बिस्किट भी है,
2: कॉफी भी है।
0: जन्माष्टमी का पर्व जितने ही उत्साह और उमंग के साथ मंदिरों में मनाया जाता है, उसी तरह लोग अपने अपने घरों में भी हर्षोल्लास के साथ जन्माष्टमी मनाते हैं। ऐसे में घरों की झांकी सजाने के लिए कृत्रिम फूलों की माला, झालर, लाइट और अन्य सजावटी सामान भी बाजार में मौजूद हैं।
2: ये जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये कृष्णा जी के जो सेवादार होते हैं, जैसे एक द्वारपाल हो गया, एक वहाँ पे हवा की मतलब पंखी की सेवा दे रहा है, एक वहाँ पे आरती की सेवा दे रहा है, एक वहाँ पे पनिहारी की सेवा दे रहा है, इस प्रकार अलग अलग यहाँ पे सेवादार है।
1: और
2: पीछे आप जो देख रहे हो, यहाँ पे जो आपने हमें पूछा है, ये सारे उनकी जन्म की लीला है,
1: पूरी जन्म की लीला
2: है। जी, ये जन्म की सारी लीला है, जन्म से आज तक उन्होंने जो जो किए है, जैसे जेल का हो चुका है, जेल में अलग से दो प्रकार के कटआउट आ चुके हैं, बाद में माखन की जो वो लीला कर रहे हैं, माखन के लीला के साथ में गोपी जो कुएं पे जाती है पानी भरने के लिए, उसकी एक अलग से लीला है, बाल सखाओं के साथ में जो कमल पे बैठकर वो लीला करते हैं, वैसी लीला है।
0: श्री कृष्ण जन्माष्टमी सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि ये जन जन की अगाध आस्था, भक्ति और प्रेम का महापर्व है, जिसे मनाने के लिए लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अमरावती से धनंजय साबले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
4: चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।

0: क्या शहद का प्रयोग करके कर्जों से मुक्ति पाई जा सकती है? क्या शहद का प्रयोग करके वैवाहिक जीवन को बेहतर किया जा सकता है? क्या शहद का प्रयोग करने से चिंताएं समाप्त तो हो सकती हैं? क्या है शहद का महत्व और क्या है इसके चमत्कारी प्रयोग, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रनावा, स्वागत है आपका चाय पर चर्चा में। आज बात होगी नेपाल की, जहां मलबे के बीच जिंदगी की सबसे बड़ी तलाश जारी है। मिशन जिंदगी के बीच यहां ऐसा एक घर सुर्खियों में है जो भयानक बाढ़ के बीच भी टस से मस नहीं हुआ। तो क्या है इस फौलादी घर की कहानी, आगे आपको बताएंगे।
3: नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। देखिए, एक तरफ नेपाल बाढ़ से जूझ रहा है तो वहीं चित्रकूट की गलियां भी मंदाकिनी नदी में आए उफान की चपेट में आ गई है। लिहाजा एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने यहां मोर्चा संभाल लिया है। यहां चल रहे रेस्क्यू की तस्वीरें भी आगे आपको दिखाएंगे।
2: नमस्कार, मैं शगुफ्ता, स्वागत है आप सभी का चाय पर चर्चा में। बात उस चमत्कार की भी करेंगे जिसे बॉक्स ऑफिस पर इन दिनों हनुमान अंश के नाम से जाना जा रहा है। शुरुआत में देखिए, फीके कलेक्शन के बाद इस फिल्म ने गजब ढा दिया है। तो क्या है इस फिल्म के अचानक से हिट होने की इनसाइड स्टोरी, बताएंगे आपको।
4: नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा, साथ ही आपको लिए चलेंगे सूरत, जहां बप्पा के पधारने के जश्न में पूरा शहर ही शामिल हुआ है। स्वागत में शिव बारात निकली, इसकी भी तमाम तस्वीरें आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं देश भर की बड़ी खबरें।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
6: तमाम वैश्विक चुनौतियों के बीच देश की GDP ग्रोथ बरकरार। वित्तीय वर्ष 2027 की पहली तिमाही में 7.8% रही विकास दर, RBI के अनुमान से भी ज्यादा रही दर। मानसूनी बारिश के बीच भगवान बद्री विशाल के दर्शन को मर रहे श्रद्धालु, 30 अगस्त तक 16,75,000 से ज्यादा ने की पूजा अर्चना, पवित्र हेमकुंड साहिब में भी लगा भक्तों का तांता। मुंबई के बाबुलनाथ मंदिर में उमड़ा श्रद्धा का जनसैलाब। अमांग पंचांग के तीसरे सावन सोमवार पर भोलेनाथ की आराधना, हर हर महादेव के जयकारों की गूंज। नौसेना की ताकत में हुआ इजाफा, मुंबई में दूसरा स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट पोत निपुण हुआ कमिशन, समुद्र में गोताखोरी और जटिल अभियानों को देगा अंजाम। आंध्र प्रदेश में लंबे इंतजार के बाद वेलिगोंडा सिंचाई परियोजना के पहले चरण का शुभारंभ, सिंचाई के साथ 4,00,000 से ज्यादा लोगों को मिलेगा पीने का साफ पानी। सीएम चंद्रबाबू नायडू ने की कृष्णा नदी की आरती। गीर सोमनाथ के गहरे समंदर में फंसे 5 मछुआरों का रेस्क्यू, फंती लहरों के बीच रस्सियों के सहारे साथी मछुआरों ने निकाला सुरक्षित।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को।
3: चलिए चाय पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। नेपाल में आई भीषण आपदा की तस्वीरें हर जगह आप लोग देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, लेकिन हम जो खबर आपको दिखाने जा रहे हैं वो हौसले की तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं। आपको ये बता दें कि चाहे आपदा कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हौसला उससे भी बड़ा होना चाहिए। और नेपाल में फ्लैश फ्लड के बाद जारी जो रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें हैं वो इसी हौसले की कहानी बयां करती है। इसी हौसले की चारों तरफ चर्चा भी हो रही है। आपको बता दें जो तस्वीरें आई हैं सुबह से लेकर रात तक, चाहे शगुफ्ता आप हो, दीपिका आप लोग, लगातार जो हम तस्वीरें दिखा भी रहे हैं, खबरें आप लोग पढ़ भी रहे हैं, दिल दहला देने वाली खबर है, तस्वीरें हैं हर एक खबर में। कहीं ना कहीं ये लगता है कि अब जो तस्वीर आएगी किसी और एक शख्स और कुछ लोगों की जान बच जाए, कुछ सांसें और बच जाए, ये कोशिश लगातार जारी है। और इस बीच उम्मीद की रोशनी जो लगातार तस्वीरों में भी हम देख रहे हैं, क्योंकि दुआएं हो रही है, प्रार्थना की जा रही है। देखिए नेपाल के लिए काशी में किस तरह से कामना की जा रही है, और पूरा देश इस वक्त न सिर्फ देश बल्कि विदेशों से भी राहत तो पहुंचाया ही जा रहा है नेपाल को, लेकिन दुआएं हो रही है हर एक जिंदगी के लिए। तो इस मुश्किल की घड़ी में भी देखिए किस तरह से खूबसूरत जिंदगी को बचाने की तस्वीरें आ रही है। शगुफ्ता, आपने भी पढ़ी होगी खबरें।
4: बिल्कुल, देखिए सुबह से हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, इनफैक्ट आप लोग सोशल मीडिया पे भी आई एम श्योर की तस्वीरें लगातार देख रहे हैं। आप देखिए सिर्फ एक देश की बात नहीं रह जाती, जब ऐसी आपदा या त्रासदी आती है तो हर कोई एकजुट हो जाता है और दुआओं का दौर देखिए लगातार जारी है। किसी भी मंदिर मठ जहां भी आप जाते हैं वहां पर एक ही दुआ की जा रही है कि नेपाल में जो त्रासदी आई है ऐसी त्रासदी कहीं ना आए और जितनी भी जान माल का नुकसान हुआ है वो किसी का भी कहीं भी ना हो। बचाने के लिए देखिए लाखों हाथ साथ में आ गए हैं, एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, वॉलंटियर्स बड़ी तादाद में यहां पर पहुंचे हैं, रेस्क्यू मिशन का वो लगातार हिस्सा बन रहे हैं और तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। 10,451 का रेस्क्यू अभी तक हो चुका है, मिशन रेस्क्यू में भारत का भी साथ है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कहीं मलबा है, कहीं सैलाब का निशान है तो कहीं अपनों की तलाश में टकटकी लगाए हुए लोग बैठे हैं। लेकिन इन मुश्किल हालातों के बीच में रेस्क्यू टीम्स लगातार दिन रात जुटी हैं। मलबे का एक एक हिस्सा हटाया जा रहा है, हर आवाज को सुना जा रहा है क्योंकि उम्मीद अभी यही है कि शायद कहीं जिंदगी के निशान आपको मिल जाए। घंटों की मशक्कत, मुश्किल मौसम और बेहद चुनौतीपूर्ण हालात के बावजूद रेस्क्यू ऑपरेशन थमने का नाम नहीं ले रहा और यही वजह है कि काशी में नेपाल के लिए कामना की जा रही है, नेपाल में लोगों के सकुशल होने की प्रार्थना हो रही है। इस मुश्किल की घड़ी में भारत भी पूरी तरह मजबूती के साथ नेपाल के साथ खड़ा है। पड़ोसी देश पर जब संकट आया तो भारत ने मदद का हाथ बढ़ाया। भारतीय टीमें प्रभावित इलाकों में लगातार राहत बचाव अभियान में जुटी हैं। मलबे के बीच में फंसी जिंदगी को बाहर निकालने की कोशिश जारी है।
7: नेपाल में आए फ्लैश फ्लड का सैलाब थम गया है लेकिन मलबे के पहाड़ों के बीच जिंदगी की तलाश अभी भी जारी है। हर गुजरते घंटे के साथ चुनौती बढ़ रही है लेकिन रेस्क्यू टीमों के हौसले कम नहीं हुए हैं। नुआकोट, रसुआ और धांडिंग जैसे प्रभावित जिलों में राहत कार्य पूरी गति से चल रहा है। भारतीय जवानों के साथ साथ नेपाल सुरक्षा बलों के करीब 21,000 जवान, खोजी कुत्ते और दर्जनों हेलीकॉप्टर तबाही के मलबे में फंसी जिंदगियों की तलाश कर रहे हैं। दुर्गम रास्ते और टूटे पुलों के बावजूद सुरक्षा बल फंसे हुए लोगों तक पहुंचने के लिए जान की बाजी लगा रहे हैं। नेपाल सरकार का कहना है कि बचाव, राहत और आपदा के पीड़ितों की मदद के लिए हर संभव उपाय किए जा रहे हैं। जिंदगी को बचाने की जंग में नेपाल की सेना और सुरक्षा बलों के साथ साथ भारत के विशेषज्ञ कंधों से कंधा मिलाकर जुटे हुए हैं। नुनकुन के पास 18,600 फीट की ऊंचाई पर भारतीय सेना के एविएशन पायलटों ने एक बेहद मुश्किल ढलान से एक घायल शख्स को सुरक्षित बाहर निकाला। पायलटों ने असाधारण सटीकता, साहस और दृढ़ संकल्प के साथ बचाव कार्य को अंजाम दिया। नेपाल के बाढ़ प्रभावित पहाड़ी इलाकों में कीचड़ के सैलाब और मलबे के कारण सड़कें तबाह हो चुकी हैं। ऐसे दुर्गम इलाकों में रेस्क्यू टीमों और राहत सामग्री पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर ही एकमात्र सहारा है, लिहाजा ऑपरेशन में तेजी लाने के लिए बड़े पैमाने पर इनका इस्तेमाल किया जा रहा है।
8: लगातार जो रेस्क्यूअर्स की टीम है उनको भी अब हेलीकॉप्टर के जरिए भेजा जा रहा है, खासकर पहाड़ी इलाकों में जहां पर जो टनल की आपदा है वहां से लोगों को निकालने के लिए। ये विशेषज्ञ हैं, रेस्क्यूअर हैं जो अलग अलग जगहों से आए हैं और अब इनकी जो पूरी टोली है पलटन वो हेलीकॉप्टर के जरिए ऊपर ले जाई जा रही है जहां पर इनको ड्रॉप किया जाएगा ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जल्दी से जल्दी पूरा किया जा सके।
7: इन पहाड़ी इलाकों में आपदा से सड़कों को बेइंतहा नुकसान हुआ, लिहाजा पहले दिन से ही हेलीकॉप्टरों के जरिए रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में मदद दी जा रही है। इसी सिलसिले में अब नेपाल के नुआकोट से अब तक का सबसे बड़ा एयर सर्च रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च किया गया है।
8: नुआकोट के हेलीपैड पर जो एयर ऑपरेशन है उसे बढ़ा दी गई है, जहाजों की संख्या, हेलीकॉप्टर की संख्या अब 20 है और वो लगातार यहाँ पर उतर रहा है और इसी के साथ साथ यहाँ जो राहत बचाव सामग्री है क्योंकि बहुत सारे लोग जो अभी सुरक्षित है लेकिन फंसे हुए हैं उन तक मदद के लिए पानी और खाना पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। तो सेना के लोग और उसके साथ सिविल अथॉरिटी जितने भी हेलीकॉप्टर हैं उन सब का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि बड़ी संख्या में वहां पर खाना, पानी, दवाइयां, जरूरत की चीजें पहुंचाई जा सके। इसी के साथ दूसरी तरफ जहां पर मेडिकल कैंप बनाया गया है तो जो घायल एयरलिफ्ट करके लाए जा रहे हैं उनको यहां पर इलाज भी किया जा रहा है, मेडिकल कैंप यहां से किया गया है और इसी के साथ बाद में तमाम लोगों को यहां से सुरक्षित ठिकानों पर भी भेजा जा रहा है।
9: त्रिशूली नदी के किनारे बसे शहर देवी घाट में ड्रोन फुटेज में दो लोग एक ऐसी इमारत की छत पर दिखे जो भयानक बाढ़ की वजह से अंदर से खोखली हो गई थी। नेपाल की सेना इलाके में बचे हुए लोगों को खोजने की लगातार कोशिश कर रही थी। नेपाल में बचाव कार्य मुख्य रूप से बाढ़ की चपेट में आए 5 पनबिजली प्रोजेक्ट्स पर केंद्रित है, जिसमें अपर त्रिशूली कॉम्प्लेक्स भी शामिल है। बचाव टीम को जानकारी मिली है कि एक सुरंग के अंदर करीब 350 लोग फंसे हो सकते हैं। चीन और भारत की विशेषज्ञ टीमों के साथ नेपाल के करीब 10,000 सैनिक भी इस राहत मिशन में लगे हैं। भारतीय और चीनी विशेषज्ञ त्रिशूली 3A सहित लगभग आधा दर्जन बंद हाइड्रो पावर सुरंगों की तलाशी ले रहे हैं। चिली में और लॉन्ग टोंग में हाइड्रो पावर साइटों पर भारतीय सुरंग बचाव दल नेपाली सेना के साथ मिलकर काम कर रही है। मलबे को हटाया जा रहा है जिससे सुरंग तक पहुंचा जा सके। भारतीय टीम आधुनिक उपकरणों के साथ भूमिगत सुरंगों से पानी और गाद हटाकर मजदूरों को सुरक्षित निकालने के सबसे कठिन मिशन में जुटी हुई है। ये तस्वीरें ढूंगे गांव की हैं, जहां सैलाब के कारण कटे हुए गांवों और इलाकों से संपर्क स्थापित करने की कोशिश की जा रही है ताकि बाढ़ पीड़ितों तक मदद पहुंचाई जा सके।
8: इन सड़कों को खोलना अभी सबसे बड़ी चुनौती है और इसीलिए बड़ी बड़ी जो जेसीबी मशीनें इनका इस्तेमाल इसलिए किया जा रहा है, उनकी संख्या भी बढ़ाई गई है कि अगर ये प्रमुख मार्ग खुल जाता है, बेतरावती तक की कनेक्टिविटी आ जाती है, तो संभवतः रसद पहुंचाना, बेतरावती से आगे रुसवा तक के लिए बड़ी लॉजिस्टिक पहुंचाना और जो रास्ता वहां पर भी बंद हो चुका है, ताकि अगले 72 घंटों में रसुआ को नुआकोट से सड़कों से जोड़ा जा सके। और अगर ऐसा होता है तो जहां वैली पुल बह गए, मसलन हम जहां पर हैं डूंगे गांव में, इसका दूसरा इलाका जो है वो पूरी तरह कट चुका है, वहां पर मदद पहुंचाने के लिए हेली ड्रॉप करना पड़ रहा है, तो कम से कम वैली ब्रिज के लिए अगर ये सड़क जुड़ जाती है तो उसे फिर से वैली ब्रिज से जोड़ा जा सकेगा।
9: सुरंगों के मुश्किल हिस्सों तक पहुंचने के लिए रेस्क्यू टीमों ने ड्रोन का सहारा लिया है। ड्रोन के जरिए सुरंग के उन हिस्सों पर नजर रखी जा रही है जहां रेस्क्यू टीम के लिए सीधे पहुंचना मुश्किल है। साथ ही टनल में फंसे लोगों को ड्रोन के जरिए संदेश भी भेजे जा रहे हैं। टनल में फंसे लोग मोबाइल फोन चार्ज कर सकें, इसके लिए पावर बैंक भेजने की भी तैयारी की गई है। उम्मीद है कि ड्रोन की मदद से चलाए जा रहे ऑपरेशन से सुरंगों के अंदर फंसे लोगों या उनके मौजूदगी के किसी संकेत का पता चल सकेगा।
10: We are extremely grateful for the support that the government of India has provided to us already. There's been 4 different flights that have come to Nepal with relief supplies. We had asked some experts to support us with tunnel rescue and the team had already arrived yesterday and day before yesterday.
9: भारत समेत कई देशों से नेपाल में राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। भारतीय वायुसेना के जरिए अब तक टनों राहत सामग्री, जीवन रक्षक दवाएं, टेंट, प्लास्टिक शीट्स और हाइजीन किट्स नेपाल पहुंचाई जा चुकी हैं। भारत ने 230 फीट लंबा सिंगल लेन मॉड्यूलर स्टील ब्रिज भी भेजा है। यही नहीं, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के टनल में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए भारत से विशेष टनल रेस्क्यू तकनीकी टीमें नेपाल पहुंच चुकी हैं और बचाव के काम में जुटी हुई हैं। नेपाल के नुआकोट से आशुतोष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: देखिए, तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपदा की इस बड़ी घड़ी में, मुसीबत की इस घड़ी में सबसे बड़ा मददगार भारत नेपाल के साथ हमेशा खड़ा है और लगातार वहां पर राहत और तमाम जो सामग्री है वो पहुंचाई जा रही है। हमारे जवान लगातार पूरी तरह से तैनात हैं, मुस्तैद हैं वहां पर एक एक जान को बचाने के लिए। विनाशकारी बाढ़ है, तबाही की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। हम आपको दो तस्वीरें ऐसी दिखाते हैं जिसमें आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुसीबत कितनी बड़ी है, किस तरीके से आपदा इस वक्त नेपाल पर आई है। और दो तस्वीरें, और एक तस्वीर में आप ये भी देख सकते हैं कि इस भयानक बाढ़ के बीच जहां सब कुछ सैलाब में बह रहा है, वहां कैसे एक घर जिसकी चर्चा आजकल हर तरफ हो रही है, ये घर बिल्कुल सही तरीके से खड़ा है। और इसके कुछ ही देर बाद वहां पर हेलीकॉप्टर से जो जितने भी लोग इस घर में मौजूद थे उनका रेस्क्यू भी किया गया है। तो ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तेज पानी के साथ बहकर आए कीचड़, बड़े बड़े पत्थरों, पेड़ों, मलबे के रास्ते में आने वाली इमारतों को तहस नहस कर दिया और कई जगहों पर पूरे के पूरे घर और गांव मलबे में तब्दील हो गए। ये तस्वीरें देखिए जरा, जो हरे रंग का घर है इमारत के पास, मकानों को भी, आसपास के तमाम जो घर हैं वो तबाह हो चुके हैं, लेकिन इस घर को कोई नुकसान नहीं हुआ। आखिर ये कैसे मुमकिन हुआ, सोशल मीडिया पर इसको लेकर चर्चा हो रही है।
4: बिल्कुल, देखिए त्रिशूली घाटी का एक स्कूल भी चर्चा में है। आपदा की घड़ी में अपने स्कूल के बच्चों के लिए प्रिंसिपल देवदूत बन गए। विनाशकारी बाढ़ की खबर सुनते ही प्रिंसिपल ने सूझबूझ से इमरजेंसी अलार्म बजाया, जिससे 1643 छात्र बाढ़ के पानी के आने से पहले ही सुरक्षित जगह पहुंच गए और सबकी जान बच गई। देखिए नेपाल की इस विनाशकारी फ्लैश फ्लड्स के बीच में एक घर ने दुनिया भर के लोगों को काफी हैरान कर दिया है। जब एक तरफ कहर बनकर आई बाढ़ अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को समेटती जा रही थी, बड़े बड़े पत्थर, पेड़ और घरों का मलबा, सब कुछ इसकी चपेट में आता जा रहा था, लेकिन एक घर ऐसा था जिसे ये बाढ़ डिगा नहीं पाई। सोशल मीडिया पर इस घर का वीडियो तेजी के साथ वायरल है, आई एम श्योर आपने देखा होगा। चारों तरफ तबाही के निशान दिखाई देंगे, आसपास की इमारतें बर्बाद हो गई हैं, लेकिन हरे रंग का ये दो मंजिला मकान मजबूती के साथ खड़ा नजर आता है। अब सबके मन में सवाल यही है कि जब आसपास के कई घर तेज बहाव और मलबे की चपेट में आकर टूट गए, तो ये घर आखिरकार बच कैसे गया।
6: देखिए सोशल मीडिया में चल रही जो बहस है उसमें कहा जा रहा है कि इस घर के बचने के पीछे उसकी बनावट और लोकेशन की अहम भूमिका है। कहा जा रहा है कि घर की मजबूत आरसीसी बनावट, लोहे और कंक्रीट से बना ढांचा, उसकी लोकेशन और बहाव का दोनों तरफ से निकल जाना, इन सभी चीजों ने मिलकर घर को बचाने में मदद की। हालांकि किसी फ्लैश फ्लड में सिर्फ एक वजह तय नहीं करती है कि कौन सा घर बचेगा और कौन सा ढहेगा। पानी की रफ्तार, बहाव की दिशा, जमीन की कटाव, नींव की मजबूती, घर की बनावट और आसपास जमा मलबा, इन सब की भूमिका होती है।
4: और देखिए नेपाल में आए फ्लैश फ्लड की वजह से नुवाकोट जिले की त्रिशूली घाटी का एक स्कूल मलबे में तब्दील हो गया, लेकिन उसमें पढ़ रहे 1643 बच्चों की जान बच जाती है। स्कूल के ज्यादातर टीचिंग स्टाफ भी सही सलामत है। ये सब कुछ स्कूल प्रिंसिपल की बदौलत हुआ है। प्रिंसिपल ने 26 अगस्त को क्विक एक्शन नहीं लिया होता तो सैकड़ों लोगों की जान शायद नहीं बच पाती। त्रिभुवन त्रिशूली सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल राजेंद्र दवाड़ी को 26 अगस्त को सुबह उनके दोस्त का फोन आता है। दोस्त ने अलर्ट करते हुए जानकारी दी कि गांव नदी में बह चुका है और उन्हें फौरन वहां से निकलना चाहिए।
11: शुरुआत में राजेंद्र को लगा कि उनका स्कूल सुरक्षित हो सकता है क्योंकि इमारत कंक्रीट से बनी है और नदी की सतह से करीब 60 मीटर ऊपर है, लेकिन पानी लगातार बढ़ता जा रहा था और कई गांव तबाह हो चुके थे। फिर एक अभिभावक स्कूल पहुंचे, उन्होंने एक और चेतावनी दी। इसके बाद प्रिंसिपल ने स्कूल से निकलने का फैसला किया और स्कूल की घंटी बजा दी।
6: आपको बता दें कि राजेंद्र दवाड़ी ने सभी टीचर्स को तुरंत क्लासरूम खाली करने को कहा, स्कूल बस ड्राइवर्स को गाड़ी मोड़ने को कहा। एक बच्ची डर की वजह से बेहोश हो गई, जिसे फौरन बाइक से सुरक्षित पहाड़ी तक पहुंचाया गया। इसके बाद सभी बच्चों ने ऊपर तक दौड़ लगा दी। प्रिंसिपल सबसे पीछे रहे ताकि कोई छूट ना जाए। उस वक्त स्कूल में 1643 बच्चे और दूसरे स्टाफ मेंबर मौजूद थे। सभी समय रहते सुरक्षित जगह पर पहुंच गए और सबकी जान बच गई। उसके कुछ ही देर बाद त्रिशूली नदी के सैलाब में 3 मंजिला स्कूल भवन पूरी तरह से बह गया।
12: यहाँ जो है, यहाँ 3 तल्ले का बिल्डिंग था, वो स्कूल था, उसका सामने एक मंदिर था, और ये पूरा बाजार था।
13: ये बिल्कुल समतल जमीन कहाँ है, वहाँ स्कूल।
12: हाँ, ये जो अभी पानी इधर से बह रहा है ना, ये बीच में जो खाली जगह है ना, वहाँ पे 3 मंजिल का वो स्कूल था।
13: कितने बच्चे?
12: उसमें 1600
13: सोलह सौ बच्चे।
12: हाँ, और उसी दिन जिस दिन ये हुआ, उस दिन यहाँ से उस सब बच्चे को निकल के वो टीचर ने सबको यहाँ से भगा के सबको बचाया।
11: अब देखिए नेपाल में बाढ़ ने सिर्फ लोगों से उनका सब कुछ नहीं छीना, बल्कि उसने उनका घर, सड़क, पुल, करोड़ों की संपत्ति भी छीन ली है। इस तबाही के बीच में केवल लोगों की जिंदगी बचाने की ही जंग नहीं चल रही, बल्कि बाढ़ में डूबे कीमती सामान को बचाने की जद्दोजहद लगातार जारी है। नुवाकोट जिले में बाढ़ का पानी एक बैंक के अंदर तक घुस गया, बैंक डूब गया, सामान डूब गया, लेकिन बैंक में रखा करोड़ों का सोना और कैश अभी भी बचाया जा सकता था। जैसे ही हालात थोड़े से सुधरे, रेस्क्यू टीम्स ने बैंक के अंदर ऑपरेशन को शुरू कर दिया। करीब 8 घंटे तक लगातार मशक्कत चली। पानी और मलबे के बीच बैंक का सामान बाहर निकाला गया और जब सामान की जांच हुई तो बड़ी कामयाबी हाथ लगी। करीब 50 करोड़ नेपाली रुपए की कीमत का सोना सुरक्षित निकाल लिया गया। इसके अलावा करीब 1.5 करोड़ नेपाली रुपए कैश, चांदी और बैंक के जरूरी दस्तावेज भी बरामद कर लिए गए।
4: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। देखिए, धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध उत्तर प्रदेश के तीर्थ स्थल चित्रकूट में मंदाकिनी नदी की बाढ़ के कारण बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा है। पहाड़ों में बारिश के कारण मंदाकिनी नदी में जलस्तर इतना बढ़ गया कि लोगों को बचाने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पैक का सहारा लेना पड़ा। चित्रकूट में मंदाकिनी नदी ने इस बार 23 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। नदी के सैलाब में 16 लोग फंस गए, लेकिन बचाव कर्मियों ने कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया।

0: मंदाकिनी नदी में आया उफान तो देवदूत बने एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के चित्रकूट की हैं। यहाँ सैलाब के कारण गांव-गांव, गली मोहल्लों में पानी भर गया तो एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के जवानों ने मोर्चा संभाला और जगह जगह घरों में फंसे लोगों को राहत पहुँचाने के लिए तत्पर नजर आए।
1: आसमान देखिए मौसम कैसा है,
0: कहीं घरों में लोग फंसे थे तो कहीं छतों पर मौजूद लोगों को राहत का इंतजार था।
1: निकालो इनको भाई, आप लोग तो जा सकते हो, उतारो।
0: ऐसे में बोट पर सवार हुए पुलिस प्रशासन के अधिकारी और बचाव दलों के जवान बाढ़ के कारण प्रभावित पूरे इलाकों में युद्ध स्तर पर लोगों को राहत सामग्री देने के साथ साथ रेस्क्यू करके सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का काम शुरू किया। डीएम एसएसपी खुद नाव पर सवार होकर बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन की कमान संभाल ली।
1: अभी आप आसमान देखिए मौसम कैसा है। ऊपर बोर्ड पे अगर खाना है तो दे दो, जो बचे हैं उनको खाना दे दो।
0: चित्रकूट के बाद प्रभावित इलाकों में बचाव और राहत के लिए तत्काल एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की चार चार टीमों को तैनात किया गया। इसके अलावा पीएसी की दो टीमों को भी लगाया गया। साथ ही प्रशासन ने मदद के लिए 10 और राहत टीमों को चित्रकूट बुलाने की व्यवस्था की ताकि बड़े पैमाने पर बचाव राहत का अभियान चलाया जा सके।
2: हमने देखा था कल अत्यधिक वर्षा के कारण जिस प्रकार से रामघाट में जलस्तर बढ़ा था, वही पानी आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ राजापुर की तरफ जो है इस तरफ आ रहा है। तो हमारी सभी टीम्स अलर्ट पर हैं, एनडीआरएफ भी यहीं पे हमारे गांव में तैनात है, एसडीआरएफ को भी यहाँ का सरदुआ एरिया के लिए मूवमेंट कर लिया गया है, यहाँ पे भी सभी लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है।
0: चित्रकूट में मंदाकिनी नदी ने इस बार 23 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। शनिवार को यहाँ पर जिला मुख्यालय के नजदीक गांव के इलाकों में 16 लोग सैलाब में फंस गए। सूचना मिलने पर बचाव दल मौके पर पहुंचा तो लोगों की जान में जान आई। घंटों कड़ी मशक्कत के बाद एसडीआरएफ की टीम ने भी सभी को सकुशल बाहर निकाल लिया।
3: तीन टीमें अभी लगातार काम कर रही हैं, एक तरहुआ में है और एक यहाँ बवैया में मैं हूँ और हमारे पास साहब है, चाचा साहब है, इसके अलावा सी डी ओ सर और कप्तान साहब हमारे रामघाट पर है। लगातार हम लोग बिल्डिंग बने हुए हैं, लगातार हमारा रेस्क्यू कार्य चल रहा है।
0: सैलाब के संकट के बीच हर इलाके में रेस्क्यू टीमें लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद नजर आई। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों के साथ साथ मिलकर प्रशासन ने कई इलाकों में देर रात में भी रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया ताकि बाढ़ में कहीं कोई फंसा न रह जाए और किसी की जान खतरे में न पड़े। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों सहित तमाम प्रभावित लोगों को तत्काल राहत शिविरों में और सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का इंतजाम किया गया।
2: मंदाकिनी जो हमारी फ्लो करती है आसपास के लगभग 4 से 5 गांव जो हैं यहाँ के, वो यहाँ पे जहाँ आबादी क्षेत्र के पास में एकदम नदी के पास बसा हुआ था वहाँ पे विशेष समस्या है, और रामघाट के पास में जो हमारा आबादी का क्षेत्र है वहाँ पर मुख्य समस्या है।
0: मंदाकिनी नदी में 2 दिन पहले आए भीषण बाढ़ के कारण चित्रकूट के रामघाट सहित 12 गांव प्रभावित हुए, लेकिन एक दिन पहले मंदाकिनी नदी का जलस्तर घट गया था और संकट टलने के आसार बढ़ गए थे। हालांकि पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश के कारण एक बार फिर से नदी में उफान आ गया और पानी खतरे के निशान से 2 मीटर के ऊपर पहुंच गया। हालात को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की है।
2: यहाँ का जो वार्निंग लेवल था वो 88 मीटर्स था, इस समय पानी जो है वो 91 मीटर्स पे, और ये अपने पूरे लाइफ टाइम है मतलब आज तक का सबसे अधिक उच्चतम लेवल जो है वहां तक पहुंचने की और उसको एक्सीड करने की संभावना है। इसलिए यहां पे सभी लोगों से अनुरोध भी किया जा रहा है कि जो उनके स्थल हैं वो ये ना सोचे कि हम फर्स्ट फ्लोर पे चले जाएंगे तो उससे हल हो जाएगा या सेकंड फ्लोर पे चले जाएंगे उससे हल हो जाएगा, वो अभी क्षेत्र से बाहर निकल के ग्राम पंचायत भवन या अन्यत्र जगह पे शिफ्ट होंगे, ये सभी लोगों को हिदायत दी जा रही है।
0: जाहिर है चित्रकूट में सैलाब का संकट अभी टला नहीं है। कई इलाकों में दिक्कत इस वजह से है क्योंकि दूसरे इलाकों से उनका संपर्क कट चुका है। ऐसे में प्रशासन की ओर से बचाव राहत के इंतजाम तो किए ही जा रहे हैं, लोगों के लिए खुद भी हौसला बनाए रखने और काफी सावधानी बरतने की जरूरत है ताकि इस बाढ़ में जिंदगी महफूज रहे। चित्रकूट से अखिलेश सोनकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: समुद्र की लहरें जितनी खूबसूरत दिखती है उतनी ही खतरनाक भी हो सकती है, और दमन के समुद्र तट पर ऐसा ही कुछ खौफनाक मंजर देखने को मिला। वलसाड के वापी से एक परिवार दमन घूमने पहुंचा था, परिवार के बाकी लोग समुद्र किनारे थे, तभी 7 साल की बच्ची नहाने के लिए पानी में उतर गई। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन अचानक समुद्र में तेज और ऊंची लहरें उठी और बच्ची देखते ही देखते लहरों की चपेट में आ गई।
5: बच्ची खुद को संभाल पाती उससे पहले ही लहरों ने उसे अपनी तरफ खींच लिया।
6: और देखिए, मौके पर मौजूद लाइफगार्ड की नजर बच्ची पर पड़ी और फिर शुरू हुआ उसे बचाने का ऑपरेशन। लाइफगार्ड ने बिना वक्त गंवाए समुद्र में छलांग लगाई और तेज लहरों के बीच में बच्ची तक पहुंच गया। एक पल की देरी और मामला बेहद गंभीर हो सकता था, लेकिन लाइफगार्ड की सूझबूझ और फुर्ती ने बच्ची की जान बचा ली। संगम नगरी प्रयागराज में इन दिनों आस्था का अद्भुत और अलौकिक नजारा देखने को मिल रहा है। संगम तट पर स्थित लेटे हनुमान मंदिर में मां गंगा के जल ने पहुंचकर संकट मोचन के चरणों को स्पर्श किया। इसी के साथ एक बार फिर से शुरू हो गया आस्था श्रद्धा और परंपरा का अद्भुत उत्सव। और देखिए, जैसे ही गंगा का पवित्र जल मंदिर की देहरी तक पहुंचा, पूरा परिसर जयकारों से गूंज उठा। मां गंगा के आगमन को यहां सिर्फ पानी का बढ़ता स्तर नहीं माना जाता है, बल्कि इसे आस्था का अद्भुत मिलन माना जाता है।
7: संगम नगरी में एक अनूठा संगम देखने को मिला। प्रयागराज के लेटे हनुमान का अभिषेक करने खुद मां गंगा मंदिर तक पहुंच गई। और यह अनूठा संगम देख भक्तों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा।
8: संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना के जलस्तर में लगातार तेजी देखने को मिल रही है, लेकिन हम इस वक्त संगम के लेटे हनुमान मंदिर में हैं, जहां पर माँ गंगा अपने पुत्र बजरंग बली को स्नान कराने के लिए पहुंची हैं। आप देख सकते हैं कि माँ गंगा यहां पर सीढ़ियों से प्रवेश कर रही हैं और बजरंग बली यहां पर शयन को जा रहे हैं। ये दुर्लभ क्षण है और इस दुर्लभ क्षण के लिए यहां पर लोग सालों से इंतजार करते हैं, जब हर वर्ष माँ गंगा यहां स्नान कराने के लिए आती हैं। और ये सीढ़ियों से जो गंगा जला रहा है और माँ गंगा का स्वागत किया गया, पूजन किया गया, इसके बाद माँ का अभिवादन किया गया। आप देख सकते हैं लोग जो श्रद्धालु हैं यहाँ पर उस क्षण का इंतजार करते हैं।
7: संगम नगरी प्रयागराज में गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती का जल स्तर जब बढ़ा, तब एक अत्यंत दुर्लभ अलौकिक और आध्यात्मिक दृश्य देखने को मिला। माँ गंगा ने स्वयं संगम तट पर स्थित प्रसिद्ध लेटे हनुमान जी मंदिर के गर्भगृह में पहुंचकर अपने पुत्र बजरंग बली को पावन स्नान कराया।
9: गंगा माई हर साल हनुमान जी महाराज का स्नान करा के ही जाते हैं। पहले बार आए गंगा जी, वो आपस दीवार से लौट गए, दोबारा गंगा जी आए, वो आज और भाग्यशाली हनुमान जी महाराज का स्नान करा के ही गंगा जी प्रवेश करते हैं, फिर लौटते हैं।
10: आज बगल में शयन में चले
9: गए हनुमान जी, आज जो है शयन में जल शयन कर गए हनुमान जी। हर साल होता है, प्रतिदिन हर साल गंगा जी स्नान करा के ही आते, बड़ा भाग्यशाली है, बड़ा दुर्लभ है कि गंगा जी स्नान।
7: जैसे ही देर रात माँ गंगा की पवित्र धारा मंदिर के गर्भ गृह तक पहुंची, पूरा परिसर हर हर गंगे और जय श्री राम के जयकारों से गूंज उठा। धीरे धीरे गंगा का पानी सीढ़ियों से आकर हनुमान जी को स्पर्श करने लगा और फिर पूरी मूर्ति को माँ गंगा ने आगोश में ले लिया। मंदिर के महंत और साधु संतों ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच माँ गंगा का स्वागत किया। दूध, दही, घी और पंचामृत अर्पित कर माँ गंगा का अभिनंदन किया गया और भव्य आरती उतारी गई।
11: जी, गंगा मैया का सबसे पहले पंचामृत द्वारा और दूध, दही, शहद और पंचमेवा के द्वारा अभिषेक किया गया है। गंगा मैया को अभिषेक करने के बाद, दूध, दही, शहद, पंचमृत, पंचामृत से अभिषेक करने के बाद उनको वस्त्र अर्पण किया गया है, नैवेद्य प्रसाद अर्पण किया गया है, दीप द्वारा आरती उतारी गई है, गंगा मैया की स्वागत में आरती उतारी गई है और वस्त्र अर्पण करके, प्रसाद अर्पण करके भक्तों को वितरण किया।
7: मान्यता है कि जिस साल गंगा का पानी मंदिर में हनुमान जी का अभिषेक कर देता है, उस साल देश, प्रदेश और शहर में कोई आपदा नहीं आती। इस अद्भुत संयोग को सुख और शांति का प्रतीक भी माना जाता है। इस अलौकिक और दुर्लभ क्षण के बाद परंपरा अनुसार मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए जाते हैं।
11: बहुत ही दुर्लभ क्षण होता है, जिसका प्रयागवासी लगभग 2 महीने से इंतजार कर रहे थे कि अब नहाएं हनुमान जी महाराज का वो, लेकिन आज गंगा मैया ने अपने पुत्र का जलाभिषेक कर दिया है तो देश में तरक्की, खुशहाली और समुद्री सुख समृद्धि आएगी।
7: प्रयागराज की पावन धरती और त्रिवेणी संगम के तट पर लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर न केवल आस्था का केंद्र है बल्कि करोड़ों भक्तों की अटूट श्रद्धा का प्रतीक भी है। दुनिया में हनुमान जी की खड़ी या बैठी प्रतिमाएं तो आपने बहुत देखी होंगी, लेकिन संगम तट पर विराजे बड़े हनुमान का स्वरूप सबसे निराला है। लेटी हुई मुद्रा में भगवान की प्रतिमा न केवल अद्भुत है, पूरे विश्व में यही एक ऐसा मंदिर है जहां हनुमान जी विश्राम यानी शयन मुद्रा में भक्तों को दर्शन देते हैं। फिलहाल जब तक गंगा का जलस्तर नहीं घटेगा तब तक मंदिर के कपाट बंद रहेंगे। जलस्तर घटने और मंदिर परिसर की साफ सफाई के बाद ही बजरंगबली के कपाट दोबारा खोले जाएंगे। तब तक श्रद्धालु मंदिर के बाहर से ही लेटे हनुमान जी के दर्शन कर उनका आशीर्वाद ले सकेंगे।
8: गंगा जी का पानी इस गर्भगृह में जा रहा है और माँ गंगा अपने पुत्र को स्नान कराने के लिए आई है। बजरंगबली यहाँ पर शयन कर चले गए हैं। अब मंदिर बंद कर दिया जाएगा, इसके बाद जब गंगा जी का पानी वापस आएगा तो इस मंदिर को श्रद्धालु के लिए खोल दिया जाएगा। पंकज श्रीवास्तव, प्रयागराज, गुड न्यूज टुडे।
5: रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के उस पार आपको बताएंगे क्या है फिल्म हनुमान अंश के हिट होने की चमत्कारी कथा।
12: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती है।

0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुन।
2: अब ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है चाय पर चर्चा में। आगे बढ़े उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: तमाम वैश्विक चुनौतियों के बीच देश की जीडीपी ग्रोथ बरकरार। वित्तीय वर्ष 2027 की पहली तिमाही में 7.8% रही विकास दर, आरबीआई के अनुमान से भी ज्यादा रही दर। मानसूनी बारिश के बीच में भगवान बद्री विशाल के दर्शन को उमड़ रहे श्रद्धालु। 30 अगस्त तक 16,75,000 से ज्यादा ने किया पूजा पाठ, पवित्र हेमकुंड साहिब में लगा भक्तों का तांता। मुंबई के बाबुलनाथ मंदिर में उमड़ा श्रद्धा का जनसैलाब। अमांत पंचांग के तीसरे सावन के सोमवार पर भोलेनाथ की आराधना, हर हर महादेव के जयकारों की गूंज। नौसेना की ताकत में हुआ इजाफा, मुंबई में दूसरा स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट पोत, निपुण हुआ कमीशन, समुद्र में गोताखोरी और जटिल अभियानों को देगा अंजाम। आंध्र प्रदेश में वेलिगोंडा सिंचाई परियोजना के पहले चरण का शुभारंभ। खेती के साथ 4,00,000 से ज्यादा लोगों को मिलेगा पीने का साफ पानी। सीएम चंद्रबाबू नायडू ने की कृष्णा नदी की आरती। गिर सोमनाथ के गहरे समंदर में फंसे 5 मछुआरों का सफल रेस्क्यू। नाव डूबने से पहले उफनती लहरों के बीच में रस्सियों के सहारे साथी मछुआरों ने निकाला सुरक्षित।

0: और चलिए यही ग्लैमर के रंग आपको दिखाते हैं। जयपुर अपनी समृद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत के साथ साथ अब फाइव स्टार लग्जरी हॉस्पिटैलिटी के बेजोड़ संगम की वजह से फैशन और ग्लैमर का वैश्विक हब बनकर उभरा है। इसे वैश्विक आकर्षण और बेहतरीन बुनियादी ढांचे की वजह से यहां पर अब लगातार फैशन और ग्लैमर से जुड़े हुए इवेंट्स का आयोजन हो रहा है।
1: और देखिए इसी कड़ी में यहां दुनिया की सबसे पुरानी किशोर सौंदर्य प्रतियोगिता मिस टीन इंटरनेशनल 2026 के भव्य ग्रैंड फिनाले का आयोजन किया गया। इस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दुनिया के 30 से ज्यादा देशों की सुंदरियों ने जलवा बिखेरा।

0: गुलाबी नगरी जयपुर के मंच पर एक बार फिर सजी शानदार महफिल। यहां पर आयोजित विश्व स्तरीय सौंदर्य प्रतियोगिता मिस टीन इंटरनेशनल 2026 के भव्य ग्रैंड फिनाले में दुनिया भर के 31 देशों की खूबसूरत प्रतिभागियों ने अपनी चमक बिखेरी। इनमें कनाडा, कोलंबिया, फ्रांस, जर्मनी, भारत, जापान और मैक्सिको जैसे देश के कंटेस्टेंट शामिल हुए। ऐसे में निर्णायकों के लिए ये तय करना आसान नहीं था कि किसके सिर पर सजे विजेता का ताज, क्योंकि सभी प्रतिभागियों ने बेहद शानदार और उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। बेहद कड़े मुकाबले में सभी को पछाड़ते हुए क्यूबा की कंटेस्टेंट जोआना उरांगा ने आखिरकार मिस टीन इंटरनेशनल 2026 का प्रतिष्ठित खिताब जीतने में कामयाबी हासिल की। इस प्रतियोगिता में दूसरे स्थान पर रही नामीबिया की चेंटल बोरेन, उन्हें फर्स्ट रनर अप का खिताब मिला, जबकि तीसरे स्थान पर रही पैराग्वे की जूलियाना ओकारेज, जिनके सिर पर सेकंड रनर अप का ताज सजा। अमेरिका की एंड्रिया अल्मेस्टिका को थर्ड रनर अप घोषित किया गया और यूएस वर्जिन आइलैंड्स की डेरेलिस निको को चौथी रनर अप का स्थान मिला।
1: मिस टीन क्यूबा।
0: इस अनोखी सौंदर्य प्रतियोगिता की शुरुआत शानदार ओपनिंग राउंड से हुई। इसके बाद स्विमिंग शूट राउंड और क्वेश्चंस आंसर राउंड सहित कई चरणों में कंटेस्टेंट्स को अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिला। इस प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंची कंटेस्टेंट्स ने अपने आत्मविश्वास, पर्सनालिटी और टैलेंट का दमदार प्रदर्शन किया। हालांकि सबसे आगे रही क्यूबा की जोआना उरांगा, जिन्होंने जजों और दर्शकों दोनों का दिल जीत कर मिस टीन इंटरनेशनल के खिताब पर कब्जा जमा लिया। मिस टीन इंटरनेशनल प्रतियोगिता में भारत की ओर से दिव्या बाधवा ने भाग लिया। दिव्या ने पहले मिस टीन दिवा का खिताब जीता और उसके बाद मिस टीन इंटरनेशनल में भारत का प्रतिनिधित्व किया। हालांकि वह प्रतियोगिता के अंतिम चरण तक नहीं पहुंच सकी, लेकिन

0: में अपना दबदबा साबित करते हुए मेजबानी कर इतिहास रच दिया है। इन आयोजनों के जरिए जयपुर की ऐतिहासिक विरासत, संस्कृति, आतिथ्य और पर्यटन को भी अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों तक पहुंचने का अवसर मिल रहा है। इस लिहाज से हाल ही के दिनों में हुए कई बड़े ब्यूटी पेजेंट जयपुर के लिए केवल ग्लैमर और फैशन के आयोजन नहीं, बल्कि शहर की वैश्विक पहचान को मजबूत करने वाले महत्वपूर्ण इवेंट के तौर पर भी देखे जा सकते हैं।
1: Ladies and gentlemen, our Miss Teen International 2026 from Cuba.
0: इसके पहले हाल ही में 23 अगस्त 2026 को ही जयपुर में ही मिस यूनिवर्स इंडिया 2026 प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें केरल की 19 वर्षीय लॉ स्टूडेंट काजिया लिज मेजो अव्वल रहीं। 23 अगस्त को यहां पर अंतर्राष्ट्रीय ब्यूटी पेजेंट मिस ओशियन वर्ल्ड 2026 का भव्य ग्रैंड फिनाले आयोजित किया गया, जिसमें ब्रिटेन की मॉली मैरी बकली ने खिताब जीता। जुलाई 2026 में जयपुर में ही मिस टीन डीवा 2026 का भी आयोजन किया गया, जिसमें मेघालय की ऐश्वर्या मलंग ने मिस टीन अर्थ इंडिया 2026 का खिताब जीता। इसमें असम की स्निग्धा भुयान के सिर पर सजा मिस टीन ग्रैंड इंडिया 2026 का खिताब, जबकि ओडिशा की प्रसूचि पांडा ने मिस टीन यूनिवर्स इंडिया 2026 का खिताब जीता था। राजस्थान के ऐतिहासिक शहर जयपुर पारंपरिक शिल्प कला और आधुनिकता के बेजोड़ मेल के साथ फैशन और ग्लैमर की दुनिया में जयपुर वैश्विक हब बनकर उभरा है। अपनी ऐतिहासिक समृद्ध विरासत, ब्लॉक प्रिंटिंग बंधीज और विश्व प्रसिद्ध कुंदन मीनाकारी से जुड़े काम के कारण जयपुर हमेशा से अंतर्राष्ट्रीय डिजाइनरों की पहली पसंद रहा है। आज ये शहर न केवल फैशन आयोजनों और सेलिब्रिटी शादियों का मुख्य केंद्र बन चुका है, बल्कि अपनी सांस्कृतिक जड़ों को आधुनिक रैम्प फैशन से जोड़कर वैश्विक मंच पर अपनी विशिष्ट और ताकतवर पहचान बना रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: चलिए बात उस आध्यात्मिक फिल्म की कर लेते हैं, जो बिना किसी शोर शराबे की आती है, बिना किसी खास प्रमोशन मार्केटिंग की रिलीज होती है और इन दिनों कमर्शियल फिल्मों को टक्कर दे रही है। बात हम कर रहे हैं नीक करोली बाबा पर बनी फिल्म हनुमान अंश की।
3: बिल्कुल, हनुमान अंश को लोग बहुत पसंद कर रहे हैं और इससे पहले भी आध्यात्मिक फिल्में जो इससे पहले भी कई आ चुकी हैं उनका भी हमने ऐसे ही देखा कि उतना तामझाम होता नहीं है, बहुत ज़्यादा उसको प्रचारित नहीं किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद देखिए 24 दिन में 40 करोड़ लोगों का प्यार मिल रहा है। शगुफ्ता, आप कुछ कहना चाहेंगे?
4: मुझे ऐसे लगता है इट इज़ जस्ट नॉट अ फिल्म, इट्स अ मास्टरपीस। आप सबको एक बार देखनी ज़रूर चाहिए ये फिल्म।
5: फिल्म में एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर ज्वाइन किया था। मैं इस फिल्म में एज सेकेंड एडी था और हमारे जो इससे पहले लीड एक्टर थे उनकी कुछ कारणोंवश तबीयत खराब हो जाती है, तो सर वहाँ पे एक बहुत ही अच्छा डिसीजन लेते हैं कि भाई फिल्म को रुकने नहीं देना है। बहुत सारे लोग वहाँ पर आ गए थे, बहुत सारे लोगों की मेहनत,
6: हम चित्रकूट में थे, 60 लोगों की टीम के साथ।
5: यस, तो सर ने मुझे कास्ट करने के लिए मेरा टेस्ट लिया। अब वो टेस्ट 5 घंटे तक चला, जिसमें से 4.5 घंटे तो मेरे माइंड में सिर्फ यही बात चल रही थी कि अरे क्या होगा, मैं वही पत्रकार बन गया कि दुनिया क्या कहेगी, कहीं मुझे जो है कुछ तो ऐसा चल रहा था। सर ने वहाँ पे मुझे काम किया और सर ने बोला कि ये सब सोचना तुम्हारी वो जिम्मेदारी नहीं है, ये सब मेरी जिम्मेदारी है। तो मैं खुद भी मतलब अनप्रिडिक्टेबल है ना, रातों रात आपको असिस्टेंट डायरेक्टर से एक फिल्म का हीरो बना दिया जाए, तो मैं मेरे माइंड में कुछ नहीं चल रहा था। तो जहाँ पे स्पिरिचुअल बीइंग आपके लिए कुछ लिख रहे होते हैं ना, तो वहाँ पे आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस क्या है कि फिर तो समर्पण करना है कि अब तो भाई बाबा जी आपने किया है, देख लो वैसा।
6: जब हमें डायरेक्टर्स की टीम चाहिए थी तो हमने एक फर्स्ट एडी था उनको कॉन्टैक्ट किया, उन्होंने कहा कि मेरी टीम में कुछ लोग हैं जो लखनऊ से आएंगे। क्योंकि 15 दिन बचे थे, मैं कह रहा हूँ यार अभी 3 दिन के बाद में लखनऊ से तुम्हारा आ जाएगा, कैसे काम करेंगे हम लोग। बट देन ही व्हेन ही अपीयर्स इन द ऑफिस ही सिट्स समवेयर एंड आई कम, हमारे एक मजनाए ने वहाँ आया और मैंने इसको देखा, मैंने कहा ये तो महाराज जी हैं। आई इमीडिएटली वी वेंट डाउन स्टेयर्स, एंड ऐसा नहीं है कि उसकी वजह से हमने डिसाइड कर लिया कि इनको हमें कास्ट करना है.
7: हाँ,
6: ये वो रीजन वो नहीं था.
7: लोग ये कहते थे कि अरे विशाल तुम्हारी तो टीम में भी है और स्क्रीन पे भी है, दो दो मिल गए.
6: तो ये आप ये देखिए, ये महाराज जी ओरिजिनल, ये हमने उसी दिन उसके उसी के

0: दिन के बाद में हमने ये फोटो खींच ली थी कि ये महाराज जी दिखते थे और ये हमारे शोभिनव, और शोभिनव के घर में उनके उनके ताऊजी का देहावसान हो गया था, इसलिए उनको उन्होंने हेयर कट कराया था।
1: हेयर कट कराया
0: इसके पहले वो ऐसे नहीं दिखाई देते थे, उनकी दाढ़ी और बालों के बाद आप नहीं पहचान पाओगे उनको, इससे नहीं मैच कर पाओगे, बट वो मेरे सामने ऐसे रूप में आए। प्रेमानंद जी महाराज के पास में हमारे एक प्रोड्यूसर नहीं, उन्होंने उनसे सवाल किया फिल्म शूट हो जाने के बाद में कि कैसा आप क्या सब हमको मतलब आप क्या इंडिकेशन करेंगे, कैसे क्या करना चाहिए हमको, कैसे हमारी भक्ति भी पूर्ण हो जाए, हमारी श्रद्धा भी पूर्ण हो जाए। तो उन्होंने कहा कि आपके जो प्रोटैगनिस्ट हैं उनको आपको देखना पड़ेगा कि वो वेजिटेरियन हो।
1: हाँ, बहुत स्ट्रिक्टली उन्होंने बोला कि आप अगर बाबा नीम करोली बाबा ये संत हैं, उनके ऊपर कोई फिल्म बना रहे हैं तो उनका जो किरदार कर रहा है उसको बहुत ध्यान से ये सब देख लो, आप आपकी फिल्म बहुत अच्छी बनेगी। हाँ, मतलब बहुत सारे
0: मेरे हमारे सेट पे कोई गाली नहीं दे सकता, तेज आवाज में लड़ाई झगड़ा नहीं करना, नॉन वेज नहीं आएगा, इट विल बी वेजिटेरियन, से कोई अल्कोहल नहीं पिएगा, और इसके अलावा बहुत सारी, और रोज हनुमान चालीसा हम करेंगे, पूजा पाठ शुरू फिल्म से, फिल्म का डे शुरू वहां से होगा और एंड भी वहां से होगा।
2: दक्षिण भारत की हरियाली, बैक वाटर्स की शांत लहरें और उनके बीच गूंजती चप्पू की थाप। जब केरल में ओणम का पर्व आता है तो शांत जलधाराएं जीवंत हो उठती है। केरलम से ऐसी ही तस्वीरें सामने आई है,
3: बेहद खूबसूरत तस्वीरें स्नेक बोट रेस की। ये केरला की ऐसी परंपरा है जो नदियों की लहरों पर तैरती दिखाई देती है। इस साल भी पथनमथिट्टा जिले में पबा नदी के तट पर पारंपरिक बोट रेस का आयोजन किया गया। नाव पर सवार नाविकों ने पारंपरिक वेशभूषा में पारंपरिक गीत गाते हुए रफ्तार और ताल का अद्भुत नजारा पेश किया।
4: ओणम का नाम आते ही आंखों के सामने केरलम की रंग बिरंगी तस्वीरें उभर आती है। फूलों की पंखुड़ियों से सजी रंगोली, कथकली के रंग, मंदिरों की रौनक और फिर पानी की लहरों को चीरती हुई सैकड़ों चप्पूओं की ताकत। लंबी विशाल सांप जैसी दिखने वाली नावें, नाविकों का जोश, वंचिप्पा पुट्टू की गूंज और किनारों पर उमड़ा जनसैलाब। ये सिर्फ एक नाव दौड़ नहीं है, ये केरलम की धड़कन है, परंपरा है, प्रतिष्ठा है और सबसे बढ़कर ये उस सामूहिक ताकत की तस्वीर है जहां एक नाव को आगे बढ़ाने के लिए सैकड़ों लोग एक साथ सांस लेते हैं, एक साथ गीत गाते हैं और एक ही दिशा में चप्पू चलाते हैं। वंचिप्पाट्टू केरलम का प्रसिद्ध पारंपरिक नौका गीत है जिसे मुख्य रूप से ओणम उत्सव और स्नेक बोट रेस के दौरान गाया जाता है। मलयालम भाषा में वंची का अर्थ नाव और पाट्टू का अर्थ गीत होता है। ओणम उत्सव के साथ केरलम की नदियों और बैक वाटर्स पर हर साल सजने वाले मशहूर स्नेक बोट रेस को वल्लम कली कहा जाता है। ये तस्वीरें हैं पथनमथिट्टा जिले की, जिसे केरलम की धार्मिक राजधानी भी कहा जाता है। यहाँ पंबा नदी में 132वीं अरनमुला उथराट्टी बोट रेस का आयोजन किया गया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने इसका शुभारंभ किया। इसमें 50 स्नेक बोट शामिल है। स्नेक बोट की खासियत होती है कि ये 100 फीट से भी ज्यादा लंबी होती है। अपने ऊंचे उठे पिछले हिस्से और लंबी बनावट के कारण ये दूर से किसी फन फैलाए सांप जैसी दिखाई देती है, इसीलिए दुनिया इन्हें स्नेक बोट के नाम से भी जानती है। इस लंबी नाव में कई सारे नाविक जब एक साथ अपने चप्पू पानी में डालते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पूरी नदी की धड़कन एक ही लय में चलने लगी हो। ओणम और वल्लम कली का रिश्ता सिर्फ खेल का नहीं बल्कि केरलम की आस्था, इतिहास, लोक परंपरा और सामूहिक उत्सव का रिश्ता है। जब नदियों और बैक वाटर्स पर सैकड़ों नाविक एक साथ चप्पू चलाते हैं, पारंपरिक वंचीपाट्टू की लय गूंजती है और हजारों दर्शक किनारों पर उमड़ते हैं तो पूरा दृश्य केरलम की जीवंत सांस्कृतिक पहचान बन जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट गुड यस्टरडे।
3: ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे स्पेस में क्यों लगा रहा है नासा सबसे शक्तिशाली दूरबीन।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
6: क्या शहद का प्रयोग करके कर्जों से मुक्ति पाई जा सकती है? क्या शहद का प्रयोग करके वैवाहिक जीवन को बेहतर किया जा सकता है? क्या शहद का प्रयोग करने से चिंताएं समाप्त तो हो सकती हैं? क्या है शहद का महत्व और क्या है इसके चमत्कारी प्रयोग, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
7: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज़ टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: नासा ने रोमन स्पेस टेलीस्कोप को फ्लोरिडा के कैनरी स्पेस सेंटर से सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया और ये टेलीस्कोप धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर L2 पर स्थापित किया जाएगा, जहां से ये ब्रह्मांड के बड़े हिस्से का सर्वे करेगा।
2: वो देखिए, रोमन स्पेस टेलीस्कोप को अंतरिक्ष में अपनी मंजिल तक पहुंचने में करीब एक महीने का समय लगेगा। ये टेलीस्कोप किसी सामान्य सैटेलाइट की तरह पृथ्वी की परिक्रमा नहीं करेगा। इसे सूर्य और पृथ्वी के L2 एरिया के आसपास चुनी गई ऑर्बिट में रखा जाएगा, जहां से ये धरती पर अंतरिक्ष की ली गई तस्वीरें भेजेगा।
3: 3, 2, 1 ignition and lift off. Go Falcon Heavy and go Roman Space Telescope.
4: ये अंतरिक्ष की अनंत गहराइयों में झांकने की कोशिश है। ये वो पल है जब नासा ने अमेरिका के फ्लोरिडा में मौजूद कैनेडी स्पेस सेंटर से नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च किया। इंसान की बनाई ये विशेष आंख पृथ्वी से करीब 15 लाख किलोमीटर दूर अंतरिक्ष के विस्तार को समझने की कोशिश करेगी। भारतीय समय के अनुसार रविवार शाम 4:57 पर रोमन स्पेस टेलीस्कोप को फाल्कन हेवी रॉकेट के जरिए स्पेस में लॉन्च किया गया। इसे अंतरिक्ष में अपनी मंजिल तक पहुंचने में करीब एक महीने का समय लगेगा। खास बात यह है कि रोमन टेलीस्कोप किसी सामान्य सैटेलाइट की तरह पृथ्वी की परिक्रमा नहीं करेगा। इसे सूर्य और पृथ्वी के L2 एरिया के आसपास चुनी गई ऑर्बिट में रखा जाएगा, जहां से ये इंसानी दुनिया को अंतरिक्ष के विशाल नजारे की तस्वीर भेजेगा। दिलचस्प ये भी है कि रोमन टेलीस्कोप स्पेस में पहुंचते ही तुरंत काम शुरू नहीं करेगा, पहले ये 3 महीने की कमिशनिंग प्रक्रिया पूरी करेगा। इस दौरान इंजीनियर टेलीस्कोप के सिस्टम और उपकरणों को सक्रिय करने के साथ उनकी जांच करेंगे। सभी सिस्टम ठीक से काम करने की पुष्टि होने के बाद इसे वैज्ञानिक अभियानों के लिए तैयार किया जाएगा। नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप को ब्रह्मांड में किसी एक खगोलीय पिंड पर फोकस करने के बजाय अंतरिक्ष के बेहद बड़े हिस्से का सर्वे करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका 2.4 meter का प्राइमरी मिरर आकार में हब्बल स्पेस टेलीस्कोप के मिरर के बराबर है, लेकिन ये एक बार में हब्बल के मुकाबले 100 गुना बड़े एरिया का सर्वे कर सकता है। इस मिशन का मकसद ब्रह्मांड की दो बड़ी पहेलियों डार्क एनर्जी और डार्क मैटर की स्टडी करना है। इसके अलावा ये आकाश गंगाओं के विकास को समझने और हमारे सौरमंडल से बाहर मौजूद ग्रहों यानी एक्सोप्लैनेट्स की खोज में भी मदद करेगा। रोमन स्पेस टेलीस्कोप से जुड़ा सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि ये सबसे कम समय में ब्रह्मांड के विशाल हिस्से से डेटा जुटा सकेगा। इससे ब्रह्मांड का विशाल नक्शा तैयार होने की उम्मीद है, जिससे स्पेस साइंस से जुड़े कई जटिल सवालों के जवाब दुनिया को मिल सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: चलिए हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी है।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। मार
1: लाल बाल, देखिए दुनिया में बेहद कम लोगों की ये पहचान है, लेकिन नीदरलैंड के टिलबर्ग में यही पहचान हजारों लोगों को एक साथ लेकर आई है। दुनिया के अलग अलग देशों से आए रेड हेड्स ने यहां पर अपने खास रंग और अपनी अलग पहचान का जश्न मनाया। किसी ने तस्वीरें खिंचवाई, किसी ने मेकअप आजमाया, तो किसी ने अपनी जैसी पहचान वाले लोगों के साथ वक्त बिताया।
2: देखिए एक तस्वीर हजारों चेहरे और पहचान सिर्फ एक। नीदरलैंड के टिलबर्ग में कुछ ऐसा ही नजारा दिखा, जहां दुनिया के अलग अलग हिस्सों से लाल बालों वाले हजारों लोग एक जगह इकट्ठा हुए। मौका था रेड हेड डेज के 21वें संस्करण का, एक ऐसा सालाना आयोजन जो दो दशक से ज्यादा वक्त से चला आ रहा है। इसमें लाल बाल से रंगे हुए लोग नजर आए।
3: तो चाय पर चर्चा में अभी के लिए बस इतना ही। आप रखिए अपना ख्याल, कल फिर मिलेंगे शाम 5 बजे चाय पर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
4: क्या शहद का प्रयोग करके कर्जों से मुक्ति पाई जा सकती है? क्या शहद का प्रयोग करके वैवाहिक जीवन को बेहतर किया जा सकता है? क्या शहद का प्रयोग करने से चिंताएं समाप्त हो सकती हैं? क्या है शहद का महत्व और क्या है इसके चमत्कारी प्रयोग, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
3: तमाम वैश्विक चुनौतियों के बीच देश की जीडीपी ग्रोथ बरकरार, वित्तीय वर्ष 2027 की पहली तिमाही में 7.8% रही विकास दर, RBI के अनुमान से भी ज्यादा रही दर। मानसूनी बारिश के बीच भगवान बद्री विशाल के दर्शन को मर रहे श्रद्धालु, 30 अगस्त तक 16,75,000 से ज्यादा ने की पूजा अर्चना, पवित्र हेमकुंड साहिब में लगा भक्तों का तांता। मुंबई के बाबुलनाथ मंदिर में उमड़ा श्रद्धा का जनसैलाब, अमांत पंचांग के तीसरे सावन के सोमवार पर भोलेनाथ की आराधना, हर हर महादेव के जयकारों की गूंज। मुंबई में आगामी गणेश उत्सव की भव्य तैयारियां, साकानाखी के महाराजा की 48 फीट ऊंची प्रतिमा बनी आकर्षण का केंद्र, बप्पा के दरबार की सजावट का काम तेज। नौसेना की ताकत में हुआ इजाफा, मुंबई में दूसरा स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट पोत, निपुण हुआ कमीशन, समुद्र में गोताखोरी और जटिल अभियानों को देगा अंजाम। आंध्र प्रदेश में वेलिगोंडा सिंचाई परियोजना के पहले चरण का शुभारंभ, खेती के साथ 4,00,000 से ज्यादा लोगों को मिलेगा पीने का साफ पानी, सीएम चंद्रबाबू नायडू ने की कृष्णा नदी की आरती। गिर सोमनाथ के गहरे समंदर में फंसे 5 मछुआरों का सफल रेस्क्यू, नाव डूबने से पहले उफनती लहरों के बीच रस्सियों के सहारे साथी मछुआरों ने निकाला सुरक्षित।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। तो जीएनटी स्पेशल में आज बात कृष्ण जन्माष्टमी की। देश भर में जन्माष्टमी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। शहर शहर बेसब्री के साथ कान्हा के आने का इंतजार हो रहा है। कृष्ण जन्मोत्सव का सबसे गाढ़ा रंग चढ़ा है देश भर में मौजूद कन्हैया के भव्य मंदिरों पर, मथुरा हो या फिर वृंदावन, दिल्ली हो या द्वारका हो। शहर शहर कृष्ण धामों में जन्माष्टमी के रंग बिखरे हैं। जीएनटी स्पेशल में आज आपको लिए चलेंगे देश के भव्य कृष्ण मंदिरों में, दिखाएंगे तैयारी कृष्ण जन्मोत्सव की। लेकिन सबसे पहले आपको लिए चलते हैं राजधानी दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में। कृष्ण भक्ति को समर्पित इस्कॉन के मंदिरों में हर साल बड़े पैमाने पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश इलाके में मौजूद इस मंदिर में जोर शोर से तैयारी की जा रही है।

0: रहे हैं कान्हा। प्रकट होने वाले हैं नंदलाल। भक्तों को दर्शन देने आने वाले हैं लड्डू गोपाल। 4 सितंबर को कृष्ण जन्माष्टमी पर्व मनाया जाएगा। स्वदेश भर के कृष्ण मंदिरों में जन्माष्टमी की तैयारियां अंतिम दौर में हैं। कृष्ण धाम रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठे हैं। ये तस्वीरें दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश में मौजूद इस्कॉन मंदिर की हैं। भाद्रपद माह की अष्टमी तिथि इस मंदिर के लिए साल का सबसे खास दिन होता है। हर साल यहां भव्य तरीके से जन्माष्टमी उत्सव का आयोजन होता है। अब की बार भी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। हर साल इस मंदिर में श्री कृष्ण जन्मोत्सव की तैयारियां कई हफ्तों पहले ही शुरू कर दी जाती है। इस वर्ष भी कान्हा का जन्मोत्सव मनाने के लिए मंदिर को शानदार तरीके से सजाया जा रहा है।
1: इस वक्त मैं मौजूद हूँ ईस्ट ऑफ कैलाश स्थित इस्कॉन मंदिर के भव्य परिसर में, जहाँ पर तस्वीरें मेरे पीछे बता रही कि किस तरीके से जन्माष्टमी की जो तैयारियाँ हैं वो अपने स्तर पर है। आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर भक्तों की अच्छी खासी भीड़ जो है वो नजर आ जाएगी, और साथ ही 4 तारीख को जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा, और उससे पहले मंदिर को सजाने का जितना भी काम है वो लगातार यहाँ पर जो है वो किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मंदिर में, आपको सबसे पहले तो लाइट्स में दिखा देती हूँ आपके, यहाँ पर और भी लाइट्स का काम जो है वो लगातार इसी तरीके से जारी, ताकि मंदिर जो है वो अलग से ही जगमगाता हुआ 4 तारीख को जो है वो नजर आए। और उसके बाद अगर मैं मंदिर परिसर में आपको भवन की तस्वीर दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको श्रृंगार होता हुआ जो है वो नजर आ जाएगा।
0: श्री कृष्ण जन्मोत्सव के पावन अवसर पर इस्कॉन मंदिर को देश के अलग अलग हिस्सों से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी मंगाए गए खास किस्म के फूलों से सजाया जाता है। साथ ही साथ पूरे मंदिर परिसर में रंग बिरंगी सुंदर लाइटिंग भी की जाती है। आपको बता दें कि यहां अब की बार जन्माष्टमी उत्सव पर सजावट की थीम भगवान श्री कृष्ण के प्रिय मोर पर आधारित है, यानी मोर पंख की बनावट और रंगों को केंद्र में रखकर ही उत्सव के लिए सजावट की जाएगी। जन्माष्टमी के लिए थीम पर आधारित पोशाक खास तौर पर वृंदावन से मंगवाई जा रही है।
2: इस साल भगवान को जो सबसे प्रिय है मोर पंख, तो जो थीम है सिंगार और सजावट की वो पीकॉक पे है, मयूर थीम रखा गया है, और देश विदेश से लाए हुए फूल से सजाएगा, जैसे थाईलैंड और कर्नाटक बंगलोर से फूल मंगाए जा रहे हैं, उससे सजावट की जाएगी, और वृंदावन से भगवान का श्रृंगार के लिए जितने भी ज्वेलरी और ड्रेस है वहाँ से आ रहा है।
0: ईस्ट ऑफ कैलाश के इस्कॉन मंदिर में कृष्ण जन्मोत्सव पर भगवान को केक का भोग लगाने की भी परंपरा है। अब की बार भी यहां भगवान के लिए विशाल केक तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा बाल गोपाल को 1008 प्रकार के व्यंजन का भोग भी लगाया जाएगा।
2: केक का भोग लगेगा ठाकुर जी को, और 1008 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया जाएगा इस्कॉन ईस्ट ऑफ कैलाश में, और सुबह 10 बजे के पहले से कुकिंग स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि भगवान का किचन ही अलग है, तो जो दीक्षित हैं ब्राह्मण दीक्षित हैं और दीक्षित माता जी प्रभु जी लोग हैं वो मिल करके बहुत बड़ा प्रसाद हाल छोटा वहाँ पे कुकिंग आरम्भ हो जाएगी, और चूँकि भगवान का भोग 12 बजे लगेगा तो तब तक कुकिंग होती रहे और भगवान जी को भोग लगता रहेगा।
0: मंदिर परिसर में उत्सव की तैयारी अब अंतिम चरण में है। जन्माष्टमी से पहले मंदिर में रंग बिरंगे विशाल टेंट लगाए जा रहे हैं, ताकि उत्सव में भारी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं के बैठने और भजन कीर्तन में सुविधा हो। दिल्ली एनसीआर और आसपास के इलाकों से लाखों की संख्या में भक्त और श्रद्धालु जन्माष्टमी मनाने और भगवान के दर्शन के लिए यहां पहुंचते हैं। लिहाजा व्यवस्थाओं के साथ साथ ख्याल सुरक्षा के इंतजामों का भी रखा जा रहा है।
2: हमारे दर्शनार्थी आएंगे श्रद्धालु, उनकी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की व्यवस्था की जा रही है। तो गेट नंबर 1 से जो आम श्रद्धालु आम जनता है वो प्रवेश करेंगे, और गेट नंबर 7 से जो हमारे डोनर हैं अभी VIPs हैं, जैसे मिनिस्टर जो गणमान्य व्यक्ति हैं हर फील्ड के, वो आएंगे। और दिल्ली पुलिस के 1200-600 जवान लगेंगे दिल्ली पुलिस के, और 1200 प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड रहेंगे, उनकी व्यवस्था चाक चौबंद रहेगी, और 4 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी होंगी और 8 एम्बुलेंस होंगी और अच्छे डॉक्टरों की टीम रहेगी इमरजेंसी के लिए। तो इस तरह से व्यवस्था रहेगी। और अनुरोध है कि जो मेरे श्रद्धालु हैं वो कोई बैग और वैसी चीज़ें न लेके आए ताकि किसी प्रकार का सिक्योरिटी चार्ज में दिक्कत आए, और ये बहुत आवश्यक है।
0: राजधानी दिल्ली में वैसे तो राधा कृष्ण जी को समर्पित इस्कॉन के कई मंदिर हैं, लेकिन दक्षिण दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश इलाके में इस मंदिर की बात ही अलग है। श्री श्री राधा पाठ सारथी मंदिर के नाम से इस मंदिर की स्थापना 1998 में की गई थी। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की मनमोहक प्रतिमा स्थापित है। कृष्ण भक्तों के लिए ये मंदिर आस्था का बड़ा केंद्र है। खास तौर से हर साल जन्माष्टमी के अवसर पर यहाँ होने वाला भव्य उत्सव श्रद्धालुओं को विशेष रूप से आकर्षित करता है। इस बार भी तैयारियाँ जोरों शोरों से चल रही है, तो उम्मीद है कि यहाँ पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन में कृष्ण भक्ति की अनूठी झांकियाँ देखने को मिलेंगी। दिल्ली से आशुतोष कुमार और मनीषा लाडा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: दिल्ली से अब रुख करते हैं भारत के उस भाग का जहां की धरती ने कृष्ण लीलाओं को अपनी आंखों से देखा है, जिसकी मिट्टी में कभी बाल कृष्ण खेला करते थे, जहां यमुना के तट पर सखाओं संग खेलती कान्हा का बचपन बीता, ब्रज की वो धारा जिसके रज रज पर आज भी श्याम रंग चढ़ा है। श्री कृष्ण का जन्मोत्सव ब्रज के लिए साल का सबसे बड़ा त्यौहार है। अपने कान्हा के जन्मोत्सव जैसे ही ब्रज मनाता है, वैसे ही वाकई दुनिया में कोई और मना नहीं सकता। कृष्ण जन्मभूमि से लेकर वृंदावन के तमाम मंदिरों में इस समय जन्माष्टमी की तैयारी पूरी हो चुकी है। तो चलिए आपको बताते हैं कि इस जन्माष्टमी पर कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में क्या कुछ खास होने जा रहा है, और मथुरा में कैसी है तैयारी जन्मोत्सव की।

0: ब्रजभूमि में इस समय चारों तरफ सिर्फ एक ही गूंज है, हाथी घोड़ा बाल की जय कन्हैया लाल। भगवान श्री कृष्ण के 5253वें जन्मोत्सव को लेकर कान्हा की नगरी मथुरा और लीला भूमि वृंदावन सजाए जा रहे हैं। द्वापर युग की वही दिव्यता, वही भव्यता और वही भक्ति एक बार फिर कान्हा के जन्मस्थली मथुरा में जीवंत हो उठी है।
1: भगवान श्री कृष्ण के 5253वें जन्मदिन के लिए पूरे ब्रज को सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है और इस तरह की जो पेंटिंग है ना वो सारी दीवारों पर बनाई जा रही है, जो दीवार भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि की तरफ जाती है। तो इसमें जो लीला है वो दर्शाया जा रहा है कि भगवान श्री कृष्ण को वासुदेव जी गोकुल लेकर जा रहे हैं। तो ऐसी ही जो लीलाएं भगवान की, जितनी भी लीलाएं भगवान ने ब्रज में की, वो सभी लीलाएं जो प्रमुख मार्ग हैं उन पर सजाई जा रही हैं। करीब 24 चौराहे सजाए जा रहे हैं, इस तरह की जो सजावट का काम है ये चल रहा है पूरे ब्रज में, जगह जगह देखेंगे। इस तरह ये गेट बनाया जाएगा, तोरण द्वार बनाए जा रहे हैं, करीब 24 द्वार बनेंगे, 24 चौक चौराहे सजाए जा रहे हैं और जितनी भी दीवाल है जो ब्रज जन्मभूमि की तरफ जाती है, जन्मभूमि के पास का रास्ता है। तो इस तरह की जो सजावट है ना भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव को मनाने के लिए, 4 सितंबर को भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मनाया जाएगा ब्रज में, तो उसकी जो तैयारी है बड़े भव्यता और दिव्यता पर चल रही है।
0: इस साल 4 सितंबर 2026 को मध्यरात्रि में होने वाले मुख्य जन्मोत्सव को लेकर तैयारियां अब अंतिम चरण में हैं। 4 सितंबर को रात 11:56 पर शुरू होने वाले निषेध काल पूजा मुहूर्त के लिए मथुरा के मंदिर चौक चौराहों को रोशन किया जा रहा है। श्री कृष्ण जन्म स्थान पर इस बार श्रद्धालुओं को ठाकुर जी के एक बेहद अलौकिक रूप के दर्शन होंगे। जन्माष्टमी के पावन अवसर पर अब की बार कन्हैया कलहंस पुष्प बंगले में विराजमान होंगे, इसीलिए जन्मस्थान के अंदर के पुष्प बंगलों को दुर्लभ पत्र पुष्प वृक्षों और विशेष रूप से हंसों की दिव्य आकृतियों से सजाया जा रहा है।
2: भगवान श्री कृष्ण के 5253वें जन्मदिन को, जन्मोत्सव को बहुत ही भव्यता और दिव्यता के साथ मनाया जाएगा। तैयारियां बहुत जोर शोर भाव से चल रही है। आने वाले श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के दर्शन सुव्यवस्थित और सुंदर ढंग से कर पाए ऐसा संस्थान का प्रयास है। इस वर्ष भगवान कलहंस पुष्प बंगले में विराजमान होंगे। अंदर के पुष्प बंगलों को जो बना रहे हैं उसमें पत्र पुष्प वृक्ष आदि आकृति उकेरी जाएंगी और हंस, इस बार हंस आकृति जो है वह पुष्प बंगले की शोभा होंगी। बाहर बहुत ही दिव्य और भव्य विद्युत सजावट की जा रही है। निश्चित रूप से सज्जा नैना विराम होगी और श्रद्धालु परिसर में प्रवेश करने से पूर्व भी ऐसी सुंदर दिव्य छटा को देखकर अभिभूत हो उठेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है।
0: इसके साथ ही भगवान कृष्ण अब की बार जन्मोत्सव पर बेहद दुर्लभ पंचरत्नी पोशाक धारण करेंगे, जिस पर समुद्र मंथन से निकले 14 रत्नों में से 5 विशेष रत्नों को उकेरा गया है।
2: पंचरत्नी पोशाक को धारण करेंगे, जो समुद्र मंथन में 14 रत्न मिले थे उनमें से 5 रत्न उकेरे गए हैं श्री ठाकुर जी की दिव्य पोशाक पर। ठाकुर जी को इस वर्ष काशी और अयोध्या, श्री राम जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ धाम से प्रसाद आ रहे हैं, उनको भव्य और दिव्य शोभा यात्रा के रूप में श्री के जन्म स्थान में प्रवेश कराया जाएगा, श्री ठाकुर जी को अर्पित किया जाएगा।
0: यही नहीं, ब्रज में इस बार जन्मोत्सव के मौके पर काशी मथुरा और अयोध्या के दिव्य त्रिवेणी का महासंगम नजर आने वाला है। काशी विश्वनाथ धाम से ठाकुर जी के लिए दिव्य वस्त्र, फल, सुगंधित द्रव्य और मिठाइयां भेजी जा रही हैं। वहीं अयोध्या की श्रीराम जन्मभूमि से लड्डू गोपाल के लिए लड्डू, फल, मेवे और महाभिषेक की पवित्र सामग्री आ रही है। इन सभी प्रसादों को एक भव्य और दिव्य शोभा यात्रा के रूप में श्री कृष्ण जन्म स्थान में प्रवेश कराया जाएगा, यानी मथुरा में इस बार की जन्माष्टमी केवल एक उत्सव नहीं बल्कि पूरी सनातन परंपरा के एकाकार होने का महापर्व बनने जा रही है।
2: काशी मथुरा अयोध्या सनातन की आत्मा है। राम कृष्ण और शिव को यदि अलग कर दे तो सनातन आत्मा विहीन है। तो इस वर्ष श्रद्धालुओं को काशी मथुरा अयोध्या इन 3 विशिष्ट पुरियों का जो संगम भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर उपस्थित होगा उसके अवगाहन और दर्शन का सुअवसर भी मिलेगा।
0: मथुरा श्री कृष्ण की जन्मभूमि है तो वृंदावन उनकी बाल लीलाओं की भूमि है, इसलिए मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी का उत्सव सबसे अलग होता है। इस बार भी ब्रज में कृष्ण जन्मोत्सव भव्य होगा, विराट होगा। 4 सितंबर की मध्य रात्रि को श्री कृष्ण जन्मभूमि में बाल गोपाल का पंचामृत अभिषेक किया जाएगा, उन्हें विशेष 56 भोग अर्पित किया जाएगा। बाल गोपाल के जन्म पर ब्रज से उठी कृष्ण भक्ति की लहर में सारा संसार आकंठ डूबा नजर आएगा। मथुरा से मदन गोपाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: तो कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियां ना सिर्फ देश के कृष्ण मंदिरों में दिखाई दे रही हैं, बल्कि बाजार भी जन्माष्टमी पर्व के लिए सज चुके हैं। लड्डू गोपाल की मूर्तियां, बाल गोपाल के झूले और पोशाक से लेकर मुरली और माला तक बाजार में बिक रहे हैं। लोग भी जन्माष्टमी से जुड़ी खरीदारी में जोर शोर के साथ जुटे हुए हैं।

0: आने वाला है जन्माष्टमी का त्योहार, सज गए हैं बाजार, एक से बढ़कर एक मनमोहक लड्डू गोपाल और उनकी सुंदर सुंदर पोशाक, मुरली से लेकर माला तक, झूले से लेकर पालना तक, मुकुट से लेकर मटकी तक, सब कुछ बिक रहा है बाजार में। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के अमरावती से आई हैं, जहां श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर बाजारों में रौनक नजर आने लगी है।
1: जन्माष्टमी आने वाली है, उससे पहले जो है महाराष्ट्र समेत देश के अलग अलग इलाकों में जो है कृष्ण भगवान के अलग अलग वेराइटीज के जो झूले है, उनके ड्रेस है, वो उनके बाजार जो है फटे पड़े है। हम फिलहाल अमरावती के जवाहर गेट के अंदर जो रंगारी गली है वहां पर झवर स्टोर में है, जहां पर आप देख सकते हो कि ये पूरी तरीके से दुकान जो है वो कान्हामय हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि सबसे पहले कान्हा को सबसे प्यारा लगने वाला जो है वो दही है, माखन है। वो माखन जो है, माखन जिस से चुराए जाते थे, वो हंडी यहाँ पर है।
0: बदलते दौर के साथ बाजार में नए नए ट्रेंड की कई चीजें भी जन्माष्टमी पर्व के लिए मौजूद हैं, जो इस पर्व में चार चांद लगा देती हैं। दुकानदारों का कहना है कि इस बार कार्टून कढ़ाई, राजवाड़ी और सूरत से आई पोशाकें ग्राहकों को खूब पसंद आ रही हैं। इनमें आकर्षक डिजाइन के साथ बारीक कढ़ाई और रंगों की विविधता देखने को मिल रही है।
2: इस बार की काफी ट्रेंडिंग में है, इसमें हमारे पास में अलग अलग साइज आई है, छोटे बाल गोपाल है, बड़े बाल गोपाल है, फुल बंगला है, जैसे हम देख सकते हैं फुल बंगला है, मोती बंगला है, बाद में बांसुरी के अलग अलग प्रकार है, छोटे से लेके बड़ी है, राधा नाम से सुसज्जित मोती वर्क, कुंदन वर्क के साथ में छोटे मोटे मुकुट, कुंदन जड़ाऊ वर्क के साथ में काफी सुंदर नकाशी वर्क के साथ इस बार बाजार पूरा हमारा राधा कृष्णमयी हो चुका है। छोटे से उनकी रासलीला करने के लिए डांडिया है, छोटे से मृदंग है, छोटे से पैरोट है, छोटे सा उनका मोबाइल फोन है जिससे वो राधा से बात कर सकते हैं, छोटी सी साइकिल है, छोटे से उनके लिए टिफिन बॉक्स है, छोटे से उनके लिए अमृत है, जैसे जलेबी हो गया, फाफड़ा हो गया, या फिर उनके लिए चाय बच्ची हो गई है,
3: चाय बिस्किट भी है,
2: कॉफी भी है।
0: जन्माष्टमी का पर्व जितने ही उत्साह और उमंग के साथ मंदिरों में मनाया जाता है, उसी तरह लोग अपने अपने घरों में भी हर्षोल्लास के साथ जन्माष्टमी मनाते हैं। ऐसे में घरों की झांकी सजाने के लिए कृत्रिम फूलों की माला, झालर, लाइट और अन्य सजावटी सामान भी बाजार में मौजूद हैं।
2: ये जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये कृष्णा जी के जो सेवादार होते हैं, जैसे एक द्वारपाल हो गया, एक वहाँ पे हवा की मतलब पंखी की सेवा दे रहा है, एक वहाँ पे आरती की सेवा दे रहा है, एक वहाँ पे पनिहारी की सेवा दे रहा है, इस प्रकार अलग अलग यहाँ पे सेवादार है।
3: और
2: पीछे आप जो देख रहे हो, यहाँ पे जो आपने हमें पूछा है, ये सारे उनके जन्म की लीला है,
3: पूरी जन्म की लीला है।
2: जी, ये जन्म की सारी लीला है, जन्म से आज तक उन्होंने जो जो किए है, जैसे जेल का हो चुका है, जेल में अलग से दो प्रकार के कटआउट आ चुके हैं, बाद में माखन की जो वो लीला कर रहे हैं, माखन के लीला के साथ में गोपी जो कुएं पे जाती है पानी भरने के लिए, उसकी एक अलग से लीला है, बाल सखाओं के साथ में जो कमल पे बैठकर वो लीला करते हैं, वैसी लीला है।
0: श्री कृष्ण जन्माष्टमी सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि ये जन जन की अगाध आस्था, भक्ति और प्रेम का महापर्व है, जिसे मनाने के लिए लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अमरावती से धनंजय सावले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: राजधानी दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश इस्कॉन की तस्वीरें अब से कुछ देर पहले हमने आपको दिखाई। अब आपको लेकर चलते हैं दिल्ली के द्वारका में नए इस्कॉन मंदिर में, जहां श्री कृष्ण जन्माष्टमी की भव्य तैयारियां की जा रही हैं। मंदिर परिसर को गोकुल थीम पर सजाया जा रहा है। मंदिर की सजावट से लेकर भगवान के श्रृंगार तक हर चीज में श्री कृष्ण की लीलाओं और गोकुल की झलक दिखाई देने वाली है। भगवान श्री कृष्ण के लिए यहां आपकी बार खास पोशाक बनवाई गई है, जिसे तैयार करने में करीब 1.5 महीने का वक्त लगा है। तो वहीं बालकृष्ण के लिए बाहुबली केक भी तैयार किया जा रहा है।

0: जन्माष्टमी के त्यौहार में बस अब कुछ ही दिन बाकी है और ऐसे में श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को लेकर जो राजधानी दिल्ली में द्वारका स्थित इस्कॉन मंदिर में तैयारियां जो है वो जोरों शोरों पर है। एक बार तस्वीरें दिखा देती हूँ, इस्कॉन मंदिर की मैं तस्वीरें दिखा रही हूँ। नया मंदिर जो है वो बना है और यहाँ पर पहली बार जो है जन्माष्टमी जो है इस बारी की जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मंदिर अभी भी आपको जो है यहाँ पर बहुत सारी जो काम है, जो तैयारियां हैं वो होनी बाकी है, लेकिन 4 तारीख के लिए जो है ये मंदिर पूरी तरीके से अपने अंतिम रूप में इस वक्त आपको नजर आ जाएगा। चाहे साज सज्जा की बात की जाए, प्रसादम की बात की जाए, जो भक्त यहाँ पर आएंगे उनके लिए जिस तरीके की व्यवस्था की जाए, हर तरीके से जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर होती हुई आपको नजर आ जाएगी। हमारे साथ इस वक्त प्रभु अच्युता आनंद दास जी भी इस वक्त मौजूद है। हरे कृष्ण प्रभु जी, सबसे पहले तो मैं तैयारी की बात करूँ क्योंकि इस वाले इस्कॉन मंदिर में पहली बार जो है जन्माष्टमी मनाई जाएगी, तो भव्य तरीके से इस बार की हम उम्मीद कर सकते हैं?
1: जी हाँ, ज़रूर, इस साल हम बहुत ही भव्य रूप से तैयारी मना रहे हैं। पिछली बार जो हमारा इवन जो पंडाल का साइज था उससे भी हमने 1.5 गुना बड़ा जो पंडाल है वो लगाया है, ताकि भगवान का जो स्वागत है, भगवान का जो जन्मदिन है, और भी ज़्यादा अच्छे से हम मना सकें। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि भगवान का सुबह स्वागत मंगल आरती से करेंगे। सुबह 4:30 बजे सभी के सभी जो श्रद्धालु हैं वो मंगल आरती के लिए यहाँ पर उपस्थित होंगे और भगवान का स्वागत करेंगे। एंड उसके बाद फिर दिन में सारी की सारी एक्टिविटीज स्टार्ट हो जाएंगी। सुबह भगवान का जो इवन जो ड्रेस है, जो भगवान सुबह दर्शन देंगे, वो भगवान 7:30 बजे दर्शन देंगे। एंड रात को भी भगवान का जब अभिषेक होगा तो जो स्पेशल ड्रेस भगवान के लिए जो बनाया गया है वो उस ड्रेस को बनाने में ही 1.5 महीने का समय लगा है। जो रुक्मिणी द्वारकाधीश का जो पूरा का पूरा जो ड्रेस है या पोशाक कहते हैं जिसे, तो उसको बनाने में हमने पूरा 1.5 महीने का समय लगाया और बहुत ही डेडिकेशन के साथ जो हमारे डिवोटी हैं उन्हीं ने ये ड्रेस को डिज़ाइन किया पूरे भक्तिभाव से।
2: बना रहे हैं, आप सबको पता है अभी जो वर्ल्ड चल रहा है बहुत अडल्ट्रेशन है,

0: जन्माष्टमी के मौके पर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन और उनके श्रृंगार की तैयारी भी जो है वो पूरी भक्ति भाव के साथ चल रही है। इस्कॉन मंदिर में इस वक्त मौजूद है और मैं तस्वीरें दिखा दी थी कि किस तरीके से आपको यहाँ पर महिलाओं की एक मंडली जो है वो नजर आ जाएगी और लगातार वो इसी तरीके से जो है श्रृंगार की तैयारियों में व्यस्त नजर आएगी। बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो यहाँ एक साथ बैठकर अपने हाथों से भगवान श्री कृष्ण के लिए फूलों की मालाएं जो है वो तैयार कर रही है। आप देख सकते हैं कि आपको रंग बिरंगे फूल जो है वो यहाँ पर नजर आ जाएंगे और किस तरीके से किसी के हाथ में आपको फूल नजर आएंगे तो किसी के हाथों में जो है आपको फूलों की माला बड़ी खूबसूरती के साथ पिरोते हुए जो महिलाएं हैं वो नजर आ जाएगी और चेहरे पे सिर्फ आपको भक्ति भाव नजर आएगा हर एक महिला के चेहरे पर।
1: अष्टमी के लिए ड्राई फ्रूट की माला बनेगी, एक दिन पहले बनेगी और फूलों की और सुंदर माला बनाएंगे
0: और सुंदर और भी ज्यादा सुंदर। तो मालाएं जो है वो रोज बन रही है, लेकिन अगर हम जन्माष्टमी के दिन की बात करें तो उस दिन जो है और भी ज्यादा मालाओं को सुंदर बनाने की तैयारी जो है वो की जा रही है। आप देख सकते हैं कि महिलाओं की अच्छी खासी जो यहाँ पर मंडली है आपको बैठी हुई नजर आ जाएगी और बड़े ही प्रेम के साथ, भक्ति के साथ, भावनाओं के साथ जो है ये मालाएं जो है पिरोई जा रही है। सुरक्षा बल की बात करें तो चाहे मंदिर के तरफ से वॉलंटियर्स हो या फिर बाहर पुलिसकर्मी की व्यवस्था की बात की जाए, हर तरीके से इंतजाम जो है वो पुख्ते किए गए ताकि इस बार का जो जश्न है, जो इस बार का चरमोत्सव है वो वाकई में भव्य हो सके, बेहद ही खास हो सके। तो हम भी इंतजार है कर रहे हैं, आप भी इंतजार कर रहे हैं, 4 तारीख का इंतजार सभी को है जिस दिन भगवान श्री कृष्ण का चरमोत्सव बेहद ही धूमधाम से मनाया जाएगा। कैमरा पर्सन इमानुअल जोस के साथ मनीषा लड्डा, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे।
2: तो चलिए कृष्ण जन्माष्टमी से जुड़े हुए और भी तमाम रंग जीएनटी पर लगातार आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए, लेकिन अच्छी खबरें लगातार जारी हैं। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: सैलाब देख पहाड़ की ओर भागे लोग, नेपाल में नजरों के सामने बहते अपनों का नया वीडियो, स्कूल के गेट पर कॉकरोच की एंट्री से डरे टीचर, बेटे के लिए पापा बने मम्मी। वायरल खबरों की पूरी और पक्की पड़ताल, फैक्ट चेक शाम 7:34।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।

0: क्या शहद का प्रयोग करके कर्जों से मुक्ति पाई जा सकती है? क्या शहद का प्रयोग करके वैवाहिक जीवन को बेहतर किया जा सकता है? क्या शहद का प्रयोग करने से चिंताएं समाप्त तो हो सकती हैं? क्या है शहद का महत्व और क्या है इसके चमत्कारी प्रयोग, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
5: तमाम वैश्विक चुनौतियों के बीच देश की जीडीपी ग्रोथ बरकरार। वित्तीय वर्ष 2027 की पहली तिमाही में 7.8% रही विकास दर, आरबीआई के अनुमान से भी ज्यादा रही दर। मानसूनी बारिश के बीच भगवान बद्री विशाल के दर्शन को मढ़ रहे हैं श्रद्धालु। 30 अगस्त तक 16,75,000 से ज्यादा ने की पूजा अर्चना, पवित्र हेमकुंड साहिब में भी लगा भक्तों का तांता। मुंबई के बाबुलनाथ मंदिर में उमड़ा श्रद्धा का जनसैलाब। अमांत पंचांग के तीसरे सावन सोमवार पर भोलेनाथ की आराधना, हर हर महादेव के जयकारे। मुंबई में आगामी गणेशोत्सव की भव्य तैयारियां। साकनाकी के महाराजा की 48 फीट ऊंची प्रतिमा बनी आकर्षण का केंद्र, बप्पा के दरबार की सजावट का काम तेज। 9 सेना की ताकत में हुआ इजाफा, मुंबई में दूसरा स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट पोत निपुण हुआ कमीशन, समुद्र में गोताखोरी और जटिल अभियानों को देगा अंजाम। आंध्र प्रदेश में वैलीगोंडा सिंचाई परियोजना के पहले चरण का हुआ शुभारंभ, खेती के साथ 4 लाख से ज्यादा लोगों को मिलेगा पीने का साफ पानी। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने की कृष्णा नदी की आरती। गिर सोमनाथ के गहरे समुद्र में फंसे 5 मछुआरों का हुआ सफल रेस्क्यू, नाव डूबने से पहले उफनती लहरों के बीच रस्सियों के सहारे साथी मछुआरों ने निकाला सुरक्षित।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
5: सतपुड़ा की पहाड़ियों में 3,000 फीट की ऊंचाई पर धारगढ़ में आस्था का सैलाब उमड़ा, गुफा में विराजमान स्वयंभू महादेव के दर्शन करने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। धारगढ़ पहुंचने के लिए भक्तों ने 25 किलोमीटर तक कठिन पहाड़ी रास्ता तय किया, कंधे पर कांवड़, हाथ में जल और जुबान पर हर महादेव। धारगढ़ की महादेव यात्रा करीब 500 साल पुरानी लोक मान्यता से जुड़ी हुई है। धारगढ़ में भक्ति के साथ जंगल बचाने की भी मुहिम चली। प्लास्टिक बॉटल्स पर 10 रुपए जमा होंगे और बोतल लौटाने पर पैसा वापस मिलेंगे। धारगढ़ टाइगर प्रोजेक्ट के संवेदनशील वन क्षेत्र में आता है, इसलिए कई नियम लागू। मुंबई के बाबुलनाथ मंदिर में सावन के तीसरे सोमवार पर भक्तों की भारी भीड़, सुबह से ही तांता। सावन के तीसरे सोमवार पर बाबुलनाथ मंदिर में हर हर महादेव के जयकारों की गूंज। मुंबई के बाबुलनाथ मंदिर में शिवलिंग का हुआ विशेष श्रृंगार। सावन में शिव भक्तों की आस्था का बड़ा केंद्र बना बाबुलनाथ मंदिर। बाबुलनाथ मंदिर का 300 साल पुराना इतिहास, यही वजह है कि यहीं विराजमान शिवजी से भक्तों का है विशेष लगाव। बाबुलनाथ मंदिर में विराजमान नंदी के कानों में कहते हैं शिव भक्त अपनी मन्नतें। देश भर में जन्माष्टमी की तैयारियां तेज, दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में भी की जा रही भव्य सजावट। मूर्तियों पर की जा रही मंदिर की सजावट, बनाए जा रहे हैं भव्य पंडाल। थाईलैंड, कर्नाटक और बेंगलुरु से मंगाया गया विशेष फूल। भगवान श्री कृष्ण के श्रृंगार की भी खास तैयारियां, भगवान की विशेष पोशाक और ज्वेलरी खासतौर पर बनाई जा रही है। भगवान श्री कृष्ण को जन्माष्टमी पर 1008 प्रकार के लगाए जाएंगे भोग, श्रद्धालुओं को प्रसाद के रूप में बांटा जाएगा। दिल्ली के इस्कॉन मंदिर को खूबसूरत रंग बिरंगे लाइटों से सजाया गया, लाखों की संख्या में भक्त जन्माष्टमी महोत्सव में होंगे शामिल।

भगवान कृष्ण की अलग अलग लीलाओं को लाइटों के जरिए दर्शाया गया। 4 सितंबर को मनाया जाएगा जन्माष्टमी। दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में जन्माष्टमी पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम। 300 सीसीटीवी कैमरों से रख रही है निगरानी। भक्तों की सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस के 600 जवान होंगे तैनात। 1000 प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड संभालेंगे व्यवस्था। श्रद्धालुओं के लिए मेडिकल सुविधाओं का भी खास इंतजाम। 8 एम्बुलेंस तैनात। 4 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी रहेंगी मौजूद। बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की रिकॉर्ड भीड़ है जारी। 30 अगस्त तक 16,75,000 से ज्यादा लोग कर चुके हैं दर्शन। नए रिकॉर्ड की ओर बढ़ रही है हेमकुंड साहिब की यात्रा। 30 अगस्त तक करीब 2,87,000 श्रद्धालु टेक चुके हैं मत्था। बारिश और मौसम की चुनौतियों के बावजूद भक्तों की आस्था पर भारी। बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब में श्रद्धालुओं का उत्साह जबरदस्त। बद्रीनाथ धाम में अब तक देव डोलियां भी पहुंचने लगी हैं। अलकनंदा में स्नान करने के बाद देव डोलियां भगवान बद्री विशाल के कर रही हैं दर्शन। हेमकुंड साहिब की यात्रा आसान नहीं, फिर भी श्रद्धालुओं का जोश कायम। शुभ संयोगों में आज धूमधाम से मनाया जा रहा है कजरी तीज का पावन त्योहार। सुहागिन महिलाओं के लिए दिन काफी महत्वपूर्ण। महिलाएं रख रही हैं पति की लंबी उम्र, अखंड सौभाग्य और वैवाहिक जीवन की सुख शांति के लिए व्रत। उज्जैन में ओणम उत्सव की रौनक, कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। उत्सव के दौरान नेपाल त्रासदी के पीड़ितों के लिए विशेष प्रार्थना। प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा की कामना। तिरुपति के भगवान वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में

मेहनत, जिससे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ी, इसे हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया। एनएसटी पूर्ण जरूरत पड़ने पर समुद्र में फंसी पनडुब्बियों को बचाने में भी कर सकता है मदद, इसके खास सिस्टम गहरे पानी में उतर सकते हैं। आरएस रिपोर्ट में आधुनिक डाइविंग सिस्टम और पानी के अंदर काम करने वाले रोबोट्स तैनात। आरएस निपुण के शामिल होने से नौसेना के गहरे समुद्र में काम करने की क्षमता और मजबूत हो जाएगी। आरएस निस्तार के साथ मिलकर ये दोनों जहाज अंडर वाटर मिशन में अहम भूमिका निभाएंगे। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर देश के लिए शानदार खबर, पहली तिमाही में देश की जीडीपी विकास दर 7.8% रही। पिछले साल की पहली तिमाही के मुकाबले रिकॉर्ड उछाल रहा, पिछले साल इसी दौरान जीडीपी विकास दर 6.9% दर्ज की गई। फिनलैंड में भारत का शानदार प्रदर्शन, आईटीटीएफ वर्ल्ड पैरा फ्यूचर लाहती टूर्नामेंट में 16 मेडल जीते, भारत ने 6 गोल्ड 4 सिल्वर 6 ब्रॉन्ज जीते। भारत के पैरा टेबल टेनिस खिलाड़ियों ने डबल्स में भी दिखाया दमखम, 6 मेडल सबने नाम किया। सुमित सहगल ने डबल्स में 2 गोल्ड जीत कर कमाल करके दिखाया। क्यूबा की जोहाना उरांगा बनी मिस टीन्स इंटरनेशनल 2026, जयपुर में जोहान उरांगा के सिर सजा ताज। कई सुंदरियों को बछाड़कर जोहाना ने जीता खिताब, दुनिया भर से 31 प्रतिभागियों ने मिस टीन्स इंटरनेशनल में हिस्सा लिया था। नामीबिया की चैंटल बोरेन रही फर्स्ट रनर अप, प्रतियोगिता में चैंटल ने हासिल किया 2रा स्थान। पराग्वे की जूलियाना बनी सेकंड रनर अप, कंपटीशन में जूलियाना 3रे पायदान पर। अमेरिका की एंड्रिया अल्मेटिस्का थर्ड रनर अप रही और यूएस वर्जिन आइलैंड की डेरिलिस रनर अप बनी। चुनौतियों के बीच नेपाल मिशन जिंदगी जारी है, नेपाली सेना ने अब तक करीब 10,000 लोगों का रेस्क्यू किया है। बाढ़ के बीच नेपाल पुलिस की बड़ी कामयाबी, कृषि विकास बैंक की खास शाखा से 50 करोड़ रुपए का सोना बरामद हुआ। हाइड्रो पावल टनल में फंसे मजदूरों के लिए भारत की टनल रेस्क्यू टीम और नेपाल सेना ने मिलकर चलाया बचाव अभियान, खोजबीन जारी। भारत की 19 सदस्यीय फॉरेंसिक टीम ने नेपाल बाढ़ पीड़ितों की डीएनए पहचान करके काठमांडू में काम शुरू किया। नेपाल में लापता हुए मद्रास हाईकोर्ट के पूर्व जज, दिल्ली तमिल एडवोकेट्स एसोसिएशन ने सीजेआई सूर्यकांत को पत्र लिखा। आपदा में देवदूत बने भारतीय नौसेना के जवान, 18,600 फीट पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर एक मरीज की जान बचाई गई। खैर, जरूरती सामान हटाकर और कम ईंधन लेकर हेलीकॉप्टर का वजन कम किया गया। बचाव अभियान में भारतीय सेना ने दिया कुशलता, साहस और संवेदनशीलता का बेहतरीन उदाहरण। चंदौली में बाढ़ में फंसे लोगों के लिए देवदूत बनी पुलिस, चंद्र प्रभा नदी में फंसे 3 लोगों का रेस्क्यू। औरैया में खेलते हुए कुएं में गिरा 9 साल का बच्चा, फायर ब्रिगेड ने रेस्क्यू अभियान चलाकर जान बचाई। ऋषिकेश में 2 वाहनों की जोरदार टक्कर में फंसे 4 लोग, एसडीआरएफ ने अभियान चलाकर 4 लोगों को वाहन से बाहर सुरक्षित निकाला। मुरादाबाद में वन विभाग ने तेंदुआ का सफल रेस्क्यू किया, ग्रामीणों ने सांस ली। उत्तराखंड के बागेश्वर में पहाड़ दर का 70 परिवारों पर मंडराया खतरा। भारी बारिश के बावजूद उत्साह से जारी है केदारनाथ यात्रा, अभी तक 14,73,000 से ज्यादा भक्त कर चुके हैं दर्शन। सितंबर में मौसम ठीक होने पर भक्तों की संख्या बढ़ने की उम्मीद, लोगों से मौसम देखकर यात्रा करने की अपील। उत्तराखंड और हिमाचल सहित कई राज्यों में आज से फिर सक्रिय होगा मॉनसून, मौसम विभाग ने जारी किया भारी बारिश का अलर्ट। वाराणसी में भारी बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। भारी बारिश से कई इलाकों में जलजमाव, वाहन चालकों की बढ़ी परेशानी। भारी बारिश से कई घरों में घुसा बाढ़ का पानी, गंगा नदी का बढ़ा जलस्तर। रायपुर में भारी बारिश से कई इलाकों में जल जमा

अब लोगों को हो रही है परेशानी। प्रयागराज में फिर बढ़ने लगा गंगा का जलस्तर, निचले इलाकों में भर गया पानी। गंगा का जलस्तर बढ़ने से झूंसी जौनपुर मुख्य संपर्क मार्ग पर चढ़ा पानी, यातायात प्रभावित। गंगा का जलस्तर बढ़ने से 25 गांवों का टूट गया मुख्यालय से संपर्क का, लोगों को सतर्क रहने की अपील। पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर में बढ़ा गंडक नदी का जलस्तर, बैराज से छोड़ा गया 1.72 लाख क्यूसेक पानी। प्रशासन ने निचले इलाकों में बढ़ाई गश्ती, लोगों से सतर्क रहने की अपील।

0: चित्रकूट में फिर बढ़ने लगा मंदाकिनी नदी का जलस्तर, खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रही है नदी। मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ने से फिर बढ़ा बाढ़ जैसे हालात हैं, कई इलाकों में पानी ही पानी। बाढ़ में फंसे लोगों का एसडीआरएफ कर रही है रेस्क्यू, लोगों से घरों में रहने की अपील। पुरी में सुबह सुबह हुई जोरदार बारिश, मौसम हुआ सुहाना। रियासी में बारिश के बाद सलाल बांध के खुले गए कई कपाट, चिनाब नदी का बढ़ा जलस्तर। चीन में पहली बार मर्मेड वर्ल्ड कप हुआ, 12 देशों के 100 से ज्यादा जलपरियों ने इसमें हिस्सा लिया। पानी के अंदर जितना सिर्फ खूबसूरत खेल नहीं बल्कि खिलाड़ियों को मुश्किल पड़ाव भी पार करना होते हैं। मर्मेड डांस में दर्जनों तरह के होते हैं मूव्स, जैसे जैसे मूव्स मुश्किल होते चले जाते हैं खिलाड़ियों को उतना ज्यादा मेहनत करना होता है। जोड़ी और ग्रुप परफॉर्मेंस में तालमेल भी जरूरी होता है, खिलाड़ियों की जैसे मूव्स पर भी खास नंबर मिलते हैं। कॉस्ट्यूम से लेकर मेकअप और म्यूजिक तक सबका हिसाब होता है, थीम के साथ बॉडी मूवमेंट और म्यूजिक का तालमेल जबरदस्त। ताइपेई चिड़ियाघर में पांडा युआन युआन का 22वां जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। युआन युआन के जन्मदिन पर चिड़ियाघर में भारी भीड़ देखने को मिली, कई लोग सुबह 7 बजे से ही पहुंच गए ताकि पांडा को जन्मदिन मनाते हुए देख सके। युआन युआन के लिए खास ट्रेन का आकार वाला केक भी तैयार किया गया, गन्ने से 22 नंबर की मोमबत्तियां सजाई गई। पांडा के जाने वालों के लिए युआन युआन की तस्वीर वाले 66 कपकेक भी तैयार किए गए। युआन युआन साल 2008 में चीन से ताइवान पहुंची थी, इसमें 2013 और 2020 में 2 बच्चों को जन्म दिया। वर्ल्ड रैली चैंपियनशिप में लगातार 3री जीत के साथ पजारी ने पराग्वे रैली जीती। 3 राउंड बाकी रहते हुए इवांस की बढ़त अब 20 अंक रह गई है, हेडन दूसरे पायदान पर। एड्रियन फोरमॉक्स ने 3रे स्थान के साथ पोडियम किया पूरा। ओलिवर सोलबर्ग ने 5वें स्थान पर रैली की पूरी। पोडियम पर ड्राइवरों ने शैंपेन के साथ जीत का मनाया जश्न, चैंपियन का अगला पड़ाव 10 सितंबर से शुरू होने जा रहा है। स्पेन में मोटोजीपी के मार्क मार्केस ने लगातार 3री बार जीता एरागॉन ग्रैंड प्रिक्स। पेड्रो अकोस्टा दूसरे पायदान पर रहे, मार्टिन 5वें पायदान पर रहे, चैंपियनशिप लीड कायम। एरागॉन में मार्जिक की ये 8वीं और मोटोजीपी जीत रही है। मोटो 2 में अलोंसो ने 2 साल बाद जीत दर्ज की। राजकुमार संतोषी की नई फिल्म का नाम घातक घूस के मारोगे में सनी देओल की एंट्री, 1996 में रिलीज हुई घातक का सीक्वल। मुसाफिर कैफे की सफलता के बाद विक्रांत मैसी की लगी लॉटरी, ऑफ फिल्म कण में आएंगे नजर। वेलिनियर सीरीज में विजय माल्या के रोल में नजर आएंगे अर्जुन रामपाल। हनुमान अंश की बनी 2026 की सरप्राइज ब्लॉकबस्टर, 2 करोड़ के बजट में बनी फिल्म का अब तक का आंकड़ा 39 करोड़ के पार। टॉक्सिक ने कमाई में करूपू को पछाड़ा, जन नायकन को भी छोड़ दिया पीछे।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
4: सैलाब देख पहाड़ की ओर भागे लोग, नेपाल में नजरों के सामने बहते अपनों का नया वीडियो, स्कूल के गेट पर कॉकरोच की एंट्री से डरे टीचर, बेटे के लिए पापा बने मम्मी। वायरल खबरों की पूरी और पक्की पड़ताल, फैक्ट चेक शाम 7:34 पर।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
0: बात करेंगे जम्मू कश्मीर के कुरेज घाटी की, जहां का चोरवान गांव आज भी अपनी पुरानी परंपराओं को संभाले हुए है। यहां पानी से चलने वाला घराट, हाथ से ऊना काती महिलाएं पुराने लकड़ी के घर और पारंपरिक तरीके से अनाज तैयार करने की तस्वीरें देखने को मिलती हैं। आधुनिक दौर में भी गांव के लोग अपनी पुरानी जीवन शैली को नहीं भूले हैं, प्रकृति के करीब रहने और पीढ़ियों से चले आ रहे हुनर को बचाए रखने की यही कोशिश चोरवान को खास बनाती है और गुरेज की सांस्कृतिक पहचान को एक अलग जगह देती है।

0: कश्मीर की खूबसूरत वादियों में एक ऐसा गांव भी है जहां आज भी पुरानी परंपराएं जिंदा हैं, जहां लोग आधुनिक सुविधाओं के साथ साथ अपने पुराने तौर तरीके को भी संभाल कर रखे हुए हैं। ये है उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा की गुरेज घाटी में बसा चोरबान गांव। ये गांव एलओसी के पास मौजूद अपनी खूबसूरती के साथ अपनी खास जीवन शैली के लिए भी जाना जाता है।
1: ये गांव और इस गांव के लोग इस बात पर गर्व कर रहे हैं कि उन्होंने सदियों पुरानी परंपरा गांव में संजो के और संभाल के रखी है।
0: चोरबान में आज भी पानी से चलने वाली आटा चक्कियां हैं, जिन्हें घराट कहा जाता है। पानी के बहाव से पत्थर घूमते हैं और स्थानीय अनाज का आटा तैयार होता है। लोग जंगल से मिलने वाली चीजों से खाना भी बनाते हैं, यानी यहाँ की जिंदगी आज भी प्रकृति से काफी करीब है।
2: जो ये हमारा कल्चर है, अपनी जो चक्की है, ये हमारे पुराने वक्त की है। इसको हम अभी तक अब जिंदा रखा है और अपना जो कल्चर होता है इसको हम नहीं छोड़ा है, क्योंकि इसमें बहुत सा आटा यहाँ हम पीसते हैं तो वो बिल्कुल शुद्ध और साफ होता है। और हमने इसको गवर्नमेंट से भी कुछ गुजारिश करते हैं कि इसको जिंदा रखने के लिए आप भी हमारा ताउन करें, क्योंकि ये हमारा बाप दादा का जो कल्चर है, पुराने जमाने का जो कल्चर है, इसको हम भूल न जाएंगे।
0: गांव की महिलाएं आज भी हाथ से ऊन काती है, ऊन से कपड़े और दूसरी चीजें तैयार की जाती है। ये काम उन्हें अपनी पुरानी पीढ़ियों से मिला है। वहीं पुराने लकड़ी के घर और पत्थर के औजार भी यहाँ की पुरानी जिंदगी की झलक दिखाते हैं। आज जब गांवों में तेजी से बदलाव हो रहा है, चोरबान के लोग अपनी पुरानी पहचान को बचाए हुए हैं। यहाँ की हर परंपरा आने वाली पीढ़ियों को अपने इतिहास और संस्कृति से जोड़ती है।
1: इस गांव का फायदा ये हुआ है कि कश्मीर का पुराना दौर जानने के लिए कई सारे पर्यटक और लोग देश दुनिया से इस गांव में, कश्मीर में, वो पुराना जीवन जानने के लिए पहुँचते हैं।
0: चोरबान की खासियत सिर्फ इसकी खूबसूरत वादियां नहीं, बल्कि यहां आज भी जिंदा है वो जिंदगी जो धीरे धीरे दुनिया की कई हिस्सों से गायब हो रही है। यही वजह है कि गुरेज आने वालों के लिए चोरबान सिर्फ एक गांव नहीं, बल्कि पुरानी संस्कृति को करीब से देखने का एक खास अनुभव है। बांदीपोरा से अश्रम पानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
3: श्रीराम भारतीय कला केंद्र अपने ऐतिहासिक नृत्य नाटक कृष्ण अपने 50 साल पूरे कर रहा है। दिल्ली के कमानी ऑडिटोरियम में 29 अगस्त से शुरू मंचन आगामी 4 सितंबर यानी कि जन्माष्टमी तक चलेगा। हर साल जन्माष्टमी के मौके पर आयोजित होने वाला नृत्य नाटक कृष्ण श्रीराम भारतीय कला केंद्र की शानदार प्रस्तुतियों में से एक है। रामलीला की तर्ज पर ही हर साल इस नृत्य नाटक का आयोजन किया जाता है। इस साल नृत्य नाटक के साथ कृष्ण जन्म से लेकर रामलीला और महाभारत के अलावा लोगों को गीता का सार सीखने को मिलेगा। कृष्ण डांस ड्रामा अपने आप में कला, जीवंतता और आध्यात्मिकता का एक अनूठा संगम है। 50 साल का सफर पूरा करना कला केंद्र के लिए एक शानदार उपलब्धि है।
4: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: क्या शहद का प्रयोग करके कर्जों से मुक्ति पाई जा सकती है? क्या शहद का प्रयोग करके वैवाहिक जीवन को बेहतर किया जा सकता है? क्या शहद का प्रयोग करने से चिंताएं समाप्त तो हो सकती हैं? क्या है शहद का महत्व और क्या है इसके चमत्कारी प्रयोग, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
11: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
12: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
13: तमाम वैश्विक चुनौतियों के बीच देश की GDP ग्रोथ बरकरार, वित्तीय वर्ष 2027 की पहली तिमाही में 7.8% रही विकास दर, RBI के अनुमान से भी ज्यादा रही दर। मानसूनी बारिश के बीच भगवान बद्री विशाल के दर्शन को उमड़ रहे श्रद्धालु, 30 अगस्त तक 16,75,000 से ज्यादा ने की पूजा अर्चना, पवित्र हेमकुंड साहिब में भी लगा भक्तों का तांता। मुंबई में आगामी गणेश उत्सव की भव्य तैयारियां, साकानाकी के महाराजा की 48 फीट ऊंची प्रतिमा बनी आकर्षण का केंद्र, बप्पा के दरबार की सजावट का काम तेज। नौसेना की ताकत में हुआ इजाफा, मुंबई में दूसरा स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट पोत, निपुण हुआ कमीशन, समुद्र में गोताखोरी और जटिल अभियानों को देगा अंजाम। आंध्र प्रदेश के वेलिंगोडा सिंचाई परियोजना के पहले चरण का शुभारंभ, खेती के साथ 4,00,000 से ज्यादा लोगों को मिलेगा पीने का साफ पानी, सीएम चंद्रबाबू नायडू ने की कृष्णा नदी की आरती। गीर सोमनाथ के गहरे समंदर में फंसे 5 मछुआरों का सफल रेस्क्यू, नाव डूबने से पहले उफनती लहरों के बीच रस्सियों के सहारे साथी मछुआरों ने निकाला सुरक्षित।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है अच्छी।
13: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। शाम के 7 बज चुके हैं और 7 गुड न्यूज के साथ हम हाजिर हैं। हम आपको आज की 7 गुड न्यूज के बारे में बताएंगे और सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज की। श्री कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर देश भर में तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। मंदिरों में सजावट का काम अंतिम दौर में है। कहीं फूलों से कान्हा का दरबार सजाया जा रहा है तो कहीं रंग बिरंगी रोशनी से मंदिर जगमगा उठे हैं। ऐसे में आज की हमारी जो पहली गुड न्यूज है वो है ब्रजमंडल में कान्हा के जन्मोत्सव की भव्य तैयारी। जी हाँ, आपको बता दें कि मथुरा और राजधानी दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश में नए इस्कॉन मंदिर में इस बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी की भव्य तैयारियां की जा रही हैं। मंदिर परिसर को मोर थीम पर सजाया जा रहा है। मंदिर के सजावट से लेकर भगवान के श्रृंगार तक हर चीज में श्री कृष्ण की लीलाओं और गोकुल की झलक दिखाई देने वाली है।

0: भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी, ये वो तारीख है जब आधी रात को भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है। इस दिन हर मंदिर हर घर में बाल गोपाल का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। उसके लिए शहर शहर मंदिर मंदिर तैयारी शुरू हो गई है। कहीं नंदलाल के लिए भव्य पालना तैयार किया जा रहा है तो कहीं बाल गोपाल की मनमोहक झांकियां सजाई जा रही है। कृष्ण जन्मोत्सव की सबसे भव्य और दिव्य तैयारियां कृष्ण नगरी मथुरा में शुरू हो चुकी हैं। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को लेकर मथुरा से लेकर वृंदावन तक आस्था और उत्साह का माहौल है। कृष्ण नगरी मथुरा में इस बार भगवान श्री कृष्ण का 5253वां जन्मोत्सव मनाया जाएगा, जिसको लेकर श्री कृष्ण जन्मस्थान से लेकर पूरे मथुरा वृंदावन में तैयारियां शुरू हो गई हैं।
1: भगवान श्री कृष्ण के 5253वें जन्मदिन के लिए पूरे ब्रज को सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है और इस तरह की जो पेंटिंग है ना वो सारी दीवारों पर बनाई जा रही है, जो दीवार भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि की तरफ जाती है। तो इसमें जो लीला है वो दर्शाया जा रहा है कि भगवान श्री कृष्ण को वासुदेव जी गोकुल लेकर जा रहे हैं। तो ऐसी ही जो लीला है भगवान की, जितनी भी लीला है भगवान ने ब्रज में की, वो सभी लीलाएं जो प्रमुख मार्ग है उन पे सजाई जा रही है।
0: जन्मोत्सव को खास और यादगार बनाने के लिए मंदिर परिसर को भव्य रूप देने का काम किया जा रहा है। श्री कृष्ण जन्म स्थान पर आकर्षक सजावट के साथ साथ विशेष लाइटिंग की व्यवस्था भी की जा रही है।
2: जनपद में जो भी जो नगर नियम के द्वारा जो खास तैयारियां की जाती हैं त्योहार को ध्यान में रखते हुए, खासकर जनपद में आने वाले जो प्रमुख मार्ग हैं, सभी मार्गों से पे एक अच्छी सजावट हो। पूरे रास्ते पर आप देख पा रहे हैं कि श्री कृष्ण जी, भगवान श्री कृष्ण जी की लीलाओं से संबंधित जो उनकी वॉल पेंटिंग है, थीम पेंटिंग है, वो कराए जा रहे हैं। साफ सफाई के लिए, स्वच्छता के लिए जो हमारे नगर निगम के भी जितने भी कर्मचारी हैं, उससे अतिरिक्त कर्मचारियों की, चूंकि जनपद में फुटफॉल ज्यादा रहता है तो कूड़े का भी डिस्पोजल उसी के हिसाब से रहेगा, तो उसको ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त सफाई कर्मियों को भी लिया जा रहा है विभिन्न कंपनियों के माध्यम से।
0: दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश स्थित इस्कॉन मंदिर में जन्माष्टमी को लेकर तैयारियां जोरों पर है। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को भव्य बनाने के लिए मंदिर परिसर को खास अंदाज में सजाया जा रहा है। इस बार सजावट की थीम मोर पर आधारित रखी गई है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के मुकुट में सजा मोर पंख उनके स्वरूप का खास हिस्सा माना जाता है।
3: ओ, पीकॉक पे है, मयूर थीम रखा गया है और देश विदेश से लाए हुए फूल उसे सजाएगा, जैसे थाईलैंड और कर्नाटका बंगलोर से फूल मंगाए जा रहे हैं, उसे सजावट की जाएगी। और वृंदावन से भगवान का श्रृंगार के लिए जितने भी ज्वेलरी और ड्रेस है वहाँ से आ रहा है।
0: जन्माष्टमी के मौके पर इस्कॉन मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। ऐसे में मंदिर प्रशासन की तरफ से सुरक्षा और मेडिकल सुविधाओं का भी खास इंतजाम किया गया है। करीब 8 एम्बुलेंस तैनात रहेंगी, जबकि 4 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौजूद रहेंगी। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो 300 के करीब CCTV कैमरे लगाए गए हैं और करीब 600 दिल्ली पुलिस के जवान तैनात रहेंगे, जबकि 1000 से ज्यादा प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स भी व्यवस्था संभालेंगे। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए मंदिर परिसर और आसपास के इलाकों में सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन पर खास फोकस किया जा रहा है।
4: कि आपको यहाँ पर भक्तों की अच्छी खासी भीड़ जो है वो नजर आ जाएगी और साथ ही 4 तारीख को जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा और उससे पहले मंदिर को सजाने का जितना भी काम है वो लगातार यहाँ पर जो है वो किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मंदिर में, आपको सबसे पहले तो लाइट्स में दिखा देती हूँ आपके, यहाँ पर और भी लाइट्स का काम जो है वो लगातार इसी तरीके से जारी, ताकि मंदिर जो है वो अलग से ही जगमगाता हुआ 4 तारीख को जो है वो नजर आए। और उसके बाद अगर मैं मंदिर परिसर में आपको भवन की तस्वीर दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको श्रृंगार होता हुआ जो है वो नजर आ जाएगा।
0: इस बार ईस्ट ऑफ कैलाश का इस्कॉन मंदिर भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के लिए पूरी तरह तैयार हो चुका है, जहां एक तरफ मोर थीम पर भव्य सजावट और वृंदावन से आने वाले खास पोशाक, ज्वेलरी और 1008 भोग आकर्षण का केंद्र होंगे, तो वहीं दूसरी तरफ बड़ी संख्या में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा, मेडिकल और फायर सेफ्टी के भी पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। दिल्ली से मनीषा लड्डा और मथुरा से मदन गोपाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: आपको बता दें कि गणेशोत्सव के करीब आते ही देश का कोना कोना भक्ति के रंग में रंगता जा रहा है। मुंबई से लेकर सूरत और अकोला तक में उत्सव का माहौल है। भगवान को विराजमान करने के लिए अलग अलग स्वरूपों की उनकी प्रतिमाओं को लाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। ऐसे में हमारी अगली यानी कि जो दूसरी गुड न्यूज है वो है गणेशोत्सव के लिए पंडालों में पधार रहे गणपति। जी हाँ, गणेश जी प्रतिमाओं को पंडालों तक लाने के साथ साथ आस्था के साथ लोक रंग भी नजर आ रहा है। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु बापा के स्वागत में शरीक हो रहे हैं।

0: गणों के अध्यक्ष विघ्नहर्ता लंबोदर, देवों के देव महादेव के प्रिय पुत्र गजानन के स्वागत की तैयारियां चारों ओर है। हर्ष उल्लास और विधि विधान के साथ एक दंत की प्रतिमाओं के स्वागत की तस्वीरें देश के हर ओर से सामने आ रही हैं। मुंबई में गणेशोत्सव की तैयारी पूरे धूमधाम से चल रही है। यहाँ पंडालों में गणेश जी पधारने लगे हैं। ये गणेश जी की प्रतिमा 42 फीट ऊंची है और इस प्रतिमा की स्थापना मुंबई के साकीनाका इलाके में की गई है।
1: इस समय उपनगर मुंबई के सबसे बड़े महाराजा का आप दर्शन कर रहे हैं। साकीनाका के महाराजा के नाम से बहुत ज्यादा मशहूर है गणेश जी की ये प्रतिमा और जो जानकारी है उसके हिसाब से लगभग 42 फीट यानी कि 42 फीट ऊंचाई है। अभी दो दिन पहले ही बप्पा का आगमन हुआ है। देखिए किस तरीके से बहुत ही बढ़िया अवतार में दिख रहे हैं। जानकारी के हिसाब से खंडोबा का अवतार लेकर के विराजमान हुए हैं गणपति बप्पा। देखिए बकायदा इनके जो सर पर है अच्छा खासा साफी कह सकते हैं या मुकुट कह सकते हैं रखी हुई है।
0: निरंकार गजानन के अनंत आकार के स्वरूप की तरह उनकी प्रतिमाओं को भी अलग अलग थीमों में सजाया गया है। मन के भाव भले ही एक हों पर उनके स्वागत के तरीके अनेक हैं। साकीनाका मंडल इस बार गणेशोत्सव के मौके पर पर्यावरण संरक्षण का भी संकल्प ले रहा है।
2: इस बार हमारे मंडल ने तय किया है कि जितने हमारे मंडल के टी शर्ट होते वो जितने भक्तों तक पहुंचेंगे, जितने भक्त टी शर्ट लेंगे हमारे मंडल की उतने पेड़ हम लोग मुंबई के अलग अलग बीएमसी ग्राउंड्स है, आरए कॉलोनी है, यहाँ पर लगाएंगे।
0: आस्था और उत्सव का ऐसा ही संगम अकोला में भी नजर आया। यहाँ बप्पा की भव्य एंट्री देखने को मिली। ढोल ताशे डीजे और आतिशबाजी के बीच निकाली गई बप्पा की शोभा यात्रा में भक्ति के साथ लोक रंग भी दिखाई दे रहा था। यहाँ गजानन अकेले नहीं पधार रहे बल्कि उनके साथ पूरा शिव परिवार भी विराजमान है। भव्य दिव्य इस यात्रा को देखने सड़कों पर भीड़ उमड़ पड़ी।
3: जो कंसेप्ट है ये शिव जी की बारात का है। जब शिव जी शादी करने के लिए गए थे देवता लोग, राक्षसगण लोग, नारद मुनि, ऋषि मुनि, ये सभी लोगों का कंसेप्ट है। ये पूरा तरह का है। ये मूर्ति हमने वडोदरा गुजरात से लेकर आई है अकोला के लिए। पहली बार अकोला के अंदर आउट ऑफ स्टेट मूर्ति आई है। और इस साल जो हम लोग ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं पूरा, इसमें हम पूरे चार धाम यात्रा दिखा रहे हैं। गणपति के जो अपने चारों धाम होते हैं बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री उत्तराखंड के, वो चारों धाम आपको मुंगीलाल बाजोरिया के अंदर ग्राउंड के अंदर विराजमान है और सेम वही मूर्ति बना रहे ताकि अकोला वासियों को चारों धाम की यात्रा यही करने का अनुभव मिले।
0: बप्पा की सवारी आगे बढ़ी तो पूरा माहौल गणपति बप्पा के जयकारों से गूंज उठा। ढोल ताशों और डीजे की धुन पर भक्त जमकर थिरके, हाथों में भगवा झंडे लेकर युवा और श्रद्धालु नाचते नजर आए।
4: बप्पा के भक्त लाडले जो है ये गणपति बप्पा की भव्य जो 30 फीट की प्रतिमा है और उसमें जो पूरी तरीके से यहाँ पर जो झांकी बताई गई है वो झांकी जो है वो भोले बाबा के शादी का जो पूरे बाराती है वो बाराती इसमें शामिल हुए हैं। लगभग 30 फीट की ये मूर्ति जो है पहली बार अकोला में जो है महाराष्ट्र के बाहर से मानो गुजरात के बड़ोदरा से यहाँ पर आई है।
0: अब सूरत से आई इन तस्वीरों को देखिए, लग रहा हो मानो शिव बारात निकली हो। देव दानव नर के नर हर कोई गजानन के स्वागत में जैसे धरा पर उमड़ आया हो। जुलूस के बीच कलाकार और युवा तरह तरह के करतब दिखा रहे हैं। इस जुलूस के पीछे भव्य स्वरूप में गजानन पधार रहे हैं। विशाल केसरिया ध्वजाओं से सजे रथ पर सवार विघ्नहर्ता, ढोल नगाड़ा और जयकारों के बीच उन्हें पंडाल में विराजमान कराया गया। भक्तों के इंतजार के दिन अब काफी करीब हैं। 14 सितंबर को पंडालों, मंदिरों और घरों में गजानन अलग अलग स्वरूपों में विराजमान होंगे, लेकिन उनके आगमन की तैयारियों को लेकर अभी से रौनक बरकरार है। बाधाओं और संकटों का नाश करने वाले विघ्नहर्ता गजानन के स्वागत के लिए हर ओर उत्सव का माहौल है, जिसमें जल्द ही पूरा देश रंगा नजर आने वाला है। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे और अकोला से धनंजय साबले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: और पहाड़ों में मौसम का मिजाज भले ही बदलता रहे लेकिन बाबा केदार के भक्तों की आस्था और गहरी होती जा रही है। मॉनसून और बारिश के बीच भी केदारनाथ धाम की यात्रा लगातार जारी है। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो तीसरी गुड न्यूज है वो है मॉनसून चुनौती लेकिन केदारनाथ में भक्ति पूरी। देश के अलग अलग हिस्सों से श्रद्धालु तमाम चुनौतियों के बावजूद बाबा केदार के दर्शन के लिए केदार धाम पहुंच रहे हैं।

0: आस्था से गुलजार, पवित्र और पावन केदारधाम। गंगोत्री से यमुनोत्री तक पहुंच रहे रिकॉर्ड तोड़ भक्त। बाबा केदार के धाम में इन दिनों आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। बारिश और बदलते मौसम के बीच श्रद्धालुओं के कदम लगातार केदारनाथ की ओर बढ़ रहे हैं। मुश्किल रास्ते और पहाड़ी मौसम भी भक्तों के उत्साह को कम नहीं कर पा रहे हैं। आंकड़ों की बात करें तो अब तक 14,73,000 से ज्यादा श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। अभी तक श्रद्धालुओं की संख्या के मामले में बद्रीनाथ धाम सबसे आगे है। 16,54,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने भगवान बद्री विशाल के दर्शन करे हैं। गंगोत्री धाम में करीब 7,47,000 श्रद्धालुओं ने माँ गंगा के दर्शन किए। माँ यमुना के धाम यमुनोत्री में इस बार 6,68,163 श्रद्धालु पहुँच चुके हैं, जो अब तक का रिकॉर्ड आंकड़ा है।
1: अस्सी केदार धाम में यदि मैं बात करूं तो अभी तक लगभग 14.5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने बाबा केदारनाथ के दर्शन कर चुके हैं। और विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के निर्देशन में, माननीय विधायिका जी के, केदारनाथ विधायिका जी के निर्देशन में लगातार जितने भी हमारे आवाजाही के मार्ग हैं, जितने भी हमारे पैदल मार्ग हैं या भूस्खलन वाले जो भी क्षेत्र हैं, जो भी पॉइंट है, लगातार जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की टीमें 24 आवर अलर्ट मोड पर रहकर श्रद्धालुओं की सेवा में निरंतर तत्पर है।
0: केदारनाथ मंदिर परिसर में हर दिन भक्तों की मौजूदगी से माहौल भक्तिमय नजर आ रहा है। हर तरफ बाबा के जयकारे और दर्शन के लिए उमड़ते श्रद्धालु दिखाई दे रहे हैं। मौसम विभाग की ओर से आगामी दिनों में मौसम के ठीक रहने की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसे में आने वाले दिनों में केदारनाथ यात्रा में और तेजी आने की संभावना है।
1: और निरंतर जितनी भी यहाँ पर हमारी पुलिस प्रशासन की टीम है, जितनी हमारी ITBP है, NDRF है, SDRF है, जितने हमारे सेना के जवान है, सभी के द्वारा, साथ ही साथ जितने हमारे आपदा प्रबंधन की टीमें हैं, जो भी चिकित्सक की जो टीमें हैं, सभी के द्वारा निरंतर केदारनाथ धाम में अलर्ट मोड पर रहकर सभी श्रद्धालुओं को निरंतर दर्शन करवाए जा रहे हैं। पुनः आप सभी श्रद्धालुओं का और श्री केदारनाथ धाम में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूँ। और साथ ही साथ आप सब लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आप लोग अपनी इस यात्रा को, चारधाम की जो यात्रा है, आप हेमकुंड साहिब की जो यात्रा है, आप सब लोग जरूर आए।
0: खासतौर पर सितंबर महीने से केदारनाथ धाम आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। यात्रा के चरण में देश भर से बड़ी संख्या में भक्त बाबा केदार के दर्शन के लिए पहुँच सकते हैं। दरअसल सितंबर और अक्टूबर के महीने में चारधाम यात्रा का एक अलग ही उत्साह देखने को मिलता है। मानसून के बाद मौसम साफ होने लगता है और देवभूमि की खूबसूरती अपने चरम पर होती है। पहाड़ों पर ठंडी हवाएं चलती हैं और ऊंची चोटियों पर बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो जाता है। इसी दौरान बाबा केदार के धाम में भी एक अलग ही आध्यात्मिक माहौल नजर आता है। बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच जब बाबा केदार के दर्शन होते हैं तो भक्तों के लिए ये पल बेहद खास और दुर्लभ बन जाता है। केदारनाथ धाम के साथ साथ बद्रीनाथ धाम से लेकर हेमकुंड साहिब की यात्रा को लेकर भी श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। मानसून के बाद जैसे जैसे मौसम सुहाना हो रहा है, वैसे वैसे देवभूमि के इन पवित्र धामों में भक्तों की आवाजाही भी बढ़ती जा रही है। अभी यात्रा समाप्त होने में करीब 2 महीने का वक्त बाकी है, जिससे उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले वक्त में ये आंकड़ा और भी बड़ा हो सकता है। चमोली से कमल नयन सिलौड़ी और रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल, गुड न्यूज टुडे।
2: गुजरात, महाराष्ट्र समेत दक्षिण भारत में अभी सावन जारी है। आज सावन के तीसरे सोमवार के दिन सुबह से ही शिवालयों में भक्तों की लंबी कतारें हैं। हर तरफ हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे हैं। सावन के तीसरे सोमवार पर महादेव का भव्य और दिव्य श्रृंगार किया गया। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो चौथी गुड न्यूज है वो है सावन का सोमवार, सोमनाथ में भक्तों का सैलाब। आपको बता दें कि सावन के तीसरे सोमवार को कहीं भोलेनाथ का फूलों से श्रृंगार हुआ तो कहीं बेलपत्र, धतूरा और आकर्षक आभूषणों से शिवलिंग को सजाया गया। भक्तों ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर भगवान शिव का जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक किया। गुजरात के पवित्र तीर्थ धाम सोमनाथ में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा।

0: महादेव के दर्शन के लिए आपको बता दें कि सुबह से ही लंबी लंबी कतारें यहां पर खड़ी नजर आई और शिवालयों में आस्था का अपार सैलाब यहां पर देखने को मिला।
1: महा पार्वती पते ये हर हर महादेव, मुंबई के बाबुलनाथ मंदिर में यही गूंज रही है। यहाँ आने वाले तमाम श्रद्धालु हर हर महादेव कहते हुए सीधे प्रांगण में भीतर घुस जाते हैं। बाबुलनाथ महादेव मंदिर, महाराष्ट्र का आज तीसरा सोमवार, और देखिए किस कदर शिव भक्तों का और श्रद्धालुओं का एक बड़ा तांता यहाँ पर लगा हुआ है। आपको बताएं कि तकरीबन 2 से 3 घंटे कतार में रहने के बाद बाबा तक पहुंचा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि बाबा हर कुछ सुन लेते हैं, लेकिन जब बात श्रावण और सोमवार की हो तो उनका हृदय बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होता है। ये देखिए नंदी जी ठीक उनके सामने विराजमान कराए गई हैं, और ऐसा मानते हैं कि जो कुछ मिन्नतें बाबा से मांगनी हो वो नंदी जी के कानों में कह दें और तुरंत इनकी बात बाबा सुन लेते हैं। थोड़ा सा देखें मंदिर की तरफ प्रांगण, 300 साल पुराना ये मंदिर है, इतिहास रहा है, पौराणिक कथाएं हैं। खास बात ये है कि शिवलिंग मंदिर शिव जी का दर्शन करने के पहले आपको यहाँ से एक दूसरी कतारें आना होता है, और उसके बाद पास के गणपति बप्पा का यहाँ पर मंदिर है जिसका दर्शन लोग करते हैं, और बकायदा दर्शन करने के बाद शिवजी के दर्शन करने के लिए आगे की तरफ बढ़ जाते हैं।
0: भारतीय नौसेना की ताकत में आज एक और नया और बेहद शक्तिशाली अध्याय जुड़ गया है। समंदर की गहराइयों में देश की सीमाओं की सुरक्षा और मुश्किल अंडरवाटर ऑपरेशंस को अंजाम देने के लिए आईएनएस निपुण आधिकारिक तौर पर नौसेना के बेड़े में शामिल हो गया है। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि पांचवी जो गुड न्यूज है वो इसी से जुड़ी है। समंदर में उतरा हिंदुस्तान का नया महाबली आईएनएस निपुण। जी हाँ, मेक इन इंडिया के तहत बना ये एडवांस डाइविंग सपोर्ट वेसल न सिर्फ हमारी नौसैनिक क्षमताओं को कई गुना बढ़ाएगा बल्कि हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की मौजूदगी को और मजबूत करेगा।

0: समंदर की गहराइयों में भारत की ताकत को एक नया आयाम मिल गया है। INS निपुण, भारतीय नौसेना का वो नया योद्धा जो दुश्मन की हर चाल को नाकाम करने के लिए पूरी तरह तैयार है। जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम भी है। ये केवल एक जहाज नहीं बल्कि नौसेना का एक एडवांस डाइविंग सपोर्ट वेसल है जो गहरे समुद्र में गोताखोरी अभियानों से लेकर अंडरवाटर सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस तक हर मिशन में पूरी तरह निपुण है।
1: INS निपुण जैसा नाम है, इट्स अ वेरी वेरी स्किल्ड शिप, वेरी वेरी केपेबल शिप। ये जहाज डीप डाइविंग ऑपरेशन के लिए बना है एंड सबमरीन रेस्क्यू के लिए। सो इस जहाज से हम डाइविंग करके व्हाट एवर ऑपरेशन वी आर एनविसाज्ड टू डू वी अंडरटेक दैट ऑपरेशन। इस जहाज में एक हेलीकॉप्टर डेक आगे है एंड जो जो डाइविंग के सिस्टम्स बने हैं वो भी इंस्टॉल्ड है एंड जहां पे हम करें इसके पीछे हमारे सबमरीन रेस्क्यू सिस्टम आके फिट होता है।
0: जहां आम जहाज समुद्र की सतह पर संचालन करते हैं वहीं निपुण की भूमिका समुद्र की गहराइयों तक फैली हुई है। INS निपुण क्यों है बेहद खास? इसमें एडवांस गोताखोरी सिस्टम लगाए गए हैं जिनके जरिए कठिन समुद्री हालात में लंबे समय तक गोताखोरों को सहायता दी जा सकती है। डीपी सैचुरेशन डाइविंग इसकी प्रमुख क्षमताओं में शामिल है। निपुण भारतीय नौसेना की पनडुब्बी बचाव क्षमता को भी मजबूत करेगा। अगर कोई पनडुब्बी समुद्र की गहराई में संकट में फंस जाती है तब निपुण उसकी मदद कर सकता है। ये पानी के भीतर चलने वाले रिमोट कंट्रोल रोबोट से लैस है। गहराई वाली जगहों पर निगरानी रखने और डेटा जुटाने के लिए ये मॉडर्न डायनेमिक्स पोजिशनिंग सिस्टम से लैस है।
2: इसकी लंबाई 119.4 मीटर्स है एंड विड्थ जो है काफी एक्चुअली कंपेयर टू अदर शिप्स काफी बड़ा है फॉर दिस साइज। वी आर 22.4 मीटर्स वाइड एंड इसके बनने में जो डिजाइन सब कुछ व्हाट हैपेंड विद हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड एंड इसके जो सिस्टम्स डिजाइन होके फिट होके इंस्टॉल होके प्रूव होने में जो सी ट्रायल्स है सिंस नेवी में इससे पहले बहुत सालों तक ऐसे टाइप का शिप नहीं बना था।
0: समंदर के नीचे मलबे की खोजबीन हो या फिर खोई हुई मशीनों को बाहर निकालने का काम, भारतीय नौसेना का ये साथी हर काम में पूरी तरह से निपुण है। सबसे खास बात यह है कि INS निपुण मेक इन इंडिया की एक शानदार मिसाल है। इसका 80% से ज्यादा हिस्सा स्वदेशी है जिसे हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने तैयार किया है।
3: डाइविंग डीप सी वाटर डाइविंग 300 मीटर तक के लिए, सबमरीन रेस्क्यू DSRV के थ्रू और रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल, ऑल अंडर वाटर स्पेशलाइज्ड ऑपरेशंस हम कैरी आउट कर सकते हैं। ये दूसरा ही जहाज है, पहला जहाज पूर्वी तट पे है, दूसरा जहाज पश्चिमी तट पे है, जो हमें किसी भी सबमरीन पनडुब्बी में अगर कोई दिक्कत आ जाती है, नॉट ओनली अर्थ दूसरे देश की पनडुब्बी में दिक्कत आ सकती है या हमें अंडर वाटर केबल की सुरक्षा करनी है, कुछ मेंटेनेंस करना है या कुछ रेस्क्यू करना है तो उसमें ये जहाज कारगर रहेगा।
0: निपुण के भारतीय नौसेना में शामिल होने से हिंद महासागर में भारत की सुरक्षा परत और मजबूत हो गई है। आज जब दुनिया की नजरें रणनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील समुद्री रास्तों पर हैं, तब ये स्वदेशी योद्धा न केवल हमारी सीमाओं को और अभेद्य बनाएगा बल्कि मुश्किल से मुश्किल अंडर वाटर ऑपरेशंस को भी सटीकता से अंजाम देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: और मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे पर सफर करने वालों के लिए गुड न्यूज है। एक्सप्रेसवे पर कोटा क्षेत्र में मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के पहाड़ियों में बनी मुकुंदरा टनल की दूसरी लाइन भी NHAI ने शुरू कर दी है। ऐसे में अब दिल्ली से कोटा, मध्य प्रदेश, गुजरात व महाराष्ट्र की तरफ जाने वाले लोगों को एक्सप्रेसवे से नीचे नहीं उतरना होगा। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो छठी गुड न्यूज है वो इसी से जुड़ी हुई है और वो है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर मुकुंदरा टनल चालू। जी हाँ, आपको बता दें कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर करीब 4.5 किलोमीटर लंबी मुकुंदरा टनल की दूसरी लाइन को आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। करीब 1100 करोड़ रुपए की लागत से देश की सबसे बड़ी 8 लेन टनल को तैयार किया गया है। इसमें आने जाने के लिए दो अलग अलग ट्यूब बनाया गया है। अभी वर्तमान में केवल एक ट्यूब कोटा से दिल्ली की तरफ आने वाली ऑपरेशनल थी, लेकिन अब दिल्ली से कोटा की तरफ जाने वाला ट्रैफिक भी खोल दिया गया है। इस टनल के पूरी तरह से शुरू होने पर दिल्ली से मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश से दिल्ली की तरफ आने वाले वाहनों को एक्सप्रेस वे से नीचे नहीं उतरना पड़ेगा। अगर कोई वाहन चालक कोटा में उतरना चाहते हैं तो उनको गोपालपुरा टोल पर नीचे उतरना होगा। 4.9 किलोमीटर लंबी मुकुंदरा टनल में दो ट्यूब बनाई गई है। प्रत्येक ट्यूब में चार लेन की सड़क तैयार की गई है। इस टनल के ऊपर वन्य जीवों के लिए पासिंग ट्रैक भी बनाया गया है। टनल के शुरू होने से घाटी में लगने वाले जाम से भी लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। आमतौर पर घाटी में जाम के हालात रहते हैं और करीब एक घंटे लोगों को परेशान होना पड़ता है, लेकिन अब 5 मिनट में वाहन चालक मुकुंदरा की पहाड़ियों को क्रॉस कर सकेंगे।
5: मुंबई एक्सप्रेस वे पर सफर करने वाले हजारों वाहन चालकों के लिए खुशखबरी सामने आई है। दरअसल NHAI ने मुकुंदरा टनल की दूसरी लेन को भी शुरू कर दिया है। कुछ समय पहले मुकुंदरा टनल की कोटा से दिल्ली आने वाली लेन को शुरू किया गया था, तो वहीं दिल्ली से कोटा जाने वाली लेन अभी बंद थी। ऐसे में वाहन चालकों को स्टेट हाईवे पर उतर कर घाटी से होते हुए वापस एक्सप्रेस वे पर चढ़ना पड़ता था। इसमें करीब 1.5 से 2 घंटे का समय लगता था क्योंकि इस स्टेट हाईवे पर लंबा जाम लगता था। ऐसे में वाहन चालक खासे परेशान होते थे, लेकिन अब वाहन चालकों के लिए राहत भरी खबर आई है। टनल की दोनों लेन को शुरू कर दिया गया है। अभी दूसरी लेन को ट्रायल रूप में शुरू किया गया है, लेकिन इससे वाहन चालकों को बड़ी राहत मिली है। NHAI के अधिकारियों ने कहा कि अब महज 5 मिनट में वाहन चालक इस टनल को पार कर सकेंगे। यह देश की पहली ऐसी टनल है जो 4.9 किलोमीटर लंबी है। यह टनल सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस है, साथ ही इस टनल के ऊपर जानवरों को गुजरने के लिए भी पासिंग ट्रैक बनाए गए हैं।
4: पंजाब के फिरोजपुर जिले में पंजाब पुलिस का एक कांस्टेबल करोड़पति बन गया है। दरअसल कांस्टेबल गुरप्रीत सिंह ने लॉटरी का एक टिकट खरीदा था जिसमें उसे पहले पुरस्कार के रूप में 7 करोड़ रुपए मिले हैं। ऐसे में हमारी आज की आखिरी यानी कि 7वीं और आखिरी गुड न्यूज इसी से जुड़ी हुई है। पंजाब पुलिस कांस्टेबल को 7 करोड़ की लॉटरी। जी हां, पंजाब पुलिस के कांस्टेबल गुरप्रीत सिंह ने रक्षाबंधन के मौके पर लॉटरी का टिकट खरीदा और लॉटरी के ड्रॉ में 7 करोड़ रुपए का पहला पुरस्कार जीता।
6: ढोल नगाड़ा आतिशबाजी के साथ जोरदार सेलिब्रेशन, ये जश्न है 7 करोड़ रुपए की लॉटरी जीतने का, जिसे जीता है फिरोजपुर के पुलिस कांस्टेबल गुरप्रीत सिंह ने, जो 24 अगस्त को अपने पिता के साथ बाजार गए थे। इस दौरान उन्होंने 500 रुपए का राखी बम्पर का टिकट खरीदा। उस समय उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यही लॉटरी टिकट उनकी जिंदगी बदलेगी।
7: अज तो 4-5 दिन पहले 24-25 तारीख के राउंड मैं अपने पापा नाल बाजार आ रहा सी, ते रैंडम ही मेरे मन च थॉट आ गया कि मैं इस बारी रखड़ी बंपर पावांगा। तो कोई अनकॉन्शियस मन च सीगा कि इदां कोई सीन नहीं सीगा, उदा रैंडम मैं टिकट पिक कीती, दैन मैं अपने घरे चला गया। ते अज संडे, शायद कल लक्की ड्रॉ निकलिया, अज संडे सी ते मैं गुरु घर सेवा कर रहा सी विच पर लिया, तां भाजी उन्हां नूं मैं कॉल कीती, मैनूं किसे दस्सिया कि रिजल्ट आउट होया। दैन मैं उन्हां नूं कॉल कीती तां मैनूं पता लगा कि पहला प्राइज सी जिहड़ा उह मैं हिट कीता है।
6: 112 हेल्पलाइन पर ड्यूटी करने वाले 28 साल के गुरप्रीत सिंह 2022 में पंजाब पुलिस में कांस्टेबल भर्ती हुए थे। ये टिकट उन्होंने उधम सिंह चौक स्थित NK एजेंसी से खरीदा था, लिहाजा एजेंसी मालिक और स्टाफ ने भी इस बड़ी जीत पर गुरप्रीत सिंह और उनके पिता का मुंह मीठा करके उन्हें बधाई दी।
8: असी सारे फिरोजपुर शहर दे बहुत बहुत धन्यवादी हां। पहला गले नाल ए लकी कस्टमर जो साडे कोल आए, सबब बनया, संजोग बनया कि 7 करोड़ दा इनाम रब जी ने साडी झोली पाया, असी बहुत ज्यादा खुश हां जी।
6: गुरप्रीत सिंह के पिता दर्शन सिंह रेलवे में ट्रेन गार्ड के पद पर कार्यरत थे और साल 2019 में रिटायर हुए। परिवार में गुरप्रीत सिंह के अलावा 2 बेटियां और 1 बेटा है। गुरप्रीत सिंह की इस जीत की खबर सामने आने के बाद गांव मनवाल कदीम में भी खुशी का माहौल है और लोग उन्हें बधाइयां दे रहे हैं। फिरोजपुर से अक्षय कुमार, गुड न्यूज टुडे।
4: इसी के साथ 7 बजे 7 गुड न्यूज में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली।
10: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
11: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
12: अविश्वास में विश्वास बसता है,
10: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
13: गुड न्यूज़ टुडे

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
4: तमाम वैश्विक चुनौतियों के बीच देश की जीडीपी ग्रोथ बरकरार, वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में 7.8% रही विकास दर, आरबीआई के अनुमान से भी ज्यादा रही दर। मानसूनी बारिश के बीच भगवान बद्री विशाल के दर्शन को उमड़ रहे श्रद्धालु 30 अगस्त तक 16,75,000 से ज्यादा ने पूजा अर्चना की, पवित्र हेमकुंड साहिब में भी लगा भक्तों का तांता। मुंबई में आगामी गणेशोत्सव की भव्य तैयारियां, साकीनाका के महाराजा की 48 फीट ऊंची प्रतिमा बनी आकर्षण का केंद्र, बप्पा के दरबार की सजावट का काम तेज।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़।
1: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं, आधी अधूरी सच्चाइयां, झूठे दावे बिजली रफ्तार की तरह फैलते। कभी किसी वीडियो के पीछे की सच्चाई बदल दी जाती है और कभी पुरानी तस्वीर को नई साजिश का रंग देकर पेश किया जाता है। लोग बिना जांचे परखे ने सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के दौर में अब खबरें अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं है। हर किसी के हाथ में कैमरा है, हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है और यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नहीं बताकर परोसी जाती, किसी वीडियो को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कुछ दूर हो। नतीजा ये होता है कि लोग बिना सोचे समझे, बिना जांचे इन्हें सच मानकर शेयर कर देते हैं और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आती। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं। जहां वायरल दावों की होती सटीक जांच, अफवाहों की होती पड़ताल, झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। आज ऐसी दो खबरों की पड़ताल हम करेंगे जिसमें सबसे पहले बात होगी सोशल मीडिया पर छाए उस वीडियो की जो कि नेपाल का बताया जा रहा है, जहां पर 26 अगस्त को आई भीषण बाढ़ के दौरान कुछ लोग तेजी से आते पानी से बचते हुए भागते हुए नजर आ रहे। कहा जा रहा है कि ये नेपाल का वीडियो है, सच्चाई के आगे बताएंगे। अगली खबर होगी उस वायरल वीडियो से जुड़ी जिसको शेयर करते हुए लोग कह रहे हैं कि एक टीचर ने कांग्रेस जनता पार्टी के सदस्य को स्कूल के अंदर आने से रोक दिया। क्या है इस वीडियो की सच्चाई, आगे जानिए। शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
1: सोशल मीडिया पर एक संकरे रास्ते पर भागते हुए लोगों का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और उनके पीछे पानी का तेज बहाव नजर आ रहा है। ये वीडियो किसी पहाड़ी इलाके का नजर आ रहा है, काफी ऊंचाई से बनाया हुआ ये वीडियो लगता है और कुछ लोग इस वीडियो को नेपाल में आई बाढ़ से जोड़कर वायरल कर रहे हैं। लेकिन क्या है इसकी सच्चाई, दिखाते हैं इस रिपोर्ट में।
2: नेपाल में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है, आपदा में मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं अब भी कई लोगों का पता नहीं चल पा रहा है। तिब्बत के बॉर्डर से इलाके से आया पानी का सैलाब इतना तेज था कि कस्बे, बाजार और पूरे के पूरे गांव बह गए। इन सब के बीच सोशल मीडिया पर एक संकरे रास्ते पर भागते कुछ लोगों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उनके पीछे पीछे पानी तेजी से बहता हुआ नजर आ रहा है। ये वीडियो किसी पहाड़ी इलाके का है और काफी ऊंचाई से बनाया गया है। एक फेसबुक यूजर ने ये वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा कि हॉलीवुड की फिल्मों में ही ऐसे सीन देखे हैं। आगे आगे अपनी जान बचाने के लिए भागते लोग और पीछे पीछे अजगर जैसा निकल जाने को तैयार पीछा करता पानी। कई मीडिया आउटलेट्स ने भी इस वीडियो को नेपाल बाढ़ के संदर्भ में शेयर किया। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है।
1: दरअसल नेपाल तिब्बत सीमा के पास भोटेकोश नदी में 26 अगस्त को कई विनाशकारी बाढ़ ने दोनों ही देशों के इलाकों में भीषण तबाही मचाई। इस बाढ़ में अब तक करीब 1000 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 4000 से ज्यादा लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। नेपाल तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ के बाद राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। इन सबके बीच सोशल मीडिया पर एक संकरे रास्ते पर भागते कुछ लोगों का वीडियो वायरल हो रहा है। उनके पीछे पीछे पानी तेजी से बहता हुआ नजर आ रहा है। ये वीडियो किसी पहाड़ी इलाके का है और काफी ऊंचाई से बनाया गया है। कुछ लोग इस वीडियो को नेपाल की बाढ़ से जोड़कर सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर शेयर कर रहे हैं। ऐसे में इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमारा ध्यान बैकग्राउंड में आ रही आवाजों पर गया। जब हमने इसे ध्यानपूर्वक सुना तो ये अरबी जैसा कोई भाषा लगी। वीडियो को नेपाल का बताया जा रहा है तो फिर इसमें अरबी आवाजें क्यों सुनाई दे रही हैं, ये हमें थोड़ा सा अटपटा लगा। इसके अलावा हाल फिलहाल में नेपाल बाढ़ को लेकर कई तरह की तस्वीरें और वीडियोज लगातार सामने आ रहे लेकिन वायरल हो रहे वीडियो जैसा कोई भी वीडियो हमें नहीं मिला। लिहाजा ऐसे में हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा जिसमें हमारा पहला सवाल ये, अगर दावा सच्चा है तो फिर वायरल हो रहे वीडियो के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी सामने क्यों नहीं आई। हमारा दूसरा सवाल ये कि कहीं किसी और जगह के वीडियो को जानबूझकर नेपाल के साथ जोड़कर वायरल तो नहीं किया जा रहा। देखिए सच और झूठ क्या है इस रिपोर्ट में।
2: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वीडियो की पड़ताल में जुटी। सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें पता लगा कि इसे एक फेसबुक यूजर ने 4 अगस्त 2026 को पोस्ट किया था। उसने अरबी भाषा में कैप्शन लिखा था जिसका हिंदी अनुवाद है, याफा में हुई आज की बारिश का वीडियो। ये एक ऐसा दृश्य है जो आंखों को सुकून देता है और निर्जीव भूमि में जान फूंक देता है, साथ ही ये लोगों में उम्मीद के किरण भी जगाता है। याफा यमन का एक पहाड़ी क्षेत्र है। इस फेसबुक यूजर ने वायरल वीडियो से मिलती जुलती जगह के और भी कई वीडियो शेयर किए हैं। 4 अगस्त को उन्होंने इस तरह के 9 वीडियो शेयर किए और ज्यादातर पोस्ट में बारिश के लिए अल्लाह का शुक्रिया अदा किया। यमन की एक न्यूज वेबसाइट की 3 अगस्त 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक 2 अगस्त 2026 को हुई तेज बारिश के चलते यमन के सबाह जिले में स्थित कॉफी बागानों की सिंचाई में काफी मदद मिली। ये बागान अल अरका और तासा इलाकों में है। इन इलाकों में यमन के मशहूर याफई कॉफी की भी खेती होती है। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल दावा झूठा साबित हुआ। वायरल हो रहे वीडियो का नेपाल से कोई भी लेना देना नहीं है। ये यमन का पुराना वीडियो है। ज्योति द्विवेदी के साथ टीम

0: नजर आ रहा है और इसके जरिए लोग ये कह रहे हैं कि टीचर ने कांग्रेस जनता पार्टी के सदस्य को स्कूल के अंदर आने से रोक दिया। सच्चाई क्या है इस रिपोर्ट में जानिए।
1: ठीक है, वहाँ पे रुक जाइए, यहाँ पे देखो, ठीक
2: है, लड़की के चक्कर में आया, कैसे दे देंगे।
3: 15 अगस्त को अभिजीत दीपके के नेतृत्व वाली कांग्रेस जनता पार्टी ने गांवों में सरकारी स्कूलों को सुधारने के लिए स्कूल ठीक करो अभियान शुरू किया। इस अभियान की शुरुआत CJP के सह संस्थापक और संयोजक अभिजीत दीपके ने 15 अगस्त को महाराष्ट्र के हिंगोली जिले से की। इस अभियान का मकसद है देश के ग्रामीण और कम फंड वाले सरकारी स्कूलों की बुनियादी सुविधाओं का सोशल ऑडिट करना और स्कूलों की स्थिति को बेहतर बनाना। इन सब के बीच सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक अधेड़ उम्र का शख्स माइक लिए एक युवक को स्कूल में प्रवेश करने से रोकता हुआ नजर आ रहा है। इसके जरिए कुछ लोग ये कह रहे हैं कि टीचर ने CJP सदस्य को रोका। वीडियो में टीचर को ये कहते हुए सुना जा रहा है कि ये लोग लड़कियों को देखने के लिए स्कूल आते हैं। वीडियो शेयर करते हुए एक एक्स यूजर ने लिखा, तो क्या CJP के गुंडे स्कूलों में ये देखकर घुस रहे हैं कि किन स्कूलों में खूबसूरत लड़कियां हैं? मतलब सच में क्या इन बेवकूफों को निरीक्षण के नाम पर स्कूलों में जाने की इजाजत दी जानी चाहिए? क्या ये आपके आदर्श हैं? सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है।
0: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में एक शख्स माइक लिए हुए युवक को स्कूल में प्रवेश करने से रोकते हुए नजर आ रहा है और इसके जरिए लोग ये कह रहे हैं कि टीचर ने कांग्रेस जनता पार्टी के सदस्य को स्कूल के अंदर जाने से रोका। वीडियो में टीचर को ये कहते हुए सुना जा रहा है कि ये लोग लड़कियों को देखने के लिए स्कूल आते हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर इसी मिलते जुलते दावे के साथ ये वीडियो लगातार शेयर किया जा रहा है। ऐसे में इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की और दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा भी और इसे सुना भी। इस दौरान टीचर और माइक पकड़े हुए युवक के बीच जो बातचीत हो रही है उसे हमने ध्यान से सुना। इसमें जो बोलने का लहजा है, इस तरह का लहजा बिहार में सुनने को मिलता है। मतलब ये कि वायरल हो रहा वीडियो बिहार के किसी इलाके का हो सकता है। साथ ही साथ वीडियो को देखने से ये भी लग रहा है कि अगर कांग्रेस जनता पार्टी का सदस्य किसी स्कूल के हालात को जानने के लिए वहां पहुंचा होता तो वो माइक लेकर क्यों आएगा? वो आराम से स्कूल प्रबंधन से बातचीत करेगा और स्कूल में क्या क्या हो रहा है इसके बारे में जानकारी हासिल कर लेगा। लेकिन इस वीडियो को देखने से ऐसा नहीं लग रहा। इसके अलावा सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई प्रमाणिक जानकारी भी नहीं मिली जो कि वायरल दावे की पुष्टि कर सके कि बिहार में कांग्रेस जनता पार्टी के अभियान को लेकर कोई जानकारी सामने आई। लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा। हमारा पहला सवाल यही था कि वायरल हो रहा वीडियो कब का है और कहां का है। हमारा दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए भ्रम तो नहीं फैलाया जा रहा? सच और झूठ इस रिपोर्ट में जानिए।
3: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वीडियो की पड़ताल में जुटी। सबसे पहले हमने वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें 9 जुलाई को एक फेसबुक पेज पर पोस्ट किया गया वीडियो का एक और वर्जन मिला। इस वीडियो में अधेड़ उम्र का व्यक्ति खुद को स्कूल में सहायक शिक्षक बताता है, जबकि युवक खुद को पत्रकार बताता है। शिक्षक उसे स्कूल परिसर छोड़ने के लिए कहता है और बताता है कि उसे आधिकारिक अनुमति के बिना प्रवेश करने की अनुमति नहीं।
1: लेटर लेकर के आओ ऑफिस से, तब देंगे एंट्री। मतलब यहाँ पे जो भी भ्रष्टाचार होगा तो वहाँ पे ऑफिस लेकर नहीं, ऐसे नहीं देंगे।
3: हमने इस फेसबुक पेज की जांच की। इस दौरान हमने पाया कि यहाँ अलग अलग विषयों को कवर करते कई वीडियोस मौजूद हैं। खासतौर पर बिहार के सरकारी स्कूलों की स्थिति पर यहाँ कई वीडियोस देखने को मिले। एक वीडियो में हमने उन्हें एक शिक्षिका से सवाल जवाब करते और उनके ज्ञान की परीक्षा लेते हुए भी देखा।
4: बर्खास्त हो गया है।
5: हाँ।
4: ऐसे ना
5: एप्लीकेशन में हाथ धैल है।
4: एप्लीकेशन कहाँ धैल है, दिखाइए।
3: इसके बाद फैक्ट चेक टीम ने ये फेसबुक पेज चलाने वाले शख्स यानी कि मनोज यादव से भी संपर्क किया। इस दौरान उन्होंने साफ किया कि उनको कांग्रेस जनता पार्टी से कोई संबंध नहीं है, वो स्कूल ठीक करो अभियान में शामिल नहीं है। वायरल हो रहे वीडियो के बारे में उन्होंने कहा कि पानी की समस्या को उजागर करने के लिए 9 जुलाई को वो नालंदा जिले के इस्लामपुर ब्लॉक स्थित राजकीय उच्च विद्यालय गए थे। इस तरह हमारी पड़ताल से साफ हो गया कि वायरल हो रहे वीडियो का कांग्रेस जनता पार्टी के स्कूल ठीक करो अभियान से कोई संबंध नहीं है। वायरल हो रहा

0: वीडियो 9 जुलाई को फेसबुक पर अपलोड किया गया था, जबकि कॉकरोच जनता पार्टी का स्कूल ठीक करो अभियान 15 अगस्त को शुरू किया गया था। मोहम्मद महफूज आलम के साथ टीम फैक्ट चेक गुड न्यूज टुडे।
1: और फैक्ट चेक में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में, दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
1: कम वैचर की आखिरी सफर का आपको दिखाते हैं ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
2: जन्माष्टमी से पहले सोशल मीडिया पर एक प्यारा वीडियो सामने आया है जिसने लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। वीडियो में नन्हे कलाकार अपनी मासूम अदाओं और शानदार एक्सप्रेशन से सबका ध्यान खींचते नजर आते हैं। उनकी मासूमियत देखकर यूजर्स जमकर प्यार लुटा रहे हैं। वायरल वीडियो में बच्चों को पारंपरिक राधा कृष्ण के लुक में तैयार किया गया है। एक बच्ची राधा के रूप में नजर आती है, वहीं एक बच्चा कान्हा के रूप में दिखाई देता है। दोनों बच्चों की जोड़ी बेहद प्यारी लग रही है। डांस के दौरान बच्चे के एक्सप्रेशन और बच्चे की शरारती अदाएं वीडियो को और भी खास बना देती हैं। म्यूजिक की धुन के साथ दोनों छोटे कलाकार अपने स्टेप्स करने की कोशिश करते नजर आते हैं। उनकी मासूमियत देखकर ऐसा लगता है जैसे वे किसी बड़े स्टेज पर नहीं बल्कि अपने ही अंदाज में त्योहार की खुशी मना रहे हों।

बारिश के दिनों में सड़कों पर पानी और कीचड़ जमा होना आम बात है, लेकिन ऐसे मुश्किल हालात में भी एक छोटे भाई ने अपनी बहन का जिस तरह से ख्याल रखा, उसने लोगों का दिल जीत लिया। वीडियो में तेज बारिश के बीच एक छोटा लड़का अपनी बहन के साथ पानी और कीचड़ से भरे रास्ते पर चलता नजर आता है। आसपास कई गाड़ियां खड़ी हैं और सड़क की हालत ऐसी है कि वहां से निकलना भी आसान नहीं है। ऐसे मौसम में लड़का खुद बारिश में भीगने की परवाह नहीं करता। वो एक बड़ी चादर अपनी बहन के ऊपर इस तरह ताने हुए है कि बारिश की बूंदें उस तक न पहुंचे। उसका पूरा ध्यान सिर्फ इस बात पर है कि उसकी बहन किसी तरह भीगने से बच जाए और सुरक्षित तरीके से रास्ता पार कर सके। इसी बीच एक सफेद कुत्ता भी दोनों के आसपास घूमने लगता है। कुत्ता कभी उनके आगे तो कभी पीछे नजर आता है। हालांकि लड़का इससे भी सतर्क हो जाता है। वो एक तरफ बहन को बारिश से बचाते हुए आगे बढ़ता रहता है और दूसरी तरफ कुत्ते पर भी नजर रखता है। कुछ देर बाद जब कुत्ता उसके बहन के ज्यादा करीब आने लगता है तो लड़का तुरंत उसकी तरफ मुड़ता है और उसे दूर हटाने की कोशिश करता है। इसके बाद वो बिना समय गंवाए फिर अपनी बहन के पास पहुंच जाता है, चादर को दोबारा ठीक करता है और उसे सुरक्षित रास्ते से आगे ले जाने लगता है। वीडियो में भाई का यही छोटा सा प्रयास सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है। यूजर्स इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक बेहद प्यारा और भावुक करने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें एक छोटी बच्ची अपने घर में जन्मदिन के उपहारों के ढेर के बीच से गुजरती नजर आती है। उसकी मासूम मुस्कान और खुशी का अंदाजा देखकर लोग भावुक हो रहे हैं। क्लिप में जन्मदिन वाली बच्ची रिद्धि घर के बाहर खड़ी दिखती है। परिवार के सदस्य उसके साथ आते हैं। दरवाजे पर रिबन बांधा गया है, उसे कैंची दी जाती है और वो रिबन काटती है जैसे वो अपनी पार्टी की मुख्य अतिथि हो। जैसे ही वो अंदर कदम रखती है, फर्श पर सुंदर कपड़ा बिछा होता है जिस पर फूलों की पंखुड़ियां सजी होती हैं। साथ ही उपहारों का एक लंबा रास्ता बनाया गया है। रिद्धि हैरानी और खुशी से भर जाती है। वो सीधे आगे नहीं बढ़ती बल्कि एक एक करके लिपटे हुए उपहार उठाती जाती है। मुस्कुराते हुए वो उन्हें अपनी बाहों में इकट्ठा करती है। जब तक सारे गिफ्ट नहीं ले लेती तब तक रुकती नहीं। उसकी मासूमियत और उत्साह का ये अंदाज वीडियो को खास बना देता है। वीडियो को देखने के बाद कई यूजर्स ने लिखा है कि ये पल वो हमेशा याद रखेगी।

0: कहते हैं माँ की जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन एक पिता अपने बच्चे की जिंदगी में प्यार और देखभाल की ऐसी छांव बन सकता है जो उसे मुश्किल वक्त में संभाल ले। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के रहने वाले कुलदीप भारद्वाज की कहानी कुछ ऐसी ही है। पत्नी को खोने के बाद उन्होंने अपने 2.5 साल के बेटे सात्विक की परवरिश की पूरी जिम्मेदारी खुद संभाल ली। कुलदीप के लिए अब जिंदगी सिर्फ उसके बारे में सोचने का नाम नहीं है, उनकी दुनिया उनके छोटे से बेटे सात्विक के इर्द गिर्द घूमती है। बच्चे को खाना खिलाने से लेकर उसकी देखभाल करने, उसे संभालने और उसके साथ वक्त बिताने तक वो हर जिम्मेदारी खुद निभा रहे हैं। पिता होने के साथ साथ वो बेटे के लिए माँ जैसी ममता और सुरक्षा देने की भी पूरी कोशिश करते हैं।
1: इधर क्यों आके बैठ गई आप?
2: और भाई साहब देखने के लिए।
1: अभी कह रही थी डर लग रहा है।
2: नहीं कह रही, जिसको देखते थी इधर बैठी कि कोई नहीं बोलते सारे आगे।
1: कोई नहीं ले जाता अम्मा एयरपोर्ट पे। हाँ,
0: लखनऊ एयरपोर्ट का एक बेहद क्यूट सा वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी छाया हुआ है, जिसमें एक दादी और उनकी पोती की मासूम बातचीत ने नेटिजंस का दिल जीत लिया है।
1: पार्किंग में ये हवाई जहाज का पार्किंग होता है।
2: ये पार्किंग होता है। मुझे पानी पड़ रहा तो भीगता होगा, पानी पड़ रहा तो भीगेगा, पार्किंग है।
0: इस वायरल क्लिप को देखकर लोग अपनी पुरानी यादों में खो गए हैं और कमेंट्स में अपनी अपनी दादी को याद कर रहे हैं। ये वीडियो उस वक्त का है जब दादी हैदराबाद जाने वाली फ्लाइट का इंतजार कर रही थी। एयरपोर्ट पर बैठे बैठे बुजुर्ग महिला अपने बैग के पास ऐसे पहरा दे रही थी जैसे उन्हें डर हो कि कोई उनका सामान लेकर 9:11 न हो जाए। जब पोती ने उन्हें प्यार से समझाया कि यहाँ सामान बिल्कुल सेफ रहता है, तो दादी के मन में बच्चों जैसी जिज्ञासा जाग उठी। फिर क्या था, दादी ने बड़ी मासूमियत से पूछा कि इतने बड़े बड़े हवाई जहाज बारिश में भींगते क्यों नहीं और उन्हें कहाँ खड़ा करते हैं। उनकी ये भोली भाली बातें आज की तेज रफ्तार जिंदगी में बुजुर्गों की उस सादगी की याद दिला गई जो अब बहुत कम देखने को मिलती है। मुंबई के एक ऑटो रिक्शा चालक ने यात्रियों से मराठी में संवाद करने के लिए एक आसान और प्रभावी तरीका अपनाया है। उन्होंने अपने ऑटो के अंदर हाथ से लिखी हिंदी मराठी अनुवाद शीट चिपका रखी है, जिसमें रोजमर्रा के इस्तेमाल के वाक्य शामिल हैं। ये शीट सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है और लोगों ने चालक की मेहनत और जुगाड़ की जमकर तारीफ की है। एक महिला ने ऑटो में सवार होकर ये शीट देखी और इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर कर दिया। शीट में हिंदी वाक्यों के साथ साथ उनके मराठी अनुवाद साफ साफ लिखे हैं ताकि चालक जरूरत पड़ने पर तुरंत देख सकें। ये पहल महाराष्ट्र सरकार के उस अभियान के बीच आई है जिसमें ऑटो टैक्सी और एप बेस्ड कैब चालकों से मराठी की कार्यकारी जानकारी अनिवार्य की गई है। ग्रेजुएशन का दिन हर छात्र के लिए बेहद खास होता है। कई साल की पढ़ाई और मेहनत के बाद जब स्टेज पर उसका नाम पुकारा जाता है और वो डिग्री लेने पहुंचता है तो वो पल हमेशा याद रहता है। लेकिन एक छात्र के लिए ये दिन इसलिए भी खास बन गया क्योंकि वो डिग्री लेने अकेला नहीं आया था, उसके कंधे पर उसकी प्यारी सी बिल्ली भी बैठी थी। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में छात्र बड़े आराम से अपनी बिल्ली को कंधे पर बैठाकर स्टेज की ओर जाता नजर आ रहा है। छात्र को शायद अपनी डिग्री मिलने की खुशी थी, लेकिन वहां मौजूद लोगों की नजरें उसके बिल्ली पर टिक गई। कुछ ही देर में ये बिल्ली पूरे समारोह की सबसे खास मेहमान बन गई। वीडियो में छात्र अपनी बिल्ली के साथ स्टेज पर पहुंचता है। जैसे ही वो डीन और प्रोफेसर के पास जाता है, वहां मौजूद लोगों का ध्यान बिल्ली पर चला जाता है। कुछ प्रोफेसर उसे देखकर मुस्कुराते हैं तो कुछ प्यार से उसे सहलाते हुए नजर आते हैं। सबसे मजेदार बात यह है कि बिल्ली भी पूरे समय बेहद आराम से छात्र के कंधे पर बैठी रहती है। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे उसे अच्छी तरह पता हो कि आज का दिन उसी के नाम होने वाला है। शादी से पहले होने वाली दुल्हन के लिए बैचलरेट पार्टी का अपना ही उत्साह होता है, लेकिन अमेरिका की एक होने वाली दुल्हन के लिए उसकी पार्टी शुरू होने से पहले ही बेहद खास बन गई। वो विमान से अपने बैचलरेट पार्टी के लिए जा रही थी, तभी एयर होस्टेस ने उसके लिए ऐसा प्यारा सरप्राइज प्लान किया कि पूरी फ्लाइट शादी की सलाह देने वालों से भर गई। यात्रियों ने नैपकिन पर होने वाले दुल्हा दुल्हन को शादीशुदा जिंदगी के लिए मजेदार और काम की सलाह लिखी।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
4: क्या शहद का प्रयोग करके कर्जों से मुक्ति पाई जा सकती है? क्या शहद का प्रयोग करके वैवाहिक जीवन को बेहतर किया जा सकता है? क्या शहद का प्रयोग करने से चिंताएं समाप्त तो हो सकती हैं? क्या है शहद का महत्व और क्या है इसके चमत्कारी प्रयोग, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम
5: अच्छी खबर में किंतु की गुंजाइश न रह जाए और बुरी खबर से परंतु सच्चाई ढूंढ कर लाए, ऐसी अच्छी और सच्ची खबरों के साथ आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। एक ऐसा शो जहां दिन की बड़ी खबर हम आपको आसान शब्दों में पॉइंट बाय पॉइंट समझाएं, यानी बड़ी खबर का सच्चा और अच्छा विश्लेषण। समंदर में नौसेना का संकट मोचक, नेवी को मिला INS निपुण। आ रहे हैं कान्हा, जन्माष्टमी का उत्सव अब बस 4 दिन दूर। एक महिला ने किया कबाड़ से करिश्मा, बिलबोर्ड से बनाया कमाई का कैरी बैग। शुरुआत हेडलाइंस के साथ,
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
11: HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
5: तमाम वैश्विक चुनौतियों के बीच देश की GDP ग्रोथ बरकरार। वित्तीय वर्ष 2026 की पहली तिमाही में 7.8% रही विकास दर, RBI के अनुमान से भी शानदार रहे आंकड़े। मानसूनी बारिश के बीच भगवान बद्री विशाल के दर्शन को उमड़ है श्रद्धालु, 30 अगस्त तक 16,75,000 से ज्यादा भक्तों ने की पूजा अर्चना, पवित्र हेमकुंड साहिब में भी लगा भक्तों का तांता। मुंबई में आगामी गणेशोत्सव की भव्य तैयारियां, साकीनाका के महाराजा की 48 फीट ऊंची प्रतिमा बनी आकर्षण का केंद्र, बप्पा के दरबार की सजावट का काम तेज। नौसेना की ताकत में हुआ इजाफा, मुंबई में दूसरा स्वदेशी डाइविंग पोत निपुण हुआ कमीशन, समुद्र में गोताखोरी और जटिल अभियानों को देगा अंजाम। गिर सोमनाथ के गहरे समंदर में फंसे 5 मछुआरों का सफल रेस्क्यू। नाव डूबने से पहले उपनती लहरों के बीच रस्सियों के सहारे साथी मछुआरों ने सुरक्षित निकाला।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
5: शुरुआत करेंगे अच्छी और सच्ची खबरों की। सबसे पहले बात भारतीय नौसेना की, जिसको मिली है आत्मनिर्भर भारत पहले के तहत एक नई और बड़ी ताकत। विशाखापट्टनम के हिंदुस्तान शिपयार्ड में बनकर तैयार 8,500 टन के INS निपुण का कमीशन हो गया है। मुंबई में आयोजित समारोह में समंदर के इस शूरवीर को नौसेना में शामिल किया गया। इस पोत का निर्माण 75% स्वदेशी कलपुर्जों से हुआ है। नौसेना के इस नए योद्धा में समंदर की गहराई में जाकर कठिन मिशनों को अंजाम देने की ताकत है।

0: समंदर में भारतीय नौसेना की ताकत में जबरदस्त इजाफा। इंडियन नेवी के बेड़े में एक ऐसा योद्धा शामिल हुआ है जिसे INS निपुण कहते हैं। समंदर का ये सिकंदर बेहद शक्तिशाली स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेजल है।
1: INS निपुण जैसा नाम है, इस ए वेरी वेरी स्किल्ड शिप, वेरी वेरी कैपेबल शिप। ये जहाज डीप डाइविंग ऑपरेशन के लिए बना है एंड सबमरीन रेस्क्यू के लिए।
0: INS निपुण में गहरे समंदर के अंदर किसी भी मिशन को अंजाम देने की महारत है। समुद्र की तेज लहरों और खराब मौसम में भी इसमें स्थिर रहने का कौशल है। समंदर के भीतर फंसी पनडुब्बी और नौसैनिकों को आसानी से बाहर निकालने में ये रक्षा दूत की भूमिका बखूबी निभा सकता है। भारतीय नौसेना का ये नया महारथी समंदर में पानी के अंदर किसी खराब शिप या मशीन को दुरुस्त करने में भी सक्षम है।
1: हमारे पास सबमरीन रेस्क्यू के लिए हमारा जो सिस्टम है, इट्स अ ट्रांसपोर्टेबल सिस्टम, उसके लिए एक मदरशिप का रिक्वायरमेंट था ताकि नेवी के जहाज यूज करके उसको डिप्लॉय करके कहीं लेके जा सकते हैं। दैट कैपेबिलिटी हैज बीन एड्रेस्ड एंड आल्सो द डीप डाइविंग कैपेबिलिटी, द सिस्टम जो इसमें इंस्टॉल किया है, इट इज एडवांस्ड। जो DP सिस्टम जो लगे हैं एंड जो बंदे नीचे जाके काम कर सकते हैं एंड ये सारे चीजें हैं जो एग्जिस्टिंग पहले भी था नेवी में, बट यहाँ पे जो लगा है इट इज सम ऑफ द वन ऑफ द एडवांस सिस्टम्स विच यू हैव। एंड सबसे खासियत वाली बात है कि हमारे पास ROVs हैं, रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल। ये जो जहाँ पे मनुष्य जाके थोड़ा सा रिस्की काम करना होता है उसको ओवरकम करने के लिए वी हैव दिस सिस्टम वेयर द मशीन गोस एंड कैन अंडरटेक व्हाट ह्यूमन जनरली विल डू एट अ व्हिच विल इन्वॉल्व रिस्क।
0: इस स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल INS निपुण को मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में आयोजित एक औपचारिक समारोह में कमीशन किया गया। समारोह की अध्यक्षता नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने किया। INS निपुण आधुनिक डाइविंग सिस्टम और पानी के नीचे काम करने की क्षमताओं से लैस है, जिससे समुद्र में मुश्किल हालात में काम करने वाले गोताखोरों को लगातार सपोर्ट मिल सके। ये जहाज समंदर में 300 मीटर तक की गहराई में सैचुरेशन डाइविंग और 75 मीटर तक साइड स्टेज डाइविंग अभियानों को अंजाम देने में सक्षम है। ये पनडुब्बी बचाव ऑपरेशन में सपोर्ट करने की भारतीय नौसेना की क्षमता को बढ़ाने वाला है। इस जहाज में नेविगेशन, प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट और सटीक स्टेशन कीपिंग के लिए आधुनिक सिस्टम लगे हैं। साथ ही इसमें डाइविंग, पानी के नीचे काम करने और मेडिकल सपोर्ट के लिए खास सुविधाएं भी है। ये क्षमताएं इसे पानी की सतह के नीचे जटिल ऑपरेशन के लिए एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करने में सक्षम बनाती है।
2: भारतीय नौसेना का दूसरा डाइविंग सपोर्ट वेसल है जो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है और अब भारतीय नौसेना को डिलीवर हो चुका है। यह यहाँ मुंबई में पश्चिमी तट पर बेस रहेगा। इसकी खासियत डाइविंग, डीप सी वाटर डाइविंग 300 मीटर तक के लिए, सबमरीन रेस्क्यू DSRV के थ्रू और रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल, ऑल अंडर वाटर स्पेशलाइज्ड ऑपरेशंस हम कैरी आउट कर सकते हैं। किसी भी सबमरीन पनडुब्बी में अगर कोई दिक्कत आ जाती है, नॉट ओनली अर्थ, दूसरे देश की सब पनडुब्बियों में दिक्कत आ सकती है, या हमें अंडर वाटर केबल की सुरक्षा करनी है, कुछ मेंटेनेंस करना है या कुछ रेस्क्यू करना है, तो उसमें ये जहाज कारगर रहेगा। इसमें डायनेमिक पोजिशनिंग क्लास 2 सिस्टम लगा हुआ है जो इस जहाज को 1 मीटर एक्यूरेसी तक पोजिशन होल्ड करने में, चाहे एट सी आपको मिलेगा, विंड्स बहुत स्ट्रांग मिलेंगी, करंट्स आपको बहुत स्ट्रांग मिलेगा, सबको केटर करते हुए जहाज को एक्यूरेटली पोजिशन पे मेंटेन करेगा सो दैट जहाज अपने अंडर वाटर ऑपरेशन को प्रिसाइजली कैरी आउट कर सके।
0: INS निपुण भारतीय नौसेना का निस्तार क्लास का डाइविंग सपोर्ट जहाज है। इसका निर्माण हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम ने किया है। आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत इसके निर्माण में 75% से अधिक स्वदेशी कलपुर्जों और प्रणालियों का इस्तेमाल किया गया है। इस पोत की असली ताकत समुद्र में बहुत ज्यादा लंबे समय तक टिके रहने की है, जो इसे गहरे समंदर के कॉम्प्लिकेटेड अभियानों को पूरा करने में सक्षम बनाता है। इसमें 15 टन की सब सी क्रेन, डायनेमिक पोजीशनिंग सिस्टम के साथ ही 1000 मीटर की गहराई तक काम करने में सक्षम रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स तैनात किए गए हैं। INS निपुण में 8 बिस्तर वाला अस्पताल मौजूद है, जिसमें एक ICU, एक ऑपरेशन थिएटर और हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी जैसी सुविधाएं भी हैं, जो इसे गहरे समंदर में गोताखोरी से जुड़ी मेडिकल प्रॉब्लम से निपटने की ताकत देती हैं।
3: ये एक तरह से डीप सी डाइविंग के लिए सपोर्ट जहाज की तरह, जहां पर कि एक डीप सी डाइविंग जो कि काफ़ी ज़रूरी है, उसका लॉन्च व्हीकल, उनका साथ साथ में जो डाइवर्स हैं उनको सपोर्ट, सबमरीन रेस्क्यू या गहराई में कोई रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना हो, किसी प्रकार का भी जो समुद्र की बहुत गहराई से जो ऑपरेशन चलाने हैं उसके लिए ये एक प्लेटफॉर्म बनाया गया और जो बहुत ही मददगार साबित होगा।
0: रणनीतिक रूप से भारतीय नौसेना का निस्तार क्लास का ये जहाज बेहद अहम है। इस क्लास का पहला डाइविंग सपोर्ट वेसल INS निस्तार जुलाई 2025 में कमीशन होकर विशाखापट्टनम में पूर्वी समुद्री तट पर तैनात है। अब INS निपुण के मुंबई में पश्चिमी समुद्री तट पर तैनात होने से भारत के दोनों तटों पर एक समान और अभेद सुरक्षा चक्र पूरा हो जाएगा, यानी दोनों तटों पर अभेद सुरक्षा कवच की मौजूदगी। शिवानी शर्मा और मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की, जिसकी तैयारियों को लेकर श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह है। जगह जगह जन्मोत्सव की भव्य तैयारी चल रही है। श्री कृष्ण जन्मस्थान से लेकर उनके समर्पित हर मंदिर जगमगा रहे हैं। देशभर में बाजार भी इस विशेष अवसर पर सज चुके हैं। दुकानों में कान्हा की प्रतिमाओं से लेकर श्रृंगार तक के ऐसे सामान मौजूद हैं जो कि श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं।

0: पूरा देश कान्हा के रंग में रंगा नजर आ रहा है। मंदिर दिव्य रोशनी से जगमगा रहे हैं। सजावट तेज गति से आगे बढ़ रही है। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाने के लिए जगह जगह भव्य तैयारियां चल रही हैं। कन्हैया के जन्म स्थान से लेकर अलग अलग शहरों में जन्माष्टमी की रौनक देखने को मिल रही है। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का मुख्य आयोजन उनकी जन्मस्थली मथुरा में होगा। 4 सितंबर को मनाई जाने वाली जन्माष्टमी को लेकर पूरा ब्रज मंडल सज रहा है।
1: ब्रज को सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है, और इस तरह की जो पेंटिंग है ना, वो सारी दीवारों पर बनाई जा रही है, जो दीवार भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि की तरफ जाती है। तो इसमें जो लीला है वो दर्शाया जा रहा है कि भगवान श्री कृष्ण को वासुदेव जी गोकुल लेकर जा रहे हैं। तो ऐसी ही जो लीला है भगवान की, जितनी भी लीला है भगवान ने ब्रज में की, वो सभी लीलाएं जो प्रमुख मार्ग हैं उन पर सजाई जा रही हैं। करीब 24 चौराहे सजाए जा रहे हैं, गेट बनाया जाएगा, तोरण द्वार बनाए जा रहे हैं, करीब 24 द्वार बनेंगे, 24 चौक चौराहे सजाए जा रहे हैं, और जितनी भी दीवाल है जो ब्रज जन्मभूमि की तरफ जाती है, जन्मभूमि के पास का रास्ता है। तो इस तरह की जो सजावट है ना, भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव को मनाने के लिए 4 सितंबर को भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मनाया जाएगा ब्रज में, तो उसकी जो तैयारी है बड़े भव्यता और दिव्यता पर चल रही है और चारों ओर सजावट है।
0: पूरे शहर को लाइटिंग के साथ ही दिव्य रूप से सजाया सवारा जा रहा है।
2: चाहे वृंदावन हो, चाहे मथुरा हो, अन्य हमारे नंदगांव है, बरसाना है, गोवर्धन है, गोकुल है, बलदेव है, सब जगह बहुत ही भव्य और दिव्य तरीके से हम लोग तैयारी कर रहे हैं। 2 तारीख से 5 तारीख तक बहुत ही बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशन में उत्सव की तैयारी चल रही है, और कृष्ण जन्मोत्सव 2026 पे हर चौराहे को हम सजा रहे हैं। देश के विदेश के लोकल कलाकारों से हर चौराहे पर उनकी प्रस्तुतियाँ होंगी। इसके अलावा ड्रोन के माध्यम से पूरा भगवान जी का 4 सितंबर को जो ड्रोन के माध्यम से उनके लीला और उनका जन्मोत्सव पूरे ब्रजवासियों को दिखाया जाएगा, और लगभग 75 लाख के आसपास श्रद्धालुओं के आगमन का यहां हम लोग अनुमान लगा रहे हैं।
0: जन्माष्टमी के अवसर पर पूरे ब्रज में लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, जिनकी सुविधा और सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से पुख्ता व्यवस्था की जा रही है।
3: पूरे क्षेत्र को 7 जोन और 37 सेक्टर्स में विभाजित करके मजिस्ट्रेट्स और पुलिस ऑफिसर्स की ड्यूटी लगाई गई है। 8 कंपनी PAC, 1 कंपनी RAF और फ्लड PAC का भी डिप्लॉयमेंट किया गया है। ड्रोन के माध्यम से निगरानी रखी जाएगी। एक बृहद ट्रैफिक प्लान बनाया गया है, जिसमें कि विशेष करके जो बाहर से आ रहे हैं श्रद्धालु, उनको मालूम रहे कि कहाँ पे पार्किंग्स है, कहाँ पे नो एंट्री है, कहाँ पे वन वे है और कहाँ भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित है। साथ ही साथ हम लोग सोशल मीडिया पर भी निगरानी रख रहे हैं। होल्डिंग एरियाज, PA सिस्टम, CCTV, इनके माध्यम से भीड़ प्रबंधन सुनिश्चित किया जाएगा।
0: भगवान श्री कृष्ण का 5253वां जन्मोत्सव भव्य और दिव्य रूप से मनाने की तैयारियां चल रही हैं।
4: इस वर्ष भगवान कलहंस पुष्प बंगले में विराजमान होंगे, साथ ही पंचरत्नी पोशाक को धारण करेंगे। जो समुद्र मंथन में 14 रत्न मिले थे, उनमें से 5 रत्न उकेरे गए हैं श्री ठाकुर जी की दिव्य पोशाक पर।
0: श्री कृष्ण जन्मभूमि के अलावा देश भर के इस्कॉन मंदिरों में भव्य रूप से जन्माष्टमी मनाने की तैयारी चल रही है। ये तस्वीर दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश स्थित इस्कॉन मंदिर की है, जहां अभी से पूरा मंदिर परिसर रोशनी से नहा रहा है। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को भव्य बनाने के लिए मंदिर परिसर को खास अंदाज में सजाया जा रहा है। इस बार सजावट की थीम मोर पर आधारित रखी गई है।
5: इस साल भगवान को जो सबसे प्रिय है मोर पंख, तो जो थीम है सिंगार और सजावट की वो पीकॉक पे है, मयूर थीम रखा गया है।
0: मंदिर को आकर्षक फूलों और रंग बिरंगी रोशनियों से सजाया जा रहा है। सजावट के लिए देश विदेश से विशेष फूल मंगाए जा रहे हैं। मंदिर परिसर में सजावट का काम लगातार चल रहा है और सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है।
6: देख सकते हैं कि किस तरीके से मंदिर परिसर में जो है आपको तैयारियां होते हुए जो है वो लगातार इसी तरीके से नजर आ जाएगी, चाहे वो इस तरीके से पॉलिश करने का काम हो या फिर इंटेंस को सजाने का काम या फिर रंगोली का काम या फिर इनके भीतर जितनी भी ये लाइट्स जो लगाई गई है उसकी तैयारियों का काम, हर एक तरीके से काम होता हुआ जो है आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा। और 4 सितंबर को जब भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव यहाँ पर मनाया जाएगा तब इस पूरे परिसर में एक अलग ही रौनक जो है वो आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम और जितने भी भक्त यहाँ पर आएंगे उनके लिए व्यवस्था जो है वो की गई है, यहीं से सभी भक्त जो है वो प्रवेश करेंगे। सिक्योरिटी के इंतजाम जो है वो पुख्ता तरीके से किए गए हैं, जगह जगह चप्पे चप्पे पे आपको जो है सीसीटीवी कैमरा नजर आ जाएंगे और 300 के करीब जो है यहाँ पर सीसीटीवी लगाए गए और लगातार इनकी मॉनिटरिंग जो है वो की जा रही है। यहाँ पर उस दिन एम्बुलेंस की व्यवस्था भी की जाएगी, फायर ब्रिगेड्स की भी व्यवस्था की जाएगी, 1000 से ज्यादा जो है यहाँ पर प्राइवेट वॉलंटियर्स जो है वो लगाए जाएंगे, 600 के करीब जो है दिल्ली पुलिस के कर्मी यहाँ पर जो है मौजूद रहेंगे ताकि किसी तरीके से जो भीड़ है जो व्यवस्था है वो ना बिगड़े।
0: भगवान श्री कृष्ण के श्रृंगार से लेकर 1008 प्रकार के भोग अर्पित करने की तैयारी भी यहाँ चल रही है। दिल्ली के द्वारका इलाके में स्थित इस्कॉन मंदिर को भी भव्य रूप से सजाया जा रहा है। इस बार पूरे आयोजन की थीम गोकुल धाम पर आधारित है। भक्त पूरे उत्साह के साथ तैयारियों में जुटे हुए हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण के श्रृंगार और पोशाक से लेकर महाभोग तक पर काम चल रहा है।
7: भगवान का सुबह स्वागत मंगल आरती से करेंगे, सुबह 4:30 बजे सभी के सभी जो श्रद्धालु हैं वो मंगल आरती के लिए यहाँ पे उपस्थित होंगे और भगवान का स्वागत करेंगे। एंड उसके बाद फिर दिन में सारी की सारी एक्टिविटीज स्टार्ट हो जाएंगी। सुबह भगवान का जो इवन जो ड्रेस है जो भगवान सुबह दर्शन देंगे वो भगवान 7:30 बजे दर्शन देंगे। एंड रात को भी भगवान का जब अभिषेक होगा तो जो स्पेशल ड्रेस भगवान के लिए जो बनाया गया है वो उस ड्रेस को बनाने में ही 1.5 महीने का समय लगा है। हम इस बार भगवान को लगभग 100 बार 56 भोग लगाएंगे।
0: झांसी भी कान्हा के रंग से सराबोर है। यहाँ हरिनाम संकीर्तन यात्रा की दिव्य छटा देखने को मिली, साथ ही इस यात्रा के जरिए लोगों को इस्कॉन मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन में श्रद्धालुओं को शामिल होने का आमंत्रण भी दिया गया। यहाँ के इस्कॉन मंदिर में 2 से 4 सितंबर तक होने वाले जन्माष्टमी महोत्सव के आयोजन की तैयारी की जा रही है।
1: भव्य हरिनाम संकीर्तन यात्रा श्री श्री नताई गौर सुंदर के श्री विग्रह हैं, शिल प्रभुपाद जी का श्री विग्रह है। ये संपूर्ण शहर क्षेत्र में भ्रमण कर रहा है लोगों को ये जागरूक करने के लिए कि सुंदर कथा का आयोजन हो रहा है इस्कॉन मंदिर प्रांगण में। और उसके बाद 3 दिवसीय क्राफ्ट मेला मैदान में भव्य जन्माष्टमी का महोत्सव होगा। 2 तारीख को युवाओं का महोत्सव यूथ फेस्टिवल होगा, 3 तारीख को सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और 4 तारीख को भव्य जन्माष्टमी महोत्सव मनाया जाएगा।
0: कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर बाजार भी गुलजार है। यह तस्वीर महाराष्ट्र के अमरावती की है जहां ये दुकान पूरी तरह कान्हा के जन्मोत्सव के लिए सजी हुई है। अमरावती को भगवान कृष्ण और रुक्मणी की कथा से विशेष रूप से जोड़ा जाता है, इसलिए जन्माष्टमी से पहले यहां के बाजार भी पूरी तरह कृष्णमय हो चुके हैं। जवाहर गेट की रंगारी गली में लड्डू गोपाल के लिए छोटे बड़े पोशाक, मुकुट, मोरपंख, बांसुरी और झूले तो है ही, लेकिन इस बार कुछ ऐसी छोटी छोटी चीजें भी बाजार में आई हैं जो आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। कान्हा के लिए छोटी चाय, बिस्कुट, फलहार, मिनी बांसुरी और यहाँ तक कि मोबाइल फोन भी यहाँ मौजूद है।
8: यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये पूरी तरीके से दुकान जो है वो कान्हामय हुई है।
9: आज का इस साल का जो हमारा ट्रेंडिंग है वो है हमारा सिलिकॉन कृष्णा जी, हमारे बाल गोपाल जी। बाल गोपाल जी इस बार काफी ट्रेंडिंग में है। इसमें हमारे पास में अलग अलग साइज आई है, छोटे बाल गोपाल है, बड़े बाल गोपाल है, फुल बंगला है, जैसे हम देख सकते हैं फुल बंगला है, मोती बंगला है, बाद में बांसुरी के अलग अलग प्रकार है, छोटे से लेके बड़ी है, राधा नाम से सुसज्जित मोती वर्क कुंदन वर्क के साथ में, छोटे मोटे मुकुट कुंदन जड़ाऊ वर्क के साथ में, काफी सुंदर नकाशी वर्क के साथ। कान्हा जी को रात को हम सुलाते हैं तो उनको मच्छर नहीं काटने चाहिए, तो उनके लिए हमने मच्छिया का यहाँ पे इस्तेमाल किया है नेट का प्रोटेक्शन के साथ में। साथ ही साथ यहाँ पे नौका विहार करने के लिए ठाकुर जी राधा जी के साथ जाने के लिए जन्म की एक लीला भी यहाँ पे प्रस्तुत की गई है।
8: कौंडन्यपुर से ही कृष्ण ने जो है रुक्मिणी को हर लिया था, इसलिए यहाँ पर जो है यहाँ का जो महत्व है वो बड़ा है।
0: हर तरफ अभी बस जन्माष्टमी की दिव्य छटा बिखरी हुई दिख रही है और 4 सितंबर को कृष्ण जन्मोत्सव पर तो ये कहीं अधिक आकर्षित करने वाली होगी। मथुरा से मदन गोपाल शर्मा, झांसी से अजय झा, अमरावती से धनंजय साबले, दिल्ली से मनीषा लड्डा और आशुतोष कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
10: और अब बात एक ऐसी महिला की जो पिछले 4 साल से कबाड़ से करिश्मा कर रही है, सामाजिक कार्यकर्ता काजल छिपर। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पर्यावरण संरक्षण और महिला सशक्तिकरण की अनूठी पहल चला रही हैं। वो शहर के सार्वजनिक स्थानों और विज्ञापनों से उतरने वाले बेकार फ्लेक्स बोर्ड को इकट्ठा करती हैं और अपनी 35 सहयोगियों की मदद से उसे कैरी बैग की शक्ल देती हैं। जागरूकता फैलाने के लिए वो उन बैग्स को लोगों में मुफ्त में बांट भी रही हैं।

0: शहर के बड़े चौराहों, इमारतों की छतों और हाईवे के किनारे फ्लैक्स से बने इस तरह के विज्ञापन के बड़े बोर्ड दिखना आम बात है। चुनावी प्रचार राजनीतिक पोस्टरों और कोचिंग संस्थानों या आयोजनों के विज्ञापन के रूप में भी जमकर फ्लैक्स का इस्तेमाल होता है। विवाह मेले और आयोजनों से जुड़े पंडालों के बाहर स्वागत द्वार या कार्यक्रम की जानकारी देने वाले बैनर के रूप में भी फ्लैक्स सबसे अच्छा मटेरियल माना जाता है। लेकिन पानी और धूप को आसानी से सहने वाले फ्लैक्स बैनर जल, जमीन और स्वच्छ हवा के दुश्मन माने जाते हैं। लेकिन अब कबाड़ हो चुके ऐसे बैनर का बेहतर इस्तेमाल मुमकिन है। सिंथेटिक प्लास्टिक पॉलीमर यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड से बना फ्लैक्स पानी और धूप को आसानी से सहन कर लेता है। ऐसे में गाजियाबाद की रहने वाली काजल छिब्बर नाम की एक महिला अपसाइक्लिंग यानी पुरानी, बेकार या फेंके जाने वाले फ्लैक्स को नए और ज्यादा उपयोगी उत्पादों में बदल रही है। वो पुराने फ्लैक्स बोर्ड को मजबूत बैग में बदल रही है और इन्हें मुफ्त बांटकर लोगों को पॉलिथीन की थैलियां छोड़ने के लिए जागरूक भी कर रही है।
1: फ्लैक्स और बैनर्स की शहर में बाढ़ आई हुई होती है। एक तरह से अपनी अपनी भावनाएं प्रकट करने के लिए लोग इन फ्लैक्स का इस्तेमाल करते हैं। जब एडमिशन्स होते हैं सरकारी स्कूलों में, ये सत्र 2025-26 का, यानी कि इसी साल कभी ये बनाया गया होगा अप्रैल, मई, जून, मार्च में, उसके बाद एडमिशन के बाद ये बैनर बेकार था, उसके बाद यहाँ लाया गया, इसका बैग बन रहा है। ऐसे ही आप देखिए बहुत सारे हैं, जैसे कि एक ये है, ये किसी बीमारी के लिए जागरूक करना था, वो बीमारी ख़त्म हुई, इस बैनर का महत्व ख़त्म हो गया, इसे यहाँ पर लेकर आए और इसका भी बैग बन रहा है।
0: कबाड़ पड़े फ्लैक्स के इस्तेमाल से कई तरह के मजबूत, वाटरप्रूफ और टिकाऊ उत्पाद बनाए जा सकते हैं। पीवीसी से बने होने की वजह से फ्लैक्स से बने उत्पाद जल्द खराब नहीं होते। वजन उठाने के लिए बेहद मजबूत थैले या कैरी बैग बनाने के लिए पुराने फ्लैक्स को पहले साफ किया जाता है, फिर अलग अलग साइज के हिसाब से साफ किए गए फ्लैक्स को काटा जाता है, फिर तैयार होता है मजबूत और टिकाऊ बैग।
2: हम एक सिलाई सेंटर चला रहे थे तो हमें लगा कि हम कोशिश करते हैं कुछ ना कुछ बनाएं। तो पहले तो हमने इन फ्लैक्स के साथ कुछ कपड़ा ऐड करके बैग्स बनाने की कोशिश की, और फिर एक प्रोग्राम में मुझे नगर आयुक्त साहब मिले, महेंद्र सिंह तंवर साहब, तो मैंने उनसे डिस्कस किया कि सर आप तो इतने प्रोग्राम्स कराते हो, इतनी फ्लैक्सेस होते हैं, कुछ हमें दो, हम कुछ ट्राई करना चाहते हैं इसके साथ। तो उन्होंने मुझे बोला अच्छा इनिशिएटिव है, आप इसको स्टार्ट करो। तो इसी तरह से ये फ्लैक्स हमने धीरे धीरे बनानी शुरू की, लोगों तक पहुंचानी शुरू की।
0: खास बात यह है कि इन कैरी बैग को बेचने की बजाय लोगों को मुफ्त में वितरित किया जाता है, ताकि प्लास्टिक या पॉलिथीन के बैग का इस्तेमाल कम से कम हो। कई फ्लैक्स ऐसे होते हैं जो कावड़ यात्रा या फिर नवरात्रि से जुड़े धार्मिक आयोजनों के लिए तैयार करवाए जाते हैं। देवी देवताओं की तस्वीरें होने की वजह से उनसे लोगों की श्रद्धा और आस्था जुड़ी होती है। ऐसे में काजल की टीम उनकी तस्वीर का एक ही समूचा बैग तैयार कर देती है। पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी काजल की इस मुहिम से अब गाजियाबाद नगर निगम भी जुड़ गया है। इस्तेमाल के बाद बेकार हो जाने वाले फ्लैक्स बोर्ड को नगर निगम की टीम काजल की संस्था तक पहुंचा रही है, जिसकी वजह से पहले लैंडफिल तक पहुंचने वाला फ्लैक्स कैरी बैग की शक्ल में दोबारा लोगों के काम आ रहा है।
2: कुछ हमारे जानने वाले ऐसे हैं जो फ्लैक्सेस प्रिंटिंग करते हैं, बहुत बार प्रिंटिंग के टाइम पे ही फ्लैक्स खराब हो जाती हैं, तो वो भी हमें देने लगे। लेकिन अभी वो स्टेज है कि अब हम गाजियाबाद नगर निगम के साथ मिलकर ये कार्य कर रहे हैं, तो बहुत बहुत आभार भी व्यक्त करते हैं गाजियाबाद नगर निगम का कि ये सारी फ्लैक्सेस हमें उनसे मिल रही हैं।
0: काजल की इस पहल की एक और खासियत है कि इससे महिलाओं को भी रोजगार मिल रहा है। करीब 35 महिलाएं फ्लैक्स काटने और उनकी सिलाई कर बैग तैयार करने में जुड़ी हैं। इनमें कुछ को अपने घर में काम करने की भी छूट है। साल 2022 में शुरू हुई इस मुहिम के तहत अब तक करीब 50,000 फ्लैक्स बोर्ड का इस्तेमाल किया जा चुका है और 1,00,000 से ज्यादा बैग तैयार कर लोगों तक पहुँचाए जा चुके हैं, जो उनके इस्तेमाल के जरिए पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक भी हो रहे हैं।
1: अगर आप प्लास्टिक बैग्स को छोड़ना चाहते हैं, एक उनका विकल्प ढूंढ रहे हैं, तो ये आपके लिए एक अच्छा उपाय हो सकता है। उम्मीद यही कि आने वाले वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे, ताकि हमारे शहरों में जो कूड़े का पहाड़ बहुत ऊंचा होता जा रहा है, उसकी ऊंचाई थोड़ी कम हो जाए। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज़ टुडे, गाजियाबाद।
3: खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ, आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे घर में जीवन में प्रयोग किए जाने वाले शहद के बारे में। शहद का महत्व क्या है, इसको प्रयोग करने के तरीके क्या हैं और शहद के प्रयोग से आपको कैसे लाभ हो सकता है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 1 सितंबर 2026, दिन मंगलवार, तिथि है भाद्रपद कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि, प्रातः 7:41 तक। नक्षत्र है अश्विनी नक्षत्र। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम के 3:04 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 1 सितंबर 2026, दिन मंगलवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य, बुध और केतु विद्यमान हैं सिंह राशि में, शुक्र कन्या राशि में, राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में, चंद्रमा मेष राशि में, मंगल मिथुन राशि में और बृहस्पति फिलहाल विद्यमान हैं कर्क राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर हम आगे जानेंगे कि आपका दैनिक राशि फल कैसा रहने वाला है। हम आज बात कर रहे हैं शहद के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि शहद है क्या और इसका महत्व क्या है। शहद प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला चिपचिपा सा मीठा पदार्थ है और वास्तविक शहद केवल मधुमक्खियों के द्वारा ही बनाया जा सकता है। प्राचीन काल से शहद का प्रयोग औषधि यानी दवाई और धार्मिक कार्यों के लिए किया जाता है। आयुर्वेद में एक प्रक्रिया होती है पंचकर्म। पंचकर्म में भी शहद का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। और पूजा की सबसे महत्वपूर्ण चीज पंचामृत बिना शहद के नहीं बन सकती, यानी पंचामृत में शहद का प्रयोग अवश्य होता है। पौराणिक कथाओं में ऐसा कहा गया है कि देवी ने, माता दुर्गा ने महिषासुर का वध करते समय बार बार शहद का पान किया था। ज्योतिष में शहद का संबंध माना जाता है बृहस्पति के साथ। कुछ हिस्सा शहद में सूर्य और मंगल का भी पाया जाता है, लेकिन मोटे तौर से जब आप शहद का प्रयोग करते हैं
तो आप बृहस्पति के संपर्क में आ जाते हैं। शहद पर आगे हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, करियर में सुधार होता दिख रहा है, धन लाभ के योग बन रहे हैं, विवाह तय हो सकता है। हनुमान चालीसा का अगर पाठ करें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, जल्दबाजी में निर्णय न लें, क्रोध पर नियंत्रण रखें, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मिथुन राशि, मानसिक तनाव कम होगा, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, करियर में कुछ बदलाव होगा, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा।

जीवन में शहद का प्रयोग करते हैं तो उसमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए? एक साथ बहुत ज्यादा शहद का प्रयोग नहीं करना चाहिए। शहद का प्रयोग जब भी करें जल के साथ करें, यानी शहद अगर खाते हैं तो जल में मिलाकर प्रयोग करें या शहद के साथ पानी पिएं। सूर्य जब उग रहा हो अर्ली मॉर्निंग में, सूर्य के नवोदित रहने तक शहद का सेवन सबसे ज्यादा उत्तम होता है। शहद को गर्म करके नहीं खाना चाहिए और शहद को मांस मछली तेल गुड़ ये जो गर्म चीजें हैं इनके साथ प्रयोग नहीं करना चाहिए। जिन लोगों को गर्मी की प्रकृति हो, जिन लोगों को गर्मी ज्यादा लगती हो, उन्हें भी शहद का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि शहद का शरीर पर जो प्रभाव पड़ता है वो थोड़ा गर्म होता है। शहद पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, करियर में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, नया काम शुरू हो सकता है, कोई शुभ सूचना मिल सकती है। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी, महत्वपूर्ण काम रुक सकते हैं, वाहन सावधानी से चलाएं, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। तुला राशि, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम पूरे होंगे, हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, नौकरी में बदलाव के योग हैं, धन की स्थिति में सुधार होगा, रिश्तों में समस्या हो सकती है, अनाज का दान कर दें तो दिन की स्थिति बेहतर हो जाएगी। अब आपको बताते हैं कि शहद के धार्मिक और आयुर्वेदिक प्रयोग कौन से हैं। पंचामृत जब आप बनाते हैं तो उसमें दूध, दही, शहद, शक्कर और घी मिलाई जाती है, यानी पंचामृत में शहद डालकर ही आप पूजा के लिए प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप नियमित रूप से शिव जी का शहद से अभिषेक करें, शहद और जल अर्पित करें तो मंगल दोष समाप्त होता है, कर्जों से और ऋणों से मुक्ति मिलती है। आप माता दुर्गा को अगर नियमित रूप से शहद का भोग लगाते हैं और उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं
तो शत्रु और विरोधी आपके

शांत होंगे। नहाते समय शरीर पर शहद लगाइए हल्का सा, और इसके बाद रगड़ करके स्नान करिए, त्वचा की समस्याएं दूर हो जाएंगी। प्रातः काल अगर गुनगुने पानी के साथ आप शहद लेते हैं तो इससे आपका मोटापा दूर होता है। शहद के साथ तुलसी और अदरक का प्रयोग करें तो गले की समस्या में, कोल्ड कफ की समस्या में सुधार होता है। अगर आप नियमित रूप से उपवास रखते हैं और उपवास के दौरान गुनगुने पानी में शहद मिलाकर उसको पीते हैं तो शरीर से विष दूर हो जाएगा, शरीर शुद्ध होगा और सामान्यतः शरीर में बीमारी नहीं होगी। अब आपको बताते हैं कि शहद के चमत्कारी और ज्योतिषीय प्रयोग कौन से हैं। अगर कुंडली में मंगल की वजह से समस्या हो रही है या मंगल समस्या दे रहा है तो शहद मत खाइए, बल्कि इसके बजाय हर मंगलवार को शिवलिंग पर शहद और जल अर्पित करिए। अगर बृहस्पति बुरे परिणाम दे रहा है तो शहद को सोने के पात्र में या पीतल के पात्र में लेकर थोड़ा सा खाना चाहिए। अगर पति पत्नी के बीच में तालमेल अच्छा नहीं है तो कांच की बोतल में शहद भरकर अपने बेडरूम के कोने में रखिएगा। अगर किसी व्यक्ति को सही रास्ते पर लाना है, कोई व्यक्ति भटक गया है, बिगड़ गया है, तो कांच की शीशी में शहद भर करके शनिवार को जमीन में दबाइएगा। ऐसा करने से भटका हुआ व्यक्ति जल्दी रास्ते पर आ जाएगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। करियर में बदलाव होगा। खान पान का ध्यान बनाए रखें। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, यात्रा में सावधानी रखें। नौकरी में समस्या हो सकती है। धन की हानि से बचाव करें। गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कुंभ राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। रुका हुआ धन प्राप्त होगा। यात्रा के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। धन की स्थिति अच्छी रहेगी। करियर की स्थिति में सुधार होगा।
हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। तो आज हमने बात की शहद के महत्व के बारे में, अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए क्या है लकी टिप। अगर घर में हमेशा अशांति रहती है तो घर में नियमित रूप से चंदन के सुगंध की धूप बत्ती जलाइए। इसकी खुशबू मन को शांत और पवित्र करती है, घर की अशांति को दूर कर देगी। प्रातः काल भगवान गणेश को दूर्वा यानी दूब घास अर्पित करिएगा। घर से निकलते समय उसमें से थोड़ी सी दूर्वा अपने पास रख लीजिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: नासा ने रोमन स्पेस टेलीस्कोप को फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। यह टेलीस्कोप धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर L2 पर स्थापित किया जाएगा, जहां से ये ब्रह्मांड के बड़े हिस्से का सर्वे करेगा। और ये टेलीस्कोप किसी सामान्य सैटेलाइट की तरह पृथ्वी की परिक्रमा नहीं करेगा, इसे सूर्य और पृथ्वी के L2 एरिया के आसपास चुनी गई ऑर्बिट में रखा जाएगा, जहां से ये धरती पर अंतरिक्ष की ली गई तस्वीरें भेजेगा।
2: 3, 2, 1 इग्निशन एंड लिफ्ट ऑफ, गो फाल्कन हेवी एंड गो रोमन स्पेस टेलीस्कोप।
3: ये अंतरिक्ष की अनंत गहराइयों में झांकने की कोशिश है। ये वो पल है जब नासा ने अमेरिका के फ्लोरिडा में मौजूद केनेडी स्पेस सेंटर से नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च किया। इंसान की बनाई ये विशेष आंख पृथ्वी से करीब 15 लाख किलोमीटर दूर अंतरिक्ष के विस्तार को समझने की कोशिश करेगी। भारतीय समय के अनुसार रविवार शाम 4:57 पर रोमन स्पेस टेलीस्कोप को फाल्कन हेवी रॉकेट के जरिए स्पेस में लॉन्च किया गया। इसे अंतरिक्ष में अपनी मंजिल तक पहुंचने में करीब 1 महीने का समय लगेगा। खास बात यह है कि रोमन टेलीस्कोप किसी सामान्य सैटेलाइट की तरह पृथ्वी की परिक्रमा नहीं करेगा, इसे सूर्य और पृथ्वी के L2 एरिया के आसपास चुनी गई ऑर्बिट में रखा जाएगा, जहां से ये इंसानी दुनिया को अंतरिक्ष के विशाल नजारे की तस्वीर भेजेगा। दिलचस्प ये भी है कि रोमन टेलीस्कोप स्पेस में पहुंचते ही तुरंत काम शुरू नहीं करेगा, पहले ये 3 महीने की कमिश्निंग प्रक्रिया पूरी करेगा। इस दौरान इंजीनियर टेलीस्कोप के सिस्टम और उपकरणों को सक्रिय करने के साथ उनकी जांच करेंगे। सभी सिस्टम ठीक से काम करने की पुष्टि होने के बाद इसे वैज्ञानिक अभियानों के लिए तैयार किया जाएगा। नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप को ब्रह्मांड में किसी एक खगोलीय पिंड पर फोकस करने के बजाय अंतरिक्ष के बेहद बड़े हिस्से का सर्वे करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका 2.4 मीटर का प्राइमरी मिरर आकार में हब्बल स्पेस टेलीस्कोप के मिरर के बराबर है, लेकिन ये एक बार में हब्बल के मुकाबले 100 गुना बड़े एरिया का सर्वे कर सकता है। इस मिशन का मकसद ब्रह्मांड की 2 बड़ी पहेलियों डार्क एनर्जी और डार्क मैटर की स्टडी करना है। इसके अलावा ये आकाश गंगाओं के विकास को समझने और हमारे सौर मंडल से बाहर मौजूद ग्रहों यानी एक्सोप्लैनेट्स की खोज में भी मदद करेगा। रोमन स्पेस टेलीस्कोप से जुड़ा सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि ये सबसे कम समय में ब्रह्मांड के विशाल हिस्से से डेटा जुटा सकेगा। इससे ब्रह्मांड का विशाल नक्शा तैयार होने की उम्मीद है, जिससे स्पेस साइंस से जुड़े कई जटिल सवालों के जवाब दुनिया को मिल सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक।
6: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा, स्वागत है आपका न्यूज पथ में। राह जिंदगी की हो या खबरों की, उसमें कई मोड़ होते हैं, कई रफ्तार होती है, कई पड़ाव होते हैं। देश और दुनिया से जुड़ी पॉजिटिव खबरों के साथ आपको लिए चलेंगे न्यूज पथ पर, लेकिन सबसे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
6: किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में 26वें SCO समिट का भव्य आगाज, तिरंगे झंडे के साथ भारतीय दल का प्रधानमंत्री मोदी ने हाथ हिलाकर किया अभिवादन, शांति विकास और समृद्धि पर मंथन। तमाम वैश्विक चुनौतियों के बीच देश की GDP ग्रोथ बरकरार, वित्तीय वर्ष 2026 की पहली तिमाही में 7.8% रही विकास दर, RBI के अनुमान से भी शानदार रहे आंकड़े। मानसूनी बारिश के बीच भगवान बद्री विशाल के दर्शन को उमड़ रहे श्रद्धालु। 30 अगस्त तक 16,75,000 से ज्यादा ने की पूजा अर्चना। पवित्र हेमकुंड साहिब में भी लगा भक्तों का तांता। मुंबई में आगामी गणेश उत्सव की भव्य तैयारियां। साकानाकी के महाराजा की 48 फीट ऊंची प्रतिमा बनी आकर्षण का केंद्र। बप्पा के दरबार की सजावट का काम तेज। नौसेना की ताकत में हुआ इजाफा। मुंबई में दूसरा स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट बोट निपुण हुआ कमर्शियल। समुद्र में गोताखोरी और जटिल अभियानों को देगा अंजाम। गिर सोमनाथ के गहरे समंदर में फंसे 5 मछुआरों का सफल रेस्क्यू। नाव डूबने से पहले उफनती लहरों के बीच रस्सियों के सहारे साथी मछुआरों ने निकाला सुरक्षित। आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेरा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा ताशकंद में प्रधानमंत्री मोदी की कविता पर आधारित म्यूजिकल परफॉर्मेंस की भी है। देखिए
7: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प लें। अभी तो सूरज उगा है। पीएम मोदी की ये कविता जब उज्बेकिस्तान के युवाओं ने गुनगुनाया तो हिंदुस्तान में बैठे करोड़ों भारतीयों का दिल गर्व से भर गया। भाषा की दीवार तोड़कर उम्मीद की रोशनी फैलाने वाली इन पंक्तियों को खुद पीएम मोदी ने लिखा है, जिसे उनके स्वागत में उज्बेकिस्तान के युवाओं ने लयबद्ध किया, गुनगुनाया। पीएम मोदी 2 दिन के दौरे पर उज्बेकिस्तान पहुंचे हैं, जहां उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति ने कुक सरोई पैलेस में पीएम मोदी के लिए अनौपचारिक डिनर रखा था। इस दौरान यहां पीएम मोदी की कविता पर आधारित एक खास म्यूजिकल परफॉर्मेंस दी गई, जो अब सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रही है। वहीं ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज पहुंचे पीएम मोदी का स्वागत भी उनकी कविताओं से हुआ। यहां छात्रों ने उनकी 3 कविताओं का हिंदी और उज्बेक दोनों भाषाओं में पाठ किया।

0: मौत के मुंह से निकल कर आना इसे कहते हैं। इस नाव में 5 मछुआरे थे। मछली पकड़ने बीच समंदर में चले गए। लहरें उफान पर थी, अचानक नाव में पानी भरने लगा। एक पल को तो ऐसा लगा जैसे अब नाव समंदर में बस समाने ही वाली है, लेकिन तभी आसपास के मछुआरों को इसकी भनक लग गई। फिर क्या था, सब फौरन उनके बचाव में जुट गए और उफनती लहरों के बीच रस्सियों की मदद से इस डूबते नैया को किनारे तक ले आए। घटना गिर सोमनाथ में समुद्री इलाके नवा बंदर की बताई जा रही है। गनीमत रहे कि हादसे के वक्त आसपास कई अन्य नावें मौजूद थी, जिसके चलते 5 मछुआरों की जान बच गई और एक बड़ा हादसा टल गया। लंबे इंतजार के बाद आंध्र प्रदेश में वेलिगोंडा सिंचाई परियोजना की शुरुआत हो गई। सीएम चंद्रबाबू नायडू ने आज इस प्रोजेक्ट के पहले चरण का उद्घाटन किया। इसके साथ ही इस ऐतिहासिक परियोजना से पानी की आपूर्ति और संचालन का काम आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया है। पहले चरण के उद्घाटन के साथ ही कृष्णा नदी का 10.70 TMC पानी नल्लामाला सागर में छोड़ा गया है। इससे क्षेत्र के लगभग 1.19 लाख एकड़ कृषि क्षेत्र को सिंचाई और 4 लाख लोगों को पीने का साफ पानी मिलना शुरू हो जाएगा। इस मौके पर सीएम ने कृष्णा नदी की जल आरती भी की और नदी के प्रति आभार और सम्मान जताया। तस्वीरें गुजरात के गिर सोमनाथ की हैं, जहां भगवान सोमनाथ महादेव की विशेष पालकी यात्रा निकाली गई। इस मौके पर सोमनाथ महादेव के प्रतीक स्वरूप शिवलिंग को फूलों से सजी सुंदर पालकी में विराजमान किया गया। इसके बाद वैदिक मंत्रोच्चार और विधि विधान के साथ भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना की गई और फिर पालकी यात्रा शुरू हुई। इस दौरान ढोल, शहनाई और डमरू की मंगल ध्वनि से पूरा वातावरण गूंज उठा। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं में भगवान सोमनाथ के प्रति अपार आस्था, उत्साह और भक्ति देखने को मिली। हर हर महादेव और जय सोमनाथ के जय घोष से वातावरण गूंजता रहा। जयपुर में एक बार फिर सुंदरियों का मेला लगा। मौका था मिस टीन इंटरनेशनल 2026 के खिताबी मुकाबले का, जहां दुनिया के कई देशों की प्रतिभागी पहुंची थी, लेकिन ताज सजा क्यूबा की जोआना उरंगा के से। जोआना ने मिस टीन इंटरनेशनल 2026 का खिताब जीता। वहीं नामीबिया की चैंटल बोरेन फर्स्ट रनर अप और पैराग्वे की जुलियाना ओगरेज सेकंड रनर अप रही।
1: और अब बात करते हैं नेपाल में रेस्क्यू ऑपरेशन की। नेपाल में भीषण बाढ़ से आई तबाही के बाद राहत और रेस्क्यू का काम तेज कर दिया गया है। ये राहत और बचाव अभियान उम्मीद, हिम्मत और इंसानियत की ताकत की सबसे बड़ी तस्वीर बन गया है। और मलबे के बीच जिंदगी की तलाश अब भी जारी है, जबकि 4200 से ज्यादा लोग अब भी लापता है। वहीं नेपाल में चल रहे इस रेस्क्यू मिशन में भारत भी पूरी मजबूती से कंधा मिलाकर खड़ा है। भारतीय टीमें प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव अभियान में जुटी हुई है और कनेक्टिविटी ठीक करने और राहत कामों में मदद के लिए बेली ब्रिज भी बना रही है।
2: आपको याद है जब पानी आया तो उस समय क्या कुछ दिखाई दे रहा था आपके आसपास?
3: मालूम नहीं, ऊपर कोई लाइन, कोई संचार सुविधा कुछ नहीं है, कोई जानकारी नहीं।
2: आपका परिवार के सब लोग आ गए?
3: सब सेफ है,
2: सब सेफ। आपने बचाया लोगों को? लेकर
3: मैंने लगभग 67 लोगों को फायदे से बचाया है।
2: कई सारे लोग नायक बन करके निकले, खासकर जो युवा थे वो समय रहते अलर्ट हुए अपने लोगों को। उन्होंने ऊपर किया, उन्होंने कहा कि पहाड़ी रास्तों पर जाएं ताकि लोगों की जान बच सके।
0: ये नेपाल के वो नायक हैं जिन्होंने सैलाब में कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला, लेकिन ये बदनसीब पिता अपनी लापता बेटी की तलाश में दर दर भटकने के लिए मजबूर है।
4: नेपाल सरकार से क्या कहेंगे, मेरी बेटी मुझे वापस ला के दे दो, मेरी बेटी को ढूंढ लो, कहीं भी हो, किसी भी हॉस्पिटल में हो, कहीं पर भी हो, रेस्क्यू कर दो।
0: ये दर्द उस पिता का है जिसकी इकलौती बेटी फ्लैश फ्लड के दौरान लापता हो गई। वो कहां और किस हाल में है कुछ पता नहीं। ये अस्पताल से लेकर रिलीफ कैंपों में उसकी तलाश कर रहे हैं। फिलहाल नेपाल में आए फ्लैश फ्लड का सैलाब थम गया है, लेकिन राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी है। नेपाल वायुसेना की टीमें लगातार रेस्क्यू को अंजाम देने में जुटी हैं। दुर्गम रास्तों और टूटे पुलों के बावजूद सुरक्षा बल फंसे हुए लोगों तक पहुंचने के लिए जान की बाजी लगा रहे हैं।
5: राहत बचाव कार्य पूरी तेजी से चल रहा है। नेपाल की सेना लगातार हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल करके उन दुर्गम इलाकों की ओर जा रही है जहां से लोगों को बचाया जा रहा है। मुश्किल दरअसल मौसम बन जाती है, नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है, ये जिंदगी की जंग दरअसल रेस अगेंस्ट टाइम है। और ऐसे में ये जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो सबसे बड़ी लाइफ लाइन बनकर सामने आ रहे हैं। इसी ऑपरेशन के जरिए लोगों को बचाया जा रहा है।
0: नेपाल में रेस्क्यू ऑपरेशन के छठे दिन तक 4,200 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। वहीं अब तक 10,400 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है।
6: मुश्किल में कैसे ये लोग एक दूसरे के लिए खड़े हैं। जिंदगी यहाँ रिलीफ कैंपों में आ चुकी है, ऊपर राहत बचाव कार्य चल रहा है, लेकिन जैसे जैसे संख्या बढ़ रही है, अब सोचिए 900 लोग 6 दिन में आंकड़ा पहुंचा है, और ये कोई नहीं जानता कि ये आंकड़ा यहाँ थम जाएगा या ये भी इस डरावने मंजर की सिर्फ शुरुआत है। लापता लोगों की संख्या कल तक 2600 थी, आज 4200 है, और लापता लोगों के बारे में जब तक ये पता न लग जाए, कई सारी उम्मीदें हैं, फोन कॉल कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, हमारे पास जो संदेश आ रहे हैं उसमें भी लोग इंतजार कर रहे हैं कि क्या अपनों का पता चल पाएगा।
0: नेपाल में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती वहां मलबे से भरे घरों में घुसकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना है। तमाम चुनौतियों के बीच बचाव दल विपरीत हालात में जाकर भी वहां अभियान चला रहे हैं।
6: प्राकृतिक आपदा सब कुछ तबाह कर देती है, जिंदगियों के लिए मुश्किल खड़ी कर देती है, और इस आपदा के बाद जिंदगी को शुरू करना बड़ी चुनौती है। इन मकानों में अब नगरपालिका सिविल कर्मचारी जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग जीवित बच गए हैं अब उनके घरों से बचा हुआ सामान निकाला जा सके ताकि उनकी जिंदगी फिर से शुरू हो सके। मरने वालों का आंकड़ा ज्यादा है, लापता लोगों की संख्या ज्यादा है, लेकिन इन सब के बीच कोशिश ये भी हो रही है कि जिनके बारे में कोई पता न चल पाए, घर घर जा करके मलबों में तलाशा जा रहा है। इस दलदल के बीच ये तमाम सारे लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम जिन लोगों का पता ही नहीं चल रहा है कुछ तो उनकी जानकारी लगे, जो लोगों का घर बच गया है उनके घरों से सामान वापस उन तक सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाया जा सके। ये ऑपरेशन जिंदगी बड़े पैमाने पर नेपाल के दुर्गम इलाकों में चलाई जा रही है। ये उन बच्चों के खिलौने थे जो इन घरों में रहते थे, अब वो घर पूरा मलबे में चला गया है। घर की सामान संपत्तियां जो है बचा के निकाली जा रही हैं, उसमें एक प्यारा सा खिलौना भी है, सामान है, जो लोगों का घर है अब बचा हुआ सामान अपने घरों में ले जा रहे हैं। आप सोचिए कितनी मुश्किल भरी जिंदगी यहाँ रही होगी। जी ये देखिए, ये घर का पहला मंजिल है, मलबे में दबा हुआ है ऊपर से, जो बच गया है उसे निकाला जा रहा है, जिनकी जिंदगियां बची हैं वो रिलीफ कैंपों में हैं, बाकियों के लिए अब फिर से अपनी जिंदगी को खड़ी करना संघर्ष और चुनौती है।
0: बचाव कर्मी हर लापता को खोजने में जुटे हुए हैं। मलबों में दबे घरों से बचे हुए लोगों का बचा सामान निकालने की कोशिश की जा रही है।
6: अब जहां पर तलाश चल रही है वो तलाश है कि कम से कम जो लापता लोग हैं पता तो चले कि उनके अपने कहां गए हैं, उनके अपने आखिर किस हाल में होंगे। हमें जिस घर में गया था वहां बच्चों के खिलौने, कॉपी किताब सब कुछ मिल रही थी। लोग जो क्या है, जो लोग बच गए थे वो अब आए हैं कि अपनी जिंदगी शुरू कर रही है तो घर का जरूरत सामान निकाले, और इसीलिए मैं आपको दिखाऊं। ये देखिए, अब ये पीपलटार में रिलीफ कैंप है, सब लोग रिलीफ कैंपों में आने लगे, यहां मदद पहुंचाई जाने लगी है। अब जिन पहाड़ों के पास 6 दिन पहले तक अपने घर मकान थे वो अब रिलीफ कैंप में है। यहां पर नेपाल की सेना जो है वो अभियान चला रही है, रास्तों को जोड़ने की कोशिश कर रही है। तो जीवित की संभावना ना के बराबर है, जो जिंदगियां बची हैं वो अब आ चुके हैं यहाँ पर रिलीफ कैंपों में। लेकिन दिक्कत दरअसल इस बात की है कि जो लोग पहाड़ी इलाकों पे, आज ही सरकार ने कहा है कि इवैक्यूएशन के लिए अब बहुत ज़रूरत हो तभी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करें, क्योंकि जो पहाड़ों पर सुरक्षित हैं वहाँ तक खाना पहुँचाया जाएगा, रसद पहुँचाया जाएगा। वहाँ आपको सीधे देखिए कैसे जो बचपन होता है अब वो स्कूल कॉलेज अपने घर से महरूम है, वो तमाम छोटे छोटे बच्चे, और यहाँ जो वॉलेंटियर्स हैं पूरा नेपाल एकजुट है अपने लोगों की मदद के लिए। वो आए हैं, देखिए छोटे छोटे बच्चे जो हैं जिनको स्कूलों में होना चाहिए था वो रिलीफ कैंप में आए हैं, महिलाएँ आई हैं यहाँ पर, और अलग अलग जो संगठन है रेड क्रॉस से लेकर के दुनिया भर के संगठन वो खाना, रसद, दवाइयाँ ये सब मुहैया करा रहे हैं। उन घरों में कोशिश दरअसल इसकी है कि जिसके घर बच गए हैं उनको ज़रूरत का सामान मिल जाए, उसके साथ बच जाएँ, कम से कम अपना आशियाना वो फिर से बसा सकें।
0: ये तस्वीरें ढूंगे गांव की हैं, जहां सैलाब के कारण कटे हुए गांव और इलाकों से संपर्क स्थापित करने की कोशिश की जा रही है ताकि बाढ़ पीड़ितों तक मदद पहुंचाई जा सके। नेपाल के नुवाकोट और रसुआ जैसे बुरी तरह प्रभावित इलाकों में राहत कार्य पूरी गति से चल रहा है। फ्लैश फ्लड की वजह से यहां सड़कें टूट गई हैं, जिससे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना बेहद मुश्किल है, लिहाजा सड़कों को जोड़ने का काम तेजी से चल रहा है और इस कार्य में जेसीबी की मदद ली जा रही है।
6: इन सड़कों को खोलना अभी सबसे बड़ी चुनौती है, और फिर ये बड़ी बड़ी जो जेसीबी मशीनें इनका इस्तेमाल इसलिए किया जा रहा है, उनकी संख्या भी बढ़ाई गई है कि अगर ये प्रमुख मार्ग खुल जाता है, बेतरावती तक की कनेक्टिविटी आ जाती है, तो संभवतः रसद पहुंचाना, बेतरावती से आगे रसुआ तक के लिए बड़ी लॉजिस्टिक पहुंचाना, और जो रास्ता वहां पर भी बंद हो चुका है, ताकि अगले 72 घंटों में रसुआ को नुवाकोट से सड़कों से जोड़ा जा सके। और अगर ऐसा होता है तो जहां वैली पुल बह गए, मसलन हम जहां पर हैं डूंगे गांव में, इसका दूसरा इलाका जो है वो पूरी तरह कट चुका है, वहां पर मदद पहुंचाने के लिए हेली ड्रॉप करना पड़ रहा है, तो कम से कम वैली ब्रिज के लिए अगर ये सड़क जुड़ जाती है तो उसे फिर से बेली ब्रिज से जोड़ा जा सकेगा। और इसीलिए सबकी प्राथमिकता ये है कि सड़कों को जल्दी से जल्दी खोला जाए ताकि त्रासदी में जो गांव एक दूसरे से कट चुके हैं, जहां हजारों लोग हैं, उन तक मदद पहुंचाई जा सके।
0: सुरंगों के मुश्किल हिस्सों तक पहुंचने के लिए रेस्क्यू टीमों ने ड्रोन का सहारा लिया है। ड्रोन के जरिए सुरंग के उन हिस्सों पर नजर रखी जा रही है जहां रेस्क्यू टीम के लिए सीधे पहुंचना मुश्किल है। साथ ही टनल में फंसे लोगों को ड्रोन के जरिए संदेश भी भेजे जा रहे हैं। उम्मीद है कि ड्रोन की मदद से चलाए जा रहे ऑपरेशन से सुरंगों के अंदर फंसे लोगों या उनकी मौजूदगी के किसी संकेत का पता चल सकेगा।
7: We are extremely grateful for the support that the government of India has provided to us already. There's been four different flights that have come to Nepal with relief supplies. We had asked some experts to support us with tunnel rescue and the team had already arrived yesterday and day before yesterday.
0: वहीं भारत नेपाल को लगातार सहायता भेज रहा है। भारत का तीसरा सैन्य विमान राहत सामग्री लेकर नेपाल पहुंच गया है। विमान के साथ 11 सदस्यीय मेडिकल टीम और एक विशेष टनल रेस्क्यू टीम भी नेपाल पहुंची है। नेपाल में संपर्क मार्गों को बहाल करने के लिए भारत बेली ब्रिज बनाने में उसकी मदद करेगा। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में कहा, इसमें खोज और बचाव अभियान के लिए उपकरणों के साथ एक सुरंग तकनीकी दल, डीएनए विश्लेषण के लिए फॉरेंसिक विशेषज्ञों की एक टीम और कंबल, स्लीपिंग बैग, तिरपाल, प्लास्टिक शीट और स्वच्छता किट सहित राहत सामग्री शामिल है।
6: इस राहत बचाव कार्य में दरअसल भारत की ओर से भी रेस्क्यूअर्स पहुंचे हैं, जिसमें इंजीनियरिंग की टीम, मेडिकल की टीम भी है और खासकर बेली ब्रिज बनाने के लिए जो देख रहे हैं, इसमें दो भारतीय सेना के जवान भी यहाँ पर आपदा में भी कैसे बेली ब्रिज बनाने से लेकर तकनीकी दक्षता है उसमें अपना योगदान, ये बहुत बड़ा मिशन है और अब पूरी दुनिया की नज़र नेपाल पर है क्योंकि इसको जहाँ रिस्टोर करने में समय लगेगा, अभी उससे भी बड़ी और पहली चुनौती है उन तमाम रास्तों को जोड़ना, लोगों तक पहुँचना, सड़क मार्ग।
0: नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ और मलबे के कारण बेघर हुए लोगों का पुनर्वास और बुनियादी ढांचे का पुनर्निर्माण सबसे बड़ी चुनौती है।
6: रिस्टोरेशन सबसे बड़ी चुनौती है और उसी के साथ साथ अब जो स्थानीय प्रशासन के लोग हैं वो घर घर जा रहे हैं कोशिश करने के लिए कि दलदल कीचड़ में जिनके मकान मलबे में दब गए हैं क्या संभवतः जो लोग लापता हैं उन्हें खोजा जा सके। बड़े बड़े ट्रकों का इस्तेमाल करके पूरे मलबे को हटाने की कोशिश की जा रही है, रास्ता हटाया जा रहा है। ऑपरेशन कनेक्टिविटी अपने आप में सबसे बड़ी चुनौती है और इन इलाकों में ये भी के साथ साथ कि जो लोग बचे हैं उनके घरों से जरूरत से उनकी संपत्ति निकाली जा सके और अगर कुछ लोग घरों में ही उनके शव बरामद हो सके तो कम से कम ये तो पता चल सके कि कितने लोग जो लापता हैं कहाँ हैं। किसी के साथ साथ इन घरों में भी ये देखिए जहाँ तक मलबा जमा हुआ, आपको वहां भी लिए चलते हैं उन इलाकों में, हालांकि इस पूरे इलाके में अभी भी कीचड़ है लेकिन यहाँ पर राहत बचाव कार्य में तेजी लाने की कोशिश की जा रही है। तो हम आपको दूसरे रास्तों से उन तरफ लिए चलते हैं, जमीन पर हालात जो है किस तरह बिगड़े हुए थे, जिन इलाकों तक पहुंचना मुश्किल था, 6 दिन का समय लगा है, कुछ रास्ते खोले गए हैं ताकि हर संभव मदद आगे की ओर भेजी जा सके, रास्तों को खोला जा सके ताकि ज्यादा से ज्यादा मदद पहाड़ी इलाकों में पहुंच सके।
0: फिलहाल मलबे के बीच जिंदगी की तलाश अभी भी जारी है, हर गुजरते घंटे के साथ चुनौती बढ़ रही है लेकिन रेस्क्यू टीमों के हौसले कम नहीं हुए हैं। नेपाल के नुआकोट से आशुतोष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: वैश्विक चुनौतियों के बावजूद बरकरार है भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूत रफ्तार। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
0: देश की अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर अच्छी खबर आई है। वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारतीय इकोनॉमी ने अपनी मजबूत रफ्तार बनाए रखी है। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में भारत ने शानदार ग्रोथ दर्ज की है। सोमवार को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक भारतीय अर्थव्यवस्था 7.8% की रफ्तार से बढ़ी है जबकि एक साल पहले ये 6.9% थी। भारतीय नौसेना को दूसरा डाइविंग सपोर्ट वेसल INS निपुण मिल गया है। इसे मुंबई में नेवल डॉकयार्ड में हुई एक सेरेमनी में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। INS निपुण निस्तार क्लास का दूसरा डाइविंग सपोर्ट वेसल है। इसे हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापत्तनम ने देश में ही डिजाइन और तैयार किया है। निपुण को खासतौर पर गोताखोरी और पानी के नीचे किए जाने वाले अलग अलग अभियानों में इस्तेमाल के लिए तैयार किया गया है। दिल्ली में SIR का ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दिया गया है। इसमें करीब 47.5 लाख लोगों के नाम लिस्ट में नहीं है। जिनके नाम मतदाता ड्राफ्ट सूची में शामिल नहीं हो पाए हैं वो 30 सितंबर तक अपना नाम मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं। दिल्ली की अंतिम मतदाता सूची 4 नवंबर 2026 को प्रकाशित की जाएगी। SIR का एन्यूमरेशन चरण इसी महीने 17 अगस्त को पूरा हुआ था। इस प्रक्रिया की शुरुआत में दिल्ली में करीब 1.45 करोड़ मतदाता दर्ज थे। केदारनाथ धाम में तीर्थयात्रियों का उत्साह चरम पर है। अब तक 14,73,000 से ज्यादा भक्त बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। वहीं मॉनसून और मौसम अलर्ट के बीच भी इस वर्ष बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब यात्रा में भी उत्साह बना हुआ है। पिछले साल के रिकॉर्ड अगस्त के अंतिम सप्ताह में ही टूट चुके हैं। 30 अगस्त तक बद्रीनाथ धाम में 16,75,696 श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं, जबकि सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब में 2,87,069 श्रद्धालु माथा टेक चुके हैं। कृष्ण जन्मोत्सव की भव्य और दिव्य तैयारियां कृष्ण नगरी मथुरा में शुरू हो चुकी हैं। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को लेकर मथुरा से लेकर वृंदावन तक आस्था और उत्साह का माहौल है। कृष्ण नगरी मथुरा में इस बार भगवान श्री कृष्ण का 5,253वां जन्मोत्सव मनाया जाएगा। जन्मोत्सव को खास और यादगार बनाने के लिए मंदिर परिसर को भव्य रूप देने का काम किया जा रहा है। श्री कृष्ण जन्म स्थान पर आकर्षक सजावट के साथ साथ विशेष लाइटिंग की भी व्यवस्था की जा रही है।
1: और अब बात गणेश उत्सव के तैयारियों की। देश भर में गणेशोत्सव की तैयारियां तेज हो गई है। मुंबई से लेकर अकोला और गुजरात के सूरत में उत्सव का माहौल है। भगवान गणपति को पंडालों में विराजमान करने के लिए उनकी प्रतिमाओं को गाजे बाजे के साथ लाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु बप्पा के स्वागत में शामिल हो रहे हैं। हिंदू धर्म में गणपति को प्रथम पूज्य देवता माना गया है। मान्यता है कि विघ्नहर्ता की पूजा से सभी कार्य निर्विघ्न पूरे होते हैं। गणपति पूजा की शुरुआत 14 सितंबर गणेश चतुर्थी पर्व से होगी।

0: देवों के देव महादेव और माता पार्वती के पुत्र श्री गजानन के स्वागत की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। हर्ष उल्लास और विधि विधान के साथ एकदंत की प्रतिमाओं के स्वागत की तस्वीरें देश के कोने कोने से सामने आ रही हैं। मुंबई में गणेशोत्सव की तैयारी पूरे धूमधाम से चल रही है। यहाँ पंडालों में गणेश जी की प्रतिमाएं पहुँचने लगी है। ये भव्य और दिव्य तस्वीरें मुंबई के साकिनाका इलाके के साकिनाका महाराज की है, जो इस साल खंडुवा के अवतार में यहाँ पधारे हैं। 42 फीट ऊंचे साकिनाका महाराज का दर्शन करने के लिए लाखों की तादाद में गजानन भक्त यहाँ पहुँचे।
1: जैसा कि हम सभी जानते हैं, 14 सितंबर से मुंबई, महाराष्ट्र और ये पूरा देश गणेश उत्सव यानी कि महा उत्सव मनाने के लिए तैयार हो चुका है। और सबसे बढ़िया झलक जो है गणेश उत्सव की, वो स्पेशली मुंबई में देखी जाती है, जिसकी तैयारी जोरों शोरों से है। आप तस्वीरों में देखें, इस समय उपनगर मुंबई के सबसे बड़े महाराजा का आप दर्शन कर रहे हैं। साकिनाका के महाराजा के नाम से बहुत ज्यादा मशहूर है गणेश जी की ये प्रतिमा, और जो जानकारी है उसके हिसाब से लगभग 42 फीट यानी कि 42 फीट ऊंचाई है। अभी दो दिन पहले ही बप्पा का आगमन हुआ है, देखिए किस तरीके से बहुत ही बढ़िया अवतार में दिख रहे हैं। जानकारी के हिसाब से खंडोबा का अवतार लेकर के विराजमान हुए हैं गणपति बप्पा। देखिए बकायदा इनके जो सर पर है अच्छा खासा साफी कह सकते हैं या मुकुट कह सकते हैं रखी हुई है, और बकायदा इनके पीछे शिवलिंग भी मौजूद है। डमरू है, त्रिशूल है, तलवार है, कहीं ना कहीं इनका दृश्य देखकर ये लग रहा हो कि यहाँ पर जो दुश्मन है, जो राक्षस है और जो भी गलत काम कर रहे हैं, उन सभी का नरसंहार करने के उद्देश्य से खंडोबा के अवतार में गणपति बप्पा साकिनाका के महाराजा के रूप में पधार चुके हैं। स्थापना 1985 में हुई है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि 40-42 साल इस पंडाल को लगातार काम करते हुए हो गया है।
0: इस वर्ष की मूर्ति न केवल मुंबई बल्कि पूरे महाराष्ट्र की सबसे ऊंची गणेश प्रतिमा बताई जा रही है।
1: मंडल के प्रेसिडेंट जीतू गायकवाड़ हमारे साथ हैं, साथ में पदाधिकारी साहब भी हैं। बहुत बधाई आपको, फाइनली वो दिन आ गया जिसके लिए आप लोग महीने से इंतजार करते हैं, थोड़ा सा बताएं।
2: जहां तक रही आगमन की बात, तो सर मैं ऐसा कहूंगा कि जैसा हम लोगों ने सोचा नहीं था, जो ना भूतो ना भविष्य जैसा हम लोग, उससे भी कई गुना ज्यादा की संख्या में भक्त आए थे और बहुत प्यार मिला, बहुत उत्साह से, बहुत शान से साकिनाका महाराजा का आगमन हुआ।
1: कितने कितने लोग थे, मैं तो वीडियो में देख रहा हूँ गिनती नहीं होगी। पूरी साकिनाका का जो सिग्नल है वो पूरा एकदम भरा पड़ा हुआ था, हर कोई एक्साइटेड था, हर कोई बहुत ही खुशी मना रहा था बप्पा के आने की। अब क्या तैयारी है, लगभग 10 दिन आपके साथ में सौंपल रहेंगे, जो श्रद्धालु आएंगे उनको लेकर विशेष आपने क्या सोच रखा है?
2: तो ऐसा है कि भक्त तो बहुत थे, लाखों की संख्या भीड़ थी। मुंबई पुलिस, साकिनाका पुलिस ने भी बहुत अच्छा सहकार्य किया, जिसकी वजह से ट्रैफिक भी बहुत अच्छा कंट्रोल में था। यहाँ पे ओपनिंग हुई है, यहाँ पर लाखों की भीड़ है, मतलब एक चींटी भी घुस नहीं सकती, इतने भक्त आए हुए, तो बहुत ही अच्छा उत्साह था।
0: निरंकार गजानन के अनंत आकार के स्वरूप की तरह उनकी प्रतिमाओं को भी अलग अलग थीमों में सजाया गया है। साकिनाका मंडल इस बार गणेश उत्सव के मौके पर पर्यावरण संरक्षण का भी संकल्प ले रहा है।
2: इस बार हमारे मंडल ने तय किया है कि जितने हमारे मंडल के टी शर्ट होते वो जितने भक्तों तक पहुंचेंगे, जितने भक्त टी शर्ट लेंगे हमारे मंडल के, उतने पेड़ हम लोग मुंबई के अलग अलग बीएमसी ग्राउंड्स है, आरए कॉलोनी है, यहाँ पर लगाएंगे। ये हम लोगों ने एक संकल्प लिया।
0: आस्था और उत्सव का ऐसा ही संगम महाराष्ट्र के अकोला में भी नजर आया। यहाँ बाप्पा की भव्य एंट्री देखकर भक्त भावुक हो उठे। ढोल ताशे डीजे और आतिशबाजी के बीच निकाली गई बाप्पा की शोभा यात्रा में भक्ति के साथ लोक रंग भी दिखाई दे रहा था। यहाँ गजानन अकेले नहीं पधारे बल्कि उनके साथ पूरा शिव परिवार भी विराजमान है। भव्य दिव्य इस यात्रा को देखने के लिए सड़कों पर भीड़ उमड़ पड़ी।
3: कंसेप्ट है ये शिव जी की बारात का है। जब शिव जी शादी करने के लिए गए थे, देवता लोग, राक्षसगण लोग, नारद मुनि, ऋषि मुनि, ये सभी लोगों का कंसेप्ट है, ये पूरा तरह का है। ये मूर्ति हमने वडोदरा गुजरात से लेकर आई है अकोला के लिए, पहली बार अकोला के अंदर आउट ऑफ स्टेट मूर्ति आई है। और इस साल जो हम लोग ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं पूरा, इसमें हम पूरे चार धाम यात्रा दिखा रहे हैं गणपति के, जो अपने चारों धाम होते हैं बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री उत्तराखंड के, वो चारों धाम आपको मुंगीलाल बाजोरिया के अंदर ग्राउंड के अंदर विराजमान है, और सेम वही मूर्ति बना रहे हैं ताकि अकोला वासियों को चारों धाम की यात्रा यही करने का अनुभव मिले।
0: जब बाप्पा की सवारी आगे बढ़ी तो पूरा माहौल गणपति बाप्पा के जयकारों से गूंज उठा। ढोल ताशों और डीजे की धुन पर भक्त जमकर थिरके।
4: गणपति बप्पा मोरिया, इस साल तू जल्दी आया है, यही गुंज के साथ जो है बप्पा के भक्त लाडले जो है ये गणपति बप्पा की भव्य जो 30 फीट की प्रतिमा है और उसमें जो पूरी तरीके से यहाँ पर जो झांकी बताई गई है वो झांकी जो है वो भोले बाबा के शादी का जो पूरे बाराती है वो बाराती इसमें शामिल हुए है। लगभग 30 फीट की ये मूर्ति जो है पहली बार अकोला में जो है महाराष्ट्र के बाहर से मानो गुजरात के बड़ोदरा से यहाँ पर आई है। अब उसकी भव्य यहाँ पर जो है शोभा यात्रा निकलने वाली है। आप देख सकते हो कि गणपति बप्पा की ये सुंदर प्रतिमा जो है उन्हें नक्शीकाम से भी सजाया है, इंटीमेट ज्वेलरी से भी यहाँ पर सजाया गया है। भव्य मूर्ति आप देख सकते हो और मूर्ति देखने के लिए और इस परिसर में इस गणपति बप्पा का दर्शन लेने के लिए उनकी फोटो निकालने के लिए आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है लोग जो है बड़े इकट्ठा हुए। गणपति बप्पा के जो भक्त है वो बड़े झूम रहे हैं क्योंकि गणपति बप्पा का आगमन का कैसा राह देख रहे थे आप?
5: बहुत ही देर से हम राह देख रहे थे और
4: कितनी खुश है अभी, कितने खुश है?
6: हम इतने खुश है पूरी अकोला में हमारी खुशी दिखाई देनी चाहिए।
0: गुजरात के सूरत से आई इन तस्वीरों को देखिए, इसे देखकर ऐसा लग रहा है मानो पूरी शिव बारात निकली हो। देव दानव नर किन्नर हर कोई गजानन के स्वागत में जैसे उमड़ आया हो। वहीं जुलूस के बीच कलाकार और युवा तरह तरह के कर्तव्य दिखा रहे हैं। इस जुलूस के पीछे भव्य स्वरूप में गजानन पधार रहे हैं। विशाल केसरिया ध्वजों से सजे रथ पर सवार विघ्नहर्ता को ढोल नगाड़े और जयकारों के बीच उन्हें पंडाल में विराजमान कराया गया। बाप्पा के भक्तों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। 14 सितंबर को पंडालों, मंदिरों और घरों में गजानन अलग अलग स्वरूपों में विराजमान होंगे, लेकिन उनके आगमन की तैयारियों को लेकर अभी से रौनक दिखाई देने लगी है। बाधाओं और संकटों का नाश करने वाले विघ्नहर्ता गजानन के स्वागत के लिए हर ओर उत्सव का माहौल है। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे और अकोला से धनंजय साबले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
7: न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक का सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार।
0: हफ्ते के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। सोमवार 31 अगस्त को सेंसेक्स 307 अंक लुढ़ककर 76,957 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 95 अंक फिसला, ये गिरकर 24,080 पर आ गया। सोने की कीमतों में लगातार चौथे दिन गिरावट रही। सोमवार को दिल्ली सर्राफा बाजार में सोना 1500 रुपए गिरा। इसके साथ ही दिल्ली में अब 10 ग्राम सोने की कीमत घटकर 1,60,900 रुपए हो गई। हालांकि चांदी की कीमतों में कोई बदलाव नहीं है, 1 किलो चांदी की कीमत 2,45,500 रुपए पर स्थिर है। डॉलर के मुकाबले रुपए को मजबूती मिली। सोमवार 31 अगस्त को रुपया 26 पैसे ऊपर चढ़ा। इस तरह 1 डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 95 रुपए 17 पैसे हो गई।
7: सस्पेंस थ्रिलर से भरपूर है फिल्म दायरा का ट्रेलर। इसके साथ ही फिल्म जगत से जुड़ी कुछ और खबरों को जानने के लिए आइए सीधे आपको लिए चलें फिल्मी मोड पर।
0: करीना कपूर खान और पृथ्वीराज सुकुमारन स्टारर फिल्म दायरा का ट्रेलर रिलीज हो गया है। ट्रेलर में दोनों की जोड़ी बेहद दमदार और खूबसूरत नजर आ रही है। फिल्म को लेकर दर्शकों का उत्साह भी बढ़ गया है। राजी और तलवार जैसे शानदार फिल्मों के बाद दायरा वाइल्ड पिक्चर्स और निर्देशक मेघना गुलजार का तीसरा कोलैबोरेशन है। फिल्म को वाइल्ड पिक्चर्स और डॉक्टर जयंती लाल गड़ा के पैन स्टूडियोज ने प्रोड्यूस किया है। दायरा 18 सितंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी।
8: 2 साल 600 किलोमीटर।
0: मलयालम सिनेमा के लिए इंटरनेशनल मार्केट से अच्छी खबर सामने आई है। निविन पॉली और ममिता बैजू की मुख्य भूमिका वाली फिल्म बेथलहम कुडुम्बा यूनिट को यूके, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी में शानदार रिस्पांस मिल रहा है। फिल्म के विदेशों में कमाई ने ट्रेड को भी हैरान किया है। अमेरिका और कनाडा के आंकड़े बाद में सामने आएंगे, लेकिन इन तीन देशों में फिल्म का प्रदर्शन पहले ही चर्चा में आ चुका है। फिल्म को मिल रहा ये रिस्पांस मलयालम सिनेमा की बढ़ती ग्लोबल पहुंच को दिखाता है। मिर्जापुर द मूवी को लेकर फैंस का इंतजार अब खत्म होने वाला है। फिल्म की एडवांस बुकिंग 31 अगस्त से शुरू हो गई है। मेकर्स ने मुन्ना भैया और कंपाउंडर वाले नए वीडियो के साथ दर्शकों का उत्साह और बढ़ा दिया है। गुरमीत सिंह के निर्देशन में बनी ये फिल्म 4 सितंबर को जन्माष्टमी के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म हिंदी और तेलुगु में दर्शकों के बीच पहुंचेगी। इसे रितेश सिद्धवानी और फरहान अख्तर ने प्रोड्यूस किया है, जबकि कहानी पुनीत कृष्णा ने लिखी है।
9: सबसे खास बात
0: यश की फिल्म टॉक्सिक अ फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार शुरुआत के बाद रफ्तार खो दी है। फिल्म ने पहले दिन 101 करोड़ रुपए से ज्यादा का नेट कलेक्शन किया था। रविवार को फिल्म ने करीब 23 करोड़ रुपए कमाए, जिसके साथ भारत में इसका कुल नेट कलेक्शन 214.10 करोड़ रुपए पहुंच गया। वर्ल्ड वाइड फिल्म की कमाई करीब 285.20 करोड़ रुपए बताई जा रही है।
8: ये सब हमारे पूर्वज हैं।
0: सुमंत अकिनेनी की फिल्म महेंद्रगिरी वाराही को लेकर दर्शकों का उत्साह बढ़ता जा रहा है। स्पिरिचुअल मिस्ट्री थ्रिलर इस फिल्म का तेलुगु ट्रेलर पहले ही दर्शकों को पसंद आया था। अब मेकर्स ने इसका हिंदी ट्रेलर भी रिलीज कर दिया है।
9: आप माता ने दिया है ना।
0: फिल्म में सुमंत अकिनेनी मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। वहीं ऐश्वर्या राजेश और सिद्धू जन्नाल गड्डा कैमियो करते दिखाई देंगे। मेकर्स के मुताबिक फिल्म की कहानी रहस्य और आध्यात्मिकता के इर्द गिर्द घूमती है। ये फिल्म 11 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है।
7: चलिए न्यूज वक्त में खबरों के सफर को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर।
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
7: किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में 26वें एससीओ समिट का भव्य आगाज। तिरंगे झंडे के साथ भारतीय दल का प्रधानमंत्री मोदी ने हाथ हिलाकर किया अभिवादन। शांति, विकास और समृद्धि पर मंथन। तमाम वैश्विक चुनौतियों के बीच देश की जीडीपी ग्रोथ बरकरार। वित्तीय वर्ष 2026 की पहली तिमाही में 7.8% रही विकास दर, आरबीआई के अनुमान से भी शानदार रहे आंकड़े। मानसूनी बारिश के बीच भगवान बद्री विशाल के दर्शन को उमड़ रहे श्रद्धालु। 30 अगस्त तक 16,75,000 से ज्यादा ने की पूजा अर्चना। पवित्र हेमकुंड साहिब में भी लगा भक्तों का तांता। न्यूज पथ में खबरों के सफर को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन उससे पहले हमें रुकना होगा यहाँ, यानी कि वायरल चौक पर। यहाँ देख लेते हैं उन वीडियोस को जो कि सोशल मीडिया में धमाल मचाए हुए हैं। इनमें से कुछ वीडियोस ऐसे हैं जो आपको इमोशनल कर देंगे और कुछ आपको हंसने पर मजबूर।
0: भाई बहन का रिश्ता दुनिया के सबसे प्यारे रिश्तों में से एक होता है। इस वीडियो में नन्ही बहन का अपने छोटे भाई के लिए प्यार देखकर हर किसी का दिल खुश हो रहा है। खुद छोटी होने के बावजूद बहन बड़ी होने की जिम्मेदारी निभा रही है। वो भाई को प्यार से नहला रही है, अपने नन्हे हाथों से साबुन लगा रही है। वहीं भाई भी बहन के हाथों से बड़े आराम से नहा रहा है। मासूमियत और अपनापन भरा ये पल लोगों को खूब पसंद आ रहा है। सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसे देखकर आपके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाएगी। वीडियो में पानी पूरी की दुकान पर ग्राहक के तौर पर कोई इंसान नहीं बल्कि गौ माता पहुंची है। दुकानदार भी बड़े प्यार से उनका स्वागत करता है। पूरी में चटपटे आलू भरकर गाय को पानी पूरी खिलाता नजर आता है। गाय भी बड़े आराम से पानी पूरी का स्वाद लेती दिखाई देती है। लोगों को दुकानदार का ये अंदाज खूब पसंद आ रहा है। इरादे मजबूत हो तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। इस वीडियो में एक शख्स कुछ ऐसा ही कमाल करता नजर आ रहा है। सामने रखे 3 खीरों को तोड़ने के लिए वो एक एक कर उन पर हाथ मारता है और हर बार अपने हाथ की ताकत से खीरा तोड़ देता है। वीडियो देखने वाले भी शख्स का हुनर देखकर हैरान है। सोशल मीडिया पर लोग इस अनोखे अंदाज की खूब तारीफ कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक नन्हे बच्चे का वीडियो लोगों का दिल जीत रहा है। वीडियो में बच्चा अपनी मैम के लिए गाना गाता नजर आ रहा है। बच्चे की प्यारी आवाज और मासूम अंदाज देखकर हर कोई उसकी तारीफ कर रहा है। गाना गाते हुए बच्चे के चेहरे पर खुशी और अपनापन साफ दिखाई देता है। उसकी मासूमियत ने सोशल मीडिया यूजर्स का दिल छू लिया है। यही वजह है कि वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग बच्चे की खूब तारीफ कर रहे हैं। इंसानों की तरह जानवर भी अपने मालिक के काम में हाथ बटाने की कोशिश करते हैं। ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों को खूब पसंद आ रहा है। एक शख्स अपने डॉग को काम पर लेकर पहुंचा, जहां कंस्ट्रक्शन के लिए गड्ढा खोदा जा रहा था। डॉग भी खुद को काम से दूर नहीं रख पाया और गड्ढा खोदने में मदद करने लगा। काम करते हुए डॉग काफी खुश नजर आया। उसकी मासूम हरकत देखकर लोग खूब मुस्कुरा रहे हैं।
7: न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी लोगों की सेहत को लेकर उठाए जाने वाले एक बड़े कदम। आजकल ज्यादातर लोग पैकेट बंद खाने की चीजें खाते हैं, लेकिन इन पैकेट के अंदर मौजूद खाने में नमक, चीनी और सैचुरेटेड फैट की मात्रा काफी अधिक होती है, जिसका सेहत पर बुरा असर पड़ता है। ऐसे में अब FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने लोगों को आगाह करने के लिए ऐसे फूड पैकेट पर एक चेतावनी लेवल लगाने का प्रस्ताव दिया है। FSSAI ने पैकेट के सामने की तरफ लाल रंग का षटकोणीय यानी कि 6 कोनों वाला लेबल लगाने का प्रस्ताव दिया है। ये रेड लेबल पैक्ड फूड में नमक, अतिरिक्त चीनी या फिर अतिरिक्त फैट की ज्यादा मात्रा होने पर ग्राहकों को चेतावनी देने का काम करेगा। खाने पीने की चीजों पर निगरानी रखने वाली संस्था ने यह प्रस्ताव सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक हलफनामे में दिया है। FSSAI ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि इस लेबल के लगे होने से ग्राहकों को उन खाद्य पदार्थों के बारे में आसानी से समझ आ जाएगा जिनमें चिंताजनक बताए गए पोषक तत्वों की मात्रा ज्यादा है। हलफनामे में कहा गया है कि चेतावनी लेवल पर लागू घोषणाएं प्रदर्शित होंगी, जैसे ज्यादा फैट, ज्यादा चीनी, ज्यादा नमक और अत्यधिक मीठा पेय, ताकि उपभोक्ता तय पोषक तत्वों की ज्यादा मात्रा वाले उत्पादों की पहचान आसानी से कर सके। 13 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने पैकेट बंद खाद्य पदार्थों पर चेतावनी लेवल लगाने में देरी को लेकर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को कड़ी फटकार लगाई थी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सख्त लहजे में पूछा था कि क्या सरकार नहीं चाहती कि देश के नागरिक स्वस्थ रहें। इन दिनों देश भर में खाने पीने की चीजों के साथ हो रहे नियमों के उल्लंघन को लेकर ताबड़तोड़ कार्रवाई की खबरें सामने आ रही हैं। इस बीच FSSAI के पैकेट बंद खाने पर रेड लेबल चेतावनी के प्रस्ताव को लेकर हमने दिल्ली में लोगों से बात की और उनकी राय जानी।
9: केवल बजे सुप्रीम कोर्ट का ये स्वागत करना चाहिए कि जो कि एक पब्लिक में एक अच्छा मैसेज आएगा कि इसमें क्या है, क्या नहीं शुगर है, कितना क्या मात्रा है, क्या गलत मात्रा है, या फूड्स की कौन कौन सी मात्रा है, तो वो भी एक अच्छा मैसेज आ रहा है और बहुत बढ़िया, मैं तो कहूँगा स्वागत योग है। और क्योंकि लोग वह कहते कुछ है करते कुछ है इसमें, और बाद में ठीक है पब्लिक का एक हरेशमेंट तो होता ही है कि क्या कौन सी बीमारी कब किसके पल्ले पड़ जाए, तो लोग वह पढ़ के थोड़े स्टडी करके कम से कम उस चीज़ का यूज़ तो करेंगे ना, तो बहुत इसके बहुत जो भी है हेल्थ के कंपेयर में बहुत अच्छा किया। मैं तो बहुत बढ़िया इस बारे में सुप्रीम कोर्ट का स्वागत करता हूँ।
11: जागरूक होंगे लोग, धीरे धीरे लोगों को जानकारियाँ, जैसे अभी वेज और नॉन वेज का लोगों को पता चलता है, वैसे ही अगर फैट का, सॉल्ट का, शुगर का पता चलेगा तो ऑफकोर्स लोगों को फायदा होगा। अच्छा निर्णय है
12: सुप्रीम कोर्ट ने ये जो निर्णय लिया है, पब्लिक के लिए काफ़ी अच्छा है कि आजकल जो है सभी के, किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, किसी को शुगर बढ़ा हुआ है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, बीपी के प्रॉब्लम है, तो अगर ये लेवल लगा होगा कि इसमें शुगर ज़्यादा है, इसमें सॉल्ट ज़्यादा है, इसमें फैट ज़्यादा है, तो इसके लिए बहुत अच्छा है। मेरा ख्याल है कि अच्छा होगा, इसमें मदद मिलेगी लोगों को। पर यह है कि इसका जो अनुपालन है ये दुकानदार करे ईमानदारी से।
13: देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है ये बहुत अच्छा फैसला है, बड़ा सराहनीय कदम है। लोगों को पता चलना चाहिए कि हम जो चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं, जो चीज़ खा रहे हैं, वो कितनी हमारे लिए जो है अच्छी है, लाभदायक है, कितनी हानिकारक है, उसमें कितनी क्या मात्रा पड़ी है, शुगर कितना है, कितना पॉम ऑयल कितना है, सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, जिससे हमें पता चले कि देखिए दिन प्रतिदिन हार्ट अटैक बढ़ता जा रहा है हिंदुस्तान में, ये सब पॉम ऑयल का ही कमाल है। ये सारी चीज़ें एक्स्ट्रा चीनी, ये सब चीज़ें जो है फैट बढ़ाती हैं, तमाम बीमारियाँ शरीर में आती हैं। लोगों को पता होनी चाहिए क्या मात्रा है, क्या कितना, उस हिसाब से हो। कुछ लोग तो कम से कम जागरूक होंगे, कुछ लोगों को पता चलेगा तो लोग अच्छी चीज़ें कंज्यूम करेंगे।
7: जम्मू कश्मीर के गुरेज घाटी चोरवान गांव आज भी अपनी पुरानी परंपराओं को संभाले हुए हैं। आधुनिक दौर में भी गांव के लोग अपनी पुरानी जीवन शैली को नहीं भूले हैं। यहां पानी के से चलने वाला घराट, हाथ से ऊन काटती महिलाएं, पुराने लकड़ी के घर और पारंपरिक तरीके से अनाज तैयार करने की तस्वीरें देखने को मिलती हैं। प्रकृति के करीब रहने और पीढ़ियों से चले आ रहे हुनर को बचाए रखने की यही कोशिश चोरवान को खास बनाती है।

0: कश्मीर की खूबसूरत वादियों में एक ऐसा गांव भी है जहां आज भी पुरानी परंपराएं जिंदा हैं, जहां लोग आधुनिक सुविधाओं के साथ साथ अपने पुराने तौर तरीके को भी संभाल कर रखे हुए हैं। यह है उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा की गुरेज घाटी में बसा चोरबान गांव। ये गांव एलओसी के पास मौजूद अपनी खूबसूरती के साथ अपनी खास जीवन शैली के लिए भी जाना जाता है।
1: ये गांव और इस गांव के लोग इस बात पर गर्व कर रहे हैं कि उन्होंने सदियों पुरानी परंपरा गांव में संजो के और संभाल के रखी है।
0: चोरबान में आज भी पानी से चलने वाली आटा चक्कियां हैं, जिन्हें घराट कहा जाता है। पानी के बहाव से पत्थर घूमते हैं और स्थानीय अनाज का आटा तैयार होता है। लोग जंगल से मिलने वाली चीजों से खाना भी बनाते हैं, यानी यहाँ की जिंदगी आज भी प्रकृति से काफी करीब है।
2: जो ये हमारा कल्चर है, अपनी जो चक्की है, ये हमारे पुराने वक्त की है। इसको हम अभी तक अब जिंदा रखा है और अपना जो कल्चर होता है इसको हमने छोड़ा है, क्योंकि इसमें बहुत सा आटा यहाँ पीसते हैं तो वो बिल्कुल शुद्ध और साफ होता है। और हमने इसको गवर्नमेंट से भी कुछ गुजारिश करते हैं कि इसको जिंदा रखने के लिए आप भी हमारा ताउन करें, क्योंकि ये हमारा बाप दादा का जो कल्चर है, पुराने जमाने का जो कल्चर है, इसको हम भूल न जाएंगे।
0: गांव की महिलाएं आज भी हाथ से

0: जब गांवों में तेजी से बदलाव हो रहा है, चोरवान के लोग अपनी पुरानी पहचान को बचाए हुए हैं। यहाँ की हर परंपरा आने वाली पीढ़ियों को अपने इतिहास और संस्कृति से जोड़ती है।
1: इस गांव का फायदा ये हुआ है कि कश्मीर का पुराना दौर जानने के लिए कई सारे पर्यटक और लोग देश दुनिया से इस गांव में, कश्मीर में, वो पुराना जीवन जानने के लिए पहुंचते हैं।
0: चोरवान की खासियत सिर्फ इसकी खूबसूरत वादियां नहीं, बल्कि यहां आज भी जिंदा है वो जिंदगी जो धीरे धीरे दुनिया की कई हिस्सों से गायब हो रही है। यही वजह है कि गुरेज आने वालों के लिए चोरवान सिर्फ एक गांव नहीं, बल्कि पुरानी संस्कृति को करीब से देखने का एक खास अनुभव है। बांदीपुरा से अशरफ पानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: दक्षिण भारत की हरियाली, बैक वाटर्स की शांत लहरें और उनके बीच गूंजती चप्पू की थाम। जब केरल में ओणम का पर्व आता है तो शांत जलधाराएं जीवंत होते हैं। केरल से ऐसी ही तस्वीरें आई हैं। इस राज्य की ऐसी परंपरा जो कि नदियों की लहरों पर तैरती दिखाई देती है।
0: का नाम आते ही आंखों के सामने केरलम की रंग बिरंगी तस्वीरें उभर आती है। फूलों की पंखुड़ियों से सजी रंगोली, कथकली के रंग, मंदिरों की रौनक और फिर पानी की लहरों को चीरती हुई सैकड़ों चप्पूओं की ताकत। लंबी, विशाल, सांप जैसी दिखने वाली नावें, नाविकों का जोश, वंचिप्पा पुट्टू की गूंज और किनारों पर उमड़ा जनसैलाब। ये सिर्फ एक नाव दौड़ नहीं है, ये केरलम की धड़कन है, परंपरा है, प्रतिष्ठा है और सबसे बढ़कर ये उस सामूहिक ताकत की तस्वीर है जहां एक नाव को आगे बढ़ाने के लिए सैकड़ों लोग एक साथ सांस लेते हैं, एक साथ गीत गाते हैं और एक ही दिशा में चप्पू चलाते हैं। वंचिप्पाट्टू केरलम का प्रसिद्ध पारंपरिक नौका गीत है जिसे मुख्य रूप से ओणम उत्सव और स्नेक बोट रेस के दौरान गाया जाता है। मलयालम भाषा में वंची का अर्थ नाव और पाट्टू का अर्थ गीत होता है। ओणम उत्सव के साथ केरलम की नदियों और बैक वाटर्स पर हर साल सजने वाले मशहूर स्नेक बोट रेस को वल्लम कली कहा जाता है। ये तस्वीरें हैं पथनमथिट्टा जिले की, जिसे केरलम की धार्मिक राजधानी भी कहा जाता है। यहाँ पंबा नदी में 132वीं अरनमुला उथराट्टी बोट रेस का आयोजन किया गया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने इसका शुभारंभ किया। इसमें 50 स्नेक बोट शामिल है। स्नेक बोट की खासियत होती है कि ये 100 फीट से भी ज्यादा लंबी होती है। अपने ऊंचे उठे पिछले हिस्से और लंबी बनावट के कारण ये दूर से किसी फन फैलाए सांप जैसी दिखाई देती है, इसीलिए दुनिया इन्हें स्नेक बोट के नाम से भी जानती है। इस लंबी नाव में कई सारे नाविक जब एक साथ अपने चप्पू पानी में डालते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पूरी नदी की धड़कन एक ही लय में चलने लगी हो। ओणम और वल्लम कली का रिश्ता सिर्फ खेल का नहीं, बल्कि केरलम की आस्था, इतिहास, लोक परंपरा और सामूहिक उत्सव का रिश्ता है। जब नदियों और बैक वाटर्स पर सैकड़ों नाविक एक साथ चप्पू चलाते हैं, पारंपरिक वंचिप्पाट्टू की लय गूंजती है और हजारों दर्शक किनारों पर उमड़ते हैं तो पूरा दृश्य केरलम की जीवंत सांस्कृतिक पहचान बन जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
2: पहाड़ों में मौसम का मिजाज भले ही बदलता रहे, लेकिन बाबा केदार के भक्तों की आस्था और गहरी होती जा रही है। मानसून और बारिश के बीच भी केदारनाथ धाम की यात्रा लगातार जारी है। देश के अलग अलग हिस्सों से श्रद्धालु तमाम चुनौतियों के बावजूद बाबा केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं।

0: आस्था से गुलजार, पवित्र और पावन केदारधाम। गंगोत्री से यमुनोत्री तक पहुंच रहे रिकॉर्ड तोड़ भक्त। बाबा केदार के धाम में इन दिनों आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। बारिश और बदलते मौसम के बीच श्रद्धालुओं के कदम लगातार केदारनाथ की ओर बढ़ रहे हैं। मुश्किल रास्ते और पहाड़ी मौसम भी भक्तों के उत्साह को कम नहीं कर पा रहे हैं। आंकड़ों की बात करें तो अब तक 14,73,000 से ज्यादा श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। अभी तक श्रद्धालुओं की संख्या के मामले में बद्रीनाथ धाम सबसे आगे है। 16,54,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने भगवान बद्री विशाल के दर्शन करे हैं। गंगोत्री धाम में करीब 7,47,000 श्रद्धालुओं ने माँ गंगा के दर्शन किए। माँ यमुना के धाम यमुनोत्री में इस बार 6,68,163 श्रद्धालु पहुँच चुके हैं, जो अब तक का रिकॉर्ड आंकड़ा है।
1: श्री केदारनाथ धाम में यदि मैं बात करूं तो अभी तक लगभग 14,50,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने बाबा केदारनाथ के दर्शन कर चुके हैं। और विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के निर्देशन में, माननीय विधायिका जी के, केदारनाथ विधायिका जी के निर्देशन में लगातार जितने भी हमारे आवाजाही के मार्ग हैं, जितने भी हमारे पैदल मार्ग हैं या भूस्खलन वाले जो भी क्षेत्र हैं, जो भी पॉइंट है, लगातार जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की टीमें 24 आवर अलर्ट मोड पर रहकर श्रद्धालुओं की सेवा में निरंतर तत्पर है।
0: केदारनाथ मंदिर परिसर में हर दिन भक्तों की मौजूदगी से माहौल भक्तिमय नजर आ रहा है। हर तरफ बाबा के जयकारे और दर्शन के लिए उमड़ते श्रद्धालु दिखाई दे रहे हैं। मौसम विभाग की ओर से आगामी दिनों में मौसम के ठीक रहने की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसे में आने वाले दिनों में केदारनाथ यात्रा में और तेजी आने की संभावना है।
1: और निरंतर जितनी भी यहाँ पर हमारी पुलिस प्रशासन की टीम है, जितनी हमारी ITBP है, NDRF है, SDRF है, जितने हमारे सेना के जवान है, सभी के द्वारा, साथ ही साथ जितने हमारी आपदा प्रबंधन की टीमें हैं, जो भी चिकित्सा की जो टीमें हैं, सभी के द्वारा निरंतर केदारनाथ धाम में अलर्ट मोड पर रहकर सभी श्रद्धालुओं को निरंतर दर्शन करवाए जा रहे हैं। पुनः आप सभी श्रद्धालुओं का और श्री केदारनाथ धाम में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूँ। और साथ ही साथ आप सब लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आप लोग अपनी इस यात्रा को, चारधाम की जो यात्रा है, आप हेमकुंड साहिब की जो यात्रा है, आप सब लोग जरूर आए।
0: खासतौर पर सितंबर महीने से केदारनाथ धाम आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। यात्रा के चरण में देश भर से बड़ी संख्या में भक्त बाबा केदार के दर्शन के लिए पहुंच सकते हैं। दरअसल सितंबर और अक्टूबर के महीने में चारधाम यात्रा का एक अलग ही उत्साह देखने को मिलता है। मॉनसून के बाद मौसम साफ होने लगता है और देवभूमि की खूबसूरती अपने चरम पर होती है। पहाड़ों पर ठंडी हवाएं चलती हैं और उचित चोटियों पर बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो जाता है। इसी दौरान बाबा केदार के धाम में भी एक अलग ही आध्यात्मिक माहौल नजर आता है। बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच जब बाबा केदार के दर्शन होते हैं तो भक्तों के लिए ये पल बेहद खास और दुर्लभ बन जाता है। केदारनाथ धाम के साथ साथ बद्रीनाथ धाम से लेकर हेमकुंड साहिब की यात्रा को लेकर भी श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। मॉनसून के बाद जैसे जैसे मौसम सुहाना हो रहा है, वैसे वैसे देवभूमि के इन पवित्र धामों में भक्तों की आवाजाही भी बढ़ती जा रही है। अभी यात्रा समाप्त होने में करीब 2 महीने का वक्त बाकी है, जिससे उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले वक्त में ये आंकड़ा और भी बड़ा हो सकता है। चमोली से कमल नयन सिलौड़ी और रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल, गुड न्यूज टुडे।
2: ब्रेक प्लाजा पर हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाएगा, ब्रेक के बाद लिए चलेंगे खेल चक्कर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी सोच। गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
5: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच।
2: सीए भवानी देवी जापान में होने वाले एशियाई खेलों के लिए भारत की फेंसिंग टीम की अगुवाई करेगी। खेल जगत से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए आइए सीधे चले खेल चक्कर।
9: भारत बांग्लादेश सीरीज फिलहाल टल गई है। नई तारीख को लेकर दोनों क्रिकेट बोर्ड के बीच बातचीत चल रही है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष तमीम इकबाल ने कहा कि सीरीज रद्द नहीं हुई है, दोनों बोर्ड इस सीरीज को कराने को लेकर बहुत गंभीर हैं। बीसीसीआई और बीसीबी दोनों नई तारीख तलाश रहे हैं। भारत को अगस्त सितम्बर में बांग्लादेश के खिलाफ 3 वनडे और 3 T20 मैच खेलने थे। वैभव सूर्यवंशी ने एक बार फिर अपने बल्ले से रनों की बौछार लगाई। सोमवार को दलित ट्रॉफी के पहले सेमीफाइनल में ईस्ट जोन के लिए खेलते हुए वैभव ने 7 छक्के और 7 चौकों की मदद से 81 गेंदों पर 92 रन की आतिशबाजी खेली और दलित ट्रॉफी के इतिहास में सबसे कम उम्र में अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए। उन्होंने लक्ष्मण सिंह का 57 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा। वैभव ने ये रिकॉर्ड 15 साल 175 दिन की उम्र में बनाया, जबकि लक्ष्मण ने 1969 में 16 साल 23 दिन की उम्र में दलित ट्रॉफी में 50 लगाई थी। वैभव ने 42 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। ईस्ट जोन और सेंट्रल जोन के बीच ये सेमीफाइनल बेंगलुरु में खेला गया। 2 महीने के ब्रेक के बाद कॉम्पिटिटिव एक्शन में वापसी करने वाली ओलंपियन सीए भवानी देवी जापान में होने वाले एशियाई खेलों के लिए भारत की 20 सदस्यीय फेंसिंग टीम की अगुवाई करेंगी। चुने गए सभी एथलीट मंगलवार से 15 सितंबर तक एनआईएस पटियाला में नेशनल तैयारी कैंप के लिए इकट्ठा होंगे और फिर 16 सितंबर को आईची नागोया के लिए रवाना होंगे।
2: इसी के साथ न्यूज पक में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत।
10: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे

0: कौन सा योग आदमी की वाणी को बहुत अच्छा बना देता है? चंद्रमा का कौन सा योग व्यक्ति को धन का बड़ा लाभ करवाता है? और चंद्रमा का कौन सा योग व्यक्ति के जीवन की हर समस्या को दूर कर देता है? कौन से हैं चंद्रमा के शुभ योग और क्या है इनका प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
8: किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में 26वें SCO समिट का भव्य आगाज, तिरंगे झंडे के साथ भारतीय दल का प्रधानमंत्री मोदी ने हाथ हिलाकर किया अभिवादन, शांति विकास और समृद्धि पर मंथन। तमाम वैश्विक चुनौतियों के बीच देश की GDP ग्रोथ बरकरार, वित्तीय वर्ष 2026 की पहली तिमाही 7.8% रही विकास दर, RBI के अनुमान से भी शानदार रहे आंकड़े। मानसूनी बारिश के बीच भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने को मर रहे हैं श्रद्धालु, 30 अगस्त तक 16,75,000 से ज्यादा ने पूजा अर्चना की, पवित्र हेमकुंड साहिब में भी लगा भक्तों का तांता। मुंबई में आगामी गणेशोत्सव की भव्य तैयारियां। साकनाकी के महाराजा की 48 फीट ऊंची प्रतिमा बनी आकर्षण का केंद्र। बप्पा के दरबार की सजावट का काम तेज। नौसेना की ताकत में हुआ इजाफा। मुंबई में दूसरा स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट पोत निपुण हुआ कमीशन। समुद्र में गोताखोरी और जटिल अभियानों को देगा अंजाम। अर्जेंटीना के दिग्गज खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने इंटरनेशनल फुटबॉल से लिया संन्यास। 20 साल लंबे करियर में 207 मैच खेलकर दागे 125 गोल। अपनी कप्तानी में अर्जेंटीना को बनाया विश्व विजेता।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना।
8: नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां हम बात कर रहे हैं नेपाल में सैलाब के बाद चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन की। नेपाल में बाढ़ ने तबाही की ऐसी दास्तां लिखी है जिससे उबरने में उसे काफी वक्त लगेगा, लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती लोगों को तलाशना है, उन्हें बचाने की पूरी तैयारियां की जा रही हैं, इसलिए पूरी ताकत से काम किया जा रहा है। आज आपको दिखाएंगे कि कैसे 3 दिनों तक मलबे में दबी एक 6 साल की बच्ची को सकुशल बाहर निकाला गया। इसके बाद आपको जल विद्युत परियोजनाओं में काम करने वाले लापता मजदूरों की तलाश भी दिखाएंगे। बाढ़ के बाद बंद हो चुकी सुरंगों में सैकड़ों मजदूरों की तलाश लगातार जारी है, जिसमें नेपाल के साथ साथ भारतीय टीम भी लगातार जुटी हुई है। इसके साथ ही आपको नेपाल के बाढ़ प्रभावित इलाकों की ग्राउंड रिपोर्ट भी आज हम दिखाने जा रहे हैं। तबाही के बाद नेपाल एकजुट होकर हालात का सामना लगातार कर रहा है और लोग फिर से घर बसाने के लिए तैयार हो रहे हैं। ये सभी तस्वीरें आपको तमाम दिखाएंगे। आइए शुरुआत करते हैं नेपाल में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ। देखिए, सैलाब से गुजर जाने के बाद पीछे रह गए मलबे में जिंदगी की तलाश लगातार जारी है। 4,000 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं जिनकी खोज की जा रही है लगातार। रेस्क्यू की गई तस्वीरें हैरान करने वाली हैं और कुछ हिम्मत की मिसाल भी है। एक 6 साल की बच्ची 3 दिनों तक मलबे में दबी रही और आखिरकार उसके रोने की आवाज सुनकर रेस्क्यू की टीम ने उसे सही सलामत मलबे से बाहर निकाला। इसी तरह जब बाढ़ आई तब एक प्रिंसिपल की सूझबूझ से 1600 बच्चों की जान बच गई। नेपाल में सेना, पुलिस और रेस्क्यू टीम के साथ आम लोग भी इस वक्त हाथ से हाथ मिलाकर लगातार खड़े हुए हैं। रिपोर्ट देखिए।

कहते हैं जब तक सांस है तब तक आस है। उम्मीद की इसी डोर के सहारे इस वक्त नेपाल में जिंदगी बचाने की मुहिम जारी है, क्योंकि गुजरता हुआ हर लम्हा कई सांसों पर भारी है। इसीलिए रेस्क्यू टीम दिन रात जुटी है और इसी जज्बे की वजह से 6 साल की इस बच्ची को 3 दिन बाद मलबे से सकुशल निकाल लिया गया। एक नन्ही सी जान जो रसुवा में जल प्रलय के बाद मलबे में दब गई, उसके बचने की कोई सूरत नहीं थी, लेकिन इसे सशस्त्र पुलिस ने शुक्रवार की शाम सुरक्षित बाहर निकाल लिया। तलाश और बचाव अभियान में जुटी सशस्त्र पुलिस टीम को बच्ची के रोने की आवाज सुनाई दी। इसके तुरंत बाद पुलिस ने तुरंत ऑपरेशन शुरू किया। मलबे में पत्थरों के भारी टुकड़ों के बीच बच्ची सलामत तो थी, लेकिन उसे वहां से निकालना आसान नहीं था। पुलिस टीम ने पहले जोर लगाकर पत्थरों को हटाया, उसके बाद बच्ची को बाहर खींच लिया गया। डरी सहमी चेहरे पर चोट के निशान और कपड़े पूरी तरह से कीचड़ से सने। रेस्क्यू टीम ने बमुश्किल बोल रही इस बच्ची के कपड़े बदले और उसे खाना खिलाया।

पहले इस बच्ची का इलाज टिमुरे में किया गया, लेकिन जब उसकी हालत बिगड़ने लगी तो उसे हेलीकॉप्टर के जरिए काठमांडू लाया गया। फिलहाल अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों की टीम उसकी सेहत पर लगातार नजर बनाए हुए है। 3 दिन तक मलबे के नीचे रहने के बावजूद बच्ची का जिंदा बचना किसी चमत्कार से कम नहीं, लेकिन बच्चे की हिम्मत और उसका हौसला एक मिसाल है। जल प्रलय के बाद नेपाल में मिशन जिंदगी लगातार जारी है। जो लापता हैं उनकी तलाश हो रही है, जो मुसीबत में फंसे हैं उनका बचाव हो रहा है। जिंदगी के लिए जारी इस जंग में कई कहानियां हैं जो हिम्मत, हौसले और ड्यूटी की मिसाल बन गई। फ्लैश फ्लड की वजह से नुवाकोट की त्रिशूली घाटी में भारी तबाही आई। पानी के सामने कुछ भी नहीं टिक पाया।

0: यकीन करना मुश्किल है कि इस वक्त जहां नदी बह रही है वहां एक 3 मंजिला स्कूल हुआ करता था। जल प्रलय में त्रिभुवन त्रिशूली सेकेंडरी स्कूल मलबे में तब्दील हो गया, लेकिन उस दिन वहां पढ़ रहे 1643 बच्चों की जान बच गई।
1: यहाँ जो है यहाँ 3 तल्ले का बिल्डिंग था, वो स्कूल था, उसका सामने एक मंदिर था,
2: मंदिर
1: और ये पूरा बाजार था।
3: ये बिल्कुल समतल जमीन जहाँ है वहाँ स्कूल था।
1: हाँ, ये जो अभी पानी इधर से बह रहा है ना, ये बीच में जो खाली जगह है ना, वहाँ पे 3 मंजिल का वो स्कूल था।
3: कितने बच्चे पढ़ते हैं?
1: 1600
3: 1600 बच्चे।
0: न सिर्फ स्कूल के बच्चे बल्कि ज्यादातर टीचिंग स्टाफ भी सही सलामत है, लेकिन सभी की जिंदगी किसी चमत्कार से नहीं बची, बल्कि ये हुआ स्कूल के प्रिंसिपल की वजह से। प्रिंसिपल राजेंद्र दवाड़ी के सही समय पर सही फैसले ने सैकड़ों बच्चों को बचा लिया। राजेंद्र दवाड़ी को 26 अगस्त की सुबह उनके दोस्त ने फोन किया। दोस्त ने अलर्ट करते हुए जानकारी दी कि गांव नदी में बह चुका है और उन्हें फौरन वहां से निकलना होगा। हालांकि राजेंद्र को लगा कि उनका स्कूल सुरक्षित है क्योंकि इमारत कंक्रीट से बनी है और नदी की सतह से करीब 60 मीटर ऊपर है, लेकिन खतरा देखते हुए उन्होंने स्कूल से निकलने का फैसला किया और स्कूल की घंटी बजा दी। स्कूल के प्रिंसिपल का फैसला एकदम सही था, क्योंकि थोड़ी देर बाद जो सैलाब आया वो सब कुछ बहा ले गया। देखिए इस जगह को, यहाँ स्कूल का नामो निशान तक नहीं है। सोचिए अगर प्रिंसिपल ने स्कूल छोड़ने का फैसला नहीं लिया होता तो कितनी बड़ी त्रासदी हो सकती थी। लेकिन राजेंद्र देवाड़ी ने सभी टीचर्स को तुरंत क्लासरूम खाली करने के लिए कहा और बच्चों को ऊपर की ओर जाने के लिए कहा। एक बच्ची जो डर की वजह से बेहोश हो गई थी उसे फौरन बाइक से सुरक्षित पहाड़ी तक पहुंचाया गया। उसके बाद सभी बच्चों ने ऊपर तक दौड़ लगाई, लेकिन प्रिंसिपल सबसे पीछे रहे ताकि कोई छूट ना जाए। उस वक्त स्कूल में 1643 बच्चे और दूसरे स्टाफ मेंबर्स मौजूद थे, लेकिन सभी समय रहते सुरक्षित जगह पर पहुंच गए और सभी की जान बच गई, क्योंकि कुछ ही देर बाद त्रिशूली नदी के सैलाब में 3 मंजिला स्कूल भवन पूरी तरह से बह गया।
1: यहाँ जो है यहाँ 3 तल्ले का बिल्डिंग था, वो स्कूल था, उसका सामने एक मंदिर था,
2: मंदिर और
1: ये पूरा बाजार था।
3: ये बिल्कुल समतल जमीन जहाँ है वहाँ स्कूल था।
1: हाँ, ये जो अभी पानी इधर से बह रहा है ना, ये बीच में जो खाली जगह है ना, वहाँ पे 3 मंजिल का वो स्कूल था।
3: कितने बच्चे पढ़ते हैं?
1: 1600
3: 1600 बच्चे।
1: हाँ, और उसी दिन जिस दिन ये हुआ उस दिन यहाँ से उस सब बच्चे को निकाल के वो टीचर ने सबको यहाँ से भगा के
3: सबको बचाया।
1: अभी जो यहाँ
3: स्कूल का तो नामो निशान नहीं है।
1: हाँ, स्कूल का तो नामो निशान नहीं है, अभी तो पूरा लेके गया।
3: और मंदिर भी था वहाँ?
1: मंदिर भी था, राम मंदिर।
3: लेकिन जमीन को देख के लगता है शायद यहाँ कभी कुछ रहा ना हो, बिल्कुल समतल कर दिया गया है।
1: नहीं, उधर तो दिखाई देता है ना, उधर बिल्डिंग्स जो है वो नीचे का थोड़ा थोड़ा दिखता है, लेकिन इस तरफ तो कुछ नहीं दिखता है। यहाँ पूरा मंदिर था, ये पूरा बाजार था, बहुत आदमी यहाँ से मरे हुए हैं कि यहाँ का पूरा कितना आदमी का क्या हुआ अभी तक कोई जानकारी नहीं है, लेकिन
4: ज्यादा हुआ है
3: तो ये सारा तो चीज खत्म यहाँ।
1: हाँ जी,
0: नेपाल में सैलाब थम गया है, लेकिन तबाही के ऐसे मंजर में जिंदगी की तलाश पूरे दमखम से हो रही है। नुवाकोट, रसुवा और धाडिंग जैसे जिलों में राहत का काम लगातार जारी है। हजारों जवान, खोजी कुत्ते, दर्जनों हेलीकॉप्टर्स मलबे में फंसे लोगों को निकालने में जुटे हैं। नेपाल के नुवाकोट से आशुतोष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच एक घर के बच जाने की बड़ी चर्चा है। नेपाल की विनाशकारी फ्लैश फ्लड के बीच इस घर ने लोगों को हैरान कर दिया। तस्वीरें देखिए, क्योंकि जहां बाढ़ अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को मिटाती चली गई, वहीं पर एक घर ऐसा था जिसे ये बाढ़ डिगा भी नहीं पाई। देखिए कैसे चारों तरफ अगर आप नजर डालेंगे तबाही का मंजर है। आसपास की इमारतें बह चुकी हैं, लेकिन हरे रंग का ये दो मंजिला मकान मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। दावा यह किया जा रहा है कि इस घर के बचने के पीछे इसकी बनावट और लोकेशन ने अहम भूमिका निभाई। शायद घर की मजबूती, आरसीसी बनावट, लोहे और कंक्रीट से बना ढांचा, उसकी लोकेशन और बहाव का दोनों तरफ से निकल जाना, इन सभी चीजों ने मिलकर घर को बचाने में अहम मदद की है। तस्वीरें देखिए। नेपाल की इस बाढ़ में कुछ और चीजें हैं जो चमत्कारिक रूप से बच गईं, जैसे बैंक लॉकर। लेकिन खास बात यह रही कि लॉकर पुलिस ने खोज निकाले। त्रिशूली के एक बैंक से नेपाल पुलिस ने करीब 50 करोड़ का सोना, 1.5 करोड़ नेपाली रुपए और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज हासिल कर लिए हैं। नेपाल पुलिस ने एक वीडियो जारी कर किया है जिसमें देखा जा सकता है साफ तौर पर कि बैंक से निकाले गए लॉकरों को जेसीबी मशीनों के जरिए धोया जा रहा है। और हालांकि इससे पहले एक बैंक की तिजोरी बहकर त्रिशूली नदी के रास्ते पहुंच गई थी और जहां पर 29 लोगों ने तिजोरी तोड़कर उसमें रखे 92 लाख रुपए निकाल लिए। हालांकि पुलिस ने रुपए बरामद करके आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अच्छी बात यह रही कि बैंक की तिजोरियों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया, जो तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। इस बीच नागपुर के 105 लोग नेपाल से सुरक्षित लौट आए हैं। नागपुर रेलवे स्टेशन पर उनका भव्य स्वागत किया गया। ये सभी लोग जो है तीर्थयात्रा के लिए रवाना हुए थे, लेकिन बाढ़ की वजह से काठमांडू में फंस गए। प्रशासन की मदद से सभी को सुरक्षित देश वापस लाया गया। तस्वीरें देखिए किस प्रकार से भव्य उनका स्वागत किया गया, फूलमालाएं पहनाई गई और स्वदेश उनकी वतन वापसी हो गई। देखिए नेपाल में दिन रात रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन इसमें भी सबसे ज्यादा फोकस करीब 900 लापता मजदूरों पर है। कई जल विद्युत परियोजनाओं में काम करने वाले ये मजदूर बाढ़ आने के बाद से लापता हैं और इनकी तलाश में नेपाल की मदद भारतीय टीम भी लगातार कर रही है। मंद सुरंगों को काटकर इन मजदूरों की तलाश कैसे हो रही है, रिपोर्ट देखिए।
4: जिंदगी बचाने की ये जंग आसान नहीं, लेकिन किसी भी तरह इस बंद सुरंग में उस छोर तक जाना है जहां उम्मीद की रोशनी मिल सकती है। जहां कुछ लोगों के होने और बचे होने की आस है और इसीलिए ये भागीरथ प्रयास है। सैलाब आया तो सबसे बड़ी आफत नेपाल में हाइड्रो प्रोजेक्ट में काम करने वाले मजदूरों पर आई। ऐसे 11 प्रोजेक्ट की सुरंगों में काम करने वाले करीब 900 मजदूर लापता है और उनकी तलाश में रेस्क्यू टीम पूरा जोर लगा रही है। ये तस्वीर त्रिशूली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की है, जहां रविवार को रेस्क्यू टीम ने सुरंग के अंदर जाने के लिए करीब 3 फीट का रास्ता बनाया और फिर रस्सी की मदद से रेस्क्यू टीम सुरंग के अंदर उतरी। पहले तो आवाज लगाई गई, लेकिन जब सुरंग से कोई जवाब नहीं मिला तो टीम ने और अंदर जाने का फैसला किया। हालांकि ये काम आसान नहीं था, इसके लिए बड़े उपकरण मंगाए गए। सुरंग में बनाए गए छेद को और चौड़ा किया गया, फिर भी त्रिशूली के इस टनल में दूर तक रास्ता नहीं बन पाया। बाढ़ आने के बाद अपर त्रिशूली हाइड्रो पावर परियोजना के सबसे ज्यादा मजदूर यानी 576 लोग लापता है। सुरंग के अंदर जाकर लापता मजदूरों की तलाश तभी मुमकिन है जब पूरी टीम अंदर जाए, इसीलिए सुरंग को काट कर रास्ता बनाने की कोशिश लगातार जारी है। कोशिश है कि किसी तरह बंद हो चुके सुरंग के मुहाने तक जाया जाए। इसमें खतरा भी है क्योंकि धीरे धीरे सुरंग के अंदर पानी भर रहा है, इसीलिए पंप के जरिए उसे निकालने की रणनीति है। साथ ही एक पाइप के जरिए सुरंग में ऑक्सीजन भी भेजी जा रही है। इसी तरह का प्रयास रसुआगढ़ी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में किया जा रहा है। जब भोटोपोशी नदी में बाढ़ आई तो यहाँ भी सुरंग मलबे से बंद हो गई। हाइड्रो पावर कंपनी ने करीब 90 लोगों के लापता होने की सूचना दी थी, इसीलिए रेस्क्यू टीम इस सुरंग की छानबीन करने पहुंची। एक्सपर्ट के साथ ड्रोन की मदद ली गई। सुरंग के आखिरी छोर तक रेस्क्यू टीम पहुंची भी, लेकिन सुरंग में किसी भी जीवित व्यक्ति का पता नहीं चला। जहां से होकर सैलाब गुजरा, जहां तबाही आई, अब वहां जिंदगी को बचाने की पुरजोर कोशिश है। सबसे ज्यादा फोकस जल विद्युत परियोजनाओं में काम करने वाले मजदूरों को बचाने पर है, जिसके लिए हजारों बचाव कर्मियों को लगाया गया है। खासकर त्रिशूली 3A, 3B और अपर त्रिशूली 1 में बड़ी संख्या में फंसे लोगों को निकालने के लिए ऑपरेशन चलाया जा रहा है।

0: सुरंगों के मुश्किल हिस्सों तक पहुंचने के लिए रेस्क्यू टीमों ने ड्रोन का सहारा लिया। ड्रोन के जरिए सुरंग के उन हिस्सों पर नजर रखी जा रही है जहां रेस्क्यू टीम के लिए सीधे पहुंचना मुश्किल है। साथ ही टनल में फंसे लोगों को ड्रोन के जरिए संदेश भी भेजे जा रहे हैं। टनल में फंसे लोग मोबाइल फोन चार्ज कर सके, इसके लिए पावर बैंक भेजने की भी तैयारी की गई है। उम्मीद है कि ड्रोन की मदद से चलाए जा रहे ऑपरेशन से सुरंगों के अंदर फंसे लोग या उनकी मौजूदगी के किसी संकेत का पता चल सकेगा। सुरंगों में फंसे लोगों को निकालने में मदद के लिए भारत से भी एक्सपर्ट्स की टीम और जरूरी तकनीकी सामग्री भेजी गई है जो नेपाली सेना के साथ मिलकर काम कर रही है।
1: We are extremely grateful for the support that the government of India has provided to us already. There's been four different flights that have come to Nepal with relief supplies. We had asked some experts to support us with tunnel rescue and the team had already arrived yesterday and day before yesterday.
0: नेपाल के बाढ़ प्रभावित कई इलाकों में बारिश की वजह से रेस्क्यू में चुनौती आ रही है। खास तौर पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की सुरंगों में फंसे लोगों को निकालना इस वक्त मुश्किल काम है। फिर भी जान दांव पर लगाकर और हर संभव तौर तरीके का इस्तेमाल करते हुए लोगों की तलाश की जा रही है। नेपाल के नुवानकोट से आशुतोष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़।
2: नेपाल में सैलाब के बाद पानी उतर गया है लेकिन घरों के भीतर जमा मलबा तबाही बयां कर रहा है। घर गृहस्थी बिखर चुकी है लेकिन इसी मलबे के बीच लोग अपने हाथों से उजड़ी जिंदगी का एक एक हिस्सा तलाश रहे हैं। फावड़ा से घर की गाद निकाली जा रही है, लगातार सामान इकट्ठा किया जा रहा है और घर को फिर से बसाने का इरादा किया जा रहा है। देखिए रसुआ से हमारी ग्राउंड रिपोर्ट।

प्राकृतिक आपदा सब कुछ तबाह कर देती है, जिंदगियों के लिए मुश्किल खड़ी कर देती है और इस आपदा के बाद जिंदगी को शुरू करना बड़ी चुनौती है। इन मकानों में अब नगर पालिका सिविल कर्मचारी जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग जीवित बच गए हैं अब उनके घरों से बचा हुआ सामान निकाला जा सके ताकि उनकी जिंदगी फिर से शुरू हो सके। मरने वालों का आंकड़ा ज्यादा है, लापता लोगों की संख्या ज्यादा है, लेकिन इन सब के बीच कोशिश ये भी हो रही है कि जिनके बारे में कोई पता न चल पाए घर घर जा करके मलबों में तलाशा जा रहा है। इस दलदल के बीच ये तमाम सारे लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम जिन लोगों का पता ही नहीं चल रहा है कुछ तो उनकी जानकारी लगे, जो लोगों का घर बच गया है उनके घरों से सामान वापस उन तक सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाया जा सके। ये ऑपरेशन जिंदगी बड़े पैमाने पर नेपाल के दुर्गम इलाकों में चलाई जा रही है। ये उन बच्चों के खिलौने थे जो इन घरों में रहते थे, अब वो घर पूरा मलबे में चला गया है। घर की सामान संपत्तियां जो है बचा के निकाली जा रही हैं, उसमें एक प्यारा सा खिलौना भी है, सामान है, जो लोगों का घर है अब बचा हुआ सामान अपने घरों में ले जा रहे हैं। आप सोचिए कितनी मुश्किल भरी जिंदगी यहाँ रही होगी। जी ये देखिए, ये घर का पहला मंजिल है, मलबे में दबा हुआ है ऊपर से, जो बच गया है उसे निकाला जा रहा है। जिनकी जिंदगियाँ बची हैं वो रिलीफ कैंपों में हैं, बाकियों के लिए अब फिर से अपनी जिंदगी को खड़ी करना संघर्ष और चुनौती है। रिस्टोरेशन सबसे बड़ी चुनौती है और उसी के साथ साथ अब जो स्थानीय प्रशासन के लोग हैं वो घर घर जा रहे हैं कोशिश करने के लिए कि दलदल कीचड़ में जिनके मकान मलबे में दब गए हैं क्या संभवतः जो लोग लापता हैं उन्हें खोजा जा सके। बड़े बड़े ट्रकों का इस्तेमाल करके पूरे मलबे को हटाने की कोशिश की जा रही है, रास्ता हटाया जा रहा है। ऑपरेशन कनेक्टिविटी अपने आप में सबसे बड़ी चुनौती है और इन इलाकों में ये भी के साथ साथ कि जो लोग बचे हैं उनके घरों से जरूरत से उनकी संपत्ति निकाली जा सके और अगर कुछ लोग घरों में ही उनके शव बरामद हो सके तो कम से कम ये तो पता चल सके कि कितने लोग जो लापता हैं कहाँ हैं, कैसे जो बचपन होता है अब वो स्कूल कॉलेज अपने घर से महरूम है, वो तमाम छोटे छोटे बच्चे। और यहाँ जो वॉलंटियर्स हैं पूरा नेपाल एकजुट है अपने लोगों की मदद के लिए, वो आए हैं। देखिए छोटे छोटे बच्चे जो हैं जिनको स्कूलों में होना चाहिए था वो रिलीफ कैंप में आए हैं, महिलाएं आई हैं यहाँ पर और अलग अलग जो संगठन है रेड क्रॉस से लेकर के दुनिया भर के संगठन वो खाना रसद दवाइयाँ ये सब मुहैया करा रहे हैं उन घरों में। कोशिश दरअसल इसकी है कि जिसके घर बच गए हैं उनको ज़रूरत का सामान मिल जाए, उसके साथ बच जाएँ, कम से कम अपना आशियाना वो फिर से बसा सकें। यहाँ पर देखिए कितने सारे लोग हैं जो किन मुश्किलों से निकल करके इन छोटे छोटे बच्चों ने अपनी वो मुश्किल देखी है। वो छः दिन पहले ये भी अपने बड़ों के साथ भागे थे, कहीं महिलाएं अलग बैठी हैं, ज़रूरत का सामान यहाँ पर बांटा जा रहा है, खाने पीने की जितनी भी चीज़ें हैं ये सब नदी किनारे गाँव में रहते थे, गाँव कस्बे सब कुछ बुरी तरह से तबाह बर्बाद हो गया है। छः दिन पहले तक जिनके पास अपने घर थे आज वो बेघर हैं, बेसहारा हैं। रिलीफ कैंप में देखिए जैसे खाना आया है खाने के लिए लाइन है, कपड़ों के लिए लाइन है, ज़रूरत के लिए लाइन है, महिलाएं हैं तो अलग अलग जो स्वयंसेवी संगठन हैं वो ज़रूरत की सामान सैनिटरी नैपकिन कपड़े, ऐसी एकजुटता ऐसा भाव और अपने लोगों के प्रति ये निष्ठा, ये नेपाल ही दिखाता है कि मुश्किल में कैसे ये लोग एक दूसरे के लिए खड़े हैं। जिंदगी यहाँ रिलीफ कैंपों में आ चुकी है, ऊपर राहत बचाव कार्य चल रहा है, लेकिन जैसे जैसे संख्या बढ़ रही है अब सोचिए 900 लोग 6 दिन में आंकड़ा पहुंचा है और ये कोई नहीं जानता कि ये आंकड़ा यहाँ थम जाएगा या ये भी इस डरावने मंजर की सिर्फ शुरुआत है। लापता लोगों की संख्या कल तक 2600 थी, आज 4200 है और लापता लोगों के बारे में जब तक ये पता न लग जाए कई सारी उम्मीदें हैं, फोन कॉल कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, हमारे पास जो संदेश आ रहे हैं उसमें भी लोग इंतजार कर रहे हैं कि क्या अपनों का पता चल पाएगा।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: कौन सा योग आदमी की वाणी को बहुत अच्छा बना देता है? चंद्रमा का कौन सा योग व्यक्ति को धन का बड़ा लाभ करवाता है? और चंद्रमा का कौन सा योग व्यक्ति के जीवन की हर समस्या को दूर कर देता है? कौन से हैं चंद्रमा के शुभ योग और क्या है इनका प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में 26वें SCO समिट का भव्य आगाज तिरंगे झंडे के साथ भारतीय दल का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथ हिलाकर किया अभिवादन, शांति विकास और समृद्धि पर मंथन। तमाम वैश्विक चुनौतियों के बीच देश की GDP ग्रोथ बरकरार, वित्तीय वर्ष 2026 की पहली तिमाही में 7.8% रही विकास दर, RBI के अनुमान से भी शानदार। मानसूनी बारिश के बीच भगवान बद्री विशाल के दर्शन को बढ़ रहे हैं श्रद्धालु, 30 अगस्त तक 16,75,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की, पवित्र हेमकुंड साहिब में भी लगा भक्तों का तांता। मुंबई में आगामी गणेशोत्सव की भव्य तैयारियां, साकानाकी के महाराजा की 48 फीट ऊंची प्रतिमा बनी आकर्षण का केंद्र, बप्पा के दरबार की सजावट का काम तेज। नौसेना की ताकत में इजाफा, मुंबई में दूसरा स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट पोत निपुण हुआ कमीशन, समुद्र में गोताखोरी और जटिल अभियानों को देगा अंजाम। अर्जेंटीना के दिग्गज खिलाड़ी लियोनल मेसी ने इंटरनेशनल फुटबॉल से लिया संन्यास, 20 साल लंबे करियर में 207 मैच खेलकर दागे 125 गोल, अपनी कप्तानी में अर्जेंटीना को बनाया विश्व विजेता।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम लोगों को।
2: उज्जैन में बाबा महाकाल की सवारी में उमड़ा आस्था का जनसैलाब, लाखों श्रद्धालुओं ने 5 दिव्य स्वरूप में दर्शन किए। महाकाल की सवारी में इस बार तकनीक भी नजर आई, रोबोट ने भी भीड़ का डेटा जुटाया, बाबा महाकाल की गाथा सुनाई। महाकाल की सवारी में हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश हुई, सड़कों पर भक्ति के रंग, श्रद्धालु जयकारे लगाते हुए नजर आए। सवारी में 500 से ज्यादा कलाकारों ने शानदार प्रस्तुतियां दी, जनजातीय दलों के रंग बिरंगे कार्यक्रमों में सबका ध्यान आकर्षित किया। शिप्रा तट पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बाबा महाकाल का पूजन अर्चन किया, 1100 बटकुन वैदिक मंत्रोच्चार के साथ माहौल बनाया भक्तिमय। सतपुड़ा की पहाड़ियों में 3000 फीट की ऊंचाई पर धारगढ़ में आस्था का सैलाब, गुफा में विराजमान स्वयंभू महादेव के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे श्रद्धालु। धारगढ़ पहुंचने के लिए भक्तों ने 25 किलोमीटर तक कठिन पहाड़ी रास्ता तय किया। धारगढ़ की महादेव यात्रा करीब 500 साल पुरानी लोक मान्यता से जुड़ी हुई है, मान्यता है कि दमयंती रानी की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए। धारगढ़ में भक्ति के साथ जंगल बचाने की मुहिम भी तेज, प्लास्टिक बॉटल पर 10 रुपए जमा होंगे और बॉटल लौटाने पर पैसे वापस मिलेंगे। धारगढ़ टाइगर रा प्रोजेक्ट के संवेदनशील वन क्षेत्र में आता है, इसलिए कई नियम होते हैं लागू। मुंबई के बाबुलनाथ मंदिर में सावन की तीसरे सोमवार पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी, सुबह से ही श्रद्धालु भगवान के दर्शन करने के लिए पहुंचे। सावन के तीसरे सोमवार पर बाबुलनाथ मंदिर में हर हर महादेव की गूंज। मुंबई के बाबुलनाथ मंदिर में शिवलिंग का भव्य श्रृंगार, सावन में शिव भक्तों की आस्था का बड़ा केंद्र है बाबुलनाथ। बाबुलनाथ मंदिर का 300 साल पुराना इतिहास है, यही वजह है कि यहां पर विराजमान शिवजी से भक्तों का विशेष लगाव है। बाबुलनाथ मंदिर में विराजमान नंदी के कानों में कहते हैं शिव भक्त अपनी मुराद। मुंबई में गणेशोत्सव की तेज हो गई है तैयारियां, साकिनाका में महाराजा का सजने लगा दरबार, करीब 42 फीट ऊंची है साकीनाका के महाराजा की मूर्ति, से मुंबई उपनगर की सबसे ऊंची गणेश प्रतिमाओं में बताया जाता है शुमार। इस बार गणपति बप्पा ने खंडोबा का रूप लिया है, मूर्ति के साथ शिवलिंग भी आ रहे हैं नजर। साकीनाका के महाराजा इस बार मना रहे हैं अपना 42वां साल, हर साल की तरह इस बार भी चर्चा है बप्पा का रूप। बड़े गणपति पंडाल पहले ही बप्पा को पंडाल में ले जाते हैं, इससे सजावट और बाकी तैयारियों में मिल जाता है पूरा समय। देशभर में जन्माष्टमी की तैयारियां तेज, दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में भी चल रही है सजावट, और थीम पर की जा रही है मंदिर की सजावट, बनाए जा रहे हैं भव्य पंडाल। थाईलैंड, कर्नाटक और बेंगलुरु से मंगाया गया विशेष फूल मंदिर परिसर में सजावट का काम। भगवान श्री कृष्ण के श्रृंगार की भी खास तैयारियां, भगवान की विशेष पोशाक ज्वेलरी और खास तौर पर वृंदावन से लाई जा रही है। भगवान श्री कृष्ण को जन्माष्टमी पर 1008 प्रकार के लगाए जाएंगे भोग, श्रद्धालुओं में प्रसाद को लेकर बांटे जाएंगे। दिल्ली के इस्कॉन मंदिर को खूबसूरत रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया, लाखों की संख्या में भक्त जुटेंगे। भगवान कृष्ण की अलग अलग लीलाओं को लाइटों के जरिए मंचन किया जा रहा है। 4 सितंबर को मनाया जाएगा जन्माष्टमी का त्यौहार। दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में जन्माष्टमी पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम, 300 सीसीटीवी कैमरों से निगरानी। भक्तों की सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस के 600 जवान होंगे तैनात, 1000 प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स भी संभालने की व्यवस्था। श्रद्धालुओं के लिए मेडिकल सुविधाओं का भी खास इंतजाम, 8 एम्बुलेंस तैनात, 4 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी रहेंगी मौजूद। बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की रिकॉर्ड भीड़ पहुंच रही है, 30 अगस्त तक 16,75,000 से ज्यादा कर चुके हैं दर्शन। नए रिकॉर्ड के अनुसार बद्री हेमकुंड साहिब की यात्रा 30 अगस्त तक तकरीबन 2,87,000 श्रद्धालुओं ने टिकट आमद था। बारिश और मौसम की चुनौती के बावजूद भक्तों की भारी भीड़ पहुंच रही है बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब में, श्रद्धालुओं का जबरदस्त उत्साह। बद्रीनाथ धाम में अब देव डोलियां भी पहुंचने लगी। हेमकुंड साहिब की यात्रा आसान नहीं होती, फिर भी श्रद्धालुओं का जोश हाई, कड़ाके की ठंड और 20 किलोमीटर की चढ़ाई। भारतीय नौसेना को मिली बड़ी ताकत, आज बेड़े में शामिल हुआ एनएस निपुण, ये जहाज समुद्र की गहराइयों में जाने में माहिर। एनएस निपुण को भारत में ही तैयार किया गया जिससे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ी। एनएस निपुण जरूरत पड़ने पर समुद्र में फंसी पनडुब्बियों को बचाने में भी माहिर है। आईएनएस निपुण में आधुनिक डाइविंग सिस्टम और पानी के अंदर काम करने वाले रोबोट्स भी शामिल। आईएनएस निपुण के शामिल होने से नौसेना की गहरे समुद्र में काम करने की क्षमता में मिलेगी मजबूती। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर देश के लिए अच्छी खबर, पहली तिमाही में देश की जीडीपी विकास दर 7.8%, पिछले साल की तिमाही के मुकाबले रिकॉर्ड उछाल रहा। पिछले साल इसी दौरान जीडीपी विकास दर 6.9% दर्ज की गई थी। फिनलैंड में भारत का शानदार प्रदर्शन, आईटीटीएफ वर्ल्ड पैरा फ्यूचर लाहती टूर्नामेंट में 16 मेडल जीते। भारत के पैरा टेबल टेनिस खिलाड़ियों ने डबल्स में दिखाया दमखम, 6 मेडल सबने नाम किए। सुमित सहगल ने डबल्स में 2 गोल्ड जीतकर कमाल किया। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में 26वें एससीओ समिट का भव्य आगाज किया गया, तिरंगे झंडे के साथ भारतीय दल का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार किया। मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट का इंतजार खत्म होने की उम्मीद, सितंबर के दूसरे सप्ताह में एयरपोर्ट का शिलान्यास। गिर सोमनाथ के गहरे समुद्र में फंसे 5 मछुआरों का सफल रेस्क्यू हुआ, नाव डूबने से पहले उफनती लहरों के बीच रस्सियों के सारे साथी मछुआरों ने निकाला सुरक्षा। गणेश चतुर्थी त्यौहार को लेकर सेंट्रल रेलवे चलाएगा 262 स्पेशल ट्रेन। अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने इंटरनेशनल फुटबॉल को कहा अलविदा, 20 साल के लंबे करियर में 207 मैच खेलकर दागे 125 गोल। आपदामी देवदूत बने भारतीय नौसेना के जवान, 18,600 फीट पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर एक मरीज की जान बचाई। गैर जरूरी सामान हटाकर और कम ईंधन लेकर हेलीकॉप्टर का वजन पहले कम किया गया। बचाव अभियान में भारतीय सेना ने दिया कुशलता, साहस और संवेदनशीलता का बेहतरीन उदाहरण। चंदौली में बाढ़ में फंसे लोगों के लिए देवदूत बन रही है पुलिस, चंद्र प्रवाह नदी में फंसे 3 लोगों को बाहर निकाला। औरैया में खेलते हुए कुएं में गिरा 9 साल का बच्चा, फायर ब्रिगेड ने रेस्क्यू अभियान चलाकर बचाई जान। ऋषिकेश में 2 वाहनों की जोरदार टक्कर में फंसे 4 लोग, एसडीआरएफ ने अभियान चलाकर 4 लोगों को वाहन से बाहर निकालकर सुरक्षित पहुंचाया। मुरादाबाद में वन विभाग ने तेंदुओं का सफल रेस्क्यू किया, ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। उत्तराखंड के बागेश्वर पहाड़ में तड़का, 70 परिवारों पर मंडराया खतरा। भारी बारिश के बावजूद उत्साह से लगातार जारी केदारनाथ यात्रा, अभी तक 14,73,000 से ज्यादा भक्त कर चुके हैं दर्शन। सितंबर में मौसम ठीक होने पर भक्तों की संख्या बढ़ने की उम्मीद, लोगों से मौसम देखकर यात्रा करने की अपील। उत्तराखंड और हिमाचल सहित कई राज्यों में आज से फिर सक्रिय होगा मॉनसून, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। बरसी भारी बारिश के चलते लोगों को गर्मी से मिली राहत, भारी बारिश से कई इलाकों में जलजमाव, वाहन चालकों की बढ़ी परेशानी। भारी बारिश से कई घरों में घुस गया बाढ़ का पानी, गंगा नदी का बढ़ा जलस्तर। रायपुर में भारी बारिश के चलते कई इलाके जलमग्न, लोगों को हो रही है परेशानी।

0: चंपारण के वाल्मीकि नगर में बढ़ा। गंडक नदी का जलस्तर बैराज से छोड़ा गया 1.72 लाख क्यूसेक पानी। प्रशासन ने निचले इलाकों में बढ़ाई गश्ती, लोगों से सतर्क रहने की अपील की। लंदन के मशहूर नॉटिंग हिल कार्निवल ने किए 60 साल पूरे, रंग बिरंगे कपड़ों में नजर आए लोग। 1966 में हुई थी नॉटिंग हिल कार्निवल की शुरुआत, आज यूरोप का ही सबसे बड़ा स्ट्रीट फेस्टिवल है। कार्निवल में कैरेबियाई संस्कृति की खास झलक देखने को मिली। 60वीं सालगिरह पर पुराने दिनों को भी किया गया याद। लंदन की सड़कों पर रंग बिरंगी परेड ने बना दिया माहौल, बैंड और कलाकारों को शानदार प्रस्तुति देकर मंत्रमुग्ध कर दिया। चीन के चोंगकिंग में ग्रैफिटी वाली गली पर्यटकों की पहली पसंद, लोग तस्वीरें खींच रहे हैं। यहां सिर्फ गलियां ही नहीं बल्कि ऊंची इमारतों की दीवारों पर भी रंगीन है पूरी ग्रैफिटी, पूरा इलाका दूर से एक पेंटिंग जैसा नजर आता है। करीब 1.2 किलोमीटर लंबी है ग्रेफिटी स्ट्रीट, यहां दुनिया के सबसे बड़े ग्रेफिटी कलेक्शन में से मिलते हैं। पर्यटकों और कलाकारों के लिए गली को लाल, पीले और नीले रंगों में बांटा गया। सोशल मीडिया पर छाई ग्रेफिटी वाली ये स्ट्रीट सोशल मीडिया पर खूब वायरल। चीन में पहली बार मर्मेड वर्ल्ड कप हुआ, 12 देशों के 100 से ज्यादा जलपरियों ने हिस्सा लिया। पानी के अंदर जबरदस्त खूबसूरत नजर आया नजारा, खिलाड़ियों को मुश्किल डाइव और खास मूव्स दिखाने होते हैं। मर्मेड डांस में दर्जनों तरह के होते हैं मूव्स, जैसे जैसे मूव्स मुश्किल होते जाते हैं खिलाड़ियों को मिलते हैं पॉइंट्स। जोड़ी और ग्रुप परफॉर्मेंस में तालमेल भी होता है जरूरी, खिलाड़ियों के एक जैसे मूव्स पर मिलते हैं एक्स्ट्रा पॉइंट्स। कॉस्ट्यूम से लेकर मेकअप और म्यूजिक तक का होता है हिसाब। ताइपेई चिड़ियाघर में पांडा युआन युआन का 22वां जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। युआन युआन के जन्मदिन पर चिड़ियाघर में भारी भीड़ देखने को मिली, कई लोग सुबह 7 बजे ही पहुंच गए। युआन युआन के लिए खास ट्रेन के आकार वाला केक बनाया गया, गन्ने से 22 नंबर की मोमबत्तियां सजाई गई। पांडा के चाहने वालों ने युआन युआन की तस्वीर वाले 66 कपकेक बांटी, इनके जरिए पांडा की अच्छी सेहत का ख्याल। युआन युआन साल 2008 में चीन से ताइवान पहुंची थी, उसने 2013 और 2020 में 2 बच्चों को जन्म दिया। चिली में घायल पेंगुइन को खास कॉपर बॉडी पहनाई जा रही, ये घाव को सुरक्षित रखती है। कॉपर सूट की तकनीक पहले डॉग्स और बिल्लियों के लिए इस्तेमाल हुआ करती थी। कॉपर फाइबर में एंटी सेप्टी गुण होता है और जो घाव को साफ रखने में करता है मदद। पहले घाव की ड्रेसिंग करने के लिए पेंगुइन्स को बार बार पकड़ना पड़ता था, कॉपर बॉडी से इलाज हुआ आसान। चिली के कोमबिम्बो में इस तकनीक से पेंगुइनों को चल रहा है इलाज। राजकुमार संतोषी की नई फिल्म का नाम घातक का घुस के मारूं का सनी देओल की एंट्री हुई, 1966 में रिलीज हुई फिल्म घातक का सीक्वल। मुसाफिर कैफे की सफलता के बाद विक्रांत मैसी की लगी लॉटरी, फिल्म कर्ण में नजर आएंगे। बिलेनियर सीरीज में विजय माल्या के रोल में नजर आएंगे अर्जुन रामपाल। रोमांश बनी 2026 की सरप्राइज ब्लॉकबस्टर, 2 करोड़ के बजट में बनी फिल्म में अब तक कमा ली 39 करोड़। टॉक्सिक के कमाई में करप्पू को पछाड़ दिया, जन नायकन को भी पीछे छोड़ा।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज़ टुडे में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे,
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को
6: दक्षिण भारत की हरियाली, बैकवाटर्स की शांत लहरें और उनके बीच गूंजती चप्पू की थाप। जब केरल में ओणम का पर्व आता है, तो शांत जलधाराएं जीवंत हो उठती हैं। केरलम से ऐसी ही शानदार तस्वीरें निकल कर आईं। स्नेक बोट रेस, ये केरल की ऐसी परंपरा है जो नदियों की लहरों पर तैरती दिखाई देती है। इस साल भी पथनम थिट्टा जिले में पंबा नदी के तट पर पारंपरिक बोट रेस का आयोजन भव्य तरीके से किया गया। नाव पर सवार नाविकों ने पारंपरिक वेशभूषा में पारंपरिक गीत गाते हुए रफ्तार और लाल ताल का अद्भुत नजारा पेश किया।
7: ओणम का नाम आते ही आंखों के सामने केरलम की रंग बिरंगी तस्वीरें उभर आती है। फूलों की पंखुड़ियों से सजी रंगोली, कथकली के रंग, मंदिरों की रौनक और फिर पानी की लहरों को चीरती हुई सैकड़ों चप्पूओं की ताकत। लंबी विशाल सांप जैसी दिखने वाली नावें, नाविकों का जोश, वंचिप्पा पुट्टू की गूंज और किनारों पर उमड़ा जनसैलाब। ये सिर्फ एक नाव दौड़ नहीं है, ये केरलम की धड़कन है, परंपरा है, प्रतिष्ठा है और सबसे बढ़कर ये उस सामूहिक ताकत की तस्वीर है जहां एक नाव को आगे बढ़ाने के लिए सैकड़ों लोग एक साथ सांस लेते हैं, एक साथ गीत गाते हैं और एक ही दिशा में चप्पू चलाते हैं। वंचिप्पाट्टू केरलम का प्रसिद्ध पारंपरिक नौका गीत है, जिसे मुख्य रूप से ओणम उत्सव और स्नेक बोट रेस के दौरान गाया जाता है। मलयालम भाषा में वंची का अर्थ नाव और पाट्टू का अर्थ गीत होता है। ओणम उत्सव के साथ केरलम की नदियों और बैक वाटर्स पर हर साल सजने वाले मशहूर स्नेक बोट रेस को वल्लम कली कहा जाता है। ये तस्वीरें हैं पथनमथिट्टा जिले की, जिसे केरलम की धार्मिक राजधानी भी कहा जाता है। यहाँ पंबा नदी में 132वीं अरनमुला उथराट्टी बोट रेस का आयोजन किया गया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने इसका शुभारंभ किया, इसमें 50 स्नेक बोट शामिल है। स्नेक बोर्ड की खासियत होती है कि ये 100 फीट से भी ज्यादा लंबी होती है। अपने ऊंचे उठे पिछले हिस्से और लंबी बनावट के कारण ये दूर से किसी फन फैलाए सांप जैसी दिखाई देती है, इसीलिए दुनिया इन्हें स्नेक बोर्ड के नाम से भी जानती है। इस लंबी नाव में कई सारे नाविक जब एक साथ अपने चप्पू पानी में डालते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पूरी नदी की धड़कन एक ही लय में चलने लगी हो। ओडम और वल्लमकली का रिश्ता सिर्फ खेल का नहीं बल्कि केरलम की आस्था, इतिहास, लोक परंपरा और सामूहिक उत्सव का रिश्ता है। जब नदियों और बैकवाटर्स पर सैकड़ों नाविक एक साथ चप्पू चलाते हैं, पारंपरिक वंचिपाट्टू की लय गूंजती है और हजारों दर्शक किनारों पर उमड़ते हैं तो पूरा दृश्य केरलम की जीवंत सांस्कृतिक पहचान बन जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
0: गुड न्यूज़ टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
8: चंद्रमा का कौन सा योग आदमी की वाणी को बहुत अच्छा बना देता है? चंद्रमा का कौन सा योग व्यक्ति को धन का बड़ा लाभ करवाता है? और चंद्रमा का कौन सा योग व्यक्ति के जीवन की हर समस्या को दूर कर देता है? कौन से हैं चंद्रमा के शुभ योग और क्या है इनका प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
9: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
9: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है।
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
6: किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में 26वें SCO समिट का भव्य आगाज, तिरंगे झंडे के साथ भारतीय दल का प्रधानमंत्री मोदी ने हाथ हिलाकर किया अभिवादन, शांति विकास और समृद्धि पर मंथन। तमाम वैश्विक चुनौतियों के बीच देश की जीडीपी ग्रोथ बरकरार, वित्तीय वर्ष 2026 की पहली तिमाही में 7.8% रही विकास दर, आरबीआई के अनुमान से भी शानदार रहे आंकड़े। मानसूनी बारिश के बीच भगवान बद्री विशाल के दर्शन को उमड़ रहे हैं श्रद्धालु। 30 अगस्त तक 16,75,000 से ज्यादा ने पूजा अर्चना की। पवित्र हेमकुंड साहिब में भी लगा भक्तों का तांता।

0: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गुड लक टुडे में। मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत स्वागत है आपका
1: जी। नमस्कार।
0: तो आज के शो में हम बात करने जा रहे हैं चंद्रमा के कौन से शुभ योग होते हैं और इनका हमारे जीवन पर किस तरह से असर पड़ता है, लेकिन उससे पहले जान लेंगे आज के गुड लक मंत्र के बारे में।
1: देखिए, सूर्यास्त के समय सोना और खाना दोनों सामान्य स्थितियों में वर्जित है। सूर्यास्त के समय सोना और खाना नहीं चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके जीवन की शुभता नष्ट हो जाएगी।
0: और चलिए पंडित जी से अब जान लेते हैं 1 सितंबर 2026 यानी कि मंगलवार का पंचांग क्या है।
1: दिनांक 1 सितंबर 2026 दिन मंगलवार, तिथि है भाद्रपद कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि, प्रातः 7:41 तक। नक्षत्र है अश्विनी नक्षत्र। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम के 3:04 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
0: और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से पहला सवाल ले लेते हैं। पंडित जी, चंद्रमा से बनने वाले शुभ योग कौन से होते हैं और क्यों ये इतने महत्वपूर्ण होते हैं?
1: जी, हम आपको बता रहे हैं कि चंद्रमा के शुभ योग कौन से होते हैं और चंद्रमा के शुभ योगों का प्रभाव क्या होता है। चंद्रमा से बनने वाले शुभ योग इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? देखिए, चंद्रमा पृथ्वी पर सबसे ज्यादा असर डालने वाला ग्रह है। चंद्रमा का सर्वाधिक प्रभाव पृथ्वी के ऊपर पड़ता है। चंद्रमा का सीधा असर व्यक्ति के मन पर और संस्कारों पर पड़ता है। चूंकि चंद्रमा जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, इसीलिए चंद्रमा से बनने वाला एक एक योग बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। चंद्रमा से 3 के शुभ योग बनते हैं, अनफा, सुनफा और दुर्धरा। इन तीनों में से अगर एक योग भी आपकी कुंडली में है तो व्यक्ति को जीवन में विशेष शक्ति मिलती है। और अगर चंद्रमा के तीनों शुभ योग कुंडली में हैं तो व्यक्ति जीवन में अद्भुत सफलता पाता है, व्यक्ति जीवन में विशेष उन्नति कर लेता है। वैसे चंद्रमा से बड़े सारे शुभ योग बनते हैं। अमला बनता है, गज केसरी बनता है, लेकिन अनफा, सुनफा और दुर्धरा ऐसे योग हैं जो चंद्रमा को शक्तिशाली बनाते हैं और चंद्रमा की शुभता पूरी तरह से जीवन में आ जाती है।
0: और आगे बढ़ने से पहले मेष, वृषभ और मिथुन राशि वाले जातकों के दैनिक राशिफल के बारे में जानेंगे।
1: मेष राशि, करियर में सुधार होता हुआ आपके लिए दिखाई दे रहा है। करियर में लाभ होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, विवाह तय हो सकता है। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, जल्दबाजी में निर्णय ना लें, क्रोध पर नियंत्रण रखें, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मिथुन राशि, मानसिक तनाव कम होगा, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, करियर में कुछ लाभकारी बदलाव होगा। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: और चलिए अब पंडित जी से जान लेते हैं कि अनफा योग क्या होता है और इसका प्रभाव हमारे जीवन पर किस तरह से पड़ता है।
1: अब बात करते हैं अनफा योग की और इसके प्रभाव की। जहां पर कुंडली में चंद्रमा बैठा है उसके पिछले भाव में, उसके पिछले खाने में कोई ग्रह हो तो अनफा योग बनता है। लेकिन अगर चंद्रमा से पिछले भाव में सूर्य हो तब ये योग नहीं बनेगा, तब ये योग भंग हो जाएगा। चंद्रमा के पिछले भाव में कोई भी ग्रह हो, मंगल हो, बुध हो, बृहस्पति हो, शुक्र हो, शनि हो, तो अनफा योग बनता है। और इस योग के होने से व्यक्ति को जीवन में बहुत सारी सुख सुविधा मिलती है। व्यक्ति बहुत सारी यात्राएं करता है और अत्यंत व्यवहार कुशल होता है। ऐसा भी देखा गया है कि अनफा योग के होने पर व्यक्ति राजनीति में, पॉलिटिक्स में सफलता पा जाता है। अनफा योग अगर कुंडली में है तो जीवन में सुख, चैन, सम्मान और आराम आपको बहुत मिलेगा।
0: और आगे बढ़ने से पहले कर्क, सिंह और कन्या राशि वाले जातकों के दैनिक राशिफल के बारे में जान लेते हैं।
1: कर्क राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, आर्थिक लाभ होगा, संतान की उन्नति होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80% बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, करियर में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, नया काम शुरू हो सकता है, कोई शुभ सूचना आपको मिल सकती है। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी, महत्वपूर्ण काम रुक सकते हैं, वाहन सावधानी से चलाएं, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।
0: और चलिए अब वक्त हो चला है आज का आपका सबसे पहला सवाल लेने का। पंडित जी, पहला सवाल आप किसका लेंगे?
1: जी, आज का पहला प्रश्न प्रसाद नारायण पाटिल जी ने हमें लिखा है, गोवा से लिखते हैं। 4 मार्च 1978 का जन्म है, 6:20 प्रातः गोवा। ये कह रहे हैं कि विवाह के कुछ समय बाद पत्नी मेरे पास से चली गई अपने मायके, और अब पत्नी की तरफ से मुकदमे चल रहे हैं। मैं सेपरेशन लेना चाहता हूँ, कब तक मेरा सेपरेशन हो पाएगा? प्रसाद नारायण जी, आपकी कुंडली बनती है कुंभ लग्न की और धनु राशि की, महादशा राहु की और अंतर दशा बृहस्पति की चल रही है। फरवरी 2027 के बाद आपकी शनि की अंतर दशा शुरू होगी, तो 2027 के फरवरी के बाद आपका सेपरेशन अगले ही साल हो जाएगा। आपको इस केस से और इन विवादों से मुक्ति मिल जाएगी। फिलहाल आप ऐसा करें, एक ओपल बनवा करके पहने, 10-12 रत्ती का ओपल चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल धारण करें और रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः शनिदेव के मंत्र का जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
0: और चलिए अब आपका दूसरा सवाल ले लेते हैं। पंडित जी, दूसरा सवाल किसका रहने वाला है?
1: जी, अगला प्रश्न रजनीकांत दुबे जी ने हमें लिखा है, छपरा से लिखते हैं। 22 जुलाई 1996 का जन्म है, 6:17 शाम को छपरा बिहार। ये कह रहे हैं कि मेरे ऊपर काफी कर्ज बना हुआ है, कर्ज से मुक्ति कब तक मिलेगी और मेरी आर्थिक स्थिति कब तक ठीक होगी? रजनीकांत जी, आपकी कुंडली बनती है मकर लग्न की और कन्या राशि की, महादशा बृहस्पति की और अंतर दशा शनि की चल रही है। देखिए, कुंडली में आपके चंद्रमा राहु का योग भी है, कुंडली में मंगल के हालात बहुत बेहतर नहीं दिखाई दे रहे हैं, इसकी वजह से कर्ज के मामले में भी दिक्कत है आपको और इसकी वजह से आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं बन पा रही है। फिलहाल आप ऐसा करें, एक पन्ना बनवा करके पहन लें,

0: शाम दोनों समय संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करें और हर बृहस्पतिवार को केले का दान करें। अगर ये काम आप निरंतर करते जाएं तो आपकी स्थितियां बेहतर हो जाएंगी।
1: तो अनफा योग के बारे में हमने जान लिया पंडित जी से, और अब जान लेते हैं सुनफा योग क्या होता है और इसका हमारे जीवन पर कैसे प्रभाव पड़ता है।
0: अब जानते हैं सुनफा योग के बारे में। सुनफा योग क्या होता है? जहां कुंडली में चंद्रमा बैठा है उसके अगले भाव में, उसके अगले खाने में अगर कोई ग्रह बैठ जाए तो सुनफा योग बनता है। लेकिन अगर ये ग्रह सूर्य होगा तो सुनफा ग्रह सुनफा योग नहीं बनेगा। अगर कुंडली में चंद्रमा के अगले भाव में कोई ग्रह बैठा हो, कुंडली में सुनफा योग बने तो व्यक्ति को शिक्षा में बहुत सफलता मिलती है। ऐसे लोग अत्यंत धनवान होते हैं और अपनी वाणी से, अपने बोलने से जीवन में सफलता पाते हैं। कुंडली में सुनफा योग होने से व्यक्ति को प्रशासन के क्षेत्र में बड़ी सफलता मिलती है। सुनफा योग व्यक्ति की वाणी को, धन को और करियर को बहुत अच्छा बना देता है, ऐसा देखा गया है।
1: और चलिए अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि वाले जातकों के दैनिक राशिफल के बारे में।
0: तुला राशि, स्वास्थ्य आपका अच्छा होता जाएगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, नौकरी में बदलाव के योग हैं, धन की स्थिति में सुधार होगा, रिश्तों में समस्या हो सकती है। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में बदलाव होगा, खान पान का ध्यान रखें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: अब पंडित जी से जान लेंगे कि दुर्धरा योग क्या होता है और इसका हमारे जीवन पर किस तरह से असर पड़ता है।
0: अब जानते हैं दुर्धरा योग के बारे में। दुर्धरा योग क्या होता है? कुंडली में चंद्रमा जहां बैठा है उसके बाद वाले खाने में भी ग्रह हो और चंद्रमा के पहले वाले खाने में भी ग्रह हो, चंद्रमा के दोनों तरफ अगर ग्रह हो तो दुर्धरा नामक योग बन जाता है। यानी अगर अनफा सुनफा एक साथ बनेगा तो वो पूरी तरह से दुर्धरा योग बनेगा। लेकिन इन ग्रहों में सूर्य नहीं होना चाहिए। दुर्धरा योग अगर कुंडली में है, चंद्रमा के पहले और बाद में दोनों तरफ ग्रह हैं, तो व्यक्ति जन्म से ही संपन्न और समृद्ध होता है। जीवन में किसी प्रकार की समस्याओं का सामना ऐसे लोगों को नहीं करना पड़ता। ऐसा योग कभी कभी व्यक्ति को वैराग्य की तरफ ले जाता है और व्यक्ति धर्मात्मा पुण्यात्मा होता है, ऐसा देखा गया है।
1: और अब वक्त हो चला है मकर, कुंभ और मीन राशि वाले जातकों के दैनिक राशिफल के बारे में जान लेने का।
0: मकर राशि, यात्रा में सावधानी बनाए रखें, नौकरी में समस्या हो सकती है, धन की हानि से बचाव करें, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।

समाप्त तो होंगी, रुका हुआ धन प्राप्त तो होगा, यात्रा के योग बन रहे हैं, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना।

0: प्राप्त होंगी, धन की स्थिति अच्छी रहेगी, करियर की स्थिति में सुधार होगा। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और चलिए आगे बढ़ने से पहले आज का आपका तीसरा सवाल ले लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर एक मेल आईडी दी गई है जिस पर आप मेल कर सकते हैं और पंडित जी तक अपना प्रश्न पहुंचा सकते हैं। पंडित जी, आज का तीसरा सवाल आप किसका लेने वाले हैं?
0: जी, अगला प्रश्न वासुदेव जोशी जी ने हमें लिखा है, गाजियाबाद से लिखते हैं। अपने भाई के बारे में जानना चाहते हैं। भाई की जन्म तारीख है 4 नवंबर 1986, 10:47 रात को, झांसी उत्तर प्रदेश। ये कह रहे हैं कि मेरे भाई का अब तक विवाह नहीं हो पाया है, तो मेरे भाई का विवाह कब तक होगा और उसका भविष्य कैसा रहेगा? वासुदेव जी, आपके भाई साहब की कुंडली बनती है कर्क लग्न की और वृश्चिक राशि की, महादशा सूर्य की और अंतरदशा शनि की चल रही है। सबसे पहले बता दें कि आपके भाई साहब की कुंडली में साल 2027 के आरंभिक समय में विवाह का योग बनता है। विवाह की संभावनाएं अगले साल के आरंभ में दिख रही हैं। जहां तक इनके करियर बनाने का प्रश्न है, कपड़े का, दवाई का, कॉस्मेटिक्स का या प्रॉपर्टी का अगर काम करें तो इनके लिए बहुत बेहतर होगा। इनको एक मोती बनवा के पहनाइए, 10-12 रत्ती की मोती, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को इनको मोती पहनाएं और इनसे बोलिए कि रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र का जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का जप करने से इनको लाभ होगा।
1: और चलिए अब वक्त हो चला है आज का आपका चौथा सवाल लेने का। पंडित जी, चौथा सवाल किसका रहेगा?
0: जी, आज का अंतिम प्रश्न आर्यन वैष्णव ने हमें लिखा है, जोधपुर राजस्थान से लिखते हैं। 7 अगस्त 2007 का जन्म है, 4:35 अर्ली मॉर्निंग, जोधपुर राजस्थान। ये कह रहे हैं कि मैंने इंजीनियरिंग का एंट्रेंस दिया था लेकिन बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पाया। अभी एक कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है, तो क्या मैं एडमिशन ले लूं या मुझे एक साल और दोबारा तैयारी करके परीक्षा देनी चाहिए? आर्यन, आपकी कुंडली बनती है मिथुन लग्न की और राशि बनती है वृषभ राशि, महादशा मंगल की और अंतरदशा चंद्रमा की चल रही है। देखिए, आने वाले समय में आपकी राहु की दशा चलेगी और राहु आपका इतना फेवरेबल नहीं है, तो मेरे हिसाब से आपको इसी साल एडमिशन ले लेना चाहिए। अपना साल वेस्ट नहीं करना चाहिए। आगे पढ़ाई लिखाई में, करियर में आपको सफलता मिले, इसके लिए एक पन्ना बनवा करके पहन लें, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना धारण करें और रोज सुबह अगर सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो काफी बेहतर होगा।
1: तो पंडित जी से हमने जान लिया चंद्रमा के शुभ योग कौन से होते हैं और उनका कैसे असर पड़ता है। अब जान लेते हैं कि चंद्रमा का सबसे अशुभ योग कौन सा होता है और कैसे हमारे जीवन पर प्रभाव डालता है।
0: जी देखिए, चंद्रमा की जो प्लेसमेंट कुंडली में होती है वो तो महत्वपूर्ण है ही, चंद्रमा के पहले और बाद के जो खाने होते हैं, जो चंद्रमा के अगल बगल के खाने होते हैं, वो भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि चंद्रमा को वहां से स्ट्रेंथ मिलती है, वहां से चंद्रमा को प्रोटेक्शन मिलती है। अगर चंद्रमा के पहले और बाद वाले खाने में ग्रह हों तो बहुत ही अच्छा है, दुर्धरा योग बनता है और ये व्यक्ति को मेंटली बहुत ताकतवर बनाता है, जीवन में सफलता देता है। लेकिन जहां कुंडली में चंद्रमा बैठा है उसके पहले खाने में या उसके बाद वाले खाने में अगर कोई ग्रह बैठा ना हो तो चंद्रमा आइसोलेटेड यानी अकेला कहा जाता है, और ऐसा चंद्रमा एक योग बनाता है जिसे कहते हैं केमद्रुम योग। अगर कुंडली में केमद्रुम योग है तो व्यक्ति को मानसिक रूप से कष्ट का, पीड़ा का सामना करना पड़ता है, और केमद्रुम योग होने से कभी कभी व्यक्ति को दरिद्रता का सामना भी करना पड़ता है। तो चंद्रमा का सबसे शुभ योग अगर अनफा सुनफा दुर्धरा है तो चंद्रमा का जो सबसे ज्यादा अशुभ योग होता है वो केमद्रुम योग होता है, जो मानसिक स्थिति को और जीवन को छिन्न भिन्न कर सकता है।
1: और अब बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन 1 सितंबर को है। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी बर्थडे। अब पंडित जी से जान लेते हैं कि आपका आने वाला साल कैसा रहने वाला है।

0: दिन 1 सितंबर को है, उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में स्वास्थ्य आपका ठीक बना रहेगा, करियर में आपके बड़ा बदलाव हो सकता है, धन और कर्ज की स्थिति में सुधार होगा, विवाह और संतान के मामले में विलंब होगा। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर सूर्य देव की उपासना करें तो वर्ष आपके लिए बेहतर होगा।
1: और चलिए अब पंडित जी से जान लेते हैं आज की जिज्ञासा क्या है।
0: आज की जिज्ञासा है कि क्या दान करना भी सही या गलत होता है? क्या दान करने से भी नुकसान हो सकता है? देखिए, दान करने के पीछे उसका भाव देखना महत्वपूर्ण है। अगर सेवा या सहायता के लिए दान करना है तो आप कोई भी दान कर सकते हैं, परंतु अगर ग्रह की शांति के लिए दान करना है तब आपको सोच समझकर दान करना चाहिए।
1: और चलिए अब जान लेते हैं कि 1 सितंबर 2026 यानी कि मंगलवार का शुभ पहर क्या होगा।
0: दिनांक 1 सितंबर 2026 दिन मंगलवार, शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में हनुमान जी को लाल फूल चढ़ाइएगा, संपत्ति से संबंधित समस्याएं दूर होंगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, 1 सितंबर मंगलवार शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में।
1: कार्यक्रम के अंत में अब वक्त हो चला है आज की गुड लक राशि के बारे में जान लेने का।
0: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों को अपने जीवन में किन चीजों का सुधार करना चाहिए। आज की गुड लक राशि है कुंभ। आपको आलस्य और लापरवाही से बचना चाहिए। आपको ध्यान, साधना और पूजा पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए, आपका जीवन बेहतर होगा।
1: कार्यक्रम का अंत हो उससे पहले जान लेते हैं पंडित जी से कि आज का महा उपाय क्या रहने वाला है।
0: जी, आज के महा उपाय में आपको बताते हैं कि अगर आपका छोटा बच्चा है, बहुत ज्यादा चंचलता करता है, तो क्या करेंगे? अपने किचन में उत्तर की दिशा की तरफ गुड़, मिठाई या चॉकलेट रखिए। नियमित रूप से इस गुड़ को या मिठाई को बच्चा जब मांगे तो उसको खिलाइए। ऐसा करने से बच्चा कम शरारत करेगा और चोट चपेट से बचा रहेगा।
1: बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी आपका तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।
0: धन्यवाद।
1: और इसी के साथ गुड लक टुडे में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों को देखने के लिए बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
3: बात करते हैं भारतीय नौसेना की, जिसको मिली है आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत एक नई और बड़ी ताकत। विशाखापट्टनम के हिंदुस्तान शिपयार्ड में बनकर तैयार 8,500 टन के INS निपुण का कमीशन हो गया। मुंबई में आयोजित समारोह में समुद्र के इस शूरवीर को नौसेना में शामिल किया गया। इस पोत का निर्माण 75% स्वदेशी कलपुर्जों के साथ हुआ है। नौसेना के इस नए युद्धाक में समुद्र की गहराई में जाकर कठिन मशीनों को अंजाम देने की ताकत है।
4: समंदर में भारतीय नौसेना की ताकत में जबरदस्त इजाफा। इंडियन नेवी के बेड़े में एक ऐसा योद्धा शामिल हुआ है जिसे INS निपुण कहते हैं। समंदर का यह सिकंदर बेहद शक्तिशाली स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेजल है।
5: INS निपुण जैसा नाम है, इस ए वेरी वेरी स्किल शिप, वेरी वेरी केपेबल शिप। ये जहाज डीप डाइविंग ऑपरेशन के लिए बनाया है एंड सबमरीन रेस्क्यू के लिए।
4: INS निपुण में गहरे समंदर के अंदर किसी भी मिशन को अंजाम देने की महारत है। समुद्र की तेज लहरों और खराब मौसम में भी इसमें स्थिर रहने का कौशल है। समंदर के भीतर फंसी पनडुब्बी और नौसैनिकों को आसानी से बाहर निकालने में ये रक्षा दूत की भूमिका बखूबी निभा सकता है। भारतीय नौसेना का ये नया महारथी समंदर में पानी के अंदर किसी खराब शिप या मशीन को दुरुस्त करने में भी सक्षम है।
5: हमारे पास सबमरीन रेस्क्यू के लिए हमारा जो सिस्टम है, इट्स अ ट्रांसपोर्टेबल सिस्टम, उसके लिए एक मदरशिप का रिक्वायरमेंट था ताकि नेवी के जहाज यूज करके उसको डिप्लॉय करके कहीं लेके जा सकते हैं। दैट कैपेबिलिटी हैज बीन एड्रेस्ड एंड आल्सो द डीप डाइविंग कैपेबिलिटी, द सिस्टम जो इसमें इंस्टॉल किया है इट इज एडवांस्ड। जो DP सिस्टम जो लगे हैं एंड जो बंदे नीचे जाके काम कर सकते हैं एंड ये सारे चीजें हैं जो एग्जिस्टिंग पहले भी था नेवी में, बट यहाँ पे जो लगा है इट इज सम ऑफ द वन ऑफ द एडवांस्ड सिस्टम्स विच यू हैव। एंड सबसे खासियत वाली बात है कि हमारे पास ROVs हैं, रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल। ये जो जहाँ पे मनुष्य जाके थोड़ा सा रिस्की काम करना होता है उसको ओवरकम करने के लिए वी हैव दिस सिस्टम वेयर द मशीन गोस एंड कैन अंडरटेक व्हाट ह्यूमन जनरली विल डू एट अ व्हिच विल इन्वॉल्व रिस्क।
4: इस स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल INS निपुण को मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में आयोजित एक औपचारिक समारोह में कमीशन किया गया। समारोह की अध्यक्षता नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने किया। INS निपुण आधुनिक डाइविंग सिस्टम और पानी के नीचे काम करने की क्षमताओं से लैस है, जिससे समुद्र में मुश्किल हालात में काम करने वाले गोताखोरों को लगातार सपोर्ट मिल सके। ये जहाज समंदर में 300 मीटर तक की गहराई में सैचुरेशन डाइविंग और 75 मीटर तक साइड स्टेज डाइविंग अभियानों को अंजाम देने में सक्षम है। ये पनडुब्बी बचाव ऑपरेशन में सपोर्ट करने की भारतीय नौसेना की क्षमता को बढ़ाने वाला है। इस जहाज में नेविगेशन, प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट और सटीक स्टेशन कीपिंग के लिए आधुनिक सिस्टम लगे हैं। साथ ही इसमें डाइविंग, पानी के नीचे काम करने और मेडिकल सपोर्ट के लिए खास सुविधाएं भी है। ये क्षमताएं इसे पानी की सतह के नीचे जटिल ऑपरेशन के लिए एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करने में सक्षम बनाती हैं।
6: भारतीय नौसेना का दूसरा डाइविंग सपोर्ट वेसल है जो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है और अब भारतीय नौसेना को डिलीवर हो चुका है। यह यहाँ मुंबई में पश्चिमी तट पर बेस रहेगा। इसकी खासियत डाइविंग, डीप सी वाटर डाइविंग 300 मीटर तक के लिए, सबमरीन रेस्क्यू DSRV के थ्रू और रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल, ऑल अंडर वाटर स्पेशलाइज्ड ऑपरेशंस हम कैरी आउट कर सकते हैं। किसी भी सबमरीन पनडुब्बी में अगर कोई दिक्कत आ जाती है, नॉट ओनली अर्थ, दूसरे देश की पनडुब्बी में दिक्कत आ सकती है, या हमें अंडर वाटर केबल की सुरक्षा करनी है, कुछ मेंटेनेंस करना है या कुछ रेस्क्यू करना है, तो उसमें ये जहाज कारगर रहेगा। इसमें डायनेमिक पोजिशनिंग क्लास 2 सिस्टम लगा हुआ है जो इस जहाज को 1 मीटर एक्यूरेसी तक पोजिशन होल्ड करने में, चाहे एट सी आपको मिलेगा, विंड्स बहुत स्ट्रांग मिलेंगी, करंट्स आपको बहुत स्ट्रांग मिलेगा, सबको केटर करते हुए जहाज को एक्यूरेटली पोजिशन पे मेंटेन करेगा सो दैट जहाज अपने अंडर वाटर ऑपरेशन को प्रिसाइजली कैरी आउट कर सके।
4: INS निपुण भारतीय नौसेना का निस्तार क्लास का डाइविंग सपोर्ट जहाज है। इसका निर्माण हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम ने किया है। आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत इसके निर्माण में 75% से अधिक स्वदेशी कलपुर्जों और प्रणालियों का इस्तेमाल किया गया है। इस पोत की असली ताकत समुद्र में बहुत ज्यादा लंबे समय तक टिके रहने की है, जो इसे गहरे समंदर के कॉम्प्लिकेटेड अभियानों को पूरा करने में सक्षम बनाता है। इसमें 15 टन की सब सी क्रेन डायनेमिक पोजीशनिंग सिस्टम के साथ ही 1000 मीटर की गहराई तक काम करने में सक्षम रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स तैनात किए गए हैं। INS निपुण में 8 बिस्तर वाला अस्पताल मौजूद है, जिसमें एक ICU, एक ऑपरेशन थिएटर और हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी जैसी सुविधाएं भी हैं, जो इसे गहरे समंदर में गोताखोरी से जुड़ी मेडिकल प्रॉब्लम से निपटने की ताकत देती हैं।
7: ये एक तरह से डीप सी डाइविंग के लिए सपोर्ट जहाज की तरह, जहाँ पर कि एक डीप सी डाइविंग जो कि काफ़ी ज़रूरी है, उसका लॉन्च व्हीकल, उनका साथ साथ में जो डाइवर्स हैं उनको सपोर्ट, सबमरीन रेस्क्यू या गहराई में कोई रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना हो, किसी प्रकार का भी जो समुद्र की बहुत गहराई से जो ऑपरेशन चलाने हैं उसके लिए ये एक प्लेटफॉर्म बनाया गया और जो बहुत ही मददगार साबित होगा।
4: रणनीतिक रूप से भारतीय नौसेना का निस्तार क्लास का ये जहाज बेहद अहम है। इस क्लास का पहला डाइविंग सपोर्ट वेसल INS निस्तार जुलाई 2025 में कमीशन होकर विशाखापट्टनम में पूर्वी समुद्री तट पर तैनात है। अब INS निपुण के मुंबई में पश्चिमी समुद्री तट पर तैनात होने से भारत के दोनों तटों पर एक समान और अभेद सुरक्षा चक्र पूरा हो जाएगा, यानी दोनों तटों पर अभेद सुरक्षा कवच की मौजूदगी। शिवानी शर्मा और मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: बात करेंगे भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की, जिसकी तैयारियों को लेकर श्रद्धालुओं में खजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। जगह जगह जन्मोत्सव की भव्य तैयारियां चल रही हैं। श्री कृष्ण जन्म स्थान से लेकर उनके समर्पित हर मंदिर पूरी तरीके से जगमगा रहे हैं। देश भर के बाजार भी इस विशेष अवसर को लेकर

0: पूरा देश कान्हा के रंग में रंगा नजर आ रहा है। मंदिर दिव्य रोशनी से जगमगा रहे हैं। सजावट तेज गति से आगे बढ़ रही है। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाने के लिए जगह जगह भव्य तैयारियां चल रही हैं। कन्हैया के जन्मस्थान से लेकर अलग अलग शहरों में जन्माष्टमी की रौनक देखने को मिल रही है। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का मुख्य आयोजन उनकी जन्मस्थली मथुरा में होगा। 4 सितंबर को मनाई जाने वाली जन्माष्टमी को लेकर पूरा ब्रज मंडल सज रहा है।
1: ब्रज को सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है, और इस तरह की जो पेंटिंग है ना, वो सारी दीवारों पर बनाई जा रही है। जो दीवार भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि की तरफ जाती है, तो इसमें जो लीला है वो दर्शाया जा रहा है कि भगवान श्री कृष्ण को वासुदेव जी गोकुल लेकर जा रहे हैं। तो ऐसी ही जो लीलाएं भगवान की, जितनी भी लीलाएं भगवान ने ब्रज में की, वो सभी लीलाएं जो प्रमुख मार्ग हैं उन पर सजाई जा रही हैं। करीब 24 चौराहे सजाए जा रहे हैं, गेट बनाया जाएगा, तोरण द्वार बनाए जा रहे हैं, करीब 24 द्वार बनेंगे, 24 चौक चौराहे सजाए जा रहे हैं, और जितनी भी दीवार है जो ब्रज जन्मभूमि की तरफ जाती है, जन्मभूमि के पास का रास्ता है। तो इस तरह की जो सजावट है ना, भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव को मनाने के लिए 4 सितंबर को भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मनाया जाएगा ब्रज में, तो उसकी जो तैयारी है बड़े भव्यता और दिव्यता पर चल रही है और चारों ओर सजावट है।
0: पूरे शहर को लाइटिंग के साथ ही दिव्य रूप से सजाया सवारा जा रहा है।
2: चाहे वृंदावन हो, चाहे मथुरा हो, अन्य हमारे नंदगांव है, बरसाना है, गोवर्धन है, गोकुल है, बलदेव है, सब जगह बहुत ही भव्य और दिव्य तरीके से हम लोग तैयारी कर रहे हैं। 2 तारीख से 5 तारीख तक बहुत ही बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशन में उत्सव की तैयारी चल रही है। और कृष्ण जन्मोत्सव 2026 पे हर चौराहे को हम सजा रहे हैं। देश के विदेश के लोकल कलाकारों से हर चौराहे पर उनकी प्रस्तुतियाँ होंगी। इसके अलावा ड्रोन के माध्यम से पूरा भगवान जी का 4 सितंबर को जो ड्रोन के माध्यम से उनके लीला और उनका जन्मोत्सव पूरे ब्रजवासियों को दिखाया जाएगा, और लगभग 75 लाख के आसपास श्रद्धालुओं के आगमन का यहां हम लोग अनुमान लगा रहे हैं।
0: जन्माष्टमी के अवसर पर पूरे ब्रज में लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, जिनकी सुविधा और सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से पुख्ता व्यवस्था की जा रही है।
3: पूरे क्षेत्र को 7 जोन और 37 सेक्टर्स में विभाजित करके मजिस्ट्रेट्स और पुलिस ऑफिसर्स की ड्यूटी लगाई गई है। 8 कंपनी PAC, 1 कंपनी RAF और फ्लड PAC का भी डिप्लॉयमेंट किया गया है। ड्रोन के माध्यम से निगरानी रखी जाएगी। एक बृहद ट्रैफिक प्लान बनाया गया है, जिसमें कि विशेष करके जो बाहर से आ रहे हैं श्रद्धालु, उनको मालूम रहे कि कहाँ पे पार्किंग्स है, कहाँ पे नो एंट्री है, कहाँ पे वन वे है और कहाँ भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित है। साथ ही साथ हम लोग सोशल मीडिया पर भी निगरानी रख रहे हैं। होल्डिंग एरियाज, PA सिस्टम, CCTV, इनके माध्यम से भीड़ प्रबंधन सुनिश्चित किया जाएगा।
0: भगवान श्री कृष्ण का 5253वां जन्मोत्सव भव्य और दिव्य रूप से मनाने की तैयारियां चल रही हैं।
4: इस वर्ष भगवान कलहंस पुष्प बंगले में विराजमान होंगे, साथ ही पंचरत्नी पोशाक को धारण करेंगे। जो समुद्र मंथन में 14 रत्न मिले थे, उनमें से 5 रत्न उकेरे गए हैं श्री ठाकुर जी की दिव्य पोशाक पर।
0: श्री कृष्ण जन्मभूमि के अलावा देश भर के इस्कॉन मंदिरों में भव्य रूप से जन्माष्टमी मनाने की तैयारी चल रही है। ये तस्वीर दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश स्थित इस्कॉन मंदिर की है, जहां अभी से पूरा मंदिर परिसर रोशनी से नहा रहा है। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को भव्य बनाने के लिए मंदिर परिसर को खास अंदाज में सजाया जा रहा है। इस बार सजावट की थीम मोर पर आधारित रखी गई है।
5: इस साल भगवान को जो सबसे प्रिय है मोर पंख, तो जो थीम है सिंगार और सजावट की वो पीकॉक पे है, मयूर थीम रखा गया है।
0: मंदिर को आकर्षक फूलों और रंग बिरंगी रोशनियों से सजाया जा रहा है। सजावट के लिए देश विदेश से विशेष फूल मंगाए जा रहे हैं। मंदिर परिसर में

0: सजावट का काम लगातार चल रहा है और सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है।
1: देख सकते हैं कि किस तरीके से मंदिर परिसर में जो है आपको तैयारियां होते हुए जो है वो लगातार इसी तरीके से नजर आ जाएगी, चाहे वो इस तरीके से पॉलिश करने का काम हो या फिर इंटेंस को सजाने का काम या फिर रंगोली का काम या फिर इनके भीतर जितनी भी ये लाइट्स जो लगाई गई है उसकी तैयारियों का काम, हर एक तरीके से काम होता हुआ जो है आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा। और 4 सितंबर को जब भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव यहाँ पर मनाया जाएगा तब इस पूरे परिसर में एक अलग ही रौनक जो है वो आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम और जितने भी भक्त यहाँ पर आएंगे उनके लिए व्यवस्था जो है वो की गई है, यहीं से सभी भक्त जो है वो प्रवेश करेंगे। सिक्योरिटी के इंतजाम जो है वो पुख्ता तरीके से किए गए हैं, जगह जगह चप्पे चप्पे पे आपको जो है सीसीटीवी कैमरा नजर आ जाएंगे और 300 के करीब जो है यहाँ पर सीसीटीवी लगाए गए हैं और लगातार इनकी मॉनिटरिंग जो है वो की जा रही है। यहाँ पर उस दिन एम्बुलेंस की व्यवस्था भी की जाएगी, फायर ब्रिगेड्स की भी व्यवस्था की जाएगी, 1000 से ज्यादा जो है यहाँ पर प्राइवेट वॉलंटियर्स जो है वो लगाए जाएंगे, 600 के करीब जो है दिल्ली पुलिस के कर्मी यहाँ पर जो है मौजूद रहेंगे ताकि किसी तरीके से जो भीड़ है जो व्यवस्था है वो ना बिगड़े।
0: भगवान श्री कृष्ण के श्रृंगार से लेकर 1008 प्रकार के भोग अर्पित करने की तैयारी भी यहाँ चल रही है। दिल्ली के द्वारका इलाके में स्थित इस्कॉन मंदिर को भी भव्य रूप से सजाया जा रहा है। इस बार पूरे आयोजन की थीम गोकुल धाम पर आधारित है। भक्त पूरे उत्साह के साथ तैयारियों में जुटे हुए हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण के श्रृंगार और पोशाक से लेकर महाभोग तक पर काम चल रहा है।
2: भगवान का सुबह स्वागत मंगल आरती से करेंगे, सुबह 4:30 बजे सभी के सभी जो श्रद्धालु हैं वो मंगल आरती के लिए यहाँ पे उपस्थित होंगे और भगवान का स्वागत करेंगे। एंड उसके बाद फिर दिन में सारी की सारी एक्टिविटीज स्टार्ट हो जाएंगी। सुबह भगवान का जो इवन जो ड्रेस है जो भगवान सुबह दर्शन देंगे वो भगवान 7:30 बजे दर्शन देंगे। एंड रात को भी भगवान का जब अभिषेक होगा तो जो स्पेशल ड्रेस भगवान के लिए जो बनाया गया है वो उस ड्रेस को बनाने में ही 1.5 महीने का समय लगा है। हम इस बार भगवान को लगभग 100 बार 56 भोग लगाएंगे।
0: झांसी भी कान्हा के रंग से सराबोर है। यहाँ हरिनाम संकीर्तन यात्रा की दिव्य छटा देखने को मिली, साथ ही इस यात्रा के जरिए लोगों को इस्कॉन मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन में श्रद्धालुओं को शामिल होने का आमंत्रण भी दिया गया। यहाँ के इस्कॉन मंदिर में 2 से 4 सितंबर तक होने वाले जन्माष्टमी महोत्सव के आयोजन की तैयारी की जा रही है।
3: भव्य हरिनाम संकीर्तन यात्रा श्री श्री निताई गौर सुंदर के श्री विग्रह हैं, शिल प्रभुपाद जी का श्री विग्रह है। ये संपूर्ण शहर क्षेत्र में भ्रमण कर रहा है लोगों को ये जागरूक करने के लिए कि सुंदर कथा का आयोजन हो रहा है इस्कॉन मंदिर प्रांगण में और उसके बाद 3 दिवसीय क्राफ्ट मेला मैदान में भव्य जन्माष्टमी का महोत्सव होगा। 2 तारीख को युवाओं का महोत्सव यूथ फेस्टिवल होगा, 3 तारीख को सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और 4 तारीख को भव्य जन्माष्टमी महोत्सव मनाया जाएगा।
0: कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर बाजार भी गुलजार है। ये तस्वीर महाराष्ट्र के अमरावती की है जहां ये दुकान पूरी तरह कान्हा के जन्मोत्सव के लिए सजी हुई है। अमरावती को भगवान कृष्ण और रुक्मणी की कथा से विशेष रूप से जोड़ा जाता है, इसलिए जन्माष्टमी से पहले यहां के बाजार भी पूरी तरह कृष्णमय हो चुके हैं। जवाहर गेट की रंगारी गली में लड्डू गोपाल के लिए छोटे बड़े पोशाक, मुकुट, मोरपंख, बांसुरी और झूले तो है ही, लेकिन इस बार कुछ ऐसी छोटी छोटी चीजें भी बाजार में आई हैं जो आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। कान्हा के लिए छोटी चाय, बिस्कुट, फलहार, मिनी बांसुरी और यहाँ तक कि मोबाइल फोन भी यहाँ मौजूद है।
4: यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये पूरी तरीके से दुकान जो है वो कान्हामय हुई है।
5: आज का इस साल का जो हमारा ट्रेंडिंग है वो है हमारा सिलिकॉन कृष्णा जी, हमारे बाल गोपाल जी। बाल गोपाल जी इस बार काफी ट्रेंडिंग में है, इसमें हमारे पास में अलग अलग साइज आई है, छोटे बाल गोपाल है, बड़े बाल गोपाल है, फुल बंगला है, जैसे हम देख सकते हैं फुल बंगला है, मोती बंगला है, बाद में बांसुरी के अलग अलग प्रकार है, छोटी से लेके बड़ी है, राधा नाम से सुसज्जित मोती वर्क कुंदन वर्क के साथ में, छोटे मोटे मुकुट कुंदन जड़ाऊ वर्क के साथ में, काफी सुंदर नकाशी वर्क के साथ। कान्हा जी को रात को हम सुलाते हैं तो उनको मच्छर नहीं काटने चाहिए, तो उनके लिए हमने मच्छिया का यहाँ पे इस्तेमाल किया है नेट का प्रोटेक्शन के साथ में। साथ ही साथ यहाँ पे नौका विहार करने के लिए ठाकुर जी राधा जी के साथ जाने के लिए जन्म की एक लीला भी यहाँ पे प्रस्तुत की गई है।
4: कौंडण्यपुर से ही कृष्ण ने जो है रुक्मिणी को हर लिया था, इसलिए यहाँ पर जो है यहाँ का जो महत्व है वो बड़ा है।
0: हर तरफ अभी बस जन्माष्टमी की दिव्य छटा बिखरी हुई दिख रही है और 4 सितंबर को कृष्ण जन्मोत्सव पर तो ये कहीं अधिक आकर्षित करने वाली होगी। पथुरा से मदन गोपाल शर्मा, झांसी से अजय झा, अमरावती से धनंजय साबले, दिल्ली से मनीषा लड्डा और आशुतोष कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: नासा ने रोमन स्पेस टेलीस्कोप को फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। यह टेलीस्कोप जो है धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर L2 पर स्थापित किया जाएगा, जहां से ये ब्रह्मांड के बड़े हिस्से का सर्वे करेगा। ये टेलीस्कोप जो है किसी सामान्य सैटेलाइट की तरह पृथ्वी की परिक्रमा नहीं करेगा। इसे सूर्य और पृथ्वी के L2 एरिया के आसपास चुनी गई ऑर्बिट में रखा जाएगा। यहां से ये धरती पर अंतरिक्ष की ली गई तस्वीरें भेजेगा। 3, 2, 1, ignition and lift off. Go Falcon Heavy and go Roman Space Telescope. ये अंतरिक्ष की अनंत गहराइयों में झांकने की कोशिश है। ये वो पल है जब नासा ने अमेरिका के फ्लोरिडा में मौजूद कैनेडी स्पेस सेंटर से नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च किया। इंसान की बनाई ये विशेष आंख पृथ्वी से करीब 15 लाख किलोमीटर दूर अंतरिक्ष के विस्तार को समझने की कोशिश करेगी। भारतीय समय के अनुसार रविवार शाम 4:57 पर रोमन स्पेस टेलीस्कोप को फाल्कन हेवी रॉकेट के जरिए स्पेस में लॉन्च किया गया। इसे अंतरिक्ष में अपनी मंजिल तक पहुंचने में करीब 1 महीने का समय लगेगा। खास बात यह है कि रोमन टेलीस्कोप किसी सामान्य सैटेलाइट की तरह पृथ्वी की परिक्रमा नहीं करेगा। इसे सूर्य और पृथ्वी के L2 एरिया के आसपास चुनी गई ऑर्बिट में रखा जाएगा, जहां से ये इंसानी दुनिया को अंतरिक्ष के विशाल नजारे की तस्वीर भेजेगा। दिलचस्प ये भी है कि रोमन टेलीस्कोप स्पेस में पहुंचते ही तुरंत काम शुरू नहीं करेगा, पहले ये 3 महीने की कमिशनिंग प्रक्रिया पूरी करेगा। इस दौरान इंजीनियर टेलीस्कोप के सिस्टम और उपकरणों को सक्रिय करने के साथ उनकी जांच करेंगे। सभी सिस्टम ठीक से काम करने की पुष्टि होने के बाद इसे वैज्ञानिक अभियानों के लिए तैयार किया जाएगा। नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप को ब्रह्मांड में किसी एक खगोलीय पिंड पर फोकस करने के बजाय अंतरिक्ष के बेहद बड़े हिस्से का सर्वे करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका 2.4 मीटर का प्राइमरी मिरर आकार में हब्बल स्पेस टेलीस्कोप के मिरर के बराबर है, लेकिन ये एक बार में हब्बल के मुकाबले 100 गुना बड़े एरिया का सर्वे कर सकता है। इस मिशन का मकसद ब्रह्मांड की 2 बड़ी पहेलियों डार्क एनर्जी और डार्क मैटर की स्टडी करना है। इसके अलावा ये आकाश गंगाओं के विकास को समझने और हमारे सौरमंडल से बाहर मौजूद ग्रहों यानी एक्सोप्लैनेट्स की खोज में भी मदद करेगा। रोमन स्पेस टेलीस्कोप से जुड़ा सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि ये सबसे कम समय में ब्रह्मांड के विशाल हिस्से से डेटा जुटा सकेगा। इससे ब्रह्मांड का विशाल नक्शा तैयार होने की उम्मीद है, जिससे स्पेस साइंस से जुड़े कई जटिल सवालों के जवाब दुनिया को मिल सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
10: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
11: गुड न्यूज टुडे।

0: कौन सा योग आदमी की वाणी को बहुत अच्छा बना देता है? चंद्रमा का कौन सा योग व्यक्ति को धन का बड़ा लाभ करवाता है? और चंद्रमा का कौन सा योग व्यक्ति के जीवन की हर समस्या को दूर कर देता है? कौन से हैं चंद्रमा के शुभ योग और क्या है इनका प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
3: किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में 26वें SCO समिट का भव्य आगाज, तिरंगे झंडे के साथ भारतीय दल के प्रधानमंत्री मोदी ने हाथ हिलाकर किया अभिवादन, शांति विकास और समृद्धि पर मंथन। तमाम वैश्विक चुनौतियों के बीच देश की GDP ग्रोथ बरकरार, वित्तीय वर्ष 2026 की पहली तिमाही 7.8% रही विकास दर, RBI के अनुमान से भी शानदार रहे आंकड़े। मानसूनी बारिश के बीच भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने को मर रहे हैं श्रद्धालु, 30 अगस्त तक 16,75,000 से ज्यादा ने पूजा अर्चना की, पवित्र हेमकुंड साहिब में भी लगा भक्तों का तांता। मुंबई में आगामी गणेश उत्सव की भव्य तैयारियां, साकनाकी के महाराजा की 48 फीट ऊंची प्रतिमा बनी आकर्षण का केंद्र, बप्पा के दरबार की सजावट का काम तेज। नौसेना की ताकत में हुआ इजाफा, मुंबई में दूसरा स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट पोत निपुण हुआ कमीशन, समुद्र में गोताखोरी और जटिल अभियानों को देगा अंजाम। अर्जेंटीना के दिग्गज खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने इंटरनेशनल फुटबॉल से लिया संन्यास, 20 साल लंबे करियर में 207 मैच खेलकर दागे 125 गोल, अपनी कप्तानी में अर्जेंटीना को बनाया विश्व विजेता।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। तो जीएनटी स्पेशल में आज बात कृष्ण जन्माष्टमी की। देश भर में जन्माष्टमी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। शहर शहर बेसब्री के साथ कान्हा के आने का इंतजार हो रहा है। कृष्ण जन्मोत्सव का सबसे गाढ़ा रंग चढ़ा है देश भर में मौजूद कन्हैया के भव्य मंदिरों पर, मथुरा हो या फिर वृंदावन, दिल्ली हो या द्वारका हो। शहर शहर कृष्ण धामों में जन्माष्टमी के रंग बिखरे हैं। जीएनटी स्पेशल में आज आपको लिए चलेंगे देश के भव्य कृष्ण मंदिरों में, दिखाएंगे तैयारी कृष्ण जन्मोत्सव की। लेकिन सबसे पहले आपको लिए चलते हैं राजधानी दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में। कृष्ण भक्ति को समर्पित इस्कॉन के मंदिरों में हर साल बड़े पैमाने पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश इलाके में मौजूद इस मंदिर में जोर शोर से तैयारी की जा रही है।

0: रहे हैं कान्हा। प्रकट होने वाले हैं नंदलाल। भक्तों को दर्शन देने आने वाले हैं लड्डू गोपाल। 4 सितंबर को कृष्ण जन्माष्टमी पर्व मनाया जाएगा, तो देश भर के कृष्ण मंदिरों में जन्माष्टमी की तैयारियां अंतिम दौर में हैं। कृष्ण धाम रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठे हैं। ये तस्वीरें दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश में मौजूद इस्कॉन मंदिर की हैं। भाद्रपद माह की अष्टमी तिथि इस मंदिर के लिए साल का सबसे खास दिन होता है। हर साल यहां भव्य तरीके से जन्माष्टमी उत्सव का आयोजन होता है। अब की बार भी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। हर साल इस मंदिर में श्री कृष्ण जन्मोत्सव की तैयारियां कई हफ्तों पहले ही शुरू कर दी जाती है। इस वर्ष भी कान्हा का जन्मोत्सव मनाने के लिए मंदिर को शानदार तरीके से सजाया जा रहा है।
1: इस वक्त मैं मौजूद हूं ईस्ट ऑफ कैलाश स्थित इस्कॉन मंदिर के भव्य परिसर में, जहां पर तस्वीरें मेरे पीछे बता रही कि किस तरीके से जन्माष्टमी की जो तैयारियां हैं वो अपने स्तर पर है। आप देख सकते हैं कि आपको यहां पर भक्तों की अच्छी खासी भीड़ जो है वो नजर आ जाएगी, और साथ ही 4 तारीख को जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा, और उससे पहले मंदिर को सजाने का जितना भी काम है वो लगातार यहां पर जो है वो किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मंदिर में, आपको सबसे पहले तो लाइट्स में दिखा देती हूँ आपके, यहां पर और भी लाइट्स का काम जो है वो लगातार इसी तरीके से जारी, ताकि मंदिर जो है वो अलग से ही जगमगाता हुआ 4 तारीख को जो है वो नजर आए। और उसके बाद अगर मैं मंदिर परिसर में आपको भवन की तस्वीर दिखाऊं, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको श्रृंगार होता हुआ जो है वो नजर आ जाएगा।
0: श्री कृष्ण जन्मोत्सव के पावन अवसर पर इस्कॉन मंदिर को देश के अलग अलग हिस्सों से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी मंगाए गए खास किस्म के फूलों से सजाया जाता है। साथ ही साथ पूरे मंदिर परिसर में रंग बिरंगी सुंदर लाइटिंग भी की जाती है। आपको बता दें कि यहां अब की बार जन्माष्टमी उत्सव पर सजावट की थीम भगवान श्री कृष्ण के प्रिय मोर पर आधारित है, यानी मोर पंख की बनावट और रंगों को केंद्र में रखकर ही उत्सव के लिए सजावट की जाएगी। जन्माष्टमी के लिए थीम पर आधारित पोशाक खास तौर पर वृंदावन से मंगवाई जा रही है।
2: इस साल भगवान को जो सबसे प्रिय है मोर पंख, तो जो थीम है सिंगार और सजावट की वो पीकॉक पे है, मयूर थीम रखा गया है, और देश विदेश से लाए हुए फूल उसे सजाएगा, जैसे थाईलैंड और कर्नाटक बंगलोर से फूल मंगाए जा रहे हैं, उससे सजावट की जाएगी। और वृंदावन से भगवान का श्रृंगार के लिए जितने भी ज्वेलरी और ड्रेस है वहाँ से आ रहा है।
0: ईस्ट ऑफ कैलाश के इस्कॉन मंदिर में कृष्ण जन्मोत्सव पर भगवान को केक का भोग लगाने की भी परंपरा है। अब की बार भी यहां भगवान के लिए विशाल केक तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा बाल गोपाल को 1008 प्रकार के व्यंजन का भोग भी लगाया जाएगा।
2: केक का भोग लगेगा ठाकुर जी को, और 1008 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया जाएगा इस्कॉन ईस्ट ऑफ कैलाश में। और सुबह 10 बजे के पहले से कुकिंग स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि भगवान का किचन ही अलग है, तो जो दीक्षित हैं, ब्राह्मण दीक्षित हैं और दीक्षित माता जी प्रभु जी लोग हैं, वो मिल करके बहुत बड़ा प्रसादम हाल छोटा वहाँ पे कुकिंग आरम्भ हो जाएगी। और चूँकि भगवान का भोग 12 बजे लगेगा, तो तब तक कुकिंग होती रहे और भगवान जी को भोग लगता रहेगा।
0: मंदिर परिसर में उत्सव की तैयारी अब अंतिम चरण में है। जन्माष्टमी से पहले मंदिर में रंग बिरंगे विशाल टेंट लगाए जा रहे हैं, ताकि उत्सव में भारी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं के बैठने और भजन कीर्तन में सुविधा हो। एनसीआर और आसपास के इलाकों से लाखों की संख्या में भक्त और श्रद्धालु जन्माष्टमी मनाने और भगवान के दर्शन के लिए यहां पहुंचते हैं। लिहाजा व्यवस्थाओं के साथ साथ खयाल सुरक्षा के इंतजामों का भी रखा जा रहा है।
2: दर्शनार्थी आएंगे श्रद्धालु, उनकी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की व्यवस्था की जा रही है। तो गेट नंबर 1 से जो आम श्रद्धालु आम जनता है वो प्रवेश करेंगे, और गेट नंबर 7 से जो हमारे डोनर हैं वे VIP हैं, जैसे मिनिस्टर जो गणमान्य व्यक्ति हैं हर फील्ड के वो आएंगे, और दिल्ली पुलिस के 1200-600 जवान लगेंगे दिल्ली पुलिस के, अब 1200 प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड रहेंगे, उनकी व्यवस्था चाक चौबंद रहेगी, और 4 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी होंगी और 8 एम्बुलेंस होंगी और अच्छे डॉक्टरों की टीम रहेगी इमरजेंसी के लिए। तो इस तरह से व्यवस्था रहेगी, और अनुरोध है कि जो मैं श्रद्धालु हैं वो कोई बैग और ऐसी चीज़ें न लेके आए ताकि किसी प्रकार का सिक्योरिटी जांच में दिक्कत आए, और ये बहुत आवश्यक है।
0: राजधानी दिल्ली में वैसे तो राधा कृष्ण जी को समर्पित इस्कॉन के कई मंदिर हैं, लेकिन दक्षिण दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश इलाके में इस मंदिर की बात ही अलग है। श्री श्री राधा पाटसारथी मंदिर के नाम से इस मंदिर की स्थापना 1998 में की गई थी। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की मनमोहक प्रतिमा स्थापित है। कृष्ण भक्तों के लिए ये मंदिर आस्था का बड़ा केंद्र है। खास तौर से हर साल जन्माष्टमी के अवसर पर यहाँ होने वाला भव्य उत्सव श्रद्धालुओं को विशेष रूप से आकर्षित करता है। इस बार भी तैयारियाँ जोरों शोरों से चल रही है, तो उम्मीद है कि यहाँ पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन में कृष्ण भक्ति की अनूठी झांकियाँ देखने को मिलेंगी। दिल्ली से आशुतोष कुमार और मनीषा लाडा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: दिल्ली से अब रुख करते हैं भारत के उस भाग का जहां की धरती ने कृष्ण लीलाओं को अपनी आंखों से देखा है, जिसकी मिट्टी में कभी बाल कृष्ण खेला करते थे, जहां यमुना के तट पर सखाओं संग खेलते कान्हा का बचपन बीता, ब्रज की वो धारा जिसके रज रज पर आज भी श्याम रंग चढ़ा है। श्री कृष्ण का जन्मोत्सव ब्रज के लिए साल का सबसे बड़ा त्यौहार है। अपने कान्हा के जन्मोत्सव जैसे ही ब्रज मनाता है, वैसे ही वाकई दुनिया में कोई और मना नहीं सकता। कृष्ण जन्मभूमि से लेकर वृंदावन के तमाम मंदिरों में इस समय जन्माष्टमी की तैयारी पूरी हो चुकी है। तो चलिए आपको बताते हैं कि इस जन्माष्टमी पर कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में क्या कुछ खास होने जा रहा है, और मथुरा में कैसी है तैयारी जन्मोत्सव की।

0: ब्रजभूमि में इस समय चारों तरफ सिर्फ एक ही गूंज है, हाथी घोड़ा बाल की जय कन्हैया लाल। भगवान श्री कृष्ण के 5253वें जन्मोत्सव को लेकर कान्हा की नगरी मथुरा और लीला भूमि वृंदावन सजाए जा रहे हैं। द्वापर युग की वही दिव्यता, वही भव्यता और वही भक्ति एक बार फिर कान्हा के जन्मस्थली मथुरा में जीवंत हो उठी है।
1: भगवान श्री कृष्ण के 5253वें जन्मदिन के लिए पूरे ब्रज को सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है और इस तरह की जो पेंटिंग है ना वो सारी दीवालों पर बनाई जा रही है, जो दीवाल भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि की तरफ जाती है। तो इसमें जो लीला है वो दर्शाया जा रहा है कि भगवान श्री कृष्ण को वासुदेव जी गोकुल लेकर जा रहे हैं। तो ऐसी ही जो लीला है भगवान की, जितनी भी लीलाएं भगवान ने ब्रज में की वो सभी लीलाएं जो प्रमुख मार्ग हैं उन पर सजाई जा रही हैं। करीब 24 चौराहे सजाए जा रहे हैं। इस तरह की जो सजावट का काम है ये चल रहा है पूरे ब्रज में, जगह जगह देखेंगे इस तरह ये गेट बनाया जाएगा, तोरण द्वार बनाए जा रहे हैं, करीब 24 द्वार बनेंगे, 24 चौक चौराहे सजाए जा रहे हैं और जितनी भी दीवाल है जो ब्रज जन्मभूमि की तरफ जाती है, जन्मभूमि के पास का रास्ता है। तो इस तरह की जो सजावट है ना भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव को मनाने के लिए, 4 सितंबर को भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मनाया जाएगा ब्रज में, तो उसकी जो तैयारी है बड़े भव्यता और दिव्यता पर चल रही है।
0: इस साल 4 सितंबर 2026 को मध्य रात्रि में होने वाले मुख्य जन्मोत्सव को लेकर तैयारियां अब अंतिम चरण में हैं। 4 सितंबर को रात 11:56 पर शुरू होने वाले निषेध काल पूजा मुहूर्त के लिए मथुरा के मंदिर चौक चौराहों को रोशन किया जा रहा है। श्री कृष्ण जन्म स्थान पर इस बार श्रद्धालुओं को ठाकुर जी के एक बेहद अलौकिक रूप के दर्शन होंगे। जन्माष्टमी के पावन अवसर पर अब की बार कन्हैया कलहंस पुष्प बंगले में विराजमान होंगे, इसीलिए जन्मस्थान के अंदर के पुष्प बंगलों को दुर्लभ पत्र पुष्प वृक्षों और विशेष रूप से हंसों की दिव्य आकृतियों से सजाया जा रहा है।
2: भगवान श्री कृष्ण के 5253वें जन्मदिन को जन्मोत्सव को बहुत ही भव्यता और दिव्यता के साथ मनाया जाएगा। तैयारियां बहुत जोर शोर भाव से चल रही है। आने वाले श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के दर्शन सुव्यवस्थित और सुंदर रंग से कर पाए ऐसा संस्थान का प्रयास है। इस वर्ष भगवान कलहंस पुष्प बंगले में विराजमान होंगे। अंदर के पुष्प बंगलों को जो बना रहे हैं उसमें पत्र पुष्प वृक्ष आदि आकृति उकेरी जाएंगी और हंस, इस बार हंस आकृति जो है वह पुष्प बंगले की शोभा होंगी। बाहर बहुत ही दिव्य और भव्य विद्युत सजावट की जा रही है। निश्चित रूप से सज्जा नैना विराम होगी और श्रद्धालु परिसर में प्रवेश करने से पूर्व ही ऐसी सुंदर दिव्य छटा को देखकर अभिभूत हो उठेंगे ऐसा हमारा विश्वास है।
0: इसके साथ ही भगवान कृष्ण अब की बार जन्मोत्सव पर बेहद दुर्लभ पंचरत्नी पोशाक धारण करेंगे, जिस पर समुद्र मंथन से निकले 14 रत्नों में से 5 विशेष रत्नों को उकेरा गया है।
2: पंचरत्नी पोशाक को धारण करेंगे, जो समुद्र मंथन में 14 रत्न मिले थे उनमें से 5 रत्न उकेरे गए हैं श्री ठाकुर जी की दिव्य पोशाक पर। ठाकुर जी को इस वर्ष काशी और अयोध्या, श्री राम जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ धाम से प्रसाद आ रहे हैं, उनको भव्य और दिव्य शोभा यात्रा के रूप में श्री के जन्म स्थान में प्रवेश कराया जाएगा, श्री ठाकुर जी को अर्पित किया जाएगा।
0: यही नहीं, ब्रज में इस बार जन्मोत्सव के मौके पर काशी मथुरा और अयोध्या के दिव्य त्रिवेणी का महासंगम नजर आने वाला है। काशी विश्वनाथ धाम से ठाकुर जी के लिए दिव्य वस्त्र, फल, सुगंधित द्रव्य और मिठाइयां भेजी जा रही हैं। वहीं अयोध्या की श्रीराम जन्मभूमि से लड्डू गोपाल के लिए लड्डू, फल, मेवे और महाभिषेक की पवित्र सामग्री आ रही है। इन सभी प्रसादों को एक भव्य और दिव्य शोभा यात्रा के रूप में श्री कृष्ण जन्म स्थान में प्रवेश कराया जाएगा। यानी मथुरा में इस बार की जन्माष्टमी केवल एक उत्सव नहीं बल्कि पूरी सनातन परंपरा के एकाकार होने का महापर्व बनने जा रही है।
2: काशी मथुरा अयोध्या सनातन की आत्मा है। राम कृष्ण और शिव को यदि अलग कर दे तो सनातन आत्मा विहीन है। तो इस वर्ष श्रद्धालुओं को काशी मथुरा अयोध्या इन 3 विशिष्ट पुरियों का जो संगम भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर उपस्थित होगा उसके अवगाहन और दर्शन का सुअवसर भी मिलेगा।
0: मथुरा श्री कृष्ण की जन्मभूमि है तो वृंदावन उनकी बाल लीलाओं की भूमि है, इसलिए मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी का उत्सव सबसे अलग होता है। इस बार भी ब्रज में कृष्ण जन्मोत्सव भव्य होगा, विराट होगा। 4 सितंबर की मध्य रात्रि को श्री कृष्ण जन्मभूमि में बाल गोपाल का पंचामृत अभिषेक किया जाएगा, उन्हें विशेष 56 भोग अर्पित किया जाएगा। बाल गोपाल के जन्म पर ब्रज से उठी कृष्ण भक्ति की लहर में सारा संसार आकंठ डूबा नजर आएगा। मथुरा से मदन गोपाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियां ना सिर्फ देश के कृष्ण मंदिरों में दिखाई दे रही हैं, बल्कि बाजार भी जन्माष्टमी पर्व के लिए सज चुके हैं। लड्डू गोपाल की मूर्तियां, बाल गोपाल के झूले और पोशाक से लेकर मुरली और माला तक बाजार में बिक रहे हैं। लोग भी जन्माष्टमी से जुड़ी खरीदारी में जोर शोर के साथ जुटे हुए हैं।

0: आने वाला है जन्माष्टमी का त्योहार, सज गए हैं बाजार एक से बढ़कर एक मनमोहक लड्डू गोपाल और उनकी सुंदर सुंदर पोशाक। मुरली से लेकर माला तक, झूले से लेकर पालना तक, मुकुट से लेकर मटकी तक, सब कुछ बिक रहा है बाजार में। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के अमरावती से आई हैं, जहां श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर बाजारों में रौनक नजर आने लगी है।
1: जन्माष्टमी आने वाली है, उससे पहले जो है महाराष्ट्र समेत देश के अलग अलग इलाकों में जो है कृष्ण भगवान के अलग अलग वेराइटीज के जो झूले है, उनके ड्रेस है, वो उनके बाजार जो है फटे पड़े है। हम फिलहाल अमरावती के जवाहर गेट के अंदर जो रंगारी गली है वहां पर जवर स्टोर में है, जहां पर आप देख सकते हो कि ये पूरी तरीके से दुकान जो है वो कान्हामय हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि सबसे पहले कान्हा को सबसे प्यारा लगने वाला जो है वो दही है, माखन है। वो माखन जो है, माखन जिस से चुराए जाते थे, वो हंडी यहाँ पर है।
0: बदलते दौर के साथ बाजार में नए नए ट्रेंड की कई चीजें भी जन्माष्टमी पर्व के लिए मौजूद हैं, जो इस पर्व में चार चांद लगा देती हैं। दुकानदारों का कहना है कि इस बार कार्टून कढ़ाई, राजबाड़ी और सूरत से आई पोशाकें ग्राहकों को खूब पसंद आ रही हैं। इनमें आकर्षक डिजाइन के साथ बारीक कढ़ाई और रंगों की विविधता देखने को मिल रही है।
2: इस बार की काफी ट्रेंडिंग में है। इसमें हमारे पास में अलग अलग साइज आई है, छोटे बाल गोपाल है, बड़े बाल गोपाल है, फुल बंगला है, जैसे हम देख सकते हैं फुल बंगला है, मोती बंगला है, बाद में बांसुरी के अलग अलग प्रकार है, छोटे से लेके बड़ी है, राधा नाम से सुसज्जित मोती वर्क, कुंदन वर्क के साथ में छोटे मोटे मुकुट, कुंदन जड़ाऊ वर्क के साथ में काफी सुंदर नकाशी वर्क के साथ इस बार बाजार पूरा हमारा राधा कृष्णमयी हो चुका है। छोटे से उनकी रासलीला करने के लिए डांडिया है, छोटे से मृदंग है, छोटे से पैरोट है, छोटे सा उनका मोबाइल फोन है जिससे वो राधा से बात कर सकते हैं, छोटे से साइकिल है, छोटे से उनके लिए टिफिन बॉक्स है, छोटे से उनके लिए अमृत है, जैसे जलेबी हो गया, फाफड़ा हो गया, या फिर उनके लिए चाय बच्ची हो गई है,
3: चाय बिस्किट भी है,
2: कॉफी भी है।
0: जन्माष्टमी का पर्व जितने ही उत्साह और उमंग के साथ मंदिरों में मनाया जाता है, उसी तरह लोग अपने अपने घरों में भी हर्षोल्लास के साथ जन्माष्टमी मनाते हैं। ऐसे में घरों की झांकी सजाने के लिए कृत्रिम फूलों की माला, झालर, लाइट और अन्य सजावटी सामान भी बाजार में मौजूद हैं।
2: ये जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये कृष्णा जी के जो सेवादार होते हैं, जैसे एक द्वारपाल हो गया, एक वहाँ पे हवा की मतलब पंखी की सेवा दे रहा है, एक वहाँ पे आरती की सेवा दे रहा है, एक वहाँ पे पनिहारी की सेवा दे रहा है, इस प्रकार अलग अलग यहाँ पे सेवादार है।
1: और
2: पीछे आप जो देख रहे हो, यहाँ पे जो आपने हमें पूछा है, ये सारे उनके जन्म की लीला है,
1: पूरी जन्म की लीला
2: है। जी, ये जन्म की सारी लीला है, जन्म से आज तक उन्होंने जो जो किए है, जैसे जेल का हो चुका है, जेल में अलग से दो प्रकार के कटआउट आ चुके हैं, बाद में माखन की जो वो लीला कर रहे हैं, माखन के लीला के साथ में गोपी जो कुएं पे जाती है पानी भरने के लिए, उसकी एक अलग से लीला है, बाल सखाओं के साथ में जो कमल पे बैठकर वो लीला करते हैं, वैसी लीला है।
0: श्री कृष्ण जन्माष्टमी सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि ये जन जन की अगाध आस्था, भक्ति और प्रेम का महापर्व है, जिसे मनाने के लिए लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अमरावती से धनंजय साबले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: राजधानी दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश इस्कॉन की तस्वीरें अब से कुछ देर पहले हमने आपको दिखाई। अब आपको लेकर चलते हैं दिल्ली के द्वारका में नए इस्कॉन मंदिर में, जहां श्री कृष्ण जन्माष्टमी की भव्य तैयारियां की जा रही हैं। मंदिर परिसर को गोकुल थीम पर सजाया जा रहा है। मंदिर की सजावट से लेकर भगवान के श्रृंगार तक हर चीज में श्री कृष्ण की लीलाओं और गोकुल की झलक दिखाई देने वाली है। भगवान श्री कृष्ण के लिए यहां अब की बार खास पोशाक बनवाई गई है, जिसे तैयार करने में करीब 1.5 महीने का वक्त लगा है। तो वहीं बालकृष्ण के लिए बाहुबली केक भी तैयार किया जा रहा है।

0: जन्माष्टमी के त्यौहार में बस अब कुछ ही दिन बाकी है और ऐसे में श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को लेकर जो राजधानी दिल्ली में द्वारका स्थित इस्कॉन मंदिर में तैयारियां जो है वो जोरों शोरों पर है। एक बार तस्वीरें दिखा देती हूँ, इस्कॉन मंदिर की मैं तस्वीरें दिखा रही हूँ। नया मंदिर जो है वो बना है और यहाँ पर पहली बार जो है जन्माष्टमी जो है इस बारी की जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मंदिर अभी भी आपको जो है यहाँ पर बहुत सारी जो काम है जो तैयारियां हैं वो होनी बाकी है, लेकिन 4 तारीख के लिए जो है ये मंदिर पूरी तरीके से अपने अंतिम रूप में इस वक्त आपको नजर आ जाएगा। चाहे साज सज्जा की बात की जाए, प्रसादम की बात की जाए, जो भक्त यहाँ पर आएंगे उनके लिए जिस तरीके की व्यवस्था की जाए, हर तरीके से जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर होती हुई आपको नजर आ जाएगी। हमारे साथ इस वक्त प्रभु अच्युता आनंद दास जी भी इस वक्त मौजूद है। हरे कृष्ण प्रभु जी, सबसे पहले तो मैं तैयारी की बात करूँ क्योंकि इस वाले इस्कॉन मंदिर में पहली बार जो है जन्माष्टमी मनाई जाएगी, तो भव्य तरीके से इस बार की हम उम्मीद कर सकते हैं?
1: जी हाँ, जरूर, इस साल हम बहुत ही भव्य रूप से तैयारी मना रहे हैं। पिछली बार जो हमारा इवन जो पंडाल का साइज था उससे भी हमने 1.5 गुना बड़ा जो पंडाल है वो लगाया है, ताकि भगवान का जो स्वागत है, भगवान का जो जन्मदिन है, और भी ज़्यादा अच्छे से हम मना सकें। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि भगवान का सुबह स्वागत मंगल आरती से करेंगे। सुबह 4:30 बजे सभी के सभी जो श्रद्धालु हैं वो मंगल आरती के लिए यहाँ पे उपस्थित होंगे और भगवान का स्वागत करेंगे। एंड उसके बाद फिर दिन में सारी की सारी एक्टिविटीज स्टार्ट हो जाएंगी। सुबह भगवान का जो इवन जो जो ड्रेस है जो भगवान सुबह दर्शन देंगे वो भगवान 7:30 बजे दर्शन देंगे। एंड रात को भी भगवान का जब अभिषेक होगा तो जो स्पेशल ड्रेस भगवान के लिए जो बनाया गया है वो उस ड्रेस को बनाने में ही 1.5 महीने का समय लगा है। जो रुक्मिणी द्वारकाधीश का जो पूरा का पूरा जो ड्रेस है या पोशाक कहते हैं जिसे, तो उसको बनाने में हमने पूरा 1.5 महीने का समय लगाया और बहुत ही डेडिकेशन के साथ जो हमारे डिवोटी हैं उन्हीं ने ये ड्रेस को डिज़ाइन किया पूरे भक्तिभाव से।
2: जन्माष्टमी पे हम भगवान के लिए स्पेशल बना रहे हैं। आप सबको पता है अभी जो

0: जन्माष्टमी के मौके पर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन और उनके श्रृंगार की तैयारी भी जो है वो पूरी भक्ति भाव के साथ चल रही है। इस्कॉन मंदिर में इस वक्त मौजूद है और मैं तस्वीरें दिखा देती हूँ कि किस तरीके से आपको यहाँ पर महिलाओं की एक मंडली जो है वो नजर आ जाएगी और लगातार वो इसी तरीके से जो है श्रृंगार की तैयारियों में व्यस्त नजर आएगी। बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो यहाँ एक साथ बैठकर अपने हाथों से भगवान श्री कृष्ण के लिए फूलों की मालाएं जो है वो तैयार कर रही है। आप देख सकते हैं कि आपको रंग बिरंगे फूल जो है वो यहाँ पर नजर आ जाएंगे और किस तरीके से किसी के हाथ में आपको फूल नजर आएंगे तो किसी के हाथों में जो है आपको फूलों की माला बड़े खूबसूरती के साथ पिरोते हुए जो महिलाएं हैं वो नजर आ जाएगी और चेहरे पे सिर्फ आपको भक्ति भाव नजर आएगा हर एक महिला के चेहरे पर।
1: अष्टमी के लिए ड्राई फ्रूट की माला बनेगी, एक दिन पहले बनेगी और फूलों की और सुंदर माला बनाएगी
0: और सुंदर और भी ज्यादा सुंदर। तो मालाएं जो है वो रोज बन रही है, लेकिन अगर हम जन्माष्टमी के दिन की बात करें तो उस दिन जो है और भी ज्यादा मालाओं को सुंदर बनाने की तैयारी जो है वो की जा रही है। आप देख सकते हैं कि महिलाओं की अच्छी खासी जो यहाँ पर मंडली है आपको बैठी हुई नजर आ जाएगी और बड़े ही प्रेम के साथ भक्ति के साथ भावनाओं के साथ जो है ये मालाएं जो है पिरोई जा रही है। तो रक्षा बल की बात करें तो चाहे मंदिर के तरफ से वॉलंटियर्स हो या फिर बाहर पुलिसकर्मी की व्यवस्था की बात की जाए, हर तरीके से इंतजाम जो है वो पुख्ते किए गए ताकि इस बार का जो जश्न है, जो इस बार का जन्मोत्सव है, वो वाकई में भव्य हो सके, बेहद ही खास हो सके। तो हम भी इंतजार है कर रहे हैं, आप भी इंतजार कर रहे हैं। 4 तारीख का इंतजार सभी को है जिस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बेहद ही धूमधाम से मनाया जाएगा। कैमरा पर्सन इमानुअल जोस के साथ मनीषा लड्डा, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे।
2: तो चलिए कृष्ण जन्माष्टमी से जुड़े हुए और भी तमाम रंग जीएनटी पर लगातार आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए, लेकिन अच्छी खबरें लगातार जारी हैं। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज़ टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
1: किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में 26वें SCO समिट का भव्य आगाज, तिरंगे झंडे के साथ भारतीय दल का प्रधानमंत्री मोदी ने हाथ हिलाकर किया अभिवादन, शांति विकास और समृद्धि पर मंथन। तमाम वैश्विक चुनौतियों के बीच देश की GDP ग्रोथ बरकरार, वित्तीय वर्ष 2026 की पहली तिमाही 7.8% रही विकास दर, RBI के अनुमान से भी शानदार रहे आंकड़े। मानसूनी बारिश के बीच भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने को मर रहे हैं श्रद्धालु। 30 अगस्त तक 16,75,000 से ज्यादा ने पूजा अर्चना की, पवित्र हेमकुंड साहिब में भी लगा भक्तों का तांता। मुंबई में आगामी गणेशोत्सव की भव्य तैयारियां, साकनाकी के महाराजा की 48 फीट ऊंची प्रतिमा बनी आकर्षण का केंद्र, बप्पा के दरबार की सजावट का काम तेज। नौसेना की ताकत में हुआ इजाफा, मुंबई में दूसरा स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट पोत निपुण हुआ कमीशन, समुद्र में गोताखोरी और जटिल अभियानों को देगा अंजाम। अर्जेंटीना के दिग्गज खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने इंटरनेशनल फुटबॉल से लिया संन्यास, 20 साल लंबे करियर में 207 मैच खेलकर दागे 125 गोल, अपनी कप्तानी में अर्जेंटीना को बनाया विश्व विजेता।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
2: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं, आधी अधूरी सच्चाइयां, झूठे दावे बिजली रफ्तार की तरह फैलते, कभी किसी वीडियो के पीछे की सच्चाई बदल दी जाती है और कभी पुरानी तस्वीर को नई साजिश का रंग देकर पेश किया जाता है। लोग बिना जांचे परखे ने सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के दौर में अब खबरें अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं है। हर किसी के हाथ में कैमरा है, हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है और यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नहीं बताकर परोसी जाती, किसी वीडियो को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कुसुदूर हो। नतीजा ये होता है कि लोग बिना सोचे समझे, बिना जांचे इन्हें सच मानकर शेयर कर देते हैं और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आती। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं, जहां वायरल दावों की होती सटीक जांच, अफवाहों की होती पड़ताल, झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। आज ऐसी दो खबरों की पड़ताल हम करेंगे, जिसमें सबसे पहले बात होगी सोशल मीडिया पर छाए उस वीडियो की जो कि नेपाल का बताया जा रहा है, जहां पर 26 अगस्त को आई भीषण बाढ़ के दौरान कुछ लोग तेजी से आते पानी से बचते हुए भागते हुए नजर आ रहे। कहा जा रहा है कि ये नेपाल का वीडियो है, सच्चाई के आगे बताएंगे। अगली खबर होगी उस वायरल वीडियो से जुड़ी, जिसको शेयर करते हुए लोग कह रहे हैं कि एक टीचर ने कांग्रेस जनता पार्टी के सदस्य को स्कूल के अंदर आने से रोक दिया। क्या है इस वीडियो की सच्चाई, आगे जानिए। शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
2: सोशल मीडिया पर एक संकरे रास्ते पर भागते हुए लोगों का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और उनके पीछे पानी का तेज बहाव नजर आ रहा है। ये वीडियो किसी पहाड़ी इलाके का नजर आ रहा है, काफी ऊंचाई से बनाया हुआ ये वीडियो लगता है और कुछ लोग इस वीडियो को नेपाल में आई बाढ़ से जोड़कर वायरल कर रहे हैं। लेकिन क्या है इसकी सच्चाई, दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। नेपाल में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है, आपदा में मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं अब भी कई लोगों का पता नहीं चल पा रहा है। तिब्बत के बॉर्डर से इलाके से आया पानी का सैलाब इतना तेज था कि कस्बे, बाजार और पूरे के पूरे गांव बह गए। इन सब के बीच सोशल मीडिया पर एक संकरे रास्ते पर भागते कुछ लोगों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उनके पीछे पीछे पानी तेजी से बहता हुआ नजर आ रहा है। ये वीडियो किसी पहाड़ी इलाके का है और काफी ऊंचाई से बनाया गया है। एक फेसबुक यूजर ने ये वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा कि हॉलीवुड की फिल्मों में ही ऐसे सीन देखे हैं। आगे आगे अपनी जान बचाने के लिए भागते लोग और पीछे पीछे अजगर जैसा निकल जाने को तैयार पीछा करता पानी। कई मीडिया आउटलेट्स ने भी इस वीडियो को नेपाल बाढ़ के संदर्भ में शेयर किया। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है। दरअसल नेपाल तिब्बत सीमा के पास भोटेकोश नदी में 26 अगस्त को कई विनाशकारी बाढ़ ने दोनों ही देशों के इलाकों में भीषण तबाही मचाई। इस बाढ़ में अब तक करीब 1000 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 4000 से ज्यादा लोग अभी भी लापता बताया जा रहे हैं। नेपाल तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ के बाद राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। इन सबके बीच सोशल मीडिया पर एक संकरे रास्ते पर भागते कुछ लोगों का वीडियो वायरल हो रहा है। उनके पीछे पीछे पानी तेजी से बहता हुआ नजर आ रहा है। ये वीडियो किसी पहाड़ी इलाके का है और काफी ऊंचाई से बनाया गया है। कुछ लोग इस वीडियो को नेपाल की बाढ़ से जोड़कर सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर शेयर कर रहे हैं। ऐसे में इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमारा ध्यान बैकग्राउंड में आ रही आवाजों पर गया। जब हमने इसे ध्यानपूर्वक सुना तो ये अरबी जैसा कोई भाषा लगी। वीडियो को नेपाल का बताया जा रहा है, तो फिर इसमें अरबी आवाजें क्यों सुनाई दे रही हैं? ये हमें थोड़ा सा पता लगा। इसके अलावा हाल फिलहाल में नेपाल बाढ़ को लेकर कई तरह की तस्वीरें और वीडियोज लगातार सामने आ रहे, लेकिन वायरल हो रहे वीडियो जैसा कोई भी वीडियो हमें नहीं मिला। लिहाजा ऐसे में हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा, जिसमें हमारा पहला सवाल ये, अगर दावा सच्चा है तो फिर वायरल हो रहे वीडियो के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी सामने क्यों नहीं आई? हमारा दूसरा सवाल ये कि कहीं किसी और जगह के वीडियो को जानबूझकर नेपाल के साथ जोड़कर वायरल तो नहीं किया जा रहा? देखिए सच और झूठ क्या है इस रिपोर्ट में। इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वीडियो की पड़ताल में जुटी। सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें पता लगा कि इसे एक फेसबुक यूजर ने 4 अगस्त 2026 को पोस्ट किया था। उसने अरबी भाषा में कैप्शन लिखा था जिसका हिंदी अनुवाद है, याफा में हुई आज की बारिश का वीडियो। ये एक ऐसा दृश्य है जो आंखों को सुकून देता है और निर्जीव भूमि में जान फूंक देता है, साथ ही ये लोगों में उम्मीद के किरण भी जगाता है। याफा यमन का एक पहाड़ी क्षेत्र है। इस फेसबुक यूजर ने वायरल वीडियो से मिलती जुलती जगह के और भी कई वीडियो शेयर किए हैं। 4 अगस्त को उन्होंने इस तरह के 9 वीडियो शेयर किए और ज्यादातर पोस्ट में बारिश के लिए अल्लाह का शुक्रिया अदा किया। यमन की एक न्यूज वेबसाइट की 3 अगस्त 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक 2 अगस्त 2026 को हुई तेज बारिश के चलते यमन के सबाह जिले में स्थित कॉफी बागानों की सिंचाई में काफी मदद मिली। ये बागान अल अरका और तासा इलाकों में हैं। इन इलाकों में यमन के मशहूर याफई कॉफी की भी खेती होती है। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल दावा झूठा साबित हुआ। वायरल हो रहे वीडियो का नेपाल से कोई भी लेना देना नहीं है। ये यमन का पुराना वीडियो है। ज्योति द्विवेदी के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे। सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा और वीडियो में एक शख्स माइक लिए एक युवक को स्कूल में प्रवेश करने से रोकता हुआ नजर आ रहा है और इसके जरिए लोग ये कह रहे हैं कि टीचर ने कांग्रेस जनता पार्टी के सदस्य को स्कूल के अंदर आने से रोक दिया। सच्चाई क्या है इस रिपोर्ट में जानिए।
3: ठीक है,
4: 15 अगस्त को अभिजीत दीपके के नेतृत्व वाली कांग्रेस जनता पार्टी ने गांवों में सरकारी स्कूलों को सुधारने के लिए स्कूल ठीक करो अभियान शुरू किया। इस अभियान की शुरुआत सीजेपी के सह संस्थापक और संयोजक अभिजीत दीपके ने 15 अगस्त को महाराष्ट्र के हिंगोली जिले से की। इस अभियान का मकसद है देश के ग्रामीण और कम फंड वाले सरकारी स्कूलों की बुनियादी सुविधाओं का सोशल ऑडिट करना और स्कूलों की स्थिति को बेहतर बनाना। इन सब के बीच सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक अधेड़ उम्र का शख्स माइक लिए एक युवक को स्कूल में प्रवेश करने से रोकता हुआ नजर आ रहा है। इसके जरिए कुछ लोग ये कह रहे हैं कि टीचर ने सीजेपी सदस्य को रोका। वीडियो में टीचर को ये कहते हुए सुना जा रहा है कि ये लोग लड़कियों को देखने के लिए स्कूल आते हैं। वीडियो शेयर करते हुए एक एक्स यूजर ने लिखा, तो क्या सीजेपी के गुंडे स्कूलों में ये देखकर घुस रहे हैं कि किन स्कूलों में खूबसूरत लड़कियां हैं? मतलब सच में क्या इन बेवकूफों को निरीक्षण के नाम पर स्कूलों में जाने की इजाजत दी जानी चाहिए? क्या ये आपके आदर्श हैं? सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है।
2: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में एक शख्स माइक लिए हुए युवक को स्कूल में प्रवेश करने से रोकते हुए नजर आ रहा है। और इसके जरिए लोग ये कह रहे हैं कि टीचर ने कांग्रेस जनता पार्टी के सदस्य को स्कूल के अंदर जाने से रोका। वीडियो में टीचर को ये कहते हुए सुना जा रहा है कि ये लोग लड़कियों को देखने के लिए स्कूल आते हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर इसी मिलते जुलते दावे के साथ ये वीडियो लगातार शेयर किया जा रहा है। ऐसे में इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की और दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा भी और इसे सुना भी। इस दौरान टीचर और माइक पकड़े हुए युवक के बीच जो बातचीत हो रही है उसे हमने ध्यान से सुना। इसमें जो बोलने का लहजा है, इस तरह का लहजा बिहार में सुनने को मिलता है। मतलब ये कि वायरल हो रहा वीडियो बिहार के किसी इलाके का हो सकता है। साथ ही साथ वीडियो को देखने से ये भी लग रहा है कि अगर कांग्रेस जनता पार्टी का सदस्य किसी स्कूल के हालात को जानने के लिए वहां पहुंचा होता तो वो माइक लेकर क्यों आएगा। वो आराम से स्कूल प्रबंधन से बातचीत करेगा और स्कूल में क्या क्या हो रहा है इसके बारे में जानकारी हासिल कर लेगा। लेकिन इस वीडियो को देखने से ऐसा नहीं लग रहा। इसके अलावा सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई प्रमाणिक जानकारी भी नहीं मिली जो कि वायरल दावे की पुष्टि कर सके कि बिहार में कांग्रेस जनता पार्टी के अभियान को लेकर कोई जानकारी सामने आई। लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा। हमारा पहला सवाल यही था कि वायरल हो रहा वीडियो कब का है और कहां का है। हमारा दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए भ्रम तो नहीं फैलाया जा रहा। सच और झूठ इस रिपोर्ट में जानिए।
4: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वीडियो की पड़ताल में जुटी। सबसे पहले हमने वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें 9 जुलाई को एक फेसबुक पेज पर पोस्ट किया गया वीडियो का एक और वर्जन मिला। इस वीडियो में अधेड़ उम्र का व्यक्ति खुद को स्कूल में सहायक शिक्षक बताता है, जबकि युवक खुद को पत्रकार बताता है। शिक्षक उसे स्कूल परिसर छोड़ने के लिए कहता है और बताता है कि उसे आधिकारिक अनुमति के बिना प्रवेश करने की अनुमति नहीं है।
3: लेटर लेकर के ऑडियो ऑफिस से तब देंगे एंट्री।
5: मतलब यहाँ पे जो भी भ्रष्टाचार होगा तो वहाँ पे
3: ऑफिस लेकर ऐसे नहीं देंगे।
4: हमने इस फेसबुक पेज की जांच की। इस दौरान हमने पाया कि यहाँ अलग अलग विषयों को कवर करते कई वीडियोस मौजूद हैं। खासतौर पर बिहार के सरकारी स्कूलों की स्थिति पर यहाँ कई वीडियोस देखने को मिले। एक वीडियो में हमने उन्हें एक शिक्षिका से सवाल जवाब करते और उनके ज्ञान की परीक्षा लेते हुए भी देखा।
6: बर्खास्त गया है।
7: हाँ।
6: ऐसे ना
7: एप्लीकेशन हाथ धैल है।
6: एप्लीकेशन कहाँ धैल दिखाइए।
4: इसके बाद फैक्ट चेक टीम ने ये फेसबुक पेज चलाने वाले शख्स यानी कि मनोज यादव से भी संपर्क किया। इस दौरान उन्होंने साफ किया कि उनको कांग्रेस जनता पार्टी से कोई संबंध नहीं है, वो स्कूल ठीक करो अभियान में शामिल नहीं है। वायरल हो रहे वीडियो के बारे में उन्होंने कहा कि पानी की समस्या को उजागर करने के लिए 9 जुलाई को वो नालंदा जिले के इस्लामपुर ब्लॉक स्थित राजकीय उच्च विद्यालय गए थे। इस तरह हमारी पड़ताल से साफ हो गया कि वायरल हो रहे वीडियो का कांग्रेस जनता पार्टी के स्कूल ठीक करो अभियान से कोई संबंध नहीं है। वायरल हो रहा वीडियो 9 जुलाई को फेसबुक पर अपलोड किया गया था, जबकि कांग्रेस जनता पार्टी का स्कूल ठीक करो अभियान 15 अगस्त को शुरू किया गया था। मोहम्मद महफूज आलम के साथ टीम फैक्ट चेक गुड न्यूज टुडे।
2: और फैक्ट चेक में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में, दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
2: और वक्त है फैक्ट चेक के आखिरी सफर का। आपको दिखाते हैं ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
7: जन्माष्टमी

पारंपरिक राधा कृष्ण के लुक में तैयार किया गया है। एक बच्ची राधा के रूप में नजर आती है, वहीं एक बच्चा कान्हा के रूप में दिखाई देता है। दोनों बच्चों की जोड़ी बेहद प्यारी लग रही है। डांस के दौरान बच्चे के एक्सप्रेशन और बच्चे की शरारती अदाएं वीडियो को और भी खास बना देती हैं। म्यूजिक की धुन के साथ दोनों छोटे कलाकार अपने स्टेप्स करने की कोशिश करते नजर आते हैं। उनकी मासूमियत देखकर ऐसा लगता है जैसे वे किसी बड़े स्टेज पर नहीं बल्कि अपने ही अंदाज में त्योहार की खुशी मना रहे हों।

बारिश के दिनों में सड़कों पर पानी और कीचड़ जमा होना आम बात है, लेकिन ऐसे मुश्किल हालात में भी एक छोटे भाई ने अपनी बहन का जिस तरह से ख्याल रखा, उसने लोगों का दिल जीत लिया। वीडियो में तेज बारिश के बीच एक छोटा लड़का अपनी बहन के साथ पानी और कीचड़ से भरे रास्ते पर चलता नजर आता है। आसपास कई गाड़ियां खड़ी हैं और सड़क की हालत ऐसी है कि वहां से निकलना भी आसान नहीं है। ऐसे मौसम में लड़का खुद बारिश में भीगने की परवाह नहीं करता। वो एक बड़ी चादर अपनी बहन के ऊपर इस तरह ताने हुए है कि बारिश की बूंदें उस तक न पहुंचे। उसका पूरा ध्यान सिर्फ इस बात पर है कि उसकी बहन किसी तरह भीगने से बच जाए और सुरक्षित तरीके से रास्ता पार कर सके। इसी बीच एक सफेद कुत्ता भी दोनों के आसपास घूमने लगता है। कुत्ता कभी उनके आगे तो कभी पीछे नजर आता है। हालांकि लड़का इससे भी सतर्क हो जाता है। वो एक तरफ बहन को बारिश से बचाते हुए आगे बढ़ता रहता है और दूसरी तरफ कुत्ते पर भी नजर रखता है। कुछ देर बाद जब कुत्ता उसके बहन के ज्यादा करीब आने लगता है तो लड़का तुरंत उसकी तरफ मुड़ता है और उसे दूर हटाने की कोशिश करता है। इसके बाद वो बिना समय गंवाए फिर अपनी बहन के पास पहुंच जाता है, चादर को दोबारा ठीक करता है और उसे सुरक्षित रास्ते से आगे ले जाने लगता है। वीडियो में भाई का यही छोटा सा प्रयास सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है। यूजर्स इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक बेहद प्यारा और भावुक करने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें एक छोटी बच्ची अपने घर में जन्मदिन के उपहारों के ढेर के बीच से गुजरती नजर आती है। उसकी मासूम मुस्कान और खुशी का अंदाजा देखकर लोग भावुक हो रहे हैं। क्लिप में जन्मदिन वाली बच्ची रिद्धि घर के बाहर खड़ी दिखती है। परिवार के सदस्य उसके साथ आते हैं। दरवाजे पर रिबन बांधा गया है, उसे कैंची दी जाती है और वो रिबन काटती है जैसे वो अपनी पार्टी की मुख्य अतिथि हो। जैसे ही वो अंदर कदम रखती है, फर्श पर सुंदर कपड़ा बिछा होता है जिस पर फूलों की पंखुड़ियां सजी होती हैं। साथ ही उपहारों का एक लंबा रास्ता बनाया गया है। रिद्धि हैरानी और खुशी से भर जाती है। वो सीधे आगे नहीं बढ़ती बल्कि एक एक करके लिपटे हुए उपहार उठाती जाती है। मुस्कुराते हुए वो उन्हें अपनी बाहों में इकट्ठा करती है। जब तक सारे गिफ्ट नहीं ले लेती तब तक रुकती नहीं। उसकी मासूमियत और उत्साह का ये अंदाज वीडियो को खास बना देता है। वीडियो को देखने के बाद कई यूजर्स ने लिखा है कि ये पल वो हमेशा याद रखेगी।

0: कहते हैं माँ की जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन एक पिता अपने बच्चे की जिंदगी में प्यार और देखभाल की ऐसी छांव बन सकता है जो उसे मुश्किल वक्त में संभाल ले। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के रहने वाले कुलदीप भारद्वाज की कहानी कुछ ऐसी ही है। पत्नी को खोने के बाद उन्होंने अपने 2.5 साल के बेटे सात्विक की परवरिश की पूरी जिम्मेदारी खुद संभाल ली। कुलदीप के लिए अब जिंदगी सिर्फ उसके बारे में सोचने का नाम नहीं है, उनकी दुनिया उनके छोटे से बेटे सात्विक के इर्द गिर्द घूमती है। बच्चे को खाना खिलाने से लेकर उसकी देखभाल करने, उसे संभालने और उसके साथ वक्त बिताने तक वो हर जिम्मेदारी खुद निभा रहे हैं। पिता होने के साथ साथ वो बेटे के लिए माँ जैसी ममता और सुरक्षा देने की भी पूरी कोशिश करते हैं।
1: इधर क्यों आके बैठ गई आप?
2: हवाई जहाज देखने के लिए।
1: अभी कह रही थी डर लग रहा है।
2: नहीं कह रही, जिसको देखते थी घर बैठी, कोई नहीं बोलते सारे आदमी।
1: कोई नहीं ले जाता अम्मा एयरपोर्ट पे। हाँ,
0: लखनऊ एयरपोर्ट का एक बेहद क्यूट सा वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी छाया हुआ है, जिसमें एक दादी और उनकी पोती की मासूम बातचीत ने नेटिजंस का दिल जीत लिया है।
1: पार्किंग में है? ये हवाई जहाज का पार्किंग होता है।
2: ये पार्किंग होता है। मुझे पानी पड़ रहा तो भीगता हूँ।

0: तो दिखे पार्किंग है।
1: इस वायरल क्लिप को देखकर लोग अपनी पुरानी यादों में खो गए हैं और कमेंट्स में अपनी अपनी दादी को याद कर रहे हैं। ये वीडियो उस वक्त का है जब दादी हैदराबाद जाने वाली फ्लाइट का इंतजार कर रही थी। एयरपोर्ट पर बैठे बैठे बुजुर्ग महिला अपने बैग के पास ऐसे पहरा दे रही थी जैसे उन्हें डर हो कि कोई उनका सामान लेकर 9-2-11 न हो जाए। जब पोती ने उन्हें प्यार से समझाया कि यहाँ सामान बिल्कुल सेफ रहता है तो दादी के मन में बच्चों जैसी जिज्ञासा जाग उठी। फिर क्या था, दादी ने बड़ी मासूमियत से पूछा कि इतने बड़े बड़े हवाई जहाज बारिश में भींगते क्यों नहीं और उन्हें कहाँ खड़ा करते हैं। उनकी ये भोली भाली बातें आज की तेज रफ्तार जिंदगी में बुजुर्गों की उस सादगी की याद दिला गई जो अब बहुत कम देखने को मिलती है। मुंबई के एक ऑटो रिक्शा चालक ने यात्रियों से मराठी में संवाद करने के लिए एक आसान और प्रभावी तरीका अपनाया है। उन्होंने अपने ऑटो के अंदर हाथ से लिखी हिंदी मराठी अनुवाद शीट चिपका रखी है जिसमें रोजमर्रा के इस्तेमाल के वाक्य शामिल हैं। ये शीट सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है और लोगों ने चालक की मेहनत और जुगाड़ की जमकर तारीफ की है। एक महिला ने ऑटो में सवार होकर ये शीट देखी और इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर कर दिया। शीट में हिंदी वाक्यों के साथ साथ उनके मराठी अनुवाद साफ साफ लिखे हैं ताकि चालक जरूरत पड़ने पर तुरंत देख सकें। ये पहल महाराष्ट्र सरकार के उस अभियान के बीच आई है जिसमें ऑटो टैक्सी और एप बेस्ड कैब चालकों से मराठी की कार्यकारी जानकारी अनिवार्य की गई है। ग्रेजुएशन का दिन हर छात्र के लिए बेहद खास होता है। कई साल की पढ़ाई और मेहनत के बाद जब स्टेज पर उसका नाम पुकारा जाता है और वो डिग्री लेने पहुंचता है तो वो पल हमेशा याद रहता है। लेकिन एक छात्र के लिए ये दिन इसलिए भी खास बन गया क्योंकि वो डिग्री लेने अकेला नहीं आया था, उसके कंधे पर उसकी प्यारी सी बिल्ली भी बैठी थी। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में छात्र बड़े आराम से अपने बिल्ली को कंधे पर बैठाकर स्टेज की ओर जाता नजर आ रहा है। छात्र को शायद अपनी डिग्री मिलने की खुशी थी लेकिन वहां मौजूद लोगों की नजरें उसके बिल्ली पर टिक गई। कुछ ही देर में ये बिल्ली पूरे समारोह की सबसे खास मेहमान बन गई। वीडियो में छात्र अपनी बिल्ली के साथ स्टेज पर पहुंचता है। जैसे ही वो डीन और प्रोफेसर्स के पास जाता है वहां मौजूद लोगों का ध्यान बिल्ली पर चला जाता है। कुछ प्रोफेसर उसे देखकर मुस्कुराते हैं तो कुछ प्यार से उसे सहलाते हुए नजर आते हैं। सबसे मजेदार बात ये है कि बिल्ली भी पूरे समय बेहद आराम से छात्र के कंधे पर बैठी रहती है। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे उसे अच्छी तरह पता हो कि आज का दिन उसी के नाम होने वाला है। शादी से पहले होने वाली दुल्हन के लिए बैचलरेट पार्टी का अपना ही उत्साह होता है लेकिन अमेरिका की एक होने वाली दुल्हन के लिए उसकी पार्टी शुरू होने से पहले ही बेहद खास बन गई। वो विमान से अपने बैचलरेट पार्टी के लिए जा रही थी तभी एयर होस्टेस ने उसके लिए ऐसा प्यारा सरप्राइज प्लान किया कि पूरी फ्लाइट शादी की सलाह देने वालों से भर गई। यात्रियों ने नैपकिन पर होने वाले दुल्हा दुल्हन को शादीशुदा जिंदगी के लिए मजेदार और काम की सलाह लिखी।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ला

0: इस लंबी नाव में कई सारे नाविक जब एक साथ अपनी चप्पू पानी में डालते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पूरी नदी की धड़कन एक ही लय में चलने लगी हो। ओणम और वल्लमकली का रिश्ता सिर्फ खेल का नहीं बल्कि केरलम की आस्था, इतिहास, लोक परंपरा और सामूहिक उत्सव का रिश्ता है। जब नदियों और बैक वाटर्स पर सैकड़ों नाविक एक साथ चप्पू चलाते हैं, पारंपरिक वंचिपाट्टू की लय गूंजती है और हजारों दर्शक किनारों पर उमड़ते हैं तो पूरा दृश्य केरलम की जीवंत सांस्कृतिक पहचान बन जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट गुड यस्टरडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
1: किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में 26वें SCO समिट का भव्य आगाज, तिरंगे झंडे के साथ भारतीय दल का प्रधानमंत्री मोदी ने हाथ हिलाकर किया अभिवादन, शांति विकास और समृद्धि पर मंथन। तमाम वैश्विक चुनौतियों के बीच देश की GDP ग्रोथ बरकरार, वित्तीय वर्ष 2026 की पहली तिमाही 7.8% रही विकास दर, RBI के अनुमान से भी शानदार रहे आंकड़े। मानसूनी बारिश के बीच भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने को मर रहे हैं श्रद्धालु, 30 अगस्त तक 16,75,000 से ज्यादा ने पूजा अर्चना की, पवित्र हेमकुंड साहिब में भी लगा भक्तों का तांता। मुंबई में आगामी गणेशोत्सव की भव्य तैयारियां, साकनाकी के महाराजा की 48 फीट ऊंची प्रतिमा बनी आकर्षण का केंद्र, बप्पा के दरबार की सजावट का काम तेज। नौसेना की ताकत में हुआ इजाफा, मुंबई में दूसरा स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट पोत निपुण हुआ कमीशन, समुद्र में गोताखोरी और जटिल अभियानों को देगा अंजाम। अर्जेंटीना के दिग्गज खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने इंटरनेशनल फुटबॉल से लिया संन्यास, 20 साल लंबे करियर में 207 मैच खेलकर दागे 125 गोल, अपनी कप्तानी में अर्जेंटीना को बनाया विश्व विजेता।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। तो जीएनटी स्पेशल में आज बात कृष्ण जन्माष्टमी की। देश भर में जन्माष्टमी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। शहर शहर बेसब्री के साथ कान्हा के आने का इंतजार हो रहा है। कृष्ण जन्मोत्सव का सबसे गाढ़ा रंग चढ़ा है देश भर में मौजूद कन्हैया के भव्य मंदिरों पर, मथुरा हो या फिर वृंदावन, दिल्ली हो या द्वारका हो। शहर शहर कृष्ण धामों में जन्माष्टमी के रंग बिखरे हैं। जीएनटी स्पेशल में आज आपको लिए चलेंगे देश के भव्य कृष्ण मंदिरों में, दिखाएंगे तैयारी कृष्ण जन्मोत्सव की। लेकिन सबसे पहले आपको लिए चलते हैं राजधानी दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में। कृष्ण भक्ति को समर्पित इस्कॉन के मंदिरों में हर साल बड़े पैमाने पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश इलाके में मौजूद इस मंदिर में जोर शोर से तैयारी की जा रही है।

0: प्रकट होने वाले हैं नंदलाल। भक्तों को दर्शन देने आने वाले हैं लड्डू गोपाल। 4 सितंबर को कृष्ण जन्माष्टमी पर्व मनाया जाएगा। स्वदेश भर के कृष्ण मंदिरों में जन्माष्टमी की तैयारियां अंतिम दौर में हैं। कृष्ण धाम रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठे हैं। ये तस्वीरें दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश में मौजूद इस्कॉन मंदिर की हैं। भाद्रपद माह की अष्टमी तिथि इस मंदिर के लिए साल का सबसे खास दिन होता है। हर साल यहां भव्य तरीके से जन्माष्टमी उत्सव का आयोजन होता है। अब की बार भी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। हर साल इस मंदिर में श्री कृष्ण जन्मोत्सव की तैयारियां कई हफ्तों पहले ही शुरू कर दी जाती है। इस वर्ष भी कान्हा का जन्मोत्सव मनाने के लिए मंदिर को शानदार तरीके से सजाया जा रहा है।
1: इस वक्त मैं मौजूद हूँ ईस्ट ऑफ कैलाश स्थित इस्कॉन मंदिर के भव्य परिसर में, जहाँ पर तस्वीरें मेरे पीछे बता रही कि किस तरीके से जन्माष्टमी की जो तैयारियाँ हैं वो अपने स्तर पर है। आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर भक्तों की अच्छी खासी भीड़ जो है वो नजर आ जाएगी, और साथ ही 4 तारीख को जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा, और उससे पहले मंदिर को सजाने का जितना भी काम है वो लगातार यहाँ पर जो है वो किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मंदिर में, आपको सबसे पहले तो लाइट्स में दिखा देती हूँ आपके, यहाँ पर और भी लाइट्स का काम जो है वो लगातार इसी तरीके से जारी, ताकि मंदिर जो है वो अलग से ही जगमगाता हुआ 4 तारीख को जो है वो नजर आए। और उसके बाद अगर मैं मंदिर परिसर में आपको भवन की तस्वीर दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको श्रृंगार होता हुआ जो है वो नजर आ जाएगा।
0: श्री कृष्ण जन्मोत्सव के पावन अवसर पर इस्कॉन मंदिर को देश के अलग अलग हिस्सों से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी मंगाए गए खास किस्म के फूलों से सजाया जाता है। साथ ही साथ पूरे मंदिर परिसर में रंग बिरंगी सुंदर लाइटिंग भी की जाती है। आपको बता दें कि यहां अब की बार जन्माष्टमी उत्सव पर सजावट की थीम भगवान श्री कृष्ण के प्रिय मोर पर आधारित है, यानी मोर पंख की बनावट और रंगों को केंद्र में रखकर ही उत्सव के लिए सजावट की जाएगी। जन्माष्टमी के लिए थीम पर आधारित पोशाक खास तौर पर वृंदावन से मंगवाई जा रही है।
2: इस साल भगवान को जो सबसे प्रिय है मोर पंख, तो जो थीम है सिंगार और सजावट की वो पीकॉक पे है, मयूर थीम रखा गया है, और देश विदेश से लाए हुए फूल से सजाया गया, जैसे थाईलैंड और कर्नाटका बंगलोर से फूल मंगाए जा रहे हैं, उससे सजावट की जाएगी। और वृंदावन से भगवान का सिंगार के लिए जितने भी ज्वेलरी और ड्रेस है वहाँ से आ रहा है।
0: ईस्ट ऑफ कैलाश के इस्कॉन मंदिर में कृष्ण जन्मोत्सव पर भगवान को केक का भोग लगाने की भी परंपरा है। अब की बार भी यहां भगवान के लिए विशाल केक तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा बाल गोपाल को 1008 प्रकार के व्यंजन का भोग भी लगाया जाएगा।
2: केक का भोग लगेगा ठाकुर जी को और 1008 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया जाएगा इस्कॉन ईस्ट ऑफ कैलाश में। और सुबह 10 बजे के पहले से कुकिंग स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि भगवान का किचन ही अलग है, तो जो दीक्षित हैं ब्राह्मण दीक्षित हैं और दीक्षित माता जी प्रभु जी लोग हैं वो मिल करके बहुत बड़ा प्रसाद हाल छोटा वहाँ पे कुकिंग आरम्भ हो जाएगी। और चूँकि भगवान का भोग 12 बजे लगेगा तो तब तक कुकिंग होती रहे और भगवान जी को भोग लगता रहेगा।
0: मंदिर परिसर में उत्सव की तैयारी अब अंतिम चरण में है। जन्माष्टमी से पहले मंदिर में रंग बिरंगे विशाल टेंट लगाए जा रहे हैं, ताकि उत्सव में भारी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं के बैठने और भजन कीर्तन में सुविधा हो। दिल्ली NCR और आसपास के इलाकों से लाखों की संख्या में भक्त

0: और श्रद्धालु जन्माष्टमी मनाने और भगवान के दर्शन के लिए यहां पहुंचते हैं। लिहाजा व्यवस्थाओं के साथ साथ ख्याल सुरक्षा के इंतजामों का भी रखा जा रहा है।
1: हमारे दर्शनार्थी आएंगे श्रद्धालु, उनकी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की व्यवस्था की जा रही है। तो गेट नंबर 1 से जो आम श्रद्धालु आम जनता है वो प्रवेश करेंगे, और गेट नंबर 7 से जो हमारे डोनर हैं अभी VIPs हैं, जैसे मिनिस्टर जो गणमान्य व्यक्ति हैं हर फील्ड के, वो आएंगे। और दिल्ली पुलिस के 1200-600 जवान लगेंगे दिल्ली पुलिस के, अब 1200 प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड रहेंगे, उनकी व्यवस्था चाक चौबंद रहेगी, और 4 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी होंगी और 8 एम्बुलेंस होंगी और अच्छे डॉक्टरों की टीम रहेगी इमरजेंसी के लिए। तो इस तरह से व्यवस्था रहेगी। और अनुरोध है कि जो मेरे श्रद्धालु हैं वो कोई बैग और ऐसी चीज़ें न लेके आए ताकि किसी प्रकार का सिक्योरिटी जांच में दिक्कत आए, और ये बहुत आवश्यक है।
0: राजधानी दिल्ली में वैसे तो राधा कृष्ण जी को समर्पित इस्कॉन के कई मंदिर हैं, लेकिन दक्षिण दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश इलाके में इस मंदिर की बात ही अलग है। श्री श्री राधा पाठ सारथी मंदिर के नाम से इस मंदिर की स्थापना 1998 में की गई थी। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की मनमोहक प्रतिमा स्थापित है। कृष्ण भक्तों के लिए ये मंदिर आस्था का बड़ा केंद्र है। खास तौर से हर साल जन्माष्टमी के अवसर पर यहाँ होने वाला भव्य उत्सव श्रद्धालुओं को विशेष रूप से आकर्षित करता है। इस बार भी तैयारियाँ जोरों शोरों से चल रही है, तो उम्मीद है कि यहाँ पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन में कृष्ण भक्ति की अनूठी झांकियाँ देखने को मिलेंगी। दिल्ली से आशुतोष कुमार और मनीषा लाडा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: दिल्ली से अब रुख करते हैं भारत के उस भाग का जहां की धरती ने कृष्ण लीलाओं को अपनी आंखों से देखा है, जिसकी मिट्टी में कभी बाल कृष्ण खेला करते थे, जहां यमुना के तट पर सखाओं संग खेलते कान्हा का बचपन बीता, ब्रज की वो धारा जिसके रज रज पर आज भी श्याम रंग चढ़ा है। श्री कृष्ण का जन्मोत्सव ब्रज के लिए साल का सबसे बड़ा त्यौहार है। अपने कान्हा के जन्मोत्सव जैसे ही ब्रज मनाता है, वैसे ही वाकई दुनिया में कोई और मना नहीं सकता। कृष्ण जन्मभूमि से लेकर वृंदावन के तमाम मंदिरों में इस समय जन्माष्टमी की तैयारी पूरी हो चुकी है। तो चलिए आपको बताते हैं कि इस जन्माष्टमी पर कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में क्या कुछ खास होने जा रहा है, और मथुरा में कैसी है तैयारी जन्मोत्सव की।

0: ब्रजभूमि में इस समय चारों तरफ सिर्फ एक ही गूंज है, हाथी घोड़ा बाल की जय कन्हैया लाल। भगवान श्री कृष्ण के 5253वें जन्मोत्सव को लेकर कान्हा की नगरी मथुरा और लीला भूमि वृंदावन सजाए जा रहे हैं। द्वापर युग की वही दिव्यता, वही भव्यता और वही भक्ति एक बार फिर कान्हा के जन्मस्थली मथुरा में जीवंत हो उठी है।
1: भगवान श्री कृष्ण के 5253वें जन्मदिन के लिए पूरे ब्रज को सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है और इस तरह की जो पेंटिंग है ना, वो सारी दीवारों पर बनाई जा रही है, जो दीवार भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि की तरफ जाती है। तो इसमें जो लीला है वो दर्शाया जा रहा है कि भगवान श्री कृष्ण को वासुदेव जी गोकुल लेकर जा रहे हैं। तो ऐसी ही जो लीला है भगवान की, जितनी भी लीला है भगवान ने ब्रज में की, वो सभी लीलाएं जो प्रमुख मार्ग हैं उन पर सजाई जा रही हैं। करीब 24 चौराहे सजाए जा रहे हैं। इस तरह की जो सजावट का काम है ये चल रहा है पूरे ब्रज में, जगह जगह देखेंगे। इस तरह ये गेट बनाया जाएगा, तोरण द्वार बनाए जा रहे हैं, करीब 24 द्वार बनेंगे, 24 चौक चौराहे सजाए जा रहे हैं। और जितनी भी दीवार है जो ब्रज जन्मभूमि की तरफ जाती है, जन्मभूमि के पास का रास्ता है, तो इस तरह की जो सजावट है ना भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव को मनाने के लिए, 4 सितंबर को भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मनाया जाएगा ब्रज में, तो उसकी जो तैयारी है बड़े भव्यता और दिव्यता पर चल रही है।
0: इस साल 4 सितंबर 2026 को मध्य रात्रि में होने वाले मुख्य जन्मोत्सव को लेकर तैयारियां अब अंतिम चरण में है। 4 सितंबर को रात 11:56 पर शुरू होने वाले निषेधकाल पूजा मुहूर्त के लिए मथुरा के मंदिर चौक चौराहों को रोशन किया जा रहा है। श्री कृष्ण जन्म स्थान पर इस बार श्रद्धालुओं को ठाकुर जी के एक बेहद अलौकिक रूप के दर्शन होंगे। जन्माष्टमी के पावन अवसर पर अब की बार कन्हैया कलहंस पुष्प बंगले में विराजमान होंगे, इसीलिए जन्मस्थान के अंदर के पुष्प बंगलों को दुर्लभ पत्र, पुष्प, वृक्षों और विशेष रूप से हंसों की दिव्य आकृतियों से सजाया जा रहा है।
2: भगवान श्री कृष्ण के 5253वें जन्मदिन को, जन्मोत्सव को बहुत ही भव्यता और दिव्यता के साथ मनाया जाएगा। तैयारियां बहुत जोर शोर भाव से चल रही है। आने वाले श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के दर्शन सुव्यवस्थित और सुंदर ढंग से कर पाए, ऐसा संस्थान का प्रयास है। इस वर्ष भगवान कलहंस पुष्प बंगले में विराजमान होंगे। अंदर के पुष्प बंगलों को जो बना रहे हैं उसमें पत्र, पुष्प, वृक्ष आदि आकृति उकेरी जाएंगी और हंस, इस बार हंस आकृति जो है वह पुष्प बंगले की शोभा होंगी। बाहर बहुत ही दिव्य और भव्य विद्युत सजावट की जा रही है। निश्चित रूप से सज्जा नैना विराम होगी और श्रद्धालु परिसर में प्रवेश करने से पूर्व भी ऐसी सुंदर दिव्य छटा को देखकर अभिभूत हो उठेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है।
0: इसके साथ ही भगवान कृष्ण अब की बार जन्मोत्सव पर बेहद दुर्लभ पंचरत्नी पोशाक धारण करेंगे, जिस पर समुद्र मंथन से निकले 14 रत्नों में से 5 विशेष रत्नों को उकेरा गया है।
2: पंचरत्नी पोशाक को धारण करेंगे, जो समुद्र मंथन में 14 रत्न मिले थे उनमें से 5 रत्न उकेरे गए हैं श्री ठाकुर जी की दिव्य पोशाक पर। ठाकुर जी को इस वर्ष काशी और अयोध्या, श्री राम जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ धाम से प्रसाद आ रहे हैं, उनको भव्य और दिव्य शोभा यात्रा के रूप में श्री के जन्म स्थान में प्रवेश कराया जाएगा, श्री ठाकुर जी को अर्पित किया जाएगा।
0: यही नहीं, ब्रज में इस बार जन्मोत्सव के मौके पर काशी, मथुरा और अयोध्या के दिव्य त्रिवेणी का महासंगम नजर आने वाला है। काशी विश्वनाथ धाम से ठाकुर जी के लिए दिव्य वस्त्र, फल, सुगंधित द्रव्य और मिठाइयां भेजी जा रही हैं। वहीं अयोध्या की श्रीराम जन्मभूमि से लड्डू गोपाल के लिए लड्डू, फल, मेवे और महाभिषेक की पवित्र सामग्री आ रही है। इन सभी प्रसादों को एक भव्य और दिव्य शोभा यात्रा के रूप में श्री कृष्ण जन्म स्थान में प्रवेश कराया जाएगा। यानी मथुरा में इस बार की जन्माष्टमी केवल एक उत्सव नहीं बल्कि पूरी सनातन परंपरा के एकाकार होने का महापर्व बनने जा रही है।
2: काशी, मथुरा, अयोध्या सनातन की आत्मा है। राम कृष्ण और शिव को यदि अलग कर दे तो सनातन आत्मा विहीन है। तो इस वर्ष श्रद्धालुओं को काशी, मथुरा, अयोध्या इन 3 विशिष्ट पुरियों का जो संगम भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर उपस्थित होगा, उसके अवगाहन और दर्शन का सुअवसर भी मिले।
0: मथुरा श्री कृष्ण की जन्मभूमि है तो वृंदावन उनकी बाल लीलाओं की भूमि है, इसलिए मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी का उत्सव सबसे अलग होता है। इस बार भी ब्रज में कृष्ण जन्मोत्सव भव्य होगा, विराट होगा। 4 सितंबर की मध्य रात्रि को श्री कृष्ण जन्मभूमि में बाल गोपाल का पंचामृत अभिषेक किया जाएगा, उन्हें विशेष 56 भोग अर्पित किया जाएगा। बाल गोपाल के जन्म पर ब्रज से उठी कृष्ण भक्ति की लहर में सारा संसार आकंठ डूबा नजर आएगा। मथुरा से मदन गोपाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: तो कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियां ना सिर्फ देश के कृष्ण मंदिरों में दिखाई दे रही हैं, बल्कि बाजार भी जन्माष्टमी पर्व के लिए सज चुके हैं। लड्डू गोपाल की मूर्तियां, बाल गोपाल के झूले और पोशाक से लेकर मुरली और माला तक बाजार में बिक रहे हैं। लोग भी जन्माष्टमी से जुड़ी खरीदारी में जोर शोर के साथ जुटे हुए हैं।

0: आने वाला है जन्माष्टमी का त्योहार, सज गए हैं बाजार, एक से बढ़कर एक मनमोहक लड्डू गोपाल और उनकी सुंदर सुंदर पोशाक। मुरली से लेकर माला तक, झूले से लेकर पालना तक, मुकुट से लेकर मटकी तक, सब कुछ बिक रहा है बाजार में। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के अमरावती से आई हैं, जहां श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर बाजारों में रौनक नजर आने लगी है।
1: जन्माष्टमी आने वाली है, उससे पहले जो है महाराष्ट्र समेत देश के अलग अलग इलाकों में जो है कृष्ण भगवान के अलग अलग वेराइटीज के जो झूले है, उनके ड्रेस है, वो उनके बाजार जो है फटे पड़े है। हम फिलहाल अमरावती के जवाहर गेट के अंदर जो रंगारी गली है वहां पर जवर स्टोर में है, जहां पर आप देख सकते हो कि ये पूरी तरीके से दुकान जो है वो कान्हामय हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि सबसे पहले कान्हा को सबसे प्यारा लगने वाला जो है वो दही है, माखन है। वो माखन जो है, माखन जिस से चुराए जाते थे, वो हंडी यहाँ पर है।
0: बदलते दौर के साथ बाजार में नए नए ट्रेंड की कई चीजें भी जन्माष्टमी पर्व के लिए मौजूद हैं, जो इस पर्व में चार चांद लगा देती हैं। दुकानदारों का कहना है कि इस बार कार्टून कढ़ाई, राजवाड़ी और सूरत से आई पोशाकें ग्राहकों को खूब पसंद आ रही हैं। इनमें आकर्षक डिजाइन के साथ बारीक कढ़ाई और रंगों की विविधता देखने को मिल रही है।
2: इस बार की काफी ट्रेंडिंग में है, इसमें हमारे पास में अलग अलग साइज आई है। छोटे बाल गोपाल है, बड़े बाल गोपाल है, फुल बंगला है, जैसे हम देख सकते हैं फुल बंगला है, मोती बंगला है, बाद में बांसुरी के अलग अलग प्रकार है, छोटे से लेके बड़ी है, राधा नाम से सुसज्जित मोती वर्क, कुंदन वर्क के साथ में छोटे मोटे मुकुट, कुंदन जड़ाऊ वर्क के साथ में काफी सुंदर नकाशी वर्क के साथ इस बार बाजार पूरा हमारा राधा कृष्णमयी हो चुका है। छोटे से उनकी रासलीला करने के लिए डांडिया है, छोटे से मृदंग है, छोटे से पैरोट है, छोटे सा उनका मोबाइल फोन है जिससे वो राधा से बात कर सकते हैं, छोटे से साइकिल है, छोटे से उनके लिए टिफिन बॉक्स है, छोटे से उनके लिए अमृत है, जैसे जलेबी हो गया, फाफड़ा हो गया, या फिर उनके लिए चाय बच्ची हो गई है, चाय बिस्किट भी है, कॉफी भी है।
0: जन्माष्टमी का पर्व जितने ही उत्साह और उमंग के साथ मंदिरों में मनाया जाता है, उसी तरह लोग अपने अपने घरों में भी हर्षोल्लास के साथ जन्माष्टमी मनाते हैं। ऐसे में घरों की झांकी सजाने के लिए कृत्रिम फूलों की माला, झालर, लाइट और अन्य सजावटी सामान भी बाजार में मौजूद हैं।
2: ये जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये कृष्णा जी के जो सेवादार होते हैं, जैसे एक द्वारपाल हो गया, एक वहाँ पे हवा की मतलब पंखी की सेवा दे रहा है, एक वहाँ पे आरती की सेवा दे रहा है, एक वहाँ पे पनिहारी की सेवा दे रहा है, इस प्रकार अलग अलग यहाँ पे सेवादार है।
1: और
2: पीछे आप जो देख रहे हो, यहाँ पे जो आपने हमें पूछा है, ये सारे उनकी जन्म की लीला है,
1: पूरी जन्म की लीला
2: है। जी, ये जन्म की सारी लीला है, जन्म से आज तक उन्होंने जो जो किए है, जैसे जेल का हो चुका है, जेल में अलग से दो प्रकार के कटआउट आ चुके हैं, बाद में माखन की जो वो लीला कर रहे हैं, माखन के लीला के साथ में गोपी जो कुएं पे जाती है पानी भरने के लिए, उसकी एक अलग से लीला है, बाल सखाओं के साथ में जो कमल पे बैठकर वो लीला करते हैं, वैसी लीला है।
0: श्री कृष्ण जन्माष्टमी सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि ये जन जन की अगाध आस्था, भक्ति और प्रेम का महापर्व है, जिसे मनाने के लिए लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अमरावती से धनंजय साबले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: राजधानी दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश इस्कॉन की तस्वीरें अब से कुछ देर पहले हमने आपको दिखाई। अब आपको लेकर चलते हैं दिल्ली के द्वारका में नए इस्कॉन मंदिर में, जहां श्री कृष्ण जन्माष्टमी की भव्य तैयारियां की जा रही हैं। मंदिर परिसर को गोकुल थीम पर सजाया जा रहा है। मंदिर की सजावट से लेकर भगवान के श्रृंगार तक हर चीज में श्री कृष्ण की लीलाओं और गोकुल की झलक दिखाई देने वाली है। भगवान श्री कृष्ण के लिए यहां अब की बार खास पोशाक बनवाई गई है, जिसे तैयार करने में करीब 1.5 महीने का वक्त लगा है। तो वहीं बालकृष्ण के लिए बाहुबली केक भी तैयार किया जा रहा है।

0: जन्माष्टमी के त्यौहार में बस अब कुछ ही दिन बाकी है और ऐसे में श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को लेकर जो राजधानी दिल्ली में द्वारका स्थित इस्कॉन मंदिर में तैयारियां जो है वो जोरों शोरों पर है। एक बार तस्वीरें दिखा देती हूँ, इस्कॉन मंदिर की मैं तस्वीरें दिखा रही हूँ। नया मंदिर जो है वो बना है और यहाँ पर पहली बार जो है जन्माष्टमी जो है इस बारी की जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मंदिर अभी भी आपको जो है यहाँ पर बहुत सारी जो काम है जो तैयारियां हैं वो होनी बाकी है, लेकिन 4 तारीख के लिए जो है ये मंदिर पूरी तरीके से अपने अंतिम रूप में इस वक्त आपको नजर आ जाएगा। चाहे साज सज्जा की बात की जाए, प्रसादम की बात की जाए, जो भक्त यहाँ पर आएंगे उनके लिए जिस तरीके की व्यवस्था की जाए, हर तरीके से जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर होती हुई आपको नजर आ जाएगी। हमारे साथ इस वक्त प्रभु अच्युता आनंद दास जी भी इस वक्त मौजूद है। हरे कृष्ण प्रभु जी, सबसे पहले तो मैं तैयारी की बात करूँ क्योंकि इस वाले इस्कॉन मंदिर में पहली बार जो है जन्माष्टमी मनाई जाएगी, तो भव्य तरीके से इस बार की हम उम्मीद कर सकते हैं?
1: जी हाँ, ज़रूर, इस साल हम बहुत ही भव्य रूप से तैयारी मना रहे हैं। पिछली बार जो हमारा इवन जो पंडाल का साइज था उससे भी हमने 1.5 गुना बड़ा जो पंडाल है वो लगाया है, ताकि भगवान का जो स्वागत है, भगवान का जो जन्मदिन है, और भी ज़्यादा अच्छे से हम मना सकें। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि भगवान का सुबह स्वागत मंगल आरती से करेंगे। सुबह 4:30 बजे सभी के सभी जो श्रद्धालु हैं वो मंगल आरती के लिए यहाँ पे उपस्थित होंगे और भगवान का स्वागत करेंगे। एंड उसके बाद फिर दिन में सारी की सारी एक्टिविटीज स्टार्ट हो जाएंगी। सुबह भगवान का जो इवन जो जो ड्रेस है जो भगवान सुबह दर्शन देंगे वो भगवान 7:30 बजे दर्शन देंगे। एंड रात को भी भगवान का जब अभिषेक होगा तो जो स्पेशल ड्रेस भगवान के लिए जो बनाया गया है वो उस ड्रेस को बनाने में ही 1.5 महीने का समय लगा है। जो रुक्मिणी द्वारकाधीश का जो पूरा का पूरा जो ड्रेस है या पोशाक कहते हैं जिसे, तो उसको बनाने में हमने पूरा 1.5 महीने का समय लगाया और बहुत ही डेडिकेशन के साथ जो हमारे डिवोटी हैं उन्हीं ने ये ड्रेस को डिज़ाइन किया पूरे भक्तिभाव से।
0: बता सकती है कि किस तरीके से जन्माष्टमी से पहले ही मंदिर में आपको रौनक नजर आ जाएगी, कि किस तरीके से जितने भी कृष्ण भक्त हैं वो आपको झूमते हुए नजर आ जाएंगे और जन्माष्टमी को लेकर जो तैयारियां हैं वो भी चलती हुई दिखाई देगी कि भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को खास बनाने के लिए मंदिर परिसर को सजाया जा रहा है और श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए भी जो है उनके दर्शन के लिए भी जो है व्यवस्था की जा रही है। लेकिन इस वक्त की तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से भक्त आपको बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है वो हर साल पहुंचते हैं और मंदिर परिसर में छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी व्यवस्था का ध्यान है वो रखा जाता है। लेकिन इन सभी तैयारियों के बीच जो सबसे ज्यादा खास है वो है भगवान का प्रसादम। आप यहाँ तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको ये प्रसाद जो है वो नजर आ जाएगा और इनकी खास बात यह है कि इसमें आपको कम चीनी यानी कम शुगर जो है वो नजर आने वाली है और ऐसे बहुत सारे विकल्प जो है आपको जो है वो नजर आने वाले। मेरे साथ खुशबू माता जी इस वक्त मौजूद है। हरे कृष्णा खुशबू माता जी। तो यार पहले तो शुरुआत ही बोलूंगी कि आप इस बारी क्या खास है भक्तों के लिए भी और भगवान के प्रसाद में?
2: ये जो है सारा जन्माष्टमी पे हम भगवान के लिए स्पेशल बना रहे हैं। आप सबको पता है अभी ये जो वर्ल्ड चल रहा है बहुत एडल्ट्रेशन है,

0: जन्माष्टमी के मौके पर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन और उनके श्रृंगार की तैयारी भी जो है वो पूरी भक्ति भाव के साथ चल रही है। इस्कॉन मंदिर में इस वक्त मौजूद है और मैं तस्वीरें दिखा देती हूँ कि किस तरीके से आपको यहाँ पर महिलाओं की एक मंडली जो है वो नजर आ जाएगी और लगातार वो इसी तरीके से जो है श्रृंगार की तैयारियों में व्यस्त नजर आएगी। बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो यहाँ एक साथ बैठकर अपने हाथों से भगवान श्री कृष्ण के लिए फूलों की मालाएं जो है वो तैयार कर रही है। आप देख सकते हैं कि आपको रंग बिरंगे फूल जो है वो यहाँ पर नजर आ जाएंगे और किस तरीके से किसी के हाथ में आपको फूल नजर आएंगे तो किसी के हाथों में जो है आपको फूलों की माला बड़ी खूबसूरती के साथ पिरोते हुए जो महिलाएं हैं वो नजर आ जाएगी और चेहरे पे सिर्फ आपको भक्ति भाव नजर आएगा हर एक महिला के चेहरे पर।
1: अष्टमी के लिए ड्राई फ्रूट की माला बनेगी, एक दिन पहले बनेगी और फूलों की और सुंदर माला बनाएगी
0: और सुंदर और भी ज्यादा सुंदर। तो मालाएं जो है वो रोज बन रही है, लेकिन अगर हम जन्माष्टमी के दिन की बात करें तो उस दिन जो है और भी ज्यादा मालाओं को सुंदर बनाने की तैयारी जो है वो की जा रही है। आप देख सकते हैं कि महिलाओं की अच्छी खासी जो यहाँ पर मंडली है आपको बैठी हुई नजर आ जाएगी और बड़े ही प्रेम के साथ, भक्ति के साथ, भावनाओं के साथ जो है ये मालाएं जो है पिरोई जा रही है। सुरक्षा बल की बात करें तो चाहे मंदिर के तरफ से वॉलंटियर्स हो या फिर बाहर पुलिसकर्मी की व्यवस्था की बात की जाए, हर तरीके से इंतजाम जो है वो पुख्ते किए गए ताकि इस बार का जो जश्न है, जो इस बार का जन्मोत्सव है, वो वाकई में भव्य हो सके, बेहद ही खास हो सके। तो हम भी इंतजार है कर रहे हैं, आप भी इंतजार कर रहे हैं, 4 तारीख का इंतजार सभी को है जिस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बेहद ही धूमधाम से मनाया जाएगा। कैमरा पर्सन इमानुअल जोस के साथ मनीषा लड्डा, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे।
2: तो चलिए कृष्ण जन्माष्टमी से जुड़े हुए और भी तमाम रंग जीएनटी पर लगातार आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए, लेकिन अच्छी खबरें लगातार जारी हैं। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में 26वें SCO समिट का भव्य आगाज, तिरंगे झंडे के साथ भारतीय दल का प्रधानमंत्री मोदी ने हाथ हिलाकर किया अभिवादन, शांति विकास और समृद्धि पर मंथन। तमाम वैश्विक चुनौतियों के बीच देश की GDP ग्रोथ बरकरार, वित्तीय वर्ष 2026 की पहली तिमाही 7.8% रही विकास दर, RBI के अनुमान से भी शानदार रहे आंकड़े। मानसूनी बारिश के बीच भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने को मर रहे हैं श्रद्धालु, 30 अगस्त तक 16,75,000 से ज्यादा ने पूजा अर्चना की, पवित्र हेमकुंड साहिब में भी लगा भक्तों का तांता। मुंबई में आगामी गणेश उत्सव की भव्य तैयारियां, साकनाकी के महाराजा की 48 फीट ऊंची प्रतिमा बनी आकर्षण का केंद्र, बप्पा के दरबार की सजावट का काम तेज। नौसेना की ताकत में हुआ इजाफा, मुंबई में दूसरा स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट पोत निपुण हुआ कमीशन, समुद्र में गोताखोरी और जटिल अभियानों को देगा अंजाम। अर्जेंटीना के दिग्गज खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने इंटरनेशनल फुटबॉल से लिया संन्यास, 20 साल लंबे करियर में 207 मैच खेलकर दागे 125 गोल, अपनी कप्तानी में अर्जेंटीना को बनाया विश्व विजेता।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और
0: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं, आधी अधूरी सच्चाइयां, झूठे दावे बिजली की रफ्तार की तरह फैलते, कभी किसी वीडियो के पीछे की सच्चाई बदल दी जाती है और कभी पुरानी तस्वीर को नई साजिश का रंग देकर पेश किया जाता है। लोग बिना जांचे पर खेने सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के दौर में अब खबरें अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं है। हर किसी के हाथ में कैमरा है, हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है और यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नहीं बताकर परोसी जाती, किसी वीडियो को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कुसूर हो। नतीजा ये होता है कि लोग बिना सोचे समझे, बिना जांचे इन्हें सच मानकर शेयर कर देते हैं और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं, जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल, झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। आज ऐसी दो खबरों की पड़ताल हम करेंगे, जिसमें सबसे पहले बात होगी सोशल मीडिया पर छाए उस वीडियो की जो कि नेपाल का बताया जा रहा है, जहां पर 26 अगस्त को आई भीषण बाढ़ के दौरान कुछ लोग तेजी से आते पानी से बचते हुए भागते हुए नजर आ रहे। कहा जा रहा है कि नेपाल का वीडियो है, सच्चाई के आगे बताएंगे। अगली खबर होगी उस वायरल वीडियो से जुड़ी, जिसको शेयर करते हुए लोग कह रहे हैं कि एक टीचर ने कांग्रेस जनता पार्टी के सदस्य को स्कूल के अंदर आने से रोक दिया। क्या है इस वीडियो की सच्चाई, आगे जानिए। शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
0: सोशल मीडिया पर एक संकरे रास्ते पर भागते हुए लोगों का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और उनके पीछे पानी का तेज बहाव नजर आ रहा है। ये वीडियो किसी पहाड़ी इलाके का नजर आ रहा है, काफी ऊंचाई से बनाया हुआ ये वीडियो लगता है और कुछ लोग इस वीडियो को नेपाल में आई बाढ़ से जोड़कर वायरल कर रहे हैं। लेकिन क्या है इसकी सच्चाई, दिखाते हैं इस रिपोर्ट में।
3: नेपाल में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है, आपदा में मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं अब भी कई लोगों का पता नहीं चल पा रहा है। तिब्बत के बॉर्डर से इलाके से आया पानी का सैलाब इतना तेज था कि कस्बे, बाजार और पूरे के पूरे गांव बह गए। इन सब के बीच सोशल मीडिया पर एक संकरे रास्ते पर भागते कुछ लोगों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उनके पीछे पीछे पानी तेजी से बहता हुआ नजर आ रहा है। ये वीडियो किसी पहाड़ी इलाके का है और काफी ऊंचाई से बनाया गया है। एक फेसबुक यूजर ने ये वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, कि हॉलीवुड की फिल्मों में ही ऐसे सीन देखे हैं, आगे आगे अपनी जान बचाने के लिए भागते लोग और पीछे पीछे अजगर जैसा निकल जाने को तैयार पीछा करता पानी। कई मीडिया आउटलेट्स ने भी इस वीडियो को नेपाल बाढ़ के संदर्भ में शेयर किया। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है।
0: दरअसल नेपाल तिब्बत सीमा के पास भोटेकोश नदी में 26 अगस्त को कई विनाशकारी बाढ़ ने दोनों ही देशों के इलाकों में भीषण तबाही मचाई। इस बाढ़ में अब तक करीब 1000 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 4000 से ज्यादा लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। नेपाल तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ के बाद राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। इन सबके बीच सोशल मीडिया पर एक संकरे रास्ते पर भागते कुछ लोगों का वीडियो वायरल हो रहा है। उनके पीछे पीछे पानी तेजी से बहता हुआ नजर आ रहा है। ये वीडियो किसी पहाड़ी इलाके का है और काफी ऊंचाई से बनाया गया है। कुछ लोग इस वीडियो को नेपाल की बाढ़ से जोड़कर सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर शेयर कर रहे हैं। ऐसे में इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमारा ध्यान बैकग्राउंड में आ रही आवाजों पर गया। जब हमने इसे ध्यानपूर्वक सुना तो ये अरबी जैसा कोई भाषा लगी। वीडियो को नेपाल का बताया जा रहा है तो फिर इसमें अरबी आवाजें क्यों सुनाई दे रही हैं? ये हमें थोड़ा सा अटपटा लगा। इसके अलावा हाल फिलहाल में नेपाल बाढ़ को लेकर कई तरह की तस्वीरें और वीडियोज लगातार सामने आ रहे, लेकिन वायरल हो रहे वीडियो जैसा कोई भी वीडियो हमें नहीं मिला। लिहाजा ऐसे में हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा, जिसमें हमारा पहला सवाल ये, अगर दावा सच्चा है तो फिर वायरल हो रहे वीडियो के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी सामने क्यों नहीं आई? हमारा दूसरा सवाल ये कि कहीं किसी और जगह के वीडियो को जानबूझकर नेपाल के साथ जोड़कर वायरल तो नहीं किया जा रहा? देखिए सच और झूठ क्या है इस रिपोर्ट में।
3: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वीडियो की पड़ताल में जुटी। सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें पता लगा कि इसे एक फेसबुक यूजर ने 4 अगस्त 2026 को पोस्ट किया था। उसने अरबी भाषा में कैप्शन लिखा था जिसका हिंदी अनुवाद है, याफा में हुई आज की बारिश का वीडियो। ये एक ऐसा दृश्य है जो आंखों को सुकून देता है और निर्जीव भूमि में जान फूंक देता है, साथ ही ये लोगों में उम्मीद के किरण भी जगाता है। याफा यमन का एक पहाड़ी क्षेत्र है। इस फेसबुक यूजर ने वायरल वीडियो से मिलती जुलती जगह के और भी कई वीडियो शेयर किए हैं। 4 अगस्त को उन्होंने इस तरह के 9 वीडियो शेयर किए और ज्यादातर पोस्ट में बारिश के लिए अल्लाह का शुक्रिया अदा किया। यमन की एक न्यूज वेबसाइट की 3 अगस्त 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक 2 अगस्त 2026 को हुई तेज बारिश के चलते यमन के सब्बाह जिले में स्थित कॉफी बागानों की सिंचाई में काफी मदद मिली। ये बागान अल अरका और तासा इलाकों में हैं। इन इलाकों में यमन के मशहूर याफई कॉफी की भी खेती होती है। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल दावा झूठा साबित हुआ। वायरल हो रहे वीडियो का नेपाल से कोई भी लेना देना नहीं है। ये यमन का पुराना वीडियो है। ज्योति द्विवेदी के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
0: सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में एक शख्स माइक लिए एक युवक को स्कूल में प्रवेश करने से रोकता हुआ नजर आ रहा है और इसके जरिए लोग ये कह रहे हैं कि टीचर ने कांग्रेस जनता पार्टी के सदस्य को स्कूल के अंदर आने से रोक दिया। सच्चाई क्या है इस रिपोर्ट में जानिए।
4: ठीक है, वहाँ पे रुक जाइए, यहाँ पे देखो
5: कौन है, लड़की के चक्कर में आया, कैसे एंट्री दे देंगे।
3: 15 अगस्त को अभिजीत दीपके के नेतृत्व वाली कॉकरोच जनता पार्टी ने गांवों में सरकारी स्कूलों को सुधारने के लिए स्कूल ठीक करो अभियान शुरू किया। इस अभियान की शुरुआत सीजेपी के सह संस्थापक और संयोजक अभिजीत दीपके ने 15 अगस्त को महाराष्ट्र के हिंगोली जिले से की। इस अभियान का मकसद है देश के ग्रामीण और कम फंड वाले सरकारी स्कूलों की बुनियादी सुविधाओं का सोशल ऑडिट करना और स्कूलों की स्थिति को बेहतर बनाना। इन सब के बीच सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक अधेड़ उम्र का शख्स माइक लिए एक युवक को स्कूल में प्रवेश करने से रोकता हुआ नजर आ रहा है। इसके जरिए कुछ लोग ये कह रहे हैं कि टीचर ने सीजेपी सदस्य को रोका। वीडियो में टीचर को ये कहते हुए सुना जा रहा है कि ये लोग लड़कियों को देखने के लिए स्कूल आते हैं। वीडियो शेयर करते हुए एक एक्स यूजर ने लिखा, तो क्या सीजेपी के गुंडे स्कूलों में ये देखकर घुस रहे हैं कि किन स्कूलों में खूबसूरत लड़कियां हैं? मतलब सच में क्या इन बेवकूफों को निरीक्षण के नाम पर स्कूलों में जाने की इजाजत दी जानी चाहिए? क्या ये आपके आदर्श हैं? सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है।
0: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में एक शख्स माइक लिए हुए युवक को स्कूल में प्रवेश करने से रोकते हुए नजर आ रहा है। और इसके जरिए लोग ये कह रहे हैं कि टीचर ने कांग्रेस जनता पार्टी के सदस्य को स्कूल के अंदर जाने से रोका। वीडियो में टीचर को ये कहते हुए सुना जा रहा है कि ये लोग लड़कियों को देखने के लिए स्कूल आते हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर इसी मिलते जुलते दावे के साथ ये वीडियो लगातार शेयर किया जा रहा है। ऐसे में इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की और दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा भी और इसे सुना भी। इस दौरान टीचर और माइक पकड़े हुए युवक के बीच जो बातचीत हो रही है उसे हमने ध्यान से सुना। इसमें जो बोलने का लहजा है, इस तरह का लहजा बिहार में सुनने को मिलता है। मतलब ये कि वायरल हो रहा वीडियो बिहार के किसी इलाके का हो सकता है। साथ ही साथ वीडियो को देखने से ये भी लग रहा है कि अगर कांग्रेस जनता पार्टी का सदस्य किसी स्कूल के हालात को जानने के लिए वहां पहुंचा होता तो वो माइक लेकर क्यों आएगा? वो आराम से स्कूल प्रबंधन से बातचीत करेगा और स्कूल में क्या क्या हो रहा है इसके बारे में जानकारी हासिल कर लेगा। लेकिन इस वीडियो को देखने से ऐसा नहीं लग रहा। इसके अलावा सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई प्रमाणिक जानकारी भी नहीं मिली जो कि वायरल दावे की पुष्टि कर सके कि बिहार में कांग्रेस जनता पार्टी के अभियान को लेकर कोई जानकारी सामने आई। लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा। हमारा पहला सवाल यही था कि वायरल हो रहा वीडियो कब का है और कहां का है। हमारा दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए भ्रम तो नहीं फैलाया जा रहा? सच और झूठ इस रिपोर्ट में जानिए।
3: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वीडियो की पड़ताल में जुटी। सबसे पहले हमने वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें 9 जुलाई को एक फेसबुक पेज पर पोस्ट किया गया वीडियो का एक और वर्जन मिला। इस वीडियो में अधेड़ उम्र का व्यक्ति खुद को स्कूल में सहायक शिक्षक बताता है, जबकि युवक खुद को पत्रकार बताता है। शिक्षक उसे स्कूल परिसर छोड़ने के लिए कहता है और बताता है कि उसे आधिकारिक अनुमति के बिना प्रवेश करने की अनुमति नहीं।
4: लेटर लेकर के ऑडियो ऑफिस से तब देंगे एंट्री।
6: मतलब यहाँ पे जो भी भ्रष्टाचार होगा तो अभी वहाँ पे
4: ऑफिस लेकर ऐसे नहीं देंगे।
3: हमने इस फेसबुक पेज की जांच की। इस दौरान हमने पाया कि यहाँ अलग अलग विषयों को कवर करते कई वीडियोस मौजूद हैं। खासतौर पर बिहार के सरकारी स्कूलों की स्थिति पर यहाँ कई वीडियोस देखने को मिले। एक वीडियो में हमने उन्हें एक शिक्षिका से सवाल जवाब करते और उनके ज्ञान की परीक्षा लेते हुए भी देखा।
7: बर्खास्त हो गया है ऐसे ना?
8: एप्लीकेशन कहाँ धल है?
7: एप्लीकेशन कहाँ धल दिखाइए।
3: इसके बाद फैक्ट चेक टीम ने ये फेसबुक पेज चलाने वाले शख्स यानी कि मनोज यादव से भी संपर्क किया। इस दौरान उन्होंने साफ किया कि उनको कांग्रेस जनता पार्टी से कोई संबंध नहीं है, वो स्कूल ठीक करो अभियान में शामिल नहीं है। वायरल हो रहे वीडियो के बारे में उन्होंने कहा कि पानी की समस्या को उजागर करने के लिए 9 जुलाई को वो नालंदा जिले के इस्लामपुर ब्लॉक स्थित राजकीय उच्च विद्यालय गए थे। इस तरह हमारी पड़ताल से साफ हो गया कि वायरल हो रहे वीडियो का कांग्रेस जनता पार्टी के स्कूल ठीक करो अभियान से कोई संबंध नहीं है। वायरल हो रहा वीडियो 9 जुलाई को फेसबुक पर अपलोड किया गया था, जबकि कांग्रेस जनता पार्टी का स्कूल ठीक करो अभियान 15 अगस्त को शुरू किया गया था। मोहम्मद महफूज आलम के साथ टीम फैक्ट चेक गुड न्यूज टुडे।
0: और फैक्ट चेक में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में, दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला।
0: और वक्त है फैक्ट चेक के आखिरी सफर का। आपको दिखाते हैं ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
8: जन्माष्टमी से पहले सोशल मीडिया पर एक प्यारा वीडियो सामने आया है जिसने लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। वीडियो में नन्हे कलाकार अपनी मासूम अदाओं और शानदार एक्सप्रेशन से सबका ध्यान खींचते नजर आते हैं। उनकी मासूमियत देखकर यूजर्स जमकर प्यार लुटा रहे हैं। वायरल वीडियो में बच्चों को पारंपरिक राधा कृष्ण के लुक में तैयार किया गया है। एक बच्ची राधा के रूप में नजर आती है, वहीं एक बच्चा कान्हा के रूप में दिखाई देता है। दोनों बच्चों की जोड़ी बेहद प्यारी लग रही है। डांस के दौरान बच्चे के एक्सप्रेशन और बच्चे की शरारती अदाएं वीडियो को और भी खास बना देती हैं। म्यूजिक की धुन के साथ दोनों छोटे कलाकार अपने स्टेप्स करने की कोशिश करते नजर आते हैं। उनकी मासूमियत देखकर ऐसा लगता है जैसे वे किसी बड़े स्टेज पर नहीं बल्कि अपने ही अंदाज में त्योहार की खुशी मना रहे हों।

बारिश के दिनों में सड़कों पर पानी और कीचड़ जमा होना आम बात है, लेकिन ऐसे मुश्किल हालात में भी एक छोटे भाई ने अपनी बहन का जिस तरह से ख्याल रखा, उसने लोगों का दिल जीत लिया। वीडियो में तेज बारिश के बीच एक छोटा लड़का अपनी बहन के साथ पानी और कीचड़ से भरे रास्ते पर चलता नजर आता है। आसपास कई गाड़ियां खड़ी हैं और सड़क की हालत ऐसी है कि वहां से निकलना भी

वो एक बड़ी चादर अपनी बहन के ऊपर इस तरह ताने हुए है कि बारिश की बूंदे उस तक न पहुँचे। उसका पूरा ध्यान सिर्फ इस बात पर है कि उसकी बहन किसी तरह भीगने से बच जाए और सुरक्षित तरीके से रास्ता पार कर सके। इसी बीच एक सफेद कुत्ता भी दोनों के आसपास घूमने लगता है। कुत्ता कभी उनके आगे तो कभी पीछे नजर आता है। हालांकि लड़का इससे भी सतर्क हो जाता है। वो एक तरफ बहन को बारिश से बचाते हुए आगे बढ़ता रहता है और दूसरी तरफ कुत्ते पर भी नजर रखता है। कुछ देर बाद जब कुत्ता उसके बहन के ज्यादा करीब आने लगता है तो लड़का तुरंत उसकी तरफ मुड़ता है और उसे दूर हटाने की कोशिश करता है। इसके बाद वो बिना समय गवाए फिर अपनी बहन के पास पहुंच जाता है, चादर को दोबारा ठीक करता है और उसे सुरक्षित रास्ते से आगे ले जाने लगता है। वीडियो में भाई का यही छोटा सा प्रयास सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है। यूजर्स इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक बेहद प्यारा और भावुक करने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें एक छोटी बच्ची अपने घर में जन्मदिन के उपहारों के ढेर के बीच से गुजरती नजर आती है। उसकी मासूम मुस्कान और खुशी का अंदाजा देखकर लोग भावुक हो रहे हैं। क्लिप में जन्मदिन वाली बच्ची रिद्धि घर के बाहर खड़ी दिखती है। परिवार के सदस्य उसके साथ आते हैं। दरवाजे पर रिबन बांधा गया है, उसे कैंची दी जाती है और वो रिबन काटती है जैसे वो अपनी पार्टी की मुख्य अतिथि हो। जैसे ही वो अंदर कदम रखती है, फर्श पर सुंदर कपड़ा बिछा होता है जिस पर फूलों की पंखुड़ियां सजी होती हैं। साथ ही उपहारों का एक लंबा रास्ता बनाया गया है। रिद्धि हैरानी और खुशी से भर जाती है। वो सीधे आगे नहीं बढ़ती बल्कि एक एक करके लिपटे हुए उपहार उठाती जाती है। मुस्कुराते हुए वो उन्हें अपनी बाहों में इकट्ठा करती है। जब तक सारे गिफ्ट नहीं ले लेती तब तक रुकती नहीं। उसकी मासूमियत और उत्साह का ये अंदाज वीडियो को खास बना देता है। वीडियो को देखने के बाद कई यूजर्स ने लिखा है कि ये पल वो हमेशा याद रखेगी।

0: कहते हैं माँ की जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन एक पिता अपने बच्चे की जिंदगी में प्यार और देखभाल की ऐसी छांव बन सकता है जो उसे मुश्किल वक्त में संभाल ले। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के रहने वाले कुलदीप भारद्वाज की कहानी कुछ ऐसी ही है। पत्नी को खोने के बाद उन्होंने अपने 2.5 साल के बेटे सात्विक की परवरिश की पूरी जिम्मेदारी खुद संभाल ली। कुलदीप के लिए अब जिंदगी सिर्फ उसके बारे में सोचने का नाम नहीं है, उनकी दुनिया उनके छोटे से बेटे सात्विक के इर्द गिर्द घूमती है। बच्चे को खाना खिलाने से लेकर उसकी देखभाल करने, उसे संभालने और उसके साथ वक्त बिताने तक वो हर जिम्मेदारी खुद निभा रहे हैं। पिता होने के साथ साथ वो बेटे के लिए माँ जैसी ममता और सुरक्षा देने की भी पूरी कोशिश करते हैं।
1: इधर क्यों आके बैठ गई आप?
2: हवाई जहाज देखने के लिए।
1: अभी कह रही थी डर लग रहा है।
2: नहीं कह रही, जिसको देखते थी घर बैठी, तो कोई नहीं, वो सारे आ गए।
1: कोई नहीं ले जाता अम्मा एयरपोर्ट पे। हाँ,
0: लखनऊ एयरपोर्ट का एक बेहद क्यूट सा वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी छाया हुआ है, जिसमें एक दादी और उनकी पोती की मासूम बातचीत ने नेटिजंस का दिल जीत लिया है।
1: पार्किंग में ये हवाई जहाज का पार्किंग होता है।
2: ये पार्किंग होता है। मुझे पानी पड़ रहा तो भीगता होगा, पानी पड़ रहा तो भीगेगा, पार्किंग है।
0: इस वायरल क्लिप को देखकर लोग अपनी पुरानी यादों में खो गए हैं और कमेंट्स में अपनी अपनी दादी को याद कर रहे हैं। ये वीडियो उस वक्त का है जब दादी हैदराबाद जाने वाली फ्लाइट का इंतजार कर रही थी। एयरपोर्ट पर बैठे बैठे बुजुर्ग महिला अपने बैग के पास ऐसे पहरा दे रही थी जैसे उन्हें डर हो कि कोई उनका सामान लेकर 9:11 न हो जाए। जब पोती ने उन्हें प्यार से समझाया कि यहाँ सामान बिल्कुल सेफ रहता है, तो दादी के मन में बच्चों जैसी जिज्ञासा जाग उठी। फिर क्या था, दादी ने बड़ी मासूमियत से पूछा कि इतने बड़े बड़े हवाई जहाज बारिश में भींगते क्यों नहीं और उन्हें कहाँ खड़ा करते हैं। उनकी ये भोली भाली बातें आज की तेज रफ्तार जिंदगी में बुजुर्गों की उस सादगी की याद दिला गई जो अब बहुत कम देखने को मिलती है। मुंबई के एक ऑटो रिक्शा चालक ने यात्रियों से मराठी में संवाद करने के लिए एक आसान और प्रभावी तरीका अपनाया है। उन्होंने अपने ऑटो के अंदर हाथ से लिखी हिंदी मराठी अनुवाद शीट चिपका रखी है, जिसमें रोजमर्रा के इस्तेमाल के वाक्य शामिल हैं।

0: ये शीट सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है और लोगों ने चालक की मेहनत और जुगाड़ की जमकर तारीफ की है। एक महिला ने ऑटो में सवार होकर ये शीट देखी और इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर कर दिया। शीट में हिंदी वाक्यों के साथ साथ उनके मराठी अनुवाद साफ साफ लिखे हैं ताकि चालक जरूरत पड़ने पर तुरंत देख सकें। ये पहल महाराष्ट्र सरकार के उस अभियान के बीच आई है जिसमें ऑटो टैक्सी और एप बेस्ड कैब चालकों से मराठी की कार्यकारी जानकारी अनिवार्य की गई है। ग्रेजुएशन का दिन हर छात्र के लिए बेहद खास होता है। कई साल की पढ़ाई और मेहनत के बाद जब स्टेज पर उसका नाम पुकारा जाता है और वो डिग्री लेने पहुंचता है तो वो पल हमेशा याद रहता है। लेकिन एक छात्र के लिए ये दिन इसलिए भी खास बन गया क्योंकि वो डिग्री लेने अकेला नहीं आया था। उसके कंधे पर उसकी प्यारी सी बिल्ली भी बैठी थी। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में छात्र बड़े आराम से अपनी बिल्ली को कंधे पर बैठाकर स्टेज की ओर जाता नजर आ रहा है। छात्र को शायद अपनी डिग्री मिलने की खुशी थी लेकिन वहां मौजूद लोगों की नजरें उसके बिल्ली पर टिक गई। कुछ ही देर में ये बिल्ली पूरे समारोह की सबसे खास मेहमान बन गई। वीडियो में छात्र अपनी बिल्ली के साथ स्टेज पर पहुंचता है। जैसे ही वो डीन और प्रोफेसर के पास जाता है वहां मौजूद लोगों का ध्यान बिल्ली पर चला जाता है। कुछ प्रोफेसर उसे देखकर मुस्कुराते हैं तो कुछ प्यार से उसे सहलाते हुए नजर आते हैं। सबसे मजेदार बात ये है कि बिल्ली भी पूरे समय बेहद आराम से छात्र के कंधे पर बैठी रहती है। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे उसे अच्छी तरह पता हो कि आज का दिन उसी के नाम होने वाला है। शादी से पहले होने वाली दुल्हन के लिए बैचलरेट पार्टी का अपना ही उत्साह होता है लेकिन अमेरिका की एक होने वाली दुल्हन के लिए उसकी पार्टी शुरू होने से पहले ही बेहद खास बन गई। वो विमान से अपने बैचलरेट पार्टी के लिए जा रही थी तभी एयर होस्टेस ने उसके लिए ऐसा प्यारा सरप्राइज प्लान किया कि पूरी फ्लाइट शादी की सलाह देने वालों से भर गई। यात्रियों ने नैपकिन पर होने वाले दुल्हा दुल्हन को शादीशुदा जिंदगी के लिए मजेदार और काम की सलाह लिखी।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है
3: जो हमें अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
7: दक्षिण भारत की हरियाली, बैकवाटर्स की शांत लहरें और उनके बीच गूंजती चप्पू की थाप। जब केरल में ओणम का पर्व आता है तो शांत जलधाराएं जीवंत हो उठती हैं। केरलम से ऐसी ही शानदार तस्वीरें निकल कर आईं। स्नेक बोट रेस ये केरल की ऐसी परंपरा है जो नदियों की लहरों पर तैरती दिखाई देती है। साल भी पथनम थिट्टा जिले में पंबा नदी के तट पर पारंपरिक बोट रेस का आयोजन भव्य तरीके से किया गया। नाव पर सवार नाविकों ने पारंपरिक वेशभूषा में पारंपरिक गीत गाते हुए रफ्तार और लाल ताल का अद्भुत नजारा पेश किया।
6: ओणम का नाम आते ही आंखों के सामने केरलम की रंग बिरंगी तस्वीरें उभर आती है। फूलों की पंखुड़ियों से सजी रंगोली, कथकली के रंग, मंदिरों की रौनक और फिर पानी की लहरों को चीरती हुई सैकड़ों चप्पूओं की ताकत। लंबी विशाल सांप जैसी दिखने वाली नावें, नाविकों का जोश, वंचिप्पा पुट्टू की गूंज और किनारों पर उमड़ा जनसैलाब। ये सिर्फ एक नाव दौड़ नहीं है, ये केरलम की धड़कन है, परंपरा है, प्रतिष्ठा है और सबसे बढ़कर ये उस सामूहिक ताकत की तस्वीर है जहां एक नाव को आगे बढ़ाने के लिए सैकड़ों लोग एक साथ सांस लेते हैं, एक साथ गीत गाते हैं और एक ही दिशा में चप्पू चलाते हैं। वंचिप्पाट्टू केरलम का प्रसिद्ध पारंपरिक नौका गीत है जिसे मुख्य रूप से ओणम उत्सव और स्नेक बोट रेस के दौरान गाया जाता है। मलयालम भाषा में वंची का अर्थ नाव और पाट्टू का अर्थ गीत होता है। ओणम उत्सव के साथ केरलम की नदियों और बैक वाटर्स पर हर साल सजने वाले मशहूर स्नेक बोट रेस को वल्लम कली कहा जाता है। ये तस्वीरें हैं पथनमथिट्टा जिले की जिसे केरलम की धार्मिक राजधानी भी कहा जाता है। यहाँ पंबा नदी में 132वीं अरनमुला उथराट्टी बोट रेस का आयोजन किया गया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने इसका शुभारंभ किया। इसमें 50 स्नेक बोट शामिल है। स्नेक बोट की खासियत होती है कि ये 100 फीट से भी ज्यादा लंबी होती है। अपने ऊंचे उठे पिछले हिस्से और लंबी बनावट के कारण ये दूर से किसी फन फैलाए सांप जैसी दिखाई देती है, इसीलिए दुनिया इन्हें स्नेक बोट के नाम से भी जानती है। इस लंबी नाव में कई सारे नाविक जब एक साथ अपने चप्पू पानी में डालते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पूरी नदी की धड़कन एक ही लय में चलने लगी हो। ओणम और वल्लम कली का रिश्ता सिर्फ खेल का नहीं बल्कि केरलम की आस्था, इतिहास, लोक परंपरा और सामूहिक उत्सव का रिश्ता है। जब नदियों और बैक वाटर्स पर सैकड़ों नाविक एक साथ चप्पू चलाते हैं, पारंपरिक वंचिप्पाट्टू की लय गूंजती है और हजारों दर्शक किनारों पर उमड़ते हैं तो पूरा दृश्य केरलम की जीवंत सांस्कृतिक पहचान बन जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट विद यस्टरडे।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को। गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में 26वें SCO समिट का भव्य आगाज। तिरंगे झंडे के साथ भारतीय दल का प्रधानमंत्री मोदी ने हाथ हिलाकर किया अभिवादन। शांति, विकास और समृद्धि पर मंथन। तमाम वैश्विक चुनौतियों के बीच देश की GDP ग्रोथ बरकरार। वित्तीय वर्ष 2026 की पहली तिमाही 7.8% रही विकास दर, RBI के अनुमान से भी शानदार रहे आंकड़े। मानसूनी बारिश के बीच भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने को मर रहे हैं श्रद्धालु। 30 अगस्त तक 16,75,000 से ज्यादा ने पूजा अर्चना की। पवित्र हेमकुंड साहिब में भी लगा भक्तों का तांता। मुंबई में आगामी गणेश उत्सव की भव्य तैयारियां। साकनाकी के महाराजा की 48 फीट ऊंची प्रतिमा बनी आकर्षण का केंद्र। बप्पा के दरबार की सजावट का काम तेज। नौसेना की ताकत में हुआ इजाफा। मुंबई में दूसरा स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट पोत निपुण हुआ कमीशन। समुद्र में गोताखोरी और जटिल अभियानों को देगा अंजाम। अर्जेंटीना के दिग्गज खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने इंटरनेशनल फुटबॉल से लिया संन्यास। 20 साल लंबे करियर में 207 मैच खेलकर दागे 125 गोल। अपनी कप्तानी में अर्जेंटीना को बनाया विश्व विजेता।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। तो जीएनटी स्पेशल में आज बात कृष्ण जन्माष्टमी की। देश भर में जन्माष्टमी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। शहर शहर बेसब्री के साथ कान्हा के आने का इंतजार हो रहा है। कृष्ण जन्मोत्सव का सबसे गाढ़ा रंग चढ़ा है देश भर में मौजूद कन्हैया के भव्य मंदिरों पर, मथुरा हो या फिर वृंदावन, दिल्ली हो या द्वारका हो। शहर शहर कृष्ण धामों में जन्माष्टमी के रंग बिखरे हैं। जीएनटी स्पेशल में आज आपको लिए चलेंगे देश के भव्य कृष्ण मंदिरों में, दिखाएंगे तैयारी कृष्ण जन्मोत्सव की। लेकिन सबसे पहले आपको लिए चलते हैं राजधानी दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में। कृष्ण भक्ति को समर्पित इस्कॉन के मंदिरों में हर साल बड़े पैमाने पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश इलाके में मौजूद इस मंदिर में जोर शोर से तैयारी की जा रही है।

0: रहे हैं कान्हा। प्रकट होने वाले हैं नंदलाल। भक्तों को दर्शन देने आने वाले हैं लड्डू गोपाल। 4 सितंबर को कृष्ण जन्माष्टमी पर्व मनाया जाएगा। सो देश भर के कृष्ण मंदिरों में जन्माष्टमी की तैयारियां अंतिम दौर में हैं। कृष्ण धाम रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठे हैं। ये तस्वीरें दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश में मौजूद इस्कॉन मंदिर की हैं। भाद्रपद माह की अष्टमी तिथि इस मंदिर के लिए साल का सबसे खास दिन होता है। हर साल यहां भव्य तरीके से जन्माष्टमी उत्सव का आयोजन होता है। अब की बार भी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। हर साल इस मंदिर में श्री कृष्ण जन्मोत्सव की तैयारियां कई हफ्तों पहले ही शुरू कर दी जाती है। इस वर्ष भी कान्हा का जन्मोत्सव मनाने के लिए मंदिर को शानदार तरीके से सजाया जा रहा है।
1: इस वक्त मैं मौजूद हूँ ईस्ट ऑफ कैलाश स्थित इस्कॉन मंदिर के भव्य परिसर में, जहाँ पर तस्वीरें मेरे पीछे बता रही कि किस तरीके से जन्माष्टमी की जो तैयारियाँ हैं वो अपने स्तर पर है। आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर भक्तों की अच्छी खासी भीड़ जो है वो नजर आ जाएगी, और साथ ही 4 तारीख को जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा, और उससे पहले मंदिर को सजाने का जितना भी काम है वो लगातार यहाँ पर जो है वो किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मंदिर में, आपको सबसे पहले तो लाइट्स में दिखा देती हूँ आपके, यहाँ पर और भी लाइट्स का काम जो है वो लगातार इसी तरीके से जारी, ताकि मंदिर जो है वो अलग से ही जगमगाता हुआ 4 तारीख को जो है वो नजर आए। और उसके बाद अगर मैं मंदिर परिसर में आपको भवन की तस्वीर दिखाऊं, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको श्रृंगार होता हुआ जो है वो नजर आ जाएगा।
0: श्री कृष्ण जन्मोत्सव के पावन अवसर पर इस्कॉन मंदिर को देश के अलग अलग हिस्सों से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी मंगाए गए खास किस्म के फूलों से सजाया जाता है। साथ ही साथ पूरे मंदिर परिसर में रंग बिरंगी सुंदर लाइटिंग भी की जाती है। आपको बता दें कि यहां अब की बार जन्माष्टमी उत्सव पर सजावट की थीम भगवान श्री कृष्ण के प्रिय मोर पर आधारित है, यानी मोर पंख की बनावट और रंगों को केंद्र में रखकर ही उत्सव के लिए सजावट की जाएगी। जन्माष्टमी के लिए थीम पर आधारित पोशाक खास तौर पर वृंदावन से मंगवाई जा रही है।
2: इस साल भगवान को जो सबसे प्रिय है मोर पंख, तो जो थीम है सिंगार और सजावट की वो पीकॉक पे है, मयूर थीम रखा गया है, और देश विदेश से लाए हुए फूल से सजाएगा, जैसे थाईलैंड और कर्नाटका बंगलोर से फूल मंगाए जा रहे हैं, उससे सजावट की जाएगी। और वृंदावन से भगवान का श्रृंगार के लिए जितने भी ज्वेलरी और ड्रेस है वहाँ से आ रहा है।
0: ईस्ट ऑफ कैलाश के इस्कॉन मंदिर में कृष्ण जन्मोत्सव पर भगवान को केक का भोग लगाने की भी परंपरा है। अब की बार भी यहां भगवान के लिए विशाल केक तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा बाल गोपाल को 1008 प्रकार के व्यंजन का भोग भी लगाया जाएगा।
2: केक का भोग लगेगा ठाकुर जी को, और 1008 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया जाएगा इस्कॉन ईस्ट ऑफ कैलाश में। और सुबह 10 बजे के पहले से कुकिंग स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि भगवान का किचन ही अलग है, तो जो दीक्षित हैं ब्राह्मण दीक्षित हैं और दीक्षित माता जी प्रभु जी लोग हैं वो मिल करके बहुत बड़ा प्रसादम हाल छोटा वहाँ पे कुकिंग आरम्भ हो जाएगी। और चूँकि भगवान का भोग 12 बजे लगेगा, तो तब तक कुकिंग होती रहे और भगवान जी को भोग लगता रहेगा।
0: मंदिर परिसर में उत्सव की तैयारी अब अंतिम चरण में है। जन्माष्टमी से पहले मंदिर में रंग बिरंगे विशाल टेंट लगाए जा रहे हैं, ताकि उत्सव में भारी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं के बैठने और भजन कीर्तन में सुविधा हो। एनसीआर और आसपास के इलाकों से लाखों की संख्या में भक्त और श्रद्धालु जन्माष्टमी मनाने और भगवान के दर्शन के लिए यहां पहुंचते हैं। लिहाजा व्यवस्थाओं के साथ साथ खयाल सुरक्षा के इंतजामों का भी रखा जा रहा है।
2: हमारे दर्शनार्थी आएंगे श्रद्धालु, उनकी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की व्यवस्था की जा रही है। तो गेट नंबर 1 से जो आम श्रद्धालु आम जनता है वो प्रवेश करेंगे, और गेट नंबर 7 से जो हमारे डोनर हैं अभी VIPs हैं, जैसे मिनिस्टर जो गणमान्य व्यक्ति हैं हर फील्ड के, वो आएंगे। और दिल्ली पुलिस के 1200-600 जवान लगेंगे दिल्ली पुलिस के, अब 1200 प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड रहेंगे, उनकी व्यवस्था चाक चौबंद रहेगी, और 4 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी होंगी और 8 एम्बुलेंस होंगी और अच्छे डॉक्टरों की टीम रहेगी इमरजेंसी के लिए। तो इस तरह से व्यवस्था रहेगी। और अनुरोध है कि जो मैं 10 श्रद्धालु हैं वो कोई बैग और वैसी चीज़ें न लेके आए ताकि किसी प्रकार का सिक्योरिटी जांच में दिक्कत आए, और ये बहुत आवश्यक है।
0: राजधानी दिल्ली में वैसे तो राधा कृष्ण जी को समर्पित इस्कॉन के कई मंदिर हैं, लेकिन दक्षिण दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश इलाके में इस मंदिर की बात ही अलग है। श्री श्री राधा पाटसारथी मंदिर के नाम से इस मंदिर की स्थापना 1998 में की गई थी। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की मनमोहक प्रतिमा स्थापित है। कृष्ण भक्तों के लिए ये मंदिर आस्था का बड़ा केंद्र है। खास तौर से हर साल जन्माष्टमी के अवसर पर यहाँ होने वाला भव्य उत्सव श्रद्धालुओं को विशेष रूप से आकर्षित करता है। इस बार भी तैयारियाँ जोरों शोरों से चल रही है, तो उम्मीद है कि यहाँ पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन में कृष्ण भक्ति की अनूठी झांकियाँ देखने को मिलेंगी। दिल्ली से आशुतोष कुमार और मनीषा लाडा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: दिल्ली से अब रुख करते हैं भारत के उस भाग का जहां की धरती ने कृष्ण लीलाओं को अपनी आंखों से देखा है, जिसकी मिट्टी में कभी बाल कृष्ण खेला करते थे, जहां यमुना के तट पर सखाओं संग खेलते कान्हा का बचपन बीता, ब्रज की वो धारा जिसके रज रज पर आज भी श्याम रंग चढ़ा है। श्री कृष्ण का जन्मोत्सव ब्रज के लिए साल का सबसे बड़ा त्यौहार है। अपने कान्हा के जन्मोत्सव जैसे ही ब्रज मनाता है, वैसे ही वाकई दुनिया में कोई और मना नहीं सकता। कृष्ण जन्मभूमि से लेकर वृंदावन के तमाम मंदिरों में इस समय जन्माष्टमी की तैयारी पूरी हो चुकी है। तो चलिए आपको बताते हैं कि इस जन्माष्टमी पर कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में क्या कुछ खास होने जा रहा है, और मथुरा में कैसी है तैयारी जन्मोत्सव की।

0: ब्रजभूमि में इस समय चारों तरफ सिर्फ एक ही गूंज है, हाथी घोड़ा बाल की जय कन्हैया लाल। भगवान श्री कृष्ण के 5253वें जन्मोत्सव को लेकर कान्हा की नगरी मथुरा और लीला भूमि वृंदावन सजाए जा रहे हैं। द्वापर युग की वही दिव्यता, वही भव्यता और वही भक्ति एक बार फिर कान्हा के जन्मस्थली मथुरा में जीवंत हो उठी है।
1: भगवान श्री कृष्ण के 5253वें जन्मदिन के लिए पूरे ब्रज को सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है और इस तरह की जो पेंटिंग है ना वो सारी दीवारों पर बनाई जा रही है, जो दीवार भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि की तरफ जाती है। तो इसमें जो लीला है वो दर्शाया जा रहा है कि भगवान श्री कृष्ण को वासुदेव जी गोकुल लेकर जा रहे हैं। तो ऐसी ही जो लीला है भगवान की, जितनी भी लीला है भगवान ने ब्रज में की, वो सभी लीलाएं जो प्रमुख मार्ग हैं उन पर सजाई जा रही हैं। करीब 24 चौराहे सजाए जा रहे हैं। इस तरह की जो सजावट का काम है ये चल रहा है पूरे ब्रज में, जगह जगह देखेंगे। इस तरह ये गेट बनाया जाएगा, तोरण द्वार बनाए जा रहे हैं, करीब 24 द्वार बनेंगे, 24 चौक चौराहे सजाए जा रहे हैं। और जितनी भी दीवार है जो ब्रज जन्मभूमि की तरफ जाती है, जन्मभूमि के पास का रास्ता है, तो इस तरह की जो सजावट है ना भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव को मनाने के लिए, 4 सितंबर को भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मनाया जाएगा ब्रज में, तो उसकी जो तैयारी है बड़े भव्यता और दिव्यता पर चल रही है।
0: इस साल 4 सितंबर 2026 को मध्यरात्रि में होने वाले मुख्य जन्मोत्सव को लेकर तैयारियां अब अंतिम चरण में हैं। 4 सितंबर को रात 11:56 पर शुरू होने वाले निषेध काल पूजा मुहूर्त के लिए मथुरा के मंदिर चौक चौराहों को रोशन किया जा रहा है। श्री कृष्ण जन्म स्थान पर इस बार श्रद्धालुओं को ठाकुर जी के एक बेहद अलौकिक रूप के दर्शन होंगे। जन्माष्टमी के पावन अवसर पर अब की बार कन्हैया कलहंस पुष्प बंगले में विराजमान होंगे, इसीलिए जन्मस्थान के अंदर के पुष्प बंगलों को दुर्लभ पत्र, पुष्प वृक्षों और विशेष रूप से हंसों की दिव्य आकृतियों से सजाया जा रहा है।
2: भगवान श्री कृष्ण के 5253वें जन्मदिन को, जन्मोत्सव को बहुत ही भव्यता और दिव्यता के साथ मनाया जाएगा। तैयारियां बहुत जोर शोर भाव से चल रही है। आने वाले श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के दर्शन सुव्यवस्थित और सुंदर ढंग से कर पाए ऐसा संस्थान का प्रयास है। इस वर्ष भगवान कलहंस पुष्प बंगले में विराजमान होंगे। अंदर के पुष्प बंगलों को जो बना रहे हैं उसमें पत्र पुष्प वृक्ष आदि आकृति उकेरी जाएंगी और हंस, इस बार हंस आकृति जो है वह पुष्प बंगले की शोभा होंगी। बाहर बहुत ही दिव्य और भव्य विद्युत सजावट की जा रही है। निश्चित रूप से सज्जा नैना विराम होगी और श्रद्धालु परिसर में प्रवेश करने से पूर्व भी ऐसी सुंदर दिव्य छटा को देखकर अभिभूत हो उठेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है।
0: इसके साथ ही भगवान कृष्ण अब की बार जन्मोत्सव पर बेहद दुर्लभ पंचरत्नी पोशाक धारण करेंगे, जिस पर समुद्र मंथन से निकले 14 रत्नों में से 5 विशेष रत्नों को उकेरा गया है।
2: पंचरत्नी पोशाक को धारण करेंगे। जो समुद्र मंथन में 14 रत्न मिले थे उनमें से 5 रत्न उकेरे गए हैं श्री ठाकुर जी की दिव्य पोशाक पर। ठाकुर जी को इस वर्ष काशी और अयोध्या, श्री राम जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ धाम से प्रसाद आ रहे हैं, उनको भव्य और दिव्य शोभा यात्रा के रूप में श्री के जन्म स्थान में प्रवेश कराया जाएगा, श्री ठाकुर जी को अर्पित किया जाएगा।
0: यही नहीं, ब्रज में इस बार जन्मोत्सव के मौके पर काशी मथुरा और अयोध्या के दिव्य त्रिवेणी का महासंगम नजर आने वाला है। काशी विश्वनाथ धाम से ठाकुर जी के लिए दिव्य वस्त्र, फल, सुगंधित द्रव्य और मिठाइयां भेजी जा रही हैं। वहीं अयोध्या की श्रीराम जन्मभूमि से लड्डू गोपाल के लिए लड्डू, फल, मेवे और महाभिषेक की पवित्र सामग्री आ रही है। इन सभी प्रसादों को एक भव्य और दिव्य शोभा यात्रा के रूप में श्री कृष्ण जन्म स्थान में प्रवेश कराया जाएगा। यानी मथुरा में इस बार की जन्माष्टमी केवल एक उत्सव नहीं बल्कि पूरी सनातन परंपरा के एकाकार होने का महापर्व बनने जा रही है।
2: काशी मथुरा अयोध्या सनातन की आत्मा है। राम कृष्ण और शिव को यदि अलग कर दे तो सनातन आत्मा विहीन है। तो इस वर्ष श्रद्धालुओं को काशी मथुरा अयोध्या इन 3 विशिष्ट पुरियों का जो संगम भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर उपस्थित होगा उसके अवगाहन और दर्शन का सुअवसर भी मिले।
0: मथुरा श्री कृष्ण की जन्मभूमि है तो वृंदावन उनकी बाल लीलाओं की भूमि है, इसलिए मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी का उत्सव सबसे अलग होता है। इस बार भी ब्रज में कृष्ण जन्मोत्सव भव्य होगा, विराट होगा। 4 सितंबर की मध्य रात्रि को श्री कृष्ण जन्मभूमि में बाल गोपाल का पंचामृत अभिषेक किया जाएगा, उन्हें विशेष 56 भोग अर्पित किया जाएगा। बाल गोपाल के जन्म पर ब्रज से उठी कृष्ण भक्ति की लहर में सारा संसार आकंठ डूबा नजर आएगा। मथुरा से मदन गोपाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: तो कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियां ना सिर्फ देश के कृष्ण मंदिरों में दिखाई दे रही हैं, बल्कि बाजार भी जन्माष्टमी पर्व के लिए सज चुके हैं। लड्डू गोपाल की मूर्तियां, बाल गोपाल के झूले और पोशाक से लेकर मुरली और माला तक बाजार में बिक रहे हैं। लोग भी जन्माष्टमी से जुड़ी खरीदारी में जोर शोर के साथ जुटे हुए हैं।

0: आने वाला है जन्माष्टमी का त्योहार, सज गए हैं बाजार, एक से बढ़कर एक मनमोहक लड्डू गोपाल और उनकी सुंदर सुंदर पोशाक, मुरली से लेकर माला तक, झूले से लेकर पालना तक, मुकुट से लेकर मटकी तक, सब कुछ बिक रहा है बाजार में। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के अमरावती से आई हैं, जहां श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर बाजारों में रौनक नजर आने लगी है।
1: जन्माष्टमी आने वाली है, उससे पहले जो है महाराष्ट्र समेत देश के अलग अलग इलाकों में जो है कृष्ण भगवान के अलग अलग वेराइटीज के जो झूले है, उनके ड्रेस है, वो उनके बाजार जो है फटे पड़े है। हम फिलहाल अमरावती के जवाहर गेट के अंदर जो रंगारी गली है वहां पर जवर स्टोर में है, जहां पर आप देख सकते हो कि ये पूरी तरीके से दुकान जो है वो कान्हामय हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि सबसे पहले कान्हा को सबसे प्यारा लगने वाला जो है वो दही है, माखन है। वो माखन जो है, माखन जिस से चुराए जाते थे, वो हंडी यहाँ पर है।
0: बदलते दौर के साथ बाजार में नए नए ट्रेंड की कई चीजें भी जन्माष्टमी पर्व के लिए मौजूद हैं, जो इस पर्व में चार चांद लगा देती हैं। दुकानदारों का कहना है कि इस बार कार्टून कढ़ाई, राजबाड़ी और सूरत से आई पोशाकें ग्राहकों को खूब पसंद आ रही हैं। इनमें आकर्षक डिजाइन के साथ बारीक कढ़ाई और रंगों की विविधता देखने को मिल रही है।
2: इस बार की काफी ट्रेंडिंग में है, इसमें हमारे पास में अलग अलग साइज आई है, छोटे बाल गोपाल है, बड़े बाल गोपाल है, फुल बंगला है, जैसे हम देख सकते हैं फुल बंगला है, मोती बंगला है, बाद में बांसुरी के अलग अलग प्रकार है, छोटे से लेके बड़ी है, राधा नाम से सुसज्जित मोती वर्क, कुंदन वर्क के साथ में छोटे मोटे मुकुट, कुंदन जड़ाऊ वर्क के साथ में काफी सुंदर नकाशी वर्क के साथ इस बार बाजार पूरा हमारा राधा कृष्णमय हो चुका है। छोटे से उनकी रासलीला करने के लिए डांडिया है, छोटे से मृदंग है, छोटे से पैरोट है, छोटे सा उनका मोबाइल फोन है जिससे वो राधा से बात कर सकते हैं, छोटे से साइकिल है, छोटे से उनके लिए टिफिन बॉक्स है, छोटे से उनके लिए अमृत है, जैसे जलेबी हो गया, फाफड़ा हो गया, या फिर उनके लिए चाय बच्ची हो गई है,
3: चाय बिस्किट भी है,
2: कॉफी भी है।
0: जन्माष्टमी का पर्व जितने ही उत्साह और उमंग के साथ मंदिरों में मनाया जाता है, उसी तरह लोग अपने अपने घरों में भी हर्षोल्लास के साथ जन्माष्टमी मनाते हैं। ऐसे में घरों की झांकी सजाने के लिए कृत्रिम फूलों की माला, झालर, लाइट और अन्य सजावटी सामान भी बाजार में मौजूद हैं।
2: ये जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये कृष्णा जी के जो सेवादार होते हैं, जैसे एक द्वारपाल हो गया, एक वहाँ पे हवा की मतलब पंखी की सेवा दे रहा है, एक वहाँ पे आरती की सेवा दे रहा है, एक वहाँ पे पनिहारी की सेवा दे रहा है, इस प्रकार अलग अलग यहाँ पे सेवादार है।
1: और
2: पीछे आप जो देख रहे हो, यहाँ पे जो आपने हमें पूछा है, ये सारे उनके जन्म की लीला है,
1: पूरी जन्म की लीला
2: है। जी, ये जन्म की सारी लीला है, जन्म से आज तक उन्होंने जो जो किए है, जैसे जेल का हो चुका है, जेल में अलग से दो प्रकार के कटआउट आ चुके हैं, बाद में माखन की जो वो लीला कर रहे हैं, माखन के लीला के साथ में गोपी जो कुएं पे जाती है पानी भरने के लिए, उसकी एक अलग से लीला है, बाल सखाओं के साथ में जो कमल पे बैठकर वो लीला करते हैं, वैसी लीला है।
0: श्री कृष्ण जन्माष्टमी सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि ये जन जन की अगाध आस्था, भक्ति और प्रेम का महापर्व है, जिसे मनाने के लिए लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अमरावती से धनंजय साबले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: राजधानी दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश इस्कॉन की तस्वीरें अब से कुछ देर पहले हमने आपको दिखाई। अब आपको लेकर चलते हैं दिल्ली के द्वारका में नए इस्कॉन मंदिर में, जहां श्री कृष्ण जन्माष्टमी की भव्य तैयारियां की जा रही हैं। मंदिर परिसर को गोकुल थीम पर सजाया जा रहा है। मंदिर की सजावट से लेकर भगवान के श्रृंगार तक हर चीज में श्री कृष्ण की लीलाओं और गोकुल की झलक दिखाई देने वाली है। भगवान श्री कृष्ण के लिए यहां अब की बार खास पोशाक बनवाई गई है, जिसे तैयार करने में करीब 1.5 महीने का वक्त लगा है। तो वहीं बालकृष्ण के लिए बाहुबली केक भी तैयार किया जा रहा है।

0: जन्माष्टमी के त्यौहार में बस अब कुछ ही दिन बाकी है और ऐसे में श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को लेकर जो राजधानी दिल्ली में द्वारका स्थित इस्कॉन मंदिर में तैयारियां जो है वो जोरों शोरों पर है। एक बार तस्वीरें दिखा देती हूँ, इस्कॉन मंदिर की मैं तस्वीरें दिखा रही हूँ। नया मंदिर जो है वो बना है और यहाँ पर पहली बार जो है जन्माष्टमी जो है इस बारी की जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मंदिर अभी भी आपको जो है यहाँ पर बहुत सारी जो काम है जो तैयारियां हैं वो होनी बाकी है, लेकिन 4 तारीख के लिए जो है ये मंदिर पूरी तरीके से अपने अंतिम रूप में इस वक्त आपको नजर आ जाएगा। चाहे साज सज्जा की बात की जाए, प्रसादम की बात की जाए, जो भक्त यहाँ पर आएंगे उनके लिए जिस तरीके की व्यवस्था की जाए, हर तरीके से जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर होती हुई आपको नजर आ जाएगी। हमारे साथ इस वक्त प्रभु अच्युता आनंद दास जी भी इस वक्त मौजूद है। हरे कृष्ण प्रभु जी, सबसे पहले तो मैं तैयारी की बात करूँ, क्योंकि इस वाले इस्कॉन मंदिर में पहली बार जो है जन्माष्टमी मनाई जाएगी, तो भव्य तरीके से इस बार की हम उम्मीद कर सकते हैं?
1: जी हाँ, जरूर, इस साल हम बहुत ही भव्य रूप से तैयारी मना रहे हैं। पिछली बार जो हमारा इवन जो पंडाल का साइज था उससे भी हमने 1.5 गुना बड़ा जो पंडाल है वो लगाया है, ताकि भगवान का जो स्वागत है, भगवान का जो जन्मदिन है, और भी ज़्यादा अच्छे से हम मना सकें। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि भगवान का सुबह स्वागत मंगल आरती से करेंगे। सुबह 4:30 बजे सभी के सभी जो श्रद्धालु हैं वो मंगल आरती के लिए यहाँ पे उपस्थित होंगे और भगवान का स्वागत करेंगे। एंड उसके बाद फिर दिन में सारी की सारी एक्टिविटीज स्टार्ट हो जाएंगी। सुबह भगवान का जो इवन जो ड्रेस है, जो भगवान सुबह दर्शन देंगे, वो भगवान 7:30 बजे दर्शन देंगे। एंड रात को भी भगवान का जब अभिषेक होगा तो जो स्पेशल ड्रेस भगवान के लिए जो बनाया गया है वो उस ड्रेस को बनाने में ही 1.5 महीने का समय लगा है। जो रुक्मिणी द्वारकाधीश का जो पूरा का पूरा जो ड्रेस है या पोशाक कहते हैं जिसे, तो उसको बनाने में हमने पूरा 1.5 महीने का समय लगाया, और बहुत ही डेडिकेशन के साथ जो हमारे डिवोटी हैं उन्हीं ने ये ड्रेस को डिज़ाइन किया पूरे भक्तिभाव से।
2: स्पेशल बना रहे हैं, आप सबको पता है अभी

0: जन्माष्टमी के मौके पर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन और उनके श्रृंगार की तैयारी भी जो है वो पूरी भक्ति भाव के साथ चल रही है। इस्कॉन मंदिर में इस वक्त मौजूद है और मैं तस्वीरें दिखा दी कि किस तरीके से आपको यहाँ पर महिलाओं की एक मंडली जो है वो नजर आ जाएगी और लगातार वो इसी तरीके से जो है श्रृंगार की तैयारियों में व्यस्त नजर आएगी। बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो यहाँ एक साथ बैठकर अपने हाथों से भगवान श्री कृष्ण के लिए फूलों की मालाएं जो है वो तैयार कर रही है। आप देख सकते हैं कि आपको रंग बिरंगे फूल जो है वो यहाँ पर नजर आ जाएंगे और किस तरीके से किसी के हाथ में आपको फूल नजर आएंगे तो किसी के हाथों में जो है आपको फूलों की माला बड़ी खूबसूरती के साथ पिरोते हुए जो महिलाएं हैं वो नजर आ जाएगी और चेहरे पे सिर्फ आपको भक्ति भाव नजर आएगा हर एक महिला के चेहरे पर।
1: अष्टमी के लिए ड्राई फ्रूट की माला बनेगी, एक दिन पहले बनेगी और फूलों की और सुंदर माला बनाएंगे
0: और सुंदर और भी ज्यादा सुंदर। तो मालाएं जो है वो रोज बन रही है, लेकिन अगर हम जन्माष्टमी के दिन की बात करें तो उस दिन जो है और भी ज्यादा मालाओं को सुंदर बनाने की तैयारी जो है वो की जा रही है। आप देख सकते हैं कि महिलाओं की अच्छी खासी जो यहाँ पर मंडली है आपको बैठी हुई नजर आ जाएगी और बड़े ही प्रेम के साथ, भक्ति के साथ, भावनाओं के साथ जो है ये मालाएं जो है पिरोई जा रही है। रक्षा बल की बात करें तो चाहे मंदिर के तरफ से वॉलंटियर्स हो या फिर बाहर पुलिसकर्मी की व्यवस्था की बात की जाए, हर तरीके से इंतजाम जो है वो पुख्ते किए गए ताकि इस बार का जो जश्न है, जो इस बार का जन्मोत्सव है, वो वाकई में भव्य हो सके, बेहद ही खास हो सके। तो हम भी इंतजार है कर रहे हैं, आप भी इंतजार कर रहे हैं, 4 तारीख का इंतजार सभी को है जिस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बेहद ही धूमधाम से मनाया जाएगा। कैमरा पर्सन इमानुअल जोस के साथ मनीषा लड्डा, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे।
2: तो चलिए कृष्ण जन्माष्टमी से जुड़े हुए और भी तमाम रंग जीएनटी पर लगातार आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए, लेकिन अच्छी खबरें लगातार जारी हैं। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
2: किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में 26वें SCO समिट का भव्य आगाज, तिरंगे झंडे के साथ भारतीय दल का प्रधानमंत्री मोदी ने हाथ हिलाकर किया अभिवादन, शांति विकास और समृद्धि पर मंथन। तमाम वैश्विक चुनौतियों के बीच देश की GDP ग्रोथ बरकरार, वित्तीय वर्ष 2026 की पहली तिमाही 7.8% रही विकास दर, RBI के अनुमान से भी शानदार रहे आंकड़े। मानसूनी बारिश के बीच भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने को मर रहे हैं श्रद्धालु। 30 अगस्त तक 16,75,000 से ज्यादा ने पूजा अर्चना की, पवित्र हेमकुंड साहिब में भी लगा भक्तों का तांता। मुंबई में आगामी गणेश उत्सव की भव्य तैयारियां, साकनाकी के महाराजा की 48 फीट ऊंची प्रतिमा बनी आकर्षण का केंद्र, बप्पा के दरबार की सजावट का काम तेज। नौसेना की ताकत में हुआ इजाफा, मुंबई में दूसरा स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट पोत निपुण हुआ कमीशन, समुद्र में गोताखोरी और जटिल अभियानों को देगा अंजाम। अर्जेंटीना के दिग्गज खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने इंटरनेशनल फुटबॉल से लिया संन्यास, 20 साल लंबे करियर में 207 मैच खेलकर दागे 125 गोल, अपनी कप्तानी में अर्जेंटीना को बनाया विश्व विजेता।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला।
3: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं, आधी अधूरी सच्चाइयां, झूठे दावे बिजली रफ्तार की तरह फैलते, कभी किसी वीडियो के पीछे की सच्चाई बदल दी जाती है और कभी पुरानी तस्वीर को नई साजिश का रंग देकर पेश किया जाता है। लोग बिना जांचे पर खेने सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के दौर में अब खबरें अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं है। हर किसी के हाथ में कैमरा है, हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है और यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नहीं बताकर परोसी जाती, किसी वीडियो को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कुछ दूर हो। नतीजा ये होता है कि लोग बिना सोचे समझे, बिना जांचे इन्हें सच मानकर शेयर कर देते हैं और यही से शुरू होती है अफवाहों की आधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं, जहां वायरल दावों की होती सटीक जांच, अफवाहों की होती पड़ताल, झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। आज ऐसी दो खबरों की पड़ताल हम करेंगे, जिसमें सबसे पहले बात होगी सोशल मीडिया पर छाए उस वीडियो की जो कि नेपाल का बताया जा रहा है, जहां पर 26 अगस्त को आई भीषण बाढ़ के दौरान कुछ लोग तेजी से आते पानी से बचते हुए भागते हुए नजर आ रहे। कहा जा रहा है कि नेपाल का वीडियो है, सच्चाई के आगे बताएंगे। अगली खबर होगी उस वायरल वीडियो से जुड़ी, जिसको शेयर करते हुए लोग कह रहे हैं कि एक टीचर ने कांग्रेस जनता पार्टी के सदस्य को स्कूल के अंदर आने से रोक दिया। क्या है इस वीडियो की सच्चाई, आगे जानिए। शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला।
3: सोशल मीडिया पर एक संकरे रास्ते पर भागते हुए लोगों का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और उनके पीछे पानी का तेज बहाव नजर आ रहा है। ये वीडियो किसी पहाड़ी इलाके का नजर आ रहा है, काफी ऊंचाई से बनाया हुआ ये वीडियो लगता है और कुछ लोग इस वीडियो को नेपाल में आई बाढ़ से जोड़कर वायरल कर रहे हैं। लेकिन क्या है इसकी सच्चाई, दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। नेपाल में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है, आपदा में मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं अब भी कई लोगों का पता नहीं चल पा रहा है। तिब्बत के बॉर्डर से इलाके से आया पानी का सैलाब इतना तेज था कि कस्बे, बाजार और पूरे के पूरे गांव बह गए। इन सब के बीच सोशल मीडिया पर एक संकरे रास्ते पर भागते कुछ लोगों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उनके पीछे पीछे पानी तेजी से बहता हुआ नजर आ रहा है। ये वीडियो किसी पहाड़ी इलाके का है और काफी ऊंचाई से बनाया गया है। एक फेसबुक यूजर ने ये वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा कि हॉलीवुड की फिल्मों में ही ऐसे सीन देखे हैं, आगे आगे अपनी जान बचाने के लिए भागते लोग और पीछे पीछे अजगर जैसा निकल जाने को तैयार
4: पीछा करता पानी। कई मीडिया आउटलेट्स ने भी इस वीडियो को नेपाल बाढ़ के संदर्भ में शेयर किया। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है।
3: दरअसल नेपाल तिब्बत सीमा के पास भोटेकोश नदी में 26 अगस्त को कई विनाशकारी बाढ़ ने दोनों ही देशों के इलाकों में भीषण तबाही मचाई है। इस बाढ़ में अब तक करीब 1000 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 4000 से ज्यादा लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। नेपाल तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ के बाद राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। इन सबके बीच सोशल मीडिया पर एक संकरे रास्ते पर भागते कुछ लोगों का वीडियो वायरल हो रहा है। उनके पीछे पीछे पानी तेजी से बहता हुआ नजर आ रहा है। ये वीडियो किसी पहाड़ी इलाके का है और काफी ऊंचाई से बनाया गया है। कुछ लोग इस वीडियो को नेपाल की बाढ़ से जोड़कर सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर शेयर कर रहे हैं। ऐसे में इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमारा ध्यान बैकग्राउंड में आ रही आवाजों पर गया। जब हमने इसे ध्यानपूर्वक सुना तो ये अरबी जैसा कोई भाषा लगी। वीडियो को नेपाल का बताया जा रहा है तो फिर इसमें अरबी आवाजें क्यों सुनाई दे रही हैं, ये हमें थोड़ा सा अटपटा लगा। इसके अलावा हाल फिलहाल में नेपाल बाढ़ को लेकर कई तरह की तस्वीरें और वीडियोज लगातार सामने आ रहे, लेकिन वायरल हो रहे वीडियो जैसा कोई भी वीडियो हमें नहीं मिला। लिहाजा ऐसे में हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा, जिसमें हमारा पहला सवाल ये, अगर दावा सच्चा है तो फिर वायरल हो रहे वीडियो के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी सामने क्यों नहीं आई। हमारा दूसरा सवाल ये कि कहीं किसी और जगह के वीडियो को जानबूझकर नेपाल के साथ जोड़कर वायरल तो नहीं किया जा रहा। देखिए सच और झूठ क्या है इस रिपोर्ट में।
4: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वीडियो की पड़ताल में जुटी। सबसे पहले हमने वायरल हो रही वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें पता लगा कि इसे एक फेसबुक यूजर ने 4 अगस्त 2026 को पोस्ट किया था। उसने अरबी भाषा में कैप्शन लिखा था जिसका हिंदी अनुवाद है, याफा में हुई आज की बारिश का वीडियो। ये एक ऐसा दृश्य है जो आंखों को सुकून देता है और निर्जीव भूमि में जान फूंक देता है, साथ ही ये लोगों में उम्मीद के किरण भी जगाता है। याफा यमन का एक पहाड़ी क्षेत्र है। इस फेसबुक यूजर ने वायरल वीडियो से मिलती जुलती जगह के और भी कई वीडियो शेयर किए हैं। 4 अगस्त को उन्होंने इस तरह के 9 वीडियो शेयर किए और ज्यादातर पोस्ट में बारिश के लिए अल्लाह का शुक्रिया अदा किया। यमन की एक न्यूज वेबसाइट की 3 अगस्त 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक 2 अगस्त 2026 को हुई तेज बारिश के चलते यमन के सब्बाह जिले में स्थित कॉफी बागानों की सिंचाई में काफी मदद मिली। ये बागान अल अरका और तासा इलाकों में है। इन इलाकों में यमन के मशहूर याफई कॉफी की भी खेती होती है। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल दावा झूठा साबित हुआ। वायरल हो रहे वीडियो का नेपाल से कोई भी लेना देना नहीं है। ये यमन का पुराना वीडियो है। ज्योति द्विवेदी के साथ टीम फैक्ट चेक गुड न्यूज टुडे।
3: सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा और वीडियो में एक शख्स माइक लिए एक युवक को स्कूल में प्रवेश करने से रोकता हुआ नजर आ रहा है और इसके जरिए लोग ये कह रहे हैं कि टीचर ने कांग्रेस जनता पार्टी के सदस्य को स्कूल के अंदर आने से रोक दिया। सच्चाई क्या है इस रिपोर्ट में जानिए।
5: ठीक है,
4: 15 अगस्त को अभिजीत दीपके के नेतृत्व वाली कांग्रेस जनता पार्टी ने गांवों में सरकारी स्कूलों को सुधारने के लिए स्कूल ठीक करो अभियान शुरू किया। इस अभियान की शुरुआत सीजेपी के सह संस्थापक और संयोजक अभिजीत दीपके ने 15 अगस्त को महाराष्ट्र के हिंगोली जिले से की। इस अभियान का मकसद है देश के ग्रामीण और कम फंड वाले सरकारी स्कूलों की बुनियादी सुविधाओं का सोशल ऑडिट करना और स्कूलों की स्थिति को बेहतर बनाना। इन सब के बीच सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक अधेड़ उम्र का शख्स माइक लिए एक युवक को स्कूल में प्रवेश करने से रोकता हुआ नजर आ रहा है। इसके जरिए कुछ लोग ये कह रहे हैं कि टीचर ने सीजेपी सदस्य को रोका। वीडियो में टीचर को ये कहते हुए सुना जा रहा है कि ये लोग लड़कियों को देखने के लिए स्कूल आते हैं। वीडियो शेयर करते हुए एक एक्स यूजर ने लिखा, तो क्या सीजेपी के गुंडे स्कूलों में ये देख कर घुस रहे हैं कि किन स्कूलों में खूबसूरत लड़कियां हैं? मतलब सच में क्या इन बेवकूफों को निरीक्षण के नाम पर स्कूलों में जाने की इजाजत दी जानी चाहिए? क्या ये आपके आदर्श हैं? सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है।
3: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में एक शख्स माइक लिए हुए युवक को स्कूल में प्रवेश करने से रोकते हुए नजर आ रहा है और इसके जरिए लोग ये कह रहे हैं कि टीचर ने कांग्रेस जनता पार्टी के सदस्य को स्कूल के अंदर जाने से रोका। वीडियो में टीचर को ये कहते हुए सुना जा रहा है कि ये लोग लड़कियों को देखने के लिए स्कूल आते हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर इसी मिलते जुलते दावे के साथ ये वीडियो लगातार शेयर किया जा रहा है। इसमें इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की और दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा भी और इसे सुना भी। इस दौरान टीचर और माइक पकड़े हुए युवक के बीच जो बातचीत हो रही है उसे हमने ध्यान से सुना। इसमें जो बोलने का लहजा है इस तरह का लहजा बिहार में सुनने को मिलता है, मतलब ये कि वायरल हो रहा वीडियो बिहार के किसी इलाके का हो सकता है। साथ ही साथ वीडियो को देखने से ये भी लग रहा है कि अगर कांग्रेस जनता पार्टी का सदस्य किसी स्कूल के हालात को जानने के लिए वहां पहुंचा होता तो वो माइक लेकर क्यों आएगा। वो आराम से स्कूल प्रबंधन से बातचीत करेगा और स्कूल में क्या क्या हो रहा है इसके बारे में जानकारी हासिल कर लेगा। लेकिन इस वीडियो को देखने से ऐसा नहीं लग रहा। इसके अलावा सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई प्रमाणिक जानकारी भी नहीं मिली जो कि वायरल दावे की पुष्टि कर सके कि बिहार में कांग्रेस जनता पार्टी के अभियान को लेकर कोई जानकारी सामने आई। लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा। हमारा पहला सवाल यही था कि वायरल हो रहा वीडियो कब का है और कहां का है। हमारा दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए भ्रम तो नहीं फैलाया जा रहा। सच और झूठ इस रिपोर्ट में जानिए।
4: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वीडियो की पड़ताल में जुटी। सबसे पहले हमने वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें 9 जुलाई को एक फेसबुक पेज पर पोस्ट किया गया वीडियो का एक और वर्जन मिला। इस वीडियो में अधेड़ उम्र का व्यक्ति खुद को स्कूल में सहायक शिक्षक बताता है जबकि युवक खुद को पत्रकार बताता है। शिक्षक उसे स्कूल परिसर छोड़ने के लिए कहता है और बताता है कि उसे आधिकारिक अनुमति के बिना प्रवेश करने की अनुमति नहीं।
5: लेटर लेकर के आओ ऑफिस से तब देंगे एंट्री।
6: मतलब यहाँ पे जो भी भ्रष्टाचार होगा तो वहाँ पे
5: ऑफिस ऐसे नहीं देंगे।
4: हमने इस फेसबुक पेज की जांच की। इस दौरान हमने पाया कि यहाँ अलग अलग विषयों को कवर करते कई वीडियोस मौजूद हैं। खासतौर पर बिहार के सरकारी स्कूलों की स्थिति पर यहाँ कई वीडियोस देखने को मिले। एक वीडियो में हमने उन्हें एक शिक्षिका से सवाल जवाब करते और उनके ज्ञान की परीक्षा लेते हुए भी देखा।
7: बर्खास्त गया है। ऐसे ना
8: एप्लीकेशन यहाँ धैल है।
7: एप्लीकेशन कहाँ धैल दिखाइए।
4: इसके बाद फैक्ट चेक टीम ने ये फेसबुक पेज चलाने वाली शख्स यानी कि मनोज यादव से भी संपर्क किया। इस दौरान उन्होंने साफ किया कि उनको कांग्रेस जनता पार्टी से कोई संबंध नहीं है, वो स्कूल ठीक करो अभियान में शामिल नहीं है। वायरल हो रहे वीडियो के बारे में उन्होंने कहा कि पानी की समस्या को उजागर करने के लिए 9 जुलाई को वो नालंदा जिले के इस्लामपुर ब्लॉक स्थित राजकीय उच्च विद्यालय गए थे। इस तरह हमारी पड़ताल से साफ हो गया कि वायरल हो रहे वीडियो का कांग्रेस जनता पार्टी के स्कूल ठीक करो अभियान से कोई संबंध नहीं है। वायरल हो रहा वीडियो 9 जुलाई को फेसबुक पर अपलोड किया गया था जबकि कांग्रेस जनता पार्टी का स्कूल ठीक करो अभियान 15 अगस्त को शुरू किया गया था। मोहम्मद महफूज आलम के साथ टीम फैक्ट चेक गुड न्यूज टुडे।
3: और फैक्ट चेक में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में, दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़।
1: और वक्त है फैक्ट चेक के आखिरी सफर का। आपको दिखाते हैं ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
2: जन्माष्टमी से पहले सोशल मीडिया पर एक प्यारा वीडियो सामने आया है जिसने लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। वीडियो में नन्हे कलाकार अपनी मासूम अदाओं और शानदार एक्सप्रेशन से सबका ध्यान खींचते नजर आते हैं। उनकी मासूमियत देखकर यूजर्स जमकर प्यार लुटा रहे हैं। वायरल वीडियो में बच्चों को पारंपरिक राधा कृष्ण के लुक में तैयार किया गया है। एक बच्ची राधा के रूप में नजर आती है, वहीं एक बच्चा कान्हा के रूप में दिखाई देता है। दोनों बच्चों की जोड़ी बेहद प्यारी लग रही है। डांस के दौरान बच्चे के एक्सप्रेशन और बच्चे की शरारती अदाएं वीडियो को और भी खास बना देती हैं। म्यूजिक की धुन के साथ दोनों छोटे कलाकार अपने स्टेप्स करने की कोशिश करते नजर आते हैं। उनकी मासूमियत देखकर ऐसा लगता है जैसे वे किसी बड़े स्टेज पर नहीं बल्कि अपने ही अंदाज में त्योहार की खुशी मना रहे हों।

बारिश के दिनों में सड़कों पर पानी और कीचड़ जमा होना आम बात है, लेकिन ऐसे मुश्किल हालात में भी एक छोटे भाई ने अपनी बहन का जिस तरह से ख्याल रखा, उसने लोगों का दिल जीत लिया। वीडियो में तेज बारिश के बीच एक छोटा लड़का अपनी बहन के साथ पानी और कीचड़ से भरे रास्ते पर चलता नजर आता है। आसपास कई गाड़ियां खड़ी हैं और सड़क की हालत ऐसी है कि वहां से निकलना भी आसान नहीं है। ऐसे मौसम में लड़का खुद बारिश में भीगने की परवाह नहीं करता। वो एक बड़ी चादर अपनी बहन के ऊपर इस तरह ताने हुए है कि बारिश की बूंदें उस तक न पहुंचे। उसका पूरा ध्यान सिर्फ इस बात पर है कि उसकी बहन किसी तरह भीगने से बच जाए और सुरक्षित तरीके से रास्ता पार कर सके। इसी बीच एक सफेद कुत्ता भी दोनों के आसपास घूमने लगता है। कुत्ता कभी उनके आगे तो कभी पीछे नजर आता है। हालांकि लड़का इससे भी सतर्क हो जाता है। वो एक तरफ बहन को बारिश से बचाते हुए आगे बढ़ता रहता है और दूसरी तरफ कुत्ते पर भी नजर रखता है। कुछ देर बाद जब कुत्ता उसके बहन के ज्यादा करीब आने लगता है तो लड़का तुरंत उसकी तरफ मुड़ता है और उसे दूर हटाने की कोशिश करता है। इसके बाद वो बिना समय गंवाए फिर अपनी बहन के पास पहुंच जाता है, चादर को दोबारा ठीक करता है और उसे सुरक्षित रास्ते से आगे ले जाने लगता है। वीडियो में भाई का यही छोटा सा प्रयास सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है। यूजर्स इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं।

सोशल मीडिया पर एक बेहद प्यारा और भावुक करने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें एक छोटी बच्ची अपने घर में जन्मदिन के उपहारों के ढेर के बीच से गुजरती नजर आती है। उसकी मासूम मुस्कान और खुशी का अंदाजा देखकर लोग भावुक हो रहे हैं। क्लिप में जन्मदिन वाली बच्ची रिद्धि घर के बाहर खड़ी दिखती है। परिवार के सदस्य उसके साथ आते हैं। दरवाजे पर रिबन बांधा गया है, उसे कैंची दी जाती है और वो रिबन काटती है जैसे वो अपनी पार्टी की मुख्य अतिथि हो। जैसे ही वो अंदर कदम रखती है, फर्श पर सुंदर कपड़ा बिछा होता है जिस पर फूलों की पंखुड़ियां सजी होती हैं। साथ ही उपहारों का एक लंबा रास्ता बनाया गया है। रिद्धि हैरानी और खुशी से भर जाती है। वो सीधे आगे नहीं बढ़ती बल्कि एक एक करके लिपटे हुए उपहार उठाती जाती है। मुस्कुराते हुए वो उन्हें अपनी बाहों में इकट्ठा करती है। जब तक सारे गिफ्ट नहीं ले लेती तब तक रुकती नहीं। उसकी मासूमियत और उत्साह का ये अंदाज वीडियो को खास बना देता है। वीडियो को देखने के बाद कई यूजर्स ने लिखा है कि ये पल वो हमेशा याद रखेगी।

0: कहते हैं माँ की जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन एक पिता अपने बच्चे की जिंदगी में प्यार और देखभाल की ऐसी छांव बन सकता है जो उसे मुश्किल वक्त में संभाल ले। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के रहने वाले कुलदीप भारद्वाज की कहानी कुछ ऐसी ही है। पत्नी को खोने के बाद उन्होंने अपने 2.5 साल के बेटे सात्विक की परवरिश की पूरी जिम्मेदारी खुद संभाल ली। कुलदीप के लिए अब जिंदगी सिर्फ उसके बारे में सोचने का नाम नहीं है, उनकी दुनिया उनके छोटे से बेटे सात्विक के इर्द गिर्द घूमती है। बच्चे को खाना खिलाने से लेकर उसकी देखभाल करने, उसे संभालने और उसके साथ वक्त बिताने तक वो हर जिम्मेदारी खुद निभा रहे हैं। पिता होने के साथ साथ वो बेटे के लिए माँ जैसी ममता और सुरक्षा देने की भी पूरी कोशिश करते हैं।
1: इधर क्यों आके बैठ गई हैं आप?
2: अब भाई जा देखने के लिए।
1: अभी कह रही थी डर लग रहा है।
2: नहीं कह रही, जिसको देखते इधर बैठी कोई नहीं, वो उसके सामने आ गई।
1: कोई नहीं ले जाता अम्मा एयरपोर्ट पे। हाँ,
0: लखनऊ एयरपोर्ट का एक बेहद क्यूट सा वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी छाया हुआ है, जिसमें एक दादी और उनकी पोती की मासूम बातचीत ने नेटिजन्स का दिल जीत लिया है।
1: पार्किंग में है? ये हवाई जहाज का पार्किंग होता है।
2: ये पार्किंग होता है, और जब पानी पड़ रहा तो भीगता होगा, पानी पड़ रहा था भीगेगा, पार्किंग है।
0: इस वायरल क्लिप को देखकर लोग अपनी पुरानी यादों में खो गए हैं और कमेंट्स में अपनी अपनी दादी को याद कर रहे हैं। ये वीडियो उस वक्त का है जब दादी हैदराबाद जाने वाली फ्लाइट का इंतजार कर रही थी। एयरपोर्ट पर बैठे बैठे बुजुर्ग महिला अपने बैग के पास ऐसे पहरा दे रही थी जैसे उन्हें डर हो कि कोई उनका सामान लेकर 9211 न हो जाए। जब पोती ने उन्हें प्यार से समझाया कि यहाँ सामान बिल्कुल सेफ रहता है, तो दादी के मन में बच्चों जैसी जिज्ञासा जाग उठी। फिर क्या था, दादी ने बड़ी मासूमियत से पूछा कि इतने बड़े बड़े हवाई जहाज बारिश में भींगते क्यों नहीं और उन्हें कहाँ खड़ा करते हैं। उनकी ये भोली भाली बातें आज की तेज रफ्तार जिंदगी में बुजुर्गों की उस सादगी की याद दिला गई जो अब बहुत कम देखने को मिलती है। मुंबई के एक ऑटो रिक्शा चालक ने यात्रियों से मराठी में संवाद करने के लिए एक आसान और प्रभावी तरीका अपनाया है। उन्होंने अपने ऑटो के अंदर हाथ से लिखी हिंदी मराठी अनुवाद शीट चिपका रखी है, जिसमें रोजमर्रा के इस्तेमाल के वाक्य शामिल हैं। ये शीट सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है और लोगों ने चालक की मेहनत और जुगाड़ की जमकर तारीफ की है। एक महिला ने ऑटो में सवार होकर ये शीट देखी और इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर कर दिया। शीट में हिंदी वाक्यों के साथ साथ उनके मराठी अनुवाद साफ साफ लिखे हैं ताकि चालक जरूरत पड़ने पर तुरंत देख सके। ये पहल महाराष्ट्र सरकार के उस अभियान के बीच आई है जिसमें ऑटो टैक्सी और एप बेस्ड कैब चालकों से मराठी की कार्यकारी जानकारी अनिवार्य की गई है। ग्रेजुएशन का दिन हर छात्र के लिए बेहद खास होता है। कई साल की पढ़ाई और मेहनत के बाद जब स्टेज पर उसका नाम पुकारा जाता है और वो डिग्री लेने पहुंचता है तो वो पल हमेशा याद रहता है। लेकिन एक छात्र के लिए ये दिन इसलिए भी खास बन गया क्योंकि वो डिग्री लेने अकेला नहीं

0: आया था, उसके कंधे पर उसकी प्यारी सी बिल्ली भी बैठी थी। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में छात्र बड़े आराम से अपनी बिल्ली को कंधे पर बैठाकर स्टेज की ओर जाता नजर आ रहा है। छात्र को शायद अपनी डिग्री मिलने की खुशी थी, लेकिन वहां मौजूद लोगों की नजरें उसके बिल्ली पर टिक गई। कुछ ही देर में ये बिल्ली पूरे समारोह की सबसे खास मेहमान बन गई। वीडियो में छात्र अपनी बिल्ली के साथ स्टेज पर पहुंचता है। जैसे ही वो डीन और प्रोफेसर के पास जाता है, वहां मौजूद लोगों का ध्यान बिल्ली पर चला जाता है। कुछ प्रोफेसर उसे देखकर मुस्कुराते हैं तो कुछ प्यार से उसे सहलाते हुए नजर आते हैं। सबसे मजेदार बात यह है कि बिल्ली भी पूरे समय बेहद आराम से छात्र के कंधे पर बैठी रहती है। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे उसे अच्छी तरह पता हो कि आज का दिन उसी के नाम होने वाला है। शादी से पहले होने वाली दुल्हन के लिए बैचलरेट पार्टी का अपना ही उत्साह होता है, लेकिन अमेरिका की एक होने वाली दुल्हन के लिए उसकी पार्टी शुरू होने से पहले ही बेहद खास बन गई। वो विमान से अपने बैचलरेट पार्टी के लिए जा रही थी, तभी एयर होस्टेस ने उसके लिए ऐसा प्यारा सरप्राइज प्लान किया कि पूरी फ्लाइट शादी की सलाह देने वालों से भर गई। यात्रियों ने नैपकिन पर होने वाले दुल्हा दुल्हन को शादीशुदा जिंदगी के लिए मजेदार और काम की सलाह लिखी।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
6: दक्षिण भारत की हरियाली, बैकवाटर्स की शांत लहरें और उनके बीच गूंजती चप्पू की थाप। जब केरल में ओणम का पर्व आता है तो शांत जलधाराएं जीवंत हो उठती हैं। केरलम से ऐसी ही शानदार तस्वीरें निकल कर आई। स्नेक बोट रेस ये केरल की ऐसी परंपरा है जो नदियों की लहरों पर तैरती दिखाई देती है। साल भी पथनम थिट्टा जिले में पंबा नदी के तट पर पारंपरिक बोट रेस का आयोजन भव्य तरीके से किया गया। नाव पर सवार नाविकों ने पारंपरिक वेशभूषा में पारंपरिक गीत गाते हुए रफ्तार और लाल ताल का अद्भुत नजारा पेश किया।
7: ओणम का नाम आते ही आंखों के सामने केरलम की रंग बिरंगी तस्वीरें उभर आती है। फूलों की पंखुड़ियों से सजी रंगोली, कथकली के रंग, मंदिरों की रौनक और फिर पानी की लहरों को चीरती हुई सैकड़ों चप्पूओं की ताकत। लंबी विशाल सांप जैसी दिखने वाली नाविक, नाविकों का जोश, वंची पापुट्टू की गूंज और किनारों पर उमड़ा जनसैलाब। ये सिर्फ एक नाव दौड़ नहीं है, ये केरलम की धड़कन है, परंपरा है, प्रतिष्ठा है और सबसे बढ़कर ये उस सामूहिक ताकत की तस्वीर है जहां एक नाव को आगे बढ़ाने के लिए सैकड़ों लोग एक साथ सांस लेते हैं, एक साथ गीत गाते हैं और एक ही दिशा में चप्पू चलाते हैं। वंचीपाट्टू केरलम का प्रसिद्ध पारंपरिक नौका गीत है जिसे मुख्य रूप से ओणम उत्सव और स्नेक बोट रेस के दौरान गाया जाता है। मलयालम भाषा में वंची का अर्थ नाव और पाट्टू का अर्थ गीत होता है। ओणम उत्सव के साथ केरलम की नदियों और बैक वाटर्स पर हर साल सजने वाले मशहूर स्नेक बोट रेस को वल्लम कली कहा जाता है। ये तस्वीरें हैं पथनमथिट्टा जिले की, जिसे केरलम की धार्मिक राजधानी भी कहा जाता है। यहाँ पंबा नदी में 132वीं अरनमुला उथराट्टी बोट रेस का आयोजन किया गया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने इसका शुभारंभ किया। इसमें 50 स्नेक बोट शामिल है। स्नेक बोट की खासियत होती है कि ये 100 फीट से भी ज्यादा लंबी होती है। अपने ऊंचे उठे पिछले हिस्से और लंबी बनावट के कारण ये दूर से किसी फन फैलाए सांप जैसी दिखाई देती है, इसीलिए दुनिया इन्हें स्नेक बोट के नाम से भी जानती है। इस लंबी नाव में कई सारे नाविक जब एक साथ अपने चप्पू पानी में डालते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पूरी नदी की धड़कन एक ही लय में चलने लगी हो। ओणम और वल्लम कली का रिश्ता सिर्फ खेल का नहीं, बल्कि केरलम की आस्था, इतिहास, लोक परंपरा और सामूहिक उत्सव का रिश्ता है। जब नदियों और बैक वाटर्स पर सैकड़ों नाविक एक साथ चप्पू चलाते हैं, पारंपरिक वंचीपाट्टू की लय गूंजती है और हजारों दर्शक किनारों पर उमड़ते हैं, तो पूरा दृश्य केरलम की जीवंत सांस्कृतिक पहचान बन जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट गुड न्यूज़ टुडे।
1: गुड न्यूज़ टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को। गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में 26वें एससीओ समिट का भव्य देश की जीडीपी ग्रोथ बरकरार। वित्तीय वर्ष 2026 की पहली तिमाही 7.8% रही विकास दर, आरबीआई के अनुमान से भी शानदार रहे आंकड़े। मानसूनी बारिश के बीच भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने को उमड़ रहे हैं श्रद्धालु। 30 अगस्त तक 16,75,000 से ज्यादा ने पूजा अर्चना की। पवित्र हेमकुंड साहिब में भी लगा भक्तों का तांता। मुंबई में आगामी गणेश उत्सव की भव्य तैयारियां। साकनाकी के महाराजा की 48 फीट ऊंची प्रतिमा बनी आकर्षण का केंद्र। बप्पा के दरबार की सजावट का काम तेज। नौसेना की ताकत में हुआ इजाफा। मुंबई में दूसरा स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट पोत निपुण हुआ कमीशन। समुद्र में गोताखोरी और जटिल अभियानों को देगा अंजाम। अर्जेंटीना के दिग्गज खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने इंटरनेशनल फुटबॉल से लिया संन्यास। 20 साल लंबे करियर में 207 मैच खेलकर दागे 125 गोल। अपनी कप्तानी में अर्जेंटीना को बनाया विश्व विजेता।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। तो जीएनटी स्पेशल में आज बात कृष्ण जन्माष्टमी की। देश भर में जन्माष्टमी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। शहर शहर बेसब्री के साथ कान्हा के आने का इंतजार हो रहा है। कृष्ण जन्मोत्सव का सबसे गाढ़ा रंग चढ़ा है देश भर में मौजूद कन्हैया के भव्य मंदिरों पर, मथुरा हो या फिर वृंदावन, दिल्ली हो या द्वारका हो, शहर शहर कृष्ण धामों में जन्माष्टमी के रंग बिखरे हैं। जीएनटी स्पेशल में आज आपको लिए चलेंगे देश के भव्य कृष्ण मंदिरों में, दिखाएंगे तैयारी कृष्ण जन्मोत्सव की। लेकिन सबसे पहले आपको लिए चलते हैं राजधानी दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में। कृष्ण भक्ति को समर्पित इस्कॉन के मंदिरों में हर साल बड़े पैमाने पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश इलाके में मौजूद इस मंदिर में जोर शोर से तैयारी की जा रही है।

0: रहे हैं कान्हा। प्रकट होने वाले हैं नंदलाल। भक्तों को दर्शन देने आने वाले हैं लड्डू गोपाल। 4 सितंबर को कृष्ण जन्माष्टमी पर्व मनाया जाएगा। सो देश भर के कृष्ण मंदिरों में जन्माष्टमी की तैयारियां अंतिम दौर में हैं। कृष्ण धाम रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठे हैं। ये तस्वीरें दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश में मौजूद इस्कॉन मंदिर की हैं। भाद्रपद माह की अष्टमी तिथि इस मंदिर के लिए साल का सबसे खास दिन होता है। हर साल यहां भव्य तरीके से जन्माष्टमी उत्सव का आयोजन होता है। अब की बार भी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। हर साल इस मंदिर में श्री कृष्ण जन्मोत्सव की तैयारियां कई हफ्तों पहले ही शुरू कर दी जाती है। इस वर्ष भी कान्हा का जन्मोत्सव मनाने के लिए मंदिर को शानदार तरीके से सजाया जा रहा है।
1: इस वक्त मैं मौजूद हूं ईस्ट ऑफ कैलाश स्थित इस्कॉन मंदिर के भव्य परिसर में, जहां पर तस्वीरें मेरे पीछे बता रही कि किस तरीके से जन्माष्टमी की जो तैयारियां हैं वो अपने स्तर पर है। आप देख सकते हैं कि आपको यहां पर भक्तों की अच्छी खासी भीड़ जो है वो नजर आ जाएगी, और साथ ही 4 तारीख को जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा, और उससे पहले मंदिर को सजाने का जितना भी काम है वो लगातार यहां पर जो है वो किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मंदिर में, आपको सबसे पहले तो लाइट्स में दिखा देती हूँ आपके, यहां पर और भी लाइट्स का काम जो है वो लगातार इसी तरीके से जारी, ताकि मंदिर जो है वो अलग से ही जगमगाता हुआ 4 तारीख को जो है वो नजर आए। और उसके बाद अगर मैं मंदिर परिसर में आपको भवन की तस्वीर दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको श्रृंगार होता हुआ जो है वो नजर आ जाएगा।
0: श्री कृष्ण जन्मोत्सव के पावन अवसर पर इस्कॉन मंदिर को देश के अलग अलग हिस्सों से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी मंगाए गए खास किस्म के फूलों से सजाया जाता है। साथ ही साथ पूरे मंदिर परिसर में रंग बिरंगी सुंदर लाइटिंग भी की जाती है। आपको बता दें कि यहां अब की बार जन्माष्टमी उत्सव पर सजावट की थीम भगवान श्री कृष्ण के प्रिय मोर पर आधारित है, यानी मोर पंख की बनावट और रंगों को केंद्र में रखकर ही उत्सव के लिए सजावट की जाएगी। जन्माष्टमी के लिए थीम पर आधारित पोशाक खास तौर पर वृंदावन से मंगवाई जा रही है।
2: इस साल भगवान को जो सबसे प्रिय है मोर पंख, तो जो थीम है सिंगार और सजावट की वो पीकॉक पे है, मयूर थीम रखा गया है, और देश विदेश से लाए हुए फूल से सजाएगा, जैसे थाईलैंड और कर्नाटका बंगलोर से फूल मंगाए जा रहे हैं उसे सजावट की जाएगी, और वृंदावन से भगवान का श्रृंगार के लिए जितने भी ज्वेलरी और ड्रेस है वहाँ से आ रहा है।
0: ईस्ट ऑफ कैलाश के इस्कॉन मंदिर में कृष्ण जन्मोत्सव पर भगवान को केक का भोग लगाने की भी परंपरा है। अब की बार भी यहां भगवान के लिए विशाल केक तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा बाल गोपाल को 1008 प्रकार के व्यंजन का भोग भी लगाया जाएगा।
2: केक का भोग लगेगा ठाकुर जी को, और 1008 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया जाएगा इस्कॉन ईस्ट ऑफ कैलाश में, और सुबह 10 बजे के पहले से कुकिंग स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि भगवान का किचन ही अलग है। तो जो दीक्षित हैं, ब्राह्मण दीक्षित हैं और दीक्षित माता जी प्रभु जी लोग हैं, वो मिल करके बहुत बड़ा प्रसादम हाल छोटा वहाँ पे कुकिंग आरम्भ हो जाएगी, और चूँकि भगवान का भोग 12 बजे लगेगा तो तब तक कुकिंग होती रहे और भगवान जी को भोग लगता रहेगा।
0: मंदिर परिसर में उत्सव की तैयारी अब अंतिम चरण में है। जन्माष्टमी से पहले मंदिर में रंग बिरंगे विशाल टेंट लगाए जा रहे हैं, ताकि उत्सव में भारी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं के बैठने और भजन कीर्तन में सुविधा हो। दिल्ली एनसीआर और आसपास के इलाकों से लाखों की संख्या में भक्त और श्रद्धालु जन्माष्टमी मनाने और भगवान के दर्शन के लिए यहां पहुंचते हैं। लिहाजा व्यवस्थाओं के साथ साथ ख्याल सुरक्षा के इंतजामों का भी रखा जा रहा है।
2: दर्शनार्थी आएंगे श्रद्धालु, उनकी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की व्यवस्था की जा रही है। तो गेट नंबर 1 से जो आम श्रद्धालु आम जनता है वो प्रवेश करेंगे, और गेट नंबर 7 से जो हमारे डोनर हैं अभी VIPs हैं, जैसे मिनिस्टर जो गणमान्य व्यक्ति हैं हर फील्ड के, वो आएंगे। और दिल्ली पुलिस के 1200-600 जवान लगेंगे दिल्ली पुलिस के, अब 1200 प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड रहेंगे, उनकी व्यवस्था चाक चौबंद रहेगी, और 4 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी होंगी और 8 एम्बुलेंस होंगी और अच्छे डॉक्टरों की टीम रहेगी इमरजेंसी के लिए। तो इस तरह से व्यवस्था रहेगी। और अनुरोध है कि जो मैं 10 श्रद्धालु हैं वो कोई बैग और ऐसी चीज़ें न लेके आए ताकि किसी प्रकार का सिक्योरिटी जांच में दिक्कत आए, और ये बहुत आवश्यक है।
0: राजधानी दिल्ली में वैसे तो राधा कृष्ण जी को समर्पित इस्कॉन के कई मंदिर हैं, लेकिन दक्षिण दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश इलाके में इस मंदिर की बात ही अलग है। श्री श्री राधा पार्थसारथी मंदिर के नाम से इस मंदिर की स्थापना 1998 में की गई थी। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की मनमोहक प्रतिमा स्थापित है। कृष्ण भक्तों के लिए ये मंदिर आस्था का बड़ा केंद्र है। खास तौर से हर साल जन्माष्टमी के अवसर पर यहाँ होने वाला भव्य उत्सव श्रद्धालुओं को विशेष रूप से आकर्षित करता है। इस बार भी तैयारियाँ जोरों शोरों से चल रही है, तो उम्मीद है कि यहाँ पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन में कृष्ण भक्ति की अनूठी झांकियाँ देखने को मिलेंगी। दिल्ली से आशुतोष कुमार और मनीषा लाडा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: दिल्ली से अब रुख करते हैं भारत के उस भाग का जहां की धरती ने कृष्ण लीलाओं को अपनी आंखों से देखा है, जिसकी मिट्टी में कभी बाल कृष्ण खेला करते थे, जहां यमुना के तट पर सखाओं संग खेलते कान्हा का बचपन बीता, ब्रज की वो धारा जिसके रज रज पर आज भी श्याम रंग चढ़ा है। श्री कृष्ण का जन्मोत्सव ब्रज के लिए साल का सबसे बड़ा त्यौहार है। अपने कान्हा के जन्मोत्सव जैसे ही ब्रज मनाता है, वैसे ही वाकई दुनिया में कोई और मना नहीं सकता। कृष्ण जन्मभूमि से लेकर वृंदावन के तमाम मंदिरों में इस समय जन्माष्टमी की तैयारी पूरी हो चुकी है। तो चलिए आपको बताते हैं कि इस जन्माष्टमी पर कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में क्या कुछ खास होने जा रहा है, और मथुरा में कैसी है तैयारी जन्मोत्सव की।

0: ब्रजभूमि में इस समय चारों तरफ सिर्फ एक ही गूंज है, हाथी घोड़ा बाल की जय कन्हैया लाल। भगवान श्री कृष्ण के 5253वें जन्मोत्सव को लेकर कान्हा की नगरी मथुरा और लीला भूमि वृंदावन सजाए जा रहे हैं। द्वापर युग की वही दिव्यता, वही भव्यता और वही भक्ति एक बार फिर कान्हा के जन्मस्थली मथुरा में जीवंत हो उठी है।
1: भगवान श्री कृष्ण के 5253वें जन्मदिन के लिए पूरे ब्रज को सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है और इस तरह की जो पेंटिंग है ना वो सारी दीवारों पर बनाई जा रही है, जो दीवार भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि की तरफ जाती है। तो इसमें जो लीला है वो दर्शाया जा रहा है कि भगवान श्री कृष्ण को वासुदेव जी गोकुल लेकर जा रहे हैं। तो ऐसी ही जो लीला है भगवान की, जितनी भी लीला है भगवान ने ब्रज में की, वो सभी लीलाएं जो प्रमुख मार्ग हैं उन पर सजाई जा रही हैं। करीब 24 चौराहे सजाए जा रहे हैं। इस तरह की जो सजावट का काम है ये चल रहा है पूरे ब्रज में, जगह जगह देखेंगे। इस तरह ये गेट बनाया जाएगा, तोरण द्वार बनाए जा रहे हैं, करीब 24 द्वार बनेंगे, 24 चौक चौराहे सजाए जा रहे हैं। और जितनी भी दीवाल है जो ब्रज जन्मभूमि की तरफ जाती है, जन्मभूमि के पास का रास्ता है, तो इस तरह की जो सजावट है ना भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव को मनाने के लिए, 4 सितंबर को भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मनाया जाएगा ब्रज में, तो उसकी जो तैयारी है बड़े भव्यता और दिव्यता पर चल रही है।
0: इस साल 4 सितंबर 2026 को मध्य रात्रि में होने वाले मुख्य जन्मोत्सव को लेकर तैयारियां अब अंतिम चरण में है। 4 सितंबर को रात 11:56 पर शुरू होने वाले निषेध काल पूजा मुहूर्त के लिए मथुरा के मंदिर चौक चौराहों को रोशन किया जा रहा है। श्री कृष्ण जन्म स्थान पर इस बार श्रद्धालुओं को ठाकुर जी के एक बेहद अलौकिक रूप के दर्शन होंगे। जन्माष्टमी के पावन अवसर पर अब की बार कन्हैया कलहंस पुष्प बंगले में विराजमान होंगे, इसीलिए जन्मस्थान के अंदर के पुष्प बंगलों को दुर्लभ पत्र, पुष्प वृक्षों और विशेष रूप से हंसों की दिव्य आकृतियों से सजाया जा रहा है।
2: भगवान श्री कृष्ण के 5253वें जन्मदिन को, जन्मोत्सव को बहुत ही भव्यता और दिव्यता के साथ मनाया जाएगा। तैयारियां बहुत जोर शोर भाव से चल रही हैं। आने वाले श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के दर्शन सुव्यवस्थित और सुंदर ढंग से कर पाए ऐसा संस्थान का प्रयास है। इस वर्ष भगवान कलहंस पुष्प बंगले में विराजमान होंगे। अंदर के पुष्प बंगलों को जो बना रहे हैं उसमें पत्र, पुष्प, वृक्ष आदि आकृति उकेरी जाएंगी और हंस, इस बार हंस आकृति जो है वह पुष्प बंगले की शोभा होंगी। बाहर बहुत ही दिव्य और भव्य विद्युत सजावट की जा रही है। निश्चित रूप से सज्जा नैना विराम होगी और श्रद्धालु परिसर में प्रवेश करने से पूर्व भी ऐसी सुंदर दिव्य छटा को देखकर अभिभूत हो उठेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है।
0: इसके साथ ही भगवान कृष्ण अब की बार जन्मोत्सव पर बेहद दुर्लभ पंचरत्नी पोशाक धारण करेंगे, जिस पर समुद्र मंथन से निकले 14 रत्नों में से 5 विशेष रत्नों को उकेरा गया है।
2: पंचरत्नी पोशाक को धारण करेंगे, जो समुद्र मंथन में 14 रत्न मिले थे उनमें से 5 रत्न उकेरे गए हैं श्री ठाकुर जी की दिव्य पोशाक पर। ठाकुर जी को इस वर्ष काशी और अयोध्या, श्री राम जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ धाम से प्रसाद आ रहे हैं, उनको भव्य और दिव्य शोभा यात्रा के रूप में श्री के जन्म स्थान में प्रवेश कराया जाएगा, श्री ठाकुर जी को अर्पित किया जाएगा।
0: यही नहीं, ब्रज में इस बार जन्मोत्सव के मौके पर काशी, मथुरा और अयोध्या के दिव्य त्रिवेणी का महासंगम नजर आने वाला है। काशी विश्वनाथ धाम से ठाकुर जी के लिए दिव्य वस्त्र, फल, सुगंधित द्रव्य और मिठाइयां भेजी जा रही हैं। वहीं अयोध्या की श्रीराम जन्मभूमि से लड्डू गोपाल के लिए लड्डू, फल, मेवे और महाभिषेक की पवित्र सामग्री आ रही है। इन सभी प्रसादों को एक भव्य और दिव्य शोभा यात्रा के रूप में श्री कृष्ण जन्म स्थान में प्रवेश कराया जाएगा। यानी मथुरा में इस बार की जन्माष्टमी केवल एक उत्सव नहीं बल्कि पूरी सनातन परंपरा के एकाकार होने का महापर्व बनने जा रही है।
2: काशी, मथुरा, अयोध्या सनातन की आत्मा है। राम कृष्ण और शिव को यदि अलग कर दे तो सनातन आत्मा भीन है। तो इस वर्ष श्रद्धालुओं को काशी, मथुरा, अयोध्या इन 3 विशिष्ट पुरियों का जो संगम भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर उपस्थित होगा उसके अवगाहन और दर्शन का सुअवसर भी मिले।
0: मथुरा श्री कृष्ण की जन्मभूमि है तो वृंदावन उनकी बाल लीलाओं की भूमि है, इसलिए मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी का उत्सव सबसे अलग होता है। इस बार भी ब्रज में कृष्ण जन्मोत्सव भव्य होगा, विराट होगा। 4 सितंबर की मध्य रात्रि को श्री कृष्ण जन्मभूमि में बाल गोपाल का पंचामृत अभिषेक किया जाएगा, उन्हें विशेष 56 भोग अर्पित किया जाएगा। बाल गोपाल के जन्म पर ब्रज से उठी कृष्ण भक्ति की लहर में सारा संसार आकंठ डूबा नजर आएगा। मथुरा से मदन गोपाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: तो कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियां ना सिर्फ देश के कृष्ण मंदिरों में दिखाई दे रही हैं, बल्कि बाजार भी जन्माष्टमी पर्व के लिए सज चुके हैं। लड्डू गोपाल की मूर्तियां, बाल गोपाल के झूले और पोशाक से लेकर मुरली और माला तक बाजार में बिक रहे हैं। लोग भी जन्माष्टमी से जुड़ी खरीदारी में जोर शोर के साथ जुटे हुए हैं।

0: आने वाला है जन्माष्टमी का त्योहार, सज गए हैं बाजार, एक से बढ़कर एक मनमोहक लड्डू गोपाल और उनकी सुंदर सुंदर पोशाक, मुरली से लेकर माला तक, झूले से लेकर पालना तक, मुकुट से लेकर मटकी तक, सब कुछ बिक रहा है बाजार में। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के अमरावती से आई हैं, जहां श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर बाजारों में रौनक नजर आने लगी है।
1: जन्माष्टमी आने वाली है, उससे पहले जो है महाराष्ट्र समेत देश के अलग अलग इलाकों में जो है कृष्ण भगवान के अलग अलग वेराइटीज के जो झूले है, उनके ड्रेस है, वो उनके बाजार जो है फटे पड़े है। हम फिलहाल अमरावती के जवाहर गेट के अंदर जो रंगारी गली है वहां पर जवर स्टोर में है, जहाँ पर आप देख सकते हो कि ये पूरी तरीके से दुकान जो है वो कान्हामय हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि सबसे पहले कान्हा को सबसे प्यारा लगने वाला जो है वो दही है, माखन है। वो माखन जो है, माखन जिस से चुराए जाते थे, वो हंडी यहाँ पर है।
0: बदलते दौर के साथ बाजार में नए नए ट्रेंड की कई चीजें भी जन्माष्टमी पर्व के लिए मौजूद हैं, जो इस पर्व में चार चांद लगा देती हैं। दुकानदारों का कहना है कि इस बार कार्टून कढ़ाई, राजबाड़ी और सूरत से आई पोशाकें ग्राहकों को खूब पसंद आ रही हैं। इनमें आकर्षक डिजाइन के साथ बारीक कढ़ाई और रंगों की विविधता देखने को मिल रही है।
2: इस बार की काफी ट्रेंडिंग में है, इसमें हमारे पास में अलग अलग साइज आई है, छोटे बाल गोपाल है, बड़े बाल गोपाल है, फुल बंगला है, जैसे हम देख सकते हैं फुल बंगला है, मोती बंगला है, बाद में बांसुरी के अलग अलग प्रकार है, छोटे से लेके बड़ी है, राधा नाम से सुसज्जित मोती वर्क, कुंदन वर्क के साथ में, छोटे मोटे मुकुट, कुंदन, जड़ाऊ वर्क के साथ में, काफी सुंदर नकाशी वर्क के साथ इस बार बाजार पूरा हमारा राधा कृष्णमय हो चुका है। छोटे से उनकी रासलीला करने के लिए डांडिया है, छोटे से मृदंग है, छोटे से पैरोट है, छोटे सा उनका मोबाइल फोन है जिससे वो राधा से बात कर सकते हैं, छोटे से साइकिल है, छोटे से उनके लिए टिफिन बॉक्स है, छोटे से उनके लिए अमृत है, जैसे जलेबी हो गया, फाफड़ा हो गया, या फिर उनके लिए चाय बच्ची हो गई है,
3: चाय बिस्किट भी है,
2: कॉफी भी है।
0: जन्माष्टमी का पर्व जितने ही उत्साह और उमंग के साथ मंदिरों में मनाया जाता है, उसी तरह लोग अपने अपने घरों में भी हर्षोल्लास के साथ जन्माष्टमी मनाते हैं। ऐसे में घरों की झांकी सजाने के लिए कृत्रिम फूलों की माला, झालर, लाइट और अन्य सजावटी सामान भी बाजार में मौजूद हैं।
2: ये जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये कृष्णा जी के जो सेवादार होते हैं, जैसे एक द्वारपाल हो गया, एक वहाँ पे हवा की मतलब पंखी की सेवा दे रहा है, एक वहाँ पे आरती की सेवा दे रहा है, एक वहाँ पे पनिहारी की सेवा दे रहा है, इस प्रकार अलग अलग यहाँ पे सेवादार है।
1: और
2: पीछे आप जो देख रहे हो, यहाँ पे जो आपने हमें पूछा है, ये सारे उनकी जन्म की लीला है,
1: पूरी जन्म की लीला
2: है। जी, ये जन्म की सारी लीला है, जन्म से आज तक उन्होंने जो जो किए है, जैसे जेल का हो चुका।
4: राजधानी दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश इस्कॉन की तस्वीरें अब से कुछ देर पहले हमने आपको दिखाई, अब आपको लेकर चलते हैं दिल्ली के द्वारका में नए इस्कॉन मंदिर में, जहां श्री कृष्ण जन्माष्टमी की भव्य तैयारियां की जा रही हैं। मंदिर परिसर को गोकुल थीम पर सजाया जा रहा है। मंदिर की सजावट से लेकर भगवान के श्रृंगार तक हर चीज में श्री कृष्ण की लीलाओं और गोकुल की झलक दिखाई देने वाली है। भगवान श्री कृष्ण के लिए यहां आपकी बार खास पोशाक बनवाई गई है, जिसे तैयार करने में करीब 1.5 महीने का वक्त लगा है। तो वहीं बालकृष्ण के लिए बाहुबली केक भी तैयार किया जा रहा है।

0: जन्माष्टमी के त्यौहार में बस अब कुछ ही दिन बाकी है और ऐसे में श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को लेकर जो राजधानी दिल्ली में द्वारका स्थित इस्कॉन मंदिर में तैयारियां जो है वो जोरों शोरों पर। एक बार तस्वीरें दिखा देती हूँ, इस्कॉन मंदिर की मैं तस्वीरें दिखा रही हूँ। नया मंदिर जो है वो बना है और यहाँ पर पहली बार जो है जन्माष्टमी जो है इस बारी की जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मंदिर अभी भी आपको जो है यहाँ पर बहुत सारी जो काम है जो तैयारियां हैं वो होनी बाकी है, लेकिन 4 तारीख के लिए जो है ये मंदिर पूरी तरीके से अपने अंतिम रूप में इस वक्त आपको नजर आ जाएगा। चाहे साज सज्जा की बात की जाए, प्रसादम की बात की जाए, जो भक्त यहाँ पर आएंगे उनके लिए जिस तरीके की व्यवस्था की जाए, हर तरीके से जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर होती हुई आपको नजर आ जाएगी। हमारे साथ इस वक्त प्रभु अच्युता आनंद दास जी भी इस वक्त मौजूद है। हरे कृष्ण प्रभु जी, सबसे पहले तो मैं तैयारी की बात करूँ, क्योंकि इस वाले इस्कॉन मंदिर में पहली बार जो है जन्माष्टमी मनाई जाएगी, तो भव्य तरीके से इस बार की हम उम्मीद कर सकते हैं?
1: जी हाँ, जरूर, इस साल हम बहुत ही भव्य रूप से तैयारी मना रहे हैं। पिछली बार जो हमारा इवन जो पंडाल का साइज था उससे भी हमने 1.5 गुना बड़ा जो पंडाल है वो लगाया है, ताकि भगवान का जो स्वागत है, भगवान का जो जन्मदिन है, और भी ज़्यादा अच्छे से हम मना सकें। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि भगवान का सुबह स्वागत मंगल आरती से करेंगे। सुबह 4:30 बजे सभी के सभी जो श्रद्धालु हैं वो मंगल आरती के लिए यहाँ पे उपस्थित होंगे और भगवान का स्वागत करेंगे। एंड उसके बाद फिर दिन में सारी की सारी एक्टिविटीज स्टार्ट हो जाएंगी। सुबह भगवान का जो इवन जो ड्रेस है, जो भगवान सुबह दर्शन देंगे, वो भगवान 7:30 बजे दर्शन देंगे। एंड रात को भी भगवान का जब अभिषेक होगा तो जो स्पेशल ड्रेस भगवान के लिए जो बनाया गया है, वो उस ड्रेस को बनाने में ही 1.5 महीने का समय लगा है। जो रुक्मिणी द्वारकाधीश का जो पूरा का पूरा जो ड्रेस है या पोशाक कहते हैं जिसे, तो उसको बनाने में हमने पूरा 1.5 महीने का समय लगाया, और बहुत ही डेडिकेशन के साथ जो हमारे डिवोटी हैं उन्हीं ने ये ड्रेस को डिज़ाइन किया पूरे भक्तिभाव से।
2: जन्माष्टमी पे हम भगवान के लिए स्पेशल बना रहे हैं। आप सबको पता है अभी

0: जन्माष्टमी के मौके पर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन और उनके श्रृंगार की तैयारी भी जो है वो पूरी भक्ति भाव के साथ चल रही है। इस्कॉन मंदिर में इस वक्त मौजूद है और मैं तस्वीरें दिखा दी थी कि किस तरीके से आपको यहाँ पर महिलाओं की एक मंडली जो है वो नजर आ जाएगी और लगातार वो इसी तरीके से जो है श्रृंगार की तैयारियों में व्यस्त नजर आएगी। बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो यहाँ एक साथ बैठकर अपने हाथों से भगवान श्री कृष्ण के लिए फूलों की मालाएं जो है वो तैयार कर रही है। आप देख सकते हैं कि आपको रंग बिरंगे फूल जो है वो यहाँ पर नजर आ जाएंगे और किस तरीके से किसी के हाथ में आपको फूल नजर आएंगे तो किसी के हाथों में जो है आपको फूलों की माला बड़ी खूबसूरती के साथ पिरोते हुए जो महिलाएं हैं वो नजर आ जाएगी और चेहरे पे सिर्फ आपको भक्ति भाव नजर आएगा हर एक महिला के चेहरे पर।
1: अष्टमी के लिए ड्राई फ्रूट की माला बनेगी, एक दिन पहले बनेगी और फूलों की और सुंदर माला बनाएंगे
0: और सुंदर और भी ज्यादा सुंदर। तो मालाएं जो है वो रोज बन रही है, लेकिन अगर हम जन्माष्टमी के दिन की बात करें तो उस दिन जो है और भी ज्यादा मालाओं को सुंदर बनाने की तैयारी जो है वो की जा रही है। आप देख सकते हैं कि महिलाओं की अच्छी खासी जो यहाँ पर मंडली है आपको बैठी हुई नजर आ जाएगी और बड़े ही प्रेम के साथ भक्ति के साथ भावनाओं के साथ जो है ये मालाएं जो है पिरोई जा रही है। सुरक्षा बल की बात करें तो चाहे मंदिर के तरफ से वॉलंटियर्स हो या फिर बाहर पुलिसकर्मी की व्यवस्था की बात की जाए, हर तरीके से इंतजाम जो है वो पुख्ते किए गए ताकि इस बार का जो जश्न है, जो इस बार का चरमोत्सव है वो वाकई में भव्य हो सके, बेहद ही खास हो सके। तो हम भी इंतजार है कर रहे हैं, आप भी इंतजार कर रहे हैं, 4 तारीख का इंतजार सभी को है जिस दिन भगवान श्री कृष्ण का चरमोत्सव बेहद ही धूमधाम से मनाया जाएगा। कैमरा पर्सन इमानुअल जोस के साथ मनीषा लड्डा, दिल्ली, गुड न्यूज चुने।
2: तो चलिए कृष्ण जन्माष्टमी से जुड़े हुए और भी तमाम रंग जीएनटी पर लगातार आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए, लेकिन अच्छी खबरें लगातार जारी हैं। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में 26वें SCO समिट का भव्य आगाज, तिरंगे झंडे के साथ भारतीय दल का प्रधानमंत्री मोदी ने हाथ हिलाकर किया अभिवादन, शांति विकास और समृद्धि पर मंथन। तमाम वैश्विक चुनौतियों के बीच देश की GDP ग्रोथ बरकरार, वित्तीय वर्ष 2026 की पहली तिमाही 7.8% रही विकास दर, RBI के अनुमान से भी शानदार रहे आंकड़े। मानसूनी बारिश के बीच भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने को मर रहे हैं श्रद्धालु, 30 अगस्त तक 16,75,000 से ज्यादा ने पूजा अर्चना की, पवित्र हेमकुंड साहिब में भी लगा भक्तों का तांता। मुंबई में आगामी गणेश उत्सव की भव्य तैयारियां, साकनाकी के महाराजा की 48 फीट ऊंची प्रतिमा बनी आकर्षण का केंद्र, बप्पा के दरबार की सजावट का काम तेज। नौसेना की ताकत में हुआ इजाफा, मुंबई में दूसरा स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट पोत निपुण हुआ कमीशन, समुद्र में गोताखोरी और जटिल अभियानों को देगा अंजाम। अर्जेंटीना के दिग्गज खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने इंटरनेशनल फुटबॉल से लिया संन्यास, 20 साल लंबे करियर में 207 मैच खेलकर दागे 125 गोल, अपनी कप्तानी में अर्जेंटीना को बनाया विश्व विजेता।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला।
0: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं, आधी अधूरी सच्चाइयां, झूठे दावे बिजली की रफ्तार की तरह फैलते, कभी किसी वीडियो के पीछे की सच्चाई बदल दी जाती है और कभी पुरानी तस्वीर को नई साजिश का रंग देकर पेश किया जाता है। लोग बिना जांचे पर खेने सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के दौर में अब खबरें अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं है। हर किसी के हाथ में कैमरा है, हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है और यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नहीं बताकर परोसी जाती है, किसी वीडियो को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कुसुदूर हो। नतीजा ये होता है कि लोग बिना सोचे समझे, बिना जांचे इन्हें सच मानकर शेयर कर देते हैं और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं, जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल, झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। आज ऐसी दो खबरों की पड़ताल हम करेंगे, जिसमें सबसे पहले बात होगी सोशल मीडिया पर छाए उस वीडियो की जो कि नेपाल का बताया जा रहा है, जहां पर 26 अगस्त को आई भीषण बाढ़ के दौरान कुछ लोग तेजी से आते पानी से बचते हुए भागते हुए नजर आ रहे। कहा जा रहा है कि नेपाल का वीडियो है, सच्चाई के आगे बताएंगे। अगली खबर होगी उस वायरल वीडियो से जुड़ी, जिसको शेयर करते हुए लोग कह रहे हैं कि एक टीचर ने कांग्रेस जनता पार्टी के सदस्य को स्कूल के अंदर आने से रोक दिया। क्या है इस वीडियो की सच्चाई, आगे जानिए। शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़।
0: सोशल मीडिया पर एक संकरे रास्ते पर भागते हुए लोगों का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और उनके पीछे पानी का तेज बहाव नजर आ रहा है। ये वीडियो किसी पहाड़ी इलाके का नजर आ रहा है, काफी ऊंचाई से बनाया हुआ ये वीडियो लगता है और कुछ लोग इस वीडियो को नेपाल में आई बाढ़ से जोड़कर वायरल कर रहे हैं। लेकिन क्या है इसकी सच्चाई, दिखाते हैं इस रिपोर्ट में।
3: नेपाल में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है, आपदा में मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं अब भी कई लोगों का पता नहीं चल पा रहा है। तिब्बत के बॉर्डर से इलाके से आया पानी का सैलाब इतना तेज था कि कस्बे, बाजार और पूरे के पूरे गांव बह गए। इन सब के बीच सोशल मीडिया पर एक संकरे रास्ते पर भागते कुछ लोगों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उनके पीछे पीछे पानी तेजी से बहता हुआ नजर आ रहा है। ये वीडियो किसी पहाड़ी इलाके का है और काफी ऊंचाई से बनाया गया है। एक फेसबुक यूजर ने ये वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा कि हॉलीवुड की फिल्मों में ही ऐसे सीन देखे हैं, आगे आगे अपनी जान बचाने के लिए भागते लोग और पीछे पीछे अजगर जैसा निकल जाने को तैयार पीछा करता पानी। कई मीडिया आउटलेट्स ने भी इस वीडियो को नेपाल बाढ़ के संदर्भ में शेयर किया। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है।
0: दरअसल नेपाल तिब्बत सीमा के पास भोटेकोश नदी में 26 अगस्त को कई विनाशकारी बाढ़ ने दोनों ही देशों के इलाकों में भीषण तबाही मचाई। इस बाढ़ में अब तक करीब 1000 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 4000 से ज्यादा लोग अभी भी लापता बताया जा रहा है। नेपाल तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ के बाद राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। इन सबके बीच सोशल मीडिया पर एक संकरे रास्ते पर भागते कुछ लोगों का वीडियो वायरल हो रहा है। उनके पीछे पीछे पानी तेजी से बहता हुआ नजर आ रहा है। ये वीडियो किसी पहाड़ी इलाके का है और काफी ऊंचाई से बनाया गया है। कुछ लोग इस वीडियो को नेपाल की बाढ़ से जोड़कर सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर शेयर कर रहे हैं। ऐसे में इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमारा ध्यान बैकग्राउंड में आ रही आवाजों पर गया। जब हमने इसे ध्यानपूर्वक सुना तो ये अरबी जैसा कोई भाषा लगी। वीडियो को नेपाल का बताया जा रहा है तो फिर इसमें अरबी आवाजें क्यों सुनाई दे रही हैं, ये हमें थोड़ा सा अटपटा लगा। इसके अलावा हाल फिलहाल में नेपाल बाढ़ को लेकर कई तरह की तस्वीरें और वीडियोज लगातार सामने आ रहे, लेकिन वायरल हो रहे वीडियो जैसा कोई भी वीडियो हमें नहीं मिला। लिहाजा ऐसे में हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा, जिसमें हमारा पहला सवाल ये, अगर दावा सच्चा है तो फिर वायरल हो रहे वीडियो के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी सामने क्यों नहीं आई। हमारा दूसरा सवाल ये कि कहीं किसी और जगह के वीडियो को जानबूझकर नेपाल के साथ जोड़कर वायरल तो नहीं किया जा रहा। देखिए सच और झूठ क्या है इस रिपोर्ट में।
3: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वीडियो की पड़ताल में जुटी। सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें पता लगा कि इसे एक फेसबुक यूजर ने 4 अगस्त 2026 को पोस्ट किया था। उसने अरबी भाषा में कैप्शन लिखा था जिसका हिंदी अनुवाद है, याफा में हुई आज की बारिश का वीडियो। ये एक ऐसा दृश्य है जो आंखों को सुकून देता है और निर्जीव भूमि में जान फूंक देता है, साथ ही ये लोगों में उम्मीद के किरण भी जगाता है। याफा यमन का एक पहाड़ी क्षेत्र है। इस फेसबुक यूजर ने वायरल वीडियो से मिलती जुलती जगह के और भी कई वीडियो शेयर किए हैं। 4 अगस्त को उन्होंने इस तरह के 9 वीडियो शेयर किए और ज्यादातर पोस्ट में बारिश के लिए अल्लाह का शुक्रिया अदा किया। यमन की एक न्यूज वेबसाइट की 3 अगस्त 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक 2 अगस्त 2026 को हुई तेज बारिश के चलते यमन के सबाह जिले में स्थित कॉफी बागानों की सिंचाई में काफी मदद मिली। ये बागान अल अरका और तासा इलाकों में है। इन इलाकों में यमन के मशहूर याफई कॉफी की भी खेती होती है। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल दावा झूठा साबित हुआ। वायरल हो रहे वीडियो का नेपाल से कोई भी लेना देना नहीं है। ये यमन का पुराना वीडियो है। ज्योति द्विवेदी के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
0: सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में एक शख्स माइक लिए एक युवक को स्कूल में प्रवेश करने से रोकता हुआ नजर आ रहा है और इसके जरिए लोग ये कह रहे हैं कि टीचर ने कांग्रेस जनता पार्टी के सदस्य को स्कूल के अंदर आने से रोक दिया। सच्चाई क्या है इस रिपोर्ट में जानिए।
3: पंद्रह अगस्त को अभिजीत दीपके के नेतृत्व वाली कांग्रेस जनता पार्टी ने गांवों में सरकारी स्कूलों को सुधारने के लिए स्कूल ठीक करो अभियान शुरू किया। इस अभियान की शुरुआत सीजेपी के सह संस्थापक और संयोजक अभिजीत दीपके ने 15 अगस्त को महाराष्ट्र के हिंगोली जिले से की। इस अभियान का मकसद है देश के ग्रामीण और कम फंड वाले सरकारी स्कूलों की बुनियादी सुविधाओं का सोशल ऑडिट करना और स्कूलों की स्थिति को बेहतर बनाना। इन सब के बीच सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक अधेड़ उम्र का शख्स माइक लिए एक युवक को स्कूल में प्रवेश करने से रोकता हुआ नजर आ रहा है। इसके जरिए कुछ लोग ये कह रहे हैं कि टीचर ने सीजेपी सदस्य को रोका। वीडियो में टीचर को ये कहते हुए सुना जा रहा है कि ये लोग लड़कियों को देखने के लिए स्कूल आते हैं। वीडियो शेयर करते हुए एक एक्स यूजर ने लिखा, तो क्या सीजेपी के गुंडे स्कूलों में ये देखकर घुस रहे हैं कि किन स्कूलों में खूबसूरत लड़कियां हैं? मतलब सच में क्या इन बेवकूफों को निरीक्षण के नाम पर स्कूलों में जाने की इजाजत दी जानी चाहिए? क्या ये आपके आदर्श हैं? सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है।
0: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में एक शख्स माइक लिए हुए युवक को स्कूल में प्रवेश करने से रोकते हुए नजर आ रहा है और इसके जरिए लोग ये कह रहे हैं कि टीचर ने कांग्रेस जनता पार्टी के सदस्य को स्कूल के अंदर जाने से रोका। वीडियो में टीचर को ये कहते हुए सुना जा रहा है कि ये लोग लड़कियों को देखने के लिए स्कूल आते हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर इसी मिलते जुलते दावे के साथ ये वीडियो लगातार शेयर किया जा रहा है। ऐसे में इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की और दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा भी और इसे सुना भी। इस दौरान टीचर और माइक पकड़े हुए युवक के बीच जो बातचीत हो रही है उसे हमने ध्यान से सुना। इसमें जो बोलने का लहजा है, इस तरह का लहजा बिहार में सुनने को मिलता है, मतलब ये कि वायरल हो रहा वीडियो बिहार के किसी इलाके का हो सकता है। साथ ही साथ वीडियो को देखने से ये भी लग रहा है कि अगर कांग्रेस जनता पार्टी का सदस्य किसी स्कूल के हालात को जानने के लिए वहां पहुंचा होता तो वो माइक लेकर क्यों आएगा। वो आराम से स्कूल प्रबंधन से बातचीत करेगा और स्कूल में क्या क्या हो रहा है इसके बारे में जानकारी हासिल कर लेगा। लेकिन इस वीडियो को देखने से ऐसा नहीं लग रहा। इसके अलावा सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई प्रमाणिक जानकारी भी नहीं मिली जो कि वायरल दावे की पुष्टि कर सके कि बिहार में कांग्रेस जनता पार्टी के अभियान को लेकर कोई जानकारी सामने आई। लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा। हमारा पहला सवाल यही था कि वायरल हो रहा वीडियो कब का है और कहां का है। हमारा दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए भ्रम तो नहीं फैलाया जा रहा। सच और झूठ इस रिपोर्ट में जानिए।
4: ठीक है, वहाँ पे रुक जाइए, बाहर जाओ, यहाँ पे देखो, ठीक है, कौन है लड़की के चक्कर में आया, कैसे?
3: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वीडियो की पड़ताल में जुटी। सबसे पहले हमने वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें 9 जुलाई को एक फेसबुक पेज पर पोस्ट किया गया वीडियो का एक और वर्जन मिला। इस वीडियो में अधेड़ उम्र का व्यक्ति खुद को स्कूल में सहायक शिक्षक बताता है, जबकि युवक खुद को पत्रकार बताता है। शिक्षक उसे स्कूल परिसर छोड़ने के लिए कहता है और बताता है कि उसे आधिकारिक अनुमति के बिना प्रवेश करने की अनुमति नहीं।
4: लेटर लेकर के ऑडियो ऑफिस से तब देंगे एंट्री,
5: मतलब यहाँ पे जो भी भ्रष्टाचार होगा तो अभी वहाँ पे
4: ऑफिस लेकर नहीं, ऐसे नहीं देंगे।
3: हमने इस फेसबुक पेज की जांच की। इस दौरान हमने पाया कि यहाँ अलग अलग विषयों को कवर करते कई वीडियोस मौजूद हैं। खासतौर पर बिहार के सरकारी स्कूलों की स्थिति पर यहाँ कई वीडियोस देखने को मिले। एक वीडियो में हमने उन्हें एक शिक्षिका से सवाल जवाब करते और उनके ज्ञान की परीक्षा लेते हुए भी देखा।
6: बर्खास्त है क्या?
7: हाँ।
6: ऐसे ना
7: एप्लीकेशन हाथ धैल है।
6: एप्लीकेशन कहाँ धैल है, दिखा दे।
3: इसके बाद फैक्ट चेक टीम ने ये फेसबुक पेज चलाने वाले शख्स यानी कि मनोज यादव से भी संपर्क किया। इस दौरान उन्होंने साफ किया कि उनको कांग्रेस जनता पार्टी से कोई संबंध नहीं है, वो स्कूल ठीक करो अभियान में शामिल नहीं है। वायरल हो रहे वीडियो के बारे में उन्होंने कहा कि पानी की समस्या को उजागर करने के लिए 9 जुलाई को वो नालंदा जिले के इस्लामपुर ब्लॉक स्थित राजकीय उच्च विद्यालय गए थे। इस तरह हमारी पड़ताल से साफ हो गया कि वायरल हो रहे वीडियो का कांग्रेस जनता पार्टी के स्कूल ठीक करो अभियान से कोई संबंध नहीं है। वायरल हो रहा वीडियो 9 जुलाई को फेसबुक पर अपलोड किया गया था, जबकि कांग्रेस जनता पार्टी का स्कूल ठीक करो अभियान 15 अगस्त को शुरू किया गया था। मोहम्मद महफूज आलम के साथ टीम फैक्ट चेक गुड न्यूज टुडे।
0: और फैक्ट चेक में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में, दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
2: और दुर्भाग्य कहता है
0: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़।
0: और वक्त है फैक्ट चेक के आखिरी सफर का। आपको दिखाते हैं ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
10: जन्माष्टमी से पहले सोशल मीडिया पर एक प्यारा वीडियो सामने आया है जिसने लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। वीडियो में नन्हे कलाकार अपनी मासूम अदाओं और शानदार एक्सप्रेशन से सबका ध्यान खींचते नजर आते हैं। उनकी मासूमियत देखकर यूजर्स जमकर प्यार लुटा रहे हैं। वायरल वीडियो में बच्चों को पारंपरिक राधा कृष्ण के लुक में तैयार किया गया है। एक बच्ची राधा के रूप में नजर आती है, वहीं एक बच्चा कान्हा के रूप में दिखाई देता है। दोनों बच्चों की जोड़ी बेहद प्यारी लग रही है। डांस के दौरान बच्चे के एक्सप्रेशन और बच्चे की शरारती अदाएं वीडियो को और भी खास बना देती हैं। म्यूजिक की धुन के साथ दोनों छोटे कलाकार अपने स्टेप्स करने की कोशिश करते नजर आते हैं। उनकी मासूमियत देखकर ऐसा लगता है जैसे वे किसी बड़े स्टेज पर नहीं बल्कि अपने ही अंदाज में त्योहार की खुशी मना रहे हों।

बारिश के दिनों में सड़कों पर पानी और कीचड़ जमा होना आम बात है, लेकिन ऐसे मुश्किल हालात में भी एक छोटे भाई ने अपनी बहन का जिस तरह से ख्याल रखा, उसने लोगों का दिल जीत लिया। वीडियो में तेज बारिश के बीच एक छोटा लड़का अपनी बहन के साथ पानी और कीचड़ से भरे रास्ते पर चलता नजर आता है। आसपास कई गाड़ियां खड़ी हैं और सड़क की हालत ऐसी है कि वहां से निकलना भी आसान नहीं है। ऐसे मौसम में लड़का खुद बारिश में भीगने की परवाह नहीं करता। वो एक बड़ी चादर अपनी बहन के ऊपर इस तरह ताने हुए है कि बारिश की बूंदें उस तक न पहुंचे। उसका पूरा ध्यान सिर्फ इस बात पर है कि उसकी बहन किसी तरह भीगने से बच जाए और सुरक्षित तरीके से रास्ता पार कर सके। इसी बीच एक सफेद कुत्ता भी दोनों के आसपास घूमने लगता है। कुत्ता कभी उनके आगे तो कभी पीछे नजर आता है। हालांकि लड़का इससे भी सतर्क हो जाता है। वो एक तरफ बहन को बारिश से बचाते हुए आगे बढ़ता रहता है और दूसरी तरफ कुत्ते पर भी नजर रखता है। कुछ देर बाद जब कुत्ता उसके बहन के ज्यादा करीब आने लगता है तो लड़का तुरंत उसकी तरफ मुड़ता है और उसे दूर हटाने की कोशिश करता है। इसके बाद वो बिना समय गंवाए फिर अपनी बहन के पास पहुंच जाता है, चादर को दोबारा ठीक करता है और उसे सुरक्षित रास्ते से आगे ले जाने लगता है। वीडियो में भाई का यही छोटा सा प्रयास सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है। यूजर्स इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक बेहद प्यारा और भावुक करने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें एक छोटी बच्ची अपने घर में जन्मदिन के उपहारों के ढेर के बीच से गुजरती नजर आती है। उसकी मासूम मुस्कान और खुशी का अंदाजा देखकर लोग भावुक हो रहे हैं। क्लिप में जन्मदिन वाली बच्ची रिद्धि घर के बाहर खड़ी दिखती है। परिवार के सदस्य उसके साथ आते हैं। दरवाजे पर रिबन बांधा गया है, उसे कैंची दी जाती है और वो रिबन काटती है जैसे वो अपनी पार्टी की मुख्य अतिथि हो। जैसे ही वो अंदर कदम रखती है, फर्श पर सुंदर कपड़ा बिछा होता है जिस पर फूलों की पंखुड़ियां सजी होती हैं। साथ ही उपहारों का एक लंबा रास्ता बनाया गया है। रिद्धि हैरानी और खुशी से भर जाती है। वो सीधे आगे नहीं बढ़ती बल्कि एक एक करके लिपटे हुए उपहार उठाती जाती है। मुस्कुराते हुए वो उन्हें अपनी बाहों में इकट्ठा करती है। जब तक सारे गिफ्ट नहीं ले लेती तब तक रुकती नहीं। उसकी मासूमियत और उत्साह का ये अंदाज वीडियो को खास बना देता है। वीडियो को देखने के बाद कई यूजर्स ने लिखा है कि ये पल वो हमेशा याद रखेगी।

कहते हैं माँ की जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन एक पिता अपने बच्चे की जिंदगी में प्यार और देखभाल की ऐसी छांव बन सकता है जो उसे मुश्किल वक्त में संभाल ले। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के रहने वाले कुलदीप भारद्वाज की कहानी कुछ ऐसी ही है। पत्नी को खोने के बाद उन्होंने अपने 2.5 साल के बेटे सात्विक की परवरिश की पूरी जिम्मेदारी खुद संभाल ली। कुलदीप के लिए अब जिंदगी सिर्फ उसके बारे में सोचने का नाम नहीं है, उनकी दुनिया उनके छोटे से बेटे सात्विक के इर्द गिर्द घूमती है। बच्चे को खाना खिलाने से लेकर उसकी देखभाल करने, उसे संभालने और उसके साथ

0: कोई नहीं ले जाता अम्मा एयरपोर्ट पे।
1: लखनऊ एयरपोर्ट का एक बेहद क्यूट सा वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी छाया हुआ है, जिसमें एक दादी और उनकी पोती की मासूम बातचीत ने नेटिजंस का दिल जीत लिया है।
0: पार्किंग में है? ये हवाई जहाज का पार्किंग होता है,
2: ये पार्किंग होता है। मुझे पानी पड़ रहा तो भीगता हूँ, पानी पड़ रहा था तो भीगेगा, पार्किंग है।
1: इस वायरल क्लिप को देखकर लोग अपनी पुरानी यादों में खो गए हैं और कमेंट्स में अपनी अपनी दादी को याद कर रहे हैं। ये वीडियो उस वक्त का है जब दादी हैदराबाद जाने वाली फ्लाइट का इंतजार कर रही थी। एयरपोर्ट पर बैठे बैठे बुजुर्ग महिला अपने बैग के पास ऐसे पहरा दे रही थी जैसे उन्हें डर हो कि कोई उनका सामान लेकर 9211 न हो जाए। जब पोती ने उन्हें प्यार से समझाया कि यहाँ सामान बिल्कुल सेफ रहता है, तो दादी के मन में बच्चों जैसी जिज्ञासा जाग उठी। फिर क्या था, दादी ने बड़ी मासूमियत से पूछा कि इतने बड़े बड़े हवाई जहाज बारिश में भींगते क्यों नहीं और उन्हें कहाँ खड़ा करते हैं। उनकी ये भोली भाली बातें आज की तेज रफ्तार जिंदगी में बुजुर्गों की उस सादगी की याद दिला गई जो अब बहुत कम देखने को मिलती है। मुंबई के एक ऑटो रिक्शा चालक ने यात्रियों से मराठी में संवाद करने के लिए एक आसान और प्रभावी तरीका अपनाया है। उन्होंने अपने ऑटो के अंदर हाथ से लिखी हिंदी मराठी अनुवाद शीट चिपका रखी है, जिसमें रोजमर्रा के इस्तेमाल के वाक्य शामिल हैं। ये शीट सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है और लोगों ने चालक की मेहनत और जुगाड़ की जमकर तारीफ की है। एक महिला ने ऑटो में सवार होकर ये शीट देखी और इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर कर दिया। शीट में हिंदी वाक्यों के साथ साथ उनके मराठी अनुवाद साफ साफ लिखे हैं ताकि चालक जरूरत पड़ने पर तुरंत देख सके। ये पहल महाराष्ट्र सरकार के उस अभियान के बीच आई है जिसमें ऑटो टैक्सी और एप बेस्ड कैब चालकों से मराठी की कार्यकारी जानकारी अनिवार्य की गई है। ग्रेजुएशन का दिन हर छात्र के लिए बेहद खास होता है। कई साल की पढ़ाई और मेहनत के बाद जब स्टेज पर उसका नाम पुकारा जाता है और वो डिग्री लेने पहुंचता है तो वो पल हमेशा याद रहता है। लेकिन एक छात्र के लिए ये दिन इसलिए भी खास बन गया क्योंकि वो डिग्री लेने अकेला नहीं आया था, उसके कंधे पर उसकी प्यारी सी बिल्ली भी बैठी थी। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में छात्र बड़े आराम से अपने बिल्ली को कंधे पर बैठा कर स्टेज की ओर जाता नजर आ रहा है। छात्र को शायद अपनी डिग्री मिलने की खुशी थी, लेकिन वहां मौजूद लोगों की नजरें उसके बिल्ली पर टिक गई। कुछ ही देर में ये बिल्ली पूरे समारोह की सबसे खास मेहमान बन गई। वीडियो में छात्र अपनी बिल्ली के साथ स्टेज पर पहुंचता है। जैसे ही वो डीन और प्रोफेसर्स के पास जाता है, वहां मौजूद लोगों का ध्यान बिल्ली पर चला जाता है। कुछ प्रोफेसर उसे देखकर मुस्कुराते हैं तो कुछ प्यार से उसे सहलाते हुए नजर आते हैं। सबसे मजेदार बात यह है कि बिल्ली भी पूरे समय बेहद आराम से छात्र के कंधे पर बैठी रहती है। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे उसे अच्छी तरह पता हो कि आज का दिन उसी के नाम होने वाला है। शादी से पहले होने वाली दुल्हन के लिए बैचलरेट पार्टी का अपना ही उत्साह होता है, लेकिन अमेरिका की एक होने वाली दुल्हन के लिए उसकी पार्टी शुरू होने से पहले ही बेहद खास बन गई। वो विमान से अपने बैचलरेट पार्टी के लिए जा रही थी, तभी एयर होस्टेस ने उसके लिए ऐसा प्यारा सरप्राइज प्लान किया कि पूरी फ्लाइट शादी की सलाह देने वालों से भर गई। यात्रियों ने नैपकिन पर होने वाले दुल्हा दुल्हन को शादीशुदा जिंदगी के लिए मजेदार और काम की सलाह लिखी।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य

0: कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं, अविश्वास में विश्वास बसता है।
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
5: दक्षिण भारत की हरियाली, बैकवाटर्स की शांत लहरें और उनके बीच गूंजती चप्पू की थाप। जब केरल में ओणम का पर्व आता है तो शांत जलधाराएं जीवंत हो उठती हैं। केरलम से ऐसी ही शानदार तस्वीरें निकल कर आई। स्नेक बोट रेस, ये केरल की ऐसी परंपरा है जो नदियों की लहरों पर तैरती दिखाई देती है। इस साल भी पथनम थिट्टा जिले में पंबा नदी के तट पर पारंपरिक बोट रेस का आयोजन भव्य तरीके से किया गया। नाव पर सवार नाविकों ने पारंपरिक वेशभूषा में पारंपरिक गीत गाते हुए रफ्तार और लाल ताल का अद्भुत नजारा पेश किया।
6: ओणम का नाम आते ही आंखों के सामने केरलम की रंग बिरंगी तस्वीरें उभर आती है। फूलों की पंखुड़ियों से सजी रंगोली, कथकली के रंग, मंदिरों की रौनक और फिर पानी की लहरों को चीरती हुई सैकड़ों चप्पूओं की ताकत। लंबी विशाल सांप जैसी दिखने वाली नाविक, नाविकों का जोश, वंचिप्पा पुट्टू की गूंज और किनारों पर उमड़ा जनसैलाब। ये सिर्फ एक नाव दौड़ नहीं है, ये केरलम की धड़कन है, परंपरा है, प्रतिष्ठा है और सबसे बढ़कर ये उस सामूहिक ताकत की तस्वीर है जहां एक नाव को आगे बढ़ाने के लिए सैकड़ों लोग एक साथ सांस लेते हैं, एक साथ गीत गाते हैं और एक ही दिशा में चप्पू चलाते हैं। वंचिप्पाट्टू केरलम का प्रसिद्ध पारंपरिक नौका गीत है जिसे मुख्य रूप से ओणम उत्सव और स्नेक बोट रेस के दौरान गाया जाता है। मलयालम भाषा में वंची का अर्थ नाव और पाट्टू का अर्थ गीत होता है। ओणम उत्सव के साथ केरलम की नदियों और बैक वाटर्स पर हर साल सजने वाले मशहूर स्नेक बोट रेस को वल्लम कली कहा जाता है। ये तस्वीरें हैं पथनमथिट्टा जिले की, जिसे केरलम की धार्मिक राजधानी भी कहा जाता है। यहाँ पंबा नदी में 132वीं अरनमुला उथराट्टी बोट रेस का आयोजन किया गया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने इसका शुभारंभ किया। इसमें 50 स्नेक बोट शामिल है। स्नेक बोट की खासियत होती है कि ये 100 फीट से भी ज्यादा लंबी होती है। अपने ऊंचे उठे पिछले हिस्से और लंबी बनावट के कारण ये दूर से किसी फन फैलाए सांप जैसी दिखाई देती है, इसीलिए दुनिया इन्हें स्नेक बोट के नाम से भी जानती है। इस लंबी नाव में कई सारे नाविक जब एक साथ अपने चप्पू पानी में डालते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पूरी नदी की धड़कन एक ही लय में चलने लगी हो। ओणम और वल्लम कली का रिश्ता सिर्फ खेल का नहीं बल्कि केरलम की आस्था, इतिहास, लोक परंपरा और सामूहिक उत्सव का रिश्ता है। जब नदियों और बैक वाटर्स पर सैकड़ों नाविक एक साथ चप्पू चलाते हैं, पारंपरिक वंचिप्पाट्टू की लय गूंजती है और हजारों दर्शक किनारों पर उमड़ते हैं तो पूरा दृश्य केरलम की जीवंत सांस्कृतिक पहचान बन जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
4: गुड न्यूज़ टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में 26वें एससीओ समिट का भव्य आगाज। तिरंगे झंडे के साथ भारतीय दल का प्रधानमंत्री मोदी ने हाथ हिलाकर किया अभिवादन। शांति, विकास और समृद्धि।

पर मंथन। तमाम वैश्विक चुनौतियों के बीच देश की जीडीपी ग्रोथ बरकरार। वित्तीय वर्ष 2026 की पहली तिमाही 7.8% रही विकास दर, आरबीआई के अनुमान से भी शानदार रहे आंकड़े। मानसूनी बारिश के बीच भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने को मर रहे हैं श्रद्धालु। 30 अगस्त तक 16,75,000 से ज्यादा ने पूजा अर्चना की। पवित्र हेमकुंड साहिब में भी लगा भक्तों का तांता। मुंबई में आगामी गणेशोत्सव की भव्य तैयारियां। साकनाकी के महाराजा की 48 फीट ऊंची प्रतिमा बनी आकर्षण का केंद्र। बप्पा के दरबार की सजावट का काम तेज। नौसेना की ताकत में हुआ इजाफा। मुंबई में दूसरा स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट पोत निपुण हुआ कमीशन। समुद्र में गोताखोरी और जटिल अभियानों को देगा अंजाम। अर्जेंटीना के दिग्गज खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने इंटरनेशनल फुटबॉल से लिया संन्यास। 20 साल लंबे करियर में 207 मैच खेलकर दागे 125 गोल। अपनी कप्तानी में अर्जेंटीना को बनाया विश्व विजेता।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। तो जीएनटी स्पेशल में आज बात कृष्ण जन्माष्टमी की। देश भर में जन्माष्टमी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। शहर शहर बेसब्री के साथ कान्हा के आने का इंतजार हो रहा है। कृष्ण जन्मोत्सव का सबसे गाढ़ा रंग चढ़ा है देश भर में मौजूद कन्हैया के भव्य मंदिरों पर, मथुरा हो या फिर वृंदावन, दिल्ली हो या द्वारका हो। शहर शहर कृष्ण धामों में जन्माष्टमी के रंग बिखरे हैं। जीएनटी स्पेशल में आज आपको लिए चलेंगे देश के भव्य कृष्ण मंदिरों में, दिखाएंगे तैयारी कृष्ण जन्मोत्सव की। लेकिन सबसे पहले आपको लिए चलते हैं राजधानी दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में। कृष्ण भक्ति को समर्पित इस्कॉन के मंदिरों में हर साल बड़े पैमाने पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश इलाके में मौजूद इस मंदिर में जोर शोर से तैयारी की जा रही है।

0: रहे हैं कान्हा। प्रकट होने वाले हैं नंदलाल। भक्तों को दर्शन देने आने वाले हैं लड्डू गोपाल। 4 सितंबर को कृष्ण जन्माष्टमी पर्व मनाया जाएगा। देश भर के कृष्ण मंदिरों में जन्माष्टमी की तैयारियां अंतिम दौर में हैं। कृष्ण धाम रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठे हैं। ये तस्वीरें दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश में मौजूद इस्कॉन मंदिर की हैं। भाद्रपद माह की अष्टमी तिथि इस मंदिर के लिए साल का सबसे खास दिन होता है। हर साल यहां भव्य तरीके से जन्माष्टमी उत्सव का आयोजन होता है। अब की बार भी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। हर साल इस मंदिर में श्री कृष्ण जन्मोत्सव की तैयारियां कई हफ्तों पहले ही शुरू कर दी जाती है। इस वर्ष भी कान्हा का जन्मोत्सव मनाने के लिए मंदिर को शानदार तरीके से सजाया जा रहा है।
1: इस वक्त मैं मौजूद हूं ईस्ट ऑफ कैलाश स्थित इस्कॉन मंदिर के भव्य परिसर में, जहां पर तस्वीरें मेरे पीछे बता रही कि किस तरीके से

0: जन्माष्टमी की जो तैयारियां हैं वो अपने स्तर पर है। आप देख सकते हैं कि आपको यहां पर भक्तों की अच्छी खासी भीड़ जो है वो नजर आ जाएगी, और साथ ही 4 तारीख को जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा, और उससे पहले मंदिर को सजाने का जितना भी काम है वो लगातार यहाँ पर जो है वो किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मंदिर में, आपको सबसे पहले तो लाइट्स में दिखा देती हूँ आपके, यहाँ पर और भी लाइट्स का काम जो है वो लगातार इसी तरीके से जारी, ताकि मंदिर जो है वो अलग से ही जगमगाता हुआ 4 तारीख को जो है वो नजर आए। और उसके बाद अगर मैं मंदिर परिसर में आपको भवन की तस्वीर दिखाऊं, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको श्रृंगार होता हुआ जो है वो नजर आ जाएगा।
1: श्री कृष्ण जन्मोत्सव के पावन अवसर पर इस्कॉन मंदिर को देश के अलग अलग हिस्सों से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी मंगाए गए खास किस्म के फूलों से सजाया जाता है। साथ ही साथ पूरे मंदिर परिसर में रंग बिरंगी सुंदर लाइटिंग भी की जाती है। आपको बता दें कि यहां अब की बार जन्माष्टमी उत्सव पर सजावट की थीम भगवान श्री कृष्ण के प्रिय मोर पर आधारित है, यानी मोर पंख की बनावट और रंगों को केंद्र में रखकर ही उत्सव के लिए सजावट की जाएगी। जन्माष्टमी के लिए थीम पर आधारित पोशाक खास तौर पर वृंदावन से मंगवाई जा रही है।
2: इस साल भगवान को जो सबसे प्रिय है मोर पंख, तो जो थीम है सिंगार और सजावट की वो पीकॉक पे है, मयूर थीम रखा गया है, और देश विदेश से लाए हुए फूल से सजाएगा, जैसे थाईलैंड और कर्नाटका बंगलोर से फूल मंगाए जा रहे हैं, उससे सजावट की जाएगी। और वृंदावन से भगवान का श्रृंगार के लिए जितने भी ज्वेलरी और ड्रेस है वहाँ से आ रहा है।
1: ईस्ट ऑफ कैलाश के इस्कॉन मंदिर में कृष्ण जन्मोत्सव पर भगवान को केक का भोग लगाने की भी परंपरा है। अब की बार भी यहां भगवान के लिए विशाल केक तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा बाल गोपाल को 1008 प्रकार के व्यंजन का भोग भी लगाया जाएगा।
2: केक का भोग लगेगा ठाकुर जी को, और 1008 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया जाएगा इस्कॉन ईस्ट ऑफ कैलाश में। और सुबह 10 बजे के पहले से कुकिंग स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि भगवान का किचन ही अलग है, तो जो दीक्षित हैं ब्राह्मण दीक्षित हैं और दीक्षित माता जी प्रभु जी लोग हैं वो मिल करके बहुत बड़ा प्रसादम हाल छोटा वहाँ पे कुकिंग आरम्भ हो जाएगी। और चूँकि भगवान का भोग 12 बजे लगेगा तो तब तक कुकिंग होती रहे और भगवान जी को भोग लगता रहेगा।
1: मंदिर परिसर में उत्सव की तैयारी अब अंतिम चरण में है। जन्माष्टमी से पहले मंदिर में रंग बिरंगे विशाल टेंट लगाए जा रहे हैं, ताकि उत्सव में भारी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं के बैठने और भजन कीर्तन में सुविधा हो। दिल्ली एनसीआर और आसपास के इलाकों से लाखों की संख्या में भक्त और श्रद्धालु जन्माष्टमी मनाने और भगवान के दर्शन के लिए यहां पहुंचते हैं, लिहाजा व्यवस्थाओं के साथ साथ ख्याल सुरक्षा के इंतजामों का भी रखा जा रहा है।
2: हमारे दर्शनार्थी आएंगे श्रद्धालु, उनकी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की व्यवस्था की जा रही है, तो गेट नंबर 1 से जो आम श्रद्धालु आम जनता है वो प्रवेश करेंगे, और गेट नंबर 7 से जो हमारे डोनर हैं अभी VIPs हैं, जैसे मिनिस्टर जो गणमान्य व्यक्ति हैं हर फील्ड के।
3: दिल्ली से अब रुक करते हैं भारत के उस भाग का जहां की धरती ने कृष्ण लीलाओं को अपनी आंखों से देखा है, जिसके मिट्टी में कभी बाल कृष्ण खेला करते थे, जहां यमुना के तट पर सखाओं संग खेलते कान्हा का बचपन बीता, ब्रज की वो धारा जिसके रज रज पर आज भी श्याम रंग चढ़ा है। श्री कृष्ण का जन्मोत्सव ब्रज के लिए साल का सबसे बड़ा त्यौहार है। अपने कान्हा के जन्मोत्सव जैसे ही ब्रज मनाता है वैसे ही वाकई दुनिया में कोई और मना नहीं सकता। कृष्ण जन्मभूमि से लेकर वृंदावन के तमाम मंदिरों में इस समय जन्माष्टमी की तैयारी पूरी हो चुकी है। तो चलिए आपको बताते हैं कि इस जन्माष्टमी पर कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में क्या कुछ खास होने जा रहा है और मथुरा में कैसी है तैयारी जन्मोत्सव की।

0: ब्रजभूमि में इस समय चारों तरफ सिर्फ एक ही गूंज है, हाथी घोड़ा बाल की जय कन्हैया लाल। भगवान श्री कृष्ण के 5253वें जन्मोत्सव को लेकर कान्हा की नगरी मथुरा और लीला भूमि वृंदावन सजाए जा रहे हैं। द्वापर युग की वही दिव्यता, वही भव्यता और वही भक्ति एक बार फिर कान्हा के जन्मस्थली मथुरा में जीवंत हो उठी है।
1: भगवान श्री कृष्ण के 5253वें जन्मदिन के लिए पूरे ब्रज को सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है और इस तरह की जो पेंटिंग है ना वो सारी दीवारों पर बनाई जा रही है, जो दीवार भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि की तरफ जाती है। तो इसमें जो लीला है वो दर्शाया जा रहा है कि भगवान श्री कृष्ण को वासुदेव जी गोकुल लेकर जा रहे हैं। तो ऐसी ही जो लीला है भगवान की, जितनी भी लीला है भगवान ने ब्रज में की, वो सभी लीलाएं जो प्रमुख मार्ग हैं उन पर सजाई जा रही हैं। करीब 24 चौराहे सजाए जा रहे हैं, इस तरह की जो सजावट का काम है ये चल रहा है पूरे ब्रज में, जगह जगह देखेंगे। इस तरह ये गेट बनाया जाएगा, तोरण द्वार बनाए जा रहे हैं, करीब 24 द्वार बनेंगे, 24 चौक चौराहे सजाए जा रहे हैं और जितनी भी दीवाल है जो ब्रज जन्मभूमि की तरफ जाती है, जन्मभूमि के पास का रास्ता है। तो इस तरह की जो सजावट है ना भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव को मनाने के लिए, 4 सितंबर को भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मनाया जाएगा ब्रज में, तो उसकी जो तैयारी है बड़े भव्यता और दिव्यता पर चल रही है।
0: इस साल 4 सितंबर 2026 को मध्यरात्रि में होने वाले मुख्य जन्मोत्सव को लेकर तैयारियां अब अंतिम चरण में है। 4 सितंबर को रात 11:56 पर शुरू होने वाले निषेध काल पूजा मुहूर्त के लिए मथुरा के मंदिर चौक चौराहों को रोशन किया जा रहा है। श्री कृष्ण जन्म स्थान पर इस बार श्रद्धालुओं को ठाकुर जी के एक बेहद अलौकिक रूप के दर्शन होंगे। जन्माष्टमी के पावन अवसर पर अब की बार कन्हैया कलहंस पुष्प बंगले में विराजमान होंगे, इसीलिए जन्मस्थान के अंदर के पुष्प बंगलों को दुर्लभ पत्र पुष्प वृक्षों और विशेष रूप से हंसों की दिव्य आकृतियों से सजाया जा रहा है।
2: भगवान श्री कृष्ण के 5253वें जन्मदिन को, जन्मोत्सव को बहुत ही भव्यता और दिव्यता के साथ मनाया जाएगा। तैयारियां बहुत जोर शोर भाव से चल रही हैं। आने वाले श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के दर्शन सुव्यवस्थित और सुंदर ढंग से कर पाए ऐसा संस्थान का प्रयास है। इस वर्ष भगवान कलहंस पुष्प बंगले में विराजमान होंगे। अंदर के पुष्प बंगलों को जो बना रहे हैं उसमें पत्र पुष्प वृक्ष आदि आकृति उकेरी जाएंगी और हंस, इस बार हंस आकृति जो है वह पुष्प बंगले की शोभा होंगी। बाहर बहुत ही दिव्य और भव्य विद्युत सजावट की जा रही है। निश्चित रूप से सज्जा नैना विराम होगी और श्रद्धालु परिसर में प्रवेश करने से पूर्व भी ऐसी सुंदर दिव्य छटा को देखकर अभिभूत हो उठेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है।
0: इसके साथ ही भगवान कृष्ण अब की बार जन्मोत्सव पर बेहद दुर्लभ पंचरत्नी पोशाक धारण करेंगे, जिस पर समुद्र मंथन से निकले 14 रत्नों में से 5 विशेष रत्नों को उकेरा गया है।
2: पंचरत्नी पोशाक को धारण करेंगे, जो समुद्र मंथन में 14 रत्न मिले थे उनमें से 5 रत्न उकेरे गए हैं श्री ठाकुर जी की दिव्य पोशाक पर। ठाकुर जी को इस वर्ष काशी और अयोध्या, श्री राम जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ धाम से प्रसाद आ रहे हैं, उनको भव्य और दिव्य शोभा यात्रा के रूप में श्री के जन्म स्थान में प्रवेश कराया जाएगा, श्री ठाकुर जी को अर्पित किया जाएगा।
0: यही नहीं, ब्रज में इस बार जन्मोत्सव के मौके पर काशी मथुरा और अयोध्या के दिव्य त्रिवेणी का महासंगम नजर आने वाला है। काशी विश्वनाथ धाम से ठाकुर जी के लिए दिव्य वस्त्र, फल, सुगंधित द्रव्य और मिठाइयां भेजी जा रही हैं। वहीं अयोध्या की श्रीराम जन्मभूमि से लड्डू गोपाल के लिए लड्डू, फल, मेवे और महाभिषेक की पवित्र सामग्री आ रही है। इन सभी प्रसादों को एक भव्य और दिव्य शोभा यात्रा के रूप में श्री कृष्ण जन्म स्थान में प्रवेश कराया जाएगा। यानी मथुरा में इस बार की जन्माष्टमी केवल एक उत्सव नहीं बल्कि पूरी सनातन परंपरा के एकाकार होने का महापर्व बनने जा रही है।
2: काशी मथुरा अयोध्या सनातन की आत्मा है। राम कृष्ण और शिव को यदि अलग कर दे तो सनातन आत्मा विहीन है। तो इस वर्ष श्रद्धालुओं को काशी मथुरा अयोध्या इन 3 विशिष्ट पुरियों का जो संगम भगवान श्री कृष्ण

0: श्री की जन्मभूमि पर उपस्थित होगा उसके अवगाहन और दर्शन का सुअवसर भी मिलेगा।
1: मथुरा श्री कृष्ण की जन्मभूमि है तो वृंदावन उनकी बाल लीलाओं की भूमि है, इसलिए मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी का उत्सव सबसे अलग होता है। इस बार भी ब्रज में कृष्ण जन्मोत्सव भव्य होगा, विराट होगा। 4 सितंबर की मध्य रात्रि को श्री कृष्ण जन्मभूमि में बाल गोपाल का पंचामृत अभिषेक किया जाएगा, उन्हें विशेष 56 भोग अर्पित किया जाएगा। बाल गोपाल के जन्म पर ब्रज से उठी कृष्ण भक्ति की लहर में सारा संसार आकंठ डूबा नजर आएगा। मथुरा से मदन गोपाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: तो कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियां ना सिर्फ देश के कृष्ण मंदिरों में दिखाई दे रही हैं, बल्कि बाजार भी जन्माष्टमी पर्व के लिए सज चुके हैं। लड्डू गोपाल की मूर्तियां, बाल गोपाल के झूले और पोशाक से लेकर मुरली और माला तक बाजार में बिक रहे हैं। लोग भी जन्माष्टमी से जुड़ी खरीदारी में जोर शोर के साथ जुटे हुए हैं।

0: आने वाला है जन्माष्टमी का त्योहार, सज गए हैं बाजार, एक से बढ़कर एक मनमोहक लड्डू गोपाल और उनकी सुंदर सुंदर पोशाक, मुरली से लेकर माला तक, झूले से लेकर पालना तक, मुकुट से लेकर मटकी तक, सब कुछ बिक रहा है बाजार में। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के अमरावती से आई हैं, जहां श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर बाजारों में रौनक नजर आने लगी है।
1: जन्माष्टमी आने वाली है, उससे पहले जो है महाराष्ट्र समेत देश के अलग अलग इलाकों में जो है कृष्ण भगवान के अलग अलग वेराइटीज के जो झूले है, उनके ड्रेस है, वो उनके बाजार जो है फटे पड़े है। हम फिलहाल अमरावती के जवाहर गेट के अंदर जो रंगारी गली है वहां पर झवर स्टोर में है, जहां पर आप देख सकते हो कि ये पूरी तरीके से दुकान जो है वो कान्हामय हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि सबसे पहले कान्हा को सबसे प्यारा लगने वाला जो है वो दही है, माखन है। वो माखन जो है, माखन जिस से चुराए जाते थे, वो हंडी यहाँ पर है।
0: बदलते दौर के साथ बाजार में नए नए ट्रेंड की कई चीजें भी जन्माष्टमी पर्व के लिए मौजूद हैं, जो इस पर्व में चार चांद लगा देती हैं। दुकानदारों का कहना है कि इस बार कार्टून कढ़ाई, राजवाड़ी और सूरत से आई पोशाकें ग्राहकों को खूब पसंद आ रही हैं। इनमें आकर्षक डिजाइन के साथ बारीक कढ़ाई और रंगों की विविधता देखने को मिल रही है।
2: इस बार काफी ट्रेंडिंग में है, इसमें हमारे पास में अलग अलग साइज आई है, छोटे बाल गोपाल है, बड़े बाल गोपाल है, फुल बंगला है, जैसे हम देख सकते हैं फुल बंगला है, मोती बंगला है, बाद में बांसुरी के अलग अलग प्रकार है, छोटे से लेके बड़ी है, राधा नाम से सुसज्जित मोती वर्क, कुंदन वर्क के साथ में छोटे मोटे मुकुट, कुंदन जड़ाऊ वर्क के साथ में, काफी सुंदर नकाशी वर्क के साथ इस बार बाजार पूरा हमारा राधा कृष्णमयी हो चुका है। छोटे से उनकी रासलीला करने के लिए डांडिया है, छोटे से मृदंग है, छोटे से पैरोट है, छोटे सा उनका मोबाइल फोन है जिससे वो राधा से बात कर सकते हैं, छोटे से साइकिल है, छोटे से उनके लिए टिफिन बॉक्स है, छोटे से उनके लिए अमृत है, जैसे जलेबी हो गया, फाफड़ा हो गया, या फिर उनके लिए चाय बच्ची हो गई है,
3: चाय बिस्किट भी है,
2: कॉफी भी है।
0: जन्माष्टमी का पर्व जितने ही उत्साह और उमंग के साथ मंदिरों में मनाया जाता है, उसी तरह लोग अपने अपने घरों में भी हर्षोल्लास के साथ जन्माष्टमी मनाते हैं। ऐसे में घरों की झांकी सजाने के लिए कृत्रिम फूलों की माला, झालर, लाइट और अन्य सजावटी सामान भी बाजार में मौजूद हैं।
2: ये जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये कृष्णा जी के जो सेवादार होते हैं, जैसे एक द्वारपाल हो गया, एक वहाँ पे हवा की मतलब पंखी की सेवा दे रहा है, एक वहाँ पे आरती की सेवा दे रहा है, एक वहाँ पे पनिहारी की सेवा दे रहा है, इस प्रकार अलग अलग यहाँ पे सेवादार है।
1: और
2: पीछे आप जो देख रहे हो, यहाँ पे जो आपने हमें पूछा है, ये सारे उनके जन्म की लीला है,
1: पूरी जन्म की लीला
2: है। जी, ये जन्म की सारी लीला है, जन्म से आज तक उन्होंने जो जो किए है, जैसे जेल का हो चुका है, जेल में अलग से दो प्रकार के कटआउट आ चुके हैं, बाद में माखन की जो वो लीला कर रहे हैं, माखन के लीला के साथ में गोपी जो कुएं पे जाती है पानी भरने के लिए, उसकी एक अलग से लीला है, बाल सखाओं के साथ में जो कमल पे बैठकर वो लीला करते हैं वैसी लीला है,

0: श्री कृष्ण जन्माष्टमी सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि ये जन जन की अगाध आस्था, भक्ति और प्रेम का महापर्व है, जिसे मनाने के लिए लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अमरावती से धनंजय साबले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: राजधानी दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश इस्कॉन की तस्वीरें अब से कुछ देर पहले हमने आपको दिखाई। अब आपको लेकर चलते हैं दिल्ली के द्वारका में नए इस्कॉन मंदिर में, जहां श्री कृष्ण जन्माष्टमी की भव्य तैयारियां की जा रही हैं। मंदिर परिसर को गोकुल थीम पर सजाया जा रहा है। मंदिर की सजावट से लेकर भगवान के श्रृंगार तक हर चीज में श्री कृष्ण की लीलाओं और गोकुल की झलक दिखाई देने वाली है। भगवान श्री कृष्ण के लिए यहां आपकी बार खास पोशाक बनवाई गई है, जिसे तैयार करने में करीब 1.5 महीने का वक्त लगा है। तो वहीं बालकृष्ण के लिए बाहुबली केक भी तैयार किया जा रहा है।

0: जन्माष्टमी के त्यौहार में बस अब कुछ ही दिन बाकी है और ऐसे में श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को लेकर जो राजधानी दिल्ली में द्वारका स्थित इस्कॉन मंदिर में तैयारियां जो है वो जोरों शोरों पर है। एक बार तस्वीरें दिखा देती हूँ, इस्कॉन मंदिर की मैं तस्वीरें दिखा रही हूँ। नया मंदिर जो है वो बना है और यहाँ पर पहली बार जो है जन्माष्टमी जो है इस बारी की जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मंदिर अभी भी आपको जो है यहाँ पर बहुत सारी जो काम है जो तैयारियां हैं वो होनी बाकी है, लेकिन 4 तारीख के लिए जो है ये मंदिर पूरी तरीके से अपने अंतिम रूप में इस वक्त आपको नजर आ जाएगा। चाहे साज सज्जा की बात की जाए, प्रसादम की बात की जाए, जो भक्त यहाँ पर आएंगे उनके लिए जिस तरीके की व्यवस्था की जाए, हर तरीके से जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर होती हुई आपको नजर आ जाएगी। हमारे साथ इस वक्त प्रभु अच्युता आनंद दास जी भी इस वक्त मौजूद है। हरे कृष्ण प्रभु जी, सबसे पहले तो मैं तैयारी की बात करूँ, क्योंकि इस वाले इस्कॉन मंदिर में पहली बार जो है जन्माष्टमी मनाई जाएगी, तो भव्य तरीके से इस बार की हम उम्मीद कर सकते हैं?
1: जी हाँ, ज़रूर। इस साल हम बहुत ही भव्य रूप से तैयारी मना रहे हैं। पिछली बार जो हमारा इवन जो पंडाल का साइज था उससे भी हमने 1.5 गुना बड़ा जो पंडाल है वो लगाया है, ताकि भगवान का जो स्वागत है, भगवान का जो जन्मदिन है, और भी ज़्यादा अच्छे से हम मना सकें। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि भगवान का सुबह स्वागत मंगल आरती से करेंगे। सुबह 4:30 बजे सभी के सभी जो श्रद्धालु हैं वो मंगल आरती के लिए यहाँ पर उपस्थित होंगे और भगवान का स्वागत करेंगे। एंड उसके बाद फिर दिन में सारी की सारी एक्टिविटीज स्टार्ट हो जाएंगी। सुबह भगवान का जो इवन जो ड्रेस है, जो भगवान सुबह दर्शन देंगे, वो भगवान 7:30 बजे दर्शन देंगे। एंड रात को भी भगवान का जब अभिषेक होगा तो जो स्पेशल ड्रेस भगवान के लिए जो बनाया गया है वो उस ड्रेस को बनाने में ही 1.5 महीने का समय लगा है। जो रुक्मणी द्वारकाधीश का जो पूरा का पूरा जो ड्रेस है या पोशाक कहते हैं जिसे, तो उसको बनाने में हमने पूरा 1.5 महीने का समय लगाया और बहुत ही डेडिकेशन के साथ जो हमारे डिवोटी हैं उन्हीं ने ये ड्रेस को डिज़ाइन किया पूरे भक्तिभाव से।
2: जन्माष्टमी पे हम भगवान के लिए स्पेशल बना रहे हैं। आप सबको पता है अभी जो

0: जन्माष्टमी के मौके पर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन और उनके श्रृंगार की तैयारी भी जो है वो पूरी भक्ति भाव के साथ चल रही है। इस्कॉन मंदिर में इस वक्त मौजूद है और मैं तस्वीरें दिखा दी थी कि किस तरीके से आपको यहाँ पर महिलाओं की एक मंडली जो है वो नजर आ जाएगी और लगातार वो इसी तरीके से जो है श्रृंगार की तैयारियों में व्यस्त नजर आएगी। बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो यहाँ एक साथ बैठकर अपने हाथों से भगवान श्री कृष्ण के लिए फूलों की मालाएं जो है वो तैयार कर रही है। आप देख सकते हैं कि आपको रंग बिरंगे फूल जो है वो यहाँ पर नजर आ जाएंगे और किस तरीके से किसी के हाथ में आपको फूल नजर आएंगे तो किसी के हाथों में जो है आपको फूलों की माला बड़े खूबसूरती के साथ पिरोते हुए जो महिलाएं हैं वो नजर आ जाएगी और चेहरे पे सिर्फ आपको भक्ति भाव नजर आएगा हर एक महिला के चेहरे पर।
1: अष्टमी के लिए ड्राई फ्रूट की माला बनेगी, एक दिन पहले बनेगी और फूलों की और सुंदर माला बनाएंगे
0: और सुंदर और भी ज्यादा सुंदर। तो मालाएं जो है वो रोज बन रही है, लेकिन अगर हम जन्माष्टमी के दिन की बात करें तो उस दिन जो है और भी ज्यादा मालाओं को सुंदर बनाने की तैयारी जो है वो की जा रही है। आप देख सकते हैं कि महिलाओं की अच्छी खासी जो यहाँ पर मंडली है आपको बैठी हुई नजर आ जाएगी और बड़े ही प्रेम के साथ, भक्ति के साथ, भावनाओं के साथ जो है ये मालाएं जो है पिरोई जा रही है। रक्षा बल की बात करें तो चाहे मंदिर के तरफ से वॉलंटियर्स हो या फिर बाहर पुलिसकर्मी की व्यवस्था की बात की जाए, हर तरीके से इंतजाम जो है वो पुख्ते किए गए ताकि इस बार का जो जश्न है, जो इस बार का जन्मोत्सव है वो वाकई में भव्य हो सके, बेहद ही खास हो सके। तो हम भी इंतजार है कर रहे हैं, आप भी इंतजार कर रहे हैं, 4 तारीख का इंतजार सभी को है जिस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बेहद ही धूमधाम से मनाया जाएगा। कैमरा पर्सन इमानुअल जोस के साथ मनीषा लड्डा, दिल्ली, गुड न्यूज चले।
2: तो चलिए कृष्ण जन्माष्टमी से जुड़े हुए और भी तमाम रंग जीएनटी पर लगातार आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए, लेकिन अच्छी खबरें लगातार जारी हैं। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज़ टुडे।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में 26वें SCO समिट का भव्य आगाज, तिरंगे झंडे के साथ भारतीय दल का प्रधानमंत्री मोदी ने हाथ हिलाकर किया अभिवादन, शांति विकास और समृद्धि पर मंथन। तमाम वैश्विक चुनौतियों के बीच देश की GDP ग्रोथ बरकरार, वित्तीय वर्ष 2026 की पहली तिमाही 7.8% रही विकास दर, RBI के अनुमान से भी शानदार रहे आंकड़े। मानसूनी बारिश के बीच भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने को मर रहे हैं श्रद्धालु, 30 अगस्त तक 16,75,000 से ज्यादा ने पूजा अर्चना की, पवित्र हेमकुंड साहिब में भी लगा भक्तों का तांता। मुंबई में आगामी गणेशोत्सव की भव्य तैयारियां, साकनाकी के महाराजा की 48 फीट ऊंची प्रतिमा बनी आकर्षण का केंद्र, बप्पा के दरबार की सजावट का काम तेज। नौसेना की ताकत में हुआ इजाफा, मुंबई में दूसरा स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट पोत निपुण हुआ कमीशन, समुद्र में गोताखोरी और जटिल अभियानों को देगा अंजाम। अर्जेंटीना के दिग्गज खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने इंटरनेशनल फुटबॉल से लिया संन्यास, 20 साल लंबे करियर में 207 मैच खेलकर दागे 125 गोल, अपनी कप्तानी में अर्जेंटीना को बनाया विश्व विजेता।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
0: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं, आधी अधूरी सच्चाइयां, झूठे दावे बिजली की रफ्तार की तरह फैलते, कभी किसी वीडियो के पीछे की सच्चाई बदल दी जाती है और कभी पुरानी तस्वीर को नई साजिश का रंग देकर पेश किया जाता है। लोग बिना जांचे परखे ने सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के दौर में अब खबरें अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं है। हर किसी के हाथ में कैमरा है, हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है और यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नहीं बताकर परोसी जाती, किसी वीडियो को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कुसुदूर हो। नतीजा ये होता है कि लोग बिना सोचे समझे, बिना जांचे इन्हें सच मानकर शेयर कर देते हैं और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आती। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं, जहां वायरल दावों की होती सटीक जांच, अफवाहों की होती पड़ताल, झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। आज ऐसी दो खबरों की पड़ताल हम करेंगे, जिसमें सबसे पहले बात होगी सोशल मीडिया पर छाए उस वीडियो की जो कि नेपाल का बताया जा रहा है, जहां पर 26 अगस्त को आई भीषण बाढ़ के दौरान कुछ लोग तेजी से आते पानी से बचते हुए भागते हुए नजर आ रहे। कहा जा रहा है कि ये नेपाल का वीडियो है, सच्चाई के आगे बताएंगे। अगली खबर होगी उस वायरल वीडियो से जुड़ी, जिसको शेयर करते हुए लोग कह रहे हैं कि एक टीचर ने कांग्रेस जनता पार्टी के सदस्य को स्कूल के अंदर आने से रोक दिया। क्या है इस वीडियो की सच्चाई, आगे जानिए। शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
0: सोशल मीडिया पर एक संकरे रास्ते पर भागते हुए लोगों का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और उनके पीछे पानी का तेज बहाव नजर आ रहा है। ये वीडियो किसी पहाड़ी इलाके का नजर आ रहा है, काफी ऊंचाई से बनाया हुआ ये वीडियो लगता है और कुछ लोग इस वीडियो को नेपाल में आई बाढ़ से जोड़कर वायरल कर रहे हैं। लेकिन क्या है इसकी सच्चाई, दिखाते हैं इस रिपोर्ट में।
4: नेपाल में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है, आपदा में मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं अब भी कई लोगों का पता नहीं चल पा रहा है। तिब्बत के बॉर्डर से इलाके से आया पानी का सैलाब इतना तेज था कि कस्बे, बाजार और पूरे के पूरे गांव बह गए। इन सब के बीच सोशल मीडिया पर एक संकरे रास्ते पर भागते कुछ लोगों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उनके पीछे पीछे पानी तेजी से बहता हुआ नजर आ रहा है। ये वीडियो किसी पहाड़ी इलाके का है और काफी ऊंचाई से बनाया गया है। एक फेसबुक यूजर ने ये वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा कि हॉलीवुड की फिल्मों में ही ऐसे सीन देखे हैं, आगे आगे अपनी जान बचाने के लिए भागते लोग और पीछे पीछे अजगर जैसा निकल जाने को तैयार पीछा करता पानी। कई मीडिया आउटलेट्स ने भी इस वीडियो को नेपाल बाढ़ के संदर्भ में शेयर किया। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है।
0: दरअसल नेपाल तिब्बत सीमा के पास भोटेकोश नदी में 26 अगस्त को कई विनाशकारी बाढ़ ने दोनों ही देशों के इलाकों में भीषण तबाही मचाई। इस बाढ़ में अब तक करीब 1000 लोगों की मौत हो चुकी जबकि 4000 से ज्यादा लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। नेपाल तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ के बाद राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। इन सबके बीच सोशल मीडिया पर एक संकरे रास्ते पर भागते कुछ लोगों का वीडियो वायरल हो रहा है। उनके पीछे पीछे पानी तेजी से बहता हुआ नजर आ रहा है। ये वीडियो किसी पहाड़ी इलाके का है और काफी ऊंचाई से बनाया गया है। कुछ लोग इस वीडियो को नेपाल की बाढ़ से जोड़कर सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर शेयर कर रहे हैं। ऐसे में इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमारा ध्यान बैकग्राउंड में आ रही आवाजों पर गया। जब हमने इसे ध्यानपूर्वक सुना तो ये अरबी जैसा कोई भाषा लगी। वीडियो को नेपाल का बताया जा रहा है तो फिर इसमें अरबी आवाजें क्यों सुनाई दे रही हैं? ये हमें थोड़ा सा अटपटा लगा। इसके अलावा हाल फिलहाल में नेपाल बाढ़ को लेकर कई तरह की तस्वीरें और वीडियोज लगातार सामने आ रहे हैं लेकिन वायरल हो रहे वीडियो जैसा कोई भी वीडियो हमें नहीं मिला। लिहाजा ऐसे में हमने

0: इसे सवालों की कसौटी पर कसा, जिसमें हमारा पहला सवाल ये, अगर दावा सच्चा है तो फिर वायरल हो रहे वीडियो के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी सामने क्यों नहीं आई। हमारा दूसरा सवाल ये कि कहीं किसी और जगह के वीडियो को जानबूझकर नेपाल के साथ जोड़कर वायरल तो नहीं किया जा रहा। देखिए सच और झूठ क्या है इस रिपोर्ट में।
1: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वीडियो की पड़ताल में जुटी। सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें पता लगा कि इसे एक फेसबुक यूजर ने 4 अगस्त 2026 को पोस्ट किया था। उसने अरबी भाषा में कैप्शन लिखा था जिसका हिंदी अनुवाद है, याफा में हुई आज की बारिश का वीडियो। ये एक ऐसा दृश्य है जो आंखों को सुकून देता है और निर्जीव भूमि में जान फूंक देता है, साथ ही ये लोगों में उम्मीद के किरण भी जगाता है। याफा यमन का एक पहाड़ी क्षेत्र है। इस फेसबुक यूजर ने वायरल वीडियो से मिलती जुलती जगह के और भी कई वीडियो शेयर किए हैं। 4 अगस्त को उन्होंने इस तरह के 9 वीडियो शेयर किए और ज्यादातर पोस्ट में बारिश के लिए अल्लाह का शुक्रिया अदा किया। यमन की एक न्यूज वेबसाइट की 3 अगस्त 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक 2 अगस्त 2026 को हुई तेज बारिश के चलते यमन के सबाह जिले में स्थित कॉफी बागानों की सिंचाई में काफी मदद मिली। ये बागान अल अरका और तासा इलाकों में है। इन इलाकों में यमन के मशहूर याफई कॉफी की भी खेती होती है। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल दावा झूठा साबित हुआ। वायरल हो रहे वीडियो का नेपाल से कोई भी लेना देना नहीं है। ये यमन का पुराना वीडियो है। ज्योति द्विवेदी के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
0: सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में एक शख्स माइक लिए एक युवक को स्कूल में प्रवेश करने से रोकता हुआ नजर आ रहा है और इसके जरिए लोग ये कह रहे हैं कि टीचर ने कांग्रेस जनता पार्टी के सदस्य को स्कूल के अंदर आने से रोक दिया। सच्चाई क्या है इस रिपोर्ट में जानिए।
2: ठीक है, वहाँ पे रुक जाइए, बाहर चलो, यहाँ पे देखो, ठीक
3: है, कौन है लड़की के चक्कर में आया, कैसे एंट्री दे
1: देंगे। 15 अगस्त को अभिजीत दीपके के नेतृत्व वाली कांग्रेस जनता पार्टी ने गांवों में सरकारी स्कूलों को सुधारने के लिए स्कूल ठीक करो अभियान शुरू किया। इस अभियान की शुरुआत सीजेपी के सह संस्थापक और संयोजक अभिजीत दीपके ने 15 अगस्त को महाराष्ट्र के हिंगोली जिले से की। इस अभियान का मकसद है देश के ग्रामीण और कम फंड वाले सरकारी स्कूलों की बुनियादी सुविधाओं का सोशल ऑडिट करना और स्कूलों की स्थिति को बेहतर बनाना। इन सब के बीच सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक अधेड़ उम्र का शख्स माइक लिए एक युवक को स्कूल में प्रवेश करने से रोकता हुआ नजर आ रहा है। इसके जरिए कुछ लोग ये कह रहे हैं कि टीचर ने सीजेपी सदस्य को रोका। वीडियो में टीचर को ये कहते हुए सुना जा रहा है कि ये लोग लड़कियों को देखने के लिए स्कूल आते हैं। वीडियो शेयर करते हुए एक एक्स यूजर ने लिखा, तो क्या सीजेपी के गुंडे स्कूलों में ये देख कर घुस रहे हैं कि किन स्कूलों में खूबसूरत लड़कियाँ हैं? मतलब सच में क्या इन बेवकूफों को निरीक्षण के नाम पर स्कूलों में जाने की इजाजत दी जानी चाहिए? क्या ये आपके आदर्श हैं? सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है।
0: दरअसल सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में एक शख्स माइक लिए हुए युवक को स्कूल में प्रवेश करने से रोकते हुए नजर आ रहा है और इसके जरिए लोग ये कह रहे हैं कि टीचर ने कांग्रेस जनता पार्टी के सदस्य को स्कूल के अंदर जाने से रोका। वीडियो में टीचर को ये कहते हुए सुना जा रहा है कि ये लोग लड़कियों को देखने के लिए स्कूल आते हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर इसी मिलते जुलते दावे के साथ ये वीडियो लगातार शेयर किया जा रहा है। ऐसे में इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की और दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा भी और इसे सुना भी। इस दौरान टीचर और माइक पकड़े हुए युवक के बीच जो बातचीत हो रही है उसे हमने ध्यान से सुना। इसमें जो बोलने का लहजा है, इस तरह का लहजा बिहार में सुनने को मिलता है। मतलब ये कि वायरल हो रहा वीडियो बिहार के किसी इलाके का हो सकता है। साथ ही साथ वीडियो को देखने से ये भी लग रहा है कि अगर कांग्रेस जनता पार्टी का सदस्य किसी स्कूल के हालात को जानने के लिए वहां पहुंचा होता तो वो माइक लेकर क्यों आएगा। वो आराम से स्कूल प्रबंधन से बातचीत करेगा और स्कूल में क्या क्या हो रहा है इसके बारे में जानकारी हासिल कर लेगा। लेकिन इस वीडियो को देखने से ऐसा नहीं लग रहा। इसके अलावा सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई प्रमाणिक जानकारी भी नहीं मिली जो कि वायरल दावे की पुष्टि कर सके कि बिहार में कांग्रेस जनता पार्टी के अभियान को लेकर कोई जानकारी सामने आई। लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा। हमारा पहला सवाल यही था कि वायरल हो रहा वीडियो कब का है और कहां का है। हमारा दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए भ्रम तो नहीं फैलाया जा रहा। सच और झूठ इस रिपोर्ट में जानिए।
1: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वीडियो की पड़ताल में जुटी। सबसे पहले हमने वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें 9 जुलाई को एक फेसबुक पेज पर पोस्ट किया गया वीडियो का एक और वर्जन मिला। इस वीडियो में अधेड़ उम्र का व्यक्ति खुद को स्कूल में सहायक शिक्षक बताता है, जबकि युवक खुद को पत्रकार बताता है। शिक्षक उसे स्कूल परिसर छोड़ने के लिए कहता है और बताता है कि उसे आधिकारिक अनुमति के बिना प्रवेश करने की अनुमति नहीं।
3: लेटर लेकर के ऑडियो ऑफिस से तब देंगे एंट्री।
2: मतलब यहाँ पे जो भी भ्रष्टाचार होगा तो अभी वहाँ पे
3: ऑफिस लेकर ऐसे नहीं देंगे।
1: हमने इस फेसबुक पेज की जांच की। इस दौरान हमने पाया कि यहाँ अलग अलग विषयों को कवर करते कई वीडियोस मौजूद हैं। खासतौर पर बिहार के सरकारी स्कूलों की स्थिति पर यहाँ कई वीडियोस देखने को मिले। एक वीडियो में हमने उन्हें एक शिक्षिका से सवाल जवाब करते और उनके ज्ञान की परीक्षा लेते हुए भी देखा।
4: बर्खास्त हो गया है ऐसे ना।
5: एप्लीकेशन कहाँ धल है?
4: एप्लीकेशन कहाँ धल दिखाइए।
1: इसके बाद फैक्ट चेक टीम ने ये फेसबुक पेज चलाने वाले शख्स यानी कि मनोज यादव से भी संपर्क किया। इस दौरान उन्होंने साफ किया कि उनको कांग्रेस जनता पार्टी से कोई संबंध नहीं है, वो स्कूल ठीक करो अभियान में शामिल नहीं है। वायरल हो रहे वीडियो के बारे में उन्होंने कहा कि पानी की समस्या को उजागर करने के लिए 9 जुलाई को वो नालंदा जिले के इस्लामपुर ब्लॉक स्थित राजकीय उच्च विद्यालय गए थे। इस तरह हमारी पड़ताल से साफ हो गया कि वायरल हो रहे वीडियो का कांग्रेस जनता पार्टी के स्कूल ठीक करो अभियान से कोई संबंध नहीं है। वायरल हो रहा वीडियो 9 जुलाई को फेसबुक पर अपलोड किया गया था, जबकि कांग्रेस जनता पार्टी का स्कूल ठीक करो अभियान 15 अगस्त को शुरू किया गया था। मोहम्मद महफूज आलम के साथ टीम फैक्ट चेक गुड न्यूज टुडे।
0: और फैक्ट चेक में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में, दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला।
0: और वक्त है फैक्ट चेक के आखिरी सफर का। आपको दिखाते हैं ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
11: जन्माष्टमी से पहले सोशल मीडिया पर एक प्यारा वीडियो सामने आया है जिसने लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। वीडियो में नन्हे कलाकार अपनी मासूम अदाओं और शानदार एक्सप्रेशन से सबका ध्यान खींचते नजर आते हैं। उनकी मासूमियत देखकर यूजर्स जमकर प्यार लुटा रहे हैं। वायरल वीडियो में बच्चों को पारंपरिक राधा कृष्ण के लुक में तैयार किया गया है। एक बच्ची राधा के रूप में नजर आती है, वहीं एक बच्चा कान्हा के रूप में दिखाई देता है। दोनों बच्चों की जोड़ी बेहद प्यारी लग रही है। डांस के दौरान बच्चे के एक्सप्रेशन और बच्चे की शरारती अदाएं वीडियो को और भी खास बना देती हैं। म्यूजिक की धुन के साथ दोनों छोटे कलाकार अपने स्टेप्स करने की कोशिश करते नजर आते हैं। उनकी मासूमियत देखकर ऐसा लगता है जैसे वे किसी बड़े स्टेज पर नहीं बल्कि अपने ही अंदाज में त्योहार की खुशी मना रहे हों।

बारिश के दिनों में सड़कों पर पानी और कीचड़ जमा होना आम बात है, लेकिन ऐसे मुश्किल हालात में भी एक छोटे भाई ने अपनी बहन का जिस तरह से ख्याल रखा, उसने लोगों का दिल जीत लिया। वीडियो में तेज बारिश के बीच एक छोटा लड़का अपनी बहन के साथ पानी और कीचड़ से भरे रास्ते पर चलता नजर आता है। आसपास कई गाड़ियां खड़ी हैं और सड़क की हालत ऐसी है कि वहां से निकलना भी आसान नहीं है। ऐसे मौसम में लड़का खुद बारिश में भीगने की परवाह नहीं करता। वो एक बड़ी चादर अपनी बहन के ऊपर इस तरह ताने हुए है कि बारिश की बूंदें उस तक न पहुंचे। उसका पूरा ध्यान सिर्फ इस बात पर है कि उसकी बहन किसी तरह भीगने से बच जाए और सुरक्षित तरीके से रास्ता पार कर सके। इसी बीच एक सफेद कुत्ता भी दोनों के आसपास घूमने लगता है। कुत्ता कभी उनके आगे तो कभी पीछे नजर आता है। हालांकि लड़का इससे भी सतर्क हो जाता है। वो एक तरफ बहन को बारिश से बचाते हुए आगे बढ़ता रहता है और दूसरी तरफ कुत्ते पर भी नजर रखता है। कुछ देर बाद जब कुत्ता उसके बहन के ज्यादा करीब आने लगता है तो लड़का तुरंत उसकी तरफ मुड़ता है और उसे दूर हटाने की कोशिश करता है। इसके बाद वो बिना समय गवाए फिर अपनी बहन के पास पहुंच जाता है, चादर को दोबारा ठीक करता है और उसे सुरक्षित रास्ते से आगे ले जाने लगता है। वीडियो में भाई का यही छोटा सा प्रयास सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है। यूजर्स इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक बेहद प्यारा और भावुक करने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें एक छोटी बच्ची अपने घर में जन्मदिन के उपहारों के ढेर के बीच से गुजरती नजर आती है। उसकी मासूम मुस्कान और खुशी का अंदाजा देखकर लोग भावुक हो रहे हैं। क्लिप में जन्मदिन वाली बच्ची रिद्धि घर के बाहर खड़ी दिखती है। परिवार के सदस्य उसके साथ आते हैं। दरवाजे पर रिबन बांधा गया है, उसे कैंची दी जाती है और वो रिबन काटती है जैसे वो अपनी पार्टी की मुख्य अतिथि हो। जैसे ही वो अंदर कदम रखती है, फर्श पर सुंदर कपड़ा बिछा होता है जिस पर फूलों की पंखुड़ियां सजी होती हैं। साथ ही उपहारों का एक लंबा रास्ता बनाया गया है। रिद्धि हैरानी और खुशी से भर जाती है। वो सीधे आगे नहीं बढ़ती बल्कि एक एक करके लिपटे हुए उपहार उठाती जाती है। मुस्कुराते हुए वो उन्हें अपनी बाहों में इकट्ठा करती है। जब तक सारे गिफ्ट नहीं ले लेती तब तक रुकती नहीं। उसकी मासूमियत और उत्साह का ये अंदाज वीडियो को खास बना देता है। वीडियो को देखने के बाद कई यूजर्स ने लिखा है कि ये पल वो हमेशा याद रखेगी।

0: कहते हैं माँ की जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन एक पिता अपने बच्चे की जिंदगी में प्यार और देखभाल की ऐसी छांव बन सकता है जो उसे मुश्किल वक्त में संभाल ले। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के रहने वाले कुलदीप भारद्वाज की कहानी कुछ ऐसी ही है। पत्नी को खोने के बाद उन्होंने अपने 2.5 साल के बेटे सात्विक की परवरिश की पूरी जिम्मेदारी खुद संभाल ली। कुलदीप के लिए अब जिंदगी सिर्फ उसके बारे में सोचने का नाम नहीं है, उनकी दुनिया उनके छोटे से बेटे सात्विक के इर्द गिर्द घूमती है। बच्चे को खाना खिलाने से लेकर उसकी देखभाल करने, उसे संभालने और उसके साथ वक्त बिताने तक वो हर जिम्मेदारी खुद निभा रहे हैं। पिता होने के साथ साथ वो बेटे के लिए माँ जैसी ममता और सुरक्षा देने की भी पूरी कोशिश करते हैं।
1: इधर क्यों आके बैठ गई आप?
2: भाई साहब देखने के लिए।
1: अभी कह रही थी डर लग रहा है।
2: नहीं कह रही, जिसको देखते इधर बैठे कोई नहीं, तो सारे आते हैं।
1: कोई नहीं ले जाता अम्मा एयरपोर्ट पे।
0: लखनऊ एयरपोर्ट का एक बेहद क्यूट सा वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी छाया हुआ है, जिसमें एक दादी और उनकी पोती की मासूम बातचीत ने नेटिजन्स का दिल जीत लिया है।
1: पार्किंग में है? ये हवाई जहाज का पार्किंग होता है।
2: ये पार्किंग होता है? मुझे पानी पड़ रहा तो भीगता हूँ, पानी पड़ रहा था तो भीगेगा। पार्किंग है।
0: इस वायरल क्लिप को देखकर लोग अपनी पुरानी यादों में खो गए हैं और कमेंट्स में अपनी अपनी दादी को याद कर रहे हैं। ये वीडियो उस वक्त का है जब दादी हैदराबाद जाने वाली फ्लाइट का इंतजार कर रही थी। एयरपोर्ट पर बैठे बैठे बुजुर्ग महिला अपने बैग के पास ऐसे पहरा दे रही थी जैसे उन्हें डर हो कि कोई उनका सामान लेकर 9211 न हो जाए। जब पोती ने उन्हें प्यार से समझाया कि यहाँ सामान बिल्कुल सेफ रहता है, तो दादी के मन में बच्चों जैसी जिज्ञासा जाग उठी। फिर क्या था, दादी ने बड़ी मासूमियत से पूछा कि इतने बड़े बड़े हवाई जहाज बारिश में भींगते क्यों नहीं और उन्हें कहाँ खड़ा करते हैं। उनकी ये भोली भाली बातें आज की तेज रफ्तार जिंदगी में बुजुर्गों की उस सादगी की याद दिला गई जो अब बहुत कम देखने को मिलती है। मुंबई के एक ऑटो रिक्शा चालक ने यात्रियों से मराठी में संवाद करने के लिए एक आसान और प्रभावी तरीका अपनाया है। उन्होंने अपने ऑटो के अंदर हाथ से लिखी हिंदी मराठी अनुवाद शीट चिपका रखी है, जिसमें रोजमर्रा के इस्तेमाल के वाक्य शामिल हैं। ये शीट सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है और लोगों ने चालक की मेहनत और जुगाड़ की जमकर तारीफ की है। एक महिला ने ऑटो में सवार होकर ये शीट देखी और इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर कर दिया। शीट में हिंदी वाक्यों के साथ साथ उनके मराठी अनुवाद साफ साफ लिखे हैं ताकि चालक जरूरत पड़ने पर तुरंत देख सके। ये पहल महाराष्ट्र

0: हलकों से मराठी की कार्यकारी जानकारी अनिवार्य की गई है। ग्रेजुएशन का दिन हर छात्र के लिए बेहद खास होता है। कई साल की पढ़ाई और मेहनत के बाद जब स्टेज पर उसका नाम पुकारा जाता है और वो डिग्री लेने पहुंचता है तो वो पल हमेशा याद रहता है। लेकिन एक छात्र के लिए ये दिन इसलिए भी खास बन गया क्योंकि वो डिग्री लेने अकेला नहीं आया था, उसके कंधे पर उसकी प्यारी सी बिल्ली भी बैठी थी। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में छात्र बड़े आराम से अपनी बिल्ली को कंधे पर बैठाकर स्टेज की ओर जाता नजर आ रहा है। छात्र को शायद अपनी डिग्री मिलने की खुशी थी, लेकिन वहां मौजूद लोगों की नजरें उसके बिल्ली पर टिक गई। कुछ ही देर में ये बिल्ली पूरे समारोह की सबसे खास मेहमान बन गई। वीडियो में छात्र अपनी बिल्ली के साथ स्टेज पर पहुंचता है। जैसे ही वो डीन और प्रोफेसर्स के पास जाता है, वहां मौजूद लोगों का ध्यान बिल्ली पर चला जाता है। कुछ प्रोफेसर उसे देखकर मुस्कुराते हैं तो कुछ प्यार से उसे सहलाते हुए नजर आते हैं। सबसे मजेदार बात यह है कि बिल्ली भी पूरे समय बेहद आराम से छात्र के कंधे पर बैठी रहती है। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे उसे अच्छी तरह पता हो कि आज का दिन उसी के नाम होने वाला है। शादी से पहले होने वाली दुल्हन के लिए बैचलरेट पार्टी का अपना ही उत्साह होता है, लेकिन अमेरिका की एक होने वाली दुल्हन के लिए उसकी पार्टी शुरू होने से पहले ही बेहद खास बन गई। वो विमान से अपने बैचलरेट पार्टी के लिए जा रही थी, तभी एयर होस्टेस ने उसके लिए ऐसा प्यारा सरप्राइज प्लान किया कि पूरी फ्लाइट शादी की सलाह देने वालों से भर गई। यात्रियों ने नैपकिन पर होने वाले दुल्हा दुल्हन को शादीशुदा जिंदगी के लिए मजेदार और काम की सलाह लिखी।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ला।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज़ टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: दक्षिण भारत की हरियाली, बैकवाटर्स की शांत लहरें और उनके बीच गूंजती चप्पू की थाप। जब केरल में ओणम का पर्व आता है तो शांत जलधाराएं जीवंत हो उठती हैं। केरलम से ऐसी ही शानदार तस्वीरें निकल कर आई। स्नेक बोट रेस, ये केरल की ऐसी परंपरा है जो नदियों की लहरों पर तैरती दिखाई देती है। साल भी पथनम थिट्टा जिले में पंबा नदी के तट पर पारंपरिक बोट रेस का आयोजन भव्य तरीके से किया गया। नाव पर सवार नाविकों ने पारंपरिक वेशभूषा में पारंपरिक गीत गाते हुए रफ्तार और लाल ताल का अद्भुत नजारा पेश किया।
2: ओणम का नाम आते ही आंखों के सामने केरलम की रंग बिरंगी तस्वीरें उभर आती है। फूलों की पंखुड़ियों से सजी रंगोली, कथकली के रंग, मंदिरों की रौनक और फिर पानी की लहरों को चीरती हुई सैकड़ों चप्पूओं की ताकत। लंबी विशाल सांप जैसी दिखने वाली नाविक, नाविकों का जोश, वंची पापुट्टू की गूंज और किनारों पर उमड़ा जनसैलाब। ये सिर्फ एक नाव दौड़ नहीं है, ये केरलम की धड़कन है, परंपरा है, प्रतिष्ठा है और सबसे बढ़कर ये उस सामूहिक ताकत की तस्वीर है जहां एक नाव को आगे बढ़ाने के लिए सैकड़ों लोग एक साथ सांस लेते हैं, एक साथ गीत गाते हैं और एक ही दिशा में चप्पू चलाते हैं। वंचीपाट्टू केरलम का प्रसिद्ध पारंपरिक नौका गीत है जिसे मुख्य रूप से ओणम उत्सव और स्नेक बोट रेस के दौरान गाया जाता है। मलयालम भाषा में वंची का अर्थ नाव और पाट्टू का अर्थ गीत होता है। ओणम उत्सव के साथ केरलम की नदियों और बैक वाटर्स पर हर साल सजने वाले मशहूर स्नेक बोट रेस को